0: योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से एक लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
1: हमारे अब जय प्रवर्तन होते हैं वो सब देखते रहते हैं, भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लोकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
0: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने एक हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
2: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। एक हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर एक हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
0: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही है। ये 2 मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
3: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
4: जी आए थे।
3: कब आए थे, क्या?
4: हम कल आए थे, पूछताछ कर रहे थे।
3: अच्छा
4: जी जी।
3: क्या करके गए?
4: कुछ नहीं, पूछा था सा मकान नंबर ये वो कौन सी हम क्या कैसे लगता है किसका मकान है इतना इस जानकारी।
0: लवकुश मिश्रा की तथा उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
5: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूँ जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
0: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया।
6: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु और भोली वाली है जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
0: लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है।
7: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
0: लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की।
8: और अब आपको दिखाते हैं भारत और जापान के रिश्तों में नई उड़ान। जापान के पीएम सनाए तकाइची भारत आई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स पार्टनरशिप की खूब बातें हुई हैं, कई डील्स भी हुई जो भारत जापान के रिश्तों की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करेंगी। जी हां, भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानीज कंपनियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
9: योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
8: और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
10: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
11: पता है पुलिस, देखो देखते आवाज शुरू करे पता चल बे।
10: नादिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए। महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
12: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
10: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
13: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 एमएलए में ऐसा एमएलए है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
14: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
10: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं दे रहा। आज तक ब्यूरो
8: टीएमसी एक ओर जहां हमलों का शिकार हो रही है, तो वहीं पार्टी की टूट ने ममता की ताकत को कमजोर कर दिया है। इसी बीच अब शरद पवार गुट ने भी सांसदों की टूट की अटकलें हैं, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है।
10: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
15: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है, और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर एनसीपी का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
10: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं, तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ, दिल्ली में बात चल रही है। तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं, और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
0: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
10: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
16: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं, हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। तो हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं। क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
10: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं, गठबंधन को भी है। एनसीपी एसपी, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना यूबीटी एमएलसी सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस शिंदे और सुनेत्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी एनसीपी शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं, और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो 2/3 के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार हो। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
8: मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपने हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा 15 लोगों का टीम था। हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं। तो सेपर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था, उसने नीचे जाके मैं गया था नीचे जाके, मैंने उनको हरनेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
2: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में, नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
0: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ, अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। प्लीज, ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है। हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस, वहाँ पे सदृश्य मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके, उनको निलंबित किया है। लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल होगा।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो, गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके, एक तो वैसे भी बारिश लेट आई, तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबई को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर कम?
4: तेज वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
0: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
0: साकीनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटारं उघडी ठेवली असतात. हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर.
0: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
8: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी. हमारे साथ बीजेपी के MLA और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है. उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.
9: आज वहां पर साकीनाका में SO डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है. हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्यवध का कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना FIR रजिस्टर होना चाहिए. जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं.
0: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकीनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से BMC संभल नहीं गई.
10: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए. जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करोड़ के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?
0: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी. इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई.
11: ये बोल के हम थक चुके हैं. आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया, स्लैब गिर गया था. आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान में गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई.
0: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली मां की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली. मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के बिहान की मौत हो गई थी. अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है. यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया. हादसे का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था. मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभा देवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है. लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में हैं. मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक.
12: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि बच्चों को दिन भर की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो अपने काम में ठीक से मन लगा सके, काम ठीक से कर पाएं या फिर अपनी नौकरी कर पाएं. लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाए. देखते हैं डे केयर के शैतान को.
13: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा. कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया. बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला. मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा. बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी. मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है. 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
14: As per the complaint, which is against mentioned, 5 names have been mentioned, of women staff who are working in a daycare facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
13: अब पुलिस ने 5 caregivers के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयर गिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
12: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। मूसलाधार बारिश से दिल्ली मुंबई, 3 दिन में 5 मौत। खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों ने खोली सरकारी दावों की पोल। पीड़ितों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। चढ़ावा चोरी को लेकर बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा से भी बंद कमरे में सवाल जवाब। तीन घंटे तक अमित शाह और नितिन नवीन के बीच मैराथन बैठक। सूत्रों के मुताबिक बड़े फेरबदल की तैयारी, कभी भी हो सकता है टीम बीजेपी का ऐलान। तृणमूल कांग्रेस में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। दोनों गुटों का पार्टी पर दावा।

0: नमस्कार सुप्रभात, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हर हर महादेव, बम बम की गूंज के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। ये पवित्र यात्रा बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था वहां से रवाना हो चुका है। अगले 57 दिन तक ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे। 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पवित्र गुफा तक पहुंचने की उम्मीद है। प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन को लेकर के भक्तों में खास उत्साह है। कठिन चढ़ाई के बावजूद शिव भक्तों का विश्वास अटूट है, हर कदम बाबा के आशीर्वाद की ओर बढ़ रहा है। तो ये पहला जत्था जो बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से अब पहाड़ों के लिए रवाना हो गया है, यहां से चढ़ाई शुरू होगी और उसी के बाद ये भक्त एक एक करके उस पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर पहुंचेंगे। ये बालटाल बेस कैंप से रवानगी की तस्वीरें हैं। इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं और साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर भी उन्हें RFID कार्ड, स्वास्थ्य चेक, इन तमाम सुविधाओं को भी मुहैया कराया गया है। पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और धीरे धीरे अब जो भक्त हैं वो अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चूंकि पहनावा उन्होंने देखा कि सबके पास लगभग रेनकोट है, यानी बारिश भी है, चूंकि प्री मॉनसून एक्टिविटी शुरुआत है, ऐसे में बारिश खलल डाल सकती है, लेकिन ये भक्तों का उत्साह है, उनका जोश है, जो बारिश उनका रास्ता नहीं रोक सकती। और अब पहला जत्था धीरे धीरे, तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो बेस कैंप जहां से एक पारंपरिक यात्रा का मार्ग है वो है पहलगाम और दूसरा मार्ग जो कि सोनमर के पास बालटाल से शुरू होता है। और दोनों ही जगहों से देखिए मौसम खराब है, बरसात हो रही है, लेकिन ये जोश है, ये आस्था का सैलाब है, ये श्रद्धालुओं की भीड़ है जो भक्तिभाव के साथ अब बाबा महादेव के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी रवानगी हो चुकी है, जय जयकार के नारे घाटी में गूंज रहे हैं, बम बम बोले हर महादेव के नारे लगाते श्रद्धालुओं का ये हुजूम बालटाल और पहलगाम से आगे अब अमरनाथ गुफा की ओर चल रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, किस बेस कैंप पर आप हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और मौसम कैसा है इस समय, क्योंकि मौसम कई बार यात्रियों के लिए बाधा बन जाता है।
1: बिल्कुल आशुतोष, सुबह से ही जो है मौसम काफी खराब है। रात 3 बजे से जब लोग जहां पर यहां बालटाल से आगे जो डोमेल पड़ता है, यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां से ही RFID चेक करके जो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं उनको यहां से छोड़ा जाता। लेकिन आप पहाड़ों की तरफ देखिए तस्वीर किस तरीके का है कि मौसम जो है रात से ही खराब है, रुक रुक करके बारिश हो रही है। इस वजह से अभी बालटाल रूट पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं उनको बीच बीच में रोका जा रहा है और उनको आगे की तरफ रवाना करने से ये कहा जा रहा है कि मौसम खराबी होने की वजह से अभी लोग अपने कैंप में रहें। और इसके साथ ही इस तरीके का अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जब मौसम खुलेगा तो उसके बाद लोगों को भेजा जाएगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये तमाम लोग जो हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये आगे की तरफ जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये डोमेल जो चेकिंग पॉइंट है, फर्स्ट चेक पॉइंट जो है जहां से ऊपर बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ भेजा जाता है, तो इस जगह पर काफी भीड़ इस वक्त मौजूद है और यही वजह है कि लोग जो हैं यहां पर अभी रुके हुए हैं। मैं आगे की तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहां पर भी आप देखिए कि ये आगे जो सामने की तरफ रास्ता जाता है आशुतोष, इसमें तस्वीरें देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ऊपर पहाड़ तक जो रास्ता है यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो मौजूद हैं और धीरे धीरे करके इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो संख्या बताई जा रही शुरुआत में जो बालटाल के लिए करीब 5,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो एक साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि बारिश होने की वजह से ज्यादा लोगों को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है, उनकी तादाद जो है काफी कम है आशुतोष, इस वजह से लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और ये भीड़ करीब 200 से 300 मीटर के आगे तक है जहाँ पर चेक पॉइंट बना हुआ है वहां तक लोगों को रोका गया है। सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों में मौसम कभी भी खराब हो जाता है और खासतौर पर बाबा बर्फानी का जो रास्ता है, जो रूट है, वो करीब 13 से 14 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से डोमेल से जो शुरुआत होती है, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है, बीच बीच में बारिश होती है और उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन श्रद्धा, और अगर बात करें कि बाबा बर्फानी के जो लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, वो लोग जयकारा यहाँ पर लगा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? काफ़ी भीड़ है और लंबा लाइन लगा हुआ है यहाँ पर।
2: सर, हम पंजाब से आए हैं।
1: आप कहाँ से आए?
2: पंजाब से।
1: अच्छा, तो ये अलग अलग राज्यों से आशुतोष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तस्वीर आप देखेंगे तो एक बार आपको दिखाएंगे, यहाँ से 200 से 300 मीटर आगे तक पूरा जो रास्ता है वो भरा हुआ है।
0: नहीं जितेंद्र, क्या बारिश के चलते अभी इनको रोका गया है यात्रियों को, या एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं?
1: देखिए, आगे जो चेक प्वाइंट है वहां तक अभी रोका गया है। चेक प्वाइंट पर RFID जो है वो चेकिंग की जा रही है। जो पहला जत्था है वो करीब 5:30 बजे के आसपास छोड़ना था, लेकिन वो डिले हो गया क्योंकि बारिश होने की वजह से लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लैंडस्लाइड की संभावना बालटाल।
0: जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, आप बने रहे हमारे साथ। दरअसल आप जहां पर, हम दरअसल वो तस्वीरें भी दिखाते हैं, वो जगह दिखा देते हैं नक्शे पर कि आप कहां पर हैं। और ये दो यात्रा होती है अमरनाथ के लिए, पारंपरिक यात्रा मार्ग होती है। मार्ग कहां से शुरू होती है? एक जो मार्ग शुरू होता है वो है पहलगाम से। ये पारंपरिक रूट है, पहलगाम से होते हुए चंदनवाड़ी के बाद पिस्तू टॉप, और उसके बाद नागकोटी, शेषनाग, महागणेश होते हुए पंचतरणी संगम, और उसके बाद पवित्र गुफा का रास्ता है। ये बहुत लंबा रास्ता है और ये लगभग जो है आप 42 किलोमीटर जो है श्रद्धालु चलते हैं, और सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है वो इस 42 किलोमीटर के मार्ग पर होती है। और उसी के साथ ये जम्मू हिस्से की बात, आप जब जम्मू से लोग जाते हो पहलगाम सबसे पहले पहुंचते हैं। एक रास्ता है जो श्रीनगर के आगे बालटाल से शुरू होता है, बालटाल के आगे डोमेल। ये डोमेल वही है जहां से हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो बेस कैंप से श्रद्धालु निकलेंगे डोमेल पर, उनका RFID चेक होगा, उसके बाद उस एक्सेस से वो आगे शुरू करेंगे चढ़ाई, और डोमेल से ही सीधे पहाड़ चढ़ना शुरू हो जाता है रास्ता। उसके बाद बराड़ी के बाद संगम वो इलाका है जहां पहलगाम और बालटाल दोनों के यात्री जगहों पर यहां पर मिलते हैं, और यहां से फिर उन्हें सीमित संख्या में पवित्र गुफा की ओर जाने दिया जाता है। तो बालटाल का रास्ता कुल मिला के 14 किलोमीटर का है, और जो पहलगाम से यात्री निकलते हैं वो लगभग 42 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। फिर आपको सीधे लिए चलते हैं जितेंद्र बहादुर के पास डोमेल में, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इतना लंबा रास्ता, कठिन चढ़ाई, खराब मौसम, लेकिन भक्तों का वो हौसला, ये हिम्मत, और ये उनकी आस्था की शक्ति है कि जो लगातार बिना हौसला हारे, बिना हिम्मत हारे। मैं आपको भी देख पा रहा हूं, रेनकोट वगैरह पूरी व्यवस्था लगी हुई है, इसका मतलब बारिश काफी तेज है। मुझे बताइए, आप भी चढ़ाई करने जा रहे हैं क्या अमरनाथ गुफा तक?
1: बिल्कुल, कोशिश यही है आशुतोष की मौसम जैसे ही सही हो, जितने भी बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं उनके साथ जो है आज तक की टीम भी इस रास्ते से सीधे डोमेल तक पहुंच चुका हूं। करीब 2.5 किलोमीटर जो है वो बालटाल का जो बेस कैंप है वहां से पड़ता है, इस लोकेशन तक पहुंचे हुए हैं, और यहां पर RFID की चेकिंग होती है। उसके बाद ही जिनका RFID और रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हीं को आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है। लेकिन एक बार आपको तस्वीरें और दिखाते हैं कि कितनी लंबी यहां पर लाइन लगी हुई है, जहां पर चेक पॉइंट बनाया गया है, RFID जहां पर जो है चेकिंग की जा रही है। लेकिन जितना बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं उनकी तादाद देख करके यही लगता है कि बारिश हो, किसी भी तरीके की स्थिति हो, सभी जो श्रद्धालु हैं वो आगे की तरफ जाना चाहते हैं, बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, यही यहां पर दिखाई पड़ रहा है। एक बार सभी लोग यहां पर जो है देखिए किस तरीके से जयकारा लगा रहे हैं। जी बताइए, कहां से आए हैं आप?
3: हम गुजरात से आए।
1: अच्छा,
3: सूरत से।
1: सूरत से रास्ता तो बहुत यहाँ से 500 मीटर तक पूरा
3: चल जाएंगे ना?
1: जी
3: चल के जाएंगे।
1: अच्छा,
4: नवसारी से ही हम दोनों साथ में, गुजरात से।
1: बिल्कुल आशुतोष, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरीके का उत्साह है, जयकारा ये लोग लगातार लगा रहे हैं बाबा बर्फानी का, और अलग अलग राज्यों से जो आए हैं, हाथों में त्रिशूल भी इनके है। आप देखिए, आप यहाँ कहाँ पर आए हैं और कहाँ से जो है इस रास्ते से जा रहे हैं? काफी लंबा वो लगा हुआ है यहाँ पर, जयकारा लगाते हुए सारे लोग पहुँच रहे हैं।
5: देखिए, मैं पहली बात तो ये मेरा 7वां कि 8वां साल है। अच्छा। सुबह जब उठे तब बारिश इतनी हैवी थी, लेकिन जब हम यहाँ पर आते तब मन में भोले बाबा ही होते हैं, और चाहे आंधी आए तूफान आए, ऊपर जाके बाबा के दर्शन करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए, ये त्रिशूल हर बार हम लेके जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग हैं। जयकारा वीर बजरंगी, बम बम। हम बॉम्बे से आ रहे हैं, हम हर साल आते हैं, हमारा पूरा ग्रुप है, 11 जन भी आगे गए हुए हैं, और मेरे ख्याल से मौसम अभी भोले बाबा ने खोल दिया, देख रहे हैं उनके यात्री थोड़े परेशान हो रहे हैं, तो वो अभी हम सबको ऊपर बुला रहे हैं। हम आशा है कि हम सब दर्शन करेंगे अच्छे से।
1: बिल्कुल, तो आस्था जो है इन लोगों की, आशुतोष, इसी तरीके की दिखाई पड़ रही है। और तस्वीरें ये बताती हैं कि ये पूरा रास्ता जो है ये पैदल जाने वालों का है, और दूसरी तरफ ये रास्ता जो है ये खच्चर के जरिए लोग यहाँ से जा सकते हैं। पूरे रास्ते में आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि डोमेल तक जहां से चेक पॉइंट बनाया गया है, यहां से आगे तक लोगों को अभी छोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि बीच बीच में बारिश भी हो रही है। मौसम धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, लेकिन कोशिश ये है यहां पर, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट का हो या फिर मौसम विभाग की तरफ से, जो पहले से पूर्वानुमान आ रहा है आशुतोष, उसके आधार पर ही इन लोगों को यहां से छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद लैंडस्लाइड जोन काफी है, वहां पर दिक्कतें लोगों को हो सकती है। इस वजह से अभी रुक रुक करके यात्रा की शुरुआत जो है की गई है बालटाल वाले रूट से। यार डोमेल से जो है करीब करीब ये 500 मीटर की दूरी है जहां पर चेक पॉइंट बनाया है, यहां से अभी यात्रा को रोका गया है, जिससे कि मौसम जैसे ही सही होगा उसके बाद से बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं, एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। और ये लोग सुबह से ही यहां, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो रात से ही लाइन लगाए हुए हैं, और जिनको ये लगता है कि जैसे ही मौसम सही होगा वैसे ही ये लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आशुतोष,
0: हमने ये देखा था जोश जुनून भक्तों का, कि जब कल पहलगाम से जब बसें रवाना हो रही थी जितेंद्र, तब भी हमने देखा था कि वो निकले हैं, और आज आपके पीछे लगभग हर कोई भीग रहा है। बूंदाबांदी हो रही, मैं देख रहा हूं आपके कपड़ों पर भी बूंदाबांदी तो हो रही है, लेकिन आस्था और भक्ति की जो शक्ति होती है वो हर तरह की त्रासदी, हर तरह की कैलेमिटी को झेल जाती है। सुरक्षा के बंदोबस्त आगे के मार्ग पर किस तरह भक्तों के लिए, क्योंकि ये टेरेन भी बहुत मुश्किल है, होस्टाइल इलाका भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए इस बार हमने देखा था कि क्यूएटी और तमाम सारी जो की गई थी। आज आप जमीन पर क्या देख पा रहे हैं?
1: देखिए आशुतोष, सुरक्षा के अगर इंतजामों की बात करें तो पूरे रास्ते जम्मू से जब ये पूरी रास्ता जो यात्रा शुरू होती है उस दौरान वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें लगाई गई हैं। यहां जो ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ हैं, यहां पर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में कोई भी चूक यहां पर नहीं होती। और हर एक जगह यहां पर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं, ये यहाँ पर हर एक चीज पर नजर रखते हैं। यात्रा की जो शुरुआत है उसमें किसी भी तरीके का कोई संदिग्ध व्यक्ति ना घुसे, इसलिए उसके लिए RFID भी बनाया गया है, और QR कोड आधारित इस बार उनकी सिक्योरिटी और पहचान पत्र को भी तैयार किया गया है। तो इस तरीके की व्यवस्था जरूर की गई है, सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए तैयारी भी उसी हिसाब से की गई है। यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि दो रास्ते भी बनाए गए इस बार, जो आशुतोष रास्ता भी काफी चौड़ा किया गया है यहाँ से, जो बालटाल वाला रूट है, और इस रूट से जो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं उसमें BRO की तरफ से रास्ता भी ठीक बनाया गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पूरे रास्ते में बिजली की व्यवस्था भी की गई है, कि रात अगर हो जाती किसी को वापस आने के दौरान तो उस दौरान जो है उनको बिजली की दिक्कत ना हो, मतलब लाइट रास्ते में हो। इस
0: अच्छा, मार्ग देख करके मुझे भी लग रहा है जितेंद्र की बारिश काफी ज्यादा हुई है, मतलब बीती रात से कम काफी ज्यादा, आपका जो पीछे जो मार्ग मैं देख पा रहा हूं, काफी ज्यादा बारिश हुई है, तो ये थोड़ी मुश्किलें तो जरूर पैदा करेगा यात्रियों के लिए।
1: अब बिल्कुल, बारिश रात से हो रही है, 3 बजे रात से मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही है और रुक रुक कर बारिश हो रही है, लोगों को दिक्कतें बहुत हो रही है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जिस तरीके से लैंडस्लाइड जोन भी आगे की तरफ है, ये जो ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर लैंडस्लाइड जोन है, हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने अपनी अपनी टीमें लगा रखी हैं, माउंट जो रेस्क्यू टीम है उनकी, वो लोग यहाँ पर लगी हुई है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बारिश जब तेज होती है दोस्त, उस दौरान किसी भी श्रद्धालु को ऊपर जाने के लिए नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें दिक्कतें हो सकती हैं। वजह यही बताई जा रही है कि ऊपर जो गुफा की तरफ काफी तेज बारिश हो रही है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है, तो लोगों को कम संख्या में छोड़ा जा रहा है, रुक रुक करके लोगों को छोड़ा जा रहा है, और सबकी चेकिंग बाकायदे यहां पर की जा रही है कि बिना RFID का कोई भी व्यक्ति जो है, जो आगे का रास्ता यहां से दिखाई पड़ रहा है।
0: ठीक है, लग रहा है किसी वजह से संपर्क टूट गया। जितेंद्र बहादुर सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं बालटाल बेस कैंप की, जैसे आगे रवाना हो रहा श्रद्धालुओं का जत्था, और उसी के साथ साथ डोमेल का ये पहला पड़ाव है जहां पर RFID, दरअसल RFID एक टैग है जिसके चलते यात्री कहां पर है उनकी स्थिति पैदा और उस स्थिति के बारे में जाना जा सकेगा। साथ ही यात्रियों का रजिस्ट्रेशन जो हुआ है तो उनका सारा ब्यौरा, इसीलिए इस बार व्यापक जो इंतजाम है उसमें सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया। जितेंद्र बहादुर वापस लौट चुके हमारे पास। जितेंद्र, हम समझ सकते हैं मौसम खराब है तो कई बार कनेक्टिविटी की दिक्कत जरूर होगी, लेकिन हौसला पूरा है, तो आप बताइए कहां तक पहुंचे और आगे यात्रा अभी आपकी कितनी बाकी है, जा रहे हैं गुफा तक चढ़ाई करने?
1: देखिए, कोशिश जरूर है आशुतोष, लेकिन अभी यात्रा जो है डोमेल से आगे की तरफ हमारी नहीं बढ़ पाई है। यहाँ से दिक्कत ये हो रही है कि बहुत धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि मौसम यहाँ पर खराब है। कोशिश हमारी यही है कि पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुँचा जाए क्योंकि वहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने की लालसा हमारी भी है और हर साल कोशिश यही करते हैं कि वहां पर पहुंच करके जो आज तक के दर्शक हैं उनको बाबा बर्फानी के सबसे पहले दर्शन कराए जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें तो यहां पर अभी आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बुलाया गया है और आगे जो भीड़ ज्यादा जा रही थी उनको यहां पर ला करके रोका गया। मौसम में तब्दीली बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में हो जा रही है और ये इस वजह से क्योंकि कल रात से ही हमने देखा कि पहाड़ों पर ऊपर बारिश हो रही थी, उसके बाद जो है अब यहाँ डोमेल तक काफी तेज बारिश शुरू हो जा रही बीच बीच में, तो जिसकी वजह से काफी जो बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं उनको दिक्कतें होती हैं। हालांकि पोनी वाले जो लोग हैं ये लोकेशन तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो जहां पर RFID चेक होती है और वहीं से जो है बाबा बर्फानी के श्रद्धालु खच्चर के जरिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो इनको आगे बढ़ाया जरूर जा रहा है, लेकिन ये भीड़ देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं आशुतोष कि किस तरीके से जो लोग हैं यहां पर इंतजार कर रहे हैं रास्ता खुलने का आगे की तरफ, और उसके बाद ही जो लोग हैं वो ऊपर जो पहाड़ी इलाका ये जाता है यहाँ से करीब 13 से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है जहाँ तक जो लोग बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुँचेंगे। सबसे पहले लोग जो यहाँ से आगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनको जो जगह मिलती है उस जगह पर थोड़ा सा रुकने की व्यवस्था भी होती है, वहाँ पर माउंटेन रेस्क्यू टीम भी मौजूद होती है, किसी को अगर ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर रखी गई है। तो इस तरीके की तैयारी यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा जरूर किया गया है, लेकिन इस वक्त बारिश रुक रुक करके हो रही है। सभी लोग आप देख रहे हैं कि रेनकोट पहने हुए हैं, दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धा लोगों की ऐसी है कि लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आशुतोष।
0: अच्छा, दूसरी तरफ भी यात्रा, जो पहलगाम से जानकारी मिल पाई, क्या पहलगाम से भी जो पहला जत्था वो आगे निकल चुका है, क्योंकि बालटाल की तस्वीरें आप दिखा रहे, क्या वहां पर मौसम कैसा, वहां से लोग निकल पाए हैं आगे?
1: देखिए, पहलगाम का जो रास्ता है आशुतोष, वो रास्ता थोड़ा सा यहाँ जो बालटाल वाला रूट है वो काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और कई लैंड स्लाइड प्रोन एरिया भी हैं, जिसकी वजह से इस रास्ते को समझ बूझ करके जो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसको खोला जा रहा है। लेकिन पहलगाम के रूट की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि उस रास्ते से कुछ श्रद्धालुओं को छोड़ा गया है जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वो उस रास्ते से सीधे पंचतरणी तक पहुंचेंगे, पंचतरणी से उसके बाद वो लोग पहुंचेंगे उस लोकेशन पर जहां पर बाबा अमरनाथ की गुफा के दर्शन उनको हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर लगे हुए हैं लाइन में और अभी भी इनको आगे जाने से रोका जा रहा। हालांकि थोड़ा सा मौसम में इस वक्त तब्दीली आई है, पहाड़ में ये कहते हैं कि मौसम अचानक बिगड़ता है और अचानक जो है ठीक हो जाता है, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की तैयारी की गई है। और लोकेशन से मैं आपको ग्राउंड जीरो से ये दिखा रहा हूं कि कैसे ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है चेक पॉइंट तक। चेक पॉइंट से आगे तभी बढ़ने दिया जाएगा जब मौसम में तब्दीली आएगी और उसके बाद ही जो बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं वो यहां पर आकर के दर्शन कर सकते हैं पवित्र अमरनाथ गुफा की। और ये आप लाइनों में देख रहे हैं कि लोग अभी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं आगे तक, और बादलों को देख करके यही लगता है कि मौसम जो है वो धीरे धीरे करके इस एरिया में खुल रहा है। लेकिन रात से जिस तरीके से आशुतोष बारिश हो रही थी उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों को जरूर दर्शन करने में दिक्कत हो रही, लेकिन श्रद्धा जिस तरीके से लोगों की है वैसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके कदम जो है वो बालटाल, बालटाल से डोमेल, डोमेल से इससे आगे की तरफ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जाकर के लोग दर्शन करने के लिए लालायित हैं।
0: और आपके पीछे जो हम भव्यता देख रहे हैं, ये जो कहते हैं ना जोश है, हुजूम है। तो एक तरफ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बालटाल से जब पहला जत्था रवाना हुआ, उसी के साथ साथ अब ये घोड़े खच्चर वाले भी हैं, इनकी भी तैयारी है कि जो बहुत सारे यात्री पैदल नहीं चढ़ सकते वो इनकी मदद से आगे जाएंगे। लेकिन जो लंबी पंक्तियां हैं वो ये बता रही हैं कि जोश कहीं से कम नहीं है, फिर चाहे मौसम ठंड हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो। हालांकि उत्तर पश्चिम के इलाकों में मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके मुताबिक आज से कई जगहों पर बारिश, भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है, और इसीलिए प्रशासन उस लिहाज से भी तैयारी कर चुका है। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उस डोमेल के इलाके से जो पहला चेक पॉइंट है, और इसी के बाद यहां से सीधी चढ़ाई शुरू होती है, यानी आगे 14 किलोमीटर का जो मार्ग है उसमें डोमेल पहला पड़ाव है। हमारे सहयोगी भी अमरनाथ गुफा तक जा रहे हैं और उसी पहले पड़ाव पर मौजूद हैं। जितेंद्र, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था कि दरअसल 3 जुलाई के बाद से लेकर

0: सोचिए जम्मू कश्मीर की वो खूबसूरत घाटियां और उसी के साथ उसी दिव्यता के साथ इस खूबसूरत घाटी में मौसम भले खराब हो लेकिन अब जो श्रद्धालु हैं वो आगे की ओर रवाना हो रहे हैं, वो आगे सीधी पहाड़ डोमेल के बाद आगे सीधी चढ़ाई जो है कि कई बार अगर आप सामान्य तौर पर ट्रैकिंग पे जाएंगे तो हिम्मत टूट जाती है, लेकिन यहाँ अमरनाथ गुफा की ओर जाना है, महादेव के दर्शन करने हैं, उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने हैं, और इसीलिए जोश जो है वो नहीं टूटता, वो आस्था उन्हें शक्ति देती है। और हमने क्यों कहा कि चुनौतीपूर्ण है, ये जो आप देख रहे हैं जत्था रवाना हो रहा है, इन्हें कहां से जाना है, तो ये आप बालटाल की तस्वीरें देख रहे हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। ये है वो बालटाल, यहां से जब आप जाते हैं ये आगे जो है लगभग 14 किलोमीटर का रूट है, और बालटाल से आगे पहला पड़ाव डोमेल है जो पहला सिक्योरिटी पॉइंट है। इसी डोमेल से हमारे सहयोगी आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, और डोमेल के बाद अगर आप टेरेन को देखेंगे, देखिए सीधी चढ़ाई है, उसके बाद आप बराड़ी पे आते हैं, और बराड़ी के बाद जो अगला पड़ाव है वो संगम है। इसका नाम संगम इसलिए रखा है कि जो पारंपरिक मार्ग है और जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग है, इन दोनों का संगम यहां पे होता है, दोनों तरफ के श्रद्धालु यहां से मिलते हैं, और फिर यहां से थोड़ा सा रास्ता पवित्र अमरनाथ गुफा का होता है, जहां से दर्शन करने के बाद यात्री फिर से लौटते हैं। आपने बालटाल के बारे में देखा, अब सबसे बड़ा पारंपरिक मार्ग कहते हैं कि जो दशकों पुराना, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में होता है कि कैसे ये पारंपरिक मार्ग से लोग जाते थे, आस्था के लोग जो हैं भगवान महादेव के दर्शन के लिए, वो ये पहलगाम है। तो ये पहलगाम से सबसे पहला जो पड़ाव है वो चंदनवाड़ी है, लगभग 20 किलोमीटर, और चंदनवाड़ी के बाद आगे पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप के बाद नागकोटी, नागकोटी के बाद शेषनाग, उसके बाद महागणेश, महागणेश की ये जितने भी धाम हैं इनकी अपनी ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताएं भी हैं महागणेश पे, और उसके बाद पंचतरणी, और फिर संगम पहुंचने के बाद पवित्र गुफा तक जाते हैं। ये वो रूट हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये हर साल की यात्रा है, पूरी तैयारी। और आप दो तस्वीरें आप देखिए, जिन दूर मार्गों के बारे में हमने आपको बताया उन दोनों जगहों की तस्वीरें भी आपके सामने। तो एक तरफ बालटाल बेस कैंप से रवानगी हो रही है और दूसरी तरफ पहलगाम का मार्ग, पहलगाम से भी यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। तो दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस मार्ग के बारे में हमने बताया, और बेहद दुर्गम इलाका है, सुविधाएं चाहे जितनी प्रशासन कर ले आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन रास्ता तो दुर्गम है, और इस दुर्गम मार्ग पर अगर यात्रा को कुछ सुगम करता है तो वो है आस्था, वो है भक्ति। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सा ग्रह चरित्र को मजबूत बनाता है? कौन से ग्रह चरित्र में समस्या पैदा करते हैं? चरित्र दोष का क्या है अर्थ और क्या है चरित्र दोष से बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Let's-

0: कौन सा ग्रह चरित्र को मजबूत बनाता है, कौन से ग्रह चरित्र में समस्या पैदा करते हैं, चरित्र दोष का क्या है अर्थ और क्या है चरित्र दोष से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। मूसलाधार बारिश से दिल्ली मुंबई, 3 दिन में 5 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों ने खोली सरकारी दावों की पोल, पीड़ितों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। चढ़ावा चोरी को लेकर बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा से भी बंद कमरे में सवाल जवाब। तीन घंटे तक अमित शाह और नितिन नवीन के बीच मैराथन बैठक, सूत्रों के मुताबिक बड़े फेरबदल की तैयारी, कभी भी हो सकता है टीम बीजेपी का ऐलान। तृणमूल कांग्रेस में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान, ममता और ऋतव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश, दोनों गुटों का पार्टी पर दावा।

नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आ रही है। सड़क पर दौड़ते दौड़ते एलपीजी गैस टैंकर में अचानक धमाका हो गया, भीषण आग लग गई। ये हादसा 26 जुलाई को हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे टैंकर डिवाइडर से टकराने के बाद अचानक धमाका और चारों तरफ गैस फैल गई थी। इसके बाद भयानक आग की लपटें नजर आती हैं। यह हादसा टोल नाके के पास हुआ। मरने वालों की संख्या इसमें चार हो गई है, जबकि दो टोल कर्मचारी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झुल देखे। कितनी डरावनी तस्वीरें हैं ये। चार लोगों की मौत, दो लोग गंभीर। धमाके की आवाज सुनिए।

ये देखिए, टैंकर चालक को केविन जैसे ये ट्रक जाता है टोल नाके के पास अचानक से, ये देखिए, और डिवाइडर से टकराने के बाद सबसे पहले टैंकर फटता है। एलपीजी गैस जो कि कंप्रेस लिक्विड होता है वो तुरंत फैलती है तेजी से, और उसके बाद अचानक इसमें लग जाती है आग। ये सीसीटीवी कैमरा भी उसका शिकार हो गया, लेकिन तब तक काफी तस्वीरें कैद हो चुकी थी। ये देखिए, आग की बेहद नीली मरून कलर की लपटें आपको दिखाई दे रही हैं इन पर्पल लपटों के बीच, ये देखिए, और उसके बाद एक तरफ नीचे आप गैस जैसे फैलती है पूरे इलाके को चपेट में लेती है, और तुरंत जैसे ही आग, पर्पल लपटें इतनी तेज होती हैं, और एलपीजी की लपटें हमें देखें कितनी तेज होती हैं, सब कुछ जला देते हैं। इसलिए चार लोग इस हादसे का शिकार हो, देखिए नीचे आप जो सफेद देख रहे हैं ये पूरा एलपीजी फैल रही है, उसके बाद टैंकर आग का शिकार हो जाती है, जो चालक है उसे केबिन से बाहर निकलने तस्वीरें, जरा सी लापरवाही यूपी के कौशाम्बी की तस्वीरें, टैंकर डिवाइडर से टकराती है, इसलिए कहते हैं रफ्तार पर नियंत्रण क्यों जरूरी है। टैंकर टकराता है, रफ्तार का कहर बरपता है, और उसके बाद आग ही आग, चार लोगों की मौत और दो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।

तो जैसे ये टैंकर डिवाइडर से टकराता है, ये पहली तस्वीर, जैसे टैंकर स्लाइड करता है, डिवाइडर से टकराता है, पलट जाता है, टैंकर अचानक से ये पूरी तरफ फट जाता है और पूरी एलपीजी बाहर फैलती है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है फॉग, यानी ये पूरी जो एलपीजी गैस है वो आसपास के इलाकों पर जाती है। और उसी के साथ ये, और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जैसे ही ये दूर दराज आसपास के इलाकों में खड़े लोगों ने इसे बना, देखे लपटे, देखे कितनी भयानक खतरनाक है। और आप समझिए कि इस तरह के एलपीजी टैंकर अगर रिहायशी इलाकों में होते तो क्या स्थिति होती, लेकिन ये संभवतः नियंत्रण खोने की वजह से, जो चालक है वो संभवतः नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद एलपीजी डिवाइडर से टकराती है। और चूंकि एलपीजी का भार इतना होता है, ये सैकड़ों टन भारी टैंकर्स होते हैं, क्योंकि एलपीजी भरी हुई होती है, सप्लाई के लिए जा रही होती है, और ये सैकड़ों टन, एक तो गाड़ी का वजन भी अपने आप में कई टन होता है, सैकड़ों टन की गाड़ी, उसके ऊपर वजन एलपीजी जो कि कंप्रेस लिक्विड है, उसके बाद जब ये फिसलती है तो आप समझ लें फ्रिक्शन कितना होगा, घर्षण कितना होगा, और जब नियंत्रण खो करके टकराएगी तो पूरी तरह में दिखाई देता है कि कैसे टैंकर घिसने लगता है, और उसके बाद उसकी ऊपरी जो परत है वो फट जाती है, और जैसे ही टैंकर फटा उसके तुरंत बाद गैस फैलती है, उसके बाद आग लग जाती है, चार लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई, दो अभी भी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। और अब खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, जो पानी पानी हो गए मुंबई और आसपास के इलाकों में। बारिश सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो रही है। पिछले तीन दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही, क्योंकि तस्वीरें कभी नहीं बदलती मुंबई से। देखिए रिपोर्ट।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपने हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा 15 लोगों का टीम था। हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं। तो सेपर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था, उसने नीचे जाके, हाँ मैं गया था नीचे जाके, मैंने उनको हरनेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
2: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
0: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ, अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। प्लीज, ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल हुआ।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल करा है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो, गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके एक तो वैसे भी बारिश लेट आई, तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबई को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर कम?
4: तेज वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
0: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात के जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
0: साकीनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटार उघडी ठेवली असतात. हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर.
0: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
8: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी. हमारे साथ बीजेपी के MLA और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है. उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.
9: आज वहां पर साकीनाका में ISO डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है. हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्य वध का कल्पेबल होमिसाइड का ये गुनाह FIR रजिस्टर होना चाहिए. जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं.
0: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकीनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से BMC संभल नहीं गई.
10: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए. जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करोड़ के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?
0: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी. इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई.
11: ये बोल के हम थक चुके हैं. आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया, इधर स्लैब गिर गया था. आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान में गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई.
0: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली माँ की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली. मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत हो गई. अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है. यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया. हादसे का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था. मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभा देवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है. लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में हैं. मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक.
12: पब्लिक महंगाई का रोना क्यों रोती है? देखिए ना, जान कितनी सस्ती है. वो मैनहोल में गिरकर मर जाते हैं, पेड़ के नीचे आके दबके मर जाते हैं. ये देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीर है. मानसून आया, शहर पानी पानी, लोगों को वो अपनी जिंदगी गंवानी पड़ रही है. लेकिन मानसून पूरे देश में आया है, जमकर बरस रहा है. सवाल ये भी हो रहे हैं कि मानसून जून में कम हुआ है, कई दशकों में सबसे कम बारिश जून के महीने में हुई है, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि बारिश की भरपाई आखिर क्या जुलाई में होगी? जून के हालात बता रहे हैं कि लगभग 40% कम बारिश हुई है, ऊपर से एलनीनो का असर होने वाला है. और अब अगर बारिश हो रही है तो क्या 3 महीने में बारिश की ये कमी पूरी होगी? क्या स्थिति संभलेगी? क्या खेती किसानी बर्बाद होने से बच पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं.

0: पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भगवान बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ की यात्रा में रुकावटें शुरू हो गई। आस्था ने इस बार बद्रीनाथ और केदारनाथ में रिकॉर्ड तोड़े हैं। मई और जून में लोगों ने जमकर दर्शन किए। उत्तराखंड में मॉनसून लेट भी था, लेकिन अब आया है तो जमकर बारिश हो रही है। और इसके साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ों की हर साल की बरसात वाली समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। यानी पहाड़ों से सड़कों पर मलबा आना, पत्थर आना, भूस्खलन होना, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर यात्रा रोकनी भी पड़ी है। ये केदारनाथ जाने वाला रास्ता है जहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं और यात्रा मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। पत्थर हटाए भी जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से यात्रा को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर मुनकटिया में पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। भारी बारिश के कारण पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर गए, जिसकी वजह से सुरक्षा के चलते केदारनाथ आने जाने वाले यात्रियों को रोका गया। ये मोटर मार्ग है, लेकिन खतरे की वजह से यहाँ से यात्रियों को रास्ता पैदल ही पार करवाया गया। बहुत देर तक मोटर मार्ग को बंद भी करना पड़ा, लेकिन बाद में इसे खोल दिया गया। लेकिन मौसम भले ही खराब हो, बरसात जारी हो, भूस्खलन हो रहा हो, यात्रा रोकनी पड़ रही हो, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है। केदारधाम में भक्तों का उत्साह बना हुआ है। बीते 3 दिनों से केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या कुछ कम जरूर हुई है। वैसे अब तक 13,80,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। भारी बारिश के अलर्ट पर प्रशासन की तरफ से यात्रियों को रोका जा रहा है। बारिश की वजह से यात्रा पर ब्रेक लग रहा है, लेकिन कुछ देर बाद यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। मंदिर परिसर भक्तों से भरा नजर आ रहा है।
1: रेड अलर्ट या येलो अलर्ट आता है, उसके आधार पर यात्रियों को रोका जा रहा है, और ये उनकी सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए है। क्योंकि यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट है, ऐसी परिस्थिति में लोग जगह जगह खुद भी रुक जाते हैं बारिश को देख करके, और प्रशासन भी उनके रुकने की व्यवस्था करता है। तो ये कहीं ना कहीं यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत किया जाता है।
0: केदारनाथ ही नहीं, भगवान बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता भी जगह जगह बंद हो रहा है। चमोली में देर रात से भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही रोकी गई है। जोशीमठ और पीपलकोटी के बीच गुलाबकोटी के पास नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया, और साथ ही सड़क भी कई जगह धंस गई है। इसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटे तक पूरी तरह से बंद रहा और शाम को 4:30 बजे खुला। बद्रीनाथ और हेमकुट साहिब जाने और आने वाले यात्री बहुत देर तक फंसे रहे। सुबह से जो यात्रा रुकी थी वो शाम को जाकर फिर से शुरू हो पाई। ऐसा नहीं है कि भारी बारिश ऊपर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हो रही है, बल्कि निचले इलाकों में भी यात्रा मार्ग पर भारी बरसात है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर धारी देवी के पास सिरोबगड़ डेंजर जोन से बोल्डर गिर रहे हैं, जिस कारण घंटों तक यातायात बाधित हो रहा है। तीर्थ यात्रियों को खासी दिक्कतें हुई, यहां भी घंटों तक जाम लगा रहा। उधर अलकनंदा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी से 30 मीटर दूर स्थित भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी कमर तक पानी में डूब चुकी है। यात्रा मार्ग में आ रही इन दिक्कतों की वजह से चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी कमी भी नजर आ रही है। भगवान बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा नदी भी जबरदस्त उफान पर है। बुधवार से ही लगातार भारी बारिश हो रही है, और इस बारिश का असर श्रद्धालुओं की संख्या पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने तो अभी और ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। बारिश सिर्फ पहाड़ों पर ही कहर नहीं मचा रही, बल्कि पश्चिमी भारत में भी बुरा हाल है। यह खतरनाक वीडियो गुजरात के जूनागढ़ का है, जहां पहली बारिश ने ही पोल खोल कर रख दी है। सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें पानी भर गया, और बुरी तरह से इस पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। बाइक पर आ रहे इस जोड़े को पता नहीं था कि आगे सड़क पर गड्ढा है, क्योंकि पानी भरा हुआ था। ये व्यक्ति अपनी स्पीड से ही बाइक चला रहा था, अचानक से बाइक गड्ढे में जा गिरी। पति मुंह के बल जमीन पर गिरा और पत्नी उसके ऊपर। ये शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है, उसके सिर और चेहरे पर चोटें आई हैं। इसी गड्ढे में लगातार लोग गिरते रहे, बारिश होती रही, लोग गिरते रहे। इन एक्सीडेंट के और भी सीसीटीवी सामने आए हैं। कोई पैदल चल रहा है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई बच्चे के साथ है। उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि यहां सड़क पर गड्ढा है। बताया जा रहा है कि बहुत से लोग इसमें घायल हुए हैं। यही हाल मुंबई का भी है, यहां भी भारी बारिश हो रही है। 2 दिन पहले एक स्कूल वैन पर पेड़ गिरा था, एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। अब मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में एक ऐसी ही घटना हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक से नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। ये नारियल का पेड़ खोखला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था, बारिश में गिर गया और उसी दौरान वहां से स्कूटी सवार जा रहा था, जो बुरी तरह से घायल हो गया। आज तक ब्यूरो।
2: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो उन माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी जहां बच्चों को दिन भर देखभाल और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं। आप क्रेच में बच्चों को छोड़ आते हैं ताकि वो अपने काम ठीक से निपटा सकें, अपनी नौकरी कर सकें। लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर एक क्रेच से ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर आई है जिनको देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। देखते हैं कैसे डे केयर के शैतान आपके बच्चों के लिए मुसीबत बन रहे हैं, उनकी जिंदगी पर सवाल खड़े हो गए हैं।
3: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा। कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया। बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला। मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा। बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी। मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है। 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
4: In a daycare facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take strict action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
3: अब पुलिस ने 5 केयरगिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयरगिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: कौन कौन सा ग्रह चरित्र को मजबूत बनाता है, कौन से ग्रह चरित्र में समस्या पैदा करते हैं, चरित्र दोष का क्या है अर्थ और क्या है चरित्र दोष से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। मूसलाधार बारिश से दिल्ली मुंबई, 3 दिन में 5 मौत। खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों ने खोली सरकारी दावों की पोल। पीड़ितों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। चढ़ावा चोरी को लेकर बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा से भी बंद कमरे में सवाल जवाब। तीन घंटे तक अमित शाह और नितिन नवीन के बीच मैराथन बैठक। सूत्रों के मुताबिक बड़े फेरबदल की तैयारी, कभी भी हो सकता है टीम बीजेपी का ऐलान। तृणमूल कांग्रेस में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। दोनों गुटों का पार्टी पर दावा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे चरित्र की। किन ग्रहों से चरित्र दोष पैदा होता है, किन ग्रहों की वजह से चरित्र मजबूत होता है और चरित्र दोष से बचने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 11:20 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 11:46 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चरित्र की और चरित्र दोष की। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके कैरेक्टर से, आपके चरित्र से संबंध रखता है। देखिए, चरित्र समाज और लोगों की मान्यता से सामान्यतः निर्धारित होता है। शुक्र और चंद्र, ये दोनों जो कोमल प्लेनेट है ना, ये जो सॉफ्ट प्लेनेट हैं, जो आपके मन और भावना से जुड़ते हैं, ये आपके चरित्र से भी सीधा संबंध रखते हैं। ये चरित्र के बारे में लोगों की मान्यता निर्धारित करते हैं कि लोग आपके बारे में कैसी राय रखते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र का निर्माण बृहस्पति करता है। देवगुरु सबसे ज्यादा पूज्य, सबसे ज्यादा प्रबल बृहस्पति आपके चरित्र का निर्माण करता है। जो ग्रह चरित्र को गड़बड़ करते हैं या कमजोर करते हैं वो है शनि, राहु, केतु, कमजोर चंद्रमा और खराब बुध। इनका आपके चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोटे तौर पर चंद्रमा का खराब होना आपके चरित्र के अंदर गड़बड़ियां पैदा करता है। चंद्रमा बहुत हद तक जिम्मेदार है आपके चरित्र को बेहतर बनाने में या आपके मन को पवित्र करने में। चरित्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ आपको हो सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में शांति बनाए रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। कब होता है ऐसा? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर हो, निगेटिव वाले पार्ट पर हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या वक्री हो, शुक्र का वक्री होना या पापक क्रांत होना व्यक्ति की भावनाओं को दूषित करता है, चरित्र को कमजोर करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु का संबंध शुक्र के साथ हो या बुध के साथ हो तो ऐसी स्थिति में भी चरित्र के गड़बड़ होने की संभावना होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हो, खास तौर से राहु और केतु के एक्सिस में हो, तो ये चरित्र पर बुरा प्रभाव डालेगा। अगर बुध चंद्रमा की राशि में बैठ जाए तो ये भी चरित्र के लिए अच्छा नहीं है। बुध चंद्रमा की कर्क राशि में बैठने पर चरित्र दोष पैदा करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में या द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, तो ये भी चरित्र को गड़बड़ करते हैं। बृहस्पति का राहु के साथ संबंध बने, क्योंकि बृहस्पति सबसे पवित्र और सबसे शुभ ग्रह है। अगर ये राहु से पीड़ित हो या केतु राहु के एक्सिस में हो, तो ऐसी स्थिति में चरित्र के गड़बड़ होने की संभावना जीवन में बनती है।
और आदमी जीवन में एक या अधिक बार इधर उधर भटकता है ऐसा देखा गया है। चरित्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

आगमन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर आदमी का चरित्र कमजोर हो, तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, चरित्र ताकतवर होता है। कब होता है ऐसा? अगर बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए या लग्न के स्वामी के ऊपर पड़ जाए तो ये जबरदस्त पवित्रता और जबरदस्त शुभता पैदा करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चरित्र मजबूत हो जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थानों में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च राशि में बैठे या मूल त्रिकोण में धनु राशि में बैठे, तो व्यक्ति के चरित्र को बचाने का और बनाने का प्रयास करता है, व्यक्ति के चरित्र को बेहतर करने की कोशिश करता है। शनि अगर कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में बैठता है तो व्यक्ति को जीवन में अनुशासित बनाता है और 90% मामलों में व्यक्ति का चरित्र बेहतर होता है, व्यक्ति अपने चरित्र पर नियंत्रण बना लेता है। कुंडली के जो केंद्र स्थान हैं, ये आपकी भावनाओं के स्थान हैं, ये आपके संस्कारों के स्थान हैं। तो जब केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, केंद्र में केवल पवित्र ग्रह बैठे हुए हों, तो व्यक्ति की भावनाओं को, उसकी सोच को पवित्र करने का प्रयास करते हैं और व्यक्ति के चरित्र को बचाते हैं। अगर कुंडली के छठवें भाव में, आठवें भाव में, बारहवें भाव में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, तो ये भी व्यक्ति के चरित्र की रक्षा करते हैं। खास तौर से बारहवें भाव में शुभ ग्रहों का बैठना व्यक्ति को भटकने से बचाता है और व्यक्ति के चरित्र की रक्षा करता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति अपने चरित्र के चक्कर में, अपनी गलत आदतों के चक्कर में अपयश का शिकार हो जाता है। ऐसा भी होता है। कब होता है? अगर राहु का संबंध सूर्य से बने, चंद्रमा से बने या सबसे बढ़कर बृहस्पति से बने, तो व्यक्ति के चरित्र के चर्चे होते हैं, व्यक्ति के चरित्र दोष को लेकर जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। अगर चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, किसी पाप ग्रह का भयंकर प्रभाव अगर चंद्रमा के ऊपर बन जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चरित्र गड़बड़ होता है और व्यक्ति अपने चरित्र के चक्कर में, अपनी आदतों के चक्कर में बदनाम होता है। जब लग्न का स्वामी काफी कमजोर होता है तो व्यक्ति चरित्र की परवाह करता ही नहीं है।
और जब चरित्र की परवाह नहीं करता तब वो गलत ट्रैक पर जाता है, गलत रास्ते पर जाता है और ऐसी स्थिति में उसको चरित्र दोष का सामना करना पड़ता है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो आदमी को अपयश मिलता है, लेकिन अगर सूर्य शुक्र के साथ बैठे तो चरित्र के मामले में, या शनि के साथ बैठे तो आचरण के मामले में व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका चरित्र गड़बड़ होता है लेकिन उनकी कुंडली में प्रोटेक्टिव ग्रह मजबूत होते हैं तो उनको अपयश नहीं मिलता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चरित्र वास्तव में अच्छा होता है लेकिन ग्रह गड़बड़ होते हैं इसलिए बेवजह के चरित्र के अपयश के शिकार हो जाते हैं। अगर कुंडली में अपयश के योग हैं चरित्र के कारण तो इससे बचेंगे कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आपकी कुंडली में चरित्र दोष के योग हैं, ग्रह गड़बड़ हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या उपाय करें? चरित्र को बेहतर करने के लिए और चरित्र को मजबूत करने के लिए बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय करना चाहिए, ये लाभकारी होता है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। जल अर्पित करने के बाद कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। महीने में दो एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखिएगा और सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखना बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में चरित्र की वजह से अपयश के योग हैं

पात्र, आपका व्यवहार और आपकी सोच पवित्र होगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप बिना सोचे विचारे गलत रत्नों का कॉम्बिनेशन पहन लेते हैं, जिसकी वजह से चरित्र पर लांछन लग जाता है। मूंगे के साथ या गोमेद के साथ अगर आप हीरा पहन लें तो आपके चरित्र में दिक्कत आ सकती है और चरित्र पर लांछन लग सकता है। गोमेद के साथ अगर आप पुखराज पहन लें तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपयश मिल सकता है, चरित्र में समस्या आ सकती है। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

हो सकती है, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और नींबू मिर्ची फेंकी हुई है तो उस पर पैर रखने से आप किसी मुसीबत के शिकार हो सकते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, नींबू मिर्ची में बहुत सारे लोग नकारात्मक ऊर्जा करके डाल करके सड़क पर फेंक देते हैं और कुछ लोग दुकान पर लटकाते हैं, अगले दिन सड़क पर फेंक देते हैं। हो सकता है कि असावधानी में आपका पैर उसके ऊपर पड़ जाए। अगर आपका पैर सड़क पर फेंके हुए नींबू या मिर्ची पर पड़ जाता है तो आप घबराइए नहीं, घर आकर सबसे पहले स्नान करिए। स्नान करने के बाद एक फल लीजिए, कोई भी फल लीजिए, अपने सर पर से 3 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और इस फल को ले जाकर किसी पशु को खिला दें या किसी मंदिर में दान कर दें। आप नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह बच जाएंगे। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है

आइए जानते हैं। नंबर एक, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर दो, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर तीन, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर चार, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर पांच, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर छह, संपत्ति खरीद सकते हैं। नंबर सात, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर आठ, परिवार में विवादों से बचाव करें। नंबर नौ, नए काम की शुरुआत हो सकती है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय करेंगे। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रखिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है

हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, करियर की मुश्किलें दूर होंगी। आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज तृतीया तिथि है, आज माता गौरी की उपासना जरूर करिएगा और आज माता गौरी को या माता लक्ष्मी को, देवी को सफेद मिठाई अर्पित करेंगे तो शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

बम भोले के जयकारों के साथ शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल से रवाना हुए तीर्थयात्री आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में भारी तादाद में जुटे शिव भक्त करीब 2,500 की संख्या में दोनों मार्गों से तीर्थयात्री रवाना हुए हैं। बालटाल रूट से करीब 14 किलोमीटर की है तीर्थयात्रा और पहलगाम के रास्ते 48 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। देश की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी धार्मिक यात्राओं में अमरनाथ यात्रा, हिमालय पर मौजूद पवित्र अमरनाथ गुफा में होते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा 57 दिनों तक चलेगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन होगा। अमरनाथ यात्रा रूट पर शिव भक्तों के लिए भंडारे के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अमरनाथ यात्रा रूट पर मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के सभी इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में माउंटेन रेस्क्यू टीम भी लगाई गई है। लैंडस्लाइड की समस्या से निपटने के लिए सभी औजारों के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर से भी लैस है यह टीम। सेहत खराब होने या चोटिल होने पर स्ट्रेचर की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अमरनाथ तीर्थयात्रा सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 670 कंपनियों के साथ सुरक्षा। लैंडस्लाइड की समस्या से निपटने के लिए सभी औजारों के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर से भी लैस है यह टीम। सेहत खराब होने या चोटिल होने पर स्ट्रेचर की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अमरनाथ तीर्थयात्रा सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 670 कंपनियों के साथ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। कमांडो की तैनाती, मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। राम मंदिर दान चोरी केस में बड़ा एक्शन हुआ है। एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से घंटों की पूछताछ की है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की लंबी जांच भी जारी है। ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से 8 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ की है। सूत्रों का दावा है कि एसआईटी ने ट्रस्ट से ऑडिट का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। सभी दस्तावेजों की छानबीन की जाएगी। इस बीच पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला के गांव पहुंची, परिजनों से पूछताछ कर कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। एसआईटी और पुलिस पूछताछ के जवाबों से असंतुष्ट है। जांच में 3 से 4 लोगों को आरोपी बनाया गया। बैंक कर्मियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में उड़ान स्कीम को 10 साल बढ़ाने का ऐलान करेंगे। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, हवाई यात्रा को सस्ता बनाना मकसद है। 2027 यूपी चुनाव के रेस में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। पोस्ट करके उन्होंने सियासी समीकरण बदलने का दावा किया है। ओवैसी ने कहा कि यूपी में पूरा गेम बदल देंगे, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी पर दावे की जंग तेज हो गई है। दोनों गुटों ने अपने असली संगठन का होने का दावा किया। तृणमूल कांग्रेस में बगावत पर अब चुनाव आयोग भी सख्त हो चुका है। ममता बनर्जी और ऋतुव्रता बैनर्जी को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस सागरिका घोष ने बागी गुट ऋतुव्रत के प्रतिनिधिमंडल की ईसी संघ बैठक को गैरकानूनी बताया। कहा यह कोई गुट नहीं बल्कि टुटफुट या झुंड है जिसमें इधर उधर के लोग शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में साइबर अपराध पर शुभेंदु सरकार ने सख्ती दिखाई है। 500 थानों में साइबर हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है। नागरिकों को साइबर अपराध जागरूकता भी देगी पुलिस। कोलकाता के कालीघाट आवास में ममता बनर्जी से मिले एसपी सांसद जया बच्चन, डेरेक अभिषेक भी मौजूद थे। मुलाकात से सियासी अटकलें तेज हो गई। कोलकाता के ताराताला गोदाम हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आरजी का रेप मर्डर केस में पीड़िता के पिता का विसरा सैंपल के साथ फॉरेंसिक जांच से छेड़छाड़ का दावा किया गया है। सियालदा कोर्ट में पत्र देकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। अमित शाह के घर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। अध्यक्ष नितिन नवीन समेत संगठन महासचिव भी मौजूद रहे। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर बदलाव को लेकर चर्चा की संभावना। 4 और 5 जुलाई को बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। लखनऊ में बीजेपी सांसदों विधायकों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे। देश का विदेशी कर्ज बढ़ने पर अमित मालविया ने कांग्रेस पर वार किया। बोला कांग्रेस को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले हफ्ते न्यूजीलैंड का पहला आधिकारिक दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी टीटी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हो गया। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने असली अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे 15 लोगों को दबोचा। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय सरकार की सोनम को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जमानत पर रोक और आत्मसमर्पण की मांग की गई है। झारखंड कैबिनेट ने रिम्स 2 को हेमंत सरकार ने मंजूरी दी है। करोड़ों की लागत से बनेगा 2600 बेड वाला अस्पताल। मुंबई के साकीनाका में सिस्टम की लापरवाही से खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के शख्स की मौत हो गई। मेयर ऋतु तावड़े ने मौके पहुंचकर जायजा लिया।
मेयर का मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मामले में बीएमसी के 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई मैनहोल हादसे पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने रिपोर्ट मांगी। लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बीजेपी विधायक अमित साटम की ठेकेदार पर एफआईआर और जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की भी मांग। राहुल नार्वेकर ने कहा कि सिर्फ निलंबन नहीं, दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 20 जुलाई को आ सकती है नीट एग्जाम परीक्षाओं का नतीजा। एनटीए सूत्रों के हवाले से खबर। एडमिशन प्रक्रिया में देरी न करने की कोशिश। भारतीय नौसेना की एक और उपलब्धि। युद्धपोत आईएनएस श्रीखंड ने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की कोशिश को नाकाम किया। बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर में बम की धमकी का ईमेल मिला। लोगों को बाहर निकाला गया। सघन जांच अभियान चलाया गया। अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। देहरादून में अंकिता मर्डर केस में एजेंसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए। उधम सिंह नगर में मानसून आपदा से निपटने के लिए प्रशासन के मॉक ड्रिल, बाढ़ बचाव तैयारियों का अभ्यास किया गया। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बारिश के बीच भी भक्तों का जोश बरकरार है। अब तक 13,80,000 से अधिक यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर में भी राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मानसून आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखा गया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर विराम लग गया। हिमालयन रेंज में मानसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है। पहाड़ों पर भी मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश के साथ ही बद्रीनाथ का पूरा माहौल ठंडा और सुहाना हो गया। बारिश के बाद प्रशासन के यात्रियों की सुरक्षा यात्रा करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भरी पवई झील। झील के किनारे मछली पकड़ते लोग नजर आए। नागपुर में मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी से लोगों को राहत के बीच सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान थे। गुजरात के बोटाद जिले में भी जोरदार बारिश हुई। मानसून की दस्तक के साथ तापमान भी नीचे गिरा। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में बाइक सवार समेत 5 लोग गिरे। सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ। प्रशासन पर सवाल उठे। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी मूसलाधार बारिश हुई। रिहायशी इलाकों के कई घरों में पानी घुस गया। जनजीवन प्रभावित हुआ। कौशाम्बी में दौड़ते एलपीजी टैंकर में भीषण धमाका हुआ। डिवाइडर से टकराते ही ये ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी में खौफनाक मंजर कैद हुआ। कौशाम्बी टैंकर ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा 4 पहुंच चुका है। 2 टोल कर्मचारी अब जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 26 जून को कोखराज टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ था। आग के गोले में तब्दील हो गया था यह पूरा इलाका। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पार्किंग विवाद में बुजुर्ग गार्ड की बेरहमी से पिटाई हुई। 2 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम के स्कूल में मामूली बात को लेकर छात्रों में विवाद हुआ। इवेंट के दौरान जमकर चले लात घूंसे, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। गुजरात के वलसाड में शॉर्ट सर्किट से एक अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कोई हताहत नहीं। जयपुर में 3 मंजिला इमारत में गद्दे की दुकान में भयंकर आग लगी। बेसमेंट में रह रहे एक परिवार का दमकल की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। बागपत में खेत से मिट्टी उठाने पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। पहले डंपर से कार को रौंदा, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की। तमिलनाडु के विरुधनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। देवरिया में हाईवे पर सड़क पार कर रहे बच्चे को बुलेरो ने कुचला। सड़क के दूसरी तरफ पिता की दुकान पर जा रहा था बच्चा। फरीदाबाद में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर के झड़प हुई। दबंगों ने युवक पर कार चढ़ाने की कोशिश की। श्रीगंगानगर में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला। ट्यूशन से लौट रही 5 साल की बच्ची समेत परिवार पर हमला किया। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। 250 करोड़ से अधिक की ठगी में 119 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार। वाराणसी में फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया गया। बारीपास युवक पुलिस नगर निगम कचहरी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर रहा था। बांके में मिनी ट्रैक्टर की चपेट में आए 10 साल के बच्चे की मौत हुई। एक घायल, चालक फरार। अलीगढ़ में टोपी खींचने को लेकर के मामूली विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े। दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला किया। मथुरा में दूसरी मंजिल से गिरी बच्ची की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के झांसी में मकान की खुदाई के मलबे में चांदी के पुराने सिक्के मिलने की अफवाह। इलाके में भगदड़ मची। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। केरल के कासरगोड में प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर ने युवक को बेरहमी से पीटा। एक स्कूल परिसर में पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। उज्जैन में महिला को तालिबानी सजा दी गई। उसके बाल काटे गए। जूतों की माला पहनाकर गांव में जुलूस निकाला गया। 11 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा। 785 गेंदों में बनाया रिकॉर्ड। अभिषेक शर्मा 200 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शामिल हुए हैं। वेस्टइंडीज के एविन लुइस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रेयस अय्यर ने इतिहास रचा। इंग्लैंड में T20 में 50 लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। 68 रन की पारी खेली। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका का दौरा करेगी। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया।
15 से 19 अगस्त तक श्रीलंका के गोल में खेला जाएगा पहला टेस्ट। 23 से 27 अगस्त को सिगली स्पोर्ट्स क्लब में दूसरा टेस्ट मुकाबला। आज बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से स्पाई थ्रिलर फिल्म एल्फा रिलीज हो रही है। आलिया भट्ट, शर्वरी और बॉबी देओल जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे। हुमा और ऋषि की एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी डू आई डू बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार है। आज रिलीज हो रही है फिल्म। फिल्म नागबंधम भी आज पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम सहित 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सनी देओल की बहुचर्चित पीरियड ड्रामा फिल्म बंटवारा 1947 पर बॉबी देओल का भावुक पोस्ट, लिखा आप सबसे बेहतरीन है भैया। कपिल शर्मा, नीतू सिंह स्टार दादी की शादी ओटीटी पर आज दस्तक देगी या नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी फिल्म। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, सुरक्षा कारणों से फैसला लिया गया है। 4 जुलाई से अंतिम संस्कार शुरू होगा, 9 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला, 20 से अधिक लोगों की मौत, 50 से अधिक लोग घायल हुए। सीरिया की राजधानी डमास्कस के एक कैफे में भीषण बम विस्फोट हुआ, 5 लोगों की मौत, 16 घायल। ईरानी सेना ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी तेल टैंकर तय समुद्री रास्तों का ही इस्तेमाल करें। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्स का बड़ा बयान, कहा लेबनन, गाजा पट्टी और सीरिया के सिक्योरिटी जोन में अनिश्चित काल तक तैनाती रहेगी इजरायली सेना की। सीरिया के विदेश मंत्री ने लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और संसद अध्यक्ष नबी बेरी से मुलाकात की। सीरिया विदेश मंत्री असद अल शिबानी ने कहा जरूरत पड़ी तो हिजबुल्ला से बातचीत तो मुलाकात के लिए तैयार हैं। 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं जापान के प्रधानमंत्री साने ताकायची। जापानी प्रधानमंत्री ताकायची ने कहा हम भारत के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने आर्मेनिया के लिए 1.8 करोड़ यूरो की अतिरिक्त आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। रूस के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट के बाद यूरोपीय यूनियन के करीब आया है आर्मेनिया। अमेरिका ने यूएसएमसीए के मौजूदा स्वरूप को बढ़ाने से इनकार कर दिया। अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा की वर्चुअल बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। साल 2013 के बाद पहली बार इंडोनेशिया पहुंचे बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति से मुलाकात में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा।

0: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Argentina is a minus 1,700 favorite to qualify for the next round. We'll take on Cape Verde in Miami. Meanwhile, Colombia will match up with Ghana in Kansas City in what should be a very competitive game. The draw in the match is plus 300. This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: इन एसोसिएशन विद
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
7: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
8: अल्फा,
9: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
10: हाँ कहा था, लेकिन ये तय कैसे होता है?
9: प्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाते हैं।
11: पहला भारतीय चैनल,
9: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुंचते हैं।
12: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
13: जगह जगह लक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
14: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
9: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
14: आज तक की खबर का असर हुआ है,
9: हर दिन कमाया जाता है।
10: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
9: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
10: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
15: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।

दुनिया का बाजार खुला है तो मुकाबला भी खुला है। जहां सामान सस्ता मिलता है, खरीदार अक्सर उसी तरफ खिंच जाता है। लेकिन जब सस्ते माल की भरमार किसी देश की फैक्ट्रियों और नौकरियों पर दबाव डालने लगे तो सरकारों की चिंता बढ़ना तय है। यूरोप में इन दिनों ऐसी ही बहस तेज हो गई है। चीन से आने वाले कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स ने कई देशों की इंडस्ट्री के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के कई बड़े सदस्य देश सस्ते आयात पर ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके तहत स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और लिथुआनिया ने मिलकर कड़े कदमों की वकालत की है और इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रणनीति की मांग की है। कई यूरोपीय देश मानते हैं कि सस्ते आयात से स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है। यूरोप की चिंता है कि बड़ी उत्पादन क्षमता वाले देशों से आने वाला सस्ता माल स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि चर्चा अब किसी एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रही है और व्यापक व्यापारिक सुरक्षा उपायों की बात होने लगी है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है जब यूरोपीय आयोग चीन को लेकर अपनी रणनीति पर अहम चर्चा करने जा रहा है। कई देशों का मानना है कि मौजूदा एंटी डंपिंग नियम हर चुनौती का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और व्यापार सुरक्षा के लिए नए टूल्स की जरूरत है। ऐसे में ईयू में सेक्टर आधारित सुरक्षा उपायों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा प्रोडक्ट आधारित एंटी डंपिंग मामलों से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बचाने पर फोकस बढ़ रहा है। इस बहस का सबसे बड़ा असर उन सेक्टर्स पर पड़ सकता है जहां चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर यूरोप पहले से सतर्क नजर आ रहा है। दिलचस्प बात है कि ये मामला केवल यूरोप और चीन तक सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने उद्योगों को सुरक्षित रखने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर लगातार जोर दे रही हैं। ऐसे में ग्लोबल ट्रेड का माहौल पहले के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। आने वाले दिनों में यूरोप का रुख वैश्विक व्यापार के लिए अहम संकेत दे सकता है। अगर सस्ते आयात पर नई बंदिशें लगती हैं, तो कई उद्योगों की कारोबारी रणनीति बदल सकती है। साथ ही ये भी तय होगा कि दुनिया का बाजार पूरी तरह खुला रहेगा या घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। आदित्य के राणा आज तक।

0: सियासत में बहुमत का मिशन इम्पॉसिबल कुछ ऐसा चल रहा है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक सब कुछ हिल चुका है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद महाराष्ट्र में दरकते दलों की हालत देख अब शरद पवार की पार्टी सहमी हुई। पहले बंगाल की बात करें तो बंगाल में रस्साकशी चल रही है कि असली टीएमसी कौन। इसी का दावा करने के लिए टीएमसी बागी गुट के 10 नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने पेश होते हैं। टीएमसी के नाम निशान पहचान पर दावा करते हैं।
1: तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस के नाम और निशान तो हमारा ही है।
2: ग्रुप राय के सिलेक्ट करा हुए छे एस चेयरपर्सन इलेक्ट करा हुए छे एस चेयरपर्सन थ्रू द मीटिंग इन विच द एनसीडब्ल्यू गॉट फॉर्म।
0: दरअसल 22 जून को टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली। अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष बना लिया। ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहब, विप्लव मित्रा को महासचिव, फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रतिन घोष, सबीना याकमीन उपाध्यक्ष बन गए। कुल 30 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई। इसी की जानकारी चुनाव आयोग को देकर दल पर अपना दावा करने ये गुट आया। उधर पुरानी वाली टीएमसी के नेता कहते हैं कि ये गुट फर्जी और मुलाकात ही गैर कानूनी।
3: तो ये खुद को मजाक के पत्र बना रहे हैं, हास्यास्पद कर रहे हैं। और देखिए दूसरी चीज, चूहे को अगर हम चाहे शेर बनाएं और जितने भी हवा डाले शेर तो कभी नहीं बनते।
0: कांग्रेस भले टीएमसी के बागी गुट को चूहा बताए लेकिन बंगाल में इन दिनों ममता समर्थक नेताओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है और इसकी तस्वीर तब दिखती है जब दफ्तर में बंद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई थी। नीचे दर्जनों की भीड़ अंडे और सड़ी सब्जियां फेंक रही थी। पुलिस चुपचाप खड़ी थी। महुआ लगातार हमले के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही थी। बंगाल में जो कुछ हो रहा उसे देखकर महाराष्ट्र की सियासत में शक सुबह बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब से उद्धव की पार्टी के सांसद थोक भाव में शिंदे की पार्टी से जा मिले तब से शरद पवार की पार्टी को लेकर अफवाहें उड़ाई जाने लगी। कभी संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो वेदंतीवार कह देते हैं कि हाँ दिल्ली में बात चल रही है, तो कभी ऑपरेशन तुतरी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय की प्लानिंग वाली बात कह देते हैं और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो पार्टी कांग्रेस में मिलेगी ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगी एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है और ये संभावना जताई जाने लगी क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी के सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है क्योंकि टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। ऊपर से पवार उद्धव कांग्रेस वाली अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार जैसे बड़े नेता नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जता दी थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही सचिन अहीर ने उद्धव का साथ छोड़कर डिप्टी चेयरमैन का पद चुन लिया। वैसे फिलहाल शरद पवार की पार्टी में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। 2/3 टूट के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की जरूरत होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: संसद का मॉनसून सत्र इस बार भी हंगामेदार होने वाला है क्योंकि मोदी सरकार एक बार फिर सदन में वो बिल पेश करने जा रही है जिस पर पिछली बार बवाल मच गया था। सूत्रों के मुताबिक 130वें संविधान संशोधन बिल पर बनी जेपीसी इससे जुड़े प्रावधानों को हटाने के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि 17 जुलाई को समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए पद पर नहीं रह सकता। पीएम, सीएम या मंत्री की गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेनी होगी। अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। बाद में पीएम, सीएम या मंत्री को जमानत मिली तो वे अपने पद पर वापस आ सकते हैं। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए जाने पर ही जनप्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। पिछले मानसून सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े 3 विधेयक संसद के दोनों सदनों में रखे थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। विपक्ष का कहना है कि अगर ये बिल पास होते हैं तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का खतरा पैदा होगा। सरकार का तर्क है कि इससे सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ेगी। गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाला व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहे, ये लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच तेज। ट्रस्ट के अधिकारियों से 8 घंटे तक पूछताछ की। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। मंदिर परिसर से भी सबूत जुटाए गए। मोदी कैबिनेट में फेरबदल और संगठन बदलाव पर मैराथन बैठक। 3 घंटे तक अमित शाह के घर मीटिंग। नितिन नवीन और संगठन महासचिव रहे मौजूद।

जवाब दाखिल करने को कहा। दोनों गुटों का पार्टी पर दावा। मूसलाधार बारिश से दिल्ली मुंबई, तीन दिन में 5 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल और साथ ही बिजली के तारों ने खोली सरकारी दावों की पोल, पीड़ितों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद।

सबसे पहले जानिए कि आज सुपर 8 में क्या खास होने वाला है। पहली बरसात मुसीबत भी साथ लेकर आई है, उस खबर पर भी करेंगे बात। साथ ही सड़क में पोल है, व्यवस्था में झोल है, ये भी आपको बताएंगे। खतरनाक एक्सप्रेसवे के बारे में भी बताएंगे, उस पर लिए चलेंगे आपको कि एक्स्ट्रा सावधान रहने की आपको जरूरत है। और चढ़ावा चोरी की खबर की भी बात करेंगे कि अब उसमें क्या कुछ नया खुलासा हुआ है। बात कौशाम्बी में कैसे लगी हवा में आग, ये खबर भी आपको पूरी बताएंगे। तो वही ई रिक्शा हैकर गैंग, खेल उनका खत्म हो गया है, कैसे खेल खत्म हुआ ये भी बताएंगे। सिया का हर झूठ मशीन एक पकड़ेगी और पोलियोग्राफ की बारी अब उसके केस में आ चुकी है, तो सिया के केस की बात भी आपको बताएंगे। साथ ही दो खबर और होंगी आखिर में आज तक के साथ, चलिए अमरनाथ यात्रा पर भी आपको लिए चलेंगे। शुरुआत करेंगे कौशाम्बी की खबर के साथ, जहां पर एलपीजी टैंकर हादसे का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जी हां, यूपी के कौशाम्बी में सड़क पर दौड़ते एलपीजी गैस टैंकर में अचानक से धमाका हुआ और भीषण आग लगी। तस्वीर आप देखिए, हादसा 26 जून को हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि टैंकर डिवाइडर से जाकर टकराता है, अचानक से ब्लास्ट होता है और चारों तरफ गैस ही गैस फैल जाती है और इसके बाद भयानक आग की लपटें नजर आ रही हैं। यह हादसा टोल नाके के पास हुआ था। मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी है, जबकि 2 टोल कर्मचारी अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हादसे के दौरान की तस्वीरें। टैंकर चालक को केबिन से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया कि वो अपनी जान बचा सके। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एलपीजी टैंकर में धमाके के बाद का ये नजारा है। यूपी के कौशाम्बी में ये पूरा हादसा हुआ, आग की लपटें धू धू कर उठ रही है। डिवाइडर से जाकर टकराया एलपीजी टैंकर, जिसके बाद पूरे उस टैंकर में धमाका हो गया। जोरदार धमाके के कारण 4 लोगों की मौत हो गई।

तो ये तस्वीरें कौशाम्बी के यूपी से हैं, जहां काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि जो एलपीजी टैंकर उस वक्त चला रहा था, उसको वहां से निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया है।

0: बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई में मॉनसून ने एक बार फिर से सिविक सिस्टम की लापरवाही और खामियों को उजागर कर दिया है। दरअसल बारिश के दौरान हुए हादसों में सिर्फ एक दिन में 3 मौत से लोग दहशत में आ गए हैं। ठाणे में बिजली का करंट लगने के कारण 17 साल की लड़की की मौत हो गई है। डोंबिवली में 42 साल की महिला को करंट लगने के कारण मौत हो गई और मुंबई के साकीनाका में खुले मेन होल के कारण उसमें गिरने की वजह से एक आदमी की डूबकर मौत हो गई है। और साथ ही दहिसर में मुंबई पुलिस ने एक आदमी को बचाया भी है जो कि बारिश के पानी के नाले में बह गया था, जिससे एक और बड़ा हादसा होते होते टल गया। साकीनाका मेन होल हादसे में भी अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बीएमसी के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि 4 सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाई गई है और कॉन्ट्रैक्टर की भी अब जांच की जा रही है तेजी से। एक और घटना में नवी मुंबई में बाइक फिसलने के कारण बिजली का झटका लगने से 2 महिलाएं बाल बाल बची हैं। जी हां, इस पूरे मामले में एक सिविक इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया है। और एक ही दिन में सिविक सिस्टम की कई नाकामियों से अब सियासी माहौल गहरा गया है। विपक्ष और सरकार आमने सामने है। मानसून की तैयारियों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो मुंबई में आसमान से पानी नहीं बल्कि मौत बरस रही है। ये हादसे ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही है, ये साफ बयां हो रहा है। महज 3 दिन में 5 मौत से माया नगरी दहल गई है। खुले मेन होल और खोखले पेड़ और बारिश के बीच ये झूलती बिजली के तार सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
1: मुंबई में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। बारिश की वजह से होने वाले हादसों की संख्या महज 3 दिन में 5 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा दहशत मुंबई के मैनहोल में गिरने वाले 55 वर्षीय असलम शेख की मौत से फैली है। हादसा अंधेरी के साकीनाका इलाके में थैरानी रोड पर हुआ। आप खुद देखिए किस तरह असलम शेख मैनहोल में गिरे। इसके बाद घंटों की जद्दोजहद भी उनकी जान नहीं बचा पाई।
2: कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था, उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ, अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है।
1: दूसरा हादसा ठाणे के मुंब्रा में हुआ। बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी, अचानक वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई। डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली माँ की भी करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई। हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की शशि चक्र की जान ले ली। 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत हो गई थी। अब ठाणे के मीरा भाईंदर में एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया। बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था। भारी बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाके डूबे हुए हैं। ये हर साल की कहानी है, लेकिन इस बार एक के बाद एक हो रही मौतों ने लोगों को दहला दिया है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: देखिए, बारिश से मुंबई नहीं गुजरात भी बेहाल है। शहर शहर सड़कें समंदर बनी हुई है, नदी नाले उफान पर है और उस पर सिविक एजेंसियों की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है।
1: गुजरात के जूनागढ़ में महज एक दिन में 10 इंच बारिश दर्ज की गई। हालात ये हैं कि नोली नदी उफान पर है, लंबोरा डैम ओवरफ्लो हो रहा है। रही सही कसर शहर की सड़कों पर बने गड्ढों ने पूरी कर दी है, जो बारिश के दौरान हादसों की वजह बन रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ पाटन शहर में भी मौत के मैन होल खुले पड़े हैं। ये तस्वीरें गुलाब नगर इलाके की हैं, जहां एक साइकिल सवार बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रहा था, लेकिन गड्ढे में जा गिरा। वडोदरा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। महज कुछ घंटे की बारिश में सड़क का एक हिस्सा तरक गया। तस्वीरें लालपुरा गांव की ओर जाने वाली सड़क की है। ये गड्ढा किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। भरूच में तो हादी हो गई। अंकलेश्वर के पिलूदरा गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। कंक्रीट की स्लैब को देखिए, जिसमें लोहे के सरिये साफ नजर आ रहे हैं। बात गुजरात की है तो जरा सूरत में भ्रष्टाचार और लापरवाही की तस्वीर भी देखिए, जो बारिश के पानी में उजागर हो गई है। हाल ही में बनी नई सड़क बीचों बीच ऐसे धंसी कि एक भारी भरकम टैंकर उसमें फंस गया। तकरीबन पूरे सूरत में ही खस्ताहाल सड़कें बारिश होते ही धंसने लगे हैं। गड्ढे शहर में जगह जगह हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही।
0: देखिए, 12,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे पहली ही बारिश में धस गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने एक्सप्रेसवे निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
1: लगभग 2 महीने पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इसकी खूबियां बताई गई, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। शामली के हाथी करोड़ा गांव के पास बनाए गए इस वीडियो में एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक शख्स दावा कर रहा है कि गड्ढों की वजह से उसके सामने 4-5 गाड़ियां अपना संतुलन खो बैठी।
3: दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4-5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड खो चुकी है भाई, यहीं पर ही।
1: इन तस्वीरों ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहन चालकों ने कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए और सरकार पर हमला बोला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने बयान में भारी बारिश और जल जमाव को इसकी वजह बताया है। NHAI ने अपनी सफाई में कहा है कि स्थायी जल निकासी व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से पुलिया के निर्माण का काम रोकना पड़ा था। वीडियो वायरल होने के एक दिन के भीतर ही क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कर यातायात बहाल कर दिया गया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है, जिससे 8 घंटे का सफर महज 2 घंटे में पूरा होता है। रफ्तार के बीच ऐसी खामियां बड़े हादसों की वजह बन सकती हैं। शामली से शरद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो वही उत्तरकाशी के हर्षिल में फिर से खतरा मंडराने लगा है। दरअसल हर्षिल में पिछले साल जो तबाही आई थी, वहां फिर आज भी गंगा बहाव क्षेत्र में झील मौजूद है। प्रशासन ने कुछ इंतजाम किए हैं जरूर, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसके हिसाब से ये नाकामी नजर आ रही है।
4: उत्तरकाशी के हर्षिल और धराली क्षेत्र पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले साल की आपदा की भयावह यादें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी हैं कि भागीरथी नदी का बढ़ता जलस्तर और लगातार हो रहा कटाव लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। हर्षिल में पिछले साल गंगा के प्रवाह क्षेत्र में जो झील बनी थी, वहाँ अब खतरा मंडराने लगा है। मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। भूवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि धराली में फिर से मलबा जमा होने और झील जैसी स्थिति बनने का खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी और स्थायी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है।
5: मैं इस वक्त मौजूद हूँ हर्षिल में। ये हर्षिल वही इलाका है जहाँ 5 अगस्त 2025 को तेल गंगा के उफान पर आ जाने की वजह से एक झील ये सामने बन गई थी। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं, ये चैनलाइज करके जो है बालू और मिट्टी के ढेर को यहाँ पर एक बैरिकेड के रूप में लगाया गया है, जिससे कि गंगा का प्रवाह इस ओर ना हो सके। और किसी तरह से प्रशासन के द्वारा ये इंतजाम किए गए थे, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक बार बीत चुका है, एक बार दोबारा से गंगा अपने उफान पर आने लगी है।
4: आज तक ब्यूरो।
0: अब मध्य प्रदेश के इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर में कल रात हुई बरसात ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, तो गलियां नालों जैसे नजर आ रही हैं। कहीं पर कार आधी रात डूबी हुई दिखी, तो कहीं पर दोपहिया वाहन पानी में संघर्ष करते नजर आए। एक शख्स उफनते हुए इस नाले को पार करने की कोशिश करने लगा। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो बाइक समेत नाले में बह गया। तस्वीर आप देखिए, पूरी कोशिश इस शख्स ने की है बाइक समेत यहां से बाहर निकलने की, पर वो नाले में बह गया। अब बात कर लेते हैं राम मंदिर चढ़ावा घोटाले की। दान में गबन के मामले में SIT की जांच का दूसरा राउंड अब शुरू हो गया है। बंद कमरे में मैराथन पूछताछ की गई और सूत्रों के मुताबिक चंपत राय भी SIT की पूछताछ के दायरे में आ गए।
4: राम मंदिर के दान में हुए गबन की जांच कर रही SIT एक बार फिर अयोध्या पहुंची है। इस इस बार जांच का दायरा काफी बड़ा है। दान में हेरफेर की आंच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। सेकंड राउंड के पहले दिन एसआईटी की टीम ने बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई है। हालांकि एसआईटी और ट्रस्ट की ओर से अभी तक पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसआईटी टीम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी किरण एस कर रहे हैं। एसआईटी मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, दान संग्रह की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच चंपत राय का बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद वे दाग के साथ काम जारी नहीं रखेंगे। इस बीच मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे की पूछताछ के लिए अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, क्योंकि जांच के दौरान सबसे ज्यादा कैश 20,39,000 अविनाश शुक्ला के घर से बरामद किया गया था। कैश के साथ पुलिस को अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। समझ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: तो वही उज्जैन पुलिस ने ई रिक्शा के बैटरी सिस्टम को हैक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस एक शातिर को गिरफ्तार कर चुकी है जो कि मोबाइल ऐप के जरिए ई रिक्शा की बैटरी डिसेबल कर देता था और फिर ई रिक्शा जो चालक था उससे वसूली करता था।
4: पहले इस हैरान कर देने वाले वीडियो को देखिए। चलता हुआ ई रिक्शा अचानक बंद हो जाता है। कुछ ही देर में खुद को मैकेनिक बताने वाले लोग मौके पर पहुंचते हैं, रिक्शा ठीक करने का नाटक करते हैं और कुछ ही मिनटों में वाहन फिर से चालू कर देते हैं, लेकिन इसके बदले वसूले जाते हैं 200 से 300 रुपए। दरअसल ये कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि साइबर ठगी का एक नया तरीका है। उज्जैन पुलिस ने इस मामले में 18 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है जो मोबाइल ऐप की मदद से ई रिक्शा के सिस्टम को हैक कर लेता था। दरअसल ये जालसाज रिक्शा के फ्यूज कंट्रोल सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं और फिर पैसे लेकर उसे दोबारा एक्टिव कर देते थे।
6: ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ लोग अपने मोबाइल फोन के जरिए एक पायरेटेड ऐप के थ्रू जो ई रिक्शा है उसकी बैटरीज को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ये लोग अपने मन मुताबिक ई रिक्शा की बैटरी को डिसेबल कर देते हैं जिससे ई रिक्शा बंद हो जाता है और बाद में ई रिक्शा को चालू करने के लिए ई रिक्शा चालकों से ये मन मुताबिक पैसे की डिमांड करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई वीडियो बनाता है जिसके माध्यम से वो ई रिक्शा की बैटरी को डिसेबल करता है अथवा उसको सर्कुलेट करता है तो उसको भी आईटी एक्ट के तहत उसके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
4: लगातार शिकायतों के बाद उज्जैन पुलिस ने जाल बिछाकर एक आरोपी को पकड़ा। उज्जैन पुलिस ने बैटरी रिक्शा चालकों को आगाह किया है कि वे अपनी एजेंसी से संपर्क करके डिवाइस की सुरक्षा सुनिश्चित कराएं। साथ ही ऐसे लोगों को वार्निंग भी दी है कि अगर कोई ई रिक्शा हैक करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच अब निर्णायक मोड पर पहुंचती हुई दिख रही है। दरअसल जांच को और मजबूत करने के लिए पुणे पुलिस ने कोर्ट से सिया गोयल और चेतन चौधरी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है। उस टेस्ट के जरिए पुलिस दोनों आरोपियों के बयानों की सच्चाई परखना चाहती है। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट केवल अदालत की अनुमति और आरोपियों की सहमति के बाद ही कराया जा सकता है और इसके नतीजे अपने आप में अंतिम सबूत माने जाते हैं।
7: सर एक खबर और आ रही है कि कल जो है कल नहीं मतलब पुलिस जो है वो सिया का और चेतन का लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहते हैं, उसको लेकर एप्लीकेशन कब की गई थी?
8: उन्होंने 27 तारीख को कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाई है 27 जून को। अभी उसके ऊपर अक्यूज्ड का से कॉल किया जाएगा, उसकी कॉपी दी जाएगी, वो से आने के बाद कोर्ट उसके ऊपर फैसला लेगा।
0: तो वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस की बात करें तो उसमें सोनम की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार ने चुनौती दी है और आज इस मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ने बिना पूरी तैयारी के ही सोनम को गिरफ्तार कर लिया था।
1: मई 2025 में मेघालय में हुए हनीमून हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। सोनम रघुवंशी को शिलोंग की निचली अदालत से जमानत मिली थी। कोर्ट में सोनम के वकील ने जो दलील पेश की थी उसके मुताबिक सोनम को गिरफ्तारी की सही वजह नहीं बताई गई। पुलिस ने केस डायरी में बीएनएस की धारा 103(1) की जगह बीएनएस की धारा 403(1) का जिक्र किया। 29 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने भी ये कहते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा कि गिरफ्तारी के दस्तावेज बिना सोचे समझे तैयार किए गए। मेघालय सरकार का तर्क है कि गिरफ्तारी वारंट में हुई टाइपिंग एरर के आधार पर सोनम रघुवंशी को राहत नहीं दी जा सकती। सोनम ने हत्या की साजिश रची थी और वारदात के बाद अपनी लोकेशन छिपाई थी। राजा रघुवंशी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गया था, जहां लावारिश हालत में उसका शव बरामद किया गया। 8 जून को वाराणसी गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो वही अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अब वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में देर रात से हो रही बारिश की वजह से मौसम बिगड़ा हुआ है। ऐसे में यात्री रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ों की चोटियां बादलों में छिप गई हैं और बारिश के

0: पुलिसकर्मी के बेटे पर मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद आरक्षी इकरार हसन निलंबित, एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पार्किंग विवाद को लेकर बुजुर्ग गार्ड से मारपीट, दो भाइयों ने मिलकर की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गुरुग्राम के एक स्कूल में मामूली बात को लेकर छात्रों में विवाद हुआ, इवेंट के दौरान जमकर चले लात घूंसे, एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां। गुजरात के वलसाड में शॉर्ट सर्किट से एक अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक। बागपत में खेत से मिट्टी उठाने पर दो पक्षों में विवाद हुआ, पहले डंपर से कार को रौंदा, फिर की ताबड़तोड़ फायरिंग। अलीगढ़ में टोपी खींचने को लेकर मामूली विवाद में दो गुट आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से किया हमला। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने की वजह से युवक की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर में लगाई आग, हादसा सीसीटीवी में कैद। औरैया में रील बनाने के चक्कर में बड़ा हादसा हुआ, गले में सांप डालकर वीडियो बना रहा दुकानदार, जिसको सांप ने काटा, अस्पताल में भर्ती। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: मैं करता हूँ ना, मैं करूँगा।
2: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
2: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही चैंपियन है।
2: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
3: समझ कर इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
12: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
13: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बने।

0: लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
1: हमने तब भी सवाल किया था,
2: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
1: हम आज भी सवाल करते हैं,
2: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
1: ऑपरेशन अग्नि,
2: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
1: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
3: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
5: पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा दे यूपी के कौशाम्बी से, जहां पर एलपीजी टैंकर सामने आया है। यूपी के कौशाम्बी में सड़क पर दौड़ते एलपीजी गैस टैंकर में अचानक से धमाका हुआ, भीषण आग लग गई थी। हादसा 26 जून को हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि टैंकर डिवाइडर से जाकर टकराता है, अचानक से ब्लास्ट होता है और चारों तरफ गैस ही गैस फैल जाती है। इसके बाद भयानक आग की लपटें नजर आती है। यह हादसा टोल नाके के पास हुआ था। मरने वालों की संख्या 4 हो गई है, जबकि 2 टोल कर्मचारी अब भी जिंदगी और मौत के बीच ढूंढ रहे हैं। और हादसे के दौरान टैंकर चालक को कैबिन से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। नया सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में सामने आया है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। एलपीजी टैंकर के डिवाइडर से टकराने की वजह से पूरा हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के कौशाम्बी में बहुत भीषण हादसा हुआ है, 4 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, 2 अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खानदान चोरी केस में बड़ा एक्शन। एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से घंटों तक की पूछताछ। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की लंबी जांच। ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से 8 घंटे तक चली एसआईटी की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट से ऑडिट का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। सभी दस्तावेजों की छानबीन के बाद वित्तीय गड़बड़ियों की साफ होगी तस्वीर। पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला के गांव पहुंची, परिजनों से पूछताछ कर कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में किए। एसआईटी और पुलिस पूछताछ के जवाबों से असंतुष्ट, जांच में 3 से 4 लोगों को बनाया गया आरोपी। बैंक कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। पीएम मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में यूडीएन स्कीम को 10 साल बढ़ाने का करेंगे ऐलान। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को सस्ता बनाना मकसद। 2027 यूपी चुनाव की रेस में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, पोस्ट कर बदले सियासी समीकरणों का दावा। ओवैसी ने कहा यूपी में बदल देंगे पूरा गेम, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान पर अभी सस्पेंस बरकरार। टीएमसी में पार्टी पर दावे की जंग तेज हुई, दोनों गुटों ने असली संगठन होने का किया दावा। टीएमसी में बगावत पर चुनाव आयोग सख्त, ममता बनर्जी और ऋतव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने बागी गुट ऋतव्रत के प्रतिनिधिमंडल की इलेक्शन कमीशन संघ बैठक को बताया गैरकानूनी। कहा यह कोई गुट नहीं बल्कि टुटफुटिया झुंड है जिसमें इधर उधर से लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में साइबर अपराध पर शुभेंदु सरकार सख्त, 500 थानों में साइबर हेल्प डेस्क का उद्घाटन। नागरिकों को साइबर अपराध जागरूकता और सहायता प्रदान करेगी पुलिस। कोलकाता के कालीघाट आवास में ममता बनर्जी से मिली एसपी सांसद जया बच्चन, डेरेक अभिषेक की मौजूदगी की और मुलाकात से सियासी अटकलें तेज हुई। कोलकाता के ताराताल गोदाम हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। आरजीकर रेप मर्डर केस में पीड़िता के पिता का विसरा सैंपल के साथ फॉरेंसिक जांच से छेड़छाड़ का दावा। सियालदह कोर्ट में पत्र देकर की सीबीआई जांच की मांग। अमित शाह के घर बीजेपी की बड़ी बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन समेत संगठन महासचिव भी मौजूद रहे। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर बदलाव को लेकर चर्चा की संभावना। 4 से 5 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी दौरे पर। लखनऊ में बीजेपी सांसदों विधायकों संघ विधानसभा चुनाव तैयारियों पर करेंगे अहम बैठक। देश का विदेशी कर्ज बढ़ने पर अमित मालवीय का कांग्रेस पर वार, बोले कांग्रेस को अर्थशास्त्र की समझ नहीं। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन का बड़ा दावा, कहा अगले हफ्ते न्यूजीलैंड का पहला आधिकारिक दौरा करेंगे पीएम मोदी। यूपी टेट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने असली अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे 15 लोगों को दबोचा। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय सरकार की सोनम की मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जमानत पर रोक और आत्मसमर्पण की मांग, आज होगी सुनवाई। झारखंड कैबिनेट में रिम्स 2 को हेमंत सरकार ने दी मंजूरी, करोड़ों की लागत से बनेगा 2600 बेड वाला अस्पताल। मुंबई के साकीनाका में सिस्टम की लापरवाही से खुले मेनहोल में गिरने के कारण 60 साल के शख्स की मौत हुई, मेयर ऋतु तावड़े ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। मेयर ऋतु तावड़े का मृतक के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान, मामले में बीएमसी के 4 अधिकारी किए गए सस्पेंड। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई मेनहोल हादसे पर स्पीकर राहुल नवरेकर ने मांगी रिपोर्ट, लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। बीजेपी विधायक अमित साटम की ठेकेदार पर एफआईआर और जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नावरेकर बोले सिर्फ निलंबन नहीं, दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो। 20 जुलाई को आ सकता है नीट री एग्जाम का रिजल्ट, एनटीए सूत्रों के हवाले से खबर, एडमिशन प्रक्रिया में देरी ना करने की कोशिश। भारतीय नौसेना का एक और उपलब्धि, युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने सदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की एक और कोशिश को नाकाम किया। नेशनल डॉक्टर्स डे 2026 पर फिट इंडिया 2.0 की शुरुआत हुई। डॉक्टर सुनीता दुबे ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर व्हाइट पेपर जारी कर एआई आधिकारित सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च किया। देहरादून में अंकिता मर्डर केस में एजेंसी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। उधम सिंह नगर में मानसून आपदा से निपटने के लिए प्रशासन की मॉक ड्रिल, बाढ़ बचाव तैयारियों का अभ्यास किया। बम बम बोले के जयकारों के साथ शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, पहलगाम और बालटाल से रवाना हुए तीर्थयात्री, आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में भारी तादाद में जुटे शिव भक्त, करीब 2500 की संख्या में दोनों मार्गों से रवाना हुए तीर्थयात्री। बालटाल रूट से करीब 14 किलोमीटर की है तीर्थयात्रा, पहलगाम के रास्ते 48 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तीर्थयात्री।
वहीं देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में अमरनाथ यात्रा है। हिमालय पर मौजूद पवित्र अमरनाथ गुफा में होते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। 57 दिनों तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी तीर्थ यात्रा। अमरनाथ यात्रा रूट पर शिवभक्तों के लिए भंडारे के विशेष इंतजाम। अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं का रखा जाता है पूरा ध्यान। अमरनाथ यात्रा रूट पर मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के सभी इंतजाम। पहाड़ी इलाकों में लगाई गई माउंटेन रेस्क्यू टीम। लैंडस्लाइड की समस्या से निपटने के लिए सभी औजारों के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर से भी लेस है ये टीम। सेहत खराब होने या चोटिल होने पर स्ट्रेचर की सुविधा। अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं व्यापक इंतजाम। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 670 कंपनियों के साथ सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। कमांडो की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बारिश के बीच भी भक्तों का जोश बरकरार। अब तक 13,80,000 से अधिक यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। बागेश्वर में भी राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित हुई। मॉनसून आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखा गया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला। तीर्थयात्रियों से सहयोग की अपील की गई। पहाड़ों पर मॉनसून ने दी दस्तक। बारिश के साथ ही बद्रीनाथ का पूरा माहौल हुआ ठंडा और सुहावना। बारिश के बाद प्रशासन की यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की सलाह। मौसम विभाग ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भरी पवई झील। झील के किनारे मछली पकड़ते नजर आए कुछ लोग। नागपुर में हुई मूसलाधार बारिश। गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। इस बीच सड़कों पर भरे पानी से लोग परेशान। गुजरात के बोटाद जिले में भी हुई जोरदार बारिश। मॉनसून के दस्तक के साथ गिरा तापमान। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढे के कारण बाइक सवार समेत 5 लोग गिरे। सीसीटीवी में हादसे कैद हुआ। प्रशासन पर उठे सवाल। गुजरात के गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश। रिहायशी इलाकों में कई घरों में घुसा पानी। जनजीवन प्रभावित। कौशाम्बी में दौड़ते एलपीजी टैंकर में भीषण धमाका। डिवाइडर से टकराते हुए ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। कौशाम्बी टैंकर ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा 4 पहुंचा। 2 टोल कर्मचारी अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। टोल प्लाजा के पास हुआ था हादसा। 26 जून को कोखराज टोल प्लाजा के पास हुआ था यह हादसा। आग के गोले में तब्दील हो गया पूरा इलाका। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पार्किंग विवाद में बुजुर्ग गार्ड की बेरहमी से पिटाई की गई। 2 आरोपी पर मामला दर्ज। गुरुग्राम के एक स्कूल में मामूली बात को लेकर छात्रों में विवाद। इवेंट के दौरान जमकर चले लात घूंसे। एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां। गुजरात के वलसाड में शॉर्ट सर्किट से एक अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कोई हताहत नहीं। जयपुर में 3 मंजिला इमारत में गड्ढे की दुकान में लगी भयंकर आग। और ऐसे में बेसमेंट में रह रहे परिवार का दमकल की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। बागपत में खेत से मिट्टी उठाने पर 2 पक्षों में विवाद। पहले डंपर से कार को रौंदा, फिर की ताबड़तोड़ फायरिंग। युवक की हालत गंभीर। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे की भयावह तस्वीरें आई सामने। देवरिया में हाईवे पर सड़क पार कर रहे बच्चे को बोलेरो ने कुचला। सड़क के दूसरी तरफ पिता की दुकान पर जा रहा था मासूम। फरीदाबाद में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर झड़प। दबंगों ने युवक पर चढ़ाई कार। कुचलने की कोशिश का वीडियो आया सामने। शामली के पूर्व सांसद डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी के पत्नी का आरोप। स्थानीय नेता सालमारकर 2 करोड़ की मांग और रकम ना देने पर पुराने केस में फंसाने की धमकी का दावा। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। 250 करोड़ से अधिक की ठगी में 119 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार। वाराणसी में फर्जी दरोगा गिरफ्तार हुआ। 12वीं पास युवक पुलिस नगर निगम कचहरी में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था लाखों की ठगी। बांका में मिनी ट्रैक्टर की चपेट में आने की वजह से 10 साल के बच्चे की मौत हुई। एक घायल चालक फरार। अलीगढ़ में टोपी खींचने को लेकर मामूली विवाद में 2 गुट आपस में जाकर भिड़े। दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से किया हमला। मथुरा में दूसरी मंजिल से गिरी बच्चे की मौत हुई। सीसीटीवी में कैद घटना। यूपी के झांसी में मकान की खुदाई के मलबे में चांदी के पुराने सिक्के मिलने की अफवाह। इलाके में मची भगदड़। पुलिस ने भीड़ को किया नियंत्रित। केरल के कासरगोड में प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर ने युवक को बेरहमी से पीटा। एक स्कूल परिसर में पुलिस ने की बर्बरता। 3 गिरफ्तार। उज्जैन में महिला को दी तालिबानी सजा। बाल काटे गए, जूतों की माला पहनाकर गांव में निकाला जुलूस। 11 आरोपियों पर केस दर्ज। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंद में 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा। 786 गेंदों को बनाया गया रिकॉर्ड। अभिषेक शर्मा 200 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में हुए शामिल। वेस्टइंडीज के एविन लुइस का तोड़ा रिकॉर्ड। श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास। इंग्लैंड में T20 में 50 लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। 68 रन की पारी खेली। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने करेगी श्रीलंका का दौरा। 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। 15 से 19 अगस्त तक श्रीलंका के गोल में खेला जाएगा पहला टेस्ट। 23 से 27 अगस्त को होगा मुकाबला।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 11:20 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 11:46 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ आपको हो सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में शांति बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

की मानसिक स्थिति में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

का आगमन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड का आक्रोश अब देश भर में गूंज रहा है। मंदिर आंदोलन से बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत हुई थी, ऐसे में जब मौका भी है और दस्तूर भी, विपक्ष हर बीतते दिन के साथ राजनीतिक दबाव बढ़ाता जा रहा है। अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार की एसआईटी जांच सिर्फ दिखावा है, जिसने छोटी मछलियों को पकड़ा है जबकि लूट को मिले संस्थागत समर्थन पर हाथ नहीं डाला गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि चढ़ावा चोरी का मामला गांव-गांव तक पहुंच गया है और इस बार बीजेपी को न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न ही वोट। उन्होंने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया।
1: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
0: चढ़ावा चोरी मामले पर अयोध्या बार एसोसिएशन ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस को दी गई इस शिकायत में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के अलावा ट्रस्ट सदस्यों अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर चोरी की साजिश में शामिल होने का आरोप है। चारों ओर से ट्रस्ट पर उठ रही उंगलियों के बीच असल मुद्दा कार्रवाई का है। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने की संभावना है। ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को स्वीकार करने पर फैसला 2/3 बहुमत से ही संभव है। इस बीच इस बात की संभावना भी बन रही है कि आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन घर पर बुलडोजर चले। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या के सादतगंज में बन रहे मकान को लेकर लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने को लेकर नोटिस दिया है। फरवरी 2026 से बन रहे इस मकान को लेकर सुप्रिया को 15 दिन में जवाब देना है। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। वैसे जब ट्रस्ट सवालों के घेरे में है तब ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने सारा ठीकरा SBI पर फोड़ा है।
2: गिनती को लोगों ने जो गिनती में लोग लाते बैंक द्वारा लाए गए उन लोगों ने कुछ गड़बड़ी जरूर की, क्योंकि बाद में पकड़े गए, उनके घर पर भी छापे पड़े और वहां भी कुछ पैसा बरामद हुआ। नियमित कर्मचारी नहीं थे उन्हीं लोगों ने, कोई उनकी परमानेंट नौकरी थी नहीं, उन्हें कोई डर तो था नहीं, अपना हेरा फेरी कर लिया।
0: जबकि चढ़ावा चोरी के दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दे रहे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी को विपक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
3: जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी का यह मामला बीजेपी की राजनीतिक परीक्षा का मसला बन चुका है। ऐसे में SIT को 15 दिन जांच का मौका और मिला है। आज तक ब्यूरो।

एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर कसा शिकंजा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से 8 घंटे तक पूछताछ। पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला, हो सकती है बड़ी छापेमारी।

चर्चा कल से बीजेपी अध्यक्ष का यूपी दौरा। मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल, 3 दिन में 5 मौतें, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान, बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। यूपी के कौशाम्बी में सामने आया दिल दहलाने वाला मंजर का वीडियो, डिवाइडर से एलपीजी गैस टैंकर के टकराने के बाद उठी भयानक लपटें, 26 जून को हुए हादसे में 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बढ़ा पहला जत्था, पूरे रूट पर आज तक की मेगा कवरेज।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा भट्ट। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय से फिर मैराथन पूछताछ। चंपत ने क्या छिपाया, क्या बताया, पूरी खबर डिटेल में आपको दिखाएंगे। वायरल हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने का वीडियो, एनएचएआई ने क्या दी सफाई, ये भी आपको दिखाएंगे। केतन मर्डर मामले में क्राइम सीन के रिक्रिएशन पर क्यों उठ रहे सवाल, आज तक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 सौ शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं चढ़ावा चोरी मामले के साथ, क्योंकि इसमें एक बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस टीम अयोध्या जेल पहुंची है। केस की जांच अधिकारी सीओ आशुतोष तिवारी अयोध्या जेल पहुंच चुके हैं। खबर यह कि अविनाश की निशानदेही पर पुलिस चढ़ावा चोरी की रकम बरामद करने वाली है। अविनाश को सिगर प्रतापगढ़ भी ले जाया जा सकता है, उसकी निशानदेही पर कई अलग अलग जगहों पर पुलिस टीम की जाने की तैयारी है। ये वही अविनाश है जो चढ़ावा चोरी में मुख्य आरोपी माना जा रहा है, इसकी पुलिस रिमांड और बढ़ाई जा सकती है। तो अलग अलग जगहों पर कैश और आभूषण है, और ऐसे में जो तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी निशानदेही पर अब पुलिस अलग अलग जगह पर जा रही है। प्रतापगढ़ जो इसका घर बताया जा रहा है, वहां पर भी अविनाश शुक्ला को ले जाया जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला सबसे बड़ा लाभार्थी है। आरोपी है कि उसके पास चोरी की एक मोटी रकम है जो उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ स्थित अपने घर में छिपा रखी है। अब तक जितनी रकम बरामद हुई इसमें सबसे ज्यादा अविनाश के पास से मिली है।

0: क्या चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला ने की सबसे मोटी कमाई? क्या अविनाश शुक्ला है चढ़ावा चोरी के खेल का सबसे बड़ा लाभार्थी? चढ़ावा चोरी केस में आपने 5 जून को ये सीसीटीवी वीडियो देखा था कि कैसे चढ़ावा चोरी की भनक लगने पर पुलिस अविनाश शुक्ला को अपने साथ ले गई थी। तब ये केस दुनिया के सामने नहीं आया था। अब जबकि चढ़ावा चोरी केस की जांच एसआईटी कर रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला ने मोटी रकम ठिकाने लगाई है। अंदेशा है कि सोने चांदी के जेवर भी उसमें शामिल हैं। उससे हुई पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों से पुलिस को इसकी जानकारी हुई है, इसलिए उसे कस्टडी रिमांड पर लिया जा रहा है। आज अविनाश की निशानदेही पर बड़ी बरामदगी की संभावना है। चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की शुरुआत जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने टिन्नू यादव, सुभाष, अनुकल्प, लवकुश, मनीष, करुणेश, रमाशंकर के साथ अविनाश को गिरफ्तार किया था। सबसे अधिक 20,39,000 रुपए अविनाश के पास से बरामद हुए थे, साथ ही में अमेरिकन डॉलर भी जब्त किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में अविनाश ने और रकम होने की बात स्वीकार की है, जिसे उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ स्थित अपने पैतृक घर में छिपाया है। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसी को कस्टडी रिमांड पर लेने की अर्जी दी, जो मंजूर हो चुकी है। आज पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। रकम और जेवर आदि बरामद करने के लिए उसे अयोध्या और प्रतापगढ़ ले जाया जा सकता है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये अविनाश के भाई का वायरल वीडियो का हिस्सा है, जिसमें वो नोटों की गड्डियां लेकर रील बनाता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले वो अयोध्या आया था, अविनाश के साथ ही रहता था। इसके बाद वो वापस प्रतापगढ़ चला गया। अब उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी अविनाश शुक्ला कौशलपुरी स्थित इसी श्याम साधनालय योग केंद्र में अपने भाई के साथ रहता था। उसके कमरे से राम राज्य कोष लिखा एक संदूक मिला, उस पर QR कोड भी लगा है। मामला खुलने के मात्र 12 घंटे के भीतर नित्य योगाभ्यासियों ने दोनों को केंद्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आज तक ने इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बक्सा यहाँ क्यों रखा गया था? क्या पुलिस ने नकदी इसी बक्से से बरामद की और क्या चढ़ावा चोरी से इसका कोई कनेक्शन है? समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त अयोध्या जेल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अविनाश को पुलिस प्रतापगढ़ ले जा सकती है, ये पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है? क्योंकि मनी ट्रेल कई बार ढूंढना मुश्किल भी होता है, कई सारे ऐसे पैसे होते हैं जो आप चल अचल संपत्ति में लगा देते हैं, ऐसे में पुलिस के पास अब क्या विकल्प है?
2: देखिए, पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिस पर 48 घंटे की रिमांड पर अर्जी पर सुनवाई करते हुए करीब 13 घंटे की रिमांड मंजूर हुई है। इस समय मैं अयोध्या जेल के बाहर मौजूद हूं। मैं संदीप से कहूंगा कैमरा पर्सन से कि देखिए, पुलिस की टीमें जेल के अंदर पहुंच चुकी हैं। जो इस पूरे केस के IO हैं, डिप्टी SP आशुतोष त्रिपाठी, वो अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी 9 बजे से लेकर के और 13 घंटे की रिमांड अविनाश शुक्ला की मंजूर हुई है। अब कहा जा रहा है कि इसकी निशानदेही पर कुछ और नकदी और कुछ और सामान बरामद हो सकता है। जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि प्रतापगढ़ में इसने एक बाइक खरीदी है इसी चढ़ावा चोरी से, उसको रिकवरी करने की कोशिश की जाएगी और कुछ कैश और जेवरात जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मिले हैं उनको बरामद करने के लिए ये पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है। और इसके साथ ही अविनाश शुक्ला ये कैसे चोरी कर रहा था, तमाम अन्य जो पहलू हैं उनकी जानकारी जुटाने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आज ये पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। और अभी थोड़ी देर में अविनाश शुक्ला की जो पुलिस कस्टडी रिमांड है, पुलिस अपने कब्जे में लेगी उसको और उसके बाद पूछताछ के लिए, निशानदेही के लिए, बरामदगी के लिए लेकर जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में अविनाश शुक्ला वो कैरेक्टर था जिसके पास से सबसे बड़ी बरामदगी 20 लाख रुपए से अधिक बरामदगी हुई, 1,000 से अधिक करीब $1,100 बरामद हुए, सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए। तो सबसे बड़ी बरामदगी इसके पास से हुई है और अब इसी को पहला आरोपी है जिसको पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लिया है और अब इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के पुलिस कुछ और बरामदगियां करने की कोशिश करेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चढ़ावा चोरी मामले में कल श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 4 घंटे लंबी पूछताछ हुई है। सूत्र के हवाले से खबर है कि SIT इन तीनों के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। चढ़ावा चोरी मामले में ये 4 लोग जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, या फिर रह चुके हैं, क्योंकि अब इस्तीफे आ चुके हैं। तीनों के जवाब से संतुष्ट नहीं है एसआईटी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हो सकता है इनके जवाब में विरोधाभास हो, ये लगातार इनकी ओर से कहा जा रहा था कि जैसे ही इन्हें जानकारी मिली कि दान की चोरी हो रही है, इन्होंने पुलिस को इत्तला दी थी, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पर नाम चंपत राय का है। संतोष,

0: राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सिर्फ इस्तीफे से बात बनती नहीं दिख रही है। चढ़ावा चोरी केस में उन पर जांच का शिकंजा कसने लगा है। कल विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अयोध्या में चंपत राय से फिर पूछताछ की। पूछताछ ट्रस्ट के प्रमुख दो सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राय से भी हुई। ये पूछताछ करीब चार घंटे चली। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने कल ट्रस्ट ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और इन तीनों से इसी से जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। वहीं चढ़ावा चोरी केस में पुलिस की आपराधिक जांच भी जारी है। इससे इन सभी पर अब पुलिस और एसआईटी का दोहरा शिकंजा कसेगा। 6 जून को चढ़ावा चोरी का मामला उजागर होने के बाद 13 जून को गठित एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। अब दूसरे चरण में एसआईटी वित्तीय गड़बड़ियों का पूरा खेल उजागर करने के लिए ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट का ऑडिट कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट से अब तक हुए ऑडिट का पूरा लेखा जोखा मांगा है, लेकिन कुछ ब्यौरा अभी भी नहीं मिला है। पूरा ब्यौरा मिलने के बाद ये स्पष्ट होगा कि कहां कितनी और कैसी गड़बड़ी की गई। बताया जाता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही पूरे प्रबंधन में दखल था। अन्य ट्रस्टियों का दखल ना के बराबर था। ये तीनों शख्स जो चाहते थे मंदिर में वही होता था। चढ़ावे की गणना से लेकर जमा करने तक की निगरानी में इनकी भूमिका रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में तीनों लोग अपनी भूमिका होने से स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। पूछताछ में चंपत, अनिल और गोपाल सीधे तौर पर टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सभी एक साथ अब इन्हीं दोनों का नाम ले रहे हैं। हालांकि एसआईटी और पुलिस दोनों कई सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इनके गोलमोल जवाब कई और सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस मंदिर प्रबंधन से जुड़े ज्यादातर पदाधिकारियों, कर्मचारियों और निजी सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें गणना कर्मी भी शामिल हैं। इनमें से 3 से 4 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। बैंक कर्मियों को भी आरोपी बनाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द इनकी गिरफ्तारियां शुरू होंगी। पुलिस केस की विवेचना में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद ले रही है। उधर पुलिस की टीम कल राम मंदिर पहुंची और दान पात्रों को देखा। उन्होंने दान पात्र से राशि निकालने से लेकर गणना प्रक्रिया समझी। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिए। सूत्रों के मुताबिक कल शाम ही पुलिस की एक टीम आरोपी अविनाश शुक्ला के प्रतापगढ़ स्थित गांव पहुंची और उसके परिजनों से करीब आधे घंटे तक पूछताछ की। कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ इस वक्त लवकुश के घर के बाहर मौजूद है, लेकिन समर्थ मेरा सवाल ट्रस्ट से जुड़े लोगों से है जो 3 नाम बार बार सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्या ये संभव है और ऑडिट की रिपोर्ट्स देखकर क्या ये पता चलता है कि 3 बड़े शख्स जो ट्रस्ट की देखरेख करते हैं उनकी नाक के नीचे सब हुआ हो और अब वो इनकार कर दे कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, चोरी हो रही थी, चढ़ावा चोरी थी, हमें तो कुछ नहीं मालूम। क्या ऐसा मुमकिन भी है और ऐसी कोशिश भी वो क्यों कर रहे हैं?
2: नहीं, देखिए अब तो मामला केवल 3 लोगों तक रह ही नहीं गया है ना। अब तो ये साफ साफ पुलिस सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि केवल चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के कई बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इसीलिए पुलिस जो है उनकी रजिस्ट्री कागज निकाल रही है। एक आरोप यह भी लग रहा है कि कहीं छोटों को फंसा कर बड़े बचना तो नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी इस वक्त लवकुश के घर पर है जो इस पूरे मामले में एक आरोपी है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये उसका घर है जहां पर उसका परिवार यानी कि सुप्रिया, उनकी उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके पिता सब रहते हैं और पुलिस की टीमें कुछ दिन पहले यहीं पर पहुंची थी जहां पर पुलिस ने रेड की थी और पुलिस का फिलहाल यह दावा है कि काफी कुछ यहां से उन्होंने रिकवर किया है। आपको तस्वीरों में अगर दिखाएंगे तो पुलिस की एक टीम जो है वो इस घर के अंदर दाखिल हुई थी जहां से कुछ कागज रजिस्ट्री के बताए जा रहे हैं मिले हैं, जहां से प्रूफ मिला है कि जहां पर वो निर्माणाधीन बिल्डिंग जो घर बन रहा था जहां पर फिलहाल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस भी दिया है। इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा तो हम जब गांव में आते हैं तो यहां पर एक जगह है जहां पर कुछ भूसा और कंडे रखे हुए हैं। ये वो स्थान है जहां पर बताया गया कि पुलिस जब आई वो तस्वीरें भी सामने आई जब पुलिस ने यहां जो कंडे आप देखें रखे हुए हैं और ये जो काफी भूसा भरा हुआ है यहां पर भी पुलिस ने जब पड़ताल की तो यहां से भी बताया जा रहा है कुछ कुछ बरामद चीजें हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या लवकुश इतना शातिर था कि वो इस तरह की जगहों पर जहां गांव में यूजुअली कंडे रखे होते हैं, यहां पर देखें तो ये देखिए यहां पर आपको भूसा भी रखा नजर आएगा। तो क्या इन सब जगहों पर कैश छुपाया गया, क्या इन सब जगहों से डॉलर मिला, ये अपने आप में एक सवाल है। ये भूसा है, यहाँ पर कंडे रखे हुए हैं, इतना ही नहीं बल्कि कई और अन्य स्थानों पर भी पुलिस की टीमें गई। और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो 3-4 मकान है। ये जो मकान है यहाँ पर सुप्रिया यानी कि जो है लवकुश की पत्नी, उसकी माँ और उसके पिता रहते हैं। इसके अगल बगल जो मकान है वहां उसके जो भाई है यानी कि ज्वाइंट फैमिलीज है, उनके अगल बगल 3-4 बड़े बड़े मकान है। यहाँ पर जो परिवार है उनसे हमने बातचीत भी की है, उनका एक कहना है कि लवकुश को फंसाया जा रहा है और हमारे घर से कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन पुलिस की जो रिकवरी दिखाई गई है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि लगभग 14 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है लवकुश के घर से। इसके अलावा डॉलर्स की भी बात की गई है, वो भी बरामद हुए हैं, कुछ जमीन के कागज भी मिले हैं। और यही वो घर है जहां से ये प्रूफ मिला कि वहां जो दूसरा घर जहां पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो सकती है वो कागज भी मिले हैं। आपको हम घर की तरफ भी लेकर चलते हैं एक बार, हमारे साथ आए एक बार कैमरामैन नीरज, फ्रेम वाइड फ्रेम दिखाइए एक बार इस पूरे घर का। ये वो घर है, आप अगर देखें तो गांव का एक नॉर्मल घर है, जैसे गांव के घर यूजुअली होते हैं वैसा एक घर है। और यहाँ ये जो है आप सामने देखेंगे दरवाजा है। हमने कई दफा कोशिश की कि सुप्रिया से बात हो पाए।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात बीजेपी की नई टीम की करेंगे। कल रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री के बीच तकरीबन 3 घंटे तक लंबी बातचीत हुई। बातचीत में बीएल संतोष मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की नई टीम को लेकर यह बैठक की जा रही है। कल नितिन नवीन 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर जाने वाले हैं। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, कल की मैराथन बैठक और आज नितिन नवीन का लखनऊ जाना, 2 दिवसीय उनका दौरा है, ये सब संकेत मिल रहे हैं कि अभी से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, टीम की तैयारी की जा रही है, आगामी चुनाव को लेकर तमाम तरीके से मोर्चेबंदी है।
3: ये नेहा, ये जो विजिट है नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश का, वो एक बड़ा विजिट है क्योंकि जब संगठन की अनाउंसमेंट हुआ है, यूपी में बीजेपी की नई टीम सामने आई है, उसके बाद ये पहली बैठक नितिन नवीन की उत्तर प्रदेश में होने वाली। लेकिन उससे पहले कल शाम लगभग 3 घंटे से ज्यादा की एक बड़ी बैठक हुई दिल्ली में, और उस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे। इस बैठक के कई मायने निकल के सामने आ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की राष्ट्रीय नई टीम भी आनी है। सूत्रों ने ये दावा किया था कि जैसे ही यूपी बीजेपी की टीम का ऐलान हो जाएगा, उसके कुछ दिनों के बाद राष्ट्रीय टीम का भी ऐलान होने वाला है और उसके बाद कैबिनेट रीशफल होगा। तो इन्हीं सभी अटकलों के बीच में कल एक बड़ी बैठक हुई और ये दावा किया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि कल जो बैठक हुई उसमें जिन नामों पर मंथन हो चुका है उसको एक आखिरी अमली जामा पहनाया गया। यानी कि अब बहुत जल्द आप देख भी सकते हैं कि बीजेपी अपनी एक नई टीम अनाउंस कर सकती है। मॉनसून सेशन से पहले मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चाएं हैं और नए मंत्रिमंडल के साथ पीएम नरेंद्र मोदी मॉनसून सेशन में जाने की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मॉनसून सेशन से पहले आप नए मंत्री भी देखेंगे। तो इन सभी मीटिंग इन डेवलपमेंट्स के बीच में कल हुई जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण रही। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपनी नई टीम का ऐलान कब करती है और कब मोदी मंत्रिमंडल में
1: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका पीयूष। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर मामले में आज सिया और चेतन की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी क्योंकि कई ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस अभी भी करना चाहती है। तफ्तीश में अब लाई डिटेक्टर टेस्ट भी शामिल किया जाएगा, ऐसी भी खबरें हैं। ऐसे में पुलिस को और वक्त चाहिए इन दोनों से पूछताछ करने के लिए। यही वजह है कि इनकी रिमांड बढ़ाने की मांग पुलिस कर सकती है। और इस बीच बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। पुलिस 2 बार इस मर्डर केस में क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर चुकी है, लेकिन अब इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने रिक्रिएशन में इस्तेमाल डमी को खाई में ही छोड़ दिया।
4: केतन अग्रवाल को सिया और चेतन ने इसी लोहगढ़ से मतलब 300 से 400 फीट ऊंचाई से धक्का दिया था, इसी ऊपर से यानी लोहगढ़ से। और यहां मतलब जहां हम खड़े हैं, आज तक की टीम खड़ी है, वहां पर केतन अग्रवाल की डेड बॉडी मिली है। और ये जो परिसर है आपको दिखाई देगा कि ये पूरा जंगल है और अभी फॉग है। और जो क्राइम रिक्रिएशन सीन किया गया था, सिया हो या चेतन हो, उन्होंने जो डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी और किस क्रूरता से जो है सिया हो या चेतन हो उन्होंने धक्का दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि केतन अग्रवाल के साथ क्या हुआ है। और अभी यहाँ पर जो डमी है वो लोनावला ग्रामीण पुलिस ने जो है यहाँ से लेके नहीं गए, मतलब पुलिस ग्रामीण पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसे जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हारने के साथ श्रीकृष्ण पांचाल, लोहगढ़, लोनावला।
1: और बात एमपी के राजा रघुवंशी हत्याकांड की, आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राज्य सरकार का कहना है कि गिरफ्तारी दस्तावेज में हुई टाइपिंग की गलती के आधार पर जमानत देना सही नहीं था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रिहा होने पर सोनम फरार हो सकती है। शिलोंग की कोर्ट ने 27 अप्रैल को सोनम को जमानत दी थी। अदालत का कहना है कि गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ्तारी के सही कारणों की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद मेघालय सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 29 जून को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
5: देखिए ये चीज़ पुलिस ने जो बताई गई होगी होगी इसमें जो लिखी होगी चीज़ में वो चीज़ें पुलिस से पुलिस की कार्रवाई के हिसाब से जो लिखी है उनके उनके बोल बच्चन ने जैसे उनको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना उनके हाथ में है। बाकी ये चीज़ अभी तक शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ सुनता रहा हूँ मैं तो सोनम को जो गिरफ्तार कर रहा था उस टाइम उसको बताया नहीं गया था गिरफ्तार क्यों कर रहा है। ये चीज़ें इसी आधार पर जो है सेसमेंट में जमानत मिली थी उसको और हाईकोर्ट में मुझे लग रहा है इसी प्रकार से जमानत मिली उसको है। मगर मेघालय सरकार जो है मेघालय सरकार द्वारा इसमें जब जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है मेघालय सरकार जा रही है और जिस प्रकार से राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए जो ये मेहनत कर रहे हैं तो उसमें हमें न्याय की उम्मीद पूरी दिखाई दे रही है इसके अंदर है और हमें पूरा उम्मीद हमें है तो दिल्ली में जो अपने सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद पूरी है तो राजा रघुवंशी को न्याय पूरा मिलेगा इसके अंदर।
1: संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, जो जमानत के खिलाफ अर्जी मेघालय सरकार ने दी है क्या संभव

0: तीन तस्वीरें अलग अलग एंगल से सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम समझ सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा। ये एलपीजी से भरा टैंकर जब डिवाइडर से टकराया तो धुएं का गुबार तो था ही, लेकिन उसके साथ ही जहरीली गैस भी थी जिसको आग पकड़ने में चंद सेकेंड्स लगे, और यही वजह है कि चार लोग की इस भीषण हादसे में जान चली गई, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और अब बात दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। 2 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ था और अब एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंसने की तस्वीर वायरल हो गई है।
1: दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड खो चुकी हैं भाई यहीं पर ही।
2: ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वायरल वीडियो है। 14 अप्रैल मतलब 2 महीने भी नहीं हुए हैं जब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश की जनता को समर्पित किया गया, लेकिन हजारों करोड़ लगाने के बाद हालत ये है कि 2 महीने से कम वक्त में मानसून की पहली बारिश भी जमकर नहीं हुई, तब भी एक्सप्रेसवे पर कुछ हिस्सा यूं ही ढह गया जैसे कागज पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। जिस हाईवे से 2 से 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचने का दावा किया गया था, वहां बारिश में ऐसा गड्ढा हुआ कि गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े होने लगे।
1: गिरते गिरते बची हैं, 2 गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं। भाई मैं भी आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूं कि मेरी गाड़ी के दोनों अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं। बस के दोनों स्थितियां चेंज हो रही है गाड़ी की।
2: बारह हजार करोड़ का एक्सप्रेसवे अगर पहली बारिश में यूं सरेंडर कर देगा और अलॉय व्हील टेढ़ा कर देगा और गाड़ी का पहिया टेढ़ा कर देगा तो जनता का क्या हाल होगा।
3: दिल्ली हाईवे की जहां पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे उसमें, और आज हम उसी लोकेशन पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा कि वो लोकेशन दिखाए, और कल NHI के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने मौके पर आके ये गड्ढे भर तो दिए हैं, लेकिन ये गड्ढे अभी क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ पर जो गाड़ी आ रही है वो धड़ाम से बहुत आवाज़ कर रही है।
2: 2 महीने के भीतर ही शामली के पास एक्सप्रेसवे के गड्ढा होने के बाद NHI का भी बयान आया है। बयान में NHI ने कहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बताना चाहता है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सड़क की सतह धंसने की घटना बारिश के बाद पानी जमा होने और उस जगह पर स्थायी क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम शुरू करने में आ रही दिक्कतों के कारण हुई है। प्रभावित हिस्से की पहचान 1 जुलाई 2026 की सुबह रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान की गई और तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उस जगह की मरम्मत को प्राथमिकता दी गई। उस जगह पर बारिश के पानी को सड़क के दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए बनाए गए बैलेंसिंग कलवर्ट को चालू नहीं किया जा सका है क्योंकि स्थानीय निवासी इसका विरोध कर रहे थे। वे कलवर्ट के रास्ते का इस्तेमाल गाड़ियों के आने जाने के लिए कर रहे थे। इसके अलावा जमीन से जुड़े विवाद के कारण ढलान की सुरक्षा और शूट ड्रेन का काम भी रुका हुआ है, जिससे मंजूर किए गए ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा नहीं हो पाया है। अस्थायी उपाय के तौर पर NHI ने लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा समानांतर नाला बनाना शुरू कर दिया है और ड्रेनेज ग्रेडियंट को फिर से डिजाइन कर रहा है ताकि स्थायी ड्रेनेज सिस्टम चालू होने तक बारिश के पानी को सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी की माने तो लोगों से जमीन लेकर उन्होंने एक्सप्रेसवे तो बना लिया, लेकिन पानी निकालने के लिए जो पुलिया बनानी थी वो जनता ने नहीं बनाने दी। तो क्या फिर ऐसे ही गड्ढा करने के लिए, हादसों को न्योता देने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया है? शामली से शरद मलिक के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
0: बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गज ऊपर कसा शिकंजा, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से 8 घंटे पूछताछ, पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला, हो सकती है बड़ी छापेमारी। बीजेपी की नई टीम पर नितिन नवीन की अमित शाह के साथ मैराथन बैठक, मोदी कैबिनेट फेरबदल और संगठन में बदलाव पर 3 घंटे तक चर्चा, कल से बीजेपी अध्यक्ष का यूपी दौरा। मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल, 3 दिन में 5 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान, बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। यूपी के कौशाम्बी में सामने आया दिल जलाने वाला मंजर का वीडियो, डिवाइडर से एलपीजी गैस टैंकर से टकराने के बाद उठी भयानक लपटें, 26 जून को हुए हादसे में 4 की मौत। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बढ़ा पहला जत्था, पूरे रूट पर आज तक की मेगा कवरेज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: मुंबई में मॉनसून की दस्तक, बारिश के चलते अंधेरी सबवे में भरा पानी, जल भराव के चलते लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना, पानी के बीच आते जाते नजर आ रहे हैं लोग। मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भर गई पवई झील, झील के किनारे मछली पकड़ते नजर आए लोग। गुजरात के बोटाद जिले में हुई जोरदार बारिश, मॉनसून की दस्तक के साथ गिरा तापमान। जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में बाइक सवार समेत 5 गिरे, सीसीटीवी में कैद हुए हादसे। चंबा में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा, तेज बहाव के कारण टूटा अस्थायी पुल, पुल टूटने से 25 लोग फंसे, रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। किन्नौर में भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा, मलबे की चपेट में आई 2 कारें, पहाड़ों से गिरे मलबे से नेशनल हाईवे की आवाजाही ठप, मलबा हटाने के बाद NH5 पर यातायात शुरू होगा। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बारिश के बीच भक्तों का जोश हाई, अब तक 13,80,000 से अधिक यात्री कर चुके हैं यहां पर दर्शन। बागेश्वर में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित, मॉनसून आपदाओं से निपटने की तैयारी को परखा गया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम, हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला। पहाड़ों पर मॉनसून ने दी दस्तक, बारिश के साथ बद्रीनाथ का पूरा माहौल ठंडा और सुहाना। बारिश के बाद प्रशासन की यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की सलाह, मौसम विभाग ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। राम मंदिर दान चोरी केस से बड़ा एक्शन, एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से घंटों की पूछताछ। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की लंबी जांच, ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से 8 घंटे तक चली पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट से ऑडिट का पूरा रिकॉर्ड मांगा है, सभी दस्तावेजों की छानबीन के बाद वित्तीय गड़बड़ियों की होगी तस्वीर साफ। पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला के गांव पहुंची, परिजनों से पूछताछ कर कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। एसआईटी और पुलिस पूछताछ के जवाब से असंतुष्ट, 3 से 4 लोगों को बनाया गया आरोपी, बैंक कर्मियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। 4 जुलाई को जोधपुर में पीएम उड़ान स्कीम को 10 साल बढ़ाने का करेंगे ऐलान, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है मकसद। 2027 यूपी चुनाव की रेस में ओवैसी की एंट्री, पोस्ट कर बदले सियासी समीकरणों का दावा, ओवैसी ने कहा यूपी में बदल देंगे पूरा गेम, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान पर अभी सस्पेंस बरकरार। टीएमसी में पार्टी पर दावे की जंग तेज, 2 गुटों के असली संगठन होने का दावा। टीएमसी में बगावत पर चुनाव आयोग सख्त, ममता बैनर्जी ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने बागी गुट ऋतुव्रत के प्रतिनिधिमंडल की इसी संघ बैठक को बताया गैर कानूनी, कहा यह कोई गुट नहीं बल्कि टुटफुटिया झुंड है। पश्चिम बंगाल में साइबर अपराध पर शुभेंदु सरकार सख्त, 500 थानों में साइबर हेल्प डेस्क का उद्घाटन, नागरिकों को साइबर अपराध जागरूकता और सहायता प्रदान करेगी पुलिस। कोलकाता के कालीघाट आवास में ममता बैनर्जी से मिली एसपी सांसद जया बच्चन, डेरेक अभिषेक की मौजूदगी, मुलाकात की सियासी अटकलें तेज। कोलकाता के तारातला गोदाम हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। आज ही का रेप मामले में पीड़िता के पिता का विसरा सैंपल के साथ फोरेंसिक जांच से छेड़छाड़ का दावा, सियालदा कोर्ट में पत्र देकर की सीबीआई जांच की मांग। अमित शाह के घर बीजेपी की बड़ी बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन समेत संगठन महासचिव मौजूद। 4 और 5 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी दौरे पर, लखनऊ में बीजेपी सांसदों विधायकों संग विधानसभा चुनाव की तैयारियों को करेंगे अहम बैठक। देश का विदेशी कर्ज बढ़ने पर अमित मालवीय का कांग्रेस परिवार, बोले कांग्रेस को अर्थशास्त्र नहीं समझ आता। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन का बड़ा दावा, कहा अगले हफ्ते न्यूजीलैंड का बड़ा आधिकारिक दौरा करेंगे पीएम मोदी। यूपीटीईटी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला सोलवा गैंग पर्दाफाश, पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने असली अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे 15 लोगों को दबोचा। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की मेघालय सरकार में सोनम कुबली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जमानत पर रोक और आत्मसमर्पण की होगी मांग। झारखंड कैबिनेट में आ रहा है MS2, को हेमंत सरकार ने दी मंजूरी, करोड़ों की लागत से बनेगा 2600 बेड वाला अस्पताल। मुंबई के साकी नाका में सिस्टम की लापरवाही से खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के शख्स की मौत, मेयर ऋतु तावड़े ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। मेयर ऋतु तावड़े का मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजे का ऐलान, BMC के 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई मैनहोल हादसे पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मांगी रिपोर्ट, लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। बीजेपी विधायक अमित साटम का ठेकेदार पर FIR, जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले, सिर्फ निलंबन नहीं, दोषियों पर गैर आत्म हत्या का मामला दर्ज किया जाए। 20 जुलाई को आ सकता है नीट एग्जाम का रिजल्ट, NTA सूत्रों के हवाले से खबर, एडमिशन प्रक्रिया में देरी न करने की कोशिश। भारतीय नौसेना की एक और उपलब्धि, युद्धपोत INS त्रिकंड ने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की एक और कोशिश को किया नाकाम। बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर में बम की धमकी का ईमेल मिला, लोगों को बाहर निकाल कर की सघन जांच की मांग। देहरादून में अंकिता मर्डर मामले में एजेंसी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने CBI जांच पर सवाल उठाए। उधम सिंह नगर में मॉनसून आपदा से निपटने के लिए प्रशासन की मॉक ड्रिल, बाढ़ बचाव तैयारियों का अभ्यास। बम बम भोले के जयकारों के साथ शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, पहलगाम और बालटाल से रवाना हुए तीर्थयात्री, आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। बालटाल के बेस कैंप में भारी तादाद में जुटे शिव भक्त, करीब 2500 की संख्या में दोनों मार्गों से रवाना हुए तीर्थयात्री। बालटाल रूट से करीब 14 किलोमीटर की है तीर्थयात्रा, पहलगाम के रास्ते 48 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तीर्थयात्री। देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है अमरनाथ यात्रा। हिमालय पर मौजूद पवित्र अमरनाथ गुफा में होते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। 57 दिन तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। अमरनाथ यात्रा पर PM मोदी का संदेश, भक्तों के लिए साझा किया 5 संकल्प वाला विशेष पत्र, यात्रा को सुरक्षित, मंगलमय और सफल बनाने की अपील। अमरनाथ यात्रा रूट पर मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के इंतजाम, पहाड़ी इलाकों में लगाई गई माउंटेन रेस्क्यू टीम। लैंडस्लाइड की समस्या निपटने के लिए सभी औजारों के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस है टीम। अमरनाथ तीर्थ यात्रा की सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम, सेंट्रल आर्म फोर्सेस की 670 कंपनियों के साथ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कमांडो की तैनाती और मल्टी लेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। कौशाम्बी में दौड़ते LPG टैंकर में भीषण धमाका, डिवाइडर से टकराते हुआ ब्लास्ट, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर। कौशाम्बी टैंकर ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा 4, 2 टोल कर्मचारी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 26 जून को हुआ था कोखराज टोल प्लाजा का हादसा, आग के गोले में तब्दील हो गया था पूरा इलाका। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पार्किंग विवाद में बुजुर्ग गार्ड की बेरहमी से पिटाई, 2 आरोपियों पर मामला दर्ज। गुरुग्राम के स्कूल में मामली बात को लेकर छात्रों में विवाद, इवेंट के दौरान जमकर चले लात घूसे, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। गुजरात के वलसाड में शॉर्ट सर्किट से एक अपार्टमेंट में फ्लैट में आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। जयपुर में 3 मंजिला इमारत में गद्दे की दुकान में भयंकर आग, बेसमेंट में रह रहे परिवार की दमकल टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। बागपत में खेत में मिट्टी उठाने पर 2 पक्षों में विवाद, पहले डंपर से कार को रौंदा, फिर की ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक की हालत गंभीर। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे की भयावह तस्वीरें आई सामने। देवरिया में हाईवे पर सड़क पार कर रहे बच्चे को बुलेरो ने कुचला, सड़क के दूसरी तरफ पिता की दुकान पर जा रहा था मासूम। फरीदाबाद में 2 पक्षों में मामले का आसनी को लेकर झड़प, दबंगों ने युवक पर चढ़ाई कार को चलने की कोशिश का वीडियो वायरल। श्रीगंगानगर में आवारा सांड का आतंक, ट्यूशन से लौट रही 5 साल की बच्ची समेत परिवार पर किया हमला, 3 घायल। लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 250 करोड़ से अधिक की ठगी में 119 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार। वाराणसी में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, 12वीं पास युवक पुलिस नगर निगम कचहरी में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था लाखों की ठगी। बांका में मिनी ट्रैक्टर की चपेट में आए 10 साल के बच्चे की मौत, 1 घायल, चालक फरार। अलीगढ़ में टोपी खींचने को लेकर मामूली विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से किया हमला। मथुरा में दूसरी मंजिल से गिरी बच्ची की मौत, CC में कैद हुई घटना। झांसी में मकान की उताई मलबे में चांदी के पुराने सिक्के मिलने से अफवाह, इलाके में मची अफरा तफरी। केरल के कासरगोड में प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर ने युवक की बिरेमी से पिटाई की, एक स्कूल परिसर में पुलिस की बर्बरता दिखाई दी। उज्जैन महिला की को दी गई तालिबानी सजा, बाल काटे, जूतों की माला पहनाकर गांव में निकाला जुलूस। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में बनाई शानदार जगह। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कमाल, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर अगले दौर में बनाई जगह। ब्राजील ने जापान के खिलाफ रोमांचक 2-1 से जीत दर्ज कर नॉकआउट में दमदार प्रदर्शन किया। आज अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्डे, कोलंबिया वर्सेस घाना और ऑस्ट्रिया वर्सेस मिस्र के नॉकआउट मैच होंगे। नॉकआउट चरण में हर मैच बिना करो या मरो की स्थिति, टीमें राउंड ऑफ 16 के टिकट के लिए भिड़ी। T20 इंटरनेशनल सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने अभिषेक वर्मा, 785 गेंद बनाया रिकॉर्ड। अभिषेक शर्मा 200 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज में शामिल। वेस्ट इंडीज के एवन लुइस का तोड़ा रिकॉर्ड। श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, इंग्लैंड में टी20 में 50 लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। 68 रन की पारी खेली। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने करेगी श्रीलंका का दौरा। दो टेस्ट मैच सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। 15 और 19 अगस्त तक श्रीलंका के गोल में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। 23 से 27 अगस्त को सिंगली स्पोर्ट्स क्लब में दूसरा टेस्ट मुकाबला। आज बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म में से एक स्पाई थ्रिलर अल्फा रिलीज हो रही है। आलिया भट्ट, शर्वरी बाग इस फिल्म में नजर आएंगे। हुमा कुरैशी की भी एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी डू डाई डू बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार। फिल्म नागवंदम भी पैन इंडिया रिलीज से तैयार। ये फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज की जा रही है। सनी देओल की बहुचर्चित पीरियड ड्रामा फिल्म बटवारा 1947 पर बॉबी देओल का भावुक पोस्ट। लिखा, आप बेहतरीन है भैया। कपिल शर्मा, नीतू सिंह सारा, दादी की शादी ओटीटी पर देगी दस्तक। आज नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम।

0: और बात ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की। तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला परिसर में अंतिम श्रद्धांजलि की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसी परिसर में देश विदेश से आने वाले लोगों और प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में खामेनेई को अंतिम विदाई दी जाएगी। सुरक्षा कारणों के चलते आयतुल्ला के बेटे मुज्तबा खामेनेई के शामिल न होने की खबर है। सुरक्षा एजेंसियों का हमले का डर है, इसलिए उन्होंने मुज्तबा को अंतिम संस्कार समारोह से दूर रहने की सलाह दी है। अंतिम श्रद्धांजलि में देश विदेश के कई लोग पहुंच रहे हैं। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और सलमान खुर्शीद अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में कांग्रेस की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद शामिल हो रहे हैं। उनसे बात की मेरी सहयोगी सुमित चौधरी और गीता मोहन ने।
1: करीबन चार महीने के बाद ही जो सुप्रीम लीडर थे उनकी जो फ्यूनल सेरेमनी है वो आखिरकार ईरान में होने जा रही है। इसको लेकर भारत अपनी तरफ से प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है और उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी सलमान खुर्शीद साहब वहां पर जा रहे हैं, जो चेयरपर्सन भी हैं उनकी जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उसका, और इसके अलावा वो विदेश मंत्रालय में या विदेश मंत्री के तौर पर भी कार्यभार संभाल चुके हैं। भारत की विदेश नीतियों को बहुत गंभीरता से समझते हैं सलमान खुर्शीद साहब। भारत और ईरान के रिश्तों को लेकर कहते हैं कि सिविलाइजेशन बाउंड है, एक ब्रदरहुड है। अभी के दौर में ये दौरा या फिर आप कह सकते हैं कि जाना, ये विजिट कितनी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए भी?
2: देखिए, भारत के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए है कि जो हालात हुए जंग के दौरान उसमें बहुत सारे सवाल उठे कि कौन किसके साथ है और कितना साथ खड़ा है। बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फ़र्ज़ है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फ़र्ज़ है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है, जब हमारा पाकिस्तान से मसला हुआ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ जनीवा गया था, तो उस वक्त ईरान ने बढ़ चढ़ कर और बड़े खुल कर हमारा साथ दिया था। और ईरान हमारे साथ बहुत रिश्ते हमेशा बनाना चाहता है और चाहता रहा है, लेकिन मजबूरियां होती हैं। कहीं हम लोगों के औरों से भी रिश्ते हैं जिनसे उनके रिश्ते बिगड़ गए थे, अमेरिका के साथ थे, हमारे रिश्ते इसराइल के साथ हैं जिनके साथ उनका, जाहिर है उनका कोई रिश्ता नहीं है और अब तो उन पर जो जुल्म हुए हैं वो, उसके लिए तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो जुल्म जो नहीं हुए, लेकिन हम उस मौके पर कितना कह पाए और हम कितना कर पाए, जबकि हमारा वजूद दुनिया में कुछ है कि हमारी बात जो कही जाती है उसको दुनिया उस पर तवज्जो देती है, लेकिन क्या हमने वो बात कही, क्या हमने वो कदम उठाए जो उस वक्त ईरान के लिए बहुत बहुत मौजू होते और बहुत ज़रूरी होते। लेकिन इसकी शिकायत ईरान ने नहीं की, मुझे ये एहसास इस बात का है कि ईरान ने बड़ी फिराक गली से हिंदुस्तान का साथ निभाया है, और जब हमारी कश्तियाँ हॉर्मुज़ से निकलने वाली थी, निकल रही थी, उस वक्त ईरान ने हमारा साथ दिया, यकीनन एक बहुत बड़ी और बहुत फिराक गली की बात है। और जो भी हुआ, जिस दबाव में उस वक्त हालात जो भी बने, आज उनकी हमदर्दी में और उनके उनके गम के मौके में जाकर हम उनका गम बता सकें, इसके लिए जो भी पहल की है वो हुकूमत ने की है, हम उसका तआवुन करते हैं, और जो हमारा अपना फ़र्ज़ बनता था उस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए जब उनकी दावतनामा आया था तो हमारी पार्टी ने फौरन ये कहा कि हम यकीनन किसी को भेजेंगे, और मुझे मधु किया कि आप जाइए और ये हमारा पैगाम पहुंचा के आइए। तो खारगे साहब ने एक ख़त लिखा है, उस ख़त को मैं ले जाकर अपने जो वहाँ पर हम लोगों को होस्ट होंगे उनको दूंगा।
1: सर, एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक डेडलॉक सा क्रिएट हो गया था दोनों के बीच में बातचीत को लेकर। इसराइल का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आपको लगता है कि ये संघर्ष किसी एक ऐसे लेवल पर जाएगा जहाँ से बातचीत आगे बढ़ सके? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं दोनों की तरफ से एक दूसरे पर शिकायतें हैं, एमओयू को वायलेट करने की लगातार वायलेशन है।
2: सच्ची बात यह है कि इसराइल से तो बात हो नहीं रही है, बात जो भी हो रही है वो अमरीका से हो रही है। ये लड़ाई अमरीका ने मोल ले ली, जबकि ये लड़ाई इसराइल लड़ना चाहता था और इसराइल ने ही शुरुआत की थी, अमेरिका ने उन्होंने उसको अपने कंधों पर ले लिया। तो बात तो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है, और हमें खुशी इस बात की है कि वो यहाँ तक पहुँची है बात कि 60 दिन में उम्मीद ये है और ये तवक्को है, लोग कर रहे हैं कि इसका एक पूरा हल निकल पाएगा। हल तो अभी पूरा नहीं निकला है, लेकिन बहुत हद तक मामले आगे पहुँचे हैं, और बहरहाल जो जिस किस्म की गोलाबारी चल रही थी उस पर वो थमा है, वो रुका है। अब इसको एक एक परमानेंट बनाया जा सके, एक निज़ाम बनाया जा सके जिसमें आगे कभी इस किस्म की चीज़ ना हो, इसकी अब कोशिश है। उसमें हमारा क्या हाल हाथ हो सकता है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हमारी क्या शिरकत हो सकती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको अभी तक वाजे नहीं किया हमारी हुकूमत ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस बात को वाजे नहीं किया कि जहाँ एक तरफ ईरान अभी भी हमसे अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और जाहिर है इस मौके पर उन्होंने दावतनामा दिया है, हमारी हुकूमत के लोगों को दावतनामा दिया है, तो अब हम उसके रिस्पांस में हम क्या कर सकते हैं और हम उनकी कैसी मदद कर सकते हैं जो हालात हैं उनमें, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर कुछ जवाब मिले तो फिर आगे इस पर गुफ्तगू हो सकती है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। सलमान खुर्शीद साहब थे जो आज हमारे साथ खुद इस फ्लाइट पे होंगे और लगातार तेहरान में होने वाले इस बड़े सेरेमनी को हम कवर तो करेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे कि भारत के हित या फिर भारत का पर्सपेक्टिव इस पूरे संघर्ष को लेकर क्या रहा, और भारत का जुड़ाव ईरान के साथ जो ऐतिहासिक रहा है उसकी महत्वता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: 9 बज गए मेरे साथ, अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. After an incredible match against the Netherlands, Morocco will face Canada in Houston, Texas. Morocco is a -300 favorite to advance to the next round, and markets are giving them a 57% chance to win the match in regulation. This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
6: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
7: Jack, you're killing me.
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
7: Sokudo.
8: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
9: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
10: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
11: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चले।
13: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
14: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से
15: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
16: वाह वाह वाह वाह।
15: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
17: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
18: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
19: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: इन एसोसिएशन विद
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट बड़े आराम से।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
9: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
10: हाँ कहा था, लेकिन ये तय कैसे होता है?
9: प्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाते हैं।
11: पहला भारतीय चैनल,
9: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुंचते
12: हैं। मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है।
13: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
14: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
9: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
14: आज तक की खबर का असर हुआ है,
9: हर दिन कमाया जाता है।
15: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
9: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
15: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
16: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: I want all of India to see this.
5: सियासत में बहुमत का मिशन इम्पॉसिबल कुछ ऐसा चल रहा है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक सब कुछ हिल चुका है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद महाराष्ट्र में दरकते दलों की हालत देख अब शरद पवार की पार्टी सहमी हुई। पहले बंगाल की बात करें तो बंगाल में रस्सा कशी चल रही है कि असली टीएमसी कौन। इसी का दावा करने के लिए टीएमसी बागी गुट के 10 नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने पेश होते हैं। टीएमसी के नाम निशान पहचान पर दावा करते हैं।
6: तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस के नाम और निशान तो हमारा ही है।
7: ग्रुप राय के सिलेक्ट करा हुए छे एस चेयर पर्सन, इलेक्ट करा हुए छे एस चेयर पर्सन थ्रू द मीटिंग इन विच द एनसीडब्ल्यू गॉट फॉर्म।
5: दरअसल 22 जून को टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली। अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष बना लिया। ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहब, विप्लव मित्रा को महासचिव, फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रतिन घोष, सबीना याकमीन उपाध्यक्ष बन गए। कुल 30 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई। इसी की जानकारी चुनाव आयोग को देकर दल पर अपना दावा करने ये गुट आया। उधर पुरानी वाली टीएमसी के नेता कहते हैं कि ये गुट फर्जी और मुलाकात ही गैर कानूनी।
8: ये खुद को मजाक के पत्र बना रहे हैं, हास्यास्पद कर रहे हैं। और देखिए दूसरी चीज, चूहे को अगर हम चाहे शेर बनाएं और जितने भी हवा डाले शेर तो कभी नहीं बनते।
5: कांग्रेस भले टीएमसी के बागी गुट को चूहा बताए लेकिन बंगाल में इन दिनों ममता समर्थक नेताओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है और इसकी तस्वीर तब दिखती है जब दफ्तर में बंद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई थी। नीचे दर्जनों की भीड़ अंडे और सड़ी सब्जियां फेंक रही थी। पुलिस चुपचाप खड़ी थी। महुआ लगातार हमले के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही थी। बंगाल में जो कुछ हो रहा उसे देखकर महाराष्ट्र की सियासत में शक सुबह बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब से उद्धव की पार्टी के सांसद थोक भाव में शिंदे की पार्टी से जा मिले तब से शरद पवार की पार्टी को लेकर अफवाहें उड़ाई जाने लगी। कभी संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो वेडंतीवार कह देते हैं कि हाँ दिल्ली में बात चल रही है। तो कभी ऑपरेशन तुतरी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय की प्लानिंग वाली बात कह देते हैं और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो पार्टी कांग्रेस में मिलेगी ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगी एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है और ये संभावना जताई जाने लगी क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी के सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है क्योंकि टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। ऊपर से पवार उद्धव कांग्रेस वाली अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार जैसे बड़े नेता नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जता दी थी लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही सचिन अहीर ने उद्धव का साथ छोड़कर डिप्टी चेयरमैन का पद चुन लिया। वैसे फिलहाल शरद पवार की पार्टी में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। 2/3 टूट के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की जरूरत होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
9: संसद का मॉनसून सत्र इस बार भी हंगामेदार होने वाला है क्योंकि मोदी सरकार एक बार फिर सदन में वो बिल पेश करने जा रही है जिस पर पिछली बार बवाल मच गया था। सूत्रों के मुताबिक 130वें संविधान संशोधन बिल पर बनी जेपीसी इससे जुड़े प्रावधानों को हटाने के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि 17 जुलाई को समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए पद पर नहीं रह सकता। पीएम, सीएम या मंत्री की गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेनी होगी। अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। बाद में पीएम, सीएम या मंत्री को जमानत मिली तो वे अपने पद पर वापस आ सकते हैं। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए जाने पर ही जनप्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। पिछले मानसून सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े 3 विधेयक संसद के दोनों सदनों में रखे थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। विपक्ष का कहना है कि अगर ये बिल पास होते हैं तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का खतरा पैदा होगा। सरकार का तर्क है कि इससे सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ेगी। गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाला व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहे, ये लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर कसा शिकंजा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से 8 घंटे तक हुई पूछताछ। पुलिस रिमांड पर, अविनाश शुक्ला, हो सकती है बड़ी छापेमारी। बीजेपी की नई टीम पर नितिन नवीन की अमित शाह के साथ मैराथन बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल और संगठन में बदलाव पर 3 घंटे तक चर्चा। कल से बीजेपी अध्यक्ष का यूपी दौरा। मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल। 3 दिन में 5 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान। बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। यूपी के कौशाम्बी में सामने आया दिल दहला देने वाला मंजर का वीडियो। डिवाइडर से एलपीजी गैस टैंकर के टकराने के बाद उठी भयानक लपटे। 26 जून को हुए हादसे में 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बढ़ा पहला जत्था। पूरे रूट पर आज तक की मेगा कवरेज।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आज सुबह में क्या क्या रहेगा खास। आगे बताएंगे कि SIT की जांच में आखिर क्या हुआ, SIT टीम ने ट्रस्ट के टॉप 3 से क्या क्या सवाल किए और क्या क्या जवाब मिले, किन सवालों पे चुप्पी ही मिली। साथ ही आज से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। बालटाल और पहलगाम रूट से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। आज तक के साथ कीजिए पवित्र गुफा के प्रथम दर्शन। और ठीक आधे घंटे बाद देखिए आसमान से बरसती तबाही पर एक स्पेशल शो, हाहाकार कहां कहां है सरकार। तो इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। हर दिन इस जांच की परतें खुल रही हैं और दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। SIT की जांच सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और उनके बड़े पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव तक पहुंच चुकी है। SIT टीम ने ट्रस्ट के तीनों दिग्गजों से करीब 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की। कुल 8 घंटे ये तफ्तीश चली है। चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए गए और कई अहम सवाल भी पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक कुछ जवाबों से जांच टीम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद आने वाले दिनों में जांच और तेज हो सकती है। पुलिस की आधिकारिक जांच भी समानांतर रूप से जारी है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे कथित तौर पर छिपाई गई नकदी और सोने चांदी के गहनों की बरामदगी की कोशिश की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि आज उसकी निशानदेही पर कोई बड़ी रिकवरी हो सकती है। इतना ही नहीं है, इस मामले में एक आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध बताते हुए नोटिस जारी कर दिया है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लवकुश के परिवार ने आज तक से बातचीत कर एक बड़ा दावा किया है। लवकुश के नाना ने कहा है कि भारी मात्रा में कैश मिलने का दावा बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड देख कि आखिर मिला क्या है, कहां से मिला है, कंडों के ढेर में आकर ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। इतने रुपए रखने की घर के अंदर जगह भी नहीं है, ये दावा कर रहे हैं नाना। हमें नहीं पता इतना कैश कहां से मिला है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि पुलिस परसों आई थी तलाशी लेने के लिए, कुछ पुलिसकर्मी घर के अंदर भी आए थे। वो कह रहे हैं कि अलमारी से भी कुछ कागज ले गए हैं।
1: हमारे साथ इस वक्त लवकुश के जो पिता हैं वो मौजूद है और हमारी मौजूदगी वहां से जहां से पुलिस ने काफी कुछ रिकवर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार है, ये पूरी फैमिली है और ये पूरा घर है। भाई साहब ये बताइए कि लवकुश का जो पूरा मामला है उसमें आपको क्या लग रहा है, बेटे को क्या फंसाया जा रहा है या आरोपी है, क्या कहेंगे आप लोग?

0: ये आप देखें तो लवकुश के पिता हैं और गांव में रहते हैं, इस तरफ लवकुश का घर है, अगल बगल भी उसके भाइयों के ही घर। भाई साहब क्या है बताइए ना, बेटे को लेकर क्या है? पुलिस बहुत कुछ आरोप लगा रही है, कह रही है काफी कुछ इसी घर के आसपास से मिला है।
1: जो मिला हो जो ले गया हो जाने, जहां से या हम लोगों को सबूत दे या कोई रिकॉर्ड दे उसका, जैसे आप कहते हैं ले गए हैं तो आप हमको रिपोर्ट कुछ लिखे दिए हैं, कोई ग्राम प्रधान को बुलाकर उनके सामने आपने कहा है कि ये इनके घर से निकल रहा है?
0: ठीक है, पुलिस ने असल में ना FIR में ये सब चीजें लिखी हुई
1: नहीं,
0: हैं।
1: FIR कुछ भी मतलब हम नहीं है, कुछ भी आप लिखिए।
0: तो आप नहीं थे जब ये हुए?
1: नहीं, हम यात्रा में थे, हम उस समय यहाँ नहीं थे।
0: बताया गया सामने जो कंडे रखे हैं वहां से कैश
1: हम
0: मिला।
1: तो 10 लाख रुपए क्यों निकाल लिए जाए, गए घर के अंदर जगह है नहीं रखने की।
0: एक बार दिखाएंगे ना वहां पे क्या निकल सकते हैं कैश?
1: बिल्कुल नहीं, कैसे निकाल लीजिए, का निकालो गिन ली जाए,
0: आपको लगता है कि वहीं से मिला है?
1: हमको क्या लगता है उसमें, हम जब जानते ही नहीं है, हम जब जानते नहीं कैश मिला कहाँ से है वो।
0: पुलिस ये भी कह रही है कि घर जो है आपका ना, वहां
1: हाँ
0: अंदर कुछ कलमारियां हैं,
1: हाँ
0: वहां से रजिस्ट्री के कागज भी मिले हैं।
1: रजिस्ट्री कागज तो परसों ले गए हैं, परसों कौन सा धन मिल गया, किसने कहाँ तलाशी हुई, कौन प्रधान था, कौन कहाँ यहाँ यहाँ यहाँ के कौन अधिकारी थे, किसने ले गए, ले गए तो ले गए, उसके हमको पता है कि हमको नहीं पता है कि वो कहाँ से कै पैसे कहाँ से ले गए, कहाँ रखा हुआ पैसा, ऐसे मतलब कौन से रोड पे बिछाया हुआ पैसा।
0: बता रहे हैं कि विदेशी डॉलर भी मिला है।
1: विदेशी डॉलर मिला हो तो मिला हो, लेगी वही है हमारे यहाँ, न क्यों विदेश में है तो विदेश हमारे यहाँ कोई परिवार का नहीं है,
0: तो फिर डॉलर कैसे आया?
1: और कहाँ से आया वो तो हमको बतावे कि काम कहाँ से मिला है, कहाँ है डॉलर।
0: अच्छा, लवकुश के साथ जो भी हुआ है
1: हाँ
0: आप क्या लगता है, सही है
1: हमको
0: गलत?
1: हमको कुछ नहीं, हम आपसे हाथ जोड़ते
0: नहीं
1: हैं,
0: मुझे बताइए
1: हम
0: ना,
1: हमारी बात सुनो।
0: चंपत राय, अनिल मिश्रा जो और बड़े नाम आ रहे हैं, क्या आपको
1: हाँ
0: लगता है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, छोटे लोगों को फंसाया जा
1: नहीं,
0: रहा है?
1: हमको कुछ नहीं मालूम है, बचावे या छोड़ावे, जो सरकार कर रही है, जो टीम बैठी हुई है उसको वो जिम्मेदार है, हमसे हम लोगों से क्या लेना देना उसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं,
0: पुलिस यहाँ आई तो आप लोगों से क्या कहा?
1: हम लोगों से कुछ नहीं कहा।
0: सीधे खंगालने लगे? कहाँ
1: हाँ
0: कहाँ खंगाला?
1: बस यहीं से यही देख देख कर सब चले गए।
0: अंदर घर के आए होंगे?
1: अंदर एक सिपाही गया था लेकिन हमारे घर में कोई चीज बरामद नहीं हुई।
0: तो ये किस बिना पर पुलिस कह रही है कि 14.5 लाख कुछ कैश, कुछ डॉलर और कुछ कागजात?
1: उसको कुछ लिखे देंगे वो, मतलब कहीं से हम लोगों को
0: नहीं,
1: सबूत
0: रिकवरी
1: है
0: में दिखाया, पेपर है हमारे
1: और
0: पास,
1: आग पास पेपर हम भी
0: वो
1: देख
0: कोर्ट में
1: रहे
0: है पेपर वाला।
1: हैं। हाँ तो है लेकिन निकला होगा ले गए होंगे, हमसे क्या, और उस समय हम थे भी नहीं,
0: जो
1: हम आपसे क्या बता दें,
0: आप जो हैं घर पे वरिष्ठ
1: हम
0: हैं,
1: आपसे
0: नहीं
1: बात
0: नहीं घर पर आप वरिष्ठ हैं, नहीं मेरी बात सुनिए ना,
1: हम आपसे हाथ
0: आपके
1: जोड़
0: घर
1: रहे हैं,
0: पर इतना
1: हम
0: पैसा
1: आपसे
0: रखा
1: हम
0: है।
1: आज 15 दिन हमारी बात सुनो, 15 दिन से इतना परेशान मीडिया और पत्रकारों से,
0: नहीं
1: और
0: मुझे
1: कुछ
0: बताइए
1: आपसे
0: ना,
1: आपसे कुछ
0: असल में
1: बात
0: ना
1: नहीं करना
0: आप खुद
1: चाहते
0: देखिए वरिष्ठ हैं, आप खुद राम भक्त, राम भक्त हैं आप,
1: नहीं, हम भक्त हैं सब
0: तो
1: कुछ है
0: आप बताइए ना, इतना
1: नहीं।
0: चंदा चोरी का पैसा जो है,
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: कोई,
1: चंदा चोरी सब पैसा हमारे घर है सब, मतलब
0: बस यही जानना चाह रहा हूं मैं।
1: ले जाए
0: नहीं नहीं बस यही जानना चाह रहा हूं, क्या आप ही का घर है केवल, क्या लवकुश ने सब कुछ किया? आप ये बताइए ना मुझे, क्या इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व
1: लवकुश,
0: हैं कि नहीं?
1: निर्दोष है, निर्दोष कोई कलंक उसके ऊपर आ ही नहीं सकता, जो बाबा ने टीम बैठाई है वो मतलब अगर अगर अगर उसमें आता है तो पाप के भागी वो हो गया, वो उसका भोग भोग करेंगे,
0: किसने किया है, कौन फंसा रहा है,
1: उसको हम कौन जाओ कौन फंसा रहे हैं, हम किसको जानते हैं क्या कौन फंसा रहा है वहां।
0: कब से जुड़ा है वो ट्रस्ट से?
1: वो 5 5 6 में हम वो सागर में नौकरी करते थे, सागर वाले की यहाँ कार सीज का काम करते थे, बड़ी गाड़ियों का समझो, तब से हम नहीं जानते हो कहाँ ट्रस्ट
0: वो
1: होगा,
0: ट्रस्ट से कब से जुड़ा?
1: हम उसको नहीं मालूम।
0: आपका बेटा आपको नहीं
1: हाँ
0: मालूम?
1: नहीं मालूम, हमारा बेटा ना, हमारा नाती है लेकिन हमसे हमको नहीं मालूम।
0: आपका नाती है,
1: हाँ
0: क्या नाम है आपका?
1: हमारा जगदम्बा प्रसाद।
0: आप भाई के बेटे हैं, मतलब भाई भाई हैं उनके, मतलब फादर उनके भाई हैं।
1: हाँ
0: पर बड़े नाम बच रहे हैं, लोग कह रहे हैं
1: अब
0: छोटे
1: उसको
0: लोगों को,
1: बचे या छोटे जाए या बड़े जाए उससे हमसे क्या लेना देना, हम आपसे हाथ जोड़ते,
0: उनकी
1: हम तो
0: पत्नी सुनिए ना,
1: हमारी
0: जो
1: बात
0: घर
1: सुनो,
0: है
1: हम कुछ बात
0: बता रहे हैं
1: नहीं
0: घर पे
1: सुनेंगे,
0: बुलडोजर चलेगा,
1: हम कुछ सुनेंगे ही नहीं, अब
0: नहीं
1: हम
0: बता रहे
1: सुनते
0: हैं
1: क्यों,
0: घर पर बुलडोजर चलाएंगे।
1: चला दें जाकर हिम्मत हो, रजिस्ट्री है उसकी, कॉलेज दादा जय खारे से कैसे बुलडोजर चला देंगे, वो चला देंगे, चला देंगे।
0: जो वहां वाली प्रॉपर्टी
1: हाँ
0: है,
1: वहां वाली
0: जो
1: प्रॉपर्टी
0: अंडर,
1: है, यहाँ पर चला दें अगर
0: नहीं यहाँ नहीं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है ना,
1: हम
0: वो,
1: जवाब
0: नहीं नहीं
1: दे,
0: नहीं सुनिए ना,
1: हम क्यों
0: अयोध्या,
1: सुनेंगे कुछ नहीं, हम तो
0: अयोध्या
1: बात
0: विकास प्राधिकरण ये कह रहा है कि जो है वो इलीगली बना हुआ
1: हाँ तो
0: है,
1: अनिकेल बंद गिरा दिए
0: उनके
1: जाएंगे,
0: सचिव ये बयान दे रहे हैं।
1: जाओ जाओ गिरा दिए जाएंगे,
0: नहीं तो आप सहमत हैं इससे?
1: नहीं सहमत है, हम क्या सहमत है उसमें,
0: नहीं तो घर,
1: हम आपसे जो हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपसे विनती कर रहे हैं, हम इसके आगे कुछ नहीं जानते, हमसे बात मत करिए,
0: नहीं तो घर गिरेगा तो आपका क्या कहना है इस पे?
1: हम हमें कुछ गिर गिर जाने दो,
0: कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है?
1: हम कुछ हुआ या ना हो जैसे मर्जी उधर करें, हमसे उसे कोई लेना देना नहीं, हम आपसे कहते हैं,
0: आपका कहना है कि लवकुश निर्दोष
1: हम
0: है?
1: आप समय पहले बात सुनिए, जब हम आपसे हाथ जोड़ निवेदन करते हैं उसके विषय हमसे बात मत करिए, हाँ कुछ भी आप लोग करें, कुछ भी छापे, कुछ भी लिखे, उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, जो हमको करना होगा हम करेंगे,
0: लेकिन वकीलों ने भी हाथ खड़े कर दिए,
1: खड़े कर दे दो, क्या कोई कोई काम कोई बगैर रह जाते थे, आप पत्रकार या मीडिया है तो आप नहीं रहेंगे, क्या काम बंद हो जाएगा?
0: मतलब आप कुछ और तलाशेंगे तरीका जैसे बच्चे को बचाया जा सके अपने?
1: हम बच्चे को बचाने की तलाश हमसे कोई नहीं है। हाँ। हाँ। हमसे आपसे हाथ से निवेदन कर दिया, हमसे मतलब ये बात मत करिए कुछ।
0: सुप्रिया, सुप्रिया है घर पे?
1: नहीं, वो नहीं।
0: नोटिस उन्हीं को दिया गया है?
1: नोटिस दिया गया तो जो भी नोटिस की आप प्रताप हो करें जा करके, उसके लिए हमें कोई आपत्ति
0: नहीं। सरकार से कुछ गुहार करना चाहेंगे?
1: नहीं, कुछ नहीं करना चाहते, गुहार हम सरकार से किए मंदिर से किए वो हमारा सब व्यर्थ है।
0: चंपत राय से कभी बातचीत हुई आप लोग की?
1: हम चंपत राय जानते हैं,
0: ट्रस्ट के अधिकारियों से बातचीत हुई कभी?
1: हम देखिए, जब हम आपसे बात बार बार बात कहते हैं कि हमसे बात मत करिए, अब आप हमसे जहाज करते, हमारी तबीयत खराब है।
0: तो आप देखें, ये परिवार है और परिवार गुस्से में है, नाराजगी है। ये लवकुश का परिवार है जिनसे हमने कई सवाल किए, और ये वो घर है, काफी नाराजगी भी है, जो जांच है उसको लेकर काफी गुस्से में है, उसको लेकर भी यहाँ गुस्सा है परिवार में। तो अब देखना ये इस पूरी पड़ताल में क्या कुछ निकलता है। फिलहाल पुलिस का दावा है 14 लाख लगभग कैश यहाँ से मिला, डॉलर मिला और काफी कुछ पेपर मिले, लेकिन परिवार का कहना है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब देखना यह है कि फर्दर जांच में क्या कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: तो चढ़ावा चोरी केस में कल श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 4 घंटे लंबी पूछताछ की गई है। सूत्रों के जरिए खबर मिली है कि SIT इन तीनों के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है।

0: राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सिर्फ इस्तीफे से बात बनती नहीं दिख रही है। चढ़ावा चोरी केस में उन पर जांच का शिकंजा कसने लगा है। कल विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अयोध्या में चंपत राय से फिर पूछताछ की। पूछताछ ट्रस्ट के प्रमुख दो सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राय से भी हुई। ये पूछताछ करीब 4 घंटे चली। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने कल ट्रस्ट ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और इन तीनों से इसी से जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। वहीं चढ़ावा चोरी केस में पुलिस की आपराधिक जांच भी जारी है। इससे इन सभी पर अब पुलिस और एसआईटी का दोहरा शिकंजा कसेगा। 6 जून को चढ़ावा चोरी का मामला उजागर होने के बाद 13 जून को गठित एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। अब दूसरे चरण में एसआईटी वित्तीय गड़बड़ियों का पूरा खेल उजागर करने के लिए ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट का ऑडिट कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट से अब तक हुए ऑडिट का पूरा लेखा जोखा मांगा है, लेकिन कुछ ब्यौरा अभी भी नहीं मिला है। पूरा ब्यौरा मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कहां कितनी और कैसी गड़बड़ी की गई। बताया जाता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही पूरे प्रबंधन में दखल था, अन्य ट्रस्टियों का दखल न के बराबर था। ये तीनों शख्स जो चाहते थे मंदिर में वही होता था। चढ़ावे की गणना से लेकर जमा करने तक की निगरानी में इनकी भूमिका रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में तीनों लोग अपनी भूमिका होने से स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। पूछताछ में चंपत, अनिल और गोपाल सीधे तौर पर टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सभी एक साथ अब इन्हीं दोनों का नाम ले रहे हैं। हालांकि एसआईटी और पुलिस दोनों कई सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इनके गोलमोल जवाब कई और सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस मंदिर प्रबंधन से जुड़े ज्यादातर पदाधिकारियों, कर्मचारियों और निजी सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें गणना कर्मी भी शामिल हैं। इनमें से 3 से 4 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। बैंक कर्मियों को भी आरोपी बनाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द इनकी गिरफ्तारियां शुरू होंगी। पुलिस केस की विवेचना में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद ले रही है। उधर पुलिस की टीम कल राम मंदिर पहुंची और दान पात्रों को देखा। उन्होंने दान पात्र से राशि निकालने से लेकर गणना प्रक्रिया समझी। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिए। सूत्रों के मुताबिक कल शाम ही पुलिस की एक टीम आरोपी अविनाश शुक्ला के प्रतापगढ़ स्थित गांव पहुंची और उसके परिजनों से करीब आधे घंटे तक पूछताछ की। कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: और एक और बड़ी खबर आ रही है। बताया जाता है कि चढ़ावा चोरी केस में जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो था अविनाश शुक्ला। आरोप है कि उसके पास चोरी की मोटी रकम है जो उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ स्थित अपने घर में छिपा रखी है। पुलिस अब अविनाश की निशानदेही पर जगह जगह छापेमारी कर रही है और अब तक जितनी रकम बरामद हुई है उसमें सबसे ज्यादा अविनाश के पास से ही मिली है। अविनाश की पुलिस रिमांड भी मंजूर हो गई है। पुलिस उससे पूछताछ करेगी। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा का, जो उस योग केंद्र में मौजूद है जहां पर ये रहता था। संतोष, आज पुलिस उसे ले जाएगी, अलग अलग जगहों पर निशानदेही करेगी, क्या मकसद है?
2: देखिए, अविनाश शुक्ला की 13 घंटे की रिमांड मंजूर हुई है, यानी सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पुलिस उसको रखेगी और पूछताछ करेगी। मैं इस समय पर उस योग केंद्र पर मौजूद हूँ। अयोध्या का ये कौशलपुरी का ये श्याम साधनालय योग केंद्र है। आपको याद होगा कि एक जो बॉक्स मिला था, QR कोड लगा हुआ, उस बॉक्स से कैश रिकवरी हुई थी जो अविनाश शुक्ला का बताया गया, और अभिषेक शुक्ला जो उसका भाई था, दोनों ही लोग यहाँ पे काम करते थे। योगा केंद्र है कौशलपुरी का, यहाँ पर दोनों लोग काम करते थे। और अब चूंकि अविनाश शुक्ला पुलिस कस्टडी रिमांड पर है, पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि ये योग केंद्र तभी से बंद है, ये ऊपर जाने का रास्ता है और ये बंद है, ताला पड़ा हुआ है, लेकिन संभावना है कि पुलिस अगर, चूंकि वो यहीं रहता था, मूलतः प्रतापगढ़ का रहने वाला है, तो कुछ और चीजों की बरामदगी हो सकती है, कुछ कैश और ज्वेलरी। बता दें कि जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए उन सभी आरोपियों में सबसे बड़ी बरामदगी इसी अविनाश शुक्ला के पास हुई है। लगभग 20 लाख रुपए और 1100 से अधिक डॉलर और सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। तो ऐसे में उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है और पुलिस कस्टडी रिमांड में फिलहाल अविनाश शुक्ला को अयोध्या पुलिस लाइन में रखकर पूछताछ कर रही है। तमाम अहम जानकारियां हासिल कर रही है कि कैसे पैसा चोरी होता था, कैसे वो उनको छिपाता था और उसके बाद वो रिकवरी करेगी और इस संभावना है कि वो
1: इस
2: पर भी आ सकती है।
1: जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अयोध्या में जारी रहेगी जांच। और अब बात करते हैं बीजेपी की नई टीम की, जिसकी कल रात राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री के बीच एक बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक ये बातचीत चली है। बातचीत में बीएल संतोष भी मौजूद थे। अब सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की नई टीम को लेकर ये बैठक हुई है। कल नितिन नवीन 2 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर भी जाने वाले हैं। और आइए आपको बता देने कि क्या क्या हुआ इस मंथन के दौरान। तो अमित शाह और नितिन नवीन की बैठक 3 घंटे तक चली और कोशिश यह है कि सरकार और पार्टी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय बिठाया जा सके। तो ये बैठक इसलिए अहम थी, आने वाले राज्यों में भी कई जगह चुनाव है और ऐसे में ये बैठक बेहद अहम हो जाती है कि सरकार और पार्टी दोनों के बीच में समन्वय बिठाया जा सके। और आइए आपको बताते हैं कि क्यों अहम रही ये बैठक। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस बैठक की अहमियत क्या रही और इसके लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे ये जो बैठक है ये किस नजरिए से अहम रही है।
3: ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं जिसमें ये तय किया जा रहा है कि कौन बीजेपी की नई टीम का हिस्सा होगा। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी काफी सुगबुगाहट है और इन सभी बैठकों के बीच में कल हुई जो बैठक है लगभग 3 घंटे से ज्यादा की बैठक गृहमंत्री के आवास पर हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे, साथ साथ बीएल संतोष मौजूद थे। इस बैठक में जो जिन नामों पर चर्चा अब तक हुई है उनको अमली जामा पहनाया गया, ऐसा सूत्र बताते हैं। बीजेपी की नई टीम का ऐलान, नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान की प्रतीक्षा काफी लंबे समय से की जा रही है। यूपी बीजेपी की टीम का ऐलान हो चुका है तो अब उसी के ऐलान से पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण।
1: जी शुक्रिया आपका पीयूष। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। अपने दौरे के दौरान नितिन नवीन विधायकों, सांसदों, जिला अध्यक्षों और संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ अहम बैठकें करेंगे। चुनावी रणनीति, संगठनात्मक कार्य योजना और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा होगी, जबकि शक्ति केंद्र संयोजकों को भी चुनावी तैयारी का मंत्र दिया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक का। कुमार, आने वाले चुनाव के लिए किस लिए अहम हो जाता है यह दौरा?
4: देखिए अंजलि, ये बिल्कुल सबसे अहम दौरों में से एक होगा, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी नया संगठन बनकर तैयार हुआ है। पहला विजिट नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में है और 2 दिवसीय ये दौरा है, तो तमाम जो नए संगठन, नए पदाधिकारी बीजेपी के बने
1: जी
4: उनके साथ सबसे अहम बैठक होगी, सारे पदाधिकारियों के साथ। इसके अलावा मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और साथ साथ जो समन्वय बैठक है, जो कोऑर्डिनेशन बैठक है, वो मीटिंग होगी। सांसदों, विधायकों के साथ बैठक होगी और आज वो जो कल शुरुआत करेंगे वो यहाँ के मंदिर से शुरुआत करेंगे। 2027 इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी का सीधा मुकाबला कह लीजिए तो इंडिया ब्लॉक से है, जिसमें अखिलेश यादव का पीडीए है। ऐसी स्थिति
1: रहेगी हमारी नजर। शुक्रिया आपका वक्त। एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। इन एसोसिएशन

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
11: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
12: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
11: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
12: अर्ज किया है
11: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
13: वाँ वाँ वाँ वाँ।
11: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
14: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
15: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
18: ट्यून इन हाउ टू, अ ब्रीफ लुक एट ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
19: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
10: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
20: हमने तब भी सवाल किया था,
21: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
20: हम आज भी सवाल करते हैं,
21: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
20: ऑपरेशन अग्नि,
21: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
20: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
22: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: हमने तब भी सवाल किया था,
21: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
20: हम आज भी

0: सवाल करते हैं।
1: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
0: ऑपरेशन अग्नि,
1: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
0: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
2: पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर कसा शिकंजा चंपत राय, अनिल मिश्रा गोपाल राव से 8 घंटे तक हुई पूछताछ, पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला, हो सकती है बड़ी छापेमारी। बीजेपी की नई टीम पर नितिन नवीन की अमित शाह के साथ मैराथन बैठक, मोदी कैबिनेट में फेरबदल और संगठन में बदलाव पर 3 घंटे तक चर्चा, कल से बीजेपी अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश दौरा। मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल, 3 दिन में 5 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान, बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। यूपी के कौशाम्बी में सामने आया दिल दहला देने वाला मंजर का वीडियो, डिवाइडर से एलपीजी गैस टैंकर के टकराने के बाद उठी भयानक लपटें, 26 जून को हुए हादसे में 4 लोगों की मौत। बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बढ़ा पहला जत्था, पूरे रूट पर आज तक की मेगा कवरेज।

0: आज सुबह के इस सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे मॉनसून के साथ मुंबई में आई आफत की। मुंबई में मॉनसून ने एक बार फिर सिविक सिस्टम की लापरवाही और खामियों को उजागर कर दिया है। बारिश के दौरान हुए हादसों में सिर्फ एक दिन में 3 मौत से लोग दहशत में आ गए हैं। ठाणे में बिजली का करंट लगने से 17 साल की लड़की की मौत हुई है। डोंबिवली में 42 साल की महिला को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। और मुंबई के साकी नाका में खुले मैनहोल में गिरने से एक आदमी की डूबकर मौत। दहिसर में मुंबई पुलिस ने एक आदमी को बचाया जो बारिश के पानी में नाले में बह गया था, जिसमें एक और बड़ा हादसा टल गया। साकीनाका मैनहोल हादसे में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बीएमसी के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 4 सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाई गई है और कॉन्ट्रैक्टर की भी जांच हो रही है। एक और घटना में नवी मुंबई में बाइक फिसलने के बाद बिजली का झटका लगने से 2 महिलाएं बाल बाल बची। इस मामले में 1 सिविक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक ही दिन में सिविक सिस्टम, सिविक एजेंसियों की कई नाकामियों से अब सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष और सरकार आमने सामने है। मॉनसून की तैयारियों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी का, जानने की कोशिश करते हैं क्या हालात है मुंबई में। दीपेश, ये तो सबको मालूम है कि मुंबई की हालत खराब होती है हर साल मॉनसून में, तो फिर इस बार भी तैयारी क्यों नहीं हुई?
1: अंजलि, बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल वाजिब सवाल है कि तैयारियां क्यों पूरी नहीं हुई, और ये सवाल हर साल बदस्तूर कायम है। इस बार तो महाराष्ट्र में मॉनसून जो है वो देरी से दाखिल हुआ। आधिकारिक तौर पर 23 जून को महाराष्ट्र में जो है मॉनसून देरी से आया, मॉनसून आया है, यानी 10 तारीख को मॉनसून महाराष्ट्र में दाखिल होता है, लेकिन फिर भी महानगर पालिका की तैयारियां जो है वो अपूरी साबित हुई। तो भले ही वो मैनहोल को लेकर कहें या विद्युत से जुड़ी हुई तैयारियों को लेकर कहें, मुंबई में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिनकी वजह से महानगर पालिका की तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। फिर चाहे वो पेड़ों की कटाई हो, ट्रिमिंग हो, एक ही दिन में 2 तारीख को एक ही दिन में 113 जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं या टहनियां गिरने की घटनाएं जो है वो रिपोर्ट हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का यही काम है कि मॉनसून पूर्व तैयारियों में नालों की सफाई करे, पेड़ों की छटाई करे, जो मैनहोल है उनकी देखरेख करे, उनको ठीक से करे, लेकिन कोई भी काम किसी भी क्षेत्र में महानगर पालिका काम 100%
0: जी बिल्कुल। और ऐसे में सवाल ही उठ जाते हैं कि इन मौतों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। तो मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और सारी तैयारी पानी के रास्ते बह जाती है। पिछले 3 दिनों में 3 लोगों की मौत हुई तो मेयर खुद सड़कों पर उतर आई, लेकिन सवाल यह है कि मुंबई में हर बार क्यों यही तस्वीर बनती है।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपनी हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी, साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
3: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल हुआ।
1: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल करा है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
3: देखो गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते।
0: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी, इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई।
4: ये बोल के हम थक चुके हैं। आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया, इधर स्लैब गिर गया था। आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान में गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई।
0: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली मां की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली। मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत हो गई। अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभा देवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में है। मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक।
5: यह हालत सिर्फ मुंबई की ही नहीं है, पड़ोस में ही गुजरात है। जूनागढ़ में पहली बारिश में ही व्यवस्था की पोल खुल गई। शहर में गड्ढे खोदकर सिविक प्रशासन इंतजार कर रहा है कि नागरिक आए और उसमें गिरे। लापरवाही का आलम यह है कि गड्ढों के आसपास कोई वार्निंग बोर्ड भी नहीं लगाया गया है।
6: कहीं कहीं गड्ढे रह गए हैं, ये मैं स्वीकार करती हूँ, और वहाँ पर जो आज सुबह ही वो गड्ढे में गिरे हैं वो हमें भी दुख है, पर ये सब गड्ढे 24 घंटे में वो हम लोग उसको फिलअप कर लेंगे।
7: ऑनरेबल कमिश्नर सर की अनुसार जो लगत उसकी एजेंसी है, उसकी पीएमसी है एजेंसी है, और बंसन जो और उसका ओल्ड इंजीनियर है उसको एक सोपोज नोटिस भी दिया है।
0: ये गुजरात का जूनागढ़ है जहाँ सड़क ही गड्ढा है और गड्ढा ही सड़क है। अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो सावधान रहिए, कब किस रास्ते पर यमदूत मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिम्मेदार अफसरों के भरोसे रहे तो गए काम से। जूनागढ़ का सिविक प्रशासन गड्ढे खोदकर जैसे इंतजार कर रहा है कि बारिश खत्म होगी तो गड्ढे अपने आप भर जाएंगे। ये जूनागढ़ का आजाद चौक है, जहां बाइक पर जा रहा एक शख्स अचानक गड्ढे में गिर गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई है। बारिश की वजह से यह पता करना मुश्किल हो गया है कि कहां गड्ढा है और कहां सड़क। सिविक प्रशासन ने कहीं भी कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया था, जिससे लोगों को पता चल सके कि यहां सड़क क्षतिग्रस्त है।
8: हम जहाँ पर खड़े हैं इसी जगह पर आजाद चौक है यहाँ, और इसी जगह पर आज सुबह 6:30 बजे एक बाइक सवार है वो इस गड्ढे में गिर गया। अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर जा रहे युवक को अचानक एक गड्ढा आया और गड्ढे में वो सिर के बल गिरा। इसके साथ साथ जूनागढ़ के कई ऐसी वारदात है जिसने प्रशासन की पूर्व मानसून की जो तैयारी है उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए है।
0: सिर्फ आजाद चौक ही नहीं, घटनगर इलाके में भी एक ही गड्ढे में अलग अलग समय पर 3 से 4 लोगों के गिरने की घटनाएं हुई। बारिश का पानी भर जाने के कारण यह गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वहां से गुजर रहा एक शख्स उसमें गिर गया। स्कूटी सवार सीवर में गिरा तो पास खड़ा एक शख्स उसे बचाने दौड़ा। स्कूटी सवार की मदद की जा रही थी कि तभी पैदल आ रही एक महिला अपने बच्चे के साथ उसी गड्ढे में गिर गई। ये तस्वीर भी जूनागढ़ की है। स्कूल से बच्चे को लेकर जा रहा एक शख्स सामने बने गड्ढे में गिर गया। शहर में सीवर और सड़क के अधूरे तथा खराब काम स्थानीय नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत और समस्या का कारण बन गए हैं, जिसके चलते जनता में प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। जूनागढ़ नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि गड्ढे भरने का समय नहीं मिला और बारिश आ गई, लेकिन अब वे 24 घंटे के भीतर सभी गड्ढे भर देने का दावा कर रहे हैं।
6: एमजी रोड का पेच हमने दूसरी बार किया क्योंकि ये सब कुछ हुआ था, इसीलिए तो ये गड्ढे पड़े हैं, वो गड्ढे बड़े हो गए हैं, तो उसकी वजह से अभी हम 24 घंटे में हमने सूचना दी है कि तंत्र है, तंत्र और हमारे कॉरपोरेटर अभी फील्ड में है, और वो तंत्र और तंत्र के इंजीनियर और कॉरपोरेटर जो कुछ भी गड्ढे हैं वो 24 घंटे में वो गड्ढे हैं वो फिलअप कर लेंगे और फिर गड्ढे नहीं रहेंगे।
0: जूनागढ़ नगर निगम की लापरवाही से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा। इन घटनाओं के बाद सवाल उठता है कि गहरी नींद में सोया यह प्रशासन आखिर कब जागेगा, और क्या जूनागढ़ का सिविक प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। गार्गी जोशी, जूनागढ़ आज तक।
5: तो गड्ढे सिर्फ जूनागढ़ और मुंबई तक सीमित नहीं है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हो गए हैं। अब इसी साल अप्रैल में इसका लोकार्पण हुआ था और मॉनसून की पहली बारिश एक्सप्रेसवे पर खतरनाक गड्ढे गढ़ रही है।
9: दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड खो चुकी है भाई यहीं पर ही।
10: जैसे लगा हो कोई दो उल्का पिंड आकर गिर गया, या फिर कहिए सड़क की आंखें निकल आई हो और कह रही हो और कर लो हाई फाई दावे। दावे इसलिए क्योंकि 14 अप्रैल मतलब 2 महीने भी नहीं हुए जब 12,000 करोड़ रुपए जनता के लगाकर तैयार हुआ था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और देश की जनता को समर्पित किया गया, लेकिन हजारों करोड़ लगाने के बाद आज भी हालत ये, 2 महीने से कम वक्त में मानसून की पहली बारिश भी जमकर जब नहीं हुई तब एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा यूं ढह गया जैसे कागज पर किसी ने पानी के छींटे मारे हों। और दावे तो ये थे इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से न जाने क्या क्या दे देंगे।
11: जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा इससे पर्यटन का सबसे ज्यादा फायदा होगा, और पर्यटन क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए होती है, जो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यही एक प्रकार से हम सबका सपना पूरा होगा।
10: सपने में फिलहाल मानो सुरंग हो गई है मंत्री जी, 2 गड्ढे तमाम सवाल पूछने लगे क्योंकि नितिन गडकरी का मंत्रालय सबसे ज्यादा दावा करता है अब ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, लेकिन जिस हाईवे से 2 से 2.5 घंटे अब दिल्ली में देहरादून पहुंचने में लगते हैं वहां बारिश में ऐसा गड्ढा हुआ कि गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े होने लगे और उनको सीधा कराने में कई घंटे।
9: गिरते गिरते बची हैं 2 गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं भाई, मैं भी आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूं कि मेरी गाड़ी के दोनों अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं, बस के दोनों स्टेपनियां चेंज हो रही हैं गाड़ी की। ये देखो भाई अलॉय व्हील तो लगकर टेढ़ा हो चुका है इसका।
10: 12,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे अगर पहली बारिश में यू सरेंडर कर देगा और अलॉय व्हील टेढ़ा कर देगा तो जनता की कमर का हाल सोचिए।
12: भाजी कल बरसात हुई थी, बरसात में जो है इसमें 2-4 गड्ढे बन गए थे, ये सब जो है फिर इन्होंने बना दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, सही तरीके से वैसे कुछ भी नहीं है।
10: जनता खुद ही यहाँ अपने नुकसान के बाद लोगों को जागरूक करती दिखी, वो अलग बात है। NHAI वाले दावा करने लगे कि वो तो खुद ही पेट्रोलिंग करके इस गड्ढे को खोज लिए थे। जहाँ गड्ढा ढाक मूंद कर फिलहाल रफा दफा मामला किया गया है।
13: दिल्ली हाईवे की जो जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे उसमें, और आज हम उसी लोकेशन पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो लोकेशन दिखाए, और कल NHAI के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने मौके पर आके ये गड्ढे भर तो दिए हैं, लेकिन ये गड्ढे अभी क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ पर जो गाड़ी आ रही है वो धड़ाम से बहुत आवाज कर रही है।
10: 2 महीने के भीतर शामली के पास एक्सप्रेसवे के गड्ढा होने के बाद NHAI का बयान आया है। NHAI कहता है कि सड़क की सतह धंसने की घटना बारिश के बाद पानी जमा होने और उस जगह पर परमानेंट क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम चालू करने में आ रही दिक्कतों के कारण हुई है। NHAI का दावा है कि इस जगह पर बारिश के पानी को सड़क के दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए बनाए गए बैलेंसिंग कलवर्ट को चालू नहीं किया जा सका, क्योंकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। बैलेंसिंग कलवर्ट का मतलब होता है एक्सप्रेसवे के नीचे बनी एक विशेष प्रकार की पुलिया, जिसका मकसद सड़क के दोनों ओर जमा हुए बारिश के पानी के स्तर को संभालना होता है, ताकि पानी के दबाव से सड़क को नुकसान न पहुंचे। मतलब NHAI की माने तो लोगों से जमीन लेकर उन्होंने एक्सप्रेसवे तो बना लिया, लेकिन पानी निकालने के लिए जो पुलिया बनानी थी वो जनता ने बनाने नहीं। तो फिर क्या ऐसे ही गड्ढा करने के लिए, हादसों को न्योता देने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जहां जनता पर ही दोष मढ़कर अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है।
5: तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
14: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
17: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: यूपी के कौशाम्बी में LPG टैंकर हादसे का अब CCTV फुटेज सामने आया है। यूपी के कौशाम्बी में सड़क पर दौड़ते LPG गैस टैंकर में अचानक धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। हादसा 26 जून को हुआ था, जिसका CCTV फुटेज अब सामने आया है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि टैंकर डिवाइडर से टकराता है, अचानक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ गैस ही गैस फैल जाती है, और इसके बाद भयानक आग की लपटें नजर आती हैं। यह हादसा टोल नाके के पास हुआ था। मरने वालों की संख्या 4 हो गई, जबकि 2 टोल कर्मचारी अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: इफ यू लव पॉडकास्ट्स यू नेवर वांट टू बी विदाउट योर फेवरेट शोज दैट्स वेयर ट्यून इन कम्स इन। हियर्स अ क्विक टिप, यू कैन लिसन एनीटाइम इवन विदाउट द इंटरनेट। Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट पर अभी और कसेगा शिकंजा। जांच में एसआईटी को मिले अहम साक्ष्य। जांच के घेरे में आ सकते हैं ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी। ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट की जांच कराएगी एसआईटी। ये 8 आरोपी हैं जिन्हें चढ़ावा चोरी केस में पकड़ा गया है, लेकिन एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बड़ी साजिश की तस्वीर सामने आ रही है। यही वजह है कि एसआईटी जांच का समय 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर मिली खामियों को देखते हुए एसआईटी ने पिछले 5 साल में मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराए गए ऑडिट की जांच का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में एसआईटी को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का शक हो रहा है। माना जा रहा है कि इससे अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत दान किए गए जेवरात का ब्यौरा देने में होगी, क्योंकि ट्रस्ट ने इसका ऑडिट ही नहीं कराया है। वहीं निर्माण कार्य में भी कमीशन के आरोप हैं। इसमें अनिल मिश्रा पर शिकंजा कस सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के कौशलपुरी स्थित श्याम साधनालय योग केंद्र में उसके कमरे से राम राज्य कोष लिखा एक संदूक मिला है। उस पर QR कोड भी लगा है। आज तक ने कल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी।
1: योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहां हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहां पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहां पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहां पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहां पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: पुलिस और जांच एजेंसी अब ये पता लगा रही हैं कि संदूक में जमा होने वाला धन कहां से आता था और उसका राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से कोई संबंध है या नहीं। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि संदूक से कोई नकदी बरामद हुई है या नहीं। पुलिस QR कोड से लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कल आरोपी लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के पैतृक घरों पर छापा मारा। करीब 3 घंटे चली छानबीन के दौरान परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए। सूत्रों का कहना है कि दोनों के घरों से नकदी, जेवर और संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। पुलिस दोनों के माता पिता को साथ लेकर गई है। सूत्रों के मुताबिक लवकुश और करुणेश ने अहम जानकारियां दी थी। बताया था कि चोरी की रकम उनके घरों में रखी है, इसलिए पुलिस ने कल उनके घरों पर एक साथ छापा मारा। लवकुश का घर अयोध्या के रुदौली और करुणेश का घर खंडासा में है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर कसा शिकंजा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से 8 घंटे तक पूछताछ। पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला, हो सकती है बड़ी छापेमारी।
1: बीजेपी की नई टीम पर नितिन नवीन की अमित शाह के साथ मैराथन बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल और संगठन में बदलाव पर 3 घंटे तक चर्चा। कल से बीजेपी अध्यक्ष का यूपी दौरा।
0: मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल। 3 ने 5 मौत। खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान। बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल।
1: यूपी के कौशाम्बी में सामने आया दिल दहला देने वाले मंजर का वीडियो। डिवाइडर से एलपीजी गैस टैंकर के टकराने के बाद उठी भयानक लपटें। 26 जून को हुए हादसे में 4 लोगों की मौत।
0: जम्मू कश्मीर, बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बढ़ा पहला जत्था। पूरे रूट पर आज तक की मेगा कवरेज।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, लवकुश के घर से 14 लाख से ज्यादा नकद और अहम दस्तावेज बरामद। आशिक से बोले लवकुश के नाना नाती निर्दोष है, कैश बरामदगी और पुलिस कार्रवाई पर परिवार ने उठाए सवाल। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस एक्शन तेज, आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की कस्टडी, रिमांड में होगी पूछताछ। लवकुश का निर्माणाधीन मकान निकला अवैध, बिना नक्शा पास कराए निर्माण, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आसार। चढ़ावा चोरी की जांच अब जमीन सौदों तक पहुंची, एसआईटी ने ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज, गवाहों और संपत्तियों की जांच शुरू की। राम मंदिर दान चोरी केस में बड़ा एक्शन, एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से घंटों की पूछताछ की। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की लंबी जांच, ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से 8 घंटे तक चली एसआईटी की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट से ऑडिट का पूरा रिकॉर्ड मांगा, सभी दस्तावेजों की छानबीन के बाद वित्तीय गड़बड़ियों की साफ होने की तस्वीर। पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला के गांव पहुंची, परिजनों से पूछताछ कर कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। एसआईटी और पुलिस पूछताछ के जवाबों से असंतुष्ट, जांच में 3 से 4 लोगों को बनाया गया आरोपी, बैंक कर्मियों पर भी शिकंजा कसने की है तैयारी।
1: दस जुलाई को करूर दौरे पर जाएंगे सीएम विजय, भगदड़ पीड़ित परिवारों से दूसरी बार करेंगे मुलाकात। जमशेदपुर बंद का बीजेपी ने किया आह्वान, हिमांशु सिंह हत्याकांड पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना। जमशेदपुर हिंसा के बाद आईपीएस अधिकारियों का तबादला, बीजेपी ने मूर्खदर्शक रहे पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की उठाई मांग। बिहार के भ्रष्टाचारी और अपराधियों को सम्राट चौधरी की चेतावनी, शॉर्टकट से कमाई करने वालों के लिए बेऊर जेल तय। 2029 की तैयारी में जुटी बीजेपी, जेन जी पर खास फोकस, युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए तेज हुआ राष्ट्रवादी आउटरीच अभियान। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कई अहम बैठकों में होंगे शामिल। लखनऊ पहुंचकर हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत इसी से होगी। सांसदों और विधायकों के साथ 4 जुलाई को नितिन नवीन की अहम बैठक होगी। संगठन के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे नितिन नवीन, शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार एलडी और बिजली विभाग को फटकार, 4 अगस्त से होगी अगली सुनवाई। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन का बड़ा दावा, कहा अगले हफ्ते न्यूजीलैंड का पहला आधिकारिक दौरा करेंगे पीएम मोदी।
0: पीएम मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में उड़ान स्कीम को 10 साल बढ़ाने का करेंगे ऐलान, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है मकसद। 2027 यूपी चुनाव की रेस में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, पोस्ट कर बदले सियासी समीकरणों का दावा। ओवैसी ने कहा यूपी में बदल देंगे पूरा गेम, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान पर अभी सस्पेंस बरकरार। टीएमसी में पार्टी पर दावे की जंग तेज, दोनों गुटों ने असली संगठन होने का किया दावा। टीएमसी में बगावत पर चुनाव आयोग सख्त, ममता बैनर्जी और ऋतव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश। मुंबई के साकी नाका में सिस्टम की लापरवाही से खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के शख्स की मौत, मेयर ऋतु तावड़े ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। मेयर ऋतु तावड़े का मृतक के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान, मामले में बीएमसी के 4 अधिकारी किए गए सस्पेंड। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई मैनहोल हादसे पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मांगी रिपोर्ट, लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। बीजेपी विधायक अमित साटम की ठेकेदार पर एफआईआर और जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले सिर्फ निलंबन नहीं, दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो।
1: चंबा में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा, तेज बहाव के कारण टूटा अस्थायी पुल। पुल टूटने से नदी में फंसे 25 लोग, रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। किन्नौर में भारी बारिश के चलते सड़क पर आया मलबा, मलबे की चपेट में आई 2 कारें। पहाड़ों से गिरे मलबे में नेशनल हाईवे से आवाजाही ठप, मलबा ठहरने के बाद NH5 पर यातायात शुरू। मुंबई में मॉनसून की दस्तक, बारिश के चलते अंधेरी सबवे में भारी जलभराव, जलभराव के चलते लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना, पानी के बीच आते जाते नजर आ रहे हैं लोग। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भरी पवई झील, झील के किनारे मछली पकड़ते नजर आए लोग। गुजरात के बोटाद में जोरदार बारिश, मॉनसून की दस्तक के साथ गिरा तापमान। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में बाइक सवार समेत 5 लोग गिरे, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा।
0: केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बारिश के बीच भी भक्तों का जोश बरकरार। अब तक 13,80,000 से अधिक यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। बागेश्वर में भी राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित। मॉनसून आपदाओं से निपटने की तैयारी को परखा गया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थयात्रियों से सहयोग की अपील। पहाड़ों पर मॉनसून ने दी दस्तक। बारिश के साथ ही बद्रीनाथ का पूरा माहौल हुआ ठंडा और सुहाना। बारिश के बाद प्रशासन की यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की सलाह। मौसम विभाग ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। नागपुर में मामलू टक्कर के बाद भयानक मारपीट। मामूली टक्कर के बाद भयानक मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मामूली कट को लेकर पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने किया हमला। कार में तोड़फोड़ कर पुलिसकर्मी को पीटा। दरभंगा में बंद मकान से फंदे से लटका मिला व्यक्ति का शव। 2 दिन से था लापता। पुलिस ने शुरू की जांच। कल्याण से लापता 4 नाबालिग छात्राएं। राजस्थान के अजमेर से सुरक्षित बरामद। बहत्तर घंटे में पुलिस की बड़ी सफलता। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने 4 छात्राओं को राजस्थान से किया रेस्क्यू।
1: कौशाम्बी में दौड़ते एलपीजी टैंकर में भीषण धमाका। डिवाइडर से टकराते हुए ब्लास्ट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कौशाम्बी टैंकर ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा 4 पहुंचा। 2 टोल कर्मचारी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। टोल प्लाजा के पास हुआ भीषण हादसा। 26 जून को कोखराज टोल प्लाजा के पास हुआ था हादसा। आग के गोले में तब्दील हो गया था पूरा इलाका। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पार्किंग विवाद में बुजुर्गार की बेरहमी से पिटाई। 2 आरोपियों पर मामला दर्ज। गुरुग्राम के स्कूल में मामूली बात को लेकर छात्रों में विवाद। इवेंट के दौरान जमकर चले लात घूंसे। एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां। गुजरात के वलसाड में शॉर्ट सर्किट से एक अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। कोई हताहत नहीं। जयपुर में 3 मंजिला इमारत में गद्दे की दुकान में लगी भयंकर आग। बेसमेंट में रह रहे परिवार की दमकल की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। बागपत में खेत से मिट्टी उठाने पर 2 पक्षों में विवाद। पहले डंपर से कार को रौंदा, फिर की ताबड़तोड़ फायरिंग। युवक की हालत गंभीर। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे की भयावह तस्वीर आई सामने। देवरिया में हाईवे पर सड़क पार कर रहे बच्चों को बुलेरो ने कुचला। सड़क की दूसरी तरफ पिता की दुकान पर जा रहा था मासूम।
0: फरीदाबाद में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर झड़प। दबंगों ने युवक पर चढ़ाई कार, कुचलने की कोशिश का वीडियो आया सामने। श्रीगंगानगर में आवारा सांड का आतंक। ट्यूशन से लौट रही 5 साल की बच्ची समेत परिवार पर किया हमला, 3 घायल। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 250 करोड़ से अधिक की ठगी में 119 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार। वाराणसी में फर्जी दरोगा गिरफ्तार। 12वीं पास युवक पुलिस नगर निगम कचहरी में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था लाखों की ठगी। बांका में मिनी ट्रैक्टर की चपेट में आए 10 साल के बच्चे की मौत, 1 घायल, चालक फरार। अलीगढ़ में टोपी खींचने को लेकर विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े। दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से किया हमला। मथुरा में दूसरी मंजिल से गिरी बच्ची की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के झांसी में मकान की खुदाई के मलबे में चांदी के पुराने सिक्के मिलने की अफवाह। इलाके में मची भगदड़। पुलिस ने भीड़ को किया नियंत्रित। केरल के कासरगोड में प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर ने युवक को बेरहमी से पीटा। एक स्कूल परिसर में पुलिस ने की बर्बरता, 3 गिरफ्तार। उज्जैन में महिला की को दी गई तालिबानी सजा। बाल काटे और जूतों की माला पहनाकर गांव में निकाला जुलूस। 11 आरोपियों पर केस दर्ज।
1: बाबा बोले के जयकारों के साथ शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। पहलगाम और बालटाल से रवाना हुए तीर्थयात्री आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप से भारी तादाद में जुटे शिव भक्त। करीब 2,500 की संख्या में दोनों मार्गों से रवाना हुए तीर्थयात्री। बालटाल रूट से करीब 14 किलोमीटर की तीर्थयात्रा। पहलगाम के रास्ते 48 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तीर्थयात्री। देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है अमरनाथ यात्रा। हिमालय पर मौजूद पवित्र अमरनाथ गुफा में होते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। 57 दिन तक चलेगी ये यात्रा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। अमरनाथ यात्रा पर पीएम मोदी का संदेश भक्तों के लिए साझा किया। 5 संकल्प वाला विशेष पत्र। यात्रा को सुरक्षित, मंगलमय और सफल बनाने की अपील। अमरनाथ यात्रा रूट पर मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के सभी इंतजाम। पहाड़ी इलाकों में लगाई गई माउंटेन रेस्क्यू। लैंडस्लाइड की समस्या से निपटने के लिए सभी औजारों के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी से लैस हैं ये टीमें। अमरनाथ तीर्थ यात्रा की सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 670 कंपनियों के साथ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कमांडो की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम।
0: ईरान ने आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार से पहले हमले पर कड़े पलटवार की दी चेतावनी, कहा अमेरिका और इसराइल की तरफ से न हो हमले। 4 जुलाई से शुरू होगा पूर्व सुप्रीम नेता का अंतिम संस्कार जुलूस, 9 जुलाई को मशहद में दफनाए जाएंगे खामनेई। बहरीन में रिहायशी इलाकों और बंदरगाहों पर हमलों को लेकर यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। हॉर्मुज में मालवाहक जहाजों पर हमले के मुद्दे पर भी यूएन में हुई अहम चर्चा, क्षेत्र में तनाव बढ़ा। गुरुवार को इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों के 1000 दिन पूरे होने पर रैली का आयोजन, तेल अवीव में हॉस्टेज स्क्वायर पर जुटे हजारों लोग। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में बनाई शानदार जगह। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कमाल, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर अगले दौर में बनाई अपनी जगह। वहीं ब्राजील ने जापान के खिलाफ रोमांचक 2-1 जीत दर्ज कर नॉकआउट में दमदार प्रदर्शन किया। आज अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्दे, कोलंबिया वर्सेस घाना और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस मिस्र के नॉकआउट मुकाबले जारी। नॉकआउट चरण में हर मैच बना करो या मरो, टीमें राउंड ऑफ 16 के टिकट के लिए भिड़ी। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई आलिया भट्ट की बहुचर्चित फिल्म अल्फा, एक्शन से भरपूर इस फिल्म में फैंस को है बड़ी उम्मीद। 5 जुलाई को आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी के साथ रचाएंगे वो शादी, सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त होंगे शामिल। लाइमलाइट में शादी को पूरी तरह से रखा गया है दूर। रजनीकांत के फैंस का इंतजार खत्म, 54 सेकंड का जेलर 2 का ट्रेलर रिलीज। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का धांसू कलेक्शन 7 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 137 करोड़ के पार। सड़क आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और जख्म जैसी फिल्मों के निर्देशक महेश भट्ट ने निर्देशन की दुनिया को कहा अलविदा। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में किया खुलासा।

0: और अब बात बाबा बर्फानी के दर्शन की, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। बालटाल और पहलगाम से ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए खुल चुकी है। पहला जत्था रवाना हो चुका है और आज से अगले 57 दिन तक हिमालय की ऊंची वादियों में ये दुर्गम रास्ता ये तमाम श्रद्धालु तय करेंगे। बाबा बर्फानी के जयकारे इस रास्ते में गूंजेंगे। 28 अगस्त तक 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पवित्र गुफा तक पहुंचने की उम्मीद है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। जल थल और आसमान हर जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है।
1: और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बालटाल से अशरफ वानी। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं कैसी चल रही है ये यात्रा। अशरफ, बालटाल का रूट खुल चुका है, पहला जत्था कहां तक पहुंचा और कैसी रही है यात्रा?
2: अंजलि, दरअसल पहले दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई। पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है। ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब जो कि नियम होते हैं, दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं। सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहाँ से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहाँ से लौट रहा है। काफ़ी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुँचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है। कल सुबह दोबारा शुरू होगी, लेकिन काफ़ी नाराजगी है इन सारे श्रद्धालुओं में जो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आपका नाम क्या है, क्यों यहाँ पर?
3: मेरा नाम ऋषभ जैन है और हम यात्रा करने के लिए आए हैं। ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज़्यादा रुकना पड़ेगा और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पाल की कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
4: मतलब हम सुबह मैं अशोक गहलोत मध्य प्रदेश से आया हूँ, हम सुबह 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए। जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है कि क्यों रोका गया।
5: प्रशासन कुछ नहीं कर रहे इस बारे में, कुछ नहीं
6: पैसा का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने पैसे का गेट बंद होगा, आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को। तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
2: जाहिर है जब भीड़ ज्यादा होती है।
0: लौट रही हैं आपके पास बालटाल के डोमेल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्री अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा के लिए रवाना हो चुका है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते परेशानियां भी वहां पर हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश काफी हाई रहा है। देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट।
7: सुबह से ही जो है मौसम काफ़ी ख़राब है, रात 3 बजे से जब लोग जहां पर यहां बालटाल से आगे जो डोमेल पड़ता है, यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां से ही RFID चेक करके जो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं उनको यहां से छोड़ा जाता। लेकिन आप पहाड़ों की तरफ देखिए तस्वीर किस तरीके का है कि मौसम जो है रात से ही खराब है, रुक रुक करके बारिश हो रही है। इस वजह से अभी बालटाल रूट पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं उनको बीच बीच में रोका जा रहा है और उनको आगे की तरफ रवाना करने से ये कहा जा रहा है कि मौसम खराबी होने की वजह से अभी लोग अपने कैंप में रहें। और इसके साथ ही इस तरीके का अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जब मौसम खुलेगा तो उसके बाद लोगों को भेजा जाएगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये तमाम लोग जो हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये आगे की तरफ जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये डोमेल जो चेकिंग पॉइंट है, फर्स्ट चेक पॉइंट जो है जहाँ से ऊपर बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ भेजा जाता है, तो इस जगह पर काफ़ी भीड़ इस वक्त मौजूद है और यही वजह है कि लोग जो हैं यहाँ पर अभी रुके हुए हैं। मैं आगे की तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप देखिए कि ये आगे जो सामने की तरफ रास्ता जाता है, इसमें तस्वीरें देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ऊपर पहाड़ तक जो रास्ता है यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो मौजूद हैं और धीरे धीरे करके इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो संख्या बताई जा रही शुरुआत में जो बालटाल के लिए करीब 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि बारिश होने की वजह से ज्यादा लोगों को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। भीड़ करीब 200 से 300 मीटर के आगे तक है जहाँ पर चेक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ तक लोगों को रोका गया है। सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों में मौसम कभी भी खराब हो जाता है और खासतौर पर बाबा बर्फानी का जो रास्ता है, जो रूट है, वो करीब 13 से 14 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से डोमेल से जो शुरुआत होती है तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है, बीच बीच में बारिश होती है और उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन श्रद्धा और अगर बात करें कि बाबा बर्फानी के जो लोग दर्शन करने के लिए आए हैं वो लोग जयकारा यहाँ पर लगा रहे हैं।
1: तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। Akajay, the number one Korean skincare brand.
9: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
10: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
9: Enjoy non-stop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
11: Williams keeps it. First down. Touchdown.
9: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
8: Presented by Patanjali Gan.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: इन एसोसिएशन विद
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
7: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
8: अल्फा,
9: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
10: हाँ कहा था, लेकिन ये तय कैसे होता है?
9: फ्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाएंगे।
11: पहला भारतीय चैनल,
9: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुंचते हैं।
12: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
13: जगह जगह लक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
14: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
9: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
14: आज तक की खबर का असर हुआ है,
9: हर दिन कमाया जाता है।
10: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
9: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
10: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
15: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।
16: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: निकला, हो सकती है बड़ी छापेमारी। बीजेपी की नई टीम पर नितिन नवीन की अमित शाह के साथ मैराथन बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल और संगठन में बदलाव पर 3 घंटे तक चर्चा। कल से बीजेपी अध्यक्ष का यूपी दौरा।
1: मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई के ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल। 3 दिन में 5 मौतें। खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान। बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल।
0: यूपी के कौशाम्बी में सामने आए दिल दहला देने वाले मंजर का वीडियो। डिवाइडर से एलपीजी गैस टैंकर के टकराने के बाद उठी भयानक लपटें। 26 जून को हुए हादसे में 4 लोगों की मौत।
1: जम्मू कश्मीर बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बढ़ा पहला जत्था। पूरे रूट पर आज तक की मेगा कवरेज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह का।

0: अयोध्या के राम मंदिर में चुनाव में सेन मारी की जैसे जैसे जांच हो रही है, नित नए खुलासे हो रहे, पूरा प्रकरण बेहद पेचीदा है। हर दिन इसकी जांच की परतें खुलती हैं और दायरा बढ़ जाता है। पता चल रहा है कि कैसे आरोपियों ने हाल ही के दिन में अकूत संपत्ति बनाई। अब एसआईटी की टीम इसकी जांच कर रही है। इस मामले में एक आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध बताते हुए नोटिस जारी कर दिया।
1: एसआईटी की जांच सीधे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और उनके बड़े पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तक पहुंच गई है। एसआईटी टीम ने ट्रस्ट के तीनों दिग्गजों से करीब 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की। कुल 8 घंटे तफ्तीश चली। चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और कई अहम सवाल भी पूछे। सूत्रों के मुताबिक कुछ जवाबों से जांच टीम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद आने वाले दिनों में जांच और तेज हो सकती है, इसके संकेत हैं।
0: पुलिस की आपराधिक जांच समानांतर रूप से जारी है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे कथित तौर पर छिपाई गई नकदी और सोने चांदी के गहनों की बरामदगी की कोशिश की जा रही। सूत्रों का दावा है कि आज उसकी निशानदेही पर बड़ी रिकवरी हो सकती है।
1: और अब तक की जांच से पता चल रहा है कि चंदा चोरी में सबसे आगे अविनाश शुक्ला था। बताया जाता है कि चढ़ावा चोरी केस में अविनाश शुक्ला सबसे बड़ा लाभार्थी है, यानी उसे फायदा हुआ है। आरोप यह है कि उसके पास चोरी की मोटी रकम है जो उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ स्थित अपने घर में छिपा रखी है। अब तक जितनी रकम बरामद हुई है उसमें सबसे ज्यादा अविनाश के पास से ही मिली है।

0: राम मंदिर में लूटकांड का सबसे बड़ा किरदार कौन? पुलिस के हिट लिस्ट में पहले नंबर पर किसका नाम? आज तक पर लुटेरा नंबर वन का बेनकाब पूरा पर्दाफाश। देश को हिला देने वाले लूटकांड में होने वाला हर खुलासा पहले से ज्यादा सनसनीखेज और खलबली मचा देने वाला साबित हो रहा है। ये पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे तक चढ़ावे की ढेर पर सबने हाथ मारा, जिसे जहां जो और जितना हाथ लगा हथियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोई लूटता रहा, खजाना खाली करता रहा, तो कोई आंखें मूंदे खामोशी से देखता रहा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा अविनाश शुक्ला। वही अविनाश शुक्ला जिसके भाई का नोटों की गड्डियों के साथ वायरल वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। वही अविनाश शुक्ला जिसका योग सेंटर से दान पात्र वाले रहस्यमय बक्से की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला ने मोटी रकम ठिकाने लगाई है। अंदेशा है कि अविनाश शुक्ला सोने चांदी के जेवर भी ठिकाने लगा चुका है।
1: अविनाश शुक्ला से की गई पूछताछ और जुटाई गई जानकारी के आधार पर उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अविनाश शुक्ला से न सिर्फ पूछताछ की जाएगी बल्कि उससे एक बड़ी बरामदगी की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जिसके पास से पुलिस को सबसे बड़ी बरामदगी 20,39,000 रुपए और डॉलर सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। अब इससे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर कुछ और चोरी से जुड़े तमाम राज पुलिस खंगालने में जुटी है।
0: सवाल है कि अविनाश शुक्ला के घर से मिली 2,39,000 की रकम उसकी मोटी कमाई का ट्रेलर तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 लाख सिर्फ झांकी है, उसकी पूरी कमाई का पर्दाफाश होना भी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अविनाश शुक्ला ने और रकम होने की बात मानी है। ये भी बताया है कि उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ के घर में छिपा रखा है। खबर है कि पुलिस पड़ताल करने उसे अयोध्या और प्रतापगढ़ ला सकती है। सोशल मीडिया पर अविनाश के भाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो नोटों की गड्डियां लेकर रील बनाता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले वो अयोध्या आया था, वो अविनाश के साथ ही रहता था। इसके बाद वो प्रतापगढ़ चला गया। अब उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या, आज तक।
2: समर्थ श्रीवास्तव से सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, क्योंकि आप शुरुआत से इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, कौन कौन से अब नए किरदार सामने आ रहे हैं? क्योंकि 8 की तो गिरफ्तारी हो गई, उसके अलावा भी कुछ और नाम होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के नाम थे जिनको अज्ञात तौर पर दर्ज किया गया था, नाम नहीं सामने आ रहे थे, कुछ ऐसे और नाम अब मिले हैं सामने?
3: नेहा, देखिए नामों की अगर आप बात करें तो कुल 8 इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, वो नाम तो एकदम साफ है और वहां लगातार पुलिस रेड भी कर रही है, चाहे लवकुश का घर हो, अविनाश का हो, एक जगह तो एडीए ने नोटिस तक दे दिया है, बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। 3 बड़े प्रमुख नाम, चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा, कल 4 घंटे एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है, कई सवालों पर फंसे हैं, कई सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। वो दौर भी अयोध्या ने देखा है जब परिंदा भी पर नहीं मारता था परिसर में इन तीनों की हामी के बिना, लेकिन आज वो दौर बदला है और आज एसआईटी के सामने बैठकर इन्हीं की पूछताछ हो रही है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन हैं, वो श्री रामचंद्र की आस्था से जुड़े हैं, जिन भक्तों ने वो आस्था के तहत चंदा चढ़ाया उस चोरी की बात यहां हो रही है। पुलिस लाइन में अविनाश की पूछताछ चल रही है, लवकुश के घर वाले कह रहे हैं वो बेकसूर है। इस बीच में जो पुलिस की जांच है उसका दायरा बढ़ाया, मंदिर परिसर के कई गार्ड्स हैं, कई और कर्मचारी हैं जिनसे पूछताछ कल से लेकर आज तक लगातार पुलिसकर्मी कर रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर डोनेशन यानी कि जहां पर था, जहां काउंटिंग होती थी, वहां पर कैसे कोई भी आता जाता था, कैसे कई जगह कई बार कैमरे काम नहीं कर रहे थे और कैसे कोई भी मोबाइल फोन ले जाकर वहां वीडियोस बना रहा था। ये एक बहुत सघन चीज है। ट्रस्ट भी हालांकि हरकत में आया है, ट्रस्ट की भी कोशिश है कि पहले की जो प्रणाली है उसमें बदलाव किया जाए, उसके तहत नए कर्मचारियों की भर्ती हो या सिक्योरिटी को लेकर वॉकी टॉकीज को बढ़ावा देना हो, मोबाइल फोन की आने वाले वक्त में एंट्री बंद हो सकती है, यानी कि जो आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी हैं उनके भी मोबाइल फोन अंदर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इस पर संशय बना हुआ है। क्योंकि बड़ी बात यह है, कई जो वीडियोस अंदर से लीक हुए, कई जो बातचीत हुई उसका जरिया मोबाइल फोन बने थे, तो वो भी एक तरह से रडार में है और उसको लेकर सूत्रों के मुताबिक सरकार को भी एक पत्र लिखा गया है जिससे जानकारी ये कहा गया कि थोड़ा इसमें सहयोग किया जाए और एक नई तरीके से प्रणाली मंदिर परिसर में भी लागू की जाए। इस बीच में जो आज है, आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि अविनाश को प्रतापगढ़ भी पुलिस ले जा सकती है, एसआईटी की टीम ले जा सकती है और यहाँ के भी कुछ ठिकाने हैं, क्योंकि अविनाश ने पूरे पूछताछ में ये कबूला है, ये बताया है कि कई स्थान है जहां से कैश रिकवरी हो सकती है, किस तरीके से पूरा मोडस ऑपरेंडी जिसके तहत ये पूरी चढ़ावा चोरी हो रही थी। जी
4: जी समर्थ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चढ़ावा चोरी के इस मामले के साथ ही पुलिस और एसआईटी ने जमीन की खरीद में घोटाले की भी जांच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद एसआईटी ने तमाम आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है।
2: और खबर यह भी है कि एसआईटी को आरोपी लवकुश मिश्रा की जायदाद का पता चला, जांच में उसका एक मकान अवैध पाया गया, जिस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है।

0: राम मंदिर में लूट से बनाई अकूत संपत्ति, चढ़ावे की चोरी से धन्ना सेठ बने आरोपी, चढ़ावा चोरी की आंच, अब जमीन घोटाले की जांच। जी हां, चढ़ावा चोरी की जांच की आंच जमीन घोटाले तक पहुंच गई है। खबर है कि गुरुवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी ने ट्रस्ट की खरीदी जमीन की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने रजिस्टर्ड दस्तावेजों के गवाहों को बुलाया था। जो भी गवाह आए उनके बयान दर्ज किए और साथ ही पूछताछ भी की। ये जांच आज भी जारी रहेगी। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने एसआईटी से मुलाकात की थी और एसआईटी को सबूत सौंपे थे।
1: एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है।
2: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रॉपर्टी संबंधित शिकायत एसआईटी की टीम को दस्तावेजों के साथ सौंपी है। दूसरे चरण में इस मामले की जांच होनी है। हालांकि साल 2020-21 में जब जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उस वक्त प्रदेश सरकार ने राधेश्याम मिश्रा कमेटी का गठन किया था, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसको लेकर आज तक राजनीतिक विवाद उत्तर प्रदेश में जारी है। अब जब दूसरी बार इस मामले को लेकर जांच शुरू होने वाली है, तो ऐसे में लीपापोती की संभावना नहीं होगी।
0: तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आएगा कि ट्रस्ट ने औने पौने दाम में मंदिर के लिए जमीन क्यों खरीदी, क्या इसकी वाकई जरूरत थी या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी। जांच के साथ ही जमीन जायदाद का पहलू भी गंभीर होता जा रहा है। जांच एजेंसी को आरोपियों की अकूत संपत्ति का भी पता चल रहा है और इसकी भी छानबीन की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सभी आरोपियों की संपत्तियां खंगाल रही है। अयोध्या, लखनऊ, नोएडा के अलावा दूसरे राज्यों में भी इनकी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। पुलिस ये पता कर रही है कि किसकी कितनी संपत्ति है। पुलिस संपत्तियों की रजिस्ट्री की कॉपियां भी निकाल रही है। आपको हमने ये भी बताया था कि एसआईटी 5 सालों के ट्रस्ट के ऑडिट रिपोर्ट की भी जाँच करेगी, ताकि आमदनी और खर्च की तह तक जाकर पड़ताल हो सके।
3: एसआईटी 5 साल की खातों की ऑडिट करना चाहता है, ऑडिट की जांच करना चाहता है, सर्जिकल, क्लिनिकल, जो कुछ भी, और इसके अलावा भी जो कुछ भी जांच के सत्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी जांचना जरूरी हो एसआईटी को जांचना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं पुलिस की जांच में, एसआईटी की जांच में वो जो जो कुछ उचित समझते हैं उसकी जांच करें, हम स्वागत करेंगे।
0: अब तक की जांच में आरोपियों की जायदाद का एक एक कर खुलासा हो रहा है। आरोपी लवकुश मिश्रा का निर्माणाधीन मकान भी अवैध निकला है। लवकुश ने इसका नक्शा पास कराए बिना मकान का निर्माण करा लिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण की जांच में ये सच सामने आया है, जिसके बाद इस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लवकुश के परिवार ने आज तक से बातचीत कर एक बड़ा दावा किया। लवकुश के नाना ने कहा कि भारी मात्रा में कैश मिलने का दावा गलत है। उन्होंने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड दे कि क्या मिला है, कहां से मिला है, कंडों के ढेर में आकर ढूंढा, कुछ नहीं मिला। इतने रुपए रखने के घर में अंदर जगह भी नहीं है, हमें नहीं पता कितना कैश कहां से मिला। पुलिस परसों आई थी तलाशी के लिए, कुछ पुलिसकर्मी घर के अंदर आए थे, अलमारी से भी कुछ कागज ले गए।
5: भाई साहब क्या है बताइए ना, बेटे को लेकर क्या है, पुलिस बहुत कुछ आरोप लगा रही है, कह रही है काफी कुछ इसी घर के आसपास से मिला है।
6: जो मिला हो, जो ले गया हो जाने, जहां से या हम लोगों को सबूत दे या कोई रिकॉर्ड दे, उसकी वजह से आप कहते हैं ले गए हैं, तो आप हमको रिपोर्ट को लिखित दिए हैं, कोई ग्राम प्रधान को बुलाकर उनके सामने आपने कहा है कि ये इनके घर से निकल रहा है?
5: पुलिस ने असल में ना FIR में ये सब चीजें लिखी हुई हैं।
6: FIR कुछ भी हम नहीं है, कुछ भी आप लिखिए।
5: तो आप नहीं थे जब ये हुआ?
6: हम यात्रा में थे, उस समय यहाँ नहीं थे।
5: बताया गया सामने जो कंडे रखे हैं वहां से कैश मिला
6: 10 लाख रुपए, उनको निकाल लिए जाएंगे, घर के अंदर जगह है नहीं रखने की।
5: एक बार दिखाएंगे ना वहां पे क्या निकल सकते हैं कैश?
6: बिल्कुल निकाल लीजिए, का निकालो, गिन लीजिए।
5: आपको लगता है कि वहीं से मिला है?
6: हमको क्या लगता है उसमें, हम जब जानते ही नहीं है, हम जब जानते नहीं कैश मिला कहाँ से है वो।
5: पुलिस ये भी कह रही है कि घर जो है आपका ना वहाँ अंदर कुछ अलमारियां हैं, वहाँ से रजिस्ट्री के कागज भी मिले हैं।
6: रजिस्ट्री कागज तो परसों ले गए हैं। परसों कौन सा धन मिल गया, किसने कहाँ तलाशी हुई, कौन प्रधान था, कौन कहाँ यहाँ के कौन अधिकारी थे, किसने ले गए? ले गए तो ले गए, उसके हमको पता है कि हमको नहीं पता है कि वो कहाँ से कै पैसे कहाँ से ले गए, कहाँ रखा हुआ पैसा, ऐसे मतलब कौन रोड पे बिछाया हुआ पैसा।
5: बता रहे हैं कि विदेशी डॉलर भी मिला है।
6: विदेशी डॉलर मिला हो लेगी वही है।
5: हाँ।
6: हमारे यहाँ न क्यों विदेश में है, तो विदेश हमारे यहाँ कोई परिवार का नहीं है,
5: तो फिर डॉलर कैसे आया,
6: कहाँ से आया वो तो हमको बतावे कि काम कहाँ से मिला, कहाँ है डॉलर।
5: अच्छा लवकुश के साथ जो भी हुआ है, हाँ। आप क्या लगता है सही है गलत?
6: हमको कुछ नहीं, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं।
5: मुझे बताइए ना, चंपत राय, अनिल मिश्रा जो और बड़े नाम आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा
6: है? ये हमको कुछ नहीं मालूम, वे बचाएं या छोड़ावें, जो सरकार कर रही है, जो टीम बैठी हुई है, उसको वो जिम्मेदार है। हमसे हम लोगों से क्या लेना देना उसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं?
5: यहाँ आई तो आप लोगों से क्या कहा?
6: हम लोगों से कुछ नहीं कहा,
5: सीधे खंगालने लगे।
6: हाँ,
5: कहाँ कहाँ खंगाला?
6: यहीं से यही देख कर सब चले गए।
5: अंदर घर के आए होंगे?
6: अंदर एक सिपाही गया था, लेकिन हमारे घर में कोई चीज बरामद नहीं हुई।
5: तो ये किस बिना पर पुलिस कह रही है कि 14.5 लाख कुछ कैश, कुछ डॉलर और कुछ कागजात?
6: उसको कुछ लिखित देंगे वो, मतलब कहीं से हम लोगों को सबूत
5: कवरी में दिखाया, पेपर है हमारे
6: पास, पेपर हम भी
5: कोर्ट में है पेपर वाला।
6: हाँ तो है, लेकिन निकला होगा ले गए होंगे, हमसे क्या, और उस समय हम थे भी नहीं।
7: तो चढ़ावा चोरी केस में कल श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 4 घंटे लंबी पूछताछ चली है। सूत्रों के जरिए खबर मिली है कि SIT इन तीनों के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो खबर यह भी है कि करीब 8 घंटे की तफ्तीश थी, जिसमें 4 घंटे की पूछताछ थी, और वो भी 3 टॉप के अधिकारियों के साथ SIT की।

0: राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सिर्फ इस्तीफे से बात बनती नहीं दिख रही है। चढ़ावा चोरी केस में उन पर जांच का शिकंजा कसने लगा है। कल विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अयोध्या में चंपत राय से फिर पूछताछ की। पूछताछ ट्रस्ट के प्रमुख दो सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राय से भी हुई। ये पूछताछ करीब चार घंटे चली। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने कल ट्रस्ट ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और इन तीनों से इसी से जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। वहीं चढ़ावा चोरी केस में पुलिस की आपराधिक जांच भी जारी है। इससे इन सभी पर अब पुलिस और एसआईटी का दोहरा शिकंजा कसेगा। 6 जून को चढ़ावा चोरी का मामला उजागर होने के बाद 13 जून को गठित एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। अब दूसरे चरण में एसआईटी वित्तीय गड़बड़ियों का पूरा खेल उजागर करने के लिए ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट का ऑडिट कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट से अब तक हुए ऑडिट का पूरा लेखा जोखा मांगा है, लेकिन कुछ ब्यौरा अभी भी नहीं मिला है। पूरा ब्यौरा मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कहां कितनी और कैसी गड़बड़ी की गई। बताया जाता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही पूरे प्रबंधन में दखल था, अन्य ट्रस्टियों का दखल न के बराबर था। ये तीनों शख्स जो चाहते थे मंदिर में वही होता था। चढ़ावे की गणना से लेकर जमा करने तक की निगरानी में इनकी भूमिका रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में तीनों लोग अपनी भूमिका होने से स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। पूछताछ में चंपत, अनिल और गोपाल सीधे तौर पर टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सभी एक साथ अब इन्हीं दोनों का नाम ले रहे हैं। हालांकि एसआईटी और पुलिस दोनों कई सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इनके गोलमोल जवाब कई और सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस मंदिर प्रबंधन से जुड़े ज्यादातर पदाधिकारियों, कर्मचारियों और निजी सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें गणना कर्मी भी शामिल हैं। इनमें से 3 से 4 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। बैंक कर्मियों को भी आरोपी बनाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द इनकी गिरफ्तारियां शुरू होंगी। पुलिस केस की विवेचना में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद ले रही है। उधर पुलिस की टीम कल राम मंदिर पहुंची और दान पात्रों को देखा। उन्होंने दान पात्र से राशि निकालने से लेकर गणना प्रक्रिया समझी। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिए। सूत्रों के मुताबिक कल शाम ही पुलिस की एक टीम आरोपी अविनाश शुक्ला के प्रतापगढ़ स्थित गांव पहुंची और उसके परिजनों से करीब आधे घंटे तक पूछताछ की। कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: और इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 6 जुलाई को होने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ यानी कि शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट ने अपने पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा।
2: ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ स्पष्टीकरण लिए बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यदि बैठक में इस्तीफा स्वीकार करने या पद से हटाने का प्रस्ताव आता है तो उस पर ट्रस्ट के नियमों के अनुसार आवश्यक बहुमत से ही निर्णय लिया जाएगा। अंतिम फैसला ट्रस्ट की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने और ट्रस्टियों की सहमति के बाद ही लिया जाएगा।
1: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, 6 जुलाई को ये अहम बैठक होनी है, आज 3 जुलाई है। इससे पहले अगर कोई अहम सबूत इन तीनों ट्रस्ट पदाधिकारियों के खिलाफ मिलता है या फिर मान लीजिए एफआईआर भी दर्ज हो जाती है इनके नाम से, तो इस पूरी व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस मीटिंग पर क्या असर पड़ेगा?
3: बिल्कुल, देखिए नया सबसे बड़ी बात है कि जो ये मीटिंग है, ये ट्रस्ट की मीटिंग है जो हर 3 महीने पर होती थी। पिछली बार रामनवमी पर हुई थी तैयारियों को लेकर, और इस बार अब चूंकि ये मुद्दा है चढ़ावा चोरी का, तो इस पर ये अहम हो जाती है। सबसे बड़ी बात है अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है और कहीं ना कहीं तो पुलिस की जो कार्रवाई है और जो लीगल कार्रवाई है वो तो जरूर होगी, लेकिन जो ट्रस्ट इंडिविजुअल जो अपनी वोटिंग करता है, जो कार्रवाई करता है, उसके लिए भी वह स्वतंत्र है। यानी कि वो ट्रस्ट में किस व्यक्ति को रखना है वोटिंग के जरिए और किस व्यक्ति को हटाना है, ये भी एक बड़ा डिसीजन होगा। और इसी को लेकर माना जा रहा है कि जो 6 तारीख की बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा अनिल मिश्रा और चंपत राय को, जो ट्रस्टी है, कि कारण बताओ कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर कैसे उल्लेखनीय हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ट्रस्ट का पक्ष रखने के लिए आगे एक बड़ी कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो बायलॉज के अनुसार किसी भी पदाधिकारी खिलाफ स्पष्टीकरण के लिए कार्रवाई रीच की जा सकती है। तो ये तो एक जरूर है कि ये बैठक बहुत अहम है और इस अहम बैठक में इस्तीफा स्वीकार करने के पद से हटाने का प्रस्ताव आता है तो ट्रस्ट के नियमों के अनुसार आवश्यक बहुमत से निर्णय भी लिया जाएगा। यानी कि बहुत अहम तब हो जाता है कि जब इसमें अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों को ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो एक मत फैसला लेकर उनको वहां से रवानगी कर देते हैं या उनकी उनको हटा देते हैं या उनको क्या फैसला लेते हैं, ये एक बड़ा अहम निर्णय होगा ट्रस्ट का, जिसका क्योंकि अभी तक जो आय व्यय का लेखा जोखा है वो नियमित ऑडिट करना अनिवार्य रहता है ट्रस्ट के नियमों के अनुसार, लेकिन एसआईटी को वो सब मिला ही नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट की बैठक है उसमें सारी चीजें एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा और उसके बाद बहुमत के आधार पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
2: तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
6: एवरी सिटी हैज हिडन स्टोरीज, द बिल्डिंग यू पास एवरी डे, द पार्क वेयर हिस्ट्री वाज मेड, the person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life, and now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

पुलिस और एसआईटी के रडार पर हैं ये तीन चेहरे। इन तीन चेहरों को अब तक आपने बखूबी जान और पहचान लिया होगा। ये तीन चेहरे हैं चंपत राय, ट्रस्ट के महासचिव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी गोपाल राव। इन तीनों पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने ट्रस्ट को कठपुतली की तरह चलाया। इन पर आरोप लग रहे हैं नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाने का, ट्रस्ट में चल रही अनियमितताओं की अनदेखी करने का। लेकिन अब तीनों से पूछताछ हो रही है। पहले चंपत राय से पूछताछ हुई और अब खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा को भी अयोध्या पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अनिल मिश्रा ने सारा ठीकरा टिन्नू यादव पर फोड़ा। अनिल मिश्रा ने कहा कि नोटों की गिनती करने वाले टिन्नू के इशारे पर काम करते थे, मेरी इसमें कोई भूमिका ही नहीं थी। यानी अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका पूरी तरह से नकार दी। अनिल मिश्रा से जब ये पूछा गया कि मंदिर प्रबंधन में आपका दखल था तो कैसे करोड़ों रुपए पार हो गए और भनक नहीं लगी, इस पर अनिल मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट ने ही चोरी पकड़ी, जैसे ही पता चला फौरन जांच शुरू हुई, ट्रस्ट ने ही एसआईटी की मांग की। हाँ, अनिल मिश्रा ने इतना जरूर माना कि निगरानी में उनसे चूक हुई। आपको बता दें कि अनिल मिश्रा से पहले चंपत राय से भी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पुलिस से चंपत राय ने कहा, चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की इसकी जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। दरअसल चंपत राय के लिए बड़ी मुसीबत की वजह टिन्नू यादव है। टिन्नू से नजदीकी उनके गले की ऐसी हड्डी बन गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। पूछताछ में पुलिस ने टिन्नू से उनके रिश्ते को लेकर सवालों की बौछार कर दी। इस पर चंपत राय बस इतना कह पाए, टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। इस पर चंपत राय का जवाब था, जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के दूसरे सदस्य की भी भूमिका रही। चंपत राय ही वो कड़ी है जिनसे पुलिस को अब दूसरे आरोपियों से पूछताछ में सामने आए खुलासों का मिलान करना है। चंपत ने क्या बताया और क्या छिपाया, इसी पर जांच एजेंसी चंदा चोरी के तमाम सिरे जोड़ पाएगी। लेकिन अभी जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो वाकई खलबली मचाने वाले हैं। समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।

एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर कसा शिकंजा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से 8 घंटे तक हुई पूछताछ। पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला, हो सकती है बड़े छापेमारी। बीजेपी की नई टीम पर नितिन नवीन की अमित शाह के साथ मैराथन बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल और संगठन में बदलाव पर 3 घंटे तक चर्चा। कल से बीजेपी अध्यक्ष का यूपी दौरा। मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल। 3 दिन में 5 मौत। खोखले पेड़, मेन होल और बिजली के तारों से जा रही है जान। बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। हनीमून पर पति के मर्डर की आरोपित सोनम की जमानत रद्द करने के मामले में मेघालय पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सबसे बड़ी अदालत में पुणे के मंगेतर हत्याकांड का भी जिक्र। और जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बड़ा पहला जत्था। पूरे रूट पर आज तक की मेगा कवरेज।

हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत एक बड़ी खबर से। चढ़ावा चोरी केस में बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित चोरी के मामले पर बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर पीएम मोदी से उन्होंने बात की है और उन्होंने पूछा कि आगे क्या होगा। विनय कटियार ने यह भी कहा कि उन्होंने पीएम से कहा कि सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल जाना पड़े। विनय कटियार ने कहा कि यह साफ है कि पैसे का गबन हुआ है। यह विनय कटियार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया।

0: तो विनय कटियार की तरफ से बयान दिया गया और वो कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में चंपत राय को जेल जाना पड़े। प्रधानमंत्री से भी उनकी बात हुई, ये भी विनय कटियार की तरफ से कहा गया। बजरंग दल के संस्थापक है विनय कटियार और वो कह रहे हैं कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्होंने पूछा कि आगे क्या होगा। कटियार ने पीएम से कहा कि सब ठीक हो जाएगा। पीएम ने विनय कटियार से पूछा आगे क्या होगा, तो विनय कटियार ने कहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा को जेल जाना पड़े। और वो ये कह रहे हैं कि हाँ, पैसे का गबन तो हुआ है, ये साफ है। अभी तक जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, सामने आए हैं, खुलासे हुए, उससे बहुत स्पष्ट है कि पैसे का गबन हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की बात हुई विनय कटियार से, ऐसा विनय कटियार कह रहे हैं। और पीएम ने जब पूछा कि आगे क्या होगा, तो विनय कटियार कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जो तीन बड़े नाम हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, हो सकता है इनको जेल जाना पड़े। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन हुआ है, यह भी साफ है, यह विनय कटियार की तरफ से कहा गया है, क्योंकि अभी तक जो भी जांच में खुलासे हुए हैं उससे ये बात स्पष्ट होती है। अब देखिए, बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जांच भी आगे बढ़ती जा रही है, पूछताछ का दौर भी चल रहा है। 8 घंटे तक पूछताछ आरोपियों से हुई, जेल में जाकर पूछताछ हुई। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। कुमार, एक बड़ा बयान विनय कटियार की तरफ से दिया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। अभिषेक,
1: बिल्कुल, विनय कटियार देखिए मंदिर मूवमेंट से जुड़े हुए पुराने हिंदुवादी नेता रहे हैं, कई बार के सांसद रहे अयोध्या से, और उनके बयान को बहुत तवज्जो भी दी जा सकती है, इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद यह दावा किया है कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। वो इस स्तर के नेता हैं कि वो प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, और खासकर अयोध्या से जुड़े हुए मसलों पर। तो अयोध्या में जिस तरीके का जब चोरी का चढ़ावा चोरी का प्रकरण आया, तो बेहद नाराज थे चंपत राय को उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने अपराध किया है एक वक्त, उन्होंने ये भी कहा था, और अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा बयान है, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को वो खुद कोट कर रहे हैं कि उनसे बात हुई है और इसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसमें मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। एक तो ये कि इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर जो भी अयोध्या से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातें कर रहे हैं, इस बारे में उन तक फीडबैक जा रहा है डायरेक्टली, वो पूछ रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि ठीक भी होगा और ऐसे लोग जेल भी जाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है।
0: अच्छा, जो बयान की आप बात कर रहे हैं, एक बार वो जरा बयान सुनवा लेते हैं कि विनय कटियार की तरफ से क्या बयान दिया गया।
2: मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर,
3: इस मामले में,
2: इसी मामले में, और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं, लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं, अब हो सकता आगे जाएं अभी।
0: कुमार अभिषेक बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। अभिषेक, अभी हाल ही में पूछताछ हुई, कई घंटों की पूछताछ हुई तीनों से, और अब ये खबर जब विनय कटियार की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जल्दी जेल जाना पड़े, यानी हो सकता है कि ये जो बयान आ रहा है और आने वाले वक्त में तीनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, बहुत जल्द ये संभव भी है।
1: देखिए, कुछ भी कहना इस वक्त मुश्किल है कि क्या ये जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से SIT पूछताछ कर रही है और जिस अग्रेसिव तरीके से पूरी जांच चल रही है और इनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इनके नाक के नीचे तमाम चीज़ें हुई हैं। लोग चंपत राय को क्लीन चिट भी दे रहे हैं कि भाई उनकी कोई गलती नहीं हो सकती है, लेकिन जब इतना बड़ा चढ़ावा चोरी कांड हो गया और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो बच जाएं, ये भी नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर जो बात कही है विनय कटियार ने, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, और जिसको जो प्रधानमंत्री को कोट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात हुई है सब ठीक हो जाएगा, तो आप इस चीज को, मैं दोबारा कहता हूं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के स्तर से इस चीज को देखा जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, लेकिन जो तीन लोग हैं आप देखिए इनसे जिस तरीके की पूछताछ, जिस तरीके के बयान दर्ज हो रहे हैं, आज तो बकायदा जो इसका मुख्य आरोपी है उससे जगह जगह ले जा करके शिनाख्त कराई जा रही है, तो ये मामला बहुत तेजी से और बहुत तीव्र गति से जांच
4: आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कौन गिरफ्तार होगा, कहां पर ये सुई मुड़ेगी, ये सब देखना चाहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर ले लिया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल में पूछताछ के दौरान अविनाश ने चढ़ावे की चोरी की रकम के बारे में कई खुलासे किए थे। अब सूत्रों के मुताबिक उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ स्थित अपने घर में चढ़ावे की चोरी की रकम छिपाने की बात कही थी। पुलिस दोनों जगहों पर अविनाश को लेकर आज ये रकम बरामद कर सकती है। अब सूत्र बता रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला ने मोटी रकम ठिकाने लगाई। अंदेशा है कि सोने चांदी के जेवर भी उसमें शामिल हैं। अब तक चढ़ावा चोरी केस में जो बरामदगी हुई है उसमें सबसे अधिक 20,39,000 रुपए अविनाश के पास से ही बरामद हुए थे।
5: अविनाश शुक्ला से की गई पूछताछ और जुटाई गई जानकारी के आधार पर उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अविनाश शुक्ला से न सिर्फ पूछताछ की जाएगी बल्कि उससे एक बड़ी बरामदगी की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जिसके पास से पुलिस को सबसे बड़ी बरामदगी 20,39,000 रुपए और डॉलर सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। अब इससे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर कुछ और चोरी से जुड़े तमाम राज पुलिस खंगालने में जुटी है।
4: तो इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी केस में कल श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 4 घंटे लंबी पूछताछ की गई है। अब सूत्रों के जरिए यह खबर मिली है कि SIT इन तीनों के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि SIT ने ट्रस्ट से अब तक हुए ऑडिट का पूरा लेखा जोखा मांगा है लेकिन कुछ ब्यौरा अब भी नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में तीनों लोग अपनी भूमिका होने से स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। पूछताछ में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सीधे तौर पर टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सभी एक साथ अब इन्हीं दोनों का नाम ले रहे हैं। टिन्नू यादव,
6: जैसे जैसे राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जांच बढ़ रही है वैसे वैसे पूछताछ का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पहले 8 गिरफ्तारियां और अब ट्रस्ट के सबसे बड़े नाम चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय से SIT की 4 घंटे की पूछताछ। कई सवाल ऐसे जिनके जवाब उनके पास नहीं, तो कई सवाल ऐसे जिनमें फंसते दिखे हैं ये तीन ट्रस्ट के उच्च पदाधिकारी। कभी कहते हैं अयोध्या में इनका सिक्का बोलता था, मंदिर परिसर में तो इनकी कहानी के बिना, इनकी कथनी के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता था, लेकिन वक्त बदला, दौर बदला, आज वही तीन पदाधिकारी वहां बैठे हैं जहां पर कहीं से कहीं भी कभी भी गिरफ्तारी का साया मंडरा रहा है। बताया यह भी जा रहा है जो और लोग हैं जो गिरफ्तार हैं उन पर भी ठीकरा फोड़ा है इन तीनों ने पूछताछ में। पूछताछ यही खत्म नहीं होगी, दायरा और बढ़ेगा और उच्च अधिकारियों से पूछताछ होगी, और केवल मामला चंदा चोरी ही नहीं बल्कि जो लैंड स्कैम है उस तक भी अब पुलिस जाने की सोच रही है।
4: तो 12 बजे 12 रिपोर्टर में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हनीमून पर पति के मर्डर की आरोपित सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले में आगे की सुनवाई गुरुवार को होगी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि सोनम पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है इसीलिए इस समय उनकी रिहाई में दखल देना उचित नहीं होगा। अब मामले में आगे की सुनवाई गुरुवार को होगी, तब तक सोनम शिलोंग में जमानत पर ही रहेगी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से?
7: कोर्ट की तरफ से कहा गया, सबसे पहले सबसे जो जरूरी बात ये थी कि जिस आधार पर उस पर आरोप लगाए गए आरोप पत्र में उनके उसके खिलाफ दफा 403 यानी बीएनएस के दफा 403 पर के खिलाफ के तहत आरोप लगाए गए हैं जो कि बीएनएस में है ही नहीं, भारतीय न्याय संहिता में है ही नहीं। और ये कोर्ट ने पूछा भी कि आपने ये जो लगाए हैं इसका मतलब जो आपके चार्जशीट है, जो आपके दस्तावेज हैं, तो आपने जो आधाराएं लगाई ये कहाँ है, कहाँ से आपने कोर्ट किया है? तो इसके बाद फिर कोर्ट ने कहा कि इस वजह से आपने शायद गिरफ्तारी की वजह आरोपी को नहीं बताई है, इस वजह से उसे जमानत मिली है, और जब जमानत मिल गई है और वैलिड ग्राउंड पर मिली है तो हम जमानत रद्द करने की इच्छुक है। उन्होंने नोटिस जारी किया है कि पहले आरोपी अपने बारे में अपना जवाब दाखिल करे, उसके बाद हम इस मामले में आगे सुनवाई करेंगे। यानी सोनम को मिली राहत बरकरार रहेगी, वो रिहा रहेगी अभी जमानत पर।
4: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय। 12:12 रिपोर्टर में अब रिपोर्ट झारखंड से। करणी सेना के युवा जिलाध्यक्ष हिमांशु सिंह की हत्या के बाद जमशेदपुर में तनाव व्याप्त है। बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आज बंद का आह्वान किया, और पूरी खबर बता रहे हैं आज तक संवाददाता सत्यजीत।
8: झारखंड की लौह नगरी जमशेदपुर में बीते दिनों करणी सेना के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हिमांशु सिंह के पुलिस की मौजूदगी में हत्या के बाद पूरा शहर उबाल पे है। लगातार वहां पे धरना प्रदर्शन, परिजनों का आक्रोश दिखा और अब विपक्ष इस आंदोलन में कूद पड़ा है। साफ तौर से विपक्ष का आरोप है कि जब पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की हत्या हो सकती है तो कोई सुरक्षित नहीं है, और उन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ FIR किया जाना चाहिए जो उस वक्त हत्या के वक्त मौजूद थे। CCTV फुटेज में सब कुछ दिख रहा है, लिहाजा उनके खिलाफ बिहार के तर्ज पे यहाँ भी FIR होना चाहिए, क्योंकि उनके सामने कोई किसी को मार के जा रहा है और वो पुलिस जो है मुख दर्शक बनी हुई है।
4: और अगली खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। सड़क पर दौड़ते LPG गैस टैंकर में अचानक धमाका होता है, जोरदार धमाका, और फिर लगती है भीषण आग। हादसा 26 जून को हुआ था, जिसका CCTV फुटेज अब सामने आया। तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए, दिख रहा है यहाँ पर कि टैंकर डिवाइडर से टकराता है, अचानक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ गैस गैस फैल जाती है, और इसके बाद भयानक आग की लपटें दिखाई देती है। यहाँ सा टोल नाके के पास हुआ था, मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है, जबकि 2 टोल कर्मचारी अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हादसे के दौरान टैंकर चालक को केबिन से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। ये देखिए, टकराया डिवाइडर से, गैस फैली, आग लगी, जोरदार धमाका। और सब कुछ अचानक इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 4 लोगों की मौत हो गई, 2 अब भी घायल है, जो बहुत ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच में है। यूपी के कौशाम्बी में हादसा हुआ, टोल नाके पर ये ट्रक जो टैंकर होता है ये डिवाइडर से टकराता है।
9: शाम्बी के कोकराज टोल प्लाजा पर भीषण हादसा हुआ, और इस हादसे में सबसे बड़ी बात थी कि जो टैंकर था LPG वो सीधे टकरा गया, जिसकी वजह से आग लग गई। मौके पर मौजूद टोल प्लाजा कर्मी सहित ट्रक ड्राइवर की तुरंत तत्काल मौत हो गई। इस दौरान ना कि सिर्फ आग लगी, जो CCTV सामने आया है वो काफी भयावह है, जिसमें साफ तौर से आग की लपटें देखी जा सकती हैं, जिसकी वजह से पूरा टोल प्लाजा ही जल गया।
4: और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 12:12 रिपोर्टर में। शहरों में हड़कंप मचा है, चलते चलते शरारती तत्व ऐप के जरिए ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बनकर वहां पहुंच जाते हैं। ई रिक्शा चालू करने के एवज में 200-300 रुपए वसूल लिया जाता है। बिजनौर, उज्जैन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इस तरह की खबरें आ चुकी हैं। ऐप से बंद कर दिया जाता है बैटरी का पावर आउटपुट, वो बंद कर दिया जाता है, दोबारा चालू करने के लिए 200-300 रुपए वसूले जा रहे हैं।
10: यूपी से लेकर दिल्ली तक दिल्ली की सड़कों पर अगर बात की जाए तो बेट BMS ऐप ने हड़कंप मचा रखा है। एक मोबाइल ऐप के जरिए सड़क पर चलती हुई ई रिक्शा अचानक से बंद हो रही है, ना बैटरी ना मशीन। अचानक से एक ऐप के जरिए एक ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके जिस तरीके से सड़कों पर ई रिक्शा को बंद किया जा रहा है, लॉक किया जा रहा है, उसने आम लोगों से लेकर के बैटरी चालक ई रिक्शा के जो मालिक है उनसे लेकर सरकार तक की चिंताएं जो है वो बढ़ा दी है। आज पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो कई तरीके की आपको वीडियोस जो है वो नजर आएंगे, जिसमें अचानक से ही चलते चलते सड़क पर ई रिक्शा जो है वो बंद हो रहे हैं और ये ई रिक्शा दूर से ही किसी ऐप के जरिए जिसका नाम बैट बीएमएस ऐप है उसके जरिए बंद किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार की चिंताएं भी जो है वो बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह के मुताबिक इस पूरे मामले की जाँच जो है वो की जा रही है और जो भी इस पर हो सका तो सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये ऐप के जरिए ई रिक्शा को लॉक किया जा रहा है चलते चलते, उसने सुरक्षा के सवाल भी जो है वो खड़े कर दिए।
4: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात मुंबई में मानसूनी आफत की करेंगे। मुंबई में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। पिछले 3 दिनों में 5 लोगों की मौत हो गई है।
11: मौसम विभाग की तरफ से मुंबई और मुंबई से सटे हुए इलाके जैसे थाने, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, इनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई और मुंबई से सटे इन इलाकों में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो वहीं महाराष्ट्र में खास करके जो सेंट्रल महाराष्ट्र के घाट इलाके हैं वहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से खास हिदायत दी गई है कि जो ट्रैकिंग करने वाले लोग हैं या जो अन्य सामान्य नागरिक हैं वो ऐसी जगहों पर जाने से बचे, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड और जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग का खतरा है। तो मुंबई के लिए भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि मुंबई में जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर भी वाटर लॉगिंग का खतरा है। लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। हालांकि जो रोड ट्रांसपोर्ट है या जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो अपने तय समय अनुसार चल रहा है, क्योंकि सुबह से हल्की बूंदाबांदी मुंबई में हो रही है। कहीं भी जलजमाव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत 1 फीट तक पानी है पर वो जल्दी से निकासी हो रहा है। तो वहीं जो स्कूल कॉलेजेस हैं मुंबई के वो भी अपने सामान्य तय अनुसार सामान्य रूटीन के अनुसार ही शुरू हैं, उनको अभी तक छुट्टी डिक्लेयर नहीं की गई है।
4: और मानसून की मूसलाधार बारिश गुजरात के भी कई शहरों में हो रही है। कहां कहां बारिश से मची आफत, बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश दोषी।
12: बीते 24 घंटों में गुजरात में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश हुई। सौराष्ट्र की बात करें तो जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर, जामनगर में जो है सबसे ज्यादा बारिश हुई। जूनागढ़ में 13 इंच बारिश दर्ज की गई। गिर सोमनाथ में भी करीब 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां पे जलभराव हुआ था और साथ ही जो नगर निगम की लापरवाही है वो सामने आई थी। कई जगहों पे गड्ढे और जो है उसकी वजह से गड्ढों की वजह से लोग गिरते हुए नजर आए, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई, कई जगह पे वाहन फंसे हुए नजर आए। पर अब जो है धीरे धीरे जल निकासी होने के कारण अब कहीं पर भी जल जमाव देखने को नहीं मिल रहा। आज सुबह से वलसाड़ और नवसारी में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। करीब 8 इंच जितनी बारिश जो है 4 घंटों में हुई, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी भर गया था पर धीरे धीरे वो भी जल निकासी शुरू हो चुकी है। तो वैसे में जनता को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से किसानों को अब इस बारिश से राहत मिली है और आम जनता को गर्मी से भी राहत मिली है।
4: और अब बात ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सुपुर्दे खाक की। तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला परिसर में अंतिम श्रद्धांजलि की तैयारियां पूरी कर ली गई। अब यह खबर है कि सुरक्षा कारणों के चलते आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई पिता के सुपुर्दे खाक में शामिल नहीं होंगे। सुरक्षा एजेंसियों को हमले का डर है सुरक्षा एजेंसियों को, इसीलिए उन्होंने मोज्तबा को सुपुर्दे खाक समारोह से दूर रहने की सलाह दी है।
13: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के नमाज जनाजे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, यानी उनके जो अंतिम संस्कार है, ये लास्ट फ्यूनल है, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। और ईरान के अंदर इसको लेकर करीबन 30 से ज्यादा जो देश हैं वो अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स को या डेलीगेट को भेज रहे हैं। मैं इस समय तेहरान में मौजूद हूँ, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ सड़कों पर जुटने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां चल रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे यानी अभी के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई उसमें शामिल नहीं होंगे। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर या इजराइल की तरफ से जो धमकी दी गई है उसको लेकर ये सबसे बड़ी बात कही जा रही है। हालांकि अभी भी यहां पर तैयारियां उसी तरीके की हैं, उनके बेटे मुज्तबा खामनेई उसमें शामिल नहीं होंगे।
4: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर आज शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बम बम भोले के जयकारों के साथ पहलगाम बालटाल के 2 रास्तों से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। बारिश की वजह से पहलगाम मार्ग पर सुबह कुछ देर के लिए यात्रा रोकी गई लेकिन दोबारा से शुरू हो गई क्योंकि जोश इतना है। रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। 28 अगस्त तक 4,00,000 श्रद्धालुओं के अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने की उम्मीद है।
14: सुबह से ही जो है मौसम काफी खराब है। रात 3 बजे से जब लोग जहां पर यहां बालटाल से आगे जो डोमेल पड़ता है यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां से ही RFID चेक करके जो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं उनको यहां से छोड़ा जाता। लेकिन आप पहाड़ों की तरफ देखिए तस्वीर किस तरीके का है कि मौसम जो है रात से ही खराब है, रुक रुक करके बारिश हो रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये तमाम लोग जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये आगे की तरफ जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है ये डोमेल जो चेकिंग पॉइंट है फर्स्ट चेक पॉइंट जो है जहां से ऊपर बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ भेजा जाता है, तो इस जगह पर काफी भीड़ इस वक्त मौजूद है। मैं आगे की तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहां पर भी आप देखिए कि ये आगे जो सामने की तरफ रास्ता जाता है इसमें तस्वीरें देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ऊपर पहाड़ तक जो रास्ता है यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो मौजूद हैं और धीरे धीरे करके इनको आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो संख्या बताई जा रही शुरुआत में जो बालटाल के लिए करीब 5,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो एक साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
4: और अब दुनिया पर छाए हुए फुटबॉल खुमार का फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। पुर्तगाल और स्पेन की टीम ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली। पुर्तगाल ने राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पुर्तगाल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रामोस ने गोल दागे।
15: जैसे जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे ही राउंड ऑफ 32 के मुकाबले और भी रोमांचक, इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटेटिव होते जा रहे हैं। कल 2 मुकाबले खेले गए जहां पे स्पेन और पुर्तगाल ने राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना ली। बात अगर पुर्तगाल की मैच की करें तो यहां उनका सामना क्रोएशिया से था जहां पहला जो हाफ था वो गोल रही था लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी की पुर्तगाल ने और इस मुकाबले को 2-1 से जीतकर राउंड ऑफ 16 यानी कि आखिरी 16 में जगह बनाने में कामयाब हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्पेन की तो स्पेन 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने नॉकआउट मुकाबले को जीता है और राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाई है। स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से था जहां एक तरफा मुकाबला जीता स्पेन ने और 3-0 से इस मुकाबले को जीतकर जगह पक्की की, अपना नाम दर्ज किया और अब बारी होगी राउंड ऑफ 16 का मुकाबला 7 जुलाई को खेलने की।
4: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
7: हमने तब भी सवाल किया था,
8: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
7: हम आज भी सवाल करते हैं।
8: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
7: ऑपरेशन अग्नि,
8: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
7: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
9: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
11: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
12: शेयर बाजार ने ज्यादा ट्रेडर्स बनाए हैं या फिर ज्यादा गैम्बलर्स बना दिए हैं सर? अब
13: ये जो जॉबिंग स्प्रेड हुआ करता था, दैट इटसेल्फ वाज वेरी

लार्ज, तब मैं कम से कम एक 150-200 स्टॉक का मार्केट मेकिंग मैं किया करता था। आपने शुरू किया हर्षद मेहता स्कैम से, उसके पहले एक क्रैश आई थी, दैट वाज एन एक्सट्रीमली सीवियर बेयर मार्केट। 42 होते होते डिफरेंस का मेरे सारे रुपये खत्म हो गए। फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल एक बहुत बड़ा फियर है जो आपको फोर्स करता है कि जल्दी में प्रॉफिट ले लूँ। हिम्मत दिखाओ तो आपको उसका कीमत भी मिलता है।

0: क्या राम मंदिर में नियुक्त।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: और अब आपको लिए चलते यूपी एक्सप्रेसवे पर। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा हुआ, आरोपित लवकुश के घर से 14 लाख नगद और अहम दस्तावेज बरामद। आज तक से बोले लवकुश के नाना, निर्दोष है लवकुश, कैश बरामदगी और पुलिस कार्रवाई पर परिवार ने उठाए सवाल। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस एक्शन तेज, आरोपित अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की कस्टडी, रिमांड में होगी पूछताछ। लवकुश का निर्माणाधीन मकान निकला अवैध, बिना नक्शा पास कराए निर्माण, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आसार। चढ़ावा चोरी की जांच अब जमीन सौदों तक पहुंची, एसआईटी ने ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज, गवाहों और संपत्तियों की जांच शुरू की। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर विनय कटियार का बड़ा दावा, बोले पैसों की हेराफेरी साफ, चंपत राय समेत कई लोग जा सकते हैं जेल। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर विनय कटियार का बयान, कहा इस मुद्दे पर मोदी जी से हुई बात, जांच में सच सामने आएगा। राम मंदिर वीआईपी दर्शन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का बड़ा खुलासा, एसआईटी जांच में 20 से 25 हजार लेकर विशेष दर्शन कराने और अवैध वसूली के आरोप। अयोध्या में वीआईपी पास सिस्टम के दुरुपयोग के आरोप तेज, होटल नेटवर्क, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की, एसआईटी जांच में सवाल उठे। अयोध्या मामले में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा यह केवल पाप नहीं महापाप है, दोषियों को सजा मिलेगी, कहा कानून और सरकार पर पूरा विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेदांता अस्पताल में महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कई अहम बैठकों में शामिल होंगे, संगठन के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे नितिन नवीन, शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार एलडी और बिजली विभाग को फटकार, 4 अगस्त को सुनवाई। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला, कहा ये वाईपी यानी यादववादी पार्टी दलितों का करती है अपमान। यूपी टीईटी परीक्षा का दूसरा दिन कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न, चंदौली में 12 केंद्रों पर 25,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दहेज के लिए विवाहिता को तेजाब पिलाने का आरोप, मेरठ में इलाज के दौरान मौत, पति समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महोबा में प्रेमी युगल ने पेड़ से लटक कर जान दी, मृतका की भरी मांग से शादी की आशंका, पुलिस जांच जारी है। गाजियाबाद में एनकाउंटर, हत्या के आरोपित के पैर में लगी गोली, हथियार बरामदगी के दौरान भागने और फायरिंग का आरोप, पुलिस ने काबू किया। एटा में भीषण सड़क हादसा, 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत, खड़ी रोडवेज बस से टकराए 2 वाहन, 12 घायल, जिला प्रशासन अलर्ट पर।

0: अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, और बड़ी खबर ये कि चढ़ावा चोरी के आरोप में मंदिर दर्शन कराने के लिए भी श्रद्धालुओं से अवैध वसूली कर रहे थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि राम मंदिर से जुड़े टिन्नू यादव और अन्य सहयोगियों के रंग महल इलाके और क्रॉसिंग टू के आसपास कथित तौर पर वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली की विशेष व्यवस्था संचालित की जाती थी। यह आरोप है कि कुछ श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन कराने के एवज में 20,000 से 25,000 तक की रकम ली जाती थी। इससे हर महीने लाखों की वसूली हो रही थी। इसमें टिन्नू यादव के साथ कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। अब यह भी दावा किया गया है कि टिन्नू वॉकी टॉकी और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करता था और उसकी गाड़ियां सीधे अंदर तक जाती थी। यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बदलने में भी टिन्नू का प्रभाव था। मंदिर में फोटो खींचने के लिए भी पैसे वसूले जाते थे। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, हर दिन जांच में एक नया खुलासा हो रहा है, अब इस खुलासे के बारे में क्या जानकारी और आप आइए।
1: देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि मंदिर परिसर के अंदर टिन्नू यादव जो कि वॉकी टॉकी लेकर चलता था और पूरी तरीके से संचालन की उसकी जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं वो उस जिम्मेदारी का गलत फायदा भी उठा रहा था। यही नहीं, अयोध्या के राम मंदिर के बाहर जो रंग महल है जहां पर, वहां से कई श्रद्धालुओं की शिकायतें भी आई और एसआईटी ने भी इस जांच में अपनी आगे इसको बढ़ाया है कि वहां से श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर काफी ज्यादा उनसे पैसा लिया गया। साथ ही साथ उनसे कुंभ का जब बड़ा आयोजन था, उस दौरान भी कई ऐसे वहां पर पहुंचे लोग जिनसे पैसा लेने के एवज में उनके दर्शन कराए गए, वीआईपी पास को बनाया गया। साथ ही साथ ये भी किया गया, क्योंकि जब टिन्नू यादव लगातार रॉकी टॉकी से गेट पर आदेश देता था तो सीधे गाड़ी अंदर आती थी और उसमें पूछताछ भी नहीं होती थी, तो इस तरीके से भी कई लोगों को वीआईपी दर्शन के नाम पर अंदर बुलाया गया। क्योंकि राम मंदिर प्रोहिबिटेड एरिया है, वहां पर फोटोग्राफ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो फोटोग्राफ लिए जाते थे उनके एवज में पैसे, यानी कि हर तरफ से पैसे और ये जो वसूली है वो भी मंदिर के प्रकरण में चल रहा था, जिसको लेकर अहम जो जिम्मेदार व्यक्ति था, जो टिन्नू यादव था, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, वो इस संचालन में कई लोगों के संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर दोनों जगह ये चीजें चल रही थी, और यहां से लेकर यानी कि मंदिर,
0: आशीष मतलब वही था, पांचों उंगलियां घी में, सर कड़ाई में था, लेकिन अब भुगत रहा है टिन्नू यादव। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त अगली अहम खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर। सीएम योगी ने राम जन्म तीर्थ भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष से अस्पताल में मुलाकात की। मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के स्वास्थ्य का हाल जाना। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तबीयत बिगड़ने के बाद भर्ती हुए थे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो उधर चढ़ावा चोरी केस में कल श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 4 घंटे लंबी पूछताछ की गई। अब सूत्रों के जरिए खबर मिली है कि एसआईटी इन तीनों के जवाब से संतुष्ट नहीं है।

0: राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सिर्फ इस्तीफे से बात बनती नहीं दिख रही है। चढ़ावा चोरी केस में उन पर जांच का शिकंजा कसने लगा है। कल विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अयोध्या में चंपत राय से फिर पूछताछ की। पूछताछ ट्रस्ट के प्रमुख दो सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राय से भी हुई। ये पूछताछ करीब चार घंटे चली। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने कल ट्रस्ट ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और इन तीनों से इसी से जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। वहीं चढ़ावा चोरी केस में पुलिस की आपराधिक जांच भी जारी है। इससे इन सभी पर अब पुलिस और एसआईटी का दोहरा शिकंजा कसेगा। 6 जून को चढ़ावा चोरी का मामला उजागर होने के बाद 13 जून को गठित एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। अब दूसरे चरण में एसआईटी वित्तीय गड़बड़ियों का पूरा खेल उजागर करने के लिए ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट का ऑडिट कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट से अब तक हुए ऑडिट का पूरा लेखा जोखा मांगा है, लेकिन कुछ ब्यौरा अभी भी नहीं मिला है। पूरा ब्यौरा मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कहां कितनी और कैसी गड़बड़ी की गई। बताया जाता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही पूरे प्रबंधन में दखल था, अन्य ट्रस्टियों का दखल ना के बराबर था। ये तीनों शख्स जो चाहते थे मंदिर में वही होता था। चढ़ावे की गणना से लेकर जमा करने तक की निगरानी में इनकी भूमिका रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में तीनों लोग अपनी भूमिका होने से स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। पूछताछ में चंपत, अनिल और गोपाल सीधे तौर पर टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सभी एक साथ अब इन्हीं दोनों का नाम ले रहे हैं। हालांकि एसआईटी और पुलिस दोनों कई सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इनके गोलमोल जवाब कई और सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस मंदिर प्रबंधन से जुड़े ज्यादातर पदाधिकारियों, कर्मचारियों और निजी सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें गणना कर्मी भी शामिल हैं। इनमें से 3 से 4 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। बैंक कर्मियों को भी आरोपी बनाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द इनकी गिरफ्तारियां शुरू होंगी। पुलिस केस की विवेचना में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद ले रही है। उधर पुलिस की टीम कल राम मंदिर पहुंची और दान पात्रों को देखा। उन्होंने दान पात्र से राशि निकालने से लेकर गणना प्रक्रिया समझी। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिए। सूत्रों के मुताबिक कल शाम ही पुलिस की एक टीम आरोपी अविनाश शुक्ला के प्रतापगढ़ स्थित गांव पहुंची और उसके परिजनों से करीब आधे घंटे तक पूछताछ की। कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: अब यूपी की सियासी खबरें आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी की चुनावी रणनीति अब तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनाव में विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी ने जो चक्रव्यूह बुनना शुरू किया है, उसकी शुरुआत कल रात दिल्ली से हो चुकी है। अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं और ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या होने वाला है, इसमें बताते हैं आपको।
2: जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर में विवादों का पिटारा खुला पड़ा हो, जब चुनाव से ऐन पहले संगठन से सरकार तक तब्दीलियां की जा रही हैं, जब विपक्षी गठबंधन की एकता की तस्वीर साफ नहीं हो, जब संविधान के नाम पर मिली चुनावी चोट के जख्म अभी तक भरे नहीं हो, ऐसे में बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं तो उनके स्वागत की तमाम तैयारियां की गई। 6 महीने गुजर गए नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद। पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर नितिन लखनऊ दौरे पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 64 पदाधिकारियों वाले नए नवेली संगठन का चेहरा पेश किया, जिसमें 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्री समेत सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों में नए अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद 2 जून की रात अमित शाह के घर बीएल संतोष के साथ चली मैराथन मीटिंग में यूपी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और उसी ब्लूप्रिंट को अमली जामा पहनाने के लिए अब नितिन नवीन लखनऊ पहुंच रहे हैं। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्दी अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिमी यूपी से लेकर ब्रिज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध काशी गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी और चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है। यूपी में चुनाव से पहले यूं तो बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कांड बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा सियासी चुनौतियां और भी हैं जिसके मुकाबले की रणनीति पर बीजेपी चल रही है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीएफ फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा घाघरा दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुए एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: लखनऊ से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, नितिन नवीन के इस दौरे में क्या सबसे खास और निर्णायक फैसला होने वाला है?
3: देखिए, फैसला तो कुछ नहीं होगा हिमांशु, लेकिन ये निर्णायक जरूर है, इसलिए क्योंकि 2024 में बीजेपी बहुत बुरी तरह पिछड़ गई थी। कहां 60 से ऊपर बीजेपी अपने लिए सांसदी की सीट सोच रही थी, 33 पर आ गई। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि बीजेपी से जो दलित और पिछड़े थे उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। अब नितिन नवीन के आने के बाद जो पहले पूरी राज्य कार्यकारिणी, पूरा राज्य का नया संगठन बना है, इसको अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगेगा कि बीजेपी 2024 को दोहराना नहीं चाहती। कल नितिन नवीन सुबह पहुंचेंगे, मंदिर के कार्यक्रम से उनके ये 2 दिनों के प्रवास की शुरुआत होगी। दिन में वो ताज होटल में तमाम सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद संगठन की उनकी जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं उनके साथ बैठक होगी, जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उनके साथ संवाद होगा, और रात में मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और संगठन महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष के साथ।
1: अच्छा अभिषेक, ये बताइए, क्योंकि ये बताया गया कि इस दौरे में बीजेपी अध्यक्ष लखनऊ में सिविल सोसाइटी के भी प्रभावशाली लोगों से मिलने वाले हैं। आपने बताया कि पद्मश्री, अनिल रस्तोगी, खेमकरण, रिटायर्ड जज, वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा, पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार से भी नितिन नवीन की मुलाकात है, तो इसका कोई विशेष प्रायोजन है क्या?
3: देखिए, एक एक एक तरीका है बीजेपी का, जब वो प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करते हैं, तो इसके पहले संघ प्रमुख भी आए थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी। जो बड़े नेता आते हैं वो इस तरीके का एक उनका पूरा प्रोग्राम होता है, तो लगता है कि ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है उनके साथ मीटिंग करके समाज पर एक प्रभाव डाला जाए। लेकिन जो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है वो है उनका वोट बैंक में जो सेंध लगी हुई है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर फैसले की बात करें तो ऐसे नेताओं को काम पर लगाया जा रहा है जो उस बिरादरी से आते हैं, जो जिनकी जमीनी पकड़ है, और ओबीसी और दलित बिरादरी पर बीजेपी का इस बार ज्यादा फोकस दिखाई देने वाला है। लेकिन जिसे कहते हैं ना टाइट ग्रिप, टाइट
1: फुल ऑन एक्शन मोड में इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। 2027 की तैयारी दिख रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, बीजेपी की चुनावी तैयारी की चर्चा तो हो रही है, लेकिन यूपी में विपक्ष की चुनावी तैयारियों से ज्यादा विवादों की चर्चा है। अब बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से बराबर बराबर सीटों की मांग कर डाली। यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने एक हफ्ते में तीसरी बार यह बयान दिया है कि यूपी में कांग्रेस बराबरी से जरा भी कम के दर्जे पर ना तो गठबंधन करेगी और ना सीटें छोड़ेगी।
4: बराबर का सम्मान और बराबर की भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए, इससे कम पे कोई बात हम समझौता नहीं करेंगे। देखिए, बहुत जल्दी सपा का शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात करेगा और बहुत जल्दी आपके सामने सारा खुलासा करेंगे।
1: तो सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम ही नहीं, सार्वजनिक मंचों पर कांग्रेस के नेता अक्सर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। चाहे वो पूर्व में कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय हों, चाहे पश्चिम में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हों, यूपी में कांग्रेस के चेहरे बराबर सीट और सम्मान की मांग की जा रही है। राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान के बाद आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने राजेंद्र पाल गौतम से बात की। उन्होंने यूपी में गठबंधन पर खुलकर बात की, आपको भी सुनाते हैं।
5: बहुत जल्द 2027 में विधानसभा चुनाव में हम इनको हराएंगे और 2029 में आदरणीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका हमारी होने वाली है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
6: उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी आपका अलायंस का एक तरीके से पार्टनर भी रहा है और अब
5: अभी भी पार्टनर है
6: और
5: गठबंधन का हिस्सा है। हम दो भाई हैं, बराबर सम्मान और हिस्सेदारी के साथ लड़ेंगे।
6: लेकिन पार्टी कह रही है कि जिन सीटों पर जीत सकती है कांग्रेस वो पहले हमको रिप्रेजेंट करे, दिखाए, हम फिर उस पर डिसाइड करेंगे, इस तरीके से बातें सामने था।
5: भारतीय जनता पार्टी की किसी समय दो सांसद थे और किसी भी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए, जिनको ये घमंड था कि हम और हम ही हैं, उनकी पार्टियों को खत्म कर दिया बीजेपी ने, पूरी जीतने के बाद तोड़ दिया। शिवसेना खत्म कर दी, एनसीपी खत्म कर दी, तृणमूल कांग्रेस खत्म कर दी। आप केवल किसी एक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, ये मुझे लगता है हर पार्टी के नेता को समझना चाहिए। आपकी लड़ाई केवल एक पार्टी से नहीं है, साधारण इलेक्शन नहीं है ये। ऐसे में मुझे लगता है सबको जमीन पे उतर के और बराबर का साझेदार होके ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है और हम मिलके इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़के जीतने वाले हैं।
1: अब राजेंद्र गौतम ये तब कह रहे हैं जबकि अखिलेश दिल्ली जाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में ही राहुल सोनिया के सामने कह चुके हैं कि कांग्रेस को यूपी में अपनी जमीन की हकीकत पता होनी चाहिए और सिर्फ सीटों के नंबर बढ़ाने की जिद नहीं करनी चाहिए। और इस बीच यूपी में इंडिया गठबंधन की मजबूती पर आशंका तब बढ़ने लगती है जब कांग्रेस एक तरफ अखिलेश के साथ होने का दावा करती है, दूसरी तरफ मायावती से भी भेंट मुलाकात की कोशिशें करती है।
6: के कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ नेता बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस जाते हैं और बातचीत करते हैं, क्या आपको बहुजन समाज पार्टी से...
5: मैं खुद गया था भाई, कोई नेता नहीं, मैं गया था।
6: हम 2027 के चुनाव देखते हुए इंडिया अलायंस में क्या बहन जी को साथ लाने के लिए कांग्रेस?
5: देखिए मेरा एक स्पष्ट मत है, लड़ाई केवल किसी एक पार्टी को सत्ता पाने की या सत्ता से हटाने की नहीं है, लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की है। ऐसे में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो देश के संविधान में भरोसा करती है, लोकतंत्र में भरोसा करती है, ये जो भी संविधान को मानने वाले न्याय पसंद समतावादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, उन सबको एकजुट होना चाहिए। उसमें वो भी आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई अब केवल एक पार्टी को सत्ता में लाने की नहीं है, लड़ाई इस देश को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने।
1: एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी फीवर बहुत हाई है, इतना हाई है कि अब अखिलेश के जन्मदिन पर स्कूल में केक काटने को लेकर भी विवाद हो गया है। बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी कि स्कूल के अंदर अखिलेश का जन्मदिन कैसे मनाया जा सकता है। पुलिस ने बहुत मुश्किल से बीजेपी कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाया। दरअसल कानपुर के परमत इलाके में स्थानीय विधायक अमिताभ वाजपेयी ने प्राथमिक विद्यालय के अंदर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। विद्यालय की कक्षा में अखिलेश के बैनर टांगे गए, केक कटिंग सेरेमनी हुई और बच्चों को तोहफे और पोशाक भी बांटे गए। अब इससे नाराज होकर हेडमास्टर पर कार्रवाई हुई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर खंड शिक्षा कार्यालय से अटैच कर दिया और आगे जांच गठित कर दी गई है। हालांकि हेडमास्टर साहब ने लिखित सफाई दी है और सांसद रमेश अवस्थी ने ही पोशाक वितरण कार्यक्रम रखा था जिसके लिए 6 जुलाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन विधायक ने बिना सूचना के 1 जुलाई को कार्यक्रम कर दिया।
7: हमने पहले कहा था कि ये कार्यालय बनाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल से जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, केक कहाँ काटा जाता है? केक कार्यालय में काटा जाता है, ये पुनरावृत्ति है। समाजवादी पार्टी कार्यालय बनाना चाहते हैं, वो कार्यालय भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने देगी।
1: यूपी में चुनाव आते ही तरह तरह के सियासी उपक्रम तेजी से आगे बढ़ते दिखते हैं जिसमें हर वोटर वर्ग अपने हक की आवाज उठाता नजर आ रहा है। प्रयागराज में भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जब भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने त्रिवेणी संगम पर नदी में डूबकर जल सत्याग्रह प्रदर्शन किया। इनकी शिकायत थी कि आज भी किसानों की जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और किसानों पर ही फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। आरोप था कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला।
8: तीसरी बार मुख्यमंत्री को नहीं बनेंगे, चुनाव देने के उसमें होगा लेकिन मुख्यमंत्री इनको नहीं बनाएंगे, ना इनको दिल्ली भेजेंगे, इनको पूरे देश में इनसे बुलडोजर चलवाएंगे, दहशत उठाएंगे, इनको दिल्ली भेजेंगे।
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
10: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
9: Sanitary Solutions.
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: माँ भी हमेशा P-Mark मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
16: कुछ तो बात है इस दिल में।
17: P-Mark, the mustard specialist since 1947.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर कसा शिकंजा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से हुई पूछताछ। कटियार बोले, जेल जा सकते हैं चंपत राय, पीएम के संपर्क में हूं। बीजेपी की नई टीम पर नितिन नवीन की अमित शाह के साथ मैराथन बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल और संगठन में बदलाव पर 3 घंटे तक चली चर्चा। कल से बीजेपी अध्यक्ष का यूपी दौरा। मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल। 3 दिन में 5 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान। बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। हनीमून प्रॉपर्टी के मर्डर के आरोपी सोनम की जमानत रद्द करने के मामले में मेघालय पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सबसे बड़ी अदालत में पुणे के मंगेतर हत्याकांड का भी जिक्र। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बढ़ा पहला जत्था। पूरे रूट पर आज तक की मेगा कवरेज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत कर रहे हैं नॉनस्टॉप 100 के साथ।

राम मंदिर चौराहा मामले पर विनय कटियार का बड़ा बयान, बोले पैसों की हेराफेरी साफ, चंपत राय समेत कई लोग जा सकते हैं जेल। राम मंदिर चौराहा विवाद पर विनय कटियार का बयान, कहा इस मुद्दे पर मोदी जी से हुई है बातचीत, जांच में सच सामने आएगा। राम मंदिर वीआईपी दर्शन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का बड़ा खुलासा, एसआईटी जांच में 20 से 25 हजार लेकर विशेष दर्शन कराने और अवैध वसूली का आरोप। अयोध्या में वीआईपी पास सिस्टम के दुरुपयोग के आरोप तेज, होटल नेटवर्क, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की एसआईटी जांच में उठे सवाल। अयोध्या मामले में वीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा यह न केवल पाप है, महापाप है, दोषियों को सजा मिलेगी, कहा कानून और सरकार का पूरा विश्वास है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, लवकुश के घर से 14.25 लाख नकद और अहम दस्तावेज बरामद। आज तक से बोले लवकुश के नाना, नाती निर्दोष है, कैश बरामदगी और पुलिस कार्रवाई पर परिवार ने उठाए सवाल। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस एक्शन तेज, आरोपी अवनाश शुक्ला से 13 घंटे की कस्टडी रिमांड में होगी पूछताछ। लवकुश का निर्माणाधीन मकान निकला अवैध, बिना नक्शा पास निर्माण, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आसार। चढ़ावा चोरी की जांच में अब जमीन सौदों तक पहुंची, ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज, गवाहों और संपत्तियों की जांच शुरू। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कई अहम बैठकों में होंगे शामिल। लखनऊ पहुंचकर हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद और विधायकों के साथ 4 जुलाई को नितिन नवीन की अहम बैठक होगी। संगठन के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे नितिन नवीन। शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन में संबोधित करेंगे नितिन नवीन। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार, एलडी और बिजली विभाग को फटकार, 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। ओम प्रकाश राजभर का एसपी पर तीखा हमला, का ये वाईपी यानी कि यादववादी पार्टी है, दलितों का करती है अपमान। 10 जुलाई को करूर दौरे पर जाएंगे सीएम विजय, भगदड़ पीड़ित परिवार से दूसरी बार करेंगे मुलाकात। जमशेदपुर बंद का बीजेपी ने किया आह्वान, हिमांशु सिंह हत्याकांड पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। जमशेदपुर हिंसा के बाद आईपीएस अधिकारियों का तबादला, बीजेपी ने मूक दर्शक रहे पुलिसकर्मियों की एफआईआर पर उठाई मांग। बिहार के भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को सम्राट चौधरी की चेतावनी, शॉर्टकट से कमाई करने वालों के लिए बेऊर जेल तय। 2019 की तैयारी में जुटी बीजेपी, जेन जी पर खास फोकस, युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए तेज हुआ राष्ट्रवादी आउटरीच अभियान। पीएम मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में उड़ान कार्यक्रम 10 साल बढ़ाने का करेंगे ऐलान। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है मकसद। 2027 जेपी चुनाव की रेस में ओवैसी की एंट्री, पोस्ट कर बदले सियासी समीकरणों का दावा। ओवैसी ने कहा यूपी में बदल देंगे पूरा गेम, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान पर अभी सस्पेंस बरकरार। टीएमसी में पार्टी पर दावे की जंग तेज, दोनों गुटों ने असली संगठन होने का किया दावा। टीएमसी में बगावत पर चुनाव आयोग सख्त, ममता बनर्जी और ऋतव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश। बिहार में 1 लाख करोड़ की ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मिली गति, हटको के साथ एमओयू। इंडिया ब्लॉक की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे का सीजीआई को पत्र, एसआईआर प्रक्रिया पर जताई चिंता, चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। हनीमून पर पति के मर्डर के आरोपी सोनम की जमानत रद्द करने के मामले में मेघालय पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा पहले ट्रायल की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। मीडिया के सामने सिया अग्रवाल का विवादित रिएक्शन वायरल, घर के बाहर आपत्तिजनक इशारा करते कैमरे में कैद, वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र। महाराष्ट्र में मॉनसून बना जानलेवा, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, बारिश के चलते कई मौत। मुंबई के चेंबूर में पेड़ गिरने से 11 वर्षीय छात्रा की मौत, हादसे में 4 लोग घायल। मुंबई में बारिश के बीच एक दिन में 113 पेड़ गिरे, साकीनाका में खुले मैनहोल में गिरने से 7 वर्षीय व्यक्ति की मौत। नवी मुंबई में पानी का करंट फैलने से 2 छात्राएं बाल बाल बची, थाने के मुंबई में करंट लगने से 17 वर्षीय छात्रा की मौत। भिवंडी में करंट लगने से 1 व्यक्ति की मौत, डोंबिवली में बच्चों के लिए खाना लेने जा रही महिला की करंट लगने से मौत। चंबा में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा, तेज बहाव के कारण टूटा अस्थायी पुल, पुल टूटने से नाले में फंसे 25 लोग, रेस्क्यू टीम ने भी सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। किन्नौर में भारी बारिश के चलते सड़क पर आया मलबा, मलबे की चपेट में आई 2 कार, पहाड़ों से गिरे मलबे में नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप, मलबा हटाने के बाद NH5 पर यातायात शुरू। मुंबई में मॉनसून का कहर, बारिश के चलते अंधेरी, सबवे में भारी जलभराव, जलभराव के चलते लोगों का करना पड़ा दिक्कतों का सामना, पानी के बीच आते जाते नजर आ रहे लोग। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भर गई पवई झील, झील के किनारे मछली पकड़ते नजर आए लोग। गुजरात के बोटाद जिले में जोरदार बारिश, मॉनसून की दस्तक के साथ गिर गया है तापमान। जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में बाइक सवार समेत 5 लोग गिरे, सीसीटीवी में कैद हुए हादसे, प्रशासन पर उठे सवाल। हरिद्वार में मॉनसून आपदा से निपटने की तैयारियां तेज, 5 जगहों पर किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। हर की पैड़ी के पास डूबते 16 लोगों को बचाने का अभ्यास, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू ड्रिल। भीमगौड़ा टनल हादसे में 9 घायलों के प्राथमिक उपचार का मॉक ड्रिल, राहत बचाव का अभ्यास। शिवपुरी में बाढ़ जैसी स्थिति में फंसे 30 लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया।
डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की अहम बैठक आज, तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने वाले प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। यूपी टीईटी परीक्षा का दूसरा दिन कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न, 12 केंद्रों पर 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। देश के लिए विवाहिता को तेजाब पिलाने का आरोप, मेरठ में इलाज के दौरान मौत, पति समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महोबा में प्रेमी युगल ने पेड़ से लटक कर दी जान, मृतका की भरी मांग से शादी की आशंका, पुलिस जांच में जुट गई है। गाजियाबाद में एनकाउंटर, हत्या के आरोपी के पैर में लगी गोली, हथियार बरामदगी के दौरान भागने और फायरिंग का आरोप। एटा में भीषण सड़क हादसा, 5 यात्रियों की दर्दनाक तरीके से मौत, खड़ी रोडवेज बस से टकराए 2 वाहन, 12 घायल। नागपुर में मामूली टक्कर के बाद भयानक मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मामूली कट को लेकर पुलिसकर्मी पर बदमाश ने किया हमला, कार में तोड़फोड़ कर पुलिसकर्मी को पीटा। दरभंगा में बंद मकान के फंदे से लटका मिला व्यक्ति का शव, 2 दिन से था लापता, पुलिस ने शुरू की जांच। कल्याण से लापता 4 नाबालिग छात्राएं, राजस्थान के अजमेर से सुरक्षित बरामद, 72 घंटे में पुलिस की बड़ी सफलता। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने 4 छात्राओं के राजस्थान से किया रेस्क्यू। कौशाम्बी में दौड़ते एलपीजी टैंकर में भीषण धमाका, डिवाइडर से टकराते हुआ ब्लास्ट, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। कौशाम्बी टैंकर ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा 4 पहुंचा, 2 टोल कर्मचारी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 26 जून को कोखराज टोल प्लाजा के पास हुआ था हादसा, आग के गोले में तब्दील हो गया था पूरा इलाका। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पाकिंग विवाद में बुजुर्ग गार्ड की बेरहमी से पिटाई, 2 आरोपियों पर मामला दर्ज। गुरुग्राम के स्कूल में मामली बात को लेकर छात्रों में विवाद, इवेंट के दौरान जमकर चले रात घुसे, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। जल्दी कोलकाता में फिर सुनाई देगी मशहूर ट्राम की घंटी, राज्य सरकार ने लगभग 70 पुराने रूट पर फिर ट्राम सेवा बहाल करने की योजना का किया ऐलान। लखनऊ में आज से 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ, 800 वैरायटी के आम का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में आज से देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मंडी में हो रहा है आयोजन। टीडी गढ़वाल में जी राम जी योजना का शुभारंभ, योजना के तहत श्रमिकों को अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए गुड न्यूज, आज से खातों में ब्याज जमा होना शुरू होगा। अमरनाथ यात्रा पर पीएम मोदी का संदेश, भक्तों के लिए साझा किया 5 संकल्प वाला विशेष पत्र। अमरनाथ यात्रा रूट पर मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के सभी इंतजाम, पहाड़ी इलाकों में लगाई गई माउंटेन रेस्क्यू टीम्स। लैंडस्लाइड की समस्या से निपटने के लिए सभी औजारों के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस है ये टीम। सेहत खराब होने या चोटिल होने पर स्ट्रेचर की सुविधा। अमरनाथ तीर्थ यात्रा की सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 670 कंपनियों के साथ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कमांडो की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले हमले पर कड़े पलटवार की दीजिए गई चेतावनी का अमेरिका और इजराइल की तरफ से ना हो हमले। 4 जुलाई से शुरू होगा पूर्व सुप्रीम नेता का अंतिम संस्कार जुलूस, 9 जुलाई को मशहद में दफनाए जाएंगे खामेनेई। बहरीन में रिहायशी इलाकों और बंदरगाहों पर हमलों को लेकर यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। हॉर्मुज में मालवाहक जहाजों पर हमले के मुद्दे पर यूएन में हुई अहम चर्चा, क्षेत्र में तनाव बढ़ा। गुरुवार को इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों के 1,000 दिन पूरे होने पर रैली का आयोजन। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में बनाई शानदार जगह। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कमाल, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर अगले दौर में बनाई जगह। ब्राजील ने जापान के खिलाफ रोमांचक 2-1 से जीत हासिल करके नॉकआउट में एक दमदार प्रदर्शन किया। आज अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्डे, कोलंबिया वर्सेस घाना और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस मिस्र के नॉकआउट मैच है। नॉकआउट चरण में हर मैच बना करो या मरो, टीम राउंड ऑफ 16 के टिकट के लिए भिड़ी। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई आलिया भट्ट की बहुचर्चित फिल्म अल्फा, एक्शन से भरपूर इस फिल्म में फैंस को है बड़ी उम्मीदें। 5 जुलाई को आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट के साथ रचाएंगे शादी, सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त होंगे शामिल। रजनीकांत के फैंस का इंतजार खत्म, 54 सेकंड का जेलर 2 का टीजर लॉन्च, 15 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का धांसू कलेक्शन 7 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 137 करोड़ के पार। सड़क आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और जख्म जैसी फिल्मों के निर्देशक महेश भट्ट के निर्देशन दुनिया का अलविदा, एक इंटरव्यू में किया खुलासा।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राह चलते ई रिक्शा बंद करने वाली खबरों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार के आदेश पर प्ले स्टोर से ई रिक्शा रोकने वाले दो एप्स को हटा दिया गया है। आरोप यह है कि इस एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा को रिमोट से बंद करने के लिए किया जाता था। सुरक्षा और गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए ऐप हटाने का फैसला लिया गया है। बिजनौर, उज्जैन, दिल्ली तमाम जगहों से इस तरह के मामले सामने आ रहे थे जिसमें ऐप के जरिए रोका जा रहा था इन ई रिक्शा को। उज्जैन से एक वीडियो में एक शख्स मोबाइल से सामने चल रही ई रिक्शा को बंद करता दिख रहा था। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। सुशांत मेरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, दो ही ऐप्स थे प्ले स्टोर पे या और भी हैं?
1: फिलहाल ये दो ऐप थे जिसके ऊपर जो है वो अब कार्रवाई की गई है। आज सुबह भी बीजेपी के कई लीडर्स की तरफ से एक कंप्लेंट जो है यूनियन मिनिस्टर को की गई थी आईटी की, और इसके अलावा दिल्ली सरकार के मिनिस्टर्स को भी ये जानकारी दी गई थी कि इस तरीके की ऐप दिल्ली में, इसके अलावा यूपी में कई इलाकों के अंदर राज्यों में चल रही है, जिसका इस्तेमाल लोग जो है वो बैटरी रिक्शा का जो है वो में उसको रोकने में, उसको लॉक करने में कर रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं थ्रेट था जिसको लेकर के ये एक्शन जो है वो फिलहाल अब लिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने भी इस पूरे मामले की जानकारी को लेकर के दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग से भी बातचीत जो है वो की है कि इस तरीके की ऐप अगर दिल्ली के अंदर चलती है या उसके ऊपर कोई व्यक्ति इस तरीके का जो ई रिक्शा को लॉक करता है तो उस पर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। खुद इसको लेकर के दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं उनकी भी कई अधिकारियों से इस पूरे मामले पर बातचीत जो है वो चल रही है। फिलहाल अब जो यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले पर एक्शन जो है वो फिलहाल लिया गया है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे चढ़ावा चोरी मामले की। इस बीच इसमें बड़ी खबर यह है कि आरोपी अनुकल्प मिश्रा से पिछले साल उसने एक कार खरीदी थी। दावा किया जा रहा है कि मंदिर से जुड़ने के बाद उसने एक कार खरीदी। आज तक के पास अनुकल्प मिश्रा की कार खरीद से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर मौजूद है। यह जानकारी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच सामने आई है। हर एंगल को अब एसआईटी खंगाल रही है। तो चढ़ावा चोरी का पैसा कहां कहां इस्तेमाल किया गया, किसी ने मकान बनवा लिया, किसी ने कार खरीद ली, किसी ने महंगे मोबाइल खरीद लिए, ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है एसआईटी के लिए। मंदिर से जुड़ने के बाद ही अनुकल्प मिश्रा ने ये कार खरीदी है। अब जांच के दायरे में कार है, उसके दस्तावेज हैं, कहां से इसका पैसा लाया गया, कितना कैश, कितना चेक में दिया गया, ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। राम मंदिर के लिए दान में कथित चोरी के मामले पर बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने बड़ी बात ये कही है कि इस मामले में पीएम मोदी से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने पूछा है कि आगे क्या होगा। उन्होंने पीएम से ये भी कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल जाना पड़े। विनय कटियार ने कहा कि यह साफ है कि पैसे का गबन हुआ है।
2: मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर,
3: इस मामले में,
2: इसी मामले में, और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं, लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं, अब हो सकता आगे जाएं। अभी
0: संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, आपको लगता है कि विनय कटियार जितनी डिटेल में ये बातचीत बता रहे हैं उतनी डिटेल में ये हुई है?
4: देखिए, मुख्यमंत्री जिस तरीके से विनय कटियार कह रहे हैं और उनकी प्रधानमंत्री से बातचीत की बात आ रही है और वो बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरीके की डिटेल की बात कर रहे हैं और जो बातें बता रहे हैं वो कह पाना, समझ पाना, वो विनय कटियार का दावा जरूर है कि जेल भेजा जाएगा, प्रधानमंत्री जी से बात हुई। वो चूंकि विनय कटियार अयोध्या के दिग्गज नेता रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से बात जरूर हुई होगी और उनकी तरफ से जो दावा है वो अपने आप में बड़ी बात है कि इसमें तमाम लोग जेल जाएंगे, अभी देखते रहिए, इंतजार करिए। तो ये विनय कटियार की तरफ से दावा है और ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, तो अपने आप में ये देखा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जो चंदा चोरी का मामला है, चलावत चोरी का मामला है, इसमें ये जरूर इशारा करता है कि विनय कटियार के दावे से कि आने वाले भविष्य में अगर ऐसा कुछ होगा तो बड़े लोगों पर कार्रवाई होगी। जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब तक की जांच में मालूम चला है कि चंदा चोरी में सबसे आगे अविनाश शुक्ला था। बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी केस में अविनाश शुक्ला लाभार्थी है, उसके पास चोरी की एक मोटी रकम है जो उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ स्थित घर में छिपा रखी है। अब तक जितनी रकम की बरामदगी हुई है उसमें सबसे ज्यादा अविनाश के पास से मिली है।

0: राम मंदिर में लूटकांड का सबसे बड़ा किरदार कौन? पुलिस की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर किसका नाम? आज तक पर लुटेरा नंबर वन का बेनकाब पूरा पर्दाफाश। देश को हिला देने वाले लूटकांड में होने वाला हर खुलासा पहले से ज्यादा सनसनीखेज और खलबली मचा देने वाला साबित हो रहा है। ये पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे तक चढ़ावे की ढेर पर सबने हाथ मारा, जिसे जहां जो और जितना हाथ लगा हथियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोई लूटता रहा, खजाना खाली करता रहा, तो कोई आंखें मूंदे खामोशी से देखता रहा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा अविनाश शुक्ला। वही अविनाश शुक्ला जिसके भाई का नोटों की गड्डियों के साथ वायरल वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। वही अविनाश शुक्ला जिसका योग सेंटर से दान पात्र वाले रहस्यमय बक्से की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला ने मोटी रकम ठिकाने लगाई है। अंदेशा है कि अविनाश शुक्ला सोने चांदी के जेवर भी ठिकाने लगा चुका है।
1: अविनाश शुक्ला से की गई पूछताछ और जुटाई गई जानकारी के आधार पर उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अविनाश शुक्ला से न सिर्फ पूछताछ की जाएगी बल्कि उससे एक बड़ी बरामदगी की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जिसके पास से पुलिस को सबसे बड़ी बरामदगी 20,39,000 रुपए और डॉलर सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। अब इससे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर कुछ और चोरी से जुड़े तमाम राज पुलिस खंगालने में जुटी है।
0: सवाल है कि अविनाश शुक्ला के घर से मिली 2,39,000 की रकम उसकी मोटी कमाई का ट्रेलर तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 लाख सिर्फ झांकी है, उसकी पूरी कमाई का पर्दाफाश होना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अविनाश शुक्ला ने और रकम होने की बात मानी है। ये भी बताया है कि उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ के घर में छिपा रखा है। खबर है कि पुलिस पड़ताल करने उसे अयोध्या और प्रतापगढ़ ला सकती है। सोशल मीडिया पर अविनाश के भाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो नोटों की गड्डियां लेकर रील बनाता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले वो अयोध्या आया था, वो अविनाश के साथ ही रहता था। इसके बाद वो प्रतापगढ़ चला गया। अब उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या, आज तक।
2: चढ़ावा चोरी के इस मामले के साथ ही पुलिस और एसआईटी ने जमीन की खरीद में घोटाले की भी जांच शुरू कर दी है। आप सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद एसआईटी ने तमाम आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू की है। खबर यह भी कि एसआईटी को आरोपी लवकुश मिश्रा की जायदाद का पता चला है। जांच में उसका एक मकान अवैध पाया गया, जिस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है।

0: राम मंदिर में लूट से बनाई अकूत संपत्ति, चढ़ावे की चोरी से धन्ना सेठ बने आरोपी, चढ़ावा चोरी की आंच, अब जमीन घोटाले की जांच। जी हां, चढ़ावा चोरी की जांच की आंच जमीन घोटाले तक पहुंच गई है। खबर है कि गुरुवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी ने ट्रस्ट की खरीदी जमीन की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने रजिस्टर्ड दस्तावेजों के गवाहों को बुलाया था। जो भी गवाह आए उनके बयान दर्ज किए और साथ ही पूछताछ भी की। ये जांच आज भी जारी रहेगी। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने एसआईटी से मुलाकात की थी और एसआईटी को सबूत सौंपे थे।
1: एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है।
2: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रॉपर्टी संबंधित शिकायत एसआईटी की टीम को दस्तावेजों के साथ सौंपी है। दूसरे चरण में इस मामले की जांच होनी है। हालांकि साल 2020-21 में जब जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उस वक्त प्रदेश सरकार ने राधेश्याम मिश्रा कमेटी का गठन किया था, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसको लेकर आज तक राजनीतिक विवाद उत्तर प्रदेश में जारी है। अब जब दूसरी बार इस मामले को लेकर जांच शुरू होने वाली है तो ऐसे में लीपापोती की संभावना नहीं होगी।
0: तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आएगा कि ट्रस्ट ने औने पौने दाम में मंदिर के लिए जमीन क्यों खरीदी, क्या इसकी वाकई जरूरत थी या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी। जांच के साथ ही जमीन जायदाद का पहलू भी गंभीर होता जा रहा है। जांच एजेंसी को आरोपियों की अकूत संपत्ति का भी पता चल रहा है और इसकी भी छानबीन की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सभी आरोपियों की संपत्तियां खंगाल रही है। अयोध्या, लखनऊ, नोएडा के अलावा दूसरे राज्यों में भी इनकी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। पुलिस ये पता कर रही है कि किसकी कितनी संपत्ति है। पुलिस संपत्तियों की रजिस्ट्री की कॉपियां भी निकाल रही है। आपको हमने ये भी बताया था कि एसआईटी 5 सालों के ट्रस्ट के ऑडिट रिपोर्ट की भी जाँच करेगी ताकि आमदनी और खर्च की तह तक जाकर पड़ताल हो सके।
3: एसआईटी 5 साल की खातों की ऑडिट करना चाहता है, ऑडिट की जांच करना चाहता है, सर्जिकल, क्लिनिकल, जो कुछ भी, और इसके अलावा भी जो कुछ भी जांच के सत्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी जांचना जरूरी हो एसआईटी को जांचना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं पुलिस की जांच में, एसआईटी की जांच में वो जो जो कुछ उचित समझते हैं उसकी जांच करें, हम स्वागत करेंगे।
0: अब तक की जांच में आरोपियों की जायदाद का एक एक कर खुलासा हो रहा है। आरोपी लवकुश मिश्रा का निर्माणाधीन मकान भी अवैध निकला है। लवकुश ने इसका नक्शा पास कराए बिना मकान का निर्माण करा लिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण की जांच में ये सच सामने आया है, जिसके बाद इस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: रुके आयुष ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Pros, save more on what you need to get the job done

0: summer hits. Blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now. Sokudo.
1: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
2: आगे आगे,
3: अरे उधर
2: उधर गिर,
3: करेक्ट करेक्ट,
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर कसा शिकंजा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से हुई पूछताछ। कटियार बोले जेल जा सकते हैं चंपत राय, पीएम के संपर्क में हूं। बीजेपी की नई टीम पर नितिन नवीन की अमित शाह के साथ मैराथन बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल और संगठन में बदलाव पर 3 घंटे तक चली चर्चा। कल से बीजेपी अध्यक्ष का यूपी दौरा। मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल। 3 दिन में 5 मौत। खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान। बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। हनीमून पर पति के मर्डर के आरोपी सोनम की जमानत रद्द करने के मामले में मेघालय पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सबसे बड़ी अदालत में पुणे के मंगेतर हत्याकांड का जिक्र। जम्मू कश्मीर, बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बढ़ा पहला जत्था। पूरे रूट

0: आज पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। बात करेंगे मॉनसून के साथ मुंबई में आई आफत की, क्योंकि सिविक अथॉरिटीज मुंबई में लापरवाही बरत रही हैं, जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई। मीरा भाई अंदर इलाके में नारियल के पेड़ के नीचे दबने से स्कूटी सवार घायल हुआ और अब उसकी जान चली गई है। ये मुंबई में छठी मौत का मामला है। मॉनसून ने पिछले 3 दिन में 6 लोग मारे गए हैं। मॉनसून ने मुंबई एक बार फिर सिविक सिस्टम की पोल खोल दी है, लापरवाही और खामियों को उजागर कर दिया है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, साकीनाका, डोंबिवली और मुंब्रा की, जहां पर मुंब्रा में 17 साल की बच्ची की मौत हुई, वहीं डोंबिवली में करंट लगने से एक महिला की जान चली गई। साकीनाका में मैनहोल में एक शख्स के गिरने से उसकी जान चली गई। मेरी सहयोगी विद्या जुड़ गई इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। विद्या, मुंबई मॉनसून आने के बाद से छठी मौत का मामला है, किसी अफसर की जिम्मेदारी तय होगी या फिर मुंबई कर भाग्य के भरोसे ही रहेंगे?
1: तो तमाम हादसे पिछले कुछ दिनों में मुंबई और आसपास के इलाकों में देखने को मिले हैं और यही दर्शाते हैं कि किस तरह से लापरवाही हुई है। अब अगर इन दो वाक्य जो मुंबई में हुए हैं उसी की अगर हम बात करें, खासतौर से मैनहोल की, अगर जो इंसान जो गिर गया उसकी बात करें, या फिर अगर बात करें जो पेड़ गिर गया था चेंबूर इलाके में जहाँ पे हम हैं वहाँ पर, तो इन दोनों मामलों में जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने पैनल्स सेट किए हैं, मतलब कि यानी कि कमिटीज बिठाई हैं जांच पड़ताल करने के लिए, और जब तक जांच पड़ताल चलती है तब तक के लिए अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं लेकिन अभी तक इसमें फिलहाल किसी पर गाज गिरी नहीं है, सिर्फ सस्पेंशन हुआ है। अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी, उनका एहसास है कि नहीं इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन आखिरकार कब इन सारे कमिटीज के रिजल्ट सामने आएंगे, क्या वाकई में कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्या वाकई कोई करेक्टिव मेजर लिया जाएगा, ये कब सामने आएगा, इसी का इंतजार मुंबई वासी कर रहे हैं।
0: शुक्रिया विद्या तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश होती है पूरे सिस्टम की पोल खुल जाती है, सड़कों पर गंदगी बहने लगती है। बीएमसी की लापरवाही से पिछले 3 दिन में 6 लोगों की जान चली गई है, लेकिन सवाल यही कि मुंबई में ही हर बार यही तस्वीर क्यों बनती है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता है?

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपनी हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
3: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस, वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके, उनको निलंबित किया है। लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल हुआ।
1: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल करा है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
3: देखो, गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते।
0: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी। इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई।
4: ये बोल के हम थक चुके हैं। आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया था, स्लैब गिर गया था। आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान पे गई बाप को मिलने के लिए और आई, उसको करंट लगा और जगह पे बच्ची खत्म हो गई।
0: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली मां की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली। मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत हो गई थी। अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभा देवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक।
5: जूनागढ़ में पहली ही बारिश में व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। शहर में गड्ढे खोदकर सिविक प्रशासन इंतजार कर रहा है कि नागरिक आएं और उसमें गिर जाएं। लापरवाही का आलम यह है कि गड्ढों के आसपास कोई वार्निंग बोर्ड नहीं है।
6: कहीं कहीं गड्ढे रह गए हैं, ये मैं स्वीकार करती हूँ। और वहां पर जो आज सुबह ही वो गड्ढे में गिरे हैं, वो हमें भी दुख है, पर ये सब गड्ढे 24 घंटे में वो हम लोग उसको फिलअप कर लेंगे।
7: ऑनरेबल कमिश्नर सर की अनुसार जो लगत उसकी एजेंसी है, उसकी पीएमसी है, एजेंसी है और पंसन जो और उसका ओल्ड इंजीनियर है, उसको एक सोपोज नोटिस भी दिया है।
0: ये गुजरात का जूनागढ़ है, जहाँ सड़क ही गड्ढा है और गड्ढा ही सड़क है। अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो सावधान रहिए, कब किस रास्ते पर यमदूत मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिम्मेदार अफसरों के भरोसे रहे तो गए काम से। जूनागढ़ का सिविक प्रशासन गड्ढे खोद कर जैसे इंतजार कर रहा है कि बारिश खत्म होगी तो गड्ढे अपने आप भर जाएंगे। ये जूनागढ़ का आजाद चौक है, जहां बाइक पर जा रहा एक शख्स अचानक गड्ढे में गिर गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई है। बारिश की वजह से यह पता करना मुश्किल हो गया है कि कहां गड्ढा है और कहां सड़क। सिविक प्रशासन ने कहीं भी कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया था जिससे लोगों को पता चल सके कि यहां सड़क क्षतिग्रस्त।
6: हम जहाँ पर खड़े हैं इसी जगह पर आजाद चौक है यहाँ, और इसी जगह पर आज सुबह 6:30 बजे एक बाइक सवार है वो इस गड्ढे में गिर गया। अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर जा रहे युवक को अचानक एक गड्ढा आया और गड्ढे में वो सिर के बल गिरा। इसके साथ साथ जूनागढ़ के कई ऐसी वारदात है जिसने प्रशासन की पूर्व मानसून की जो तैयारी है उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए।
0: सिर्फ आजाद चौक ही नहीं, घटनगर इलाके में भी एक ही गड्ढे में अलग अलग समय पर 3 से 4 लोगों के गिरने की घटनाएं हैं। बारिश का पानी भर जाने के कारण यह गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वहां से गुजर रहा एक शख्स उसमें गिर गया। स्कूटी सवार सीवर में गिरा तो पास खड़ा एक शख्स उसे बचाने दौड़ा। स्कूटी सवार की मदद की जा रही थी कि तभी पैदल आ रही एक महिला अपने बच्चे के साथ उसी गड्ढे में गिर गई। ये तस्वीर भी जूनागढ़ की है। स्कूल से बच्चे को लेकर जा रहा एक शख्स सामने बने गड्ढे में गिर गया। शहर में सीवर और सड़क के अधूरे तथा खराब काम स्थानीय नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत और समस्या का कारण बन गए हैं, जिसके चलते जनता में प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। जूनागढ़ नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि गड्ढे भरने का समय नहीं मिला और बारिश आ गई, लेकिन अब वे 24 घंटे के भीतर सभी गड्ढे भर देने का दावा कर रहे हैं।
6: एमजी रोड का पेच हमने दूसरी बार किया क्योंकि ये सब कुछ हुआ था, इसीलिए तो ये गड्ढे पड़े हैं, वो गड्ढे बड़े हो गए हैं, तो उसकी वजह से अभी हम 24 घंटे में हमने सूचना दी है कि तंत्र है, तंत्र और हमारे कॉरपोरेटर अभी फील्ड में है, और वो तंत्र और तंत्र के इंजीनियर और कॉरपोरेटर जो कुछ भी गड्ढे हैं वो 24 घंटे में वो गड्ढे हैं वो फिल अप कर लेंगे और फिर गड्ढे नहीं रहेंगे।
0: जूनागढ़ नगर निगम की लापरवाही से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा। इन घटनाओं के बाद सवाल उठता है कि गहरी नींद में सोया यह प्रशासन आखिर कब जागेगा, और क्या जूनागढ़ का सिविक प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। गार्गी जोशी, जूनागढ़ आज तक।
5: गुजरात में मानसून की दस्तक मात्र से सारे कागजी दावे पानी में बह चुके हैं। वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, हर जगह से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वलसाड में तो सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। सूरत में पहली बारिश में सड़क धंस गई है।
0: ये गुजरात का वलसाड है। शहर की सड़कें जलमग्न हैं। अंडरपास में घुटने तक पानी भर गया है। आवागमन ठप पड़ा है। वलसाड में लगातार बारिश के चलते एक प्रोटेक्शन वॉल भी ढह गई। शहर के निचले इलाकों में पानी घुस गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गईं। वलसाड की प्रमुख सड़कों की हालत ऐसी हो गई कि मानो शहर नहीं नहर हो। हर साल की तरह इस बार नगर पालिका ने करोड़ों रुपए खर्च करके नालों की सफाई करवाई, जल निकासी दुरुस्त करने का दंभ भरा, लेकिन सीजन की पहली बारिश ने दावों की पोल खोल दी।
8: वलसाड और नवसारी में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। करीब 8 इंच जितनी बारिश जो है 4 घंटों में हुई, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी भर गया था, पर धीरे धीरे वो भी जल निकासी शुरू हो चुकी है। तो वैसे में जनता को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से किसानों को अब इस बारिश से राहत मिली है और आम जनता को गर्मी से भी राहत मिली है।
0: अब जरा सूरत की भी तस्वीरें देखिए। कहने को तो सूरत गुजरात की स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी की सड़कें ऐसी हैं कि पहली बारिश में धस गई, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ये सूरत का टिंडोली इलाका है। इस सड़क को बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी हालत ये है कि यहाँ से गुजरना खतरों से खाली नहीं है।
9: स्मार्ट सिटी तो आपने बहुत सी देखी होगी, लेकिन हम आज आपको सूरत स्मार्ट सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, जो लगातार स्मार्ट सिटी विवादों में आ गई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सूरत शहर की जो है स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी की सड़कें देखिए आप, जहां तहां कैसे धस जाती है। ये आप पूरा टैंकर देख सकते हैं, आगे के जो व्हील है पूरे इसमें धस चुके हैं। ये सड़क है, आवाजाही वाहनों की यहाँ से चल रही है और आप देखेंगे तो आगे की जो पूरा व्हील है, जो पूरा हिस्सा है, किस तरह से जो सड़क धसी है उसमें बैठ गया है।
0: ये पानी का टैंकर यहाँ से गुजर रहा था तभी सड़क धस गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई और समय रहते बड़ा हादसा टल गया।
9: ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये पूरा जो लंबी सड़क है ये पूरा है धस चुकी है। यहाँ पे देखेंगे आप, सिर्फ एक जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जो सड़क है यहाँ पर धस चुका है। तो सूरत के डिंडोली इलाके में स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हैं। स्मार्ट सिटी में सड़क कहीं भी धस जाती है, मानसून की सीजन में लोगों के लिए सड़कों पर वाहन चलाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि किसी भी जगह पर भी सड़कें धस जाती हैं। ऐसे में सूरत महानगर पालिका और उसके इंजीनियरों के, उसके जो ठेकेदार हैं, उन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो किस तरह की सड़कें बनाते हैं जो कहीं भी सड़कें धस जाती हैं।
0: ये तस्वीर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की है। गुजरात के अंकलेश्वर के पास एक्सप्रेसवे धस गया है। पुल पर 7 से 8 फीट बड़ा गड्ढा हो गया है। कंक्रीट का स्लैब टूट जाने से उसके अंदर के लोहे के सरिये साफ दिखाई देने लगे। एक्सप्रेसवे का ये सेक्शन 8 महीने पहले ही शुरू किया गया था और पहली ही बारिश में ही खस्ताहाल हो गया। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।
5: इंदौर में भी बादल जमकर बरस रहे हैं लेकिन इस बारिश ने क्लीनेस्ट सिटी इंदौर की डर्टी पिक्चर सबके सामने ला दी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फराटा भरती थी आज वहीं घुटनों तक पानी है। लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है।
10: मध्य प्रदेश का जिला इंदौर, कहने को तो ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है लेकिन मानसून की पहली बारिश में सारी स्वच्छता सड़कों पर बह गई। अंधेरा जरूर है लेकिन इतना दिख रहा है कि सड़क पर नहर बह रही है। इंदौर की यही हकीकत है, यही असली तस्वीर है जिसे मानसून फव्वारों ने साफ कर दिया है। देखिए जरा, यहाँ कोई कैनाल नहीं है, कोई नाला नहीं, बल्कि रिहायशी इलाका है और कॉलोनी के अंदर की यह सड़क की हालत है। पानी इतनी तेज बह रहा है कि जरा सी असावधानी हो जाए तो आदमी गया काम से। ये भी देखिए, ये सड़क है जहाँ 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा है। स्कूटी पानी में डूबी हुई है, लहरें इतनी तेज आ रही हैं कि कुछ गाड़ियां पानी में गिर गई। जोरदार बारिश ने नगर निगमों की दावों को पानी में बहा दिया है। तिपानिया मेन रोड पर महज 100 मीटर के दायरे में 2 कारें सड़क में ही समा गई क्योंकि जलभराव से सड़क पर दलदल बन गया था। गाड़ियों में बैठे परिवार बारिश के बीच घंटों तक मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन ना तो निगम की कोई टीम पहुंची, ना पुलिस, ना ही प्रशासन का कोई नुमाइंदा। जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब जिम्मेदार अमला मौके से नदारद रहा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इंदौर के द्वारकापुरी में तेज बारिश के बाद नाला उफान पर था। उफने नाले को पार करने की कोशिश में 36 साल का महेश बह गया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और तेज बहाव के बाद भी बाइक लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाते ही महेश का पैर फिसल गया और वो बाइक के साथ नाले में बह गया।
11: नाले का जो रपटा था उससे बाइक निकाला था, उस समय तेज बहाव के कारण ये युवक गाड़ी के साथ बह गया, जिसकी अभी तलाश की जा रही है। वहाँ जो लोकल स्थानीय स्तर पर थाना की जो द्वारकापुरी पुलिस, इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम है, इसकी तलाश में जुटी हुई है। अभी कोई फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं मिली।
10: इस हादसे के बाद बाइक सवार शख्स लापता है। आपदा प्रबंधन टीमें उसकी तलाश कर रही हैं लेकिन पता नहीं चल सका है। मानसून हर साल आता है, हर वर्ष यही हालात बनते हैं, हर वर्ष यही खोखले दावे दोहराए जाते हैं लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस लापरवाही की जवाबदेही तय कब होगी? कागजों पर नंबर 1 स्वच्छ शहर की व्यवस्थाएं हकीकत में कब नंबर 1 होंगी? मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से उज्जैन में शिप्रा जलस्तर बढ़ने लगा है। शिप्रा के तट पर बने कई मंदिरों में पानी भर गया है। घाटों पर होने वाला पूजा पाठ अब सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
5: हिमाचल प्रदेश के चंबा और कुल्लू में जोरदार बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते किन्नौर में कई जगहों पर फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति है तो वहीं चंबा में देवी दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु फंस गए।
12: ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर है।
13: जहां बारिश ने दस्तक दे दी है। दिन में बरसात हुई और रात में दबे पांव आफत आ गई। ऊंचाई वाले इलाकों से पानी के साथ बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। रास्तों में जो कुछ भी आया सब बह गया। किन्नौर में चोली के पास जब बारिश हुई तो नेशनल हाईवे 5 पर जहां की तहां गाड़ियां फंस गई, क्योंकि पानी के साथ मलबा और बोल्डर भी नीचे गिर रहे थे। तबाही का अंदाजा इसी से लगाइए कि ये गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। रास्ता जगह जगह पर बाधित है। दिन में जहां तहां गाड़ियां फंसी रही, कुछ गाड़ियों में इतना कीचड़ भर गया कि उनका दोबारा स्टार्ट होना मुश्किल है। ये हिमाचल का चंबा है, जहां छरोला माता के दर्शन कर लौट रहे करीब 25 श्रद्धालु भद्रा में फंस गए, क्योंकि अस्थाई पुल पानी की तेज धार में बह गया

0: पानी का स्तर अचानक बढ़ने से श्रद्धालु और स्थानीय लोग बीच रास्ते में फंस गए। मौके पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया तो बहुत मेहनत के बाद रस्सी के सहारे सभी को निकाला गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आज तक ब्यूरो
1: वक्त शो से ब्रेक का उछला बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
4: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
5: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
4: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
6: Because people who all watch games, they hear the voice.
4: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
7: Akoji.
8: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: फिर से हमारे घर पे आया है.
5: कुछ तो बात है इस दिल में.
6: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी. ये आपके लिए.
5: कुछ तो बात है इस दिल में.
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन।

0: एशियन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ
3: टेक इट इजी विद सॉफ्ट हिट्स. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now. Time after time.
4: Sanitary Solutions.
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है.
6: कुछ तो बात है इस दिल में.
7: माँ भी हमेशा अपनी माँ के मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी. ये आपके लिए.
6: कुछ तो बात है इस दिल में.
8: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
9: सरसों.
10: संसद का मॉनसून सत्र इस बार भी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार एक बार फिर सदन में वो बिल पेश करने जा रही है जिस पर पिछली बार बवाल मच गया था. सूत्रों के मुताबिक 130वें संविधान संशोधन बिल पर बनी जेपीसी इससे जुड़े प्रावधानों को हटाने के पक्ष में नहीं है. माना जा रहा है कि 17 जुलाई को समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है. कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए पद पर नहीं रह सकता. पीएम, सीएम या मंत्री की गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेनी होगी. अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा. बाद में पीएम, सीएम या मंत्री को जमानत मिली तो वे अपने पद पर वापस आ सकते हैं. अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए जाने पर ही जनप्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता था. मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है. पिछले मानसून सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े 3 विधेयक संसद के दोनों सदनों में रखे थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पर सहमति बनी थी. विपक्ष का कहना है कि अगर ये बिल पास होते हैं तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का खतरा पैदा होगा. सरकार का तर्क है कि इससे सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ेगी. गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाला व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहे, ये लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ है. हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर कसा शिकंजा, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से हुई पूछताछ, कटियार बोले जेल जा सकते हैं चंपत राय, पीएम के संपर्क में हूँ। बीजेपी की नई टीम पर नितिन नवीन की अमित शाह के साथ मैराथन बैठक, मोदी कैबिनेट में फेरबदल और संगठन में बदलाव पर 3 घंटे तक चर्चा, कल से बीजेपी अध्यक्ष का यूपी दौरा। मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल, 3 दिन में 5 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान, बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बड़ा पहला जत्था, पूरे रूट पर आज तक की मेगा कवरेज। और चंद घंटे बाद शुरू हो रही है ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई के सुपुर्द खाक की प्रक्रिया, सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती भी पहुंचे, तेहरान से आज तक की बड़ी कवरेज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2 बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। और जैसा कि हमेशा होता है न्यूज रूम लाइव में, सबसे पहले हम बताते हैं कि आज कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम किस खबर के बारे में आप बात करेंगे, मंडे ट्रस्ट का भर्ती गैंग सबसे बड़ा खुलासा। क्या खुलासा, कैसे भर्तियां की गई, क्या अनियमितताएं रही, ए टू जेड हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, क्यों बीजेपी के नेता विनय कटियार की तरफ से कहा गया कि हो सकता है बहुत जल्द चंपत राय जेल में हो, उसके पीछे की वजह क्या है, किससे संपर्क में है विनय कटियार, ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर रहने वाली है वो हम आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर आज तक के साथ बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन, मेगा कवरेज आज तक पर बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा का लगातार जारी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ठीक 2:30 बजे यानी अब से करीब आधे घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, क्या कहा उन्होंने दिल्ली को लेकर, ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है खुलासे हो रहे हैं, अब एक और बड़ी खबर आज तक के पास है जिससे आने वाले वक्त में जो जांच का दायरा है वो एक अलग दिशा ले सकता है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट पता चला है कि सैनिक सिक्योरिटी फर्म के डायरेक्टर और अयोध्या में स्टाफ की जॉइनिंग प्रक्रिया से जुड़े एरिया मैनेजर ने जो दावे किए हैं उनके तहत भर्ती प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दावा किया गया है कि कर्मचारियों का चयन एजेंसी ने नहीं किया था, उनके मुताबिक कर्मचारियों की सूची पहले ट्रस्ट से बैंक तक पहुंची, फिर बैंक ने वही सूची एजेंसी को भेजी, एजेंसी ने सिर्फ उन लोगों का केवाईसी लेकर उन्हें अपने पेरोल पर रखा और वेतन का भुगतान किया। इतना ही नहीं, उनका यह भी दावा है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लिखित दस्तावेज और रिकॉर्ड एसआईटी को अब सौंप दिए गए हैं। तो सैनिक डायरेक्टर फर्म के डायरेक्टर का एक बहुत बड़ा दावा है और बड़ा दावा यहां पर किया गया है जिसमें यह तय किया गया है, यह बताया गया है कि बहुत सारी अनियमितता गड़बड़ियां यहां पर पाई गई हैं, भर्ती प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ है, जो होना था वो नहीं हुआ है, कहीं बैंक तक पहुंचता है, बैंक के बाद फिर किसी और को पहुंचता है और उसके बाद भर्ती हो जाती है। आपको वो सुनवाते हैं
2: गौरव जी, हम ये जानना चाहते थे कि जो इन लोगों का प्रोफाइल आया, आपने सेलेक्ट किया इनको, तो ये आप तक कैसे पहुंचे, आप इन लोगों तक कैसे पहुंचे?
3: हमारा स्टेट बैंक जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे हमारा स्टेट बैंक का अनुबंध है हाउसकीपिंग का, हाउसकीपिंग स्टाफ हमने स्टेट बैंक में दिया हुआ है और जो सिक्योरिटी का काम है वो एसआईएस का है। तो ये हाउसकीपिंग जैसे बैंक में होते हैं तो बैंक का ट्रस्ट के साथ टाइप है, तो हमारा टाइप बैंक से, तो हमने बैंक को स्टाफ दिया, ये बैंक ट्रस्ट के साथ वो अपना गिनती करना ये करना वो उस काम में उनको लगाएंगे।
2: ये जो स्टाफ का सिलेक्शन हुआ, स्टाफ का सिलेक्शन कैसे हुआ?
3: स्टाफ का ये वो मंदिर से ही लिस्ट मिली थी कि ये हमारे आदमी, उन्होंने बैंक को दिया, बैंक ने हमको दिया कि इनको इनको आप अपने उस पे रख लीजिए पेरोल पे।
2: तो ये ट्रस्ट की तरफ से आया था ये इनका?
3: ट्रस्ट की तरफ से बैंक नहीं, ट्रस्ट की तरफ से बैंक को और बैंक की तरफ से हमको,
2: तो
3: उसने मुझे डायरेक्ट मेल दिया जी।
2: तो वो आपके पास कोई उसका मेल ट्रेल या कोई कम्युनिकेशन का ट्रेल होगा ना आपके पास?
3: हाँ हाँ,
2: तो वो आप भेज सकते हैं आज तक को?
3: नहीं, वो जो भी चीजें वो एसआईटी को दे दी गई हैं।
2: आपने दिया है एसआईटी को?
3: जी जी जी जी।
2: तो वो मेल पे था, व्हाट्सएप पे था, कैसे आया था
3: वो पेपर? ऑन पेपर हमको रिटेन हुआ है कि 19 आदमी आप स्टेट बैंक में लगाने का।
4: गौरव जी मेरा ये सवाल है कि वैसे नियम है क्या, मतलब जैसे आप अगर हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो आप तो अपने ही एम्प्लॉइज देते होंगे ना?
3: नहीं, हाउस कीपिंग जैसे कि जैसे हमारे 8-10 स्टेट में चल रहे हैं तो हर जगह तो हम ही भर्ती करते हैं सिंगल सिंगल ब्रांचों में, लेकिन वहाँ मंदिर की वो ब्रांच बड़ी थी तो इसलिए स्टेट बैंक ने हमसे 18-19 आदमियों की डिमांड की कि आप 18-19 आदमी इनको आप अपने एंड पे रख लीजिए।
4: जी तो आपने आप रखते उसके उससे क्या हुआ कि वो लोग खुद ही आपको बोले कि भैया तुम ये लो, ये हमारे आदमी रख लो।
3: उनका हमको बायोडाटा मिल गया, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड ये जितने भी तमाम जो केवाईसी है हमारे फॉर्म पे उनको मिला, हमने उनकी वही फिलअप हुआ, फिलअप करके ये हमारे उस पे आ गए, हम उनको मंथली सैलरी देते रहे।
0: बहुत चीजें स्पष्ट हो रही होंगी, कड़ियां जुड़ रही होंगी। अब एजेंसी के एरिया मैनेजर जो अयोध्या में काम करते हैं उनसे भी बात की तो उन्होंने ट्रस्ट की कारगुजारियों को सभी के सामने लाकर रख दिया।
4: खुद भी इंटरव्यू के लिए गए थे ना?
5: इंटरव्यू का मतलब सर?
4: इंटरव्यू के लिए आप गए थे ना अयोध्या?
5: हाँ गए थे।
4: तो वहाँ क्या हुआ था?
5: मतलब नहीं, हमसे पूछा गया सर कि आपने कैसे लगाया। हमको हमने कहा सर मुझे एक्चुअली में हम पैनल कंपनियां हैं एज स्टेट बैंक LHO के द्वारा और अयोध्या में मैं काम कर रहा था क्योंकि RBO जो अयोध्या है वहां से मुझे ब्रांचें दी गई थी और उसमें अयोध्या भी ब्रांच थी सर। अयोध्या ब्रांच में ऑलरेडी 4 आदमी लगे हैं सर पहले से 2022 से मेरे। तो 2022 नवंबर 2024 में मुझे बुला के और 15 आदमी का वर्क ऑर्डर दिया गया कि आपको 15 आदमी और देना हमें और उन बंदों का नाम लिस्ट सहित दिया गया।
4: अच्छा,
5: कि इन्हीं बंदों को आपको पेमेंट करना है तो मैंने उनका KYC ले लिया और पेमेंट कराते रहा और बैंक कंपनी को पेमेंट करती रही, कंपनी पे उनको पेमेंट करती रही।
4: अच्छा, तो वर्क ऑर्डर वही सब आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिएगा। दूसरा ये बोल रहा हूँ, जो आपने बोला कि 2022 में 4 लोग काम कर रहे थे तो वो 4 लोग भी बैंक ने ही दिए थे या आपने दिए थे अपनी तरफ से?
5: नहीं, वो ऑलरेडी भी वही लोग जिस कंपनी से काम कर रहे थे उन्हीं को हायर करना था, वो भी 4 बैंक में, आज भी वो 4 लड़के काम कर ही रहे।
4: नियम क्या होता है आप लोग के हाउस कीपिंग में कि मतलब?
5: देखिए सर, नियम तो जैसे क्या होता है सर कि जैसे वर्क ऑर्डर मिला आदमी तो देना ही देना है, तो ज्यादातर ये होता है कि ठीक है बंदे काम कर रहे हैं इनको आप अपने पैनल पे रख लीजिए, ऐसा चलता है सर।
4: अच्छा, सिफारिश से होता है?
5: हाँ, कोई ना कोई रिक्वेस्ट डाल ही देता है सर, जैसे आपने ही कह दिया कि जराम जी एक बंदा हमारा लगा देना।
0: अरविंद ओझा हमारे सहयोगियों की बातचीत आप सुन रहे थे जो एरिया मैनेजर से की जा रही थी। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरविंद बताइए, आपने जब बातचीत की क्या समझ पाए आप, किस तरह की गड़बड़ियां लापरवाही की गई है?
6: देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है ये चंदा चोरी का है, चंदा चोर अरेस्ट हो चुके हैं, जो 8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। सवाल ये है कि इनको रिक्रूट किसने किया, भर्ती किसने किया, ये किसके करीबी हैं? तो ये समझने के लिए आज तक की टीम ने जो सैनिक फर्म सिक्योरिटी सैनिक सिक्योरिटी फर्म है उसके डायरेक्टर गौरव से बातचीत की और एरिया मैनेजर जयराम से बातचीत की जो अयोध्या गया था, जो गिरफ्तार आरोपी है उनके रिक्रूटमेंट के लिए भी वही गया था। उसने खुलासा किया कि जो मंदिर परिसर में चाहे हाउस कीपिंग स्टाफ या सिक्योरिटी स्टाफ है उनकी भर्ती भले ही बैंक के जरिए कोई दूसरी एजेंसी करती है लेकिन नाम मंदिर ट्रस्ट के लोग ही देते हैं, यानी जो स्टाफ है तमाम जगहों पर चाहे बैंक के जरिए आए चाहे सिक्योरिटी फर्म के जरिए आए वो भले ही सिक्योरिटी एजेंसी का हो लेकिन मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से नाम जाता है कि इनको रख लो और जो कंपनी है वो रख लेती है तो सैलरी देती है। तो यहाँ पर सैनिक सिक्योरिटी फर्म का काम सिर्फ इतना है कि उनको एक लिस्ट पकड़ा दी गई कि ये लोग हैं इनको आप भर्ती कर लीजिए सैलरी दे दीजिए। तो कायदे से जो ये सैनिक सिक्योरिटी फर्म है सवाल इस पर भी है लेकिन आपको बता दूं ये जो दो लोग जिनसे हमने बातचीत की है इनसे SIT ने भी पूछताछ की है और अयोध्या पुलिस ने भी पूछताछ की है। हमने इनसे वो वर्क ऑर्डर मांगा, हालांकि इन्होंने वर्क ऑर्डर नहीं दिया लेकिन वो वर्क ऑर्डर से बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर बैंक का वो कौन अधिकारी था जिन्होंने नाम सहित लिस्ट इस सिक्योरिटी फर्म को दिया और कहा कि इनको आप भर्ती कर लीजिए। तो पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसी पर ही घोटाला है। साथ ही साथ अगर कायदे से बैंक का वो अधिकारी जिसने इनको लिस्ट दी नाम के साथ, उससे पूछताछ की जाए तो इस पूरे चंदा चोरी रैकेट में एक नया किरदार सामने आ सकता है जो कई बड़े खुलासे कर सकता है। हिमांशु,
0: अरविंद, अब ये जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी क्योंकि ये भी एक बहुत अहम कड़ी है और ये बताता है कि हर जगह लापरवाही की गई है, कैसे कड़ियों को जोड़ा गया है।
6: आपको सबसे पहले बता दूं, ये समझने की जरूरत है कि जो FIR हुई है अयोध्या की, उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तब लगता है जब कोई सरकारी आदमी या कोई लोक सेवक वो धांधली करता है। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें कई ऐसे थे जो जो जो बैंक है अयोध्या का, उनकी सिक्योरिटी फर्म में से। तो आखिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्यों लगा, इसी से समझ लीजिए कि इस जांच का दायरा बढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं बैंक के जो लोग हैं वो भी रडार पर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल,
0: बहुत से लोग रडार पर आएंगे और सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की तह तक जांच एजेंसियां पहुंचे। शुक्रिया अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूछा कि अब आगे क्या होगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब ठीक होगा। हालांकि उन्होंने ये भी इशारे इशारों में कहा कि चंपत राय, गोपाल राव आने वाले वक्त में जेल जा सकते हैं। आज तक से उन्होंने खास बातचीत भी की लेकिन बहुत सधे हुए शब्दों में, कहना काफी कुछ चाहते थे लेकिन काफी सधे हुए शब्दों में उन्होंने अपनी बात को रखी। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार जी जुड़ चुके हैं और उनसे हम सीधे बात करेंगे। विनय जी, स्वागत है आपका आज तक पर। विनय जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी बात हुई और पूरा देश देख रहा है कि राम मंदिर वाले मुद्दे पर क्या कुछ चल रहा है, क्या बात क्या हुई आपकी?
7: नहीं, अब हमारी उनकी क्या बात हुई है वो तो हम नहीं बता सकते।
0: अच्छा, लेकिन आपने एक बात जरूर कही है, आपने कहा कि हो सकता है कि चंपत राय जेल जा सकते, ऐसा आपको क्यों लगा?
7: नहीं नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि चंपत राय जेल जा सकते हैं।
0: नहीं, उनसे पूछताछ हुई है।
7: मैंने पैसा नहीं कहा
0: आपका, लेकिन जो बयान आया, आपका जो बयान आया है उसमें आपने ये कहा है। जी,
7: मैंने ऐसा नहीं कहा है।
0: हाँ, तो विनय जी, क्या लगता है आपको, जो ये जांच चल रही है, इस जांच में कई घंटों की पूछताछ हुई है चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और गोपाल राव से, अब आगे आपको क्या इनकी भूमिका दिखती है?
7: नहीं, हमको अच्छी भूमिका नहीं दिख रही। इनकी भूमिका अच्छी होनी चाहिए थी, बड़े पुराने पुराने लोग हैं ये।
0: हाँ,
7: कोई नए लोग नहीं है, कैसे काम चलेगा? उस पर केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगा।
0: हाँ,
7: क्या करना है।
0: लेकिन अभी आपने जो खबरें देखी, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उसमें ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सीधी भर्तियां करा दी गई, उन लोगों की तरफ से भर्तियां करा दी गई जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, पूरा देश जिन पर भरोसा कर रहा था, जो ट्रस्ट में नामी चेहरे थे, और उसके बाद एक के बाद एक गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं, कमी कहां रह गई?
7: हम वो जो वजह है इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी कारण हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, बढ़िया नहीं हुआ।
0: आप ये मान रहे हैं कि पैसों का घालबेल यहाँ पर हुआ है, बहुत स्पष्ट संकेत है?
7: नहीं नहीं, हम ये नहीं मान रहे पैसों का घालबेल हुआ है कि आटा का हुआ है या दाल का हुआ है या कोई और हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। उसका कोई मतलब नहीं है। क्या गोपाल राय करते हैं, और साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी? वहां से आकर के आ गए फ्लाइंग होकर के, यहाँ वो जमीन खरीदेंगे? मंदिर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, वो चिंता नहीं है?
0: तो जमीनें खरीदी गई हैं यहाँ पर, पद का गलत इस्तेमाल किया गया है, जांच में जो अभी तक सामने आया है उसको तो आप मानेंगे ना?
7: भाई, हम तो मान ही रहे हैं।
0: हाँ,
7: आप लोग नहीं मान रहे हो, जबरदस्ती में कैमरा इधर का उधर कर रहे हो।
0: हाँ, तो सीधे नाम किसका लिया जाएगा यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि सूत्रधार यहाँ पर कौन है? देखिए, तीन कड़ियां हैं, तीनों कड़ियों से चार चार घंटे करीबन लगभग 8 घंटे तक पूछताछ हुई है, तो क्या अब ये खुलासे होने वाले हैं, ये चेहरे सब बेनकाब होने वाले हैं?
7: क्या क्या कार्रवाई हुई है, कितनी पूछताछ हुई है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं।
0: हाँ,
7: ना उस पर हम कुछ ध्यान देते हैं।
0: हाँ,
7: हम कल आए हैं लखनऊ से, फिर अभी चले जाएंगे, फिर आएंगे हम, कल आ जाएंगे यहाँ पर, जो मेरा काम है वो हम करते हैं अपना।
0: विनय जी आप चाहते क्या हैं इस पूरे मामले में, जांच कैसी होनी चाहिए?
7: चाहते हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल एक ही चाहते हैं, ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं
0: है। गोपाल राव की बात कर रहे हैं आप?
7: बाकी जान हैं,
0: गोपाल राव की बात कर रहे हैं आप?
7: हम गोपाल राव से नहीं बात कर रहे हैं।
0: आप गोपाल राव की बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों को रखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लोग कैसे लोग?
7: मैंने बता दिया ना, आज पत्रकार हो आप लोग, उसको भी नहीं समझ पा रहे तो हम क्या करेंगे फिर?
0: नहीं विनय कटियार जी, आप फायर ब्रांड नेता हैं, बहुत उम्मीद आपसे की जाती है, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं, जब भी आप बोलते हैं आप मुखरता से बोलते हैं, तो इसीलिए जब मैंने बोला कि आपने गोपाल राव का जिक्र किया, चंपत राय, अनिल मिश्रा,
7: वो अनिल मिश्रा का नहीं है काम।
0: अच्छा
7: हाँ,
0: तो चंपत राय और गोपाल गोपाल राव
7: ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये सब प्रचारक है, और प्रचारक ऐसा गड़बड़ करेगा तो कैसे मानेंगे? हम भी प्रचारक रहे हैं, हम भी पूरे देश के अंदर हर प्रांत में रहे हैं, तो इसके माने वो वहां पर कोई इसी प्रकार की हरकत करेगा तो बर्दाश्त किया जा सकता है?
0: जब इंसान बोलना बहुत कुछ चाहे लेकिन कुछ मजबूरियां हो तो कुछ इसी तरह से बात यहां पर की जाती है, जैसे विनय कटियार यहां पर कर रहे थे। बहरहाल एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जांच आगे बढ़ रही है, अनुकंद मिश्रा की बात करते हैं, और ये खबर आ रही है कि पिछले ही कुछ वक्त पहले ये कार खरीदी अनुकंद मिश्रा ने पिछले साल ही एक कार खरीदी है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर से जुड़ने के बाद ये कार अनुकंद मिश्रा की तरफ से खरीदी गई, ये जानकारी खुद अनुकंद मिश्रा से सामने आई है। आज तक के पास अनुकंद मिश्रा की कार खरीद से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं। ये जानकारी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच सामने आई। अब हर एंगल से एसआईटी जांच की जा रही है, कई लोग रडार पर हैं। अब जब पूछताछ हो रही है तो हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक हर इस मामले से जुड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। समर्थ, अनुकल्प मिश्रा से जुड़ी जानकारी आ रही है कि पिछले साल ही कार खरीदी थी, ये भी जांच में शामिल हुआ है?
8: देखिए हिमांशु, सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे प्रकरण हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा रहा है। उसी कड़ी में ये भी एक घटना बताई जा रही है। देखिए पहले प्रॉपर्टीज दिखाए गए थे, जहां एक जगह तो एडीए का नोटिस पहुंच गया है, जहां लवकुश का घर है। कई बड़ा सवाल ये उठा कि जिनकी तनख्वाह ही मात्र 10,000 से 15,000 रुपए के भीतर है, आखिर वो इतनी महंगी गाड़ियां कैसे ले रहे हैं, उन्होंने इतने महंगे प्लॉट्स कैसे खरीदे और इतने बड़े बड़े घर कैसे बना रहे हैं? और अगर इनको ऐसा कुछ बनाना भी था तो पहले से क्यों नहीं बनाया? तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं घपला हुआ, वो पैसा जो है वो किसी और का नहीं है बल्कि हमारा आपका है, यानी कि उस चंदे का है जो रामचंद्र के लिए श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से चढ़ाया था, और उस पैसे का अंदर ही घपला किया गया काउंटिंग के दौरान, और किस तरीके से छुपाया गया उस प्रोसीजर को हम पहले ही दर्शकों के सामने रख चुके हैं, तो उसी के तहत ये तस्वीरें आई हैं। और जो बात अनुकल्प मिश्रा की है, उसकी गाड़ी की है, वो भी इसी में कड़ी जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इसमें लवकुश का भी है, इसमें अन्य नाम जो है टिन्नू यादव है उनको लेकर भी चर्चाएं यहां पर हो रही हैं। कई जो कड़ियां जो एक्स एम्प्लॉयज हैं आउटसोर्सिंग कंपनीज के, वो तो ये कह रहे हैं कि टिन्नू यादव बड़ा पावरफुल था और उसकी पहुंच उतनी थी जितनी ट्रस्ट के एक पदाधिकारी या प्रचारक की होती है, जबकि वो कहने को अगर आप ऑन पेपर बात करेंगे तो वो चंपत राय के पूर्व ड्राइवर की भूमिका में था। तो ये बड़ा सवाल है, और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में इन सारी चीजों को शामिल किया जा रहा है। अभी आपको वर्तमान की स्थिति बता दूं तो इस वक्त जो है एसआईटी पूछताछ कर रही है, जगह जगह मंदिर में जो गार्ड्स हैं, जो अदर एम्प्लॉयज हैं,
0: उनका यहां पर होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक और बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश से आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो पश्चिम बंगाल में चुने हुए विधायक हैं उनको लोकतंत्र और गरिमा की जानकारी दी और मंत्र दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए एक विशेष ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय परंपराओं, सदन की कार्यवाही और विधायकों की भूमिका के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी।
9: चर्चा जितनी देर आप विधानसभा में बैठेंगे आपको बोलने का अवसर मिले न मिले, लेकिन नए विधायक हो पुराने विधायक हो, जितनी देर संभव हो विधानसभा में बैठना, लोगों के विचारों को सुनना, उनके तर्कों को सुनना, उनके तथ्यों को सुनना। जितना आप विधानसभा में बैठेंगे उतने ही आपको नए अनुभव मिलेंगे। इससे मेरा आपसे आग्रह पूर्वक है कि नए विधान सदस्य को लंबे समय तक विधानसभा बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती में एक नई ऊर्जा है। यह धरती हमेशा विचारों की धरती रही है, यह धरती हमेशा नवाचारों की धरती रही है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है, इस धरती की विरासत को वापस लौटाना है, इस धरती की आध्यात्मिक चेतना, इस धरती की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा, इस धरती पर जो विद्वान हुए जिन्होंने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर देश की संस्कृति विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम किया, उनके विचारों के मंथन व विचार। और यह धरती हमेशा उद्योग, शिक्षा, कई तरह की विरासत है इसकी, इस विरासत को पुनर्जीवित करना चाहिए।
0: और चलिए बाद बाबा बर्फानी के दर्शन ही कर लेते हैं। और अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, बालटाल पहलगाम दोनों जगह से ही श्रद्धालुओं का जो जत्था है अब वो रवाना हो गया है और भारी तादाद में लोगों की भीड़ अब दिख रही है। ये देखिए श्रद्धालुओं की कितनी आस्था है, भीड़ है, उत्साह है, जोश है और सभी को इंतजार है बाबा बर्फानी के दर्शन का। आज से लगभग अगले 57 दिन हिमालय की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे। 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पवित्र गुफा तक पहुंचने की उम्मीद है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, जल थल आसमान हर जगह से निगरानी रखी जा रही है। यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
12: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
13: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
2: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
3: वाह वाह वाह वाह।
2: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
4: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
5: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
10: 1933।
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
12: AU सोच बदलो और बैंक भी।
13: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
14: पापा।
15: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
16: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
15: छक्का?
16: सब कैशलेस हो गया है।
15: हाँ
16: ओले ला भाई मेरा बैट।
15: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
16: वो तो चार्ज हुआ यार।
15: ओला बैट किसका है?
17: टाटा AIG है तो भरोसा है।
18: हमने तब भी सवाल किया था,
19: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
18: हम आज भी सवाल करते हैं,
19: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
18: ऑपरेशन अग्नि,
19: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
18: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: AU सोच बदलो और बैंक भी।
7: पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर कसा शिकंजा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से हुई पूछताछ। कटियार बोले जेल जा सकते हैं चंपत राय, पीएम के संपर्क में हूं। बीजेपी की नई टीम पर नितिन नवीन की अमित शाह के साथ मैराथन बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल और संगठन में बदलाव पर 3 घंटे तक चर्चा। कल से बीजेपी अध्यक्ष का यूपी दौरा। मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल। 3 दिन में 5 मौत। खोखले पेड़, मेन होल और बिजली के तारों से जा रही जान। बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। भारी सुरक्षा के बीच बालटाल से अमरनाथ की ओर बड़ा पहला जत्था। पूरे रूट पर आज तक की मेगा कवरेज। चंद घंटे बाद शुरू हो रही है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई

0: पिछले कई महीनों और सालों में हम लगातार आपके पास खबर लेकर आ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ गया है। हमने सक्सेसिव सरकारों में, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, लगातार सवाल उठाए। ऑड इवन चलता है कि नहीं चलता है, स्मॉग टावर काम करता है कि नहीं, आर्टिफिशियल रेन से कितना फर्क पड़ेगा, सब पर हमने काफी क्रिटिकल क्वेश्चन उठाए सरकार को। बट टूडे, टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वी हैव अमंग्स अस एक ऐसी पॉलिसी जो एक बहुत पिविटल रोल प्ले करने वाली है फॉर दिल्लीज फ्यूचर। दिल्ली के पास एक नई अब ईवी पॉलिसी है। ये पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन इस बार जो उसके चेंजेस आए हैं वो अलग क्यों हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं देती, ये एक हार्ड डेडलाइन लगाती है कि कब आईस व्हीकल्स जो हैं, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स हैं, फेज आउट हो जाएंगे दिल्ली से। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अगर एक बड़ा चेंज दिल्ली में आया था सीएनजी पॉलिसी के चक्कर में, सीएनजी पॉलिसी के थ्रू जो शीला दीक्षित लेकर आई थी, तो ईवी पॉलिसी उससे ज्यादा या डेफिनेटली उससे कम इम्पैक्ट नहीं लाने वाली है। और वो लेकर आई हैं रेखा गुप्ता, जो हमारे साथ आज बैठी हुई हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम मैम।
1: थैंक यू सो मच।
0: आई हैव टू से दिस आउट राइट इन द बिगनिंग कि हमने साल भर आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे। कोई और होता तो शायद इस इंटरव्यू के लिए आज अग्री नहीं करता, लेकिन आप यहां बैठी हैं, हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो कूडोस टू यू।
1: थैंक यू।
0: मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ईवी पॉलिसी के जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, पॉलिसी का जो है इसके बारे में, इवन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफी प्रेस करा है, काफी आपको लोगों ने बताया होगा, फीडबैक जो हमें भी मिल रहा है, हम जितने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं सबने काफी अच्छे से रिसीव करी है ये पॉलिसी। क्वेश्चन मार्क अब इम्प्लीमेंटेशन पर है, और मेरे रिसर्च के हिसाब से तीन चीजें हैं जिस पर ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। नंबर एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बढ़ाकर लाएंगी। नंबर दो, क्या आप ईवी जो व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगी। और नंबर तीन, क्या आप ईवी व्हीकल्स वो जो हैं सही दाम पर, एक कंपेटिटिव प्राइस पर लोगों को दे पाएंगी। पहले वाले से शुरू करते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या आपके एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं?
1: ये बात बहुत सही है सोनल कि इस ईवी पॉलिसी की सक्सेस बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और वी आर रेडी फॉर दैट। हमने पूरी तरीके से उसको प्लान किया, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर है उसको पार्टी बनाया। वैसे तो जनरली लोग अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए घरों से ही चार्जिंग करता है मैक्सिमम, पर फिर भी पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें हमने ओईएम्स को इन्वॉल्व किया है, उसमें हमने सोसाइटीज के लिए, उसमें सरकार के द्वारा डीटीएल, हर एक एजेंसी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करे, और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हमने सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि लोग इसमें जो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ईवी के लिए, उसमें उनको कहीं पे भी हर्डल फेस ना करनी पड़े। सरकार उनको पूरी तरीके से फैसिलिटी देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, मोटिवेट करेगी, सपोर्ट देगी। और अभी वर्तमान में 9000 चार्जिंग प्वाइंट हमारे पास हैं, हमारा टारगेट 32000 तक जाने का है, और उसके लिए लगातार हमने उसको नोडल एजेंसी डीटीएल को बनाया है, हम काम कर रहे हैं। ओईएम्स को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया है कि उनको भी अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इवन सोसाइटीज को, और कॉमन प्लेसेस पे भी हम इसको लगाने वाले हैं। तो मैं श्योर करती हूं दिल्ली की जनता को कि आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है।
0: जी, पॉलिसी में लिखा है कि 32000 चार्जिंग प्वाइंट्स बनेंगे मार्च 2030 तक। अब चार्जिंग प्वाइंट्स के लिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना नहीं होता है, आपको लैंड भी प्रोक्योर करनी होती है, और दिल्ली बहुत ही पिक्यूलियर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, लैंड कई बार आपकी नहीं है, कभी एमसीडी की है, कभी किसी और अथॉरिटी की है, कभी एनडीएमसी की है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये नंबर रीच हो पाएगा?
1: मैं आपको इस बात को जरूर ध्यान दिलाऊंगी कि जब बात होती है कि डबल इंजन सरकार की, आज दिल्ली स्टेट में जो गवर्नमेंट है, सेंटर में, स्टेट में, एमसीडी में, सभी एजेंसीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। और जब हमने आरोग्य मंदिर खोले तो हमने बाकी एजेंसीज की लैंड को भी यूटिलाइज किया, इवन डीडीए, एनडीएमसी, ड्यूसिप सब ने अपनी लैंड दी, और इसी तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एजेंसी से वो जमीन लेना, किसके जिम्मे क्या काम होगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड, और कहीं पे भी एटलीस्ट लैंड की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये सारा काम कोई एक दिन में नहीं हुआ है, एक साल से इस पॉलिसी पे काम किया जा रहा है, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहां तक कि जीरो से लेकर के एंड पॉइंट तक, ए टू लेकर जेड तक, सारे के सारे कामों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहां हमने अपनी पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा, तो वहां हम उस बैटरी के डिस्पोजल की भी बात कर रहे हैं, ई वेस्ट की भी बात कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर हमको ई वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, उसके लिए भी आज से काम हो चुका है।
0: जी जी, पूरी पॉलिसी में करीब 7,000 करोड़ की बात हुई है, जो आप एक तरह से वेवर दे रही हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो उसमें 8,000 करोड़ और हैं। टोटल 15,000 करोड़ की ये स्कीम है। इसमें से आप क्या करेंगी कि ये टू वी व्हीकल्स जो हैं, टू व्हीलर्स हैं बेसिकली ईवी व्हीकल्स, वो अफोर्डेबल हो जाएं? क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है, अडॉप्शन में आपको कहां दिक्कत आएगी कि जो टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, वो जो एक आइस व्हीकल खरीदते हैं या वो पेट्रोल या डीजल लेते हैं, वो कम दाम पर आती है, आपकी ईवी जो है वो महंगी है। इसमें से क्या वो मैच कर पाएंगी? क्योंकि अडॉप्शन तो तभी होगा, आदमी खरीदेगा तभी जब उसे लगेगा कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है।
1: देखिए, एडॉप्शन जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एडॉप्शन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आसानी से वो सब्सिडी का जो कैश बेनिफिट है वो कस्टमर तक पहुंच पाता है। और हमने अपनी इस पॉलिसी में खाली सब्सिडी नहीं दी, स्क्रैपिंग का भी इंसेंटिव दिया है, तो ये टू वे चीज है। और फिर जो इंसेंटिव है वो डीबीटी के माध्यम से कस्टमर को मिलने वाला है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। आपको अपनी आरसी लेने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है और 60 दिन के अंदर आपको वो कैश जो डीबीटी पहुंच जाए, ये हम एंश्योर करने वाले। तो ये सारी की सारी चीजें जो इस ईवी पॉलिसी में लाई गई है वो एडॉप्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लोगों के लिए मोटिवेटिंग है कि आपको सब्सिडी भी मिल रही है, आपको स्क्रैपिंग वैल्यू भी मिल रही है। और जब एक एक व्हीकल पे, यानी टू व्हीलर का अगर मैं एग्जाम्पल, तो 30,000 रूपये आपको सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है इतना बड़ा अमाउंट सब्सिडी का। फिर स्क्रैपिंग पे हम 10,000 रूपये दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब रोड टैक्स माफ है, रजिस्ट्रेशन फी माफ है, आपको स्क्रैपिंग मिल रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है, तो हर कोई लेना चाहेगा। इस दिल्ली शहर के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है उतनी यहां की जनता की भी है, तो हम मैंडेट भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो मैंडेट और मोटिवेशन दोनों इस पॉलिसी में, इसलिए मुझे लगता है कि एडॉप्शन में लोग जा रहे हैं और स्टेक होल्डर हमारे साथ खड़े हैं।
0: ओके, अगर हम लास्ट पोल्यूशन रिपोर्ट उठाएं, टेरी की रिपोर्ट ही ले लेते हैं, सरकार भी उसी को देखती है, उसके बाद से कोई कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन रिपोर्ट बनी भी नहीं है मेरे ख्याल से। उसमें अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो करीब 46% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स से आता है, जिसको आपने इस पॉलिसी में काफी अच्छे तरीके से टैकल करा है, आपने काफी इंसेंटिव दिए हैं, एंड देयर इज अ डेडलाइन कि अगले साल से, स्टार्टिंग जनवरी ऑफ 2027, देयर विल बी अ फेज आउट, नई थ्री व्हीलर्स नहीं रजिस्टर होंगी, टू व्हीलर्स नहीं रजिस्टर होंगे, वो सारे आपने बताई है। लेकिन इसमें से 33% अभी भी जो पोल्यूशन आता है वो कमर्शियल ट्रक्स का है, उस पर आपकी ये पॉलिसी इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हो पाई?
1: दो कारण है इसमें। एक तो हमारी ये जो पॉलिसी है वो कॉमन मैन ओरिएंटेड है। उसमें जो बड़ा सेगमेंट, जैसा आपने टैरी की स्टडी पे बताया कि जो बड़ा सेगमेंट अगर हम पॉल्यूशन को समझें कि जो एमिशन फ्री की तरफ हमें जाना है, तो उसमें बड़ा सेगमेंट है टू व्हीलर का और थ्री व्हीलर का। उसके बाद में 46% आप ही ने बताया, और उसके बाद 33% है जो N2 हमारे ट्रक्स हैं। N2 ट्रक्स का 33% इन्वॉल्वमेंट हम मानते हैं, तो हमने उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो 1 जुलाई से 30 सितंबर जितने भी N2 ट्रक्स अपने आप को ईवी में कन्वर्ट करेंगे, उस अर्लियर जो पहले के शुरू के 1,000 ट्रक्स को हम दिल्ली में 24 आवर्स का जो नो एंट्री जोन था उसमें अलाउ करेंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि स्टेक होल्डर ने भी माना और वो इस बात पे राजी हुए कि हाँ, ये हमारे लिए बेनिफिट है। सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी इसमें बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए है कि ये N2 व्हीकल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 8% OEMs के माध्यम से डिस्काउंट दिया जा रहा है और 5% जो है उनको इंटरेस्ट में वेवर दिया जा रहा है ताकि ये जितने लोग भी N2 ट्रक्स के मालिक हैं उनको ये बेनिफिट मिले और वो भी ईवी पे आए। तो हमने पूरी तरीके से हर सेगमेंट को देखा है और प्रायोरिटी वाइज देखा है कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर को हमको कितना वेटेज देना है, हमको मिडिल क्लास मैन को कितना देना है जो कि अपना सिंपल कार चला रहा है, और N2 ट्रक्स के लिए कितना देना है। तो हर व्यक्ति का इसमें ध्यान रखा गया है, हर सेगमेंट को केटर किया गया है ताकि दिल्ली को एक्चुअली पॉल्यूशन फ्री करना है।
0: जी, अब मैं N2 के लिए जस्ट क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ऑडियंस को शायद समझ में ना आए। N2 आपके N1 हो गई आपके, वो छोटा हाथी जिसे बहुत बोला जाता है कॉमनली दिल्ली में, और N2 आपकी हो गई जो बड़ी कार्गो ट्रक
1: बड़ी होती है जो 3.5 टन से 12 टन तक का वेट लेकर के चलते हैं, दैट इज N2।
0: जी, बट मैम ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि जितनी हमारी दिल्ली में गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स हैं, जो पुरानी ड्रग्स हैं, जो चाहे दिल्ली पुलिस यूज कर रही हो, जो पुरानी MCD की ट्रक्स हैं, जो बाकी वाटर स्प्रिंग एक्सेट्रा के लिए भी जो यूज होती है, असली पोल्यूशन तो इतनी पुरानी है वो उन्हीं से निकलता है। उस पर आपको नहीं लगता है कुछ और देना चाहिए था?
1: आपको ये जानकर के खुशी होगी और दिल्ली की जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये पॉलिसी केवल पब्लिक के लिए नहीं है, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए नहीं है, सरकार ने भी पूरी तरीके से इसको फॉलो करने के लिए हर चीज को अडॉप्ट किया है। हमने दिल्ली में जो मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए MRS मशीनें खरीदने के लिए जो टेंडर लगाए वो भी दैट इज ओनली फॉर ईवी व्हीकल, हम ईवी ही ले रहे हैं। हमने अपने मैंडेट में ये भी रखा है दिल्ली सरकार भी जो भी नए व्हीकल जो है परचेज करेगी या लीज करेगी वो सब ईवी होने चाहिए। आज की डेट में हमारे वाटर स्प्रिंकलर हो, हमारी MRS मशीनें हो या जो भी अदर व्हीकल्स हैं, उन सबको सरकार भी ईवी की ओर जा रही है, अपने प्राइवेट व्हीकल भी हम लोग ईवी खरीद रहे हैं, तो कहीं से कहीं
0: उस तक मैंडेट लग गया है
1: 100%। और हम सब मिलकर के वो प्राइवेट स्कूल्स हो, वो हमारे ट्रक्स हो, टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, गाड़ी हो, सब ने मिलकर के जब ये ठान लिया है कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है तो उसमें दिल्ली सरकार भी एक बड़ी यूनिट है और हम अपने सारे व्हीकल्स को ईवी की ओर लेके जा रहे हैं।
0: आपने कहा सारे डिपार्टमेंट साथ में हैं, मैं आपकी पूरी टीम से बात कर रही थी इस इंटरव्यू के रिसर्च के लिए और हमें पता चला कि एक ईवी सेल बनाया गया एक साल पहले जिसमें सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड करा गया, OEMs को इंक्लूड करा गया, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, आई एम टोल्ड नेशनल सोलर अलायंस वगैरह भी गई, आपकी टीम लंदन, नॉर्वे, चाइना, काफी सारे उन्होंने मॉडल्स पढ़े, तो कोऑर्डिनेशन इंटरनल दिल्ली सरकार का इसमें काफी अच्छा दिख रहा है, पॉलिसी में दिख रहा है, पर असल कोऑर्डिनेशन जो आपको चाहिए ईवी के लिए और ईवी पॉलिसी लाने के लिए या प्रदूषण कम करने के लिए वो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, वो आपकी नेबरिंग स्टेट्स का भी है, वो कोऑर्डिनेशन आप कैसे लाएंगे?
1: ऑफकोर्स दिल्ली NCR पूरा इसमें इन्वॉल्व है, दिल्ली के पॉल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। आज हमें हमारे बॉर्डर एरिया, हमारा NCR एरिया, हर जगह से इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत थी, जिसको केवल दिल्ली नहीं, मुझे इस बात की खुशी है ये बताते हुए कि चाहे वो हमारी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है उसने हमारी पूरी मदद करी, इसमें हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी मदद करी, CAQM ने, और हर राज्य जो NCR में हमारे ये जुड़े हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने के लिए, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी योजना हमको दी जिसमें कि ओल्ड बसेस को, ट्रक्स को ईवी पे लेके जाने के लिए उन्होंने NCR के हर जिले को मदद करने की बात कही, और उसमें जो 8% सब्सिडी की मैंने बात कही या उसमें लोन के ऊपर जो रिबेट है 5% का, वो दिल्ली NCR के हर जिले को केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। और दिल्ली की जब ये ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद हमारी यही ईवी पॉलिसी को बाकी राज्य भी फॉलो करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और केंद्र इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, CAQM इसमें इनिशिएटिव ले रही है, हर व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इसकी चिंता कर रहा है। मुझे लगता है कि ये विषय सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये देश की राजधानी का विषय है, और इसलिए हर सरकार, विशेष रूप से केंद्र सरकार इसमें जुड़ी है।
0: आपने विंटर पॉलिसी की बात करी तो उस पर आ जाते हैं। आपने एक विंटर पॉलिसी निकाली है जिसमें आप मैंडेटेड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, अभी तक ही ग्रैप पर डिपेंड करता था, जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा जाते थे तो वो पॉलिसीज लगती थी, जब नहीं थे तो वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाते थे। तो क्या आप ये समझना चाहिए कि ये पॉलिसीज रहेंगी फ्रॉम नवंबर 1st टू फरवरी 28th और ग्रैप अप नहीं लगेगा?
1: देखिए, पिछले साल की वर्किंग में हम ये समझ पाए कि ये ग्रैप जो है कभी दो दिन लग गया, एक दिन छूट गया, फिर इस तरीके से लगातार दिल्ली के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ना काम हो पाता है ना ही पॉल्यूशन पे कोई इफेक्टिव रिजल्ट आता है। इस बार हमने बहुत ही टाइमली यानी कि जुलाई माह में ही विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया है, जिसमें कि डेट वाइज हमने ये बताया है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिल्ली के लिए बता दिया गया है कि आपको पीयूसी के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, पूरे साल नहीं मिलेगा, उस टाइम पीरियड में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आप उस समय नहीं कर सकते आउटडोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। आप
0: 10th ऑफ दिसंबर से जनवरी 28th तक कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बैन है कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पे।
1: और इसी तरीके से ग्रैब भी समझ लीजिए कि ये नोटिफाई हो गया है, इसके बाद अलग से कोई और सूचना आपके पास नहीं आएगी। उस दौरान जो भी एक्टिविटीज बैन थी वो आप नहीं कर पाएंगे,
0: पर बाकी के साल में जो ग्रैप की एक्टिविटीज वो चलती रहेंगी,
1: वो एज इट इज चलती रहेंगी।
0: yes. लेकिन मैम, हम क्योंकि ग्रैप की बात कर रहे हैं, आई हैव टू आस्क यू दिस। ग्रैप में प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, राइट? आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, वो जाके सड़कें आप सड़कों पर गाड़ियों को नहीं रोक पाती हैं, आप कंस्ट्रक्शन पे बैन्स नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगी?
1: देखिए, जब इतना बड़ा प्लान हम लेकर के आए हैं और इतनी सीरियसनेस हर लेवल पर है, दिल्ली सरकार के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, तो हमने सारी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उस तरीके से तैयारी शुरू की है। हमने अपनी एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया है, हमने लोग रिक्रूट किए हैं, ऑफिसर्स रिक्रूट किए हैं जो कि इस पूरे के पूरे प्लान को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर जो कार्रवाई करनी है उन सबको करेंगे। पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, हर व्यक्ति उसके ऊपर काम करेगा और पूरी सख्ती के साथ में हम जितनी भी नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं उसको हम लागू करेंगे।
0: मैम, आई लव दैट यू आंसर ऑल क्वेश्चंस विद अ स्माइल ऑन योर फेस। आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं इसके बारे में, तो एक ऑप्टिमिज्म ही नंबर मुझे दे दीजिए कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
1: आप ये देखिए, परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पोल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पोल्यूशन तो भाई बांधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है,
0: रिजल्ट क्या,
1: और इस सब चीजों को जोड़ते हुए जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है।
0: होगा आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, आपने कैलकुलेशन करा होगा,
1: जब पॉल्यूशन
0: क्लियर आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा।
1: क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पॉल्यूशन होगा? आप कहेंगी इतना इस दिन होगा, तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा।
0: नहीं, पर आपके दिमाग में एक गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए, चलिए रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते,
1: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी, तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी। मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है। जिस एक साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया। मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व तो है। उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है।
0: ऑल राइट, रेखा गुप्ता, गुड लक, थैंक यू सो मच। लाइक आई सेड, एनी फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस डिस्पाइट नोइंग कि हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम कर रही हैं. आई लाइक दैट. थैंक यू सो मच. दिस इज अ गुड चैट.
1: थैंक यू सो मच.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
1: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम सुपुर्द खाक को लेकर तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला परिसर में अंतिम श्रद्धांजलि की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसी परिसर में देश विदेश से आने वाले लोग और डेलीगेट्स की मौजूदगी में खामनेई को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं सुरक्षा कारणों के चलते आयतुल्ला के बेटे मुज्तबा के शामिल न होने की भी खबर है। सुरक्षा एजेंसियों को हमले का डर है, इसीलिए उन्होंने मुज्तबा को अंतिम संस्कार में समारोह से दूर रहने की सलाह दी। वहीं अंतिम श्रद्धांजलि में देश विदेश के कई लोगों को न्योता भेजा गया। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता नैन और सलमान खुर्शीद शामिल होंगे।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
3: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Now in India.
5: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

0: राम मंदिर में लूटकांड का सबसे बड़ा किरदार कौन? पुलिस की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर किसका नाम? आज तक पर लुटेरा नंबर वन का बेनकाब पूरा पर्दाफाश। देश को हिला देने वाले लूटकांड में होने वाला हर खुलासा पहले से ज्यादा सनसनीखेज और खलबली मचा देने वाला साबित हो रहा है। ये पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे तक चढ़ावे की ढेर पर सबने हाथ मारा, जिसे जहां जो और जितना हाथ लगा हथियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोई लूटता रहा, खजाना खाली करता रहा, तो कोई आंखें मूंदे खामोशी से देखता रहा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा अविनाश शुक्ला। वही अविनाश शुक्ला जिसके भाई का नोटों की गड्डियों के साथ वायरल वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। वही अविनाश शुक्ला जिसका योग सेंटर से दान पात्र वाले रहस्यमय बक्से की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला ने मोटी रकम ठिकाने लगाई है। अंदेशा है कि अविनाश शुक्ला सोने चांदी के जेवर भी ठिकाने लगा चुका है। सवाल है कि अविनाश शुक्ला के घर से मिली 2,39,000 की रकम उसकी मोटी कमाई का ट्रेलर तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 लाख सिर्फ झांकी है, उसकी पूरी कमाई का पर्दाफाश होना भी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अविनाश शुक्ला ने और रकम होने की बात मानी है। ये भी बताया है कि उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ के घर में छिपा रखा है। खबर है कि पुलिस पड़ताल करने उसे अयोध्या और प्रतापगढ़ ला सकती है। सोशल मीडिया पर अविनाश के भाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो नोटों की गड्डियां लेकर रील बनाता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले वो अयोध्या आया था, वो अविनाश के साथ ही रहता था। इसके बाद वो प्रतापगढ़ चला गया। अब उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या, आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज तक की पड़ताल में मंदिर ट्रस्ट की नौकरियों में भी मिला बड़ा गड़बड़झाला। सिफारिश पर बैंक में रखे गए थे कर्मचारी, फर्म के जरिए होती थी बहाली, बहुत बड़ा खुलासा। एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर शिकंजा, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ, कटियार बोले जेल जा सकते हैं चंपत राय, बीजेपी पर उद्धव का हमला। मूसलाधार बारिश ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल, 3 दिन में 5 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही जान, बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। चंद घंटे बाद शुरू हो रही है ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई के सुपुर्द खाक की प्रक्रिया, पहुंचने लगे दुनिया भर के नेता, तेहरान से आज तक की बड़ी कवरेज। बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ पहले जत्थे ने किए अमरनाथ के दर्शन, बालटाल से पवित्र गुफा तक पहुंचे श्रद्धालु, आज तक के कैमरे में आस्था की अद्भुत तस्वीरें।

ओडिशा में भारी बारिश ने मचाया हाहाकार। ढोकनाल में भारी बारिश के बाद पुल के ऊपर से तेज धार में बहा पानी। पुल पर तेज बहाव के चलते लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। पानी का स्तर बढ़ने से पूरा यातायात ठप। गुजरात में मानसून ने बरपाया कहर। वलसाड में लगातार मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके तालाब बन गए। पूरे इलाके में बारिश के पानी ने मचाया हाहाकार। जल भराव के बीच आधा डूबा सड़क पर खड़ा ऑटो। बारिश और जल भराव के बीच लोग जरूरत की वस्तुओं के लिए सड़कों पर निकले। घुटना तक पानी मचाते के सहारे आवाजाही। गुजरात में भारी बारिश ने बरपाया कहर। भारी बारिश से गिर सोमनाथ की सड़कों पर जल भराव। सड़क पर जल भराव के बीच जा रहा ऑटो रिक्शा खुली नाली में फंसा, सीसीटीवी में कैद। जामनगर में भारी बारिश के चलते नदियों में तब्दील हुई सड़कें। प्राथमिक स्कूल में घुसा बारिश का पानी। तेज बहाव की चपेट में आए दो बच्चे। स्थानीय लोगों ने तेज बहाव के बीच बच्चों को सुरक्षित बचाया। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में बाइक सवार समेत 5 लोग गिरे, सीसीटीवी में कैद, प्रशासन पर सवाल। मुंबई में मानसून का कहर। बारिश के चलते अंधेरी सबवे में भारी जल भराव के चलते लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। पानी के बीच आते आते नजर आ रहे लोग। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भरी पवई झील। झील के किनारे मछली पकड़ते दिखे लोग। गुजरात के बोटाद जिले में भी हुई जोरदार बारिश। मानसून की दस्तक के साथ तापमान गिरा। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में बाइक सवार समेत 5 गिरे। महाराष्ट्र में मानसून बना जानलेवा। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के चलते कई मौत। मुंबई के चेंबूर में पेड़ गिरने से 11 वर्षीय छात्र की मौत। हादसे में 4 घायल। मुंबई में बारिश के बीच एक दिन में 113 पेड़ गिरे। साकीनाका में खुले मैनहोल में गिरने से 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। नवी मुंबई में पानी में करंट फैलने से 2 छात्राएं बाल बाल बची। ठाणे के बुमराह में करंट लगने से 17 वर्षीय छात्रा की मौत। बारिश से जुड़े हादसों को लेकर AIMIM नेता वारिस पठान का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा सरकार की लापरवाही से लोगों की जान जा रही है। बिहार में बारिश ने मचाया घमासान। स्कूल में भरा बारिश का पानी। DEO कार्यालय में रखे प्रश्न पत्र पानी में बहे। RJD ने वीडियो ट्वीट कर बिहार सरकार BJP सरकार पर निशाना साधा। परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। RJD ने ट्वीट कर लिखा नीतीश कुमार के समय प्रश्न पत्र लीक होते थे। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही परीक्षा का पूरा सिस्टम लीक। आरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात। परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा। जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी एनकाउंटर को सही ठहराया। कहा पुलिस ने कमर के नीचे गोली चलाई थी। जरूरी नहीं कि चिराग पासवान जो करे मैं भी वही करूं। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर विनय कटियार का बड़ा दावा। बोले पैसे की हेराफेरी साफ। चंपत राय समेत कई लोग जा सकते हैं जेल। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर विनय कटियार का बयान। कहा मुझे इस मुद्दे पर मोदी जी से मेरी बात हुई है। जांच में सच सामने आएगा। राम मंदिर VIP दर्शन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का बड़ा खुलासा। SIT जांच में 20,000 से 25,000 लेकर दर्शन कराने और अवैध वसूली के आरोप। अयोध्या में VIP पास सिस्टम के दुरुपयोग के आरोप तेज। होटल नेटवर्क CCTV और सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की SIT जांच में उठे सवाल। अयोध्या मामले में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा यह केवल पाप नहीं महापाप है। दोषियों को सजा मिलेगी। कहा कानून और सरकार पर पूरा विश्वास। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा। लवकुश के घर से 14,25,000 नकद और अहम दस्तावेज बरामद। आज तक से बोले लवकुश के नाना नाती निर्दोष है। कैश बरामदगी और पुलिस कार्रवाई पर परिवार ने सवाल उठाए। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस एक्शन तेज। आरोपित अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की कस्टडी रिमांड में होगी पूछताछ। लवकुश का निर्माणाधीन मकान निकला अवैध। बिना नक्शा पास कराए निर्माण। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आसार। चढ़ावा चोरी की जांच अब जमीन सौदे तक पहुंची। SIT ने ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज गवाहों और संपत्तियों की जांच शुरू की। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर BJP अध्यक्ष नितिन नवीन कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। लखनऊ पहुंचकर हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद और विधायकों के साथ 4 जुलाई को नितिन नवीन की बड़ी बैठक। संगठन के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे नितिन नवीन। शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे BJP अध्यक्ष। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार LDO और बिजली विभाग को फटका। 4 अगस्त को अगली सुनवाई। ओम प्रकाश राजभर का SP पति का हमला। कहा ये YP यानी यादव वादी पार्टी दलितों का करती अपमान।
10 जुलाई को करूर दौरे पर जाएंगे सीएम विजय। बगझट पीड़ित परिवारों से दूसरी बार करेंगे मुलाकात। जमशेदपुर बंद का बीजेपी ने किया आह्वान। हिमांशु सिंह हत्याकांड पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना। जमशेदपुर हिंसा के बाद आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बीजेपी ने मूक दर्शक रहे पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की मांग उठाई। बिहार के भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को सम्राट चौधरी की चेतावनी। शॉर्टकट से कमाई करने वालों के लिए बेऊर जेल तय है। 2029 की तैयारी में जुटी बीजेपी। जेंजी पर खास फोकस। युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए राष्ट्रवादी आउटरीच अभियान तेज हुआ। पीएम मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में उड़ान स्कीम को 10 साल बढ़ाने का करेंगे ऐलान। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हवाई क्षेत्र यात्रा को सस्ता बनाना मकसद। 2027 यूपी चुनाव की रेस में ओवैसी की एंट्री। पोस्ट कर बदले सियासी समीकरणों का दावा। ओवैसी ने कहा यूपी में बदल देंगे पूरा गेम, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान पर अभी सस्पेंस। टीएमसी में पार्टी पर दावे की जंग तेज हो गई है। दोनों गुटों ने असली संगठन होने का दावा किया। बगावत पर चुनाव आयोग सख्त। ममता बनर्जी और ऋतव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को निर्देश दिए हैं। बिहार में 1,00,000 करोड़ की ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मिली गति। हुडको के साथ एमओयू। 12 आधुनिक टाउन विकसित किए जाएंगे। इंडिया ब्लॉक की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को सीजीआई पत्र। एसआईआर प्रक्रिया पर चिंता जताई है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। हनीमून पर पति के मर्डर के आरोप में सोनम की जमानत रद्द करने के मामले में मेघालय पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार किया। कहा पहले ट्रायल की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। मीडिया के सामने सी अग्रवाल का विवादित रिएक्शन वायरल। घर के बाहर आपत्तिजनक इशारा करते हुए कैमरे में कैद। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर चर्चा थी। हरिद्वार में मानसून आपदा से निपटने की तैयारी तेज। 5 जगहों पर किया गया मॉक ड्रिल। हर की पैड़ी के पास डूबते 16 लोगों को बचाने का अभ्यास। एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू ड्रिल। भीमगोड़ा टनल हादसे में 9 घायलों के प्राथमिक उपचार की मॉक ड्रिल। राहत बचाव का अभ्यास। शिवपुरी में बाढ़ जैसी स्थिति में फंसे 30 लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अहम बैठक आज। तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने वाले प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। यूपी टीएटी परीक्षा का दूसरा दिन कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। 12 केंद्रों पर 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए चंदौली में। दहेज के लिए विवाहिता को तेजाब पिलाने का आरोप। मेरठ में इलाज के दौरान मौत। पति समेत 6 पर मुकदमा। महोबा में प्रेमी युगल ने पेड़ से लटक कर जान दी। मृतका की भरी मांग से शादी की आशंका। जांच जारी। गाजियाबाद में एनकाउंटर। हत्या के आरोपी के पैर में लगी गोली। हत्या हथियार बरामदगी और भागने और फायरिंग का आरोप। एटा में भीषण सड़क हादसा। 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत। खड़ी रोडवेज बस से टकराए 2 वाहन। 12 घायल।

जल्दी कोलकाता में फिर सुनाई देगी मशहूर ट्राम की घंटी। राज्य सरकार ने लगभग 70 पुराने रूटों पर फिर ट्राम सेवा बहाल करने की योजना का ऐलान किया। लखनऊ में आज से 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ, 800 वैरायटी की आम का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में आज से देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मंडी में हो रहा है आयोजन। टिहरी गढ़वाल में जी राम जी योजना का शुभारंभ, योजना के तहत श्रमिकों को अब 125 दिनों रोजगार और 300 प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए गुड न्यूज, आज से खातों में ब्याज जमा होना शुरू। अमरनाथ यात्रा पर पीएम मोदी का संदेश, भक्तों के लिए साझा किया 5 संकल्प वाला विशेष पत्र, यात्रा को सुरक्षित, मंगलमय और सफल बनाने की अपील। अमरनाथ यात्रा रूट पर मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के सभी इंतजाम, पहाड़ी इलाकों में लगाई गई माउंटेन रेस्क्यू टीम। लैंडस्लाइड की समस्या से निपटने के लिए सभी औजारों के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर से भी लैस है ये टीम, सेहत खराब होने या चोटिल होने पर स्ट्रेचर की भी सुविधा। अमरनाथ तीर्थ यात्रा की सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 670 कंपनियों के साथ सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कमांडो की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। ईरान ने आयतुल्ला अली खामनेई के सुपुर्द खाक से पहले हमले पर कड़े पलटवार की दी चेतावनी, कहा अमेरिका और इसराइल की तरफ से ना हो हमले। 4 जुलाई से शुरू होगा पूर्व सुप्रीम नेता का सुपुर्द खाक जुलूस, 9 जुलाई को मशहद में दफनाए जाएंगे। बहरीन में रिहायशी इलाकों और बंदरगाहों पर हमलों को लेकर यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। और मुझ में मालवाहक जहाजों पर हमले के मुद्दे पर भी यूएन में अहम चर्चा, क्षेत्र में तनाव बढ़ा। गुरुवार को इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों में 1000 दिन पूरे होने पर रैली का आयोजन, तेल अवीव में हॉस्टेज स्क्वायर पर जुटे हजारों लोग। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कमाल, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। ब्राजील ने जापान के खिलाफ रोमांचक 2-1 से जीत दर्ज कर नॉकआउट में दमदार प्रदर्शन किया। आज अर्जेंटीना वर्सेस कैप वर्डे, कोलंबिया वर्सेस घाना और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस मिस्र के नॉकआउट मुकाबले। नॉकआउट चरण में हर मैच बना करो या मरो, टीमें राउंड ऑफ 16 में टिकट के लिए भिड़ी। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई आलिया भट्ट की बहुचर्चित फिल्म अल्फा, एक्शन से भरपूर फिल्म में फैंस को बड़ी उम्मीदें। 5 जुलाई को आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्पैट के साथ रचाएंगे शादी, सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त होंगे शामिल, लाइमलाइट से शादी पूरी तरह से रखा गया दूर। रजनीकांत के फैंस का इंतजार खत्म, 54 सेकंड का जेलर 2 का टीजर रिलीज, 15 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का धासु कलेक्शन 7 दिन में वर्ल्ड वाइड 137 करोड़। सड़क आशिकी दिल है की मानता नहीं और जख्म जैसी फिल्मों के निर्देशक महेश भट्ट के निर्देशन की दुनिया को अलविदा कहा, महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर आरएसएस का पहला बयान आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों को समर्पण, त्याग और बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना और श्रद्धा को आघात पहुंचा है और इस घटना से हम भी आहत हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है।
1: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। जय श्री राम।
0: हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पूरे देश भर की नजर है इस मामले पर और अब आरएसएस का भी बयान आ गया है।
2: देखिए, बिल्कुल आरएसएस की तरफ से भी बयान आया है। जो आरएसएस के सर कार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले, उनका स्टेटमेंट है और उन्होंने साफ कर दिया जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से इसकी जांच कर रही है उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है लेकिन इसकी जांच चल रही है और सबको इस पर जो है एक संयम बना के रखना चाहिए जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती। हाँ, कुछ लोग जो है इसका फायदा उठाकर जो है हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इस तरीके के षड्यंत्र जो है किए जा रहे हैं इसको भी लेकर उन्होंने चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि इस किसी के भ्रम और बहकावे में आप ना आए। जब मामला की पूरी जांच हो जाएगी उसका जो भी जांच के अंदर फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट होगी उस आधार पर जो है जो भी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी।
0: नहीं, लेकिन ऐसे वक्त पर हिमांशु, जब सब जगह चर्चा की जा रही है, जांच जारी है और दूसरी तरफ विनय कटियार का भी बयान आया है, अब आरएसएस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, तो इसका क्या मायने क्या निकाले जाए?
2: देखिए इसके मायने ये साफ साफ ये हैं कि चंपत राय जो है वो विश्व हिंदू परिषद में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी थे जब वो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले, और क्योंकि वीएचपी जो है वो आरएसएस का संगठन है, तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि जो उनका संगठन है उसमें अगर उनके किसी भी स्वयंसेवक पर अगर आरोप लगते हैं तो संघ की तरफ से ये स्टेटमेंट साफ कर दिया गया है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मामले की जांच चल रही है, और इसीलिए संघ की तरफ से जो है ये क्लैरिफिकेशन आया है। अब ये क्लैरिफिकेशन और इतने दिन बाद आया ये एक अलग बात है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है संघ की तरफ से भी जो है वो साफ कर दिया गया है कि इसमें जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन इसमें हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं इससे भी बचना होगा आम हिंदू को, और सबको संयम बनाकर चलना होगा। ये सही में गंभीरता का मामला है, इसमें जो भी कुछ हो उसकी जांच के बाद ही सामने आएगा।
0: जांच की बात कही लेकिन यह भी कहा कि जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उससे भी बचना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात बाबा बर्फानी के दर्शन की। अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने दर्शन भी कर लिए हैं। बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु का पहला जत्था रवाना हुआ, बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन किए। आज से अगले 57 दिन हिमालय की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे। 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पवित्र गुफा तक पहुंचने की उम्मीद है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। जल थल आसमान हर जगह से सुरक्षा बलों का पहरा है। बालटाल और पहलगाम से रवाना होकर श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर भी अमरनाथ की यात्रा कर बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचे हैं। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहाँ से गुफा से आगे की ओर निकलता है यहाँ पर भी लोग जल का आचमन करते हैं, लोग यहाँ पर यहाँ मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तस्वीरों में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं ये श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। साथ ही बेस कैंप भी हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो। कैमरामैन संजय कुमार के साथ जितेंद्र सिंह आज तक।
0: वक्त चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
4: हाँ कहा था,
3: लेकिन ये तय कैसे होता है?
4: फ्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाएंगे।
5: पहला भारतीय चैनल,
3: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं
4: क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुँच रहे।
6: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
7: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
9: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
10: आज तक की खबर का असर हुआ है,
4: हर दिन कमाया जाता है।
9: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
4: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
9: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
11: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज़ नेटवर्क पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: एसआईटी जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर शिकंजा, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ, कटियार बोले जेल जा सकते हैं चंपत राय, बीजेपी पर उद्धव का हमला। मूसलाधार बरसात ने खोली मुंबई में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल, 3 दिन में 6 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही जान, बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। चंद घंटे बाद शुरू हो रही है ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम क्रिया की प्रक्रिया, पहुंचने लगे दुनिया भर के नेता, तेहरान से आज तक की बड़ी कवरेज। गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार, राज्य में आतंकी गतिविधियों का बना रहे थे सक्रिय नेटवर्क।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरें असरदार की शुरुआत राम मंदिर चढ़ावा मामले में संघ के बयान से। चढ़ावा मामले में संघ का पहला बयान आया है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे समूचे समाज और राम भक्तों की भावना को आघात पहुंचा, इस घटना से सभी आहत है। ये पहला बयान उनका जो सामने आया है। वीएचपी की तरफ से तमाम बयान आ रहे थे, आरएसएस की तरफ से आज ये पहला बयान।
2: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
0: अब वो खबर जो राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच में एक नया मोड़ ला सकती है। आज तक सामने सैनिक सिक्योरिटी फर्म के डायरेक्टर और अयोध्या में स्टाफ की ज्वाइनिंग प्रक्रिया से जुड़े एरिया मैनेजर ने ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया गया है कि कर्मचारियों का चयन एजेंसी ने नहीं किया था। उनके अनुसार कर्मचारियों की सूची पहले ट्रस्ट से बैंक तक पहुंची और फिर बैंक ने वही सूची एजेंसी को भेजी। एजेंसी ने केवल उन लोगों का केवाईसी लेकर उन्हें अपने पेरोल पर रखा और वेतन का भुगतान किया। इतना ही नहीं, उनका यह भी दावा है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लिखित दस्तावेज और रिकॉर्ड एसआईटी को सौंप दिए गए। आज तक ने उस एजेंसी से बात की जिसके पास बैंक के जरिए आती थी ट्रस्ट की भर्ती वाली लिस्ट। भर्ती एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी फर्म के डायरेक्टर गौरव सिंह ने दावा किया है कि उन्हें उसी को रखना होता था जो लिस्ट बैंक देता था।
3: गौरव जी, हम ये जानना चाहते थे कि जो इन लोगों का प्रोफाइल आया, आपने सेलेक्ट किया इनको, तो ये आप तक कैसे पहुंचे, आप इन लोगों तक कैसे पहुंचे?
4: हमारा स्टेट बैंक जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे हमारा स्टेट बैंक का अनुबंध है हाउसकीपिंग का। हाउसकीपिंग स्टाफ हमने स्टेट बैंक में दिया हुआ है और जो सिक्योरिटी का काम है वो एसआईएस का है। तो ये हाउसकीपिंग जैसे बैंक में होते हैं तो बैंक का ट्रस्ट के साथ टाइप है, तो हमारा टाइप बैंक से, तो हमने बैंक को स्टाफ दिया, ये बैंक ट्रस्ट के साथ वो अपना चाहे गिनती करना ये करना वो उस काम में उनको लगाएंगे।
3: ये जो स्टाफ का सिलेक्शन हुआ, स्टाफ का सिलेक्शन कैसे हुआ?
4: स्टाफ का ये वो मंदिर से ही लिस्ट मिली थी कि ये हमारे आदमी, उन्होंने बैंक को दिया, बैंक ने हमको दिया कि इनको इनको आप अपने उस पे रख लीजिए पेरोल पे।
3: तो ये ट्रस्ट की तरफ से आया था ये इनका?
4: ट्रस्ट की तरफ से बैंक नहीं, ट्रस्ट की तरफ से बैंक को और बैंक की तरफ से हमको।
3: तो
4: ट्रस्ट ने मुझे डायरेक्ट नहीं दिया जी।
3: तो वो आपके पास कोई उसका मेल ट्रेल या कोई कम्युनिकेशन का ट्रेल होगा ना आपके पास?
4: हाँ हाँ।
3: तो वो आप भेज सकते हैं आज तक को?
4: नहीं, वो जो भी चीजें वो एसआईटी को दे दी गई हैं।
3: आपने दिया है एसआईटी को?
4: जी जी जी।
3: तो वो मेल पे था, व्हाट्सएप पे था, कैसे आया था?
4: वो ऑन पेपर हमको रिटेन हुआ है कि 19 आदमी आप स्टेट बैंक में लगाने का।
5: गौरव जी, मेरा ये सवाल है कि वैसे
4: जी जी
5: नियम है क्या, मतलब जैसे आप अगर हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो आप तो अपने ही इम्प्लॉइज देते होंगे ना?
4: नहीं, हाउस कीपिंग जैसे कि जैसे हमारे 8-10 स्टेट में चल रहे हैं तो हर जगह तो हम ही भर्ती करते हैं सिंगल सिंगल ब्रांचों में, लेकिन वहाँ मंदिर की वो ब्रांच बड़ी थी तो इसलिए स्टेट बैंक ने हमसे 18-19 आदमियों की डिमांड की कि आप 18-19 आदमी इनको आप अपने एंड पे रख लीजिए।
5: जी, तो आपने आप रखते उसके उससे क्या हुआ कि वो लोग खुद ही आपको बोले कि भैया तुम ये लो, ये हमारे आदमी रख लो।
4: उनका हमको बायोडाटा मिल गया, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड ये जितने भी तमाम जो केवाईसी है हमारे फॉर्म पे उनको मिला, हमने उनके वही फिलअप हुआ, फिलअप करके ये हमारे उस पे आ गए, हम उनको मंथली सैलरी देते रहे।
5: जबकि होता ये था कि आप ही अपने एम्प्लॉइज खुद ही हायर करके देते थे, लेकिन इस बार इसमें ऐसा हुआ कि वो लोग सिफारिश किए कि इन लोगों को रख लो और आपने उनको रख लिया, आपने सैलरी दे दिया, ये हुआ है।
4: और बैंक के जैसे राम मंदिर बैंक का बड़ा वो था, वेंडर था, तो राम मंदिर को उन्होंने भी ये नहीं मना कर पाए।
0: एजेंसी के एरिया मैनेजर जो अयोध्या में काम करते थे उन्होंने ट्रस्ट की कारगुजारी सामने रख दी।
5: आप खुद भी इंटरव्यू के लिए गए थे ना?
6: इंक्लूड का मतलब सर?
5: इंटरव्यू के लिए आप गए थे ना अयोध्या?
6: हाँ, गए थे।
5: तो वहाँ क्या हुआ था, मतलब
6: नहीं, हमसे पूछा गया सर कि आपने कैसे लगाया। हमको हमने कहा सर मुझे एक्चुअली में हम पैनल कंपनियां हैं एज स्टेट बैंक LHO के द्वारा और अयोध्या में मैं काम कर रहा था क्योंकि RBO जो अयोध्या है वहां से मुझे ब्रांचें दी गई थी और उसमें अयोध्या भी ब्रांच थी सर। अयोध्या ब्रांच में ऑलरेडी 4 आदमी लगे हैं सर पहले से 2022 से मेरे। तो 2022 नवंबर 2024 में मुझे बुला के और 15 आदमी का वर्क ऑर्डर दिया गया कि आपको 15 आदमी और देना हम, और उन बंदों का नाम लिस्ट सहित दिया गया।
5: अच्छा,
6: कि इन्हीं बंदों को आपको पेमेंट करना है। तो मैंने उनका KYC ले लिया और पेमेंट कराते रहा और बैंक कंपनी को पेमेंट करती रही, कंपनी पे उनको पेमेंट करती रही।
5: अच्छा, तो वो वर्क ऑर्डर वही सब आप मुझे व्हाट्सएप पे भी हाई भेज रहा हूँ, भेज दीजिएगा। दूसरा ये बोल रहा हूँ, जो आपने बोला कि 2022 में 4 लोग काम कर रहे थे तो वो चार लोग भी बैंक ने ही दिए थे या आपने दिए थे अपनी तरफ से?
6: नहीं, वो ऑलरेडी भी वही लोग जिस कंपनी से काम कर रहे थे उन्हीं को हायर करना था, वो भी चार बैंक में, आज भी वो चार लड़के काम कर ही रहे।
5: नियम क्या होता है आप लोग के हाउसकीपिंग में कि मतलब?
6: देखिए सर, नियम तो जैसे क्या होता है सर कि जैसे वर्क आर्डर मिला, आदमी तो देना ही देना है, तो ज्यादातर ये होता है कि ठीक है बंदे काम कर रहे हैं, इनको आप अपने पैनल पे रख लीजिए, ऐसा चलता है सर।
5: अच्छा, सिफारिश से होता है?
6: हाँ, कोई ना कोई रिक्वेस्ट डाल ही देता है सर। जैसे आपने ही कह दिया कि जयराम जी एक बंदा हमारा लगा देना।
0: अब तक की जांच से पता चल रहा है कि चंदा मामले में सबसे आगे अविनाश शुक्ला था। बताया जाता है कि चढ़ावा मामले में अविनाश शुक्ला सबसे बड़ा लाभार्थी है। आरोप है कि उसके पास चोरी की मोटी रकम है जो उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ स्थित घर में छिपा रखी है। अब तक जितनी रकम बरामद हुई है उसमें सबसे ज्यादा अविनाश के पास से ही पैसा मिला है।

0: राम मंदिर में लूटकांड का सबसे बड़ा किरदार कौन? पुलिस के हिट लिस्ट में पहले नंबर पर किसका नाम? आज तक पर लुटेरा नंबर वन का बेनकाब पूरा पर्दाफाश। देश को हिला देने वाले लूटकांड में होने वाला हर खुलासा पहले से ज्यादा सनसनीखेज और खलबली मचा देने वाला साबित हो रहा है। ये पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे तक चढ़ावे की ढेर पर सबने हाथ मारा, जिसे जहां जो और जितना हाथ लगा हथियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोई लूटता रहा, खजाना खाली करता रहा, तो कोई आंखें मूंदे खामोशी से देखता रहा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा अविनाश शुक्ला। वही अविनाश शुक्ला जिसके भाई का नोटों की गड्डियों के साथ वायरल वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। वही अविनाश शुक्ला जिसका योग सेंटर से दान पात्र वाले रहस्यमय बक्से की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला ने मोटी रकम ठिकाने लगाई है। अंदेशा है कि अविनाश शुक्ला सोने चांदी के जेवर भी ठिकाने लगा चुका है।
1: अविनाश शुक्ला से की गई पूछताछ और जुटाई गई जानकारी के आधार पर उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अविनाश शुक्ला से न सिर्फ पूछताछ की जाएगी बल्कि उससे एक बड़ी बरामदगी की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जिसके पास से पुलिस को सबसे बड़ी बरामदगी 20,39,000 रुपए और डॉलर सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। अब इससे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर कुछ और चोरी से जुड़े तमाम राज पुलिस खंगालने में जुटी है।
0: सवाल है कि अविनाश शुक्ला के घर से मिली 2,39,000 की रकम उसकी मोटी कमाई का ट्रेलर तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 लाख सिर्फ झांकी है, उसकी पूरी कमाई का पर्दाफाश होना भी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अविनाश शुक्ला ने और रकम होने की बात मानी है। ये भी बताया है कि उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ के घर में छिपा रखा है। खबर है कि पुलिस पड़ताल करने उसे अयोध्या और प्रतापगढ़ ला सकती है। सोशल मीडिया पर अविनाश के भाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो नोटों की गड्डियां लेकर रील बनाता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले वो अयोध्या आया था, वो अविनाश के साथ ही रहता था। इसके बाद वो प्रतापगढ़ चला गया। अब उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: इस मामले के साथ ही पुलिस और एसआईटी ने जमीन की खरीद घोटाले की भी जांच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद एसआईटी ने तमाम आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी।

0: राम मंदिर में लूट से बनाई अकूत संपत्ति, चढ़ावे की चोरी से धन्ना सेठ बने आरोपी, चढ़ावा चोरी की आंच, अब जमीन घोटाले की जांच। जी हां, चढ़ावा चोरी की जांच की आंच जमीन घोटाले तक पहुंच गई है। खबर है कि गुरुवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी ने ट्रस्ट की खरीदी जमीन की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने रजिस्टर्ड दस्तावेजों के गवाहों को बुलाया था। जो भी गवाह आए उनके बयान दर्ज किए और साथ ही पूछताछ भी की। ये जांच आज भी जारी रहेगी। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने एसआईटी से मुलाकात की थी और एसआईटी को सबूत सौंपे थे।
1: एक जमीन है नजूल की जमीन, न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया। नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है।
2: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रॉपर्टी संबंधित शिकायत एसआईटी की टीम को दस्तावेजों के साथ सौंपी है। दूसरे चरण में इस मामले की जांच होनी है। हालांकि साल 2020-21 में जब जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उस वक्त प्रदेश सरकार ने राधेश्याम मिश्रा कमेटी का गठन किया था, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसको लेकर आज तक राजनीतिक विवाद उत्तर प्रदेश में जारी है। अब जब दूसरी बार इस मामले को लेकर जांच शुरू होने वाली है, तो ऐसे में लीपापोती की संभावना नहीं होगी।
0: तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आएगा कि ट्रस्ट ने औने पौने दाम में मंदिर के लिए जमीन क्यों खरीदी, क्या इसकी वाकई जरूरत थी या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी। जांच के साथ ही जमीन जायदाद का पहलू भी गंभीर होता जा रहा है। जांच एजेंसी को आरोपियों की अकूत संपत्ति का भी पता चल रहा है और इसकी भी छानबीन की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सभी आरोपियों की संपत्तियां खंगाल रही है। अयोध्या, लखनऊ, नोएडा के अलावा दूसरे राज्यों में भी इनकी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। पुलिस ये पता कर रही है कि किसकी कितनी संपत्ति है। पुलिस संपत्तियों की रजिस्ट्री की कॉपियां भी निकाल रही है। आपको हमने ये भी बताया था कि एसआईटी 5 सालों के ट्रस्ट के ऑडिट रिपोर्ट की भी जाँच करेगी, ताकि आमदनी और खर्च की तह तक जाकर पड़ताल हो सके।
3: एसआईटी 5 साल की खातों की ऑडिट करना चाहता है, ऑडिट की जांच करना चाहता है, सर्जिकल, क्लिनिकल, जो कुछ भी, और इसके अलावा भी जो कुछ भी जांच के सत्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी जांचना जरूरी हो एसआईटी को जांचना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं। पुलिस की जांच में, एसआईटी की जांच में वो जो जो कुछ उचित समझते हैं उसकी जांच करें, हम स्वागत करेंगे।
0: अब तक की जांच में आरोपियों की जायदाद का एक एक कर खुलासा हो रहा है। आरोपी लवकुश मिश्रा का निर्माणाधीन मकान भी अवैध निकला है। लवकुश ने इसका नक्शा पास कराए बिना मकान का निर्माण करा लिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण की जांच में ये सच सामने आया है, जिसके बाद इस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: लवकुश के परिवार ने आज तक से बातचीत की है, बड़ा दावा किया है। लवकुश के नाना ने कहा है कि भारी मात्रा में कैश मिलने का दावा गलत है। उन्होंने कहा पुलिस रिकॉर्ड दे क्या मिला है और कहां से मिला है। कंडों के ढेर में आकर ढूंढा, कुछ नहीं मिला। इतने रुपए रखने की घर के अंदर जगह भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इतना कैश जिसकी बात की जा रही है वो कहां से मिला। पुलिस तलाशी लेने के लिए पहुंची थी, पुलिसकर्मी घर के भीतर गए थे और अलमारी के भीतर से कुछ कागज ले गए।
5: भाई साहब क्या है बताइए ना, बेटे को लेकर क्या है। पुलिस बहुत कुछ आरोप लगा रही है, कह रही है काफी कुछ इसी घर के आसपास से मिला है।
6: जो मिला हो जो ले गया वो जाने, जहाँ से या हम लोगों को सबूत दे या कोई रिकॉर्ड दे उसका, जैसे आप कहते हैं ले गए हैं तो आप हमको रिपोर्ट कुछ रिपीट दिए हैं, कोई ग्राम प्रधान को बुलाकर उनके सामने आपने कहा है कि ये इनके घर से निकल रहा है।
5: पुलिस ने असल में ना FIR में ये सब चीजें लिखी हुई हैं।
6: FIR कुछ भी मतलब हम नहीं है, कुछ भी आप लिखिए।
5: तो आप नहीं थे जब ये हुए?
6: हम यात्रा में थे, उस समय यहाँ नहीं थे।
5: बताया गया सामने जो कंडे रखे हैं वहां से कैश मिला
6: 10 लाख रुपया, उसको निकाल लिया जाए गए, घर के अंदर जगह है नहीं रखने की।
5: एक बार दिखाएंगे ना वहां पे क्या निकल सकते हैं कैश?
6: बिल्कुल निकाल से निकाल लीजिए, निकाल गिन लीजिए।
5: आपको लगता है कि वहीं से मिला है?
6: हमको क्या लगता है उसमें, हम जब जानते ही नहीं है, हम जब जानते नहीं कैश मिला कहाँ से है वो।
5: पुलिस ये भी कह रही है कि घर जो है आपका ना वहाँ अंदर कुछ अलमारियां हैं, वहां से रजिस्ट्री के कागज भी मिले हैं।
6: रजिस्ट्री कागज तो परसों ले गए हैं, परसों कौन सा धन मिल गया, किसने कहाँ तलाशी हुई, कौन प्रधान था, कौन कहाँ यहाँ यहाँ के कौन अधिकारी थे, किसने ले गए, ले गए तो ले गए, उसके हमको पता है कि हमको नहीं पता है कि वो कहाँ से कै पैसे कहाँ से ले गए, कहाँ रखा हुआ पैसा, ऐसे मतलब कौन से रोड पे बिछाया हुआ पैसा।
5: बता रहे हैं कि विदेशी डॉलर भी मिला है।
6: विदेशी डॉलर मिला हो तो मिला हो, लेगी वही है। हमारे यहाँ ना क्यों विदेश में है, तो विदेश हमारे यहाँ कोई परिवार का नहीं है।
5: तो फिर डॉलर कैसे है
6: और कहाँ से आया वो तो हमको बतावे कि काम कहाँ से मिला, कहाँ है डॉलर।
5: अच्छा लवकुश के साथ जो भी हुआ है आप क्या लगता है सही है गलत?
6: हमको कुछ नहीं, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं।
5: मुझे बताइए ना, चंपत राय, अनिल मिश्रा जो और बड़े नाम आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है?
6: ये हमको कुछ नहीं मालूम, वो बचावे या छोड़ावे, जो सरकार कर रही है, जो टीम बैठी हुई है उसको वो जिम्मेदार है। हमसे हम लोगों से क्या लेना देना, हम लोग क्या कर सकते हैं?
5: यहाँ आई तो आप लोगों से क्या कहा?
6: हम लोगों से कुछ नहीं कहा,
5: सीधे खंगालने लगे।
6: कहाँ खंगाला? यहीं से यहीं देख कर सब चले गए।
5: अंदर घर के आए होंगे?
6: अंदर एक सिपाही गया था, लेकिन हमारे घर में कोई चीज बरामद नहीं हुई।
5: तो किस बिना पर पुलिस कह रही है कि 14.5 लाख कुछ कैश, कुछ डॉलर और कुछ कागजात?
6: उसको कुछ लिखित देंगे वो, मतलब कहीं से हम लोगों को सबूत
5: कवरी में दिखाया, पेपर है हमारे
6: पास, पेपर हम भी
5: कोर्ट में है पेपर वाला।
6: हाँ तो है, लेकिन निकला होगा ले गए होंगे, हमसे क्या, और उस समय हम थे भी नहीं।
4: अब बड़ी खबर गुजरात से, जहां ATS ने जैश से जुड़े 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी जैश के लिए पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे। पकड़े गए आतंकियों से खुलासा हुआ है कि ये किसी बड़े हमले की फिराक में थे। गुजरात में बड़ा एक्शन ये ATS का, आतंक निरोधी दस्ते की तरफ से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक बड़े प्लान को क्रैक किया गया है एक आतंकी हमले की, जिसमें 8 जैश आतंकियों को धरा गया है। खबरें असरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
8: एकजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: राम मंदिर के दान में हुए गबन की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंची है। इस बार जांच का दायरा काफी बड़ा है। दान में हेरफेर की आंच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। सेकेंड राउंड के पहले दिन एसआईटी की टीम ने बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई है। हालांकि एसआईटी और ट्रस्ट की ओर से अभी तक पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसआईटी टीम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी किरण एस कर रहे हैं। एसआईटी मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, दान संग्रह की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच चंपत राय का बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद वे दाग के साथ काम जारी नहीं रखेंगे। इस बीच मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे की पूछताछ के लिए अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, क्योंकि जांच के दौरान सबसे ज्यादा कैश 20,39,000 अविनाश शुक्ला के घर से बरामद किया गया था। कैश के साथ पुलिस को अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। समझ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
4: In association with
5: Bharat ki apni electric savari, Sokudo.

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी। दत्तात्रेय होस बोले का बयान, कहा घटना से राम भक्तों की भावनाएं आहत, दोषियों को मिले कठोर सजा। मोबाइल से ई रिक्शा का इंजन बंद करने की घटनाओं के बाद सरकार का सख्त फैसला, 3 चाइनीज ऐप को हटाने का आदेश जारी, बैटरी ठप होने से रुक जाती थी गाड़ियां। मूसलाधार बारिश ने खोली महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल, 3 दिन में 6 मौत, खोखले पड़े मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान, बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार, राज्य में आतंकी गतिविधियों का बना रहे थे सक्रिय नेटवर्क।

0: अली खामनेई के अंतिम विदाई की प्रक्रिया पहुंचने लगे दुनिया भर के नेता, तेहरान से आज तक की बड़ी कवरेज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड।
3: ईरान में खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की महातैयारी। पहली बार आवाम के सामने रखा गया ताबूत। सबसे बड़ी खबर की कवरेज के लिए तेहरान पहुंचा आज तक। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी की हर हलचल पर नजर। भारत सरकार के अलावा विपक्षी दल कांग्रेस की भी मौजूदगी। अंतिम यात्रा के बीच मध्य पूर्व में तनाव भरा माहौल। इसराइल की हिट लिस्ट में मुश्तबा खामिनई।
4: Said he wants to come out, even he wanted to lead people by Salat, because we have to pray on the dead body of Ayatollah Khamenei, but the security doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him, and I think he will not come out.
3: खतरे की वजह से पिता को अंतिम विदाई देने नहीं आएंगे मुश्तबा। सुप्रीम लीडर के सहयोगी का आज तक पर खुलासा। मुश्तबा पर है इजरायली एजेंसियों की नजर। ईरान के बाद इराक भी जाएगा पार्थिव शरीर। इजरायली हमले का डर, बंद रहेगा एयर स्पेस। ईरान ने चेताया, शोक के बीच इजरायल ने हमला किया तो तबाही मचेगी।
5: मैं तेहरान में मौजूद हूँ, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ सड़कों पर जुटने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां चल रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे यानी अभी के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई उसमें शामिल नहीं होंगे।
3: खौफ के बीच अंतिम यात्रा पर आज तक की नजर। हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से सिर्फ आज तक पर।
5: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि के स्पेशल एडिशन में मैं इस समय मौजूद हूं ईरान की राजधानी तेहरान में। करीबन 125 दिन के बाद यहां पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, एक बहुत यादगार ऐतिहासिक पल यहां पर होगा, जब जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामनेई, जिनके जनाजे यानी उनकी मौत के बाद अब उनके उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इसीलिए जो यहां पे जनाजे की नमाज है उसको अदा करने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। मातम के साए में जहां पर पूरा देश इकट्ठा है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग लगातार यहां की सड़कों पर मौजूद रहेंगे। उसी समय आज तक की टीम यहां मौजूद है। मैं और मेरी सहयोगी गीता मोहन और हमारे कैमरा पर्सन सत्या रावत इस समय तेहरान में मौजूद हैं, जो आपको पल पल की जानकारी देंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देंगे। लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि जब इस पूरे मातम के अंदर ईरान करीबन 125 दिन के बाद सुप्रीम लीडर की के शरीर को, पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, उसी बीच लगातार यहां पर जंग का खतरा भी मंडराने लगा है। कहा जा रहा है कि इसराइल की से धमकी दी जा रही है कि वो नए ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार क्या है यहां के ताजा हालात, क्यों लगातार इस मातम के माहौल के अंदर और भी ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं, ये दिखाने के लिए आज तक की टीम यहां मौजूद है। सबसे पहले देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
6: या हुसैन,
3: इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामिनेई का ताबूत इमाम खामिनेई प्रार्थना स्थल यानी मुसल्ला पहुंचा है 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमले में जान गंवाने वाले खामेनेई का ताबूत पहली बार तेहरान में आवाम के सामने रखा गया है। कल से उन्हें अंतिम विदाई देने की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मातम के इस आयोजन पर दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों और फाइटर जेट्स की नजरें गड़ी हैं।
5: करोड़ों की संख्या में लोग यहां सड़कों पर जुटने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे यानी अभी के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई उसमें शामिल नहीं होंगे। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर या इसराइल की तरफ से जो धमकी दी गई है उसको लेकर ये सबसे बड़ी बात कही जा रही है।
3: सुना आपने, खतरा इतना भीषण है कि बेटा अपने पिता के जनाजे को कंधा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने आज तक की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट गीता मोहन से बातचीत में जो खुलासा किया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे।
4: Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out. Yes.
3: दरअसल इस बारूदी खेल की शुरुआत तब हुई जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ट्स ने सीधे हुंकार भरी कि मुज्तबा खामेनेई अब इजराइल की हिट लिस्ट पर हैं। वो मार्क्ड फॉर डेथ हैं। इजराइल की इस खुली धमकी पर ईरान तड़प उठा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। अराग्ची ने कहा कि अमेरिका तेल अवीव के अपने इस पालतू को काबू में रखे, वरना ईरान उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो भूल नहीं पाएगा। जब ईरान की तरफ से जुबान बेलगाम हुई तो ट्रंप की सबसे कट्टर सिपह सालार लॉरा लूमर ने वो बात खुलकर कह दी जो तमाम ईरान विरोधी और इसराइल समर्थकों के दिलों में छिपी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी और धुर दक्षिण पंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने खामेनेई सीनियर के इस अंतिम संस्कार को टारगेट रिच एनवायरमेंट घोषित कर दिया, यानी वो खुलेआम इसराइल को उकसा रही हैं कि पूरी ईरानी लीडरशिप एक जगह जमा है, हमला करने का इससे मजेदार और सही मौका दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा होने की आशंका कोरी कल्पना नहीं है। दुनिया ने पिछले साल ही देखा था कि जब लेबनन के बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तब इसराइल के F-15 और F-35 फाइटर जेट्स ने अंतिम संस्कार के ठीक ऊपर ऊंचाई पर फ्लाई पास्ट कर दहशत फैला दी थी। और इस बार तो जंग सीधे ईरान की धरती पर है। हालांकि ईरान भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। तेहरान और मशहद समेत कई शहरों का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि हम ईरान के दुश्मनों खासकर अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हैं कि वो कोई गलत कदम ना उठाएं और सोचें कि किसी भी खतरे या आक्रामकता का हमारी सेना की ओर से कितना कड़ा जवाब दिया जाएगा। साफ है कि ईरान की ताकतवर सेना कड़ा जवाब देने के लिए मिसाइलों के ट्रिगर पर हाथ रखे बैठी है। युद्ध के इन बदसूरत और खौफनाक हालात के बीच ईरान के भीतर क्या चल रहा है? क्या सच में इसराइल इस मौके पर कोई कार्रवाई कर सकता है? इन तमाम सुलगते सवालों का जवाब ढूंढने आज तक की टीम इस खतरे के बीच सीधे तेहरान पहुंच चुकी है। हर पल बदलती इस बारूदी जंग की सबसे प्रामाणिक, सबसे तेज और जाबाज कवरेज सिर्फ आज तक पर जारी रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
5: पूरे ईरान के अंदर इस समय सुप्रीम लीडर यानी पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को लेकर उनकी जो सेरेमनी है या फिर उनका जो नमाज जनाजा है उसको लेकर तैयारियां चल रही है। इस समय दरबान स्ट्रीट पर है और अगर आप मेरे पीछे देखें तो इस समय आपको हर मॉस्क के ऊपर इस तरीके से काले कपड़े से ढका हुआ नजर आ जाएगा। दरअसल ये तैयारियों का एक तरीका है और इस समय जिस इलाके में हूँ, अगर आप ये देखिए मॉस्क है जहाँ पर, अगर आप ग्रीन उस बोर्ड पे देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन सत्या आपको दिखा रहे होंगे, हर मॉस्क को इसी तरीके से ब्लैक उससे ढक दिया गया है, क्योंकि पूरे ईरान के अंदर खासतौर पर तेहरान में भी इस तरीके के जलसा या फिर लोग निकलेंगे अपने घरों से। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आने की उम्मीद है। अमूमन इस इलाके में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ना सिर्फ तेहरान के लोग या ईरान के लोग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लोग भी यहाँ पर, यानी जो फॉरनर्स है वो भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर संख्या कम है, ना के बराबर है। लेकिन हर जगह अगर आप देखेंगे, ये इस समय तेहरान में तैयारियाँ चल रही हैं। अगर आप देखें जो टीमें हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं वहाँ की जो लोकल म्यूनसिपल है, वो लगातार उसकी तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ पे साफ सफाई हो उसको लेकर, मॉस्क को लेकर तैयारियां चल रही है। और इस तरीके के जो आप तरीके हैं, क्योंकि शिया कम्युनिटी में भी, शिया धर्म में भी इस तरीके के आप कह सकते हैं कि काले रंग का बहुत महत्व होता है, जब भी किस तरीके का कोई आप कह सकते हैं कि जो दुख वाली घड़ी होती है या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ा सदमे वाला, तो उस समय काले कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस समय हर मॉस्क को इसी तरीके के काले कपड़े से ढक दिया गया, जगह जगह पर हमको इस तरीके के मॉस्क या फिर जो लोग हैं उनके लिए ऐसी तैयारियां हमें इस समय तेहरान में दिखती है। आज तक की टीम यहाँ जब पहुंची तब हम उस स्पेशल प्लेन में थे जिसमें भारत का पहला मीडिया या अकेला मीडिया उस एयरक्राफ्ट में मौजूद था, जिसमें जो भारत में मौजूद सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि हैं हाकिम इलाही, वो भी उस फ्लाइट में मौजूद थे। मेरी सहयोगी गीता मोहन ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
7: You are very close to the family. Yes. You are close to, you grew up in fact with Supreme Leader Mujtaba Khamenei.
4: Yes.
7: Is he going to come?
4: Actually, I was in Iran last week and I visited some of my friends who met him, and they said he wants to come out, even he wanted to lead people by Salat, because we have to pray on the dead body of Ayatollah Khamenei, but the security doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him, and I think he will not come out.
7: There's always a death will that the Supreme Leader writes.
4: Yes.
7: And in that death will, the Supreme Leader normally names who's going to do the prayers. Is there a name of who's going to lead the prayers this
4: No,
7: time?
4: He didn't mention anyone to lead for the prayers. And actually, if the condition was good, the new Supreme Leader is the one who is going to lead the people for the Salat and prayer. But unfortunately, the condition is not good.
5: जो यहाँ पर सुप्रीम लीडर यानी पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर किया जा रहा है, 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद होंगे। खास बात यह भी कि करीबन 30 से ज्यादा जो देश हैं वो अपना प्रतिनिधि मंडल यहां पर ऑफिशियल्स को भेज रहे हैं, और 90 से ज्यादा अलग अलग कंट्रीज के रिलीजियस आप कह सकते हैं उनके प्रतिनिधि या फिर उनके लीडर्स या फिर उनके बड़े लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं इस समय यहाँ मौजूद हूँ, तेहरान की सड़कों से लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। क्या होगा पूरे आयोजन के दौरान, किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई है, सबसे पहले आपको उसको लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर किधर? करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1999।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय होस बोले का बयान। कहा घटना से राम भक्तों की भावनाएं आहत, दोषियों को मिले कठोर सजा। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को भारत की दो टूक, कहा हम अपने पुराने रुख पर कायम, आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से रोक जारी। मोबाइल से ई रिक्शा का इंजन बंद करने की घटनाओं के बाद सरकार का सख्त फैसला, 3 चाइनीज ऐप को हटाने का आदेश जारी, बैटरी ठप होने से रुक जाती थी गाड़ियां। मूसलाधार बारिश ने खोली महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सिस्टम की पोल, 3 दिन में 6 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान, बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल। चंद घंटे बाद शुरू हो रही है ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम सफर की प्रक्रिया, पहुंचने लगे दुनिया भर के नेता, तेहरान से आज तक की बड़ी कवरेज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
2: ईरान में भावनाओं का ज्वार, अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, 6 दिन तक चलेगी अंतिम यात्रा, दुनिया भर से आ रहे नेता, नब्बे देशों से आ रहे धार्मिक गुरु, संभावित हमले पर चौकन्ना ईरान,
3: वो दिखाएंगे क्या करता,
2: हर हलचल पर आज तक की नजर, ईरान के चप्पे चप्पे पर तैनात आज तक की टीम।
4: रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। जैसा कि हमने आपको ब्रेक के बाद बताया था कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और यहां के पल पल की जानकारी, पल पल की तस्वीरें, हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय आज तक की टीम यहाँ मौजूद है और आपको बता रही है कि यहाँ पर लोगों की भावनाएं, यानी सुप्रीम लीडर को 125 दिनों के बाद सुपुर्द खाक किया जा रहा है, उनको दफनाया जा रहा है और इसी बीच में लोगों की भावनाएं किस तरीके की हैं, ये तस्वीरें और ये खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये भी बता रहे हैं कि दुनिया भर के तमाम प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर तेहरान पर पहुंच रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर इस समय जलसे में या फिर इस मातम में शामिल होंगे। लेकिन खास बात यह कि 30 से ज्यादा देशों ने अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा, इसके अलावा 90 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके जो धार्मिक गुरु हैं या धार्मिक आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बताएंगे कि कैसे लगातार यहाँ पे बड़े लीडर्स के आने का जमावड़ा शुरू हो चुका है। जिस तरीके से लेबनान के ऊपर इजराइल हमले कर रहा है, जिस तरीके से लगातार बड़े हमलों के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, उसे ये घटनाक्रम बन रहा है कि क्या एक बार फिर से स्थिति बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा गंभीर होने वाली। हम इस समय जब तेहरान में मौजूद हैं, भले ही यहाँ पर मातम को लेकर इस इतिहास में, ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन किया जा रहा हो, लेकिन लगातार सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। माना जा रहा है कि क्या 9 जुलाई के बाद से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जब ईरान एक बार फिर से इसराइल को लेबनान पर हमलों को लेकर जवाब देगा, क्योंकि अमेरिका ये कह चुका है कि ईरान ने तमाम अमेरिका की शर्तें मान ली और अमेरिका को हमने चुका दिया। लेकिन अमेरिका का ये कहना ईरान को नागवार गुजरा, ईरान इसको लेकर पहले कई बार खंडन कर चुका है और कड़ा रुख भी अपना चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 9 जुलाई के बाद एक बार फिर से घटनाक्रम बदलने वाला है।
5: अंतिम संस्कार के बाद सुलह या फिर संग्राम, इसराइल आक्रामक मूड में, लेबनान में फिर घमासान, ट्रंप का दावा उनकी हर बात मान गया है ईरान,

0: पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान में उमड़ी इस भीड़ पर लगी हैं। निगाहें तेहरान से शुरू होने वाले अंतिम संस्कार की हर एक गतिविधि पर लगी हैं। निगाहें इस सवाल का जवाब खोजने पर भी लगी हैं कि एक हफ्ते बाद जब अंतिम संस्कार की हर प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब सुलह का माहौल बनेगा या फिर संग्राम का, क्योंकि इजराइल का रुख साफ है, वो लेबनन में रुकने के मूड में नहीं है और उसके रुके बिना ईरान युद्ध विराम लागू करने के हक में नहीं है। लेबनन से ताजा खबरें ये हैं कि इजरायली सेना ने दक्षिणी हिस्से में विनाशकारी एयर स्ट्राइक की है। इससे कितना नुकसान हुआ होगा इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। टायर जिले के एक इलाके में हुए इस हमले के बाद धमाकों की आवाज सुनाई दी और कई जगह आग लग गई। इजराइल लगातार अपनी सीमा के आसपास लेबनानी इलाके में बनी सुरंगों को तबाह करने के अभियान में भी जुटा हुआ है। सुरंग से निकले हिजबुल्ला के एक आतंकी को इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर मौत के घाट उतार दिया। वैसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनन ने युद्ध विराम पर दस्तखत किए थे। बाद में हिजबुल्ला ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया था और छोटी मोटी झड़पें जारी थी, लेकिन इजराइल के इस हमले के बाद ये साफ हो गया है कि वो किसी भी कीमत पर फिलहाल दक्षिणी लेबनन में मानने वाला नहीं है, कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक हिजबुल्ला का नामो निशान न मिट जाए। उधर ट्रंप लगातार ये साबित करने में लगे हैं कि उन्होंने ईरान युद्ध में जीत हासिल कर ली है। स्थायी युद्ध विराम की ओर बढ़ रहे अमेरिका और ईरान के बीच एक तरफ जहां होर्मुज में जहाजों पर हमलों को लेकर खटास पैदा हो गई थी, वहीं ट्रंप के विजेता होने के ये दावे भी ईरान को चिढ़ा सकते हैं।
1: We were in Afghanistan for like 10 years. We were in the Korean War forever. We were in, I don't even mention World War I and World War II, they're biggies, but you know what, stuff like this could have led to it. But we were in many, many years in every war. I've been there for 4 months. And what have I done? I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. And I hit them 3 times last week very hard because they sent a drone into a ship. I hit them. Then they did something else and I hit them. I hit them 3 nights in a row. The week before I hit them 2 nights in a row very hard. And we're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need.
0: एक तरफ ट्रंप ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएन में अमेरिका ने ईरान को जमकर लताड़ लगाई है। जिस अंदाज में ईरानी दूत अमीर सईद इरवानी को दुनिया भर के सामने हड़काया गया है, उससे तो अंतिम संस्कार के बाद सुलह से ज्यादा संग्राम के ही आसार नजर आ रहे हैं।
2: May I ask you, what here is a lie? Who's lying here? Is this Arab family in Bahrain in a residential neighborhood whose home was destroyed by an Iranian Shahid drone? Are they lying? Crown Plaza Hotel full of tourists? Are they lying? First responders whose headquarters were struck deliberately so that they couldn't put out fires? Are they lying? Is this hypocrisy? Is this what this council is here to denounce today? I asked the representative, are these lies? Are these photographs? Are these lies?
0: कहने को ट्रंप कितना ही कह लें, लेकिन सच ये है कि इजराइल के बिना ईरान के साथ उनका युद्ध विराम संपूर्ण नहीं हो सकता और किसी भी पल बम के धमाके इस युद्ध विराम को ध्वस्त कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
3: क्या ईरान इस अंतिम संस्कार के द्वारा कोई दुनिया भर को बड़ा संदेश देना चाहता है? खास तौर पे संदेश क्या अमेरिका और इसराइल को मिलेगा? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान को लगातार अमेरिका कहता रहा है कि वो अलग थलग पड़ चुका है। ईरान अकेला है, ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन इन 125 दिनों के अंदर कूटनीतिक तौर पर भी ईरान ने जो उपलब्धि हासिल की, जिसमें रूस हो, चीन और कई ऐसे बड़े देश जो लगातार ईरान के साथ आकर खड़े हो गए, उसने अमेरिका को कूटनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया। वहीं खास तौर पर इसराइल और अमेरिका के बीच में जो खटास पैदा हुई, उसने भी ये साबित कर दिया कि शायद अमेरिका खुद ही अकेला पड़ता जा रहा है और इसराइल अपने मुताबिक चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है। तो क्या ये सारा मौका ईरान अब इस तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए या अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कर रहा है ताकि दुनिया ये समझ सके कि ईरान और इसराइल के जो दावे थे रिजिम चेंज को लेकर, लोगों में नाराजगी को लेकर, वो झूठे थे और अब भी लोग लगातार रिजिम के फेवर में, उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं।

0: भारत से लेकर रूस तक, चीन से लेकर इराक और सीरिया तक, और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक, अंतिम संस्कार में दिखेगी ईरान की दोस्ती। संवेदनाओं के जरिए दिखेगा कूटनीति का आईना। एक तरफ अपने सर्वोच्च नेता को सम्मान देने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ दुनिया को ये भी दिखाने का मौका है कि ईरान के दोस्तों की कमी नहीं है और न ही वो युद्ध की वजह से दुनिया से अलग थलग हुआ है। ईरान के लिए 28 फरवरी के बाद का वक्त बेहद मुश्किलों में बीता है। उसने अपने सर्वोच्च नेता, कई मंत्री और कई सीनियर कमांडर खो दिए। ईरान के हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस युद्ध ने, अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान के कई शहरों को बर्बाद करके रख दिया है। सैन्य तौर पर भी उसे इतना नुकसान हो चुका है कि दोबारा युद्ध में खुद को झोंकने के लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, हुर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी ने तेल के उसके खेल को बुरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। कहने को उसने टोलबंदी का फरमान जारी कर दिया, लेकिन बमबारी के हालात के बीच उसके लाखों बैरल तेल का निर्यात ठप पड़ गया, जिसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इस मोर्चे पर कई देशों की तरफ से लगी पाबंदियों ने उसे पहले से ही कमजोर कर रखा था, लेकिन सीजफायर ने उसे फिर से खड़े होने, युद्ध के दौरान हुए भारी सैन्य नुकसान की भरपाई करने और कूटनीतिक तौर पर मजबूत होने का मौका दिया, और इस मौके का उसने भरपूर फायदा भी उठाया। अब ईरान के लिए एक और मौका आया है। वैसे तो ये मौका संवेदनाओं का है, भावनाओं का है और अपने पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार का है, लेकिन साथ ही दुनिया को ये भी दिखाने का है कि आज भी ईरान के कूटनीतिक रिश्ते कमजोर नहीं पड़े हैं। ईरान ने दुनिया के हर उस देश को इस अंतिम संस्कार में बुलाया है जिसके साथ उसके रिश्ते राजनीतिक, धार्मिक, सैन्य और कूटनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा देशों के नेता अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहेंगे, जबकि 90 से ज्यादा देशों के धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें दुनिया भर से शिया समुदाय के धर्म गुरु भी शामिल हैं। पाकिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया और जॉर्जिया जैसे देशों के प्रमुखों ने आने की हामी भरी है, जबकि भारत, तुर्की, चीन, रूस, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। रूस और चीन की ईरान से दोस्ती जग जाहिर है। तेल से लेकर हथियार तक के मोर्चे पर इन तीनों देशों का तालमेल कई बार अमेरिका को नागवार गुजरा है, लेकिन इन बड़ी ताकतों के अलावा एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों के साथ मजबूत रिश्तों की दास्तान भी इस पूरे हफ्ते अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: पूरे ईरान के अंदर इस समय सुप्रीम लीडर यानी पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर उनकी जो सेरेमनी है या फिर उनका जो नमाज जनाजा है उसको लेकर तैयारियां चल रही है। इस समय दरबान स्ट्रीट पर है और अगर आप मेरे पीछे देखें तो इस समय आपको हर मॉस्क के ऊपर इस तरीके से काले कपड़े से ढका हुआ नजर आ जाएगा। दरअसल ये तैयारियों का एक तरीका है और इस समय जिस इलाके में हूँ, अगर आप ये देखें मॉस्क है जहाँ पर, अगर आप ग्रीन उस बोर्ड पे देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन सत्या आपको दिखा रहे होंगे, हर मॉस्क को इसी तरीके से ब्लैक उससे ढक दिया गया है, क्योंकि पूरे ईरान के अंदर खासतौर पर तेहरान में भी इस तरीके के जलसा या फिर लोग निकलेंगे अपने घरों से। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आने की उम्मीद है। अमूमन इस इलाके में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ना सिर्फ तेहरान के लोग या ईरान के लोग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लोग भी यहाँ पर, यानी जो फॉरनर्स है वो भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर संख्या कम है, ना के बराबर है, लेकिन हर जगह अगर आप देखेंगे ये इस समय तेहरान में तैयारियां चल रही हैं। अगर आप देखें जो टीमें हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं वहाँ की जो लोकल म्यूनसिपल है, वो लगातार उसकी तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ पे साफ सफाई हो उसको लेकर, मॉस्क को लेकर तैयारियां चल रही है। और इस तरीके के जो आप तरीके हैं, क्योंकि शिया कम्युनिटी में भी, शिया धर्म में भी इस तरीके के आप कह सकते हैं कि काले रंग का बहुत महत्व होता है, जब भी किस तरीके का कोई आप कह सकते हैं कि जो दुख वाली घड़ी होती है या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ा सदमे वाला, तो उस समय काले कलर का इस्तेमाल किया जाता है और इस समय हर मॉस्क को इसी तरीके के काले कपड़े से ढक दिया गया। जगह जगह पर हमको इस तरीके के मॉस्क या फिर जो लोग हैं उनके लिए ऐसी तैयारियां हमें इस समय तेहरान में दिखती है। रणभूमि में
2: आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज जारी रहेगी। आज तक की टीम इस समय तेहरान में मौजूद है और हम लगातार आपको यहां से वो ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजते रहेंगे जो आपको दिखाएगी कि इस समय ईरान के ताजा हालात क्या है।
0: ईरान ने खामेनेई को सुपुर्द खाक करने की महातैयारी। पहली बार आवाम के सामने रखा गया ताबूत। सबसे बड़ी खबर की कवरेज के लिए तेहरान पहुंचा आज तक गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी की हर हलचल पर नजर। भारत सरकार के अलावा विपक्षी दल कांग्रेस की भी मौजूदगी। अंतिम यात्रा के बीच मध्य पूर्व में तनाव भरा माहौल। इसराइल की हिट लिस्ट में मुश्तबा खामेनेई।
3: Said he wants to come out, even he wanted to lead people by Salat, because we have to pray on the dead body of Ayatollah Khamenei, but the security doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him, and I think he will not come out.
0: खतरे की वजह से पिता को अंतिम विदाई देने नहीं आएंगे मुश्तबा। सुप्रीम लीडर के सहयोगी का आज तक पर खुलासा। मुस्तबा पर है इजरायली एजेंसियों की नजर। ईरान के बाद इराक भी जाएगा पार्थिव शरीर। इजरायली हमले का डर, बंद रहेगा एयर स्पेस। ईरान ने चेताया, शोक के बीच इजरायल ने हमला किया तो तबाही मचेगी।
2: मैं तेहरान में मौजूद हूँ, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ सड़कों पर जुटने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां चल रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे यानी अभी के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई उसमें शामिल नहीं होंगे।
0: खौफ के बीच अंतिम यात्रा पर आज तक की नजर। हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से सिर्फ आज तक पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
5: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
6: हमने तब भी सवाल किया था।
7: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
6: हम आज भी सवाल करते हैं।
7: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
6: ऑपरेशन अग्नि,
7: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
6: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
4: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: पीओजे के में शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर के कथित अवैध शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आंदोलन के 24वें दिन पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तीखे आरोप सामने आए हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का कथित अवैध कब्जा हटने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच आंदोलनकारियों ने खुलासा किया कि कश्मीरियों को हथियार खुद पाकिस्तान सेना ने दिए थे और आज मौलाना मुनीर की जिहादी सेना उन्हें आतंकवादी कह रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल रावलकोट में जैश ए मोहम्मद के एक कार्यक्रम को स्थानीय प्रशासन ने अनुमति दी थी और सुरक्षा भी उपलब्ध कराई थी, जहां हथियारबंद लोग खुलेआम मार्च कर रहे थे।
9: अगर आगे बढ़ना पड़ा आगे बढ़ेंगे, 38 मुतालबा पे नहीं बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे। और मुतालबा क्या है? रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, रियासत खाली करो।
8: आंदोलनकारियों ने इस्लामाबाद को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी 38 मांगों पर बातचीत कर उन्हें लागू नहीं किया गया तो हजारों लोग मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह मार्च हुआ तो आंदोलन का केंद्र सिर्फ 38 मांगे नहीं बल्कि पाकिस्तान से POJ के खाली करने की मांग भी होगी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: और सूत्र गवाले से खबर आ रही है, वो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विनय कटियार से राम मंदिर या किसी भी अन्य मुद्दे पर कोई भी बात नहीं हुई, न टेलीफोन पर न ही व्यक्तिगत रूप से मुलाकात के जरिए। जबकि आज विनय कटियार ने यह बयान दिया था कि राम मंदिर चढ़ावे मुद्दे पर पीएम मोदी से उनकी बात हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा सब ठीक होगा। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बड़े बड़े दावे कर रहे थे विनय कटियार, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि कोई बात नहीं हुई पीएम से।
3: देखिए, बिल्कुल बड़े बड़े दावे जो हैं वो विनय कटियार की तरफ से जो किए गए थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात हुई है, उनकी राम मंदिर में जो चढ़ावा का मामला आया है उसको लेकर। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की विनय कटियार से ना टेलीफोनिक बातचीत हुई है, ना ही व्यक्तिगत रूप से कोई मुलाकात हुई है किसी भी मामले पे, ना सिर्फ जो है वो राम मंदिर चढ़ावे का मामला हो या किसी अन्य मुद्दे पर। तो एक चीज जरूर है कि विनय कटियार की पिछले कुछ समय बता, आप मान के चल सकते हैं कि पिछले 4 या 5-6 महीने से किसी भी विषय पे विनय कटियार से कोई भी बातचीत जो है वो प्रधानमंत्री की नहीं हुई है, ना टेलीफोनिक, ना विनय कटियार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई मुलाकात
2: नहीं हुई है, ये सूत्रों से खबर आ रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन क्या दावा विनय कटियार की तरफ से किया गया था, क्या कहा था, वो सुनते एक बार।
4: पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर।
5: किस मामले में?
4: इसी मामले में। और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है।
2: तो ये दावा किया था विनय कटियार ने, जो अभी आपने सुना। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
7: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
6: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere.

भारतीय घरों के किचन में जब तक आलू प्याज और टमाटर का तड़का ना लगे तब तक खाने का असली स्वाद ही नहीं आता। हर आम आदमी की थाली इन तीनों खास सब्जियों के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन इन दिनों देश के आम परिवारों का ये सबसे पसंदीदा स्वाद लगातार कड़वा होता जा रहा है। महंगाई का एक नया झटका सीधे जनता की रसोई पर लगा है, जिसने हर घर के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की मार के बाद रोज खाई जाने वाली सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने में टमाटर के औसत खुदरा दाम करीब 18% तक बढ़ चुके हैं। वहीं प्याज की कीमतों में 11% और आलू के दाम में 1.3% का उछाल आया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो टमाटर 50% तक महंगा हो गया है। दिल्ली और NCR के बाजारों में भी सब्जियों की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज और टमाटर आम आदमी के खर्च से जुड़े सूचकांक का 2.25% हिस्सा होते हैं। इसीलिए जब इनके दाम बढ़ते हैं तो पूरी थाली महंगी हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक टमाटर और LPG की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से आम थाली महंगी हो गई है, जिससे शाकाहारी थाली की कीमत में 5% तक की तेजी दर्ज की गई है और नॉनवेज थाली भी करीब 7% तक महंगी हो गई है। महंगाई के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक खाने पीने की चीजें इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह मौसम का मिजाज है, जिसने किसानों से लेकर आम खरीदारों तक सबको परेशान कर दिया है। व्यापारियों और जानकारों के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच पड़ी भयंकर गर्मी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अत्यधिक तापमान की वजह से खेतों में ही टमाटर की फसल पूरी तरह झुलस गई। इसके साथ ही कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश की वजह से सब्जियों की पैदावार 10-20% तक कम हुई है। तेज धूप और गर्मी की वजह से ट्रकों में लोड होकर आने वाली सब्जियां रास्ते में ही जल्दी पककर खराब हो रही हैं। माल ढुलाई में आ रही इन दिक्कतों की वजह से मंडियों तक सही समय पर फ्रेश स्टॉक नहीं पहुंच पा रहा है। सप्लाई घटने और डिमांड बढ़ने से रिटेल मार्केट में आलू, प्याज और टमाटर के दाम दोगुने तक हो गए हैं। यानी भीषण गर्मी, बेमौसम बारिश और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतों ने मिलकर आम आदमी की रसोई का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। आने वाले दिनों में नई फसल आने के बाद ही इन कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आज तक ब्यूरो।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी। दत्तात्रेय होसबले का बयान, कहा घटना से राम भक्तों की भावनाएं आहत, दोषियों को मिले कठोर सजा। आज एसआईटी ने 33 लोगों से की पूछताछ।

0: चढ़ावा चोरी मामले में विनय कटियार से पीएम मोदी की कोई बात नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। पहले कटियार ने प्रधानमंत्री से बातचीत का किया था दावा। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को भारत की दो टूक, कहा हम अपने पुराने रुख पर कायम, आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से रोक जारी। मोबाइल से ई रिक्शा का इंजन बंद करने की घटनाओं के बाद सरकार का सख्त फैसला, 3 चाइनीज ऐप को हटाने का आदेश जारी, बैटरी ठप होने से रुक जाती थी गाड़ियां। चंद घंटे बाद शुरू हो रही है ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, पहुंचने लगे दुनिया भर के नेता, तेहरान से आज तक की बड़ी कवरेज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल हम राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर हो रही राजनीति को लेकर कर रहे हैं। राजनीति ऐसी है कि अयोध्या की चोरी का असर महाराष्ट्र की सियासत में हो रहा है। अपनी पार्टी की रक्षा में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे उद्धव ठाकरे अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड के बाद राम रक्षा आंदोलन करने शुरू कर रहे हैं। आज ही घोषणा की है कि रविवार को दादर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये जागरूकता आंदोलन उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी को लेकर चल रही जांच में तमाम खुलासे हो रहे हैं। चोरी के आरोपी 10-12 हजार की मामूली नौकरी करने वाले अनुकल्प के घर हुए 50 लाख रुपए की निजी रामकथा में चंपत राय क्यों और कैसे मौजूद थे, इसकी भी पड़ताल चल रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान भी सामने आया है। इस पूरे चोरी कांड में करीब एक महीने बाद आरएसएस ने लिखित बयान पढ़ा है। दत्तात्रेय होसबले ने दान पत्रों से कुछ पैसों की चोरी की जांच और व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई है, लेकिन साथ में हिंदुओं को संयम बरतते हुए राष्ट्र विरोधी साजिश से सतर्क रहने की अपील भी कर डाली है। तो फिर याद आता है कि मशहूर शायर शहाब जाफरी का एक बड़ा मशहूर शेर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिले क्यों लूटे, हमें राजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो वही सवाल देश भी पूछना चाहता है और इसी सवाल पर हम दंगल में भी चर्चा करेंगे और सवाल भी पूछेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।

0: चढ़ावा चोरी की खबरों से श्रद्धालुओं को निराशा हुई, भक्तों को आघात पहुंचा, आम लोगों को अब भी न्याय की उम्मीद है। लेकिन इस चोरी कांड में राजनीति को भरपूर संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि कम ही ऐसे चोरी घोटाले भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिलते हैं जिनमें सियासत को संघ VHP BJP पर एक साथ हमले का मौका मिला हो। यही वजह है कि यूपी में अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली में कांग्रेस तक और पूरब में ममता से लेकर पश्चिम में उद्धव ठाकरे तक अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड को लेकर राजनीतिक मोर्चेबंदी कर चुके हैं। पार्टी में टूट और गठबंधन में फूट के किस्सों से परेशान उद्धव ने अपनी सियासत की रक्षा से आगे राम रक्षा आंदोलन करने का आह्वान कर डाला।
1: दादर में आने वाले रविवार को 5 तारीख है, लगभग दोपहर के 4 बजे के आसपास मारुति का मंदिर है जहां पहले कबूतर खाना हुआ करता था, वहीं पर एक हनुमान मंदिर है, वहां हम सब सारे इकट्ठा आएंगे, राम रक्षा हनुमान स्तोत्र और राम हनुमान चालीसा हम वहां सबके साथ बोलें।
0: वैसे महाराष्ट्र की सड़कों पर सियासत के हनुमान चालीसा अक्सर शनिवार को हुआ करती थी, लेकिन इस बार उद्धव ने रविवार को राम नाम की राजनीति करने का ऐलान किया। सवाल ये था कि जब चोरी अयोध्या में हुई तो चालीसा महाराष्ट्र में पढ़ने का क्या फायदा।
1: एक एक मजाक की बात मैंने की, क्योंकि कल ही मैंने सुना कि अमित शाह भी खुद गए ने, ऐसे किसी ने कहा है तो बात छोड़ो, मैं तो दो बार और हमारे साथी जो है संजय राउत जी, आदित्य वगैरह हमारे सब साथी वहाँ 2-4 बार गए हुए हैं। मैं तो खुद चीफ मिनिस्टर बनने के पहले भी गया था और उसी वक्त मैंने नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। तो हमारे लिए मंदिर का महत्व ये है, सरकार बाद में, मंदिर पहले।
0: अयोध्या में चोरी पर महाराष्ट्र के लोगों को उद्धव क्यों जागरूक करना चाहते हैं, इसका मर्म उद्धव के अगले बयान से समझ में आता है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के दान लूट को विधायकों सांसदों की लूट के बराबर का पाप माना है।
1: आज परत एक राम मंदिर जय ऑपरेशन राम मंदिर भाजपा पुरस्कृत चालू है। नहीं, मुझे तो डर इस बात का लग रहा है, इसलिए जो मैंने शब्द का प्रयोग किया है ऑपरेशन राम मंदिर, ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनका बाद में सरकार किया जाएगा और वो कहीं पर राज्यपाल और कहीं पर वो मंत्री वगैरह बना दिए जाएंगे। तो जो भी चोर है उनको तो सजा होनी चाहिए।
0: महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन जैसी जागरूकता उद्धव फैला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वैसी जागरूकता फैलाने के लिए न तो कांग्रेस आगे आ रही न समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने कह दिया कि राम मंदिर दर्शन नहीं करने का तंज किसी ने किया तो वो चंदा मांग लेंगे।
2: जो भगवान या हमारे ऊपर ये कई बार सवाल करते हैं उनसे हम एक पर्ची छपा के रखेंगे कि भाई आपसे चंदा चाहिए हमें, और जब हमारा मंदिर का उद्घाटन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें आपको निमंत्रण भेजेंगे।
0: अखिलेश आंदोलन भले न करें, लेकिन अयोध्या से काशी तक अब चढ़ावा चोरी के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। अयोध्या का भांडा क्या फूटा, काशी में भी चढ़ावा चोरी का संदेह बढ़ गया। अयोध्या में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ नामजद मुकदमा करने की मांग करने वाले वकील समुदाय की तरह ही वाराणसी में भी वकीलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर बोर्ड ऑफ ट्रस्ट और चढ़ावे से जुड़े सवाल उठाए हैं। हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब 1 महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी और राम भक्तों को संयम बरतते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों से सतर्क रहने की अपील की,
3: तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
0: मतलब ये कि राम मंदिर के लिए आंदोलन करें साधु संत, सेहरा बांधे VHP, लाठी गोली खाए कार सेवक, वोट बटोरे BJP, फैसला करे अदालत, शेर लूटे सरकार, मंदिर बनाए राम भक्त, ट्रस्ट बैठाए सरकार, चोरी करें चोर, नाकाम रहे मैनेजमेंट और साजिश सब राष्ट्रद्रोहियों की। कुछ ऐसी ही दलील बागेश्वर धाम वाले महंत भी देते हैं।
4: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
0: भक्त श्रद्धालु तो सावधान हो जाएंगे, लेकिन चढ़ावा चोरी न जाए इसके लिए ट्रस्ट सावधान कब होगा ये कोई नहीं बताता। राम मंदिर के जमीन पर आंदोलन करने वाले विनय कटियार की नाराजगी इसी बात पर है।
5: क्या गोपाल राय करते हैं और साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है? इसकी क्या जरूरत थी? जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी? वहां से आकर के आ गए फ्लाइंग होकर के यहाँ वो जमीन खरीदेंगे? मंदिर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, वो चिंता नहीं है। ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं है। ये सब प्रचारक हैं, और प्रचारक ऐसा गड़बड़ करेगा तो कैसे मानेंगे? हम भी प्रचारक रहे हैं, हम भी पूरे देश के अंदर हर प्रांत में रहे हैं।
6: हाँ।
5: तो इसके माने वो वहां पर कोई इसी प्रकार की हरकत करेगा तो बर्दाश्त किया जा सकता है?
0: यही नाराजगी देश के आम लोगों में भी है, और सबको इंतजार इस बात का कि चोरी के दाग को धोकर ट्रस्ट की साफ सफाई की जाती है या लीपापोती की जताई जा रही आशंका सच होती है। आज तक ब्यूरो।
7: तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक महीने के बाद बयान जारी किया और वो कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो संयम बरते, धैर्य बरते, क्योंकि कोई और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिरकार ये फायदा दरअसल कौन उठा रहा है, और संयम और धैर्य की जरूरत आखिरकार किसको है, इसकी चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सुनील सिंह सज्जन समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में आएंगे, अनिल यादव कांग्रेस पार्टी से अपनी भूमिका रखेंगे, विनोद बंसल बीएचपी से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तीन सवाल मेरे पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कांड हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए राष्ट्र विरोधियों की साजिश है, क्योंकि दत्तात्रेय होसबले सर कार्यवाह संघ के वो ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरा सवाल, जांच में हो रहे खुलासे के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर कानून का शिकंजा क्या कस पाएगा या कब कसेगा? तीसरा सवाल, क्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बहाने विपक्ष चुनावी फायदा उठाने में सफल होगा, क्योंकि करीब करीब हर विपक्षी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाए हुए हैं, और शिवसेना यूबीटी खास करके उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो तो राम रक्षा आंदोलन करेंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। एक वक्त था कि उनके सरकार के खिलाफ हनुमान चालीसा का आंदोलन किया गया था, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि दत्तात्रेय होसबले राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के सर कार्यवाह, उन्होंने जो एक महीने के बाद जो प्रतिक्रिया दी है वो क्या प्रतिक्रिया दी है वो जरा एक बार देखिए।
3: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें।
7: विनोद बंसल जी, दत्तात्रेय होसबले कह रहे हैं कि साजिश से सावधान रहिएगा, ट्रस्ट बिठा रही है सरकार, चोरी कर रहे हैं चोर, जो भी ट्रस्ट ने अपॉइंट किए हुए हैं वही चोरी कर रहे हैं, वोट किसी और को मिल रहे हैं, एसआईटी की जांच चल रही है, गिरफ्तार कोई और हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद साजिश देश विरोधी लोग कर रहे हैं, या इंटरनेशनल कौन है, कौन यह साजिश कर रहा है?
8: देखिए साहिल जी, जो साजिश कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, पूरा देश जानता है कि कौन लोग हैं जो
7: कौन कर रहा है।
8: जब से ये घटनाक्रम सामने आया तब से लेकर के मैं आ रहा हूं ना, बता रहा हूं आपको। देखिए ये वो लोग हैं जो कहते हैं कभी कभी हजार कहते थे, कभी लाख कहते थे, कोई करोड़ कहते थे, कभी 20,000 करोड़ हो गया। आप देखो कल एक नेता ने कहा 20,000 करोड़ रुपए की है, क्या किसी के पास कुछ तथ्य है क्या? पहले किसी ने बोला था कि सोना चांदी आभूषण सब चोरी हो गया, वो काक भुसुंडी चोरी हो गई, मेरी पद वो अपना पादुका चोरी हो गई, मेरी ईंटें चोरी हो गई, सारे के सारे मिल गए ना जी। आखिरकार ये कौन लोग हैं? ये वो हिंदू द्रोही तत्व हैं जो भड़काने बरगलाने और हिंदू समाज की आस्था विश्वास के साथ षड्यंत्र करने और छल करने में लगे हुए हैं। एक और बात देखिए, अभी कुछ लोग इस घटना के आड़ में कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिरों से दान पेटी हटा दो जी, मंदिरों को सबको सिर्फ ऑनलाइन कर दो जी, कुछ लोग कह रहे हैं मंदिरों की जरूरत ही नहीं है जी,
7: कौन कह रहे
8: हैं मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण में कर लो जी, ये इस तरह की प्रपंच रचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा है, आप देखे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के बहादुर हैं, कुछ लोगों ने मीडिया पर भी जाकर के बोला है कि इस तरह से कर दो जी, अब मंदिरों को सरकारी
7: अधिग्रहण में, जो राम मंदिर ट्रस्ट है
8: होना चाहिए जी, ये सब
7: बंसल जी, ये राम मंदिर ट्रस्ट जो है ना वो सरकार ने अपॉइंट किया हुआ ट्रस्ट है, सरकारी एक तरीके से इस पूरे ट्रस्ट को चलाता है, क्योंकि उसमें 15 में से 12 जो सदस्य है वो तो सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, 3 सदस्य जो इसके जो पदेन सदस्य है वो तो सरकारी अधिकारी है, ये भी तो सरकारी ट्रस्ट है, आप जो कह रहे हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। कोई भी बड़ा मंदिर उठा के देख लीजिएगा, सिद्धि विनायक ट्रस्ट से लेकर शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट को लेकर सारे लोग जो अपॉइंट किए जाते हैं सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सरकार के कानून द्वारा ये ट्रस्ट चलाए जाते हैं।
8: देखिए दोनों चीजें मंत्र है साहिल जी, आप सिद्धि विनायक ट्रस्ट की बात कर रहे हैं या सबरीमाला की बात कर रहे हैं या टीटीडी की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड ट्रस्ट हैं, वो सारा सारा फंडिंग गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट जो है ना उसको मैनेज करती है आस्था और विश्वास के साथ। वो कितना छल हो रहा है वहां पर, कितनी बार वहां पर एमेजमेंट मिला है और लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले वहां पर हुए हैं, 5 लाख मंदिर सरकारों के कब्जे में। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, आपने कहा कि 3-4 सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन उन सारे सरकारी अधिकारियों को किसी को वोटिंग राइट नहीं है, कोई भी उनके निर्णय में कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये मंदिर स्वायत्तशासी मंदिर है, ये राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, ये जो तीर्थक्षेत्र न्यास बनाया गया था, ये न्यास अपने आप में भारत में एक अनूठा है। आप देखिए कि इसके अंदर जो है ना जी, वो सरकारी अधिकारी भले ही हैं लेकिन उस ट्रस्ट की सहायता के लिए हैं, कोई मंदिर पर कब्जा करने के लिए नहीं है, वो पैसे का अम्बेजलमेंट नहीं कर सकते। आप देखिए कि ये जो चीजें हुई हैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे, जो लोग हाथ से करके और हिंदू समाज की आस्था
7: और ट्रस्ट अनूठा है, लेकिन ये चोरी भी तो अनूठी हुई है, अनूठे ट्रस्ट का क्या करे? जब अगर चोरी वहां पर हो रही है तो आप ट्रस्ट भला ही अनूठा बना ले, नहीं अनूठा ट्रस्ट बनाने से क्या होगा? ये कौन सी बात हो गई? ट्रस्ट आपने अनूठा बना लिया लेकिन चोरी भी तो वहां हो रही है।
8: देखिए,
7: और सिर्फ दान पत्र की चोरी, देखिए हुसबले क्या कह रहे हैं कि दान पत्र से कुछ पैसे चोरी हो गए, कुछ पैसे भगवान के चरणों में जो दान चढ़ाया जाता है वो चोरी होता है, तो दान पत्र से कुछ पैसे की चोरी, ऐसा आप कह सकते हैं?
8: नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि सारा कुछ चोरी हो गया? ऐसा नहीं है ना साहिल जी, देखिए कुछ ही तो हुए हैं, जो जितने भी आया था उसमें से कुछ चोरी हुआ है, ये तो नहीं कह सकते सारा चोरी हो गया या सारा कुछ अधिकांश चोरी हो गया या कम चोरी हुआ है। भाई मैं कहता हूं चोरी हुआ है, प्रश्न ये है कि चोरी हुआ है, और चोरी हुआ है उसकी एसआईटी जांच कर रही है, हम सब लोग बजाय टीवी चैनल पर बयानबाजी करके, बयान बहादुर बनके और लोगों की वास्तव विश्वास के साथ छल बल पूर्वक जो है ना आक्रमण करके, हम उसको एग्जेजरेट करने
7: तो बयान नहीं देना चाहिए।
8: जो तथ्य है हमारे पास, जो सत्य है, जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, वो उनको एसआईटी को देना चाहिए, एसआईटी को दें, जिससे एसआईटी
7: चोरी करने वालों पर
8: कर सके ना जी।
7: चोरी करने वाले राष्ट्र विरोधी नहीं है,
8: मेरे पास है, मैं भी दूंगा।
7: नहीं, चोरी करने, विनोद बंसल जी, चोरी करने वाले राष्ट्र विरोधी नहीं है,
8: बात कट रही है थोड़ा सा,
7: चोरी करने वाले राष्ट्र विरोधी ताकते नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है,
8: बिल्कुल
7: तो सवाल उठाते हैं वो एंटी नेशनल हो जाएंगे।
8: कौन मना कर रहा है, किसने मना किया है? मैं कहता हूँ बिल्कुल चोरी कर चोरी
7: सवाल उठाने वाले एंटी नेशनल हो जाएंगे,
8: चोरी करने वाले भी
7: वो फायदा उठाने वाले हो जाएंगे।
8: नहीं, सवाल उठाने वाले नहीं, ना सवाल उठाने वाले नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा जो सवाल के माध्यम से और उटपटांग बयानबाजी करके लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो मेरी आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
7: भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो चोरी के वजह से हुई है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो चोरी के वजह से हुई है।
8: नहीं नहीं, दोनों बात है।
7: जो बड़े भक्ति भाव से वहां जाकर दान पत्र में पैसे डाल रहे थे,
8: चोरों को
7: सोना चांदी वहां पर अर्पित कर रहे थे, उनके भावनाओं से, उनकी भावनाएं टूटी है उसमें, भावनाओं से खिलवाड़ तो उनके साथ हुई है, चोरी के वजह से हुई है, ट्रस्ट के मिसमैनेजमेंट के वजह से हुई है, रोज इसकी परतें खुल रही है।
8: साहिल जी, उसकी
7: विनय कटियार कह रहे हैं कि इसके अलावा उनकी गिरफ्तारियां हो जाएगी
8: पार्टियां, और जो बार बार जो बयानबाजी करके झूठे बयानबाजी कर रहे हैं, जो झूठी बयानबाजी कर रहे हैं और झूठी बयानबाजी करके भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बजाय प्रूफ और सत्य जो है ना,
7: तो विनय कटियार भी उसमें शामिल है ना, विनोद बंसल जी, विनय कटियार भी उसमें शामिल है,
8: जो
7: विनय कटियार भी उसमें शामिल है जो राम जन्मभूमि के आंदोलन में थे, विनय कटियार भी उसमें शामिल है। फिर
8: भाई साहब, कोई भी हो,
7: आप बोलिए ना, विनय कटियार भी उसमें शामिल है,
8: आप भी हो सकते हैं, अगर
7: सबसे बड़ा सवाल तो वही उठा रहे हैं
8: सारे एक साथ में, सारे के सारे लोग।
7: ठीक है अनिल यादव जी,
8: भाई साहब मैं कहता हूँ सवाल,
7: अनिल यादव जी सुनिए, आपने बयान, राष्ट्र विरोधी पार्टियां
8: का अधिकार सबको है,
7: आप लोग सवाल उठा रहे हैं तो राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं,
8: बदनामी नहीं।
7: अनिल यादव
6: जी,
8: सवाल उठाइए, लेकिन सही सवाल उठाइए ना,
6: की शुरुआत करिए, झूठ मत बोलिए, जब डिबेट की,
7: अच्छा सवाल भी सही उठाना चाहिए, सवाल को भी जांचा जाएगा कि यह सही है कि गलत है, उसके आधार पर चलेगा। अनिल यादव जी,
8: निश्चित रूप से आप बताइए, मैं आप ये कह रहे हैं 20,000 करोड़
6: रुपए ईडी भेज देंगे, रेड करवा देंगे आपके घर पे,
7: यादव जी बात कर रहे हैं
6: भाई,
7: और आप विरोध बंसल जी एक पे
6: ऐसे नहीं,
7: अनिल यादव जी बात कर रहे
6: हैं, क्या तरीका,
8: देखिए जो सोने चांदी की बात,
6: ये क्या तरीका है भाई साहब, एक तो चोरी करेंगे फिर सीना चोरी करेंगे, चोरी करेंगे फिर सीना चोरी करेंगे, पहले
7: अभी अनिल यादव जी बात कर
6: रहे हैं, राम का माल लूट लिया, अब मेरा समय लूट रहे हैं, पहले राम मंदिर में राम का चंदा लूट लिया, अब मेरा समय लूट रहे हैं,
8: के पैरों का रहे
6: हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहिल भाई, मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए विनोद जी, साहिल जी
8: चोरों के बारे में बोलिए,
6: कहा कि भाई
8: मेरे बारे में कैसे चंदा लूट लिया,
6: बता के
8: मेरे बारे में कैसे चंदा लूट लिया,
6: इन्होंने सारी बातें जो है इधर उधर की करी है, काफिला क्यों लूटा इस पे तो एक भी बात करी नहीं, और दूसरी बात जो है साहिल जी, ये क्या तरीका है, ऐसे कोई बात होगी, आपके व्यूअर्स समझ ही नहीं पाएंगे, इन्होंने एक घंटे का पूरा ज्ञान बांट दिया, अच्छा लग रहा है कि राम भक्तों को कितना बुरा लग रहा होगा, ये वीएचपी के लोग ये चाहते ही नहीं है कि पता चले कि राम भक्तों के बारे में क्या बात हो रही है,
8: वीएचपी को हाँ
6: माफी मांगेंगे आपसे, लूटेंगे आप और माफी हम मांगेंगे, लूटेंगे आप और माफी हम मांगेंगे ना साहिल जी, ये गलत बात है, इनका माइक डाउन करिए, नहीं तो ऐसे डिबेट नहीं होगी, सबको सब लोग सबके
7: बीच में
6: क्या तरीका होगा,
7: उन्हें लग रहा है कि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, एक मिनट अनिल यादव जी एक मिनट, अरे विनोद बंसल जी एक मिनट, जरा दोनों को शांत करिएगा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, विनोद बंसल जी पर ऐसा उन्हें लग रहा है, अनिल यादव जी बात करिए, ठीक है,
6: अरे मैं व्यक्तिगत क्यों लगाऊंगा, ये वीएचपी की तरफ से बैठे हैं तो वीएचपी के लिए या भाजपा के लिए संघ के लिए किसी और को थोड़ी ढूंढूंगा, साहिल जोशी को धमकाएंगे तो इनसे पूछा जाएगा ना, अच्छा मैं ये ऐसे नहीं चलेगा साहिल जी, देखिए आपकी अच्छी डिबेट होती है, सब लोग बड़े
7: बंसल जी बीच में नहीं, प्लीज जरा विरोध बंसल जी को शांत करिए,
6: ये क्या तरीका है साहिल जी, आप जानबूझ के करा रहे हैं,
7: प्लीज
6: साहिल जी, या तो आप जानबूझ के करा रहे हैं, मैं आपको बता दूं आपकी डिबेट बहुत लोग बड़े आराम से देखते हैं, हाँ
7: अरे अभी आप मुझ पर भी आरोप लगा रहे हैं,
6: अभी
7: वो बीच में बोल रहे हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सुन नहीं रहे तो उनको बताना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, अनिल यादव जी चलिए आपकी बात खत्म करिए, चलिए विनोद बंसल प्लीज, अनिल यादव
6: जी जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि संघ के इतने बड़े नेता ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, क्या बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या इन स्टेटमेंट से राम भक्तों की जो आस्था लूटी है, आप राम मंदिर का जो चंदा लूटा है उसे तो भूल ही जाइए, जो आस्था लूटी है, जो विश्वास लूटी है, क्या वो वापस आ जाएगा, ये डायलॉगबाजी नहीं चाहिए कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, किसी को कालनेमी कह दो, किसी को एंटी नेशनल कर दो, बात इस बात पे हो रही है कि ये चंदा लूटा कैसे गया और लूटने के बाद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आप एसआईटी की बात करते हैं साहिल भाई, आप बताइए ना कि ये एसआईटी क्या कर रही है, आज जून में बनी थी, जुलाई हो गई है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतना बता दे क्या किसने चोरी करी है, बाद की बात है, इतना बता दे कि चोरी कितने पैसे की हुई है, इतना तो हासिल कर लिया होगा ना एसआईटी ने अब तक, इस बात का तक जवाब नहीं है, सबको पता है कि 2021 में जो लेखाधिकारी वहां पर था उसने चंपत राय से शिकायत करी कि मंदिर में चोरी हो रही है, उसके बाद चंपत राय ने उस अधिकारी को ही निकाल दिया, तो कैसे नहीं कहा जाएगा चंपत राय की मिलीभगत थी, उसके बाद एसआईटी उनका नाम एफआईआर तक में नहीं डाल रही है, हम कुछ बोले तो ये हम पे आरोप लगा दे रहे हैं, एक मैं आपको बताऊं ये राजनीति का विषय नहीं है, एक एक राम भक्त जो है ना वो वाकई में इन पे भरोसा कर रहा था कि वाकई में ये राम के प्रति कुछ कर रहे हैं, और गाने भी बना लिए थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको, लेकिन भाजपा ने उन गानों में एक दो लाइन और जोड़ दी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन भाजपा ने कहा कि हम चंदे हम मंदिर में
7: लेकिन सवाल तो आप पर ये उठा रहे हैं ना अनिल यादव जी,
6: लाएंगे और
7: राम मंदिर को लेकर
6: चंपत राय को बचाएंगे और प्यादों को,
7: अनिल यादव जी एक मिनट
6: जी जी
7: एक मिनट अनिल यादव जी, सवाल ये भी उठा रहे ना कि आपको अचानक राम भक्ति आपकी जागी है, वही आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगाया जाता है, अचानक आपकी राम भक्ति जाग गई है, इतने दिन तो आप राम भक्त थे नहीं, अचानक आप राम भक्त होकर सवाल पूछने लग गए, इसी बात को लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है,
6: इसमें साहिल भाई इसमें सवाल राम भक्ति का है ही नहीं, इसमें सवाल है इस बात का कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था हर्ट हुई है, हमें इस देश की जनता ने अपोजिशन में बिठा रखा है, कल को जब हम इनकी चोरियां खोलेंगे इनको जेल में डालेंगे तो आप तब हमसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आप अपोजिशन में थे आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया, हम क्या जवाब देंगे और राम भक्तों को क्या जवाब देंगे हम, वो हमसे कहेंगे ना कि आपकी भी तो जिम्मेदारी थी आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया, तो हम अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति देश के प्रति और प्रभु राम के प्रति पूरी निभा रहे हैं, हम इनको पूरी तरीके से खुला एक्सपोज कर रहे हैं, हमें इस बात से आश्चर्य नहीं हो रहा कि लूट हो रही हुई इन्होंने, लूट तो ये 90 से कर रहे हैं, वीएचपी पर खुद आरोप लगा नहीं था क्या भाई, निर्मोही अखाड़ा जो कि पार्टी था राम मंदिर बनाने में उसने कहा कि ये चंदे का पैसा खाते हैं, 1200 करोड़ का आरोप लगा था, आज तक ये तो हमें पता है ये लूट के लाते हैं, लेकिन इतनी बेशर्मी कि उसके बाद
7: जब मंदिर बनाया गया
6: जो सवाल उठाएगा
7: आंदोलन किया उसका श्रेय अगर संगठन लेता है तो चोरी होने के बाद उसका उस पर भी सवाल उठेंगे तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। यह नहीं कह सकते कि हम पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अजय आलोक जी, एसआईटी ने तो अब तक यह नहीं कहा है कि सिर्फ दान पत्र में चोरी हुई है। एसआईटी कह रही है कि बड़ी साजिश हो सकती है, ट्रस्ट की जांच भी चल रही है, ट्रस्ट के लोगों को भी जांच चल रही है। विनय कटियार रोज आकर यहां पर कह रहे हैं कि चंपत राय से लेकर तीन और ट्रस्टी गिरफ्तार हो सकते हैं। रोज आकर वो यहां पर बयान दे रहे और आज वो राष्ट्र विरोधी बन जाएंगे।
9: साहिल जी, सबसे पहली बात, जब एसआईटी की जांच चल रही है तो आप या मैं या कोई भी अन्य व्यक्ति कौन होता है इन्फ्रेंस निकालने वाला, इतने पैसे की चोरी हुई, इतने की नहीं हुई, दान पत्रों से हुई या वीआईपी पास बनवा के हुई या क्यूआर कोड स्कैन करके हुई, कौन होता है ये कहने वाला जब एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों करते
7: बैठ जाना चाहिए?
9: ये आपको राजनीतिकरण नहीं दिख रहा है?
7: शांत बैठ जाना चाहिए।
9: नहीं, शांत बैठना चाहिए। एसआईटी जांच कर रही है, उसको जांच करने देना चाहिए। एसआईटी की जांच में जबरदस्ती अपनी चोंच नहीं फंसानी चाहिए। एसआईटी को जांच करने दीजिए, देश के संस्थाओं पे विश्वास होना चाहिए।
8: ग्रुप सबमिट करना,
9: नहीं विश्वास है तो शांत बैठिए, एसआईटी को अपना काम करने दीजिए। अब आपको मैं दो तीन बात बताता हूं, सुनिए। अभी इन्होंने कहा कि संघ के नेता, बड़े नेता ने बयान दिया। जो आदमी संघ को नहीं समझता हो भाई, तो संघ में नेता कोई नहीं होता है, संघ में सब स्वयंसेवक होते हैं। दत्तात्रेय हंस बोले कोई नेता नहीं है जो संघ के नेता उनको कहते हो। और आप कहते हो कि आस्था हट हुई राम भक्तों की, एक मंदिर की चोरी होगी चढ़ावा की तरह राम भक्तों में आस्था घट जाएगी, राम भक्तों की प्रभु श्री राम में आस्था नहीं हट हुई है, गुस्सा चढ़ा है राम भक्तों को कि प्रभु के मंदिर में चोरी हुई है।
6: प्रभु श्री राम,
9: आप लोगों ने आपको आग दी है। साबरीमाला में चोरी हुई थी तब तो कोई कांग्रेसी नहीं बोल रहा था। साबरीमाला में जब 19 किलो सोना चोरी करके ले गया, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज में अध्यक्षता की कमेटी बनी, आज तक न्यायिक जांच चल रही है, उस पर तो कभी हंगामा नहीं किया। तिरुपति में जब मिलावटी डालडा में लड्डू और प्रसाद बना के दिया जा रहा था और ट्रस्ट में मुसलमान को रखे हुए थे, तब तो कांग्रेस पार्टी नहीं आई, समाजवादी पार्टी नहीं आई। अयोध्या में अचानक राम भक्त बन गए, जिन्होंने जीवन भर राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने कसम खाई थी कि कभी राम नहीं बनने देंगे, मंदिर नहीं बनने देंगे। कपिल सिब्बल बयान देते हैं जो 2019 में कोर्ट में जाके खड़े हुए कहते हैं, हुजूर राम मंदिर पर फैसला मत कीजिए, चुनाव प्रभावित हो जाएगा,
6: कुछ भी बोल रहे हैं।
9: उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे दादर में जाके। यही हनुमान चालीसा पढ़ने के चक्कर में ना हमारी सांसद को जेल भिजवा दिया था, भूल गए? आज हनुमान चालीसा पढ़ने की याद आ रही है। ये शुद्ध राजनीतिकरण है राम मंदिर का और कुछ नहीं है, शुद्ध विशुद्ध राजनीतिकरण। आज मैं पूछता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, कांग्रेस बैठे हुए, बहुत राम भक्त हैं, चलिए बहुत अच्छा, राम मंदिर तो बन गया, प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर बनना है, श्री कृष्ण मिशन पे चलिए, आइए कमान संभालिए। हिम्मत है कहने की कि प्रभु श्री कृष्ण मिशन में हम लोग चलेंगे, कमान संभालेंगे, कृष्ण मंदिर भी बन के रहेगा? बोलो, बहुत भक्ति जागती है तो नौटंकी करने का ठेका ले रखा है।
6: जवाब देने का मैं
9: और कुछ नहीं
7: बता दीजिएगा, क्योंकि सवाल समाजवादी पार्टी पर उठाया हुआ है, लेकिन अजय आलोक जी आप ही जवाब दे दीजिएगा। आपने दो मुद्दे उठाए, पहला मुद्दा आपने उठाया कि सबरीमला में चोरी हुई, किसी ने सवाल नहीं उठाया। तिरुमला तिरुपति में जो लड्डू में जो रिपोर्ट आई थी उसपे जो इंग्रेडिएंट्स थे उसको लेकर किसी ने सवाल नहीं उठाया, आपने ये दो मुद्दे उठाए, लेकिन राम मंदिर को लेकर सवाल उठ रहा है। ये सवाल भी उठेगा ना कि राम मंदिर को लेकर
9: बाकी किसी ने नहीं उठाया,
7: पॉलिटिकल
9: सुन लीजिए।
7: अरे अजय आलोक जी सुन, अरे सुन लीजिए ना, सवाल तो सुन लीजिएगा। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक आंदोलन हुआ था, वैसा आंदोलन तो सबरीमला को लेकर नहीं हुआ था या तिरुपति को लेकर नहीं हुआ था। सवाल तो यही बोलेंगे ना कि तब तो राजनीतिक पार्टी उसमें थी, उसका श्रेय ले रही थी, तो आज अगर चोरी हो रही है तो सवाल तो उसी पर उठेंगे ना, ये तो सवाल पूछा ही जाएगा।
9: बिल्कुल उठेंगे, तो सवाल सवाल से भाग कौन रहा है? मैंने पहले दिन कहा दो चीज विशुद्ध मामला है, ये एक चोरी चोरी की है,
6: साहिल भाई ये सवाल एक मिनट का नहीं है, जिसने चोरी की है
9: एक चोर होता है, दूसरा ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी और ये क्रिमिनल नेग्लेक्ट है जिम्मेदारियों का। अरे क्यों बीच में बोल रहे, अभी तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे, बीच में बोलिए, बीच में
7: अनिल यादव जी सुन लीजिए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा,
9: सवाल पूछा
7: अनिल यादव जी, मौका मिलेगा आपको, मौका मिलेगा, पहले पहले अजय आलोक जी को बोलने दीजिए। जी अजय आलोक जी,
9: ठीक है। हम भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के डिबेट में तब आई जब से एसआईटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया, उसके पहले हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरे मंच से कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, किसी को नहीं बख्शेंगे, और तब से हम लोग वाके यहां बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, पहले दिन मैंने कहा है कि दो चीज क्लियरली एविडेंट है, चोरी हो रही है, जो चोर है वो जेल गए और उनसे पूछताछ हो रही है। दूसरी बात क्या है कि ट्रस्ट के पदाधिकारी जो देख रहे थे उनकी तरफ से क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी जिम्मेदारी आपने ठीक से नहीं निभाई। नैतिकता का परिचय देते हुए स्वेच्छा से दोनों ने त्याग पत्र दे दिया, जिसको अभी हमारे कोषाध्यक्ष जी ट्रस्ट की बैठक में उनका त्याग पत्र रखा जाएगा।
7: अनिल यादव जी जवाब दीजिएगा,
9: अब
7: सवाल उठा
9: है, पर चल रही है
7: सिलेक्टिव राम मंदिर पर ही सवाल
9: उठा, जबरदस्ती चोंच घुसा रहे,
7: बाकी किसी पर नहीं।
6: देखिए मेरा तो सीधा इनसे सवाल है कि क्योंकि अब आलोक भाई को मैंने सुना है, मुझे उम्मीद है कि ये भी सुनेंगे, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि चोर को आप कह रहे हैं, चोरों के सरगना को कब लेके जाएंगे, तब थाने में उससे कब पूछताछ होगी, एफआईआर में क्यों चंपत राय का नाम नहीं है भाई? आप ये कह रहे हैं कि भाजपा का क्या लेना देना है? अरे 21 में जो जमीन का सौदा हुआ था, जो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को खरीदवाई थी और 16.5 करोड़ का घाटा मंदिर को पहुंचाया था, उसमें जो गवाह था वो बीजेपी का मेयर था। आपने जो ये ट्रस्ट बना रखा है, आपसे सवाल इसलिए पूछा जाता है कि इस ट्रस्ट के जो सदस्य नियुक्त हुए हैं ये पीएमओ ने किए हैं और खुद प्राइम मिनिस्टर इस पे चुनावी फायदा लेने के लिए वहां पर वाहवाही लूट के लिए आए थे, तो आज सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, इस कमेटी में अपर मुख्य सचिव गृह भी सदस्य के रूप में मौजूद थे, जिला अधिकारी भी उसमें मौजूद थे, तो आखिर आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? और बात यह है कि देखिए समस्या ये नहीं है, आप लोगों ने इसको भरपूर कोशिश करी है इस मुद्दे को दबाने की। विपक्ष ने जब सवाल उठाया तो आपने पहले यह कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो राम भक्तों की इतनी आस्था थी। और आप देखिए इन पे विश्वास आज अयोध्या का नहीं है, वकील
9: साहिल जी 10 सेकंड
6: दीजिए, सड़क पे कि एफआईआर लिखी जाए, वकील आ गए हैं सड़क पर पे कि चंपत राय के खिलाफ एफआईआर लिखी जाए, और क्या सबूत चाहिए? ये बचा रहे हैं उसको।
7: आजालो जी आप उसका जवाब देंगे, लेकिन सुनील सज्जन भी उसमें कुछ ऐड करें, दोनों का साथ में जवाब दे दीजिएगा। सुनील सिंह सज्जन
2: जी। जी साहिल भाई, देखिए साहिल जी, मुझे लगता है कि

0: भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम की आस्था, अगर इतना ही तकलीफ होती तो आप मंदिर को लूटने देते? और आज भी जो लोग चुप हैं साहिल भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग चुप हैं आज, वो सब सहभागी
1: वो तो
0: हैं,
1: कह रहे हैं ना,
0: सब
1: एसआईटी की जांच
0: बंटवारे के
1: चल रही है,
0: हिस्सेदार हैं।
1: आरएसएस के
0: अच्छा
1: सर
0: एक ठीक है,
1: कार्यवाहक कह रहे
0: बार
1: हैं कि
0: बार
1: ट्रस्ट के
0: देखे
1: कहने पर ही एफआईआर दर्ज हुआ है और उसी के आधार पर एसआईटी की जांच चल रही है,
0: अच्छा
1: उसी
0: साहिल
1: के
0: भाई,
1: आधार पर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो क्यों चोंच अड़ा रहे जो अजय आलोक जी कह रहे थे, राजनीतिक रोटियां
0: अच्छा
1: सेकने के
0: अच्छा
1: लिए,
0: साहिल
1: यही आरोप
0: भाई
1: है उनका।
0: सुन
1: और राम
0: लीजिए,
1: भक्त कहां से हो गए,
0: देखिए
1: समाजवादी पार्टी के लोग,
0: देखिए
1: ये भी एक आरोप
0: पहले
1: है।
0: अब सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, मैंने कहा ना हम किसके भक्त हैं, इसका सर्टिफिकेट हमको इन चोरों लुटेरों से नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हम आपके कार्यक्रम में स्पष्ट कह दें, हम समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी का आंदोलन सामाजिक न्याय का आंदोलन है और आज भी हम लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। समाज में आर्थिक बराबरी, राजनीतिक
1: ठीक है,
0: बराबरी, सामाजिक बराबरी,
1: अब
0: धार्मिक
1: उसके साथ
0: बराबरी
1: में
0: के लिए लड़
1: रामरक्षा
0: रहे हैं।
1: आंदोलन भी शुरू
0: और
1: होने
0: जो
1: वाला है,
0: एसआईटी की बात आप
1: अब उसके साथ हनुमान चालीसा का
0: सुन
1: आंदोलन भी
0: लीजिए
1: शुरू होने
0: जो
1: वाला है।
0: आप
1: अजय आलोक जी जवाब
0: अब
1: दीजिए
0: साहिल
1: जल्दी
0: भाई
1: से, उसके
0: सुन
1: बाद
0: लीजिए
1: आनंद
0: हमारी
1: दुबे जी के
0: बात,
1: पास जाना है
0: जो
1: हमें।
0: जो जो
1: एक
0: अरे
1: एक
0: भाई हमारी
1: मिनट,
0: बात
1: पहले
0: सुन लीजिए तब तो जवाब मैं
1: बात
0: दूं
1: आपकी
0: क्या?
1: खत्म करिए,
0: दो अरे
1: बात
0: भाई
1: खत्म करिए,
0: जवाब,
1: आपकी बात
0: हमारा
1: खत्म
0: सवाल तो
1: करिए।
0: सुनिए, तीन हमारी अरे
1: जी
0: भाई
1: जी
0: हमारा पहले सवाल तो सुन लीजिए। आप एसआईटी एसआईटी कर रहे हैं, बीजेपी भी कह रही, विश्व हिंदू परिषद भी कह रही, अब आज से आरएसएस भी कहने लगी कि एसआईटी बन गई, बहुत तीर मार दिया है। योगी जी की सरकार में अब तक 90 एसआईटी बनी है, किसकी रिपोर्ट आई है? जमीन घोटाला इसी चंपत ने किया था, एसआईटी बनी थी, आई रिपोर्ट? नहीं आई। ये केवल चंपत राय को, अनिल मिश्रा
1: नहीं तो
0: को,
1: यह
0: गोपाल
1: रामरक्षा
0: राव
1: आंदोलन
0: को,
1: में,
0: आरएसएस,
1: रामरक्षा
0: बीजेपी,
1: आंदोलन
0: विश्व
1: जो
0: हिंदू
1: उद्धव ठाकरे
0: परिषद
1: शुरू कर
0: को,
1: रहे हैं,
0: विश्व
1: उस पे
0: हिंदू
1: समाजवादी
0: परिषद
1: पार्टी
0: के
1: जाएगी
0: लोगों
1: कि नहीं
0: को
1: जाएगी?
0: बचाने का है।
1: सुनील सिंह जी, जो
0: देखिए हम फिर कह
1: रामरक्षा
0: रहे हैं
1: आंदोलन
0: आपके
1: शुरू होगा
0: कार्यक्रम में
1: उद्धव
0: बड़ी
1: ठाकरे का, उस पे
0: जिम्मेदारी
1: आप
0: के साथ
1: जाएंगे कि
0: कह
1: नहीं
0: रहे हैं।
1: जाएंगे?
0: सुन लीजिए, अरे
1: हाँ
0: हमारी बात सुन लीजिए, हम समाजवादी लोग कभी भी धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये लुटेरे लोग ये चाहें कि ये
1: आनंद
0: भगवान
1: दुबे,
0: राम का मंदिर भी लूट लेंगे और हम आवाज भी ना उठाएं, तो ये नहीं होने देंगे।
1: अरे
0: और
1: मैंने
0: आज
1: क्या किया है
0: अयोध्या
1: आपको
0: का
1: पूछा,
0: जनमानस,
1: आप वो उद्धव ठाकरे के आंदोलन में
0: अयोध्या
1: शामिल
0: का
1: होंगे कि नहीं होंगे?
0: जनमानस
1: अबू असीम आजमी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं
0: क्यों
1: आपके,
0: होंगे?
1: और उन्होंने कहा है कि जो भी राम भक्त है वो आ जाइए उस
0: हम
1: आंदोलन
0: दूसरी
1: में,
0: बात,
1: राम रक्षा आंदोलन करना चाहते हैं।
0: हम ये कह रहे हैं कि हम कभी भी धर्म और भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, हम सामाजिक न्याय की
1: ठीक है,
0: लड़ाई लड़
1: चलिए
0: रहे हैं, और वही
1: आनंद
0: लड़ाई जो
1: दुबे, सुन लिया
0: भगवान
1: आपने,
0: राम
1: समाजवादी
0: ने
1: पार्टी नहीं
0: रास्ता
1: आएगी आपके
0: दिखाया
1: आंदोलन
0: था,
1: में, आपका
0: जो
1: आंदोलन
0: भगवान
1: अलग
0: राम
1: है,
0: ने
1: खुलिए
0: रास्ता दिखाया था।
1: राम रक्षा आंदोलन,
0: जी
1: ठीक है आनंद
0: साहिल
1: दुबे
0: जी,
1: जी,
0: 10 सेकेंड। जी साहिल
1: साहिल जी
0: भाई,
1: मुझे जवाब देने दीजिए,
0: साहिल भाई
1: भगवान के नाम पर
0: नमस्ते, सभी
1: राजनीति,
0: को सादर प्रणाम।
1: भगवान के नाम पर
0: साहिल
1: राजनीति
0: भाई
1: आनंद दुबे।
0: सबसे पहले तो, सबसे पहले तो साहिल भाई सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय उठाया। जब भी आप चोरी करने वालों को चोर कहेंगे, वो चिल्लाएंगे, वो रोएंगे, गाएंगे, विलाप करेंगे, लेकिन आपको और हमको घबराना नहीं है। इसके बाद वो हमको धमकाएंगे, डराएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें राम भगवान की रक्षा के लिए, जो हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि राम रक्षा जो महाआरती हम हनुमान जी की करेंगे 5 तारीख से, उसमें देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग भी सहभागी होइए, अपने अपने जिले में, अपने अपने तालुका में आरती करिए। देखिए
1: अरे
0: साहिल
1: क्या
0: भाई
1: बोल रहे
0: विषय
1: हैं,
0: क्या
1: भगवान
0: है,
1: प्रभु श्री
0: एक
1: राम की
0: छोटी सी
1: रक्षा आप
0: कविता
1: कीजिएगा,
0: करके
1: क्या
0: शुरू करूंगा। दान पात्र
1: बोल
0: में,
1: रहे हैं
0: दान पात्र में लूट है, ये
1: दुबे जी,
0: कैसी
1: क्या बोल रहे हैं
0: मजबूरी?
1: प्रभु
0: शांत
1: श्री
0: हो जाइए
1: राम
0: पहले, शांत हो
1: की
0: जाइए,
1: रक्षा
0: काल
1: करेंगे,
0: नेमी
1: इतनी
0: से बात नहीं
1: औकात
0: कर रहा
1: हुई
0: हूं,
1: शिवसेना
0: काल
1: की?
0: नेमी से बात नहीं कर रहा हूं, काल
1: नहीं,
0: नेमी से बात
1: शिवसेना
0: नहीं
1: की
0: कर रहा
1: इतनी
0: हूं,
1: औकात हुई
0: शांत
1: कि आप प्रभु
0: शांत।
1: श्री राम की रक्षा
0: दान
1: करेंगे?
0: पात्र में लूट है,
1: पागल हो गए
0: ये
1: हो क्या आप
0: कैसी
1: लोग?
0: मजबूरी? मंदिर के
1: पागल
0: ही
1: हो गए हैं
0: चंदे
1: क्या?
0: में हो गई कैसे
1: साइकेट्रिस्ट के पास
0: चोरी?
1: जाइए, प्रभु
0: जो
1: श्री राम की
0: कहते थे
1: रक्षा करने
0: हम
1: चल रहे हैं ये
0: राम के
1: लोग,
0: हैं वही
1: हताहाल है
0: दाम
1: भैया,
0: चुराते हैं,
1: ये धर्म
0: भक्तों के
1: भूल गए
0: इस
1: हैं,
0: आस्था का रोज मजाक
1: प्रभु श्री
0: उड़ाते
1: राम की रक्षा
0: हैं,
1: करेंगे
0: जिनके
1: ये।
0: दिल में राम नहीं वो राम का नाम सुनाते हैं, चंदे की
1: अरे
0: आड़ में
1: पावघर के
0: अक्सर
1: साधुओं पे
0: अपनी
1: गोली
0: जेब भर
1: चलवाने
0: जाते
1: वाले
0: हैं, मर्यादा
1: नास्तिक
0: पुरुषोत्तम
1: आदमी
0: की
1: प्रभु
0: छवि
1: श्री राम की
0: को
1: रक्षा
0: जो
1: करेंगे आप
0: धूमिल
1: लोग
0: कर रहे
1: हैं?
0: राम के इन चोरों को कौन यहां पर रोक रहे? सियासत के मंचों से जो राम काज की बात बात करते हैं वही प्रभु के दरबार में।

0: चुराने की शुरुआत करते हैं मंदिर की चौखट पर जो अपनी राजनीति चलाते हैं, चंदा चोरी के बहानों से वो राम भगवान का नाम डुबाते हैं। हमने जैसे ही राम रक्षा की बात की काल नेमी तड़पने लगे बिल बिलाने लगे, विचलित हो गए,
1: भयभीत हो गए, नहीं कर पा रहे, सांसद भाग रहे, राम की रक्षा कहां से करेंगे ये सवाल उठा रहे विधायकों और लोकसभा सांसदों की रक्षा नहीं कर पा रहे, राम की रक्षा कहां से करेंगे ये भी तो सवाल पूछ रहे हैं।
0: हनुमान जी के बल से, राम भगवान की शक्ति से, हनुमान जी के बल से, उनके तप से और उनकी प्रेरणा से इन काल नेमियों को गदा से मार मार के इनकी कमर को तोड़ देंगे, इन चोरों का भांडा फोड़ देंगे, इनको कहीं रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये या तो अयोध्या छोड़ के भागेंगे और या तो
2: अरे यार ये आनंद दुबे जी
0: आप करेंगे
2: आप हमारी ठीक है। अरे सुनिए
0: नहीं है
1: कविता आनंद दुबे जी
0: अजय आलोक
1: शेर काफी थे
0: ऑपरेशन लोटस
1: तू इधर उधर की बारे
0: का
1: पहले ये पता काफी था क्यों लुटा इतना काफी था
0: आप
1: अजय आलोक जी जवाब दीजिए
0: लीवर निकालो जो करना है करो आपको
2: अरे इनको शांत करिएगा तब तो जवाब देंगे लगातार डीजल इंजन की तरह चलते जा रहे हैं। रुकिए
1: हो गया
2: सबसे पहली बात
0: जो उछलते हो
2: सबसे पहली बात किसी भी हिंदू को यह नहीं कहना चाहिए कि वो प्रभु श्रीराम की रक्षा करेगा। ये किसी भी हिंदू को कहने के लिए प्रभु श्रीराम की रक्षा करने की औकात नहीं है किसी हिंदू में। प्रभु श्रीराम हमारी सत्य संतों की रक्षा करते हैं। आइए कालनेमी लोग चले प्रभु श्रीराम की रक्षा करने, कमर हमारी तोड़ेंगे गदा मार के। उद्धव ठाकरे का 3 बार कमर का ऑपरेशन हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पैर से चलने लायक नहीं रहे। दूसरी सपा वाले बोल रहे थे कि सपा धर्म भगवान की राजनीति नहीं करती है, बिल्कुल सही कहा भाई साहब, आप धर्म और भगवान की राजनीति नहीं करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हनुमानगढ़ी के छत पे नमाज पढ़वा दूंगा मैं, और हनुमानगढ़ी के एक सीढ़ियों पे नमाज पढ़वा दिया था। अखिलेश भी अपना बाल लाल लाल करके चलते हैं जाने के लिए। धर्म भगवान से आपको क्या मतलब है? 4 मिनट बोला आपने, 4 मिनट मैं घड़ी देख रहा था साहिल जी, 4 मिनट में एक बार भी कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन पे एक शब्द नहीं निकला इस आदमी के। ये प्रभु श्रीराम की बात करेंगे? ये पार्टी, ये धर्म में आ सकता?
0: सजा मिलेगी
2: ये सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए, किसी बहाने सत्ता मिल जाए, आलू मिलेगा, आलू सोने वाला आलू, सत्ता मिलेगी, ऐसा प्रभु श्रीराम के भक्त लोग जवाब देंगे ना कि उड़ते रह जाइएगा। एसआईटी तो किसी को छोड़ेगी नहीं। अभी टीनू यादव के जितने करीबियों का पता चला है उसमें 4-5 सपाई भी निकल रहे हैं, ये भी आएगा, अभी उसमें भी डिबेट होगी 2-3 दिन के बाद। उसके बाद
1: प्रधानमंत्री मोदी प्रभु राम को लेकर इस मंदिर में लेकर आ रहे हैं, ये फोटो दिखाई जा रहा है। ये देखिए जब राम मंदिर का राम मंदिर,
2: नरेंद्र मोदी तो राम भक्त थे हैं और ये मरते दम तक रहेंगे। नरेंद्र मोदी के राम भक्ति पे प्रश्न उठाने वाले ये कालनेमी नहीं हो सकते हैं।
3: ये सिर्फ कोई नहीं कर सकता, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन
2: प्रभु लेकर ही नहीं आए थे, मंदिर भी बनवाया था स्पीडी ट्रायल से जिसको कांग्रेस टालते रहती थी।
3: राम को
2: लाएंगे,
3: ये फोटो क्या है?
2: महाराम द्रोही है आप लोग, समझे ना? बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, नरसिम्हा राव ने कहा था मस्जिद गिरने पे, याद है कि नहीं? भूल गए
3: प्रभु राम को,
2: औरंगजेब की कब्र पे माथा टिकाने वालों का राम भक्ति याद आ रहे हैं, राम मंदिर याद आ रहा
3: है।
2: जाके चर्च में बाइबल पढ़िए, राम मंदिर को छोड़ दीजिए, और राजनीतिकरण घटिया करने की जरूरत नहीं है, समझे ना? घटिया राजनीतिकरण कहीं के नहीं लाए जाएंगे,
3: और इसीलिए चंदा चोरी
2: ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है।
3: ये भाजपा
2: ने ये जल जाइएगा बता रहे, कहीं के नहीं रहिएगा,
3: ये राम
2: कहीं के नहीं रहिएगा। 99 तो ऐसे ही है,
3: राम का
2: 99 का चक्कर बहुत खराब होता है, सीधे 0 पे जाता है 99 से।
1: ठीक है,
2: साफ सीढ़ी मत करिए
1: प्रभु श्री राम
2: के
1: मंदिर पे,
2: ठीक है ना?
1: राजनीति के और भी तरीके हैं, प्लीज।
3: अच्छा, एक छोटा सा, बस छोटा,
1: जरा संगीत रागी जी के पास मुझे जाना है, क्योंकि आज संगीत रागी जी एक बहुत ही अहम बयान, एक मिनट नहीं आदेश जी, एक बहुत ही अहम बयान आया सर कार्यवाहक की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से। पूरा बयान तो आपने देखा होगा, सुना होगा, हमने भी सुनाया। जरा आप हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिएगा इसके टाइमिंग को लेकर और इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए।
4: देखिए साहिल जी, मुझे लगता है कि इस पूरे पूरे घटनाक्रम से यदि सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो संघ के स्वयंसेवक हैं, और वो इससे बहुत आहत हैं, और जिसका मुझे लगता है कि आज माननीय सरकारवाह जी ने आज उसका सारे स्वयंसेवकों की ओर के तरफ से वो जो आत्म, जिसको कहते हैं ना आत्मवेदना, वो आत्मवेदना की उन्होंने अभिव्यक्ति की है। और संघ से ज़्यादा और विश्व हिंदू परिषद से ज़्यादा कोई इसको गंभीरता से नहीं लेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए भी इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकलने की हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ी है। दूसरी बात, हम बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज बहुत ये कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी को 2027 का चुनाव दिख रहा है और वो पॉलिटिकल कैपिटल के लिए ये सारी बातें कर रही हैं। वो ठीक कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, वो अधर्म की राजनीति करते हैं। अतीक अहमद के साथ खड़े होने वाले वो धर्म की राजनीति कैसे कर सकते हैं? रोम भक्त होने वाले राम भक्त कैसे हो सकते हैं? देखिए तो देखिए बहुत सीधी बात है कि ये अग्नि परीक्षा तो है साहिल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो दत्ता जी ने कहा है कि इस चोरी के सहारे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठनों को बदनाम करने की जो रोम भक्ति वाला जो गुरु गिरोह है उसकी ये जो साजिश है उससे ज्यादा हम उसके चिढ़ है। जो लोगों ने किया है उनको दंड मिलना चाहिए।
1: तीन चीजें बड़ी आपने कही,
4: लेकिन उससे
1: मैं जो बयान दिया गया उसका मतलब आपने समझाया?
4: 10 सेकंड
1: आपने जो समझाया उसी पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे।
4: बिल्कुल
1: आप ही से पूछ रहा हूं। आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संघ सेवक है, स्वयं सेवक है, वो सबसे ज्यादा आहत है इस पूरे से, और यही बयान इसको दिखाता है। अगर आहत है तो एक महीने का समय क्यों? क्योंकि आरोप पहले से लग रहे थे, जांच पहले से चल रही थी, सवाल पहले से उठ रहे थे। एक महीने के बाद आहत विनय कटियार थे जो तुरंत बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, तो आहत है तो एक महीने के बाद क्यों? नंबर एक, गंभीरता का मुद्दा यहां पर उठाया गया। अगर गंभीरता है तो कार्रवाई क्या ट्रस्ट पर भी होगी? क्या उसको लेकर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुख इसमें साफ होता है कि नहीं होता है? और तीसरी बड़ी बात, हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश, कौन बदनाम कर रहा है? जो चोरी किया उसने बदनाम किया, ट्रस्ट के मिसमैनेजमेंट ने बदनाम कर दिया। इतना बड़ा मंदिर, ट्रस्ट का मिसमैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार है नहीं है, उसको लेकर कोई बात? कौन बदनाम करने की कोशिश? क्या यह भी कहीं ना कहीं बोलने की जरूरत थी आपको लगता है?
4: देखिए साहिल, मैं आपके तीसरे सवाल से शुरू करता हूं। ट्रस्ट के लोगों पर आरोप लगाना ये और बात है, लेकिन ट्रस्ट के साथ विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच जाना ये अलग है, और इस पर इतराज है। आप ट्रस्ट के लोगों के मिसमैनेजमेंट, उनके इंटेंट सब पर आप सवाल कीजिए, वो SIT की रिपोर्ट या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि ये उनकी निगरानी में गलती की है या इनकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और यदि वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है,
1: कौन सी ऐसी बात स्पेसिफिक बात बताइए ना, मुझे उनसे पूछ सके कि जो राष्ट्र विरोधी बात कौन सी है, स्पेसिफिक बताइएगा।
4: देखिए
1: कौन सी राष्ट्र विरोधी बात है इसमें?
4: देखिए जब आप पूरे हिंदू संगठनों को आप बदनाम कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं एक पूछना चाहता हूं, वैष्णो देवी ट्रस्ट में भी घपले हुए थे, माखनलाल फोतेदार उसके हुआ करते थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी पर सारा आरोप लग गया था क्या? जब सबरीमला के अंदर हुआ तो क्या वहां के CPM और
1: ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसने ली है?
4: गया था क्या? नहीं, सवाल करता हूं मैं,
1: ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसने ली थी? ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसने ली थी?
4: मैं आपको बता रहा हूं,
1: ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी?
4: फिर मैं उसका उत्तर दे रहा हूं,
1: ठीक से चलाने की जिम्मेदारी किसकी
4: थी? सर उसका उत्तर दे रहा हूं, आपने सवाल किया है, आप उत्तर सुनिए, उत्तर सुनिए। जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने विचार परिवार और अपने इकोसिस्टम से ही अपने लोगों को वहां पर बिठाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
1: ठीक,
4: बहुत सिंपल बात है। लेकिन वो गलती करे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे, मैंने इसीलिए कहा कि माखनलाल फोतेदार तो श्रीमती इंदिरा गांधी के सबसे बड़े करीबी थे, और जरा तिरुपति का आप ट्रस्ट का आप देख लीजिए, सारे कांग्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेट, जज, कांग्रेस से जुड़े हुए सारे लोग वहां हुआ करते थे, तब क्या पूरी कांग्रेस पार्टी को कर
1: देना चाहिए था?
5: और तीसरी बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कभी नी जर्क रिएक्शन नहीं करता है।
3: दुबे का बयान नहीं सुना है जिसने राम मंदिर आंदोलन में 12-12 गोलियां खाई थी। मैं तो ये लोग विनय कटियार को भी झूठा कह रहे हैं और संतोष दुबे को भी झूठा कह रहे हैं।
5: किसी को झूठा नहीं कहा जा रहा है, कोई झूठा नहीं बोल रहा है, कोई झूठा नहीं कह रहा है,
3: बताएंगे
5: कह रहा है सिंपली कि आप इन्वेस्टिगेशन को हो जाने दीजिए,
3: चोरी का समर्थन करें। लेकिन क्योंकि हम आपकी चोरी को उजागर कर रहे हैं तो आप हमें राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। राम भक्तों की आवाज उठाना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है बल्कि हम राम के प्रति समर्पित है, इसलिए आपकी चोरी को उजागर कर रहे हैं। आप
5: अनिल
3: जाधव,
5: अनिल
3: जी न्याय करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT बनवाइए। हमें यूपी सरकार पर और देश की सरकार पर भरोसा नहीं है क्योंकि ये लोग आप ही के नियुक्त किए हुए थे।
1: साहिल
3: आप अच्छे
1: संगीत रागी, जल्दी से पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद अजय आलो।
5: साहिल
1: आखिरी समय बचा है मेरे पास। संगीत रागी जल्दी से, एक मिनट, अनिल यादव हो गए आपकी बात समझ में आ गया।
5: साहिल बोफोर्स पर रेडियो स्टेशन से अनाउंसमेंट हुआ था 1987 में, कांग्रेस पार्टी ने FIR दर्ज किया था। 1990 में जाकर के FIR दर्ज हुआ था जब BP सिंह की सरकार आई थी। आप ज्यादा नैतिकता के आप नैतिकता के मापदंड पर खड़े नहीं उतरते हैं,
1: ईमानदारी
5: पर नहीं उतरते हैं।
1: आखिर में
3: नहीं, बोफोर्स के
1: क्या ये मुद्दा आज की स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से मुश्किल होता जा रहा है और इसीलिए आखिरकार एक महीने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी आगे आकर इस बारे में अपना बयान देना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि दोबारा ये जो विश्वास है वो जीतने की जरूरत है, ट्रस्ट का काम साफ सफाई करने की जरूरत है। अजय आलो,
2: देखिए सबसे पहली बात कि राम भक्तों को भगवा आतंकी कहने वाले राहुल गांधी के पार्टी के लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं। भगवा आतंकी किसने कहा था? राहुल गांधी जी ने, अमेरिकी राजदूत को, कि सैफरन टेरर इज मोर डेंजरस, और वो आज ज्ञान दे रहे हैं राम भक्ति पे। दूसरी बात, राजनीतिक तौर पर ये हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। ये लोग बार बार कहते हैं करोड़ों राम भक्तों की आस्था हर्ट हुई, हर्ट नहीं हुई है। राम भक्तों को गुस्सा आया है कि मंदिर में चोरी क्यों हुई, उसकी इनको चिंता नहीं है। आस्था राम में हर्ट नहीं होती कभी।
1: SIT के इन्वेस्टिगेशन से
2: ये काम ढोने के बाद राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई।
1: इन्वेस्टिगेशन से कितना बाहर निकलता है और जब चुनावी मैदान में लोग उतरेंगे तो राम भक्तों का गुस्सा कहां जाता है वो भी देखना होगा। वो गुस्से का इन्वेस्टिगेशन में क्या तब्दीली होती है वो भी देखना होगा। चलिए फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
1: How they looked after game one.
2: I mean, they were frustrated.
0: The Daily.
3: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
7: हाँ, कहा था, लेकिन ये तय कैसे होता है?
6: प्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाते हैं।
8: पहला भारतीय चैनल,
6: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुंच रहे।
9: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
10: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
11: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
6: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
12: आज तक की खबर का असर हुआ है,
6: हर दिन कमाया जाता है।
13: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
6: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
13: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
14: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।

0: राम मंदिर में लूट से बनाई अकूत संपत्ति, चढ़ावे की चोरी से धन्ना सेठ बने आरोपी, चढ़ावा चोरी की आंच, अब जमीन घोटाले की जांच। जी हां, चढ़ावा चोरी की जांच की आंच जमीन घोटाले तक पहुंच गई है। खबर है कि गुरुवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी ने ट्रस्ट की खरीदी जमीन की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने रजिस्टर्ड दस्तावेजों के गवाहों को बुलाया था। जो भी गवाह आए उनके बयान दर्ज किए और साथ ही पूछताछ भी की। ये जांच आज भी जारी रहेगी। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने एसआईटी से मुलाकात की थी और एसआईटी को सबूत सौंपे थे।
1: एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो, जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है।
2: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रॉपर्टी संबंधित शिकायत एसआईटी की टीम को दस्तावेजों के साथ सौंपी है। दूसरे चरण में इस मामले की जांच होनी है। हालांकि साल 2020-21 में जब जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उस वक्त प्रदेश सरकार ने राधेश्याम मिश्रा कमेटी का गठन किया था, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसको लेकर आज तक राजनीतिक विवाद उत्तर प्रदेश में जारी है। अब जब दूसरी बार इस मामले को लेकर जांच शुरू होने वाली है तो ऐसे में लीपापोती की संभावना नहीं होगी।
0: तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आएगा कि ट्रस्ट ने औने पौने दाम में मंदिर के लिए जमीन क्यों खरीदी, क्या इसकी वाकई जरूरत थी या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी। जांच के साथ ही जमीन जायदाद का पहलू भी गंभीर होता जा रहा है। जांच एजेंसी को आरोपियों की अकूत संपत्ति का भी पता चल रहा है और इसकी भी छानबीन की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सभी आरोपियों की संपत्तियां खंगाल रही है। अयोध्या, लखनऊ, नोएडा के अलावा दूसरे राज्यों में भी इनकी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। पुलिस ये पता कर रही है कि किसकी कितनी संपत्ति है। पुलिस संपत्तियों की रजिस्ट्री की कॉपियां भी निकाल रही है। आपको हमने ये भी बताया था कि एसआईटी 5 सालों के ट्रस्ट के ऑडिट रिपोर्ट की भी जाँच करेगी, ताकि आमदनी और खर्च की तह तक जाकर पड़ताल हो सके।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय होस बोले बोले, राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वाले दोषियों को मिले कठोर सजा, कांग्रेस का पलटवार, सिर्फ दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के समर्थन में आए कई विधायक और नेता, अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के पार्टी अध्यक्ष बने रहने से नाराजगी, अब खड़गे से होगी बात। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को भारत की दो टूक, कहा हम अपने पुराने रुख पर कायम, आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से रोक जारी। इंस्टाग्राम विज्ञापन में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले में सरकार सख्त, आईटी मंत्रालय ने मेटा को किया तलब, मांगा जाएगा जवाब। केतन हत्याकांड में आरोपी सिया और चेतन की 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत, पुलिस ने जब्त किया सिया का दूसरा मोबाइल, कोडवर्ड में बात करते थे दोनों आरोपी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
1: नौकरशाही पहले भी थी, वर्तमान में भी है और आगे भी ये व्यवस्थाएं रहेंगी, लेकिन हम भी परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। यह पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और एक बार सबसे पहले यहां मौजूद जनता को दिखा दीजिए, क्योंकि आज ये तमाम छात्र आए हैं। कुछ संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हैं, कुछ छात्र इधर से हैं। दिखा दीजिए उनको जो आज इस चर्चा में शामिल होंगे और वो प्रश्न भी करेंगे। तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले विषय आपको बता दें, मेहमानों से मिला दें, क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाला चुनाव वक्त से पहले हो सकता है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक डेढ़ महीने में यूपी के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ विकास योजनाओं की सौगात की है, वो रैलियां कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सितंबर में ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बहाने बीजेपी को घेरने का मौका पा चुके अखिलेश यादव लगातार अपने पीडीए का दायरा बढ़ाने की कोशिश में भी है। उधर इंडिया अलायंस ने चुनाव धांधली के अपने आरोपों पर नया मोर्चा खोलते हुए सीजेआई को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 28 जून को लिखी गई ये चिट्ठी आज सार्वजनिक हुई है। इस पर 24 दलों और एक निर्दलीय सांसद के दस्तखत हैं। चिट्ठी में एसआईआर पर सवाल के साथ साथ 2027 में होने वाले चुनाव में मतदान सूची और ईवीएम पर भी संदेह है। विपक्ष की इस रणनीति के बीच कल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचकर बड़ी बैठकें करने वाले हैं। सवाल है कि क्या यूपी में चढ़ावा चोरी और चुनाव चोरी समेत विपक्ष के मुद्दों की काट योगी के पास है? क्या यूपी में चुनाव वाकई जल्दी होने की संभावना है या सिर्फ ये अटकलें हैं? 2027 से पहले पूर्व में आर पार अखिलेश तैयार, यही आज हल्ला बोल का विषय। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में आए हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अतुल लौंडे पाटिल जी हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। हमारे साथ प्रोफेसर विजय राठी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, रोहित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, और शादाब चौहान हमारे साथ ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से आए हुए हैं। ओवैसी साहब ने एक अलग ही मजहबी रंग इस पूरे चढ़ावा चोरी के मुद्दे को दिया। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। चुनावों में कथित धांधली पर इंडिया अलायंस ने अपना त्रुप का पत्ता चल दिया है। 8 जून को इंडिया अलायंस की मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा गया है जिसमें 24 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद के दस्तखत है। 28 जून की इस चिट्ठी में मुख्य चुनाव आयुक्त पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पक्षपात का आरोप है। चिट्ठी में लिखा गया है कि विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
1: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खास तौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा। और मुझे लगता है कि खड़गे जी ने जो पत्र लिखा और उसके साथ साथ और भी जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके भी सर्वश्रेष्ठ नेताओं को या प्रतिनिधियों को पत्र लिखने चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि एसआईआर को केवल वोट चोरी का माध्यम बना दिया जाए ये तो विपक्ष बिल्कुल बर्दाश्त।
0: चिट्ठी में 2027 में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर न सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स बल्कि ईवीएम की भूमिका पर भी सवाल है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर संस्थाएं नाकाम होंगी तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाएगा, इसलिए इस पर अदालतों को विचार करना होगा।
2: भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। वैधानिक दृष्टि से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को भिन्न भिन्न न्यायालयों के द्वारा पूर्णतः युक्ति सम्मत और विधि सम्मत ठहराया जा चुका है। संवैधानिक दृष्टि से एक बार भी कोई तथ्यात्मक विषय न्यायालय के समक्ष ये रखने में असफल रहे तो मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
0: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों की हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
3: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
0: अखिलेश यादव का ये बयान उन अटकलों के बाद आया है कि यूपी का चुनाव 2027 से पहले ही कराने की तैयारी बीजेपी ने की है। इन अटकलों की एक बड़ी वजह बीजेपी की सक्रियता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के हमले के बावजूद योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, बल्कि 2017 से पहले के यूपी का हाल की तस्वीर भी खींच रहे हैं।
4: कमल का बटन दबाते हैं, बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजते हैं, बदले में विकास मिलता है, बदले में सुरक्षा मिलती है, बदले में बेटियों की सुरक्षा होती है, व्यापारियों की सुरक्षा होती है, नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी मिलती है, अन्नदाता किसानों को खुशहाली लाने के लिए प्रयास होते हैं।
0: यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल में अपनी नई टीम गठित की है। यूपी बीजेपी के 19 उपाध्यक्षों में ओबीसी 8, क्षत्रिय 4, ब्राह्मण 3, वैश्य 2 और 2 दलित चेहरे हैं। उधर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की लखनऊ में बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक होने जा रही है। लखनऊ में संगठन महामंत्री और संघ के प्रतिनिधि के साथ नितिन नवीन की अलग से बैठक का भी कार्यक्रम है। बीजेपी कहीं से ये संकेत नहीं देना चाहती कि अगर यूपी में जल्दी चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी नहीं है।
5: उत्तर प्रदेश में चुनाव चाहे तय समय पर हो और चाहे पूर्व में हो जाए, अखिलेश यादव को क्या फर्क पड़ना है, उन्हें तो परिणाम पता ही है। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में 2017 दोहराएगी, साइकिल को पंचर करके वापस सैफई भेजेगी। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी।
0: यूपी का चुनाव जहां विपक्ष के लिए एक चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में यूपी से लगा झटका ही बीजेपी पर भारी पड़ा था। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से है, तीन प्रश्न है, प्रश्न के तीन हिस्से समझ लीजिए। एक तो चढ़ावा चोरी का मुद्दा, वो भी राम मंदिर में, क्या आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? अब विपक्ष इस चिट्ठी के जरिए जो कि अतुल लौंडे पाटिल साहब लेकर भी आए हैं, वोट चोरी का भी आरोप लगा रहा है, दूसरा बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज। और तीसरा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप वक्त से पहले चुनाव कराना चाहते हैं, सच है क्या?
6: देखिए मैं तीनों चीजों का जवाब देता हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा वक्त से पहले का चुनाव, तो देखिए तो चुनाव आयोग तय करता है किस वक्त पे चुनाव होगा, मगर मैं इतना बता देना चाहता हूं, वक्त हो या बेवक्त हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि ना सपा का बीता हुआ वक्त आएगा, ना यूपी का बुरा वक्त आएगा, बल्कि अब एक नया वक्त जिस दिशा में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल चुका है उस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो एक पुराना गीत था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। और सोचियो बदला हुआ वक्त क्या है, इनका MY है, हमारा भी MY है, मोदी योगी। और उस वक्त में जरूरत क्या है, देखिए साहब कोई वायरस अगर गहरा आपके शरीर में आ जाए तो कोरोना में वायरस के लिए कितने डोज वैक्सीन की जरूरत थी, पहली डोज, सेकेंडरी डोज और बूस्टर डोज। तो पहली डोज 2017, सेकेंड डोज 2022 और बूस्टर डोज 2027। तो प्रदेश की जनता ने यह बिल्कुल तय कर लिया है कि वो इस दिशा में आगे आएंगे। अब दूसरा विषय जो अखिलेश जी ने कहा, जो इन लोगों ने कहा कि साहब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात, तो यहां मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं ये हर हिंदू को लेके दिल में पीड़ा उत्पन्न करने वाला विषय है। और लाखों राम भक्त कार सेवक, मैं एक बालक के रूप में अप्रैल 1987 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संकल्प की रैली में गया था। 9 नवंबर 1989 को मैंने अपने हॉस्टल में शिला पूजन कराया था, जो मैंने फोटो भी 9 नवंबर 2019 को पोस्ट किया था। तो हमारे जैसे लाखों कार सेवकों के मन में जो ये कहते थे उस समय कि मन तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, और आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और फिर हम कहते थे शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। मगर जिन्होंने गोलियां चलाई, आज प्रश्न कौन कर रहा है? एक मैं टेक्निकल बात करता हूं, फिर पॉलिटिकल बताता हूं। देखिए साहब, मैं विनम्रता और दृढ़ता से अपने विरोधियों से पूछता हूं, ट्रस्ट में डायरेक्ट एक्शन लेने का अधिकार सरकार के पास कहां है? क्लॉज के साथ कोट करके बताएं। इसके बावजूद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर तुरंत SIT गठित की। पॉइंट नंबर टू कि तुरंत गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई? कोई भी गिरफ्तारी कम से कम पुख्ता सबूत ना हो तो प्राइमरी एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक कटे नहीं, क्योंकि यह कोई पॉलिटिकल नाटक नहीं है कि 100 लोगों गिरफ्तार कर लो, 90 लोग एक बार में छूट जाएं। पॉइंट नंबर तीन कि अमुक अमुक के ऊपर ही कार्रवाई क्यों हुई है, अमुक अमुक पे क्यों नहीं? क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पॉइंट नंबर चार कि साहब ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, वो अभी तुरंत क्यों नहीं, बाद में क्यों? उसका कारण यह है कि भारत के कानून के अनुसार ट्रस्ट के अधिकारी को हटाने का अधिकार ट्रस्ट के बोर्ड को ही होता है, और रिपोर्ट जब पूरी आ जाए तो एक बार में तय हो जाए कि ट्रस्ट के कौन कौन से लोग संदिग्ध हैं, तो उनके ऊपर संपूर्ण कार्रवाई एक साथ हो जाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, अब पॉलिटिकल बात कहता हूं, राजनीति में क्या कहा जा रहा है इससे इंपॉर्टेंट होता कौन कह रहा है। वो कह रहे हैं जो कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, जो कहते थे राम हुए ही नहीं, जो ये कहते थे कि हजारों कमरे थे राजा दशरथ के यहां, मणिशंकर अय्यर बोले थे, ये किस जगह हुए थे बताओ? वो अर्जुन सिंह जाके एक विमोचन किए थे एक एग्जीबिशन का, जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन बना दिया गया था। यानी जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो आकर कहते हैं आज चिंतित हैं। ये तो वैसा ही लगता है इसे जनरल डायर कहे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फंड में कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे उस बार उसके ऊपर चिंता हो रही है। मगर मैं एक बात फिर भी कहना चाहूंगा, प्रभु की लीला समझनी चाहिए। एक दौर था जो लोग कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, वो आज खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अयोध्या राम की थी और यह चढ़ावा भी राम का था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर के समय हम लोग एक नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और आज जैसे सब राम नाम जपने में लगे हैं विपक्ष के नेता, तो हमें लगता है झूठा सच्चा सबै राम का, पक्का कच्चा सबै राम का, और लगन से बोले चाहे जलन से न बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। मुझे लगता है भगवान ने,
0: चलिए माइक उठाइए, उन्होंने लंबा बोला, मैं आपको भी उतना ही टाइम दूंगी। अब इस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि, और मुझे लगता है प्रीएम्प्ट कर लिया उन्होंने कि आप चंपत राय पर, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सब पर सवाल पूछेंगे, उन्होंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपका जवाब इस पर?
7: कार्रवाई सबके खिलाफ होगी ये तो सभी बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, चोरी चकारी रोकने की जिम्मेदारी, उनके अलावा। और RSS अब तक पाकिस्तान के साथ बिजी थी, अभी 2-3 घंटे के पहले उनको समय मिला पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद, तो आज उनको थोड़ा दुख हुआ है, आज थोड़ा दर्द महसूस हुआ है। तो यूपी में अभी बर्बाद होने के लिए कुछ बचा है? एक जात को दूसरे जात के खिलाफ क्यों ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों कानून के बजाय बुलडोजर चल रहा है? क्यों सिलेक्टिव लोगों के यहाँ चल रहे हैं? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बात करोगे अभी वक्त का? तो एक एक शेर कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा।
6: ये इमरजेंसी में लिखा गया था,
7: सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त कहां होगी, एक मोम के पुतले से किरदार तुम्हारा। तो वक्त के साथ सुधांशु जी लागू होता है, अभी आपने 1, 2, 3, 4 एक्सेप्ट करना पड़ा, जो वैक्सीन जल्दी जल्दी में दी ना, जो हार्ट अटैक से मौत हो रही ना, हम तो पब्लिक में काम करते हैं, हर 100 में से 101वीं मौत जो है ना वो हार्ट अटैक से होती है, और वो जमा खून के जमा होने से होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि वैक्सीन गलत तरीके से दी गई थी। अब दूसरी बात
6: पे बोला गया वैक्सीन गलत तरीके से,
7: मैं आपको सब सबूत देता हूं, मैंने बीच में आपको
6: कहा गया वैक्सीन,
7: ये सब डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया,
6: सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप झूठ बोल रहे हैं,
7: ये आपको ठीक नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता, आपने बोलिए ना, आपने इतना बोला, मैंने बोला बीच में, आपने SIT की बात की, SIT कैसे अपॉइंट होती बताइए मुझे, बिल्कुल बताता हूँ मैं, जो धूल झोंकने का काम चल रहा है देश के हिंदुओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, वो ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में Section 3 में टर्म्स एंड रेफरेंसेस दिए जाते हैं, SIT अपॉइंट करने के बाद कहाँ कहाँ किस किस तरह से इंक्वायरी करनी है उसके, उसको कहते हैं टर्म्स एंड रेफरेंसेस, मुझे दिखाओ कहाँ है टर्म्स एंड रेफरेंसेस, कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, जो दीपक पाटिल ने कहा है, गोपाल राय ने जो पैसा लेकर वहां पर गए हैं 2021 से लेकर, बीदर के जो आपके विधायक है वहां पर जिस तरह से जमीनें खरीदी की गई है, जहां से कॉन्ट्रैक्टर से 40% कमीशन लिया गया है, आज जो वहां पर संतोष दुबे जी है, करपात्री महाराज जो है, वहां के सारे साधु संत जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सब देख रहा था, छानबीन कर रहा था कि साधु संतों का क्या कहना है। तो साधु संतों का कहना पहले से यही है कि कार सेवा के वक्त जब 1400 करोड़ जो जमा हुए थे वो बीजेपी खा गई। हम नहीं कह रहे, ये निर्मोही अखाड़े के साधु संत कह रहे हैं, ये वीएचपी के साधु संत कह रहे हैं। जो दुबे जी है, संतोष दुबे जी, जिन्होंने कहा है कि मैंने, मेरी हड्डियां टूटी है, मैंने पूरा जिंदगी जीवन यहां बिताया है, वो तो गंदे गंदे आरोप कर रहे हैं। सुधांशु जी, मैं यहां पर वो लेकर जो एक चर्चा की एक मर्यादा होती है उसको भंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु राम का है घर है वो, तो वहां पर होम स्टे से लेकर सारे आरोप जो हुए हैं बहुत ही गंदे और घिनौने हैं। दिन का रजिस्टर क्यों मेंटेन नहीं हुआ? 2020 में फ्लैग किया था ऑडिटर ने, SBI ने कहा था कि यहां पर जो घपले हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था ऑडिटर ने। लेयर्स के बारे में बात कही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स इसमें मिसिंग है, यहां पर घपला हो रहा। जिस महिपाल चीफ अकाउंटेंट थे उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं तो उनको ही वहां से हटाया गया। तो ये दिख नहीं रहा है, न्याय होना चाहिए लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है? चंपत राय को जो कहा था कि हनुमान हनुमान है, वो हनुमान ही लूट गया। और सबसे आहत करने वाली बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे। और वही अकेले नहीं कह रहे, जिन्होंने बहुतों को निपटाया, वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने 1000 महिलाओं को खराब किया और आपके सरकार ने संसद के बाहर देश को मेडल देने वाली महिलाओं को खींचा ना, घसीटा जो है ना, वो कह रहा है कि मुझे भी सच्चाई पता है, मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे ये लोग निपटा देंगे। कौन है ये लोग? कौन इनको निपटा देंगे? बागेश्वर धाम जी को, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं।
8: कहां पे कहा, किसके लिए कहा, कोट करिए।
7: अरे कहां, अरे सब जगह ओपनली अवेलेबल है सुधांशु जी, आपको शोभा नहीं देता।
8: किसके लिए कहा? आपको कुछ भी
7: बिल्कुल नहीं। अगर बागेश्वर धाम ने नहीं कहा होगा तो मैं कल से डिबेट में नहीं आऊंगा, और कहा होगा तो आप नहीं आओगे।
8: जो लोग करेंगे, अगर
7: कहा होगा तो आप नहीं आओगे।
8: कोट करिए,
7: मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो।
8: अगर मैं नहीं,
7: आप नहीं आना,
8: बताओ भाई।
7: अरे सब जगह सब अवेलेबल है।
0: चलिए ठीक है, अगले दो लोगों को लाते हैं। चुनाव पर भी आ जाइए कि 27 के चुनाव के लिए तैयार हैं पाटिल साहब?
9: बिल्कुल सब तैयार है, चुनाव के लिए तैयारी है।
0: चलिए आप माइक उठा लीजिए।
9: सपा के कंधे पे चल के चढ़ा तैयार है
10: तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं।
0: ये ब्रजभूषण शरण सिंह आप सुना रहे
10: हैं? मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा।
0: ब्रजभूषण शरण सिंह है, चलिए ठीक है, आज आप उनकी बात सुना रहे हैं। निकाल लीजिए सर, निकाल लीजिए जल्दी से। आप माइक उठाइए और समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलिए।
11: नाम बता दो, हम ऐसे ऐसे नाम बता दें, ऐसे सब खोल दे, चुनाव में खोलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे जो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे,
0: ये भी
12: संतोष दुबे क्या कह रहे हैं, होमस्टे बना के रखा है।
0: ठीक है,
13: अभी सुधांशु त्रिवादी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने दो तीन चीजें बोली, वक्त पे, डोज पे, कार सेवा, गोली, और कब से ये लोग राम के भक्त हैं, इन सब चीजों पे। मैं क्रमवार जवाब दे देता हूं इसका। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त, ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है, तो सच बोला। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। CCTV फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, FIR भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले, अभी कुछ दिन पहले सुनते थे, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है, इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से। और इन्होंने कहा अभी कि मैं जब बच्चा था तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या RSS बनाओ या जनसंघ बनाओ या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी हो 1980 में, इनका पहला घोषणा पत्र उठाना, इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा चलेगी गांधीयन सोशलिज्म पे, गांधीवाद समाजवाद। इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्हें कुछ नहीं मिला। 1984 में 2 सीटें आई इनकी। इन्होंने कहा 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष भाषण दिया लाल कृष्ण अडवाणी जी ने, उन्होंने कहा कुछ ऐसा निकाल करके लाओ ना हिंदुस्तान में कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स पे चले देश। तो इन्होंने वहां पर राम मंदिर का मुद्दा अपनाया, ये उस समय नए नए ताजा ताजा गरम गरम राम भक्त बने और वो चीज काम कर गई। 1989 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 85 सीट और 90 में जब लाल कृष्ण अडवाणी जी यात्रा लेकर के चले, क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन में जो पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण दे देते, जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो ना नौकरियों में थे ना कॉलेजों में थे, उनको आरक्षण मिला। तो इन्होंने उसकी काट के लिए वो यात्रा चलाई और उसके बाद 1991 में 120 सीट पे पहुंचे। अब गिन लीजिए कितने साल के राम भक्त हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई। ये कहते चोरी ठीक है लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं, इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। बार बार ये जिक्र करते हैं कार सेवक, कार सेवक। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा कार सेवक वर्ड जो ये शब्द है कब इजाद हुआ? गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में, 90 में,
14: 30 अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90,
13: ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 में जब मस्जिद ढा गई। ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सपोज कीजिए ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को, आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया, क्या आप भाई कौन है, भतीजा कौन है, पिताजी कौन है, बुआ, ये देखेंगे? या देखेंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है? आप अगर आप इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते, मैं संविधान की शपथ लेता हूं, अरे काय की शपथ लेते हो, तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है,
0: ठीक है,
13: ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो।
0: अब सुधांशु जी, आप दोनों का जवाब,
13: लास्ट सेकंड हो गया,
0: जल्दी जल्दी।
13: उसके बाद कल्याण सिंह जी आते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके ऐसे हाथ करके, और कहते हैं ठीक है मैं सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हूं, ढा दीजिए इसको। सुधांशु जी, ये इस देश का तासीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आपको भी बनाया जाए तो शायद बोलेंगे। और लास्ट में कर रहा हूं, उसमें मारे गए 17 लोग जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग जिसमें 300 हिंदू थे, उसका आप जिक्र ही नहीं करते। 16 लोगों का जिक्र करते, लेकिन जितने आज तक हिंदुस्तान में दंगे हुए सबसे ज्यादा नरसंहार आपके हाथ में, और सबसे लेटेस्ट किसान आंदोलन, जिसमें किसान
14: आंदोलन जिसमें
13: 800 से ज्यादा किसान।
14: अब मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे फोन पे फोकस करिए, झूठ बोलते हैं, 17 लोग मारे गए। 3 नवंबर 90 का आज अखबार है, कह रहा है अयोध्या में घंटों घेर कर फायरिंग, 200 मारे गए, रक्त से नहाई अयोध्या, जलियों वाले बाग को बेकाम किया। मैं मीडिया को कोट कर रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, और इनका झूठ अभी बेनकाब करता हूं। पहली बार में क्या बोले, 1989 में पालमपुर में भाजपा ने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया राम मंदिर का। फिर क्या बोले, 1990 में मंडल आया, उसके बदले में भारत मंदिर लाई। मतलब खुद बोल रहे हैं व्यक्ति की 1989 में मंदिर का प्रस्ताव ला चुके थे और मंडल 1990 में आया, यानी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक साथ पीछे गए। अब सुनिए, मंदिर का विषय 1983 में आया, जिस समय मीनाक्षीपुरम में एक बड़ी धर्मांतरण की घटना हुई, संघ ने इसको मुद्दा बनाया, इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया, कई सौ दलित मुस्लिम बन गए थे, वो वापस आए। पहली रैली 9 अक्टूबर 1984 को लखनऊ के बेगम आजाद महल पार्क में हुई, जहां नारा लगा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। आप खुद कहते हो कि आपने ताला खुलवाया 2 फरवरी 1986 को, बगैर आंदोलन के ताला खुलवाया। अप्रैल 1987 की रैली में हम गए, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ और 7 अगस्त 1990 को मंडल आया, कहते मंडल के बदले में मंदिर लाए। अरे यार, इतनी जानकारियां नहीं रखते आप, बेसिक जानकारी नहीं रखते, और उसके बाद जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल जो आपने बात कही, हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि राम का नाम लेकर पाप कटते हैं, पर अगर राम के धाम में राम के नाम पर जिसने पाप किया है उसके पाप विधाता भी नहीं काट सकते, उसे दंड मिलेगा, राज दंड इस लोक में मिलेगा हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्म दंड पर लोक में मिलेगा वो भी हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। मगर एक मिनट मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं हमने ये किया, बने बने ताजे भक्त। अरे भाई, ताजे भक्त क्या, आपको बुलाया गया राम मंदिर में, आप नहीं गए, और 3-3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे जाके सिजदा की, 59 जवाहरलाल नेहरू, 68 इंदिरा गांधी और 2005 राहुल गांधी, किसी ने बुलाया था क्या? और आप कहते हैं संविधान की शपथ लेंगे, आपको मरवाना नहीं है। अरे मुलायम सिंह अपने मुंह से बोले कि मैंने इतने हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था मुसलमानों के लिए, इससे ज्यादा और क्या कर सकता था। और तीसरी बात, हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर न्यास बनवाएगा और संत। इन्होंने दोनों ने कहा, नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे और मुलायम सिंह ने कहा हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे। 16 या 17 दिसंबर 1992 का नरसिम्हा राव का स्टेटमेंट है और ओसीडब्ल्यूसी में डिस्कस भी हुआ था। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, यूपी की सरकार पे आपको प्रॉब्लम थी 6 दिसंबर 92 को गिरने में, ये राजस्थान मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों बर्खास्त कर दी थी, वहां कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बैकअप था? वास्तविकता ये, इसे कहते हैं संविधान को मजाक बनाकर संविधान का खिलौना बनाना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक रामचरितमानस की चौपाई है, उबरे ही अंत न होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। ये क्या है भाई साहब, समझिए आप, रामायण में भी लक्ष्मण जी के भी नागपाश लगा था, भगवान राम के भी शक्ति लगी थी और ये भगवान की आस्था को नागपाश लगा है। जब लक्ष्मण जी को संजीवनी जा रहे थे तो रास्ते में राक्षस राम का भक्त बनकर बैठ के हनुमान जी को रोकने लगा था, वही कालनेमी था। मगर रावण हो, राहु हो या कालनेमी हो, आखिर में सब पहचान लिए गए थे, इसलिए जनता भली भांति सबको।
7: चंपत राय कालनेमी,
14: वो तो आपको पता है ना,
7: वो तो आपको पता है ना, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, लश्कर आपका, कोर्ट आपका,
14: रावण का पुलिस आपकी,
7: फिर आप कहते चंपत राय पता नहीं कौन है, देखो बचाने की कोशिश,
14: वो उसे पता है,
7: कितनी बचाने की कोशिश हो रही है, चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, राम का नाम ले रहे।
0: आपके नेता हैदराबाद में बैठे बैठे कहा है इसमें धर्म का तड़का लगा रहे हैं बैठ के, मतलब कब तक आग से पे हाथ से किएगा आप?
7: नहीं, वो सवाल
0: उन्होंने कहा है कोई मुस्लिम होता तो अब तक ये चल जाता बुलडोजर, तो बुलडोजर के लिए तो नोटिस दो लोगों को जा चुका है योगी सरकार।
7: नहीं, ये सवाल पूछा गया था उसी हिसाब से, मैं साथ में ही था तो उन्होंने तब कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और यहां चूक हो गई, अगर इस ट्रस्ट में किसी मुसलमान को डाल देते तो फिर स्केपगोट बना करके उसका एनकाउंटर भी होता, बुलडोजर भी चल जाता, ये गलती हो गई, मामला रफा दफा हो जाता। और चंपत ने जो चपत लगाया है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। लोग पूछ रहे हैं काकभूसंडी जी कहाँ हैं, पादुकाएं कहाँ हैं, लेकिन वो बात अलग है, जिन लोगों की आस्था वो तो पूछेंगे ना, वो लोग पूछ रहे हैं। निश्चित हम लोगों ने जहां तक भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे, बारी मस्जिद के लिए हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया, ठीक है जो बन रहा है, लेकिन
0: माने ओवैसी साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया था, कहा था कि हम
7: डिसएग्री करना अलग बात है, वो मेरा संवैधानिक राइट है, मैं भी करता हूं, डिसएग्री करना अलग बात है, लेकिन नई बात यह है कि अखिलेश जी भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। 25 दिन में 23 ट्वीट, में सुबह गिन के आया था, 23 ट्वीट उन्होंने राम मंदिर के संबंध में किए हैं। आवाज उठाई, उन्हें उठाना चाहिए था, लेकिन 23 ट्वीट किया, लेकिन पिछले 9 साल में मस्जिद गिरी, मदरसा गिरा, मुसलमानों पे बुलडोजर चला, फर्जी एनकाउंटर हुए, तमाम इश्यूज हुए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, एक ट्वीट नहीं किया, क्योंकि मुसलमानों को समझते हैं कि वोट डालने वाला रोबोट है, हमारा राजनीतिक गुलाम है, हमें पॉलिटिकली अनटचेबल समझते हैं। और जब हमारे नेता ने कहा कि हम मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं आप चुनाव मत लड़िए, उनको इतना अहंकार है कि मुसलमान कहां जाएगा। उनमें और अखिलेश जी, योगी जी की भाषा में कोई डिफरेंस नहीं है, बीजेपी कहती है कि एक आस्था सुप्रीम है, और वही अखिलेश जी ने कहा
0: ठीक है, इस पर एक छोटा
7: संविधान, संविधान को उन्होंने सेकंड नंबर पे बताया, उन्होंने कहा कि नहीं मर्यादा का पहला नाम श्रीनाम, दूसरा नाम संविधान, यही बीजेपी बोलती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो सियाराम धाम बनाएंगे, धर्म के नाम पर एक आस्था सुप्रीम भारत में कैसा हो सकती है? यही मैं समाजवादी से पूछ रहा हूं कि मुसलमानों से आपको कौन सी आपत्ति है? हमको अलायंस में नहीं लेंगे, लेकिन शिवसेना के साथ अलायंस करेंगे। जिस व्यक्ति ने कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के रेप करो, वो सुनील सिंह इनकी पार्टी में है, और कल्याण सिंह जी इनकी पार्टी में, साक्षी महाराज को पहले राज्यसभा भेजा इन्होंने, तो ये सेक्युलर है, जो कुछ भी ये कर ले वो सेक्युलर है, और हम संविधान की रक्षा की बात
0: कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रताप गढ़ी भी यही कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ हिंदुओं की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अखिलेश जी पर आरोप लगाया।
13: हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है।

0: को भेज दीजिए रघुनाथ की धरती पर, यह धरती अनाथ हो रही है। तब सोमनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की धरती पर रघुनाथ की धरती को मरुभूमि से बचाने के लिए, अनाथ होने से बचाने के लिए महानाथ के रूप में नरेंद्र भाई मोदी का आगमन हुआ। और नरेंद्र भाई मोदी के आने के उपरांत माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के उपरांत भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। आपको याद होगा त्रेता काल में जब राम जी का राज्याभिषेक होना था उस समय भी केकई और मंथरा रूपी विस्मयादि बोधक लोगों ने राम जी के घर में विस्मय क्रिएट किया और राजा बनने से बाध्य किया, उनको जंगल जाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार आज राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ केकई और मंथरा को चिन्हित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
1: एक बार करेक्ट कर देती हूँ, मुझे लगता है इस तरह के एनालॉजी से बीजेपी वाले भी खुश नहीं होंगे।
0: इसमें क्या दिक्कत है,
1: आप जो ला रहे हैं जहाँ जहाँ से ला रहे हैं
0: टॉपिक पे आ रहे हैं ना, टॉपिक पे आ रहे हैं, आप बीच में इंटरप्ट कर रही है सबको। आपने बोलने दिया हम सही बात बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, सुनिए मूल बात पर। मूल बात यह है कि राम जी के अस्तित्व की लड़ाई अगर इस देश में किसी ने लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लड़ा, विश्व हिंदू परिषद ने लड़ा। इन लोगों ने लड़के 550 सालों के बाद राम जी को अयोध्या में प्रतिष्ठित किया। और आज अगर कुछ कमियां आई हैं तो SIT जांच आयोग का गठन किसने किया? भैया एक मिनट रुक जाइए, एक बात उठाइएगा, रुकिए ना, बोल रहे थे नहीं बोल रहे,
2: मुझे ऐतराज है ना।
0: अरे ऐतराज आपके हर बात पर ऐतराज, ऐतराज कीजिए,
2: कुछ कमी है
0: नहीं, रुकिए, कोई कमी नहीं है, जनता 27%
2: राजनीति में
0: खींच कर दोषियों को लाया जाएगा।
1: पाताल जाने की जरूरत कहां है, सब घूम रहे हैं वहाँ पे।
0: अब आइए,
1: अरे पाताल जाने की जरूरत नहीं है गुरुजी, सब वहीं घूम रहे हैं।
0: अंजना जी लोग जेल गए हैं, जनता का आई वॉश में नहीं कर रहा हूँ, जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT गठन किया, दोषी जो संदिग्ध हैं उनको जेल भेजा, उनके घरों पर कार्रवाई हो रही है, उनके धर्मपत्नी की संपत्ति का जांच हो रहा है, सब कुछ ऑन कैमरा है, ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन कुछ नहीं हो रहा है। और मैं FIR क्यों नहीं कर रहा हूँ, 10 सेकंड और। 1967 में पहली बार स्वर्गीय मुलायम सिंह जी विधायक बने, 1984 में कांग्रेस के लोगों ने उनकी हत्या रचने की साजिश रची, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने आदरणीय अखिलेश जी से कहा कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ गठबंधन मत करना, राम मनोहर लोहिया ने पहली बार रामायण मेला चित्रकूट में लगाया था, रामायण मेला की विचारधारा से निकले समाजवादी आंदोलन के नेता मुलायम सिंह के पुत्र ने रामायण आंदोलन के खिलाफ काम किया। ये उत्तर प्रदेश स्वीकार
3: करने के लिए
0: जनता रामालय ट्रस्ट की भी जांच की मांग कर रही है। अंजना जी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।
4: मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पार्टी किसी को नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट का तमगा कैसे दे रही है। बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछने पे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया जा रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बीजेपी ने अभी तक कुछ भी अपना प्रतिक्रिया नहीं।
5: बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एंटी
6: इन एनी केस जो हीटअप मूवमेंट होता है, कुछ भी बात होती है उसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग शुरू हो जाती है, हिस्ट्री को लाया जाता है, पर जब जहां पर पेपर्स की बात होती है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, इवन राम मंदिर की भी बात होती है, तो कोई भी सरकार हो, सरकार मैटर ही नहीं रखती, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग मजाक रेप वर्डिक्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, इतने राम रहीम ऐसे ही घूम रहे हैं, और आप हम लोग कैसे मान लें कि आप लोग जो मंदिर चोरी हुई आप लोग पकड़ेंगे ही उन लोगों,
7: उन पर भरोसा करें। हाँ
8: वही सेम क्वेश्चन के आप बोल रहे हैं कि पहला प्रोसीजर चोरी का क्या होता है कि FIR होती है, अभी तक ये तो बहुत ही बड़ा चोरी हुई है, यहाँ पे FIR ही अभी तक दर्ज नहीं हुई है, सबसे पहला प्रोसीजर होता है FIR।
1: देर से हुई लेकिन अब हो गई है FIR दर्ज हो गई।
9: ये समाजवादी पार्टी वालों से पूछता हूँ,
1: आप अपना परिचय दे दें, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं?
9: मैं अखिलेश गर्ग हूँ,
1: समाज सेवी हैं। अच्छा बोलिए।
9: तो इनके नेता कहते थे बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो ऐसे शब्द बोलते हैं और अब ऐसा ये उसके लिए बोलते हैं।
5: उस पे सुनो, उस पे अगर आप
1: देखोगे भिड़िए मत, सबको प्रश्न का अधिकार है ना, बोलने
5: दीजिए।
10: मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार ये बोला जा रहा है कि विपक्ष जो है वो श्री राम में नहीं मानती है, लेकिन चोरी होना तो फिर भी गलत है, लोगों का विश्वास टूटना फिर भी गलत है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे जवाब तो देना होगा ही, विपक्ष माने या ना माने।
1: और जो विश्वास करते थे अगर वो विश्वास तोड़े तो और भी गंभीर सवाल है। आप दोनों आ जाइए।
11: सिस्टमैटिक फेलियर, पेपर लीक, कोचिंग सेंटर्स में आग लगना, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी अभी तक ये ब्लेम गेम क्यों खेला जा रहा है? क्या हम लोग सीधे पॉइंट पे आके बात कर सकते हैं कि कोर फ्लॉ है किधर?
12: मेरा सवाल ऑपोजिशन से ये है कि आपका कहना है कि बीजेपी धर्म की सत्ता खेलती है, लेकिन बाबरी मस्जिद को आप सपोर्ट करते हैं, मदरसों को फंडिंग आप देते हैं, लेकिन जब बीजेपी हिंदुओं की बात करती है तो अचानक से वो

0: उनकी सत्ता कैसे खेलने लगी।
1: ठीक है आप आ जाइए,
2: एक आखिरी सवाल यहाँ से फिर जाओ माइक में।
3: मेरा सवाल ये है कि योगी जी ने तुरंत जैसे ही ये सारा चीजें हुई SIT की बैठक बैठाई और जो भी चीजें थी उस पर गिरफ्तारी करी गई और सारे ही चीजें चल रही है और आगे भी जो भी होगा वो होता रहेगा, लेकिन आप अभी जब इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप इस मुद्दे को लेके क्यों एकदम राम मंदिर, जब राम मंदिर के लिए भी कोर्ट में जब ये चीजें चल रही थी तब तो आप लोग बिल्कुल शांत थे, तब तो आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे।
1: और यहाँ दिन दिन का हिसाब लिया जा रहा है, अतुल जी आप ही से शुरू करते हैं जो, और अच्छी बात भी है 15 दिन हुई और SIT ने और टाइम मांगा है। केरल में अब आपकी सरकार है, एक दो महीना तो हो ही गया है, 4 किलो सोना सबरीमाला मंदिर से चोरी होने का और हाई कोर्ट ने यह बात कहकर नामजद किया है लोगों को, तो फिर अलग अलग मापदंड क्यों?
4: नहीं कोई अलग मापदंड नहीं है, यहां सीधा सीधा बचाते हुए दिखाई देता है। आप सवाल करो चोरी पे, सवाल होता है आप कौन हो, एंटी नेशनल हो। एक 12वीं क्लास का लड़का जो नीट पेपर लीक होता है उसके ऊपर सारा रिसर्च करके निकालता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, वो कोमा में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो जो अभी ये जो जेंजी का या युवाओं का जो सवाल है कि हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, फिर तो केदारनाथ में भी जो है वो सोना गायब हो गया है 250 किलो के आसपास, ये 2012 में भी चोरी हुई, कार सेवकों के 1400 करोड़ भी चोरी हो गए, 200 शिलाएं भी चोरी हो गई है, 50% जमीन जो है अयोध्या की वो जमीन सारी कौन किसने खा गए है, किसने लिए है, कौन अंसारी कौन पाठक है जिन्होंने 2 करोड़ की जमीन, दोनों ने मिलकर अंसारी और पाठक दोनों ने मिलकर 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 4 घंटे में 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेची है। ये सारे जो है ना ओपन एंड शट केसेस है, सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए।
1: सुधांशु जी अब इस बच्चे का सवाल जो प्रश्न पूछे वो देश विरोधी वो राष्ट्र विरोधी क्यों भाई?
5: बहुत अच्छा सवाल पूछा है, देश विरोधी राष्ट्र विरोधी कौन? हाफिज सईद ने अपने स्टेटमेंट में किस पार्टी को अच्छा बोला जाके चेक कर लीजिए,
4: छोड़ा किसने हाफिज सईद को?
5: वीडियो है
4: हाफिज सईद को छोड़ा किसने?
5: हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा बोला,
4: को छोड़ा किसने? पकड़ा हमने।
5: अब सुनिए, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, संसद पे हमले का मुख्य आरोपी अफजल गुरु हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से पप्पी झप्पी इनके नेता जाग कर रहे हैं। अब ये दर्शक अपने आप तय करें कौन नेशनल है कौन एंटी नेशनल है
1: और
5: कौन।
1: एक सेकंड आपको टोक रही हूं, पर कांग्रेस पर तो पूछ ही नहीं रहा, वो जनता पर।
5: अगर मैंने तो नाम किसी पार्टी का नहीं लिया, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने उड़ता तीर पकड़ के बता दिया कि ये कौन है, सारे देश को समझ में आ गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सुनिए
1: ब्लेंडिंग
5: आप सुनिए,
1: या फिर अन्य जो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं भाई, ये मंदिर जाते हैं लोग चढ़ावा देते हैं वहाँ चोरी हो जा रही है तो किसको पूछेंगे?
4: पाकिस्तान के बिना तो कुछ पूरा होता ही नहीं ना, पाकिस्तान का नाम नहीं आया था डिबेट में अब तक, इसलिए सुधांशु जी परेशान थे अब तक।
6: पाकिस्तान के लिए आपको
4: नहीं, आपसे आपको मोहब्बत इतनी लिया ही ना आप लोगों ने,
6: बिना पाकिस्तान के लिए प्रेम क्यों हो रहा है?
5: अच्छा सुनिए,
6: पाकिस्तान के लिए प्रेम क्यों?
4: चर्चा कर रहे हैं एक महीना से, चर्चा कर रही है पाकिस्तान से,
5: 117 लेटर लिखे गए ना लोगों ने शांति के कबूतर उड़ाने के लिए।
4: मैं बताता हूँ ना,
5: तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जनाब, वो दिन लद गए, हमारे लखनऊ में कहावत अमा मियां, वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे, अब शांति के कबूतर गए, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं, जाके बालाकोट में स्ट्राइक करके आते हैं, अब वो पाकिस्तान वाला दौर चला गया।
4: अच्छा अच्छा,
5: अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, एक मिनट, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये स्टेटमेंट किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस, तेलंगाना का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, बोलो हाँ या ना? आज मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन चला रहा है? 5 मिनिस्टर है मुस्लिम लीग के केरल में, कांग्रेस चला रही है, कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है। मैंने नहीं कहा, ये असम के नेता बद्रुद्दीन अजमल ने कहा, क्योंकि इनके 19 MLA में 18 मुस्लिम है, दिल्ली में इनके 7 कॉर्पोरेटर जीते उसमें 9 में 7 जो है वो मुस्लिम है, हमने नहीं कहा, बद्रुद्दीन अजमल ने कहा। फिर मैं यही कहना चाहता हूं भाई साहब, और मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, किसने कहा? आपके प्रधानमंत्री ने। तो हम हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान करते हैं,
1: ठीक है?
4: अभी सवाल यह है कि आप मुसलमानों को नागरिक समझते ही नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते हैं, सुनो ना, आप मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं,
5: कोई पॉइंट
4: मैं बीच में बोला करिएगा, मैं बीच में बोला नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते नहीं, आप उनको देश का नागरिक नहीं समझते, हम मुसलमानों को, हिंदू को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सबको टिकट देते, आप देते नहीं, आपका दोष है, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति बहती है। आप बताओ मुझे प्रदीप कुरलकर कौन है, ध्रुव अग्रवाल कौन है? ये सारे बीजेपी के लोग बैठ के रैना से लेके किसको टिकट दी थी सैफुल्ला को आपने, ये सारे के सारे देशद्रोही देश के सीक्रेट पाकिस्तान से बांट रहे हैं, और होसबले से लेकर राम माधव से लेकर एक महीने से पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, पानी तोड़ने की बात कर रहे हैं हम, अभी तक हमारा सिंदूर चालू है, फिर क्यों हो रहा है ये? ये सवाल जो खड़े होते हैं ना, ये केवल आपको राजनीति भाती है, क्योंकि आप पेपर लीक पे बात नहीं कर सकते। आप पेपर लीक पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसका जवाब आपको देना नहीं है। आपको इथेनॉल का जवाब आपको देना नहीं है, आपको बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है, आपको जिस तरह से आपने अभी आपको डिलिमिटेशन करना है, इसलिए पार्टियां तोड़ तोड़कर जनादेश को जो है ठुकरा कर, आप संविधान की बात करें ना, जनादेश को ठुकरा कर लोगों को ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का डर दिखाकर साथ में लाकर डिलिमिटेशन करके नॉर्थ साउथ करना चाहते हो, इतनी सारी बातें देशभक्ति सर्टिफिकेट भी खुद ले लेते हो।
0: देखिए, सनातन धर्म और राम जी के प्रति चिंता व्यक्त करने वाली कांग्रेस पार्टी से देश जानना चाहती है कि मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय गौ रक्षा के संदर्भ में आया, गौ की हत्या को निषेध किया गया
4: 14 साल की उम्र की गौ माता को चलता है क्या?
0: आप एडवोकेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण जोसेफ विजय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गौ हत्या को रोकने के वर्दिक्ट को चैलेंज किया है। किसने किया? मैडम सोनिया गांधी, इटली की बेटी के रिश्तेदार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने।
1: एक सेकंड, कहां से ये निकाला आपने?
0: निकल गया,
4: बताइए।
1: इस तरह की बात मत करिए रोहित जी।
0: ये लोग स्वदेशी चॉकलेट मेलोदी प्रदेश के प्रधानमंत्री को
4: देश के प्रधानमंत्री की बात मत करो, अभी और पोल खोलना शुरू कर दूंगा।
0: करवाइयां करता है और राहुल गांधी का मुद्दा शुरू कर दूंगा, देश के प्रधानमंत्री की बात करो जो गौ की हत्या को आप कर रहे हैं उसके पक्ष में ये बोलेंगे और देश मानेगा।
4: एक मिनट,
1: मैं इस बात का पूरे एक सेकंड खंडन करती हूँ रोहित जी। अब मैं माइक ले लूंगी, प्लीज। आप किसी भी नेता या नेत्री का इस तरह से आप अपमान, प्लीज वेट, आप अपमान मत करिए और इस तरह से रिश्ता मत निकालिए, ये बिल्कुल गलत है और आगे से इसको करने से आप बचिए। प्लीज टॉपिक पर रहिए, अगर आपकी दलील में दम होगा तो आपको दूसरे पर कीचड़ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट पे ही बात हो, फैक्ट पे।
5: इनको हमदर्दी, अतुल पाटिल जी महाराष्ट्र से हैं, 2024 में 48 लोकसभा महाराष्ट्र में कितने मुस्लिम को टिकट दिया था बताओ? महाविकास अघाड़ी ने कितने को दिया? एक नहीं दिया था।
4: सुनो
5: 48 में एक नहीं दिया। यहाँ के भाषण दे रहे, बताओ।
1: शादाब चौहान जी मुस्कुराने लगे।
5: अब मैं
4: अपने हिसाब से मत बताइए,
5: टन पे बोलिएगा,
4: अपने हिसाब से मत बताइए,
5: अपने हिसाब से नहीं,
4: अपने हिसाब से मत बताइए।
5: 10 होने चाहिए
4: महाराष्ट्र से इमरान प्रताप गढ़ी है, पता नहीं।
5: दूसरा बोलता हूँ, नीट और पेपर लीक पे जूनियर, सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुए? इनकी पार्टी के नेता
1: चुनाव सुनिए दिया था।
5: सचिन पायलट अजमेर से लेके जयपुर तक पद यात्रा निकाले, उन्होंने कहा इतने पेपर लीक हो रहे चाहे मेरे पैर के छाले फूट जाएं मगर मैं मानूंगा नहीं। 19 पेपर लीक हुए और उस पर मजाक बनाया अशोक गहलोत ने, मैं जादूगर हूं सब ठीक कर दूंगा। बताओ सचिन पायलट ने किसके खिलाफ यात्रा निकाली थी और आपने अपनी पार्टी के नेता पे ध्यान क्यों नहीं दिया? बताइए,
4: सुनिए।
1: सबसे ज्यादा पेपर
4: योगी एक तिहाई है, पूरी भाजपा इकाई में है। ये देखो
7: योगी एक तिहाई पूरी भाजपा,
4: पूरी एडवर्टाइज है आज की, ये होर्डिंग लगे है।
1: चलिए ठीक है,
4: आप सुनिए। हमारा
1: लोकसभा में टिकट नहीं दिया,
4: हमारा लोकसभा का
5: टिकट बताइए,
4: हमारा जो चुनाव हुआ लोकसभा का, वो हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना के साथ लड़ा। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस डिस्ट्रीब्यूशन में हम दे नहीं पाए, सच्चाई है, लेकिन हमने विधानसभा में दिया। तुमने कितना दिया?
5: धन्यवाद स्वीकार।
4: तुमने कितना दिया बताओ मुझे? हमने इमरान प्रताप गढ़ी हमारे यहां से
8: सुधांशु जी ने बात कही है, सुधांशु जी की बात से एक प्रतीत होता है कि उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर में जाता है और खूब चोरी कर ले वो राम भक्त, और जैसे हमसे सवाल पूछते हैं आपने गए तो आम द्रोही। मैं पूछता हूं जो रामद्रोही, इतने करोड़ों लोग जो नहीं गए मंदिर में वो सारे रामद्रोही हैं, और आप जो बैठ करके चोरी कर रहे हैं वो राम भक्त है। एक बात, दूसरी बात, आपका सवाल जो होता है ना बहुत ज्यादा हाँ ना में बहुत होता। आप बताओ उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ हाँ या ना? आप बताओ उत्तर प्रदेश में सीटीईटी का पेपर लीक हुआ हाँ या ना? बताओ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नीट का पेपर दो बार लीक हुआ?
1: लाइन का जवाब समय समाप्त हो गया, जल्दी से।
8: बताओ फायरमैन का, ऑपरेटर का उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ?
1: अगर इशू हो रहा है सरकारें आपकी हैं सुधांशु जी, इसको आप विपक्ष के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, तो सवाल जवाब लीजिए ना। अरे सर,
5: पेपर लीक के चेन के लिए नया सख्त कानून किसने बनाया?
9: धर्मेंद्र प्रधान
5: भारतीय जनता पार्टी ने, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना।
1: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जिस वक्त इतने की इजाजत देता है। आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि क्या खामनेई को मारने वाले ट्रंप अब उनके जनाजे को प्रोटेक्शन देंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि देश की सड़कों में ही पॉटहोल नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम में झोल है। इसके बाद आपको बताएंगे कि देश की न्याय प्रक्रिया में इंसाफ की डगर इतनी कठिन क्यों है। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या ई रिक्शा के बाद इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर्स भी हैक हो सकते हैं। रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।

0: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
3: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
2: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
4: वाँ वाँ वाँ वाँ।
2: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
5: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
11: पापा।
12: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
13: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
12: छक्का?
13: सब कैशलेस हो गया है।
12: हाँ,
14: ला भाई मेरा बैट।
15: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
14: चार्ज हुआ यार।
15: बैट किसका है?
16: टाटा AIG है तो भरोसा है।
17: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
20: We are over, Jimmy.
21: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
22: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
23: कुछ तो बात है इस दिल में।
24: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
25: हमने तब भी सवाल किया था।
26: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
25: हम आज भी सवाल करते हैं।
26: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
25: ऑपरेशन अग्नि,
26: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
25: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
27: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
28: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या? रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
29: Tuck, digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har sheher, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
4: हां ओ ला भाई मेरा बैट,
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: बिलो तो चार्ज हुआ यार।
6: ओ ला बैट किसका है?
7: टाटा एजी है तो भरोसा है।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
13: हमने तब भी सवाल किया था।
14: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
13: हम आज भी सवाल करते हैं।
14: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
13: ऑपरेशन अग्नि।
14: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
13: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार सिर्फ आज तक पर।
15: चुनावों में कथित धांधली पर इंडिया अलायंस ने अपना त्रुप का पत्ता चल दिया है। 8 जून को इंडिया अलायंस की मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा गया है जिसमें 24 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद के दस्तखत है। 28 जून की इस चिट्ठी में मुख्य चुनाव आयुक्त पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पक्षपात का आरोप है। चिट्ठी में लिखा गया है कि विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं। चिट्ठी में 2027 में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर न सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स बल्कि ईवीएम की भूमिका पर भी सवाल है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर संस्थाएं नाकाम होंगी तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाएगा, इसलिए इस पर अदालतों को विचार करना होगा। बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों की हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
16: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
15: अखिलेश यादव का ये बयान उन अटकलों के बाद आया है कि यूपी का चुनाव 2027 से पहले ही कराने की तैयारी बीजेपी ने की है। इन अटकलों की एक बड़ी वजह बीजेपी की सक्रियता है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के हमले के बावजूद योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं बल्कि 2017 से पहले के यूपी का हाल की तस्वीर भी खींच रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल में अपनी नई टीम गठित की है। यूपी बीजेपी के 19 उपाध्यक्षों में ओबीसी 8, क्षत्रिय 4, ब्राह्मण 3, वैश्य 2 और 2 दलित चेहरे हैं। बीजेपी कहीं से ये संकेत नहीं देना चाहती कि अगर यूपी में जल्दी चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी नहीं है। यूपी का चुनाव जहां विपक्ष के लिए एक चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में यूपी से लगा झटका ही बीजेपी पर भारी पड़ा था। आज तक ब्यूरो।

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी। दत्तात्रेय होसबले बोले, राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा। कांग्रेस का पलटवार, सिर्फ दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में आए कई विधायक और नेता। राजा वाड़िंग के पार्टी अध्यक्ष बने रहने से नाराजगी, अब खरगे से होगी बात। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान को भारत की दो टूक। कहा, हम अपने पुराने रुख पर कायम, आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से रोक जारी। इंस्टाग्राम विज्ञापन में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले में सरकार सख्त। आईटी मंत्रालय ने मेटा को किया तलब, मांगा जाएगा जवाब। चेतन हत्याकांड में आरोपी सिया और चेतन की 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। पुलिस ने जब्त किया सिया का दूसरा मोबाइल, कोड वर्ड में बात करते थे दोनों आरोपी। शो की शुरुआत राम मंदिर पर जारी घमासान के साथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खुलासे में या खेल में सबसे ज्यादा सियासत बड़े चेहरों को लेकर हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की माने तो एसआईटी चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं।
2: गोपाल राय करते हैं, साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं।
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब 1 महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
1: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है।
4: माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है।
5: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
1: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कल यूपी के दौरे पर निकलेंगे।
1: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना-बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है, उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं, जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने अंदरूनी कलह को खत्म करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, जहां दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक बगावत की तस्वीरें नजर आ रही हैं।
1: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर लगी यह भीड़ कांग्रेस में बगावत का नया चैप्टर खोल रही है, जहां हाल ही में जारी हुई लिस्ट और अमरिंदर सिंह राजा बडिंग के पार्टी चीफ बने रहने को लेकर नाराजगी जताई जा रही है।
6: कमेटी बना दी गई है और जो कांग्रेस हाईकमांड ने फैसला लिया है, चन्नी के घर इसलिए पहुंचे थे, कांग्रेस हाईकमांड ने जो फैसला लिया है उसमें जो लोगों का सेंटिमेंट ही कह रहे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। सो कांग्रेस के लिए जो 2027 से पहले मुश्किलें ज्यादा ही बढ़ गई हैं।
1: बैठक में एक कमेटी बनाई गई है जिसका हिस्सा चन्नी भी हैं। ये कमेटी दिल्ली में राहुल गांधी समेत आला कमान से मुलाकात करेगी।
7: एक एक जो वसनीक है वो ये महसूस करता है कि जो राजा वड़िंग की लीडरशिप है उसके नीचे कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती।
8: हम लोग जो जनता की आवाज है उसकी बात कर रहे हैं।
1: इस बीच बीजेपी पंजाब अध्यक्ष ढिल्लों ने चन्नी को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया है।
9: हमने किसी से बात नहीं की, जो हमारे पास आएगा हम सबका वेलकम करते हैं।
1: वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बगावत ने पंजाब की सत्ता को आम आदमी पार्टी के हाथों में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस की नाराजगी पंजाब में पार्टी के लिए नई मुश्किल ला सकती है। चंडीगढ़ से असीम बसी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अब सम्राट चौधरी के सहयोगी दल ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आज चिराग पासवान ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि इससे पहले जीतन राम मांझी भरत तिवारी एनकाउंटर को सही बता चुके हैं। ऐसे में चिराग और मांझी के बीच एक बार फिर एनकाउंटर को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है।
10: भरत तिवारी जी के साथ भक्षक बनने का काम किया। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उनकी बात को उचित मंच तक पहुंचाया जा सके, इस सोच के साथ आज मैंने परिवार से मुलाकात की है। उनकी तमाम बातों को हर उस मंच पर रखा जाएगा ताकि परिवार को न्याय मिले।
11: चिराग पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे। इस मामले में हमने बहुत पहले कर दिया है।
0: अब बात एक चौंकाने वाली खबर की। देश में ई रिक्शा को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हो रहा है, जहां एक ऐप के जरिए ई रिक्शा को बंद किया जा सकता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बनकर पहुंच जाते हैं।
1: कैसे
2: ये गाड़ी चालू खड़ी खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल, तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
1: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा लिया था।
3: कितने में चालू करवाई?
1: 150 रुपए ले गए थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही हैं।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन, और वो बंद हो जाती है। और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके, फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब बात पुणे मर्डर केस की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया ने केतन को क्यों मारा, क्यों सिया ने शादी से इनकार की बजाय केतन के कत्ल का प्लान बनाया, क्या सिया इसको लेकर पछतावा कर रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है? और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या न करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात बाजार की, कैसा है शेयर मार्केट का हाल और कहां तक पहुंचा सोने चांदी का भाव, आइए देखते हैं।
4: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 262 अंक मजबूत होकर 77,764 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 95 अंकों की तेजी रही और ये 24,271 के स्तर पर पहुंच गया। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए में भी आज तेजी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 95.21 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में भी आज तेजी का रुख रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,104 रुपए बढ़कर 1,46,107 रुपए पर पहुंच गई, जबकि चांदी प्रति किलो 4,505 रुपए की बढ़त के साथ 2,33,356 रुपए पर बंद हुई।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई का अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। भारत सरकार की तरफ से भी एक बड़ा डेलीगेशन ईरान पहुंच चुका है, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के चेहरे शामिल हैं। और इसी विशेष डेलीगेशन और भारत की दिग्गज हस्तियों के साथ आज तक की टीम भी सीधे तेहरान पहुंच चुकी है। ग्राउंड जीरो की हलचल देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में।
4: ईरान के सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
5: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
4: एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है।
6: راه علاج پیشرفت کشور قوی شدنه، باید قوی بشیم، قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه، باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنند.
4: तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुंचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: अब बात मौसम की, जहां पहली बारिश ने ही मुंबई में आफत ला दी है। बीएमसी के दावों की पोल खुल गई है। वहीं बारिश की वजह से मौत के बढ़ते आंकड़ों ने सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
4: ये देश के बिजनेस कैपिटल का हाल है, जहां पाइप फटकर फव्वारा हो गया है। सड़कों पर पेड़ गिर रहे हैं तो लोगों की जान जा रही है, तार गिर रहे हैं तो करंट से मौत हो रही है, अंडरपास डूबे हुए हैं, मैनहोल, गड्ढे सब मौत का इंतजार कर रहे हैं। अब तक सिस्टम की लापरवाही 6 लोगों की जान ले चुकी है। आज मुंबई से सटे मीरा भयंदर में प्रशासन की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई। नारियल के पेड़ के नीचे दबने से जो स्कूटी सवार घायल हुआ था उसकी मौत हो गई। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में इंतजामों के दावों की पोल खुल गई है।
7: काम कहीं ना कहीं मुंबई महानगर पालिका का भी जारी है, जिसकी वजह से इतनी कम बारिश में भी आप देख सकते हैं लगभग 1 फीट तक पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मुंबई के लिए और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, थाने, नवी मुंबई, रायगढ़, पालघर, इनके लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। तो वहीं जो महाराष्ट्र के सेंट्रल पार्ट्स हैं, खास करके जो घाट इलाके हैं, वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही प्रशासन द्वारा लोगों से भी अपील की गई है कि वो ऐसी जगहों पर ना जाएं, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड और फ्लडिंग का खतरा जो है वो बताया गया है।
4: वहीं पुणे में भी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुणे के लोनी कालभोर गांव में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से एक 2 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
3: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Koreans.
10: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
12: Skincare brand.
13: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
14: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
13: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
11: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
10: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और NSE का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह।
12: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
13: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
14: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
18: कुछ तो बात है इस दिल में।
19: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
18: कुछ तो बात है इस दिल में।
20: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
21: 1933। सरसों से सरसों।
22: वी आर ओवर जिमी।
23: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
24: पापा।
25: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
26: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
25: छक्का?
26: सब कैशलेस हो गया है।
25: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
26: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
25: डिस्चार्ज हुआ यार।
26: बैट किसका है?
27: टाटा AIG है तो भरोसा है।
28: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
29: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
30: In association with
31: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
30: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
32: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
33: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से, जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
34: अल्फा।
35: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
36: हाँ, कहा था,
35: लेकिन ये तय कैसे होता है?
36: फ्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है।
35: तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाएंगे।
0: पहला भारतीय चैनल
35: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुंचते
1: हैं। मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
2: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं, जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
35: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
3: आज तक की खबर का असर हुआ है,
35: हर दिन कमाया जाता है।
0: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
35: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
0: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
4: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।
5: नमः पार्वती पिता।
6: अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। आज से अगले 57 दिन ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे। 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के पवित्र गुफा तक पहुंचने की उम्मीद है। प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन को लेकर भक्तों में खास उत्साह है। कठिन चढ़ाई के बावजूद शिव भक्तों का विश्वास अटूट है और हर कदम बाबा के आशीर्वाद की ओर बढ़ रहा है। बाबा अमरनाथ के यात्रा मार्ग पर जगह जगह सेवा कैंप भी लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं।
7: जितने भी बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं, उनके साथ जो है आज तक की टीम भी इस रास्ते से सीधे डोमेल तक पहुंच चुका हूं। करीब 2.5 किलोमीटर जो है वो बालटाल का जो बेस कैंप है वहां से पड़ता है, इस लोकेशन तक पहुंचे हुए हैं। और यहां पर RFID की चेकिंग होती है, उसके बाद ही जिनका RFID और रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हीं को आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा के अगर इंतजामों की बात करें तो पूरे रास्ते, जम्मू से जब ये पूरी रास्ता जो यात्रा शुरू होती है उस दौरान वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें लगाई गई हैं। यहां जो ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ हैं, यहां पर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में कोई भी चूक यहां पर नहीं होती।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

आज विशेष में बात बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की। आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत सारे श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत खास है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस बार 57 दिनों का समय मिला है। अभी तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज तक की कई टीमें यात्रा में मौजूद हैं। ये देखिए खास रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही हैं।
1: जयकारा वीर बजरंगे,
2: हर हर महादेव।
1: जयकारा वीर बजरंगे,
2: हर हर महादेव।
1: बम बम भोले।
0: आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके हैं।
3: हम पार्वती पदे हर हर महादेव।
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
4: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं। लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में यह पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहां यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
4: तस्वीरों में जो आप यहां पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: नैनीताल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब जो कि नियम होते हैं, दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं, सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहाँ से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है। इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा, और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पाल की कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा, आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: अमरनाथ यात्रा पर हर साल की तरह इस बार भी बड़ा खतरा है, आतंकी हमलों की आशंका के बीच, ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए यात्रियों की सुरक्षा बनाए रखना बड़ी चुनौती है। सीआरपीएफ, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे यात्रा मार्ग की सुरक्षा में तैनात है। असल में ये यात्रा 2 मार्गों से होती है, पहला पहलगाम का रास्ता और दूसरा बालटाल से सीधे पवित्र गुफा। इन दोनों ही रूट्स पर सुरक्षा कड़ी है, पूरी रिपोर्ट देखिए।
0: भोले की फौज पूरे उत्साह के साथ बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रही है, लेकिन अमरनाथ यात्रा पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए भी नंबर वन टारगेट रहती है, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान के साथ चल रहा ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है। इसीलिए इस बार यात्रा की सुरक्षा और ज्यादा सख्त कर दी गई है। आतंकी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इस बार यात्रा मार्ग को अवैध सुरक्षा कवच से घेर दिया है। नेशनल हाईवे 44 से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी है। सीआरपीएफ, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस सूर्योदय से पहले हाईवे पर तैनात हो जाती है। यात्रियों का काफिला निकलने से पहले पूरे मार्ग की गहन तलाशी ली जाती है। देखा जाता है कि किसी प्रकार की कोई संदिग्ध या आतंकी गतिविधि तो नहीं है। रोड ओपनिंग पार्टी 4 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह सैनिटाइज करती है।
6: सुरक्षा की पूरी तैयारियां बालटाल बेस कैंप पर भी कर ली गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। तस्वीरों में आपको तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम सीआरपीएफ के द्वारा किए गए हैं उसको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड टीम भी मौजूद है। जो भी रास्ते हैं इन तमाम रास्तों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है।
7: सिक्योरिटी का हर व्यवस्था किया गया, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ इस कैंप की कैपेसिटी 20 से 25 हजार के लोग यहाँ रह सकते हैं जी।
6: इसके साथ ही सुरक्षा जो लोग आ रहे हैं, थ्रेट परसेप्शन किस तरीके का है और क्या तैयारियां हैं डोमेल और इसके ऊपर जो गुफा तक के लिए पूरा रास्ता जाता है।
7: देखिए, जितने भी पैरामिलिट्री है जेएनके पुलिस के साथ मिलकर हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। सिक्योरिटी का काफी रिव्यू किया गया है। जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे यहाँ बालटाल कैंप में, उनको RFID दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालटाल सबसे बड़ा बेस कैंप है, अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा बेस कैंप है। वहां आएंगे उनको RFID दिया जाएगा और डोमेल के पास उनको चेक करके, यहाँ कैंप में भी जो आएंगे हर आदमी का फ्रिस्किंग चेकिंग होता है, RFID का चेक होता है, आदमी का जो होता है सामान का चेक करते हैं हम लोग। इसके अलावा CCTV कैमरा लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ है। हमारे लोग हर तरह के सिविल ड्रेस में भी, वर्दी में भी, तो इस तरह से सुरक्षा का पूरा पुख्ता गोदाम है। और जेएनके पुलिस के साथ CRPF पूरा सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
0: महिला यात्रियों की सुविधा के लिए CRPF की महिला कमांडोज भी तैनात हैं। ये न सिर्फ सुरक्षा देख रही हैं, बल्कि इन कमांडोज की एक मे आई हेल्प यू टीम बनाई गई है, जिसमें ज्यादातर भाषाएं बोलने वाले लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से आए श्रद्धालुओं की मदद करते हैं।
8: हमारे टीम में मीन्स अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं कि उनके हेल्प कर सकते हैं, कि जैसा साउथ से हो या नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, उनकी हेल्प मीन्स लैंग्वेज जो हमारी टीम बनी हुई है उन लोग लैंग्वेज जानते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
0: बालटाल एक प्रमुख बेस कैंप है। इन्हीं तैयारियों में तो प्रशासन को महीनों का वक्त लगता है। यहाँ पर बहुत बड़ी टेंट सिटी तैयार की गई है, हर तरफ टेंट ही टेंट है। प्रशासन का दावा है कि यहाँ एक वक्त में 20 से 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु एक साथ रुक सकते हैं। यहाँ से ये श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ते हैं और वापसी में यहीं रुकते हैं।
6: बाबा बर्फानी की गुफा के लिए यात्रा की शुरुआत बालटाल बेस कैंप से होती है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर यहाँ बालटाल बेस पर मौजूद है। तस्वीरों में आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कितनी बड़ी टेंट सिटी यहाँ पर तैयार की गई है। आप देखिए, यहाँ से सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो आगे रास्ता डोमेल की तरफ जाता है, पूरा यहाँ से लेकर के वहां तक पूरा एक बड़ा भव्य टेंट सिटी तैयार किया गया है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से। साथ ही जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तमाम लोगों की तरफ से ये व्यवस्था दी गई है कि जो यहाँ पर बाबा बर्फानी के श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इसलिए यहाँ ठहरने की उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप पूरा सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा इस घाटी में एक शहर जैसा बसा हुआ है, जहां पर 10 से 15 हजार लोग एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर दी गई है। किसी भी तरीके से अगर कोई बीमार होता है, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ी जो इलाके हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यही रास्ता जो है वो सीधे पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाता है, जहां से लोग या तो पैदल यात्रा करते हैं या खच्चर के जरिए यहां से यात्रा करते हैं। क्योंकि इस बार भी हेलीकॉप्टर सेवा यहां पर नहीं दी गई है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं है।
5: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें
2: जिंदल स्टेनलेस इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों से सरसों। वी आर ओवर जिमी।
10: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
12: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
13: पीओजेके में शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर के कथित अवैध शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आंदोलन के 24वें दिन पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तीखे आरोप सामने आए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का कथित अवैध कब्जा हटने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच आंदोलनकारियों ने खुलासा किया कि कश्मीरियों को हथियार खुद पाकिस्तान सेना ने दिए थे और आज मौलाना मुनीर की जिहादी सेना उन्हें आतंकवादी कह रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल रावलकोट में जैश ए मोहम्मद के एक कार्यक्रम को स्थानीय प्रशासन ने अनुमति दी थी और सुरक्षा भी उपलब्ध कराई थी, जहां हथियार बंद लोग खुलेआम मार्च कर रहे थे।
14: अगर आगे बढ़ना पड़ा आगे बढ़ेंगे, 38 मुतालबा पे नहीं बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे। और मुतालबा क्या है? रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, रियासत खाली करो।
13: आंदोलनकारियों ने इस्लामाबाद को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी 38 मांगों पर बातचीत कर उन्हें लागू नहीं किया गया तो हजारों लोग मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह मार्च हुआ तो आंदोलन का केंद्र सिर्फ 38 मांगे नहीं बल्कि पाकिस्तान से पीओजे के खाली करने की मांग भी होगी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है
2: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें
1: जिंदल स्टेनलेस इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
5: सोच बदलो और बैंक भी
6: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है
7: कुछ तो बात है इस दिल में
8: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए
9: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. Aap apna dekh lo.
12: मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर
13: इस मामले में
12: इसी मामले में और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा कुछ तो है नहीं लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है गोपाल राव भी है ये सब जितने हैं
13: ये
12: हाँ अनिल मिश्रा हैं तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए जेल नहीं जा पा रहे हैं अब हो सकता आगे जाएं अभी
14: संसद का मॉनसून सत्र इस बार भी हंगामेदार होने वाला है क्योंकि मोदी सरकार एक बार फिर सदन में वो बिल पेश करने जा रही है जिस पर पिछली बार बवाल मच गया था सूत्रों के मुताबिक 130वें संविधान संशोधन बिल पर बनी जेपीसी इससे जुड़े प्रावधानों को हटाने के पक्ष में नहीं है माना जा रहा है कि 17 जुलाई को समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए पद पर नहीं रह सकता पीएम सीएम या मंत्री की गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेनी होगी अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा बाद में पीएम सीएम या मंत्री को जमानत मिली तो वे अपने पद पर वापस आ सकते हैं अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए जाने पर ही जनप्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता था मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है पिछले मॉनसून सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े 3 विधेयक संसद के दोनों सदनों में रखे थे लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पर सहमति बनी थी विपक्ष का कहना है कि अगर ये बिल पास होते हैं तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा सकता है अगर ऐसा हुआ तो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का खतरा पैदा होगा सरकार का तर्क है कि इससे सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ेगी गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाला व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहे ये लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ है हिमांशु मिश्रा दिल्ली आज तक

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: राम मंदिर में चढ़ावा मामले पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय होस बोले बोले, राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा, कांग्रेस का पलटवार, सिर्फ दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज, पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में आए कई विधायक और नेता, राजा वाडिंग के पार्टी अध्यक्ष बने रहने से नाराजगी, अब खड़गे से होगी बात। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक, एल नीनो की वजह से देश के कुछ इलाकों में कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर समीक्षा। केतन हत्याकांड में आरोपी सिया और चेतन की 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत, पुलिस ने जब्त किया सिया का दूसरा मोबाइल, कोडवर्ड में बात करते थे दोनों आरोपी। तेहरान में अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, मौके पर आज तक भी मौजूद, पल पल की जानकारी।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच, in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। अयोध्या चढ़ावा विवाद में संघ का बयान पहली बार आया है। 3 दिन बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होना है। पुलिस आरोपी को रिमांड में लेकर जांच कर रही है। सियासत में पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत की चिंगारी उठने लगी है और मानसून की दस्तक भर से सड़कों पर सरकारी गड्ढों की पोल खतरनाक रूप से खुलने लगी है। इन सब खबरों के बीच आज सबसे पहले आपको मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी खबर का 5वां हिस्सा बताएंगे। सोमवार से लगातार हम आपको अलग अलग खबर देते आए हैं। आज जानेंगे कि क्या बड़े नौकरशाह अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं, क्योंकि पीएम का भरोसा योग्य नौकरशाहों पर रहा है। वो मानते हैं कि ब्यूरोक्रेट हो या टेक्नोक्रेट, ये योजनाओं को पूरा करने में तेजी लाते हैं, नीतियों के जनता के असर तक को समझते हैं। ऐसे में 2014 से अब तक का विश्लेषण करने के बाद आज आप भी देखिए मोदी मंत्रिमंडल में नौकरशाही से क्या बड़े चेहरे जगह बना सकते हैं।
1: क्या नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में फिर किसी भरोसेमंद नौकरशाह को जगह मिलने वाली है?
2: क्या हम हमारे देश के ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में चीज नहीं भर सकते हैं कि आपकी हर चीज की प्रायोरिटी ये रहेगी कि आखिरी गरीब से गरीब आदमी की भलाई में इसमें क्या रहा है तुम्हारे निर्णय में, तुम्हारी पॉलिसी में?
1: क्या मोदी 3.0 के विस्तार में प्रधानमंत्री का विश्वसनीय नौकरशाह पर ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला फिर आजमाया जाएगा?
3: सिविल सर्विस को एनेबलर बनाना होगा, सिर्फ रूल बुक के कीपर के रूप में ही नहीं बल्कि ग्रोथ के फैसिलिटेटर के रूप में अपना विस्तार करना होगा।
1: क्या अनुभवी टेक्नोक्रेट की डायरेक्ट एंट्री मोदी मंत्रिमंडल में हो सकती है?
4: एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है।
1: नरेंद्र मोदी को गुजरात से लेकर दिल्ली तक 25 साल लगातार जिम्मेदारी निभाते हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को करीब से जानने वाले ये बात बताते हैं कि नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने से पहले नरेंद्र मोदी अनुभवी नौकरशाहों, उस क्षेत्र के जानकारों, एक्सपर्ट से किस तरह गहन जानकारी जुटाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स और अलग अलग फील्ड में जानकारियों के, महारथियों के अनुभवों का इस्तेमाल सरकार को कैसे करना चाहिए, इसके बारे में प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले इंडिया टुडे के मंच पर नरेंद्र मोदी बता चुके हैं।
2: अंग्रेजों के जमाने में ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट क्या था, अंग्रेजों के जमाने में सरकारी मुलाजिम का काम क्या था, ब्रिटिश सल्तनत को खुश रखना, ब्रिटिश सल्तनत के हितों के लिए काम करना था, और तब वहां की गवर्नमेंट मशीनरी जो काम करती थी उस समय के लिए ठीक था। लेकिन वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री, हम एक स्वतंत्र भारत है, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, तो हमें किसके लिए काम करना, हमें चुनी हुई सरकारों के लिए काम नहीं करना है, हमें जनता जनार्दन के लिए काम करना है। मित्रों, ये कहने की हिम्मत मेरे में थी। और मेरे यहां मैं मुलाजिम को कहता हूं, तुम्हारा काम चुनी हुई सरकार की भलाई नहीं है, तुम्हारा काम जनता जनार्दन का है।
1: 2013 में कही बात को प्रधानमंत्री बनने के बाद अमल में नरेंद्र मोदी लाते हैं। जब पहली बार पीएम पद की शपथ लेते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में पूर्व गृह सचिव आर के सिंह, पूर्व राजदूत हरदीप सिंह पुरी, पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह, मुंबई के कमिश्नर रह चुके पूर्व आईपीएस सत्यपाल सिंह, पूर्व आईएएस केजे अल्फोंस, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री रहते पोलियो उन्मूलन के काम को मजबूती से चलाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन और ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल होते हैं।
5: पीएम मोदी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जमीनी राजनेताओं के साथ साथ पूर्व नौकरशाहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स की क्या उपयोगिता है, इस बात को भली भांति जानते हैं। इसीलिए राजनेताओं के साथ साथ पीएम मोदी ने पूर्व नौकरशाहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स को उनके अनुभव के आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल किया है या सरकार में अन्य बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं।
1: 2021 में जब मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो पूर्व आईएएस अश्विनी वैष्णव को सीधे रेल और संचार जैसा बड़ा मंत्रालय दिया गया। आरसीपी सिंह जो आईएएस रहे हैं उनको मौका दिया गया। इसके अलावा विश्वेश्वर टुडू जो ओडिशा के पूर्व वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर रहे उन्हें मंत्री बनाया गया। देवू सिंह चौहान जो ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व इंजीनियर है उन्हें संचार राज्य मंत्री बनाया गया। अभी मौजूदा 2024 की सरकार में तीसरे कार्यकाल में एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री बने तो हरदीप सिंह पुरी पूर्व आईएफएस पेट्रोलियम मंत्री बने। अश्विनी वैष्णव रेल सूचना प्रसारण आईटी मंत्रालय संभाल रहे हैं। कुल 7 नौकरशाह भी मंत्रिमंडल में, वकील की डिग्री वाले 13 मंत्री हैं, डॉक्टर 6, इंजीनियर 5, पीएचडी धारक 7, एमबीए डिग्री धारक 3। जबकि जो सांसद हैं इनकी शैक्षिक योग्यता देखें तो लोकसभा में बीजेपी के 5वीं पास 1, 8वीं पास 3, 10वीं पास 8, 12वीं पास 32, ग्रेजुएट 64, ग्रेजुएट प्रोफेशनल 40, पोस्ट ग्रेजुएट 69, डॉक्टरेट 15, डिप्लोमाधारी 8 हैं। राज्यसभा में बीजेपी के साक्षर 1, 5वीं पास 2, 8वीं पास 2, 10वीं पास 4, 12वीं पास 10, डिप्लोमा 2, डॉक्टरेट 16, पोस्ट ग्रेजुएट 32, ग्रेजुएट प्रोफेशनल 9 और ग्रेजुएट 29 सांसद हैं। प्रधानमंत्री लगातार अर्थव्यवस्था को गति देने, 2027 के विकसित भारत वाले रोडमैप, रिफॉर्म और परफॉर्म वाले मंत्र पर चलते आए हैं। इसी आधार पर यह चर्चा तेज है कि इस बार भी कुछ ऐसे विश्वस्त नौकरशाह या फिर एक्सपर्ट चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में सीट मिल सकती है जिन्होंने अपने कामकाज से पहले ही योग्यता साबित की है।
5: चौंकिया गया नहीं, इस बार भी कैबिनेट विस्तार में पूर्व नौकरशाहों और प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, क्योंकि राजनीति किसी के लिए भी अछूती नहीं है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
6: और अब आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहां एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा विवाद की तेज हो चुकी जांच है, दूसरी तरफ राजनीतिक आंच है। इन सब के बीच आज पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पूरे विवाद पर बयान जारी किया, कहा कि दोषी बचने नहीं पाए क्योंकि करोड़ों भक्तों का भरोसा बचाना जरूरी है। नागपुर में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछा गया कि कुछ लोग भगवान श्री राम में आस्था को कमजोर कर रहे हैं तो उन्होंने कहा राम राम। संघ की तरफ से आज आए पहले बयान के बाद अब सबकी नजर 6 जुलाई पर लगी है, जब राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है तो क्या चंपत राय अनिल मिश्रा पर कार्रवाई होगी?
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बयान आता है।
7: अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं।
1: संघ भी आहत है, संघ कहता है कि सजा जरूर मिले।
7: जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
1: अब सवाल सीधा सा, क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जांच के दायरे में आए? ट्रस्ट के 3 सबसे अहम किरदार पर मजबूत कार्रवाई होगी? जहां पहला बयान विनय कटियार का चर्चा में आता है, विनय कटियार दावा करते हैं प्रधानमंत्री से बात हुई है।
8: सीधी बात ये है, पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर,
9: इसी मामले में
8: उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं, लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं, अभी जबरदस्त खबर हुआ है।
1: हालांकि बाद में खबर आई, प्रधानमंत्री से विनय कटियार की फोन पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। पर कटियार ये बोलते रहे बड़े लोग अब बचेंगे नहीं।
9: इन सबके ऊपर गाज गिरने वाली है, गिर सकती नहीं है, गाज गिरने वाली है।
1: आज तक के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 जुलाई की तारीख अहम है, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। ट्रस्ट सूत्र कहते हैं महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा से लिखित मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट के नियम के अनुसार किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ स्पष्टीकरण लिए बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर बैठक में इस्तीफा स्वीकार करने या पद से हटाने का प्रस्ताव आता है तो उस पर ट्रस्ट के नियमों के अनुसार आवश्यक बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। अंतिम फैसला ट्रस्ट की निर्धारित प्रक्रिया पूरे होने और ट्रस्ट के बाकी सदस्यों की सहमति के बाद लिया जाएगा। तो क्या संघ से जुड़े इन बड़े चेहरों पर गाज गिरेगी?
6: चंपत राय को लेकर दो बातें चल रही हैं। पहली ये कि चंपत राय ने कुछ नहीं किया, बस जिन लोगों पर भरोसा किया वो टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा समेत 8 आरोपियों ने भरोसा तोड़कर चोरी की। लेकिन सवाल ये है कि क्या चंपत राय ने अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ा था? सवाल एक आरोपी अनुकल्प मिश्रा को लेकर पूछा जा रहा है।
1: चंपत राय ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या चंपत राय अपनी आंखें उन आरोपियों पर बंद रखते थे जो उनकी आंख के सामने चढ़ावे का चोरी का खेल करके हलते फूलते रहे? आपके मन में सवाल होगा कैसे, तो इस वीडियो को जरा आज आप ध्यान से समझिए। चंपत राय और बीजेपी के नेता एक कथा में पहुंचते हैं। ये वो राम कथा का मंच है जो अनुकल्प मिश्रा करवाता है, वो अनुकल्प मिश्रा जो चढ़ावा चोरी कांड में आरोपी है और गिरफ्तार है। खुद को सेवक अनुकल्प, सोशल मीडिया पर बताने वाला आरोपी अनुकल्प मिश्रा दावा है कि अपने घर पर अप्रैल के महीने में भव्य राम कथा का आयोजन करता है। दावा ये भी कि इस राम कथा आयोजन में 50 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आरोपी अनुकल्प मिश्रा की तरफ से आयोजित इस राम कथा में पहुंचने वाले चंपत राय और बीजेपी के नेता को रत्ती भर शक या सवाल मन में नहीं आया कि भाई 18 से 20 हजार रुपए पाने वाला अनुकल्प मिश्रा कैसे इतनी बड़ी राम कथा करा रहा है? क्या चंपत राय ने अनुकल्प मिश्रा से इस बारे में पूछा था? और अगर नहीं पूछा तो क्यों ना ये माना जाए कि चंपत राय अपनी आँख आरोपियों को लेकर बंद रखते थे?
10: राम जी स्वयं देख रहे हैं ना कौन ईमानदार है कौन चोर है, वो अपने आप ठीक कर देंगे। और उसमें किसी भी गलती होगी तो रामलाल दंड दे देंगे, शासन से मिला और रामलाल दंड देंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा।
6: अयोध्या में जांच तेज होती जा रही है। आज चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर अयोध्या पुलिस पहले योग केंद्र पहुंची, जहां याद करिए QR कोड वाला एक बक्सा मिला था। इसके बाद पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर हाईवे किनारे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर ऐसी जगह पहुंची जहां आरोप है कि अविनाश शुक्ला अपने दूसरे साथियों रमाशंकर मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के साथ चोरी की रकम का बंटवारा करता था।
11: और ये अविनाश शुक्ला, ये रेड जो टी शर्ट में है, ये वो आरोपी है जिसके पास से पुलिस को 20,39,000 से अधिक की रकम, सोने चांदी के जेवरात और करीब $1,100 मिले हैं। और अब इसकी बरामदगी के लिए 13 घंटे की PCR के लिए लाया गया है। और इसको PCR के लिए
12: फंसाया गया, क्या हुआ है अविनाश, कुछ बोलना है? अविनाश बोल दो, अविनाश कुछ बोलना है, क्या कहना है, कुछ कहना है तुमको?
11: ये अविनाश है जो मुंह बांध करके लाया गया और इसको अब पुलिस बरामदगी के लिए यहाँ लेकर जा रही है। ये उस योगाश्रम, ये जो केंद्र है श्याम साधनालय योग केंद्र है, यहाँ से पुलिस टीमें लेकर आई थी। ये अविनाश है, अविनाश शुक्ला, जो 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर था और इसको लेकर के अब पुलिस की टीमें यहाँ से रवाना हो रही है। अविनाश शुक्ला को लेकर SOG और अयोध्या पुलिस अब दूसरी जगह पर पहुंची है। ये दूसरी जगह है और जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। अविनाश शुक्ला को इस गाड़ी में बैठाया गया है, पहले योगाश्रम ले गई थी, फिर एक दूसरी जगह है, ये हाईवे के किनारे का इलाका है। योग केंद्र में करीब 15 मिनट की पड़ताल के बाद वो अविनाश शुक्ला को इस इलाके में लेकर आई थी। ये एक सुनसान इलाका है, हाईवे के किनारे का इलाका है, लखनऊ की तरफ जाने वाला ये मार्ग है और यहाँ पर लेकर आई थी। ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का क्षेत्र है, यह हाईवे से सटा हुआ लेकिन सुनसान है। और बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है हमारे पास, कि यहाँ पर अविनाश शुक्ला और वह तमाम अन्य आरोपी, चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो, रमाशंकर मिश्रा हो, ये तमाम आरोपी जो चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए, ये रकम जो आती थी उसका यहाँ पर बंटवारा करते थे। राम मंदिर से चढ़ावे की रकम का इस सुनसान इलाके में इकट्ठा होते थे और उसके बाद बंटवारा होता था। इसीलिए जो पुलिस है, जो टीमें हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो अविनाश शुक्ला को लेकर इस जगह पर पहुंचे थे और यहां से निशानदेही पर इस पूरे इलाके का नक्शा बनाने के बाद अब पुलिस की टीमें दूसरी जगह पर गई हैं।
6: क्या ट्रस्ट की मिलीभगत पूरे विवाद में रही है? क्या ट्रस्ट ने भाई भतीजावाद में ऐसे लोगों को बैंक के जरिए, राम मंदिर में एक एजेंसी के जरिए लगवा दिया जो सारे मिलकर आपस में चढ़ावा चुराने लगे? इस सच को समझने के लिए आज तक ने उस एजेंसी से बात की जिसके पास बैंक के जरिए ट्रस्ट की भर्ती वाली लिस्ट आती थी। भर्ती एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी फर्म के डायरेक्टर गौरव सिंह ने दावा किया कि उन्हें उसी को रखना होता था जिसका नाम लिस्ट में ट्रस्ट की तरफ से बैंक के जरिए आता था।
13: हमारा स्टेट बैंक जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे हमारा स्टेट बैंक का अनुबंध है हाउसकीपिंग का, हाउसकीपिंग स्टाफ हमने स्टेट बैंक में दिया हुआ है और जो सिक्योरिटी का काम है वो SIS का है। तो ये हाउसकीपिंग जैसे बैंक में होते हैं तो बैंक का ट्रस्ट के साथ टाइप है, तो हमारा टाइप बैंक से, तो हमने बैंक को स्टाफ दिया, ये बैंक ट्रस्ट के साथ वो अपना गिनती करना ये करना वो उस काम में उनको लगाएंगे।
14: ये जो स्टाफ का सिलेक्शन हुआ, स्टाफ का सिलेक्शन कैसे हुआ?
13: स्टाफ का ये वो मंदिर से ही लिस्ट मिली थी कि ये हमारे आदमी, उन्होंने बैंक को दिया, बैंक ने हमको दिया कि इनको इनको आप अपने उस पे रख लीजिए पेरोल पे।
14: तो ये ट्रस्ट की तरफ से आया था ये इनका?
13: ट्रस्ट की तरफ से बैंक नहीं, ट्रस्ट की तरफ से बैंक को और बैंक की तरफ से हमको,
14: तो
13: ट्रस्ट ने मुझे डायरेक्ट मेल दी।
14: तो वो आपके पास कोई उसका मेल ट्रेल या कोई कम्युनिकेशन का ट्रेल होगा ना आपके पास?
13: हाँ हाँ,
14: तो वो आप भेज सकते हैं आज तक को?
13: नहीं, वो जो भी चीजें वो SIT को दे दी गई हैं।
14: आपने दिया है SIT को?
13: जी जी जी जी।
14: तो वो मेल पे था, व्हाट्सएप पे था, कैसे आया था
13: वो पेपर? ऑन पेपर हमको रिटेन हुआ है कि 19 आदमी आप स्टेट बैंक में लगाने का।
15: गौरव जी, मेरा ये सवाल है कि वैसे
13: जी जी
15: नियम है क्या, मतलब जैसे आप अगर हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो आप तो अपने ही एम्प्लॉइज देते होंगे ना?
13: नहीं, हाउस कीपिंग जैसे कि जैसे हमारे 8-10 स्टेट में चल रहे हैं तो हर जगह तो हम ही भर्ती करते हैं सिंगल सिंगल ब्रांचों में, लेकिन वहाँ मंदिर की वो ब्रांच बड़ी थी तो इसलिए स्टेट बैंक ने हमसे 18-19 आदमियों की डिमांड की कि आप 18-19 आदमी इनको आप अपने एंड पे रख लीजिए।
15: जी, तो आपने आप रखते उसके उससे क्या हुआ कि वो लोग खुद ही आपको बोले कि भैया तुम ये लो, ये हमारे आदमी रख लो?
13: उनका हमको बायोडाटा मिल गया, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जितने भी तमाम जो KYC है हमारे फॉर्म पे उनको मिला, हमने उनके वही फिलअप हुआ, फिलअप करके ये हमारे उस पे आ गए, हम उनको मंथली सैलरी देते रहे।
6: इन्हीं आरोपों की पुष्टि राम जन्मभूमि मंदिर में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले शिवांग त्रिपाठी ने भी की, जो दावा करते हैं कि नौकरी पाने के लिए या तो ट्रस्ट के लोगों से जान पहचान जरूरी होती थी या रिश्वत प्राइवेट कंपनी वाले को देनी होती थी।
16: हम ये देख रहे थे जब वहाँ हम स्टाफ लाकर में भी ड्यूटी किए हैं, महोदय जी कैमरा, वहाँ कैमरा भी चलता था और बगल में SIS गार्ड मतलब गेट के बाहर बैठता था, उसका कोई चलती नहीं था। टोटल अगर SIS गार्ड कहता कि साहब चेक कराइए तो कोई चेक नहीं कराता था। वहाँ के धुरंधर भी धुरंधर थे, उन्होंने सीधे तौर पर वहाँ पे गुंडई की है। और अगर रोक मोबाइल था स्टाफ लॉकर में रखने के लिए, मोबाइल और जैसे पॉकेट मनी वगैरह हो गया तो ये लोग सब लेकर जाते थे। केवल वहाँ पे जो शोषित किया गया, जो जैसे कर्मचारी SIS हो गया, BBG हो गया, PSPS सिक्योरिटी हो गया, इन लोगों को शोषित किया गया, शोषण किया गया वहाँ पे,
17: इस तरह का शोषण किया गया।
16: जी
17: नहीं, मुझे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो चोरी वहां से हुई है, कैश की या ज्वेलरी की जो चढ़ावा राम जी को चढ़ा वहां पर, उस तरह का कुछ आपने देखा वहां पर अंदर?
16: महोदय जी वहां से हम देख रहे थे जैसे गाड़ी पे लद के जा रहा था, वहां के कुछ कर्मचारी 2-3 कर्मचारी गाड़ी पर लेकर जा रहे थे गाड़ी,
17: कैश ज्वेलरी क्या
16: जी?
17: कैश था, ज्वेलरी था, क्या था?
16: यहाँ वहां पर कैश है, वहां कैश का ही केवल वहां मायने गिना जाता था स्टाफ PFT।
17: मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने डोनेशन जहां काउंटिंग होती है वहां से कुछ लोगों को कैश ले जाते हुए देखा?
16: वहां हमने गिनते हुए देख, मतलब वहां पर गिनती होता था, उसी बगल में हम ड्यूटी कर रहे थे।
17: ठीक है, अभी इस तरह की बात सामने आई आप लोगों के अंदर खाने में कि जो है कहीं घपला चल रहा है, पैसे कोई चुरा रहा है वहां पर, इस तरह की बात?
16: महोदय जी, जब हमारी गाड़ी 28 दिसंबर को गायब हुई थी 2025 को,
17: हाँ,
16: तभी हमें लगा कि कैमरा खराब, हमने कई बार एप्लीकेशन थाने पर भी एप्लीकेशन दिया है और माननीय चंपत राव जी का मैंने पैर भी पकड़ा है। मैंने कहा आप कलयुग के राम है, कलयुग के हनुमान है, प्रभु हमारा कुछ कल्याण करिए, गरीब आदमी है, लाकर सेवा में ड्यूटी कर रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा।
6: संघ कहता है कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ सियासी साजिश के तौर पर किया जाता रहा है, वहीं कांग्रेस संघ के बयान पर सवाल उठाती है।

0: चढ़ावा चोरी की खबरों से श्रद्धालुओं को निराशा हुई, भक्तों को आघात पहुंचा, आम लोगों को अब भी न्याय की उम्मीद है। लेकिन इस चोरी कांड में राजनीति को भरपूर संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि कम ही ऐसे चोरी घोटाले भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिलते हैं जिनमें सियासत को संघ VHP BJP पर एक साथ हमले का मौका मिला हो। यही वजह है कि यूपी में अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली में कांग्रेस तक और पूरब में ममता से लेकर पश्चिम में उद्धव ठाकरे तक अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड को लेकर राजनीतिक मोर्चेबंदी कर चुके हैं। पार्टी में टूट और गठबंधन में फूट के किस्सों से परेशान उद्धव ने अपनी सियासत की रक्षा से आगे राम रक्षा आंदोलन करने का आह्वान कर डाला।
1: दादर में आने वाले रविवार को 5 तारीख है, लगभग दोपहर के 4 बजे के आसपास मारुति का मंदिर है जहां पहले कबूतर खाना हुआ करता था, वहीं पर एक हनुमान मंदिर है, वहां हम सब सारे इकट्ठा आएंगे। राम रक्षा हनुमान स्तोत्र और राम हनुमान चालीसा हम वहां सबके साथ बोले।
0: वैसे महाराष्ट्र की सड़कों पर सियासत के हनुमान चालीसा अक्सर शनिवार को हुआ करती थी, लेकिन इस बार उद्धव ने रविवार को राम नाम की राजनीति करने का ऐलान किया। सवाल ये था कि जब चोरी अयोध्या में हुई तो चालीसा महाराष्ट्र में पढ़ने का क्या फायदा।
1: एक एक मजाक की बात मैंने की, क्योंकि कल ही मैंने सुना कि अमित शाह भी खुद गए ने, ऐसे किसी ने कहा है। तो बात छोड़ो, मैं तो दो बार और हमारे साथी जो है संजय राउत जी, आदित्य वगैरह, हमारे सब साथी वहाँ 2-4 बार गए हुए हैं। मैं तो खुद चीफ मिनिस्टर बनने के पहले भी गया था और उसी वक्त मैंने नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। तो हमारे लिए मंदिर का महत्व ये है, सरकार बाद में, मंदिर पहले।
0: अयोध्या में चोरी पर महाराष्ट्र के लोगों को उद्धव क्यों जागरूक करना चाहते हैं, इसका मर्म उद्धव के अगले बयान से समझ में आता है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के दान लूट को विधायकों सांसदों की लूट के बराबर का पाप माना है।
1: आज परत एक राम मंदिर जय ऑपरेशन राम मंदिर भाजपा पुरस्कृत चालू है। नहीं, मुझे तो डर इस बात का लग रहा है, इसलिए जो मैंने शब्द का प्रयोग किया है ऑपरेशन राम मंदिर, ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनका बाद में सरकार किया जाएगा और वो कहीं पर राज्यपाल और कहीं पर वो मंत्री वगैरह बना दिए जाएंगे। तो जो भी चोर है उनको तो सजा होनी चाहिए।
0: महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन जैसी जागरूकता उद्धव फैला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वैसी जागरूकता फैलाने के लिए न तो कांग्रेस आगे आ रही न समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने कह दिया कि राम मंदिर दर्शन नहीं करने का तंज किसी ने किया तो वो चंदा मांग लेंगे।
2: जो भगवान या हमारे ऊपर ये कई बार सवाल करते हैं उनसे हम एक पर्ची छपा के रखेंगे कि भाई आपसे चंदा चाहिए हमें, और जब हमारा मंदिर का उद्घाटन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें आपको निमंत्रण भेजेंगे।
0: अखिलेश आंदोलन भले न करें, लेकिन अयोध्या से काशी तक अब चढ़ावा चोरी के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। अयोध्या का भांडा क्या फूटा, काशी में भी चढ़ावा चोरी का संदेह बढ़ गया। अयोध्या में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ नामजद मुकदमा करने की मांग करने वाले वकील समुदाय की तरह ही वाराणसी में भी वकीलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर बोर्ड ऑफ ट्रस्ट और चढ़ावे से जुड़े सवाल उठाए हैं। हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब 1 महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी और राम भक्तों को संयम बरतते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों से सतर्क रहने की अपील की,
3: तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
0: मतलब ये कि राम मंदिर के लिए आंदोलन करें साधु संत, सेहरा बांधे VHP, लाठी गोली खाए कार सेवक, वोट बटोरे BJP, फैसला करे अदालत, शेर लूटे सरकार, मंदिर बनाए राम भक्त, ट्रस्ट बैठाए सरकार, चोरी करें चोर, नाकाम रहे मैनेजमेंट और साजिश सब राष्ट्रद्रोहियों की, कुछ ऐसी ही दलील बागेश्वर धाम वाले महंत भी देते।
4: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
0: भक्त श्रद्धालु तो सावधान हो जाएंगे, लेकिन चढ़ावा चोरी ना जाए इसके लिए ट्रस्ट सावधान कब होगा ये कोई नहीं बताता।
5: इस मामले में एक और बड़ी खबर, 13 घंटे की पुलिस रिमांड में आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक सफेद रंग की कार बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये कार अविनाश के भाई के नाम पर है जिसे चोरी की रकम से खरीदा गया।
6: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में जहां एक तरफ पूछताछ की गई उसको योग केंद्र से लेकर 14 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग तक लेकर जाया गया जहां पर ये सारे चढ़ावा चोरी के आरोपी मिलकर पैसों की बंदरबांट करते थे। वहीं दूसरी तरफ अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद हुई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये विटारा ब्रीजा कार है, ये बरामदगी हुई है। ये कार है जो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के नाम पर दर्ज है और ये गाड़ी आपको दिखाते हैं, ये विटारा फोर्थ इसका ओनर है, यानी कि पुरानी गाड़ी है, सेकंड हैंड खरीदी गई। और ये गाड़ी का आप पीछे से नंबर प्लेट नहीं दिख रहे लेकिन आगे से हम आपको नंबर प्लेट भी दिखाते हैं। ये नंबर प्लेट है इसकी, ये कैमरा पर्सन दीप दिखा रहे हैं, UP42AP6054। ये गाड़ी है जो बरामद हुई है उस अविनाश शुक्ला से, जिसके पास से पुलिस ने सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा कैश बरामद किया था, 20,39,000 से अधिक का कैश बरामद किया था। और अब जब 13 घंटे की PCR की गई तो इस PCR में यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला से यह गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार आज तक।
5: अब बात सड़क के उन गड्ढों की जिनमें जनता को गिराने वालों को आज हम खबरदार करने जा रहे हैं। भारत में मॉनसून और सड़कों के गड्ढों का रिश्ता बेहद गहरा और खतरनाक है। हर साल बारिश के दौरान सड़कों के घटिया निर्माण के कारण सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे जानलेवा बन जाते हैं। इस बार भी कहानी अलग नहीं।
0: भारत की सड़कों को दुनिया खूनी सड़कों के नाम से क्यों जानती है उसका एक ये छोटा सा उदाहरण है। पिछले 10 साल में 15 लाख भारतीय सड़क हादसों में दम तोड़ चुके हैं जिसमें सड़क के गड्ढों का सबसे बड़ा हाथ। गुजरात के जूनागढ़ के आजाद चौक पर प्रशासन की लापरवाही राहगीर पर भारी पड़ी। बाइक सवार खुले गटर में सिर के बल गिर जाता है जिससे उसके सिर हाथ और पैर में गहरी चोट आती। गुजरात का जूनागढ़ इस वक्त वायरल, इसकी वजह गिर के शेर नहीं बल्कि सड़क के वो गड्ढे जो किसी ब्लैक कॉमेडी से कम नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसे समझने के लिए इस सड़क को देखिए। ये गुजरात के जूनागढ़ का ओघड़ नगर इलाका है जहाँ एक ही गड्ढे में अलग अलग समय पर 4 लोग गिरते हैं। CCTV में आ रही तारीख 1 जुलाई, वक्त दोपहर का 2:47। यहाँ पर एक राहगीर का पैर सड़क के गड्ढे में जाकर फंसता है, वो गिर जाता है। इसके 4 मिनट बाद एक स्कूटी सवार आता है, वो उसी गड्ढे में जा गिरता है। अभी लोगों ने इस राहगीर की स्कूटी खड़ी ही की थी कि एक महिला अपने बच्चे के साथ इसी गड्ढे में जा गिरी। अब आगे देखिए, 4-5 मिनट के अंदर में जो 4 लोग एक ही गड्ढे में गिरकर चोटिल हुए उन सबको एक ही आदमी ने उठाया, यानी पीड़ित अनेक, उन्हें बचाने वाला मददगार एक। हर शहर में प्रशासन बारिश से पहले हर साल गड्ढों को भरने, नालियों को साफ करने का टेंडर जारी करता है, ठेके दिए जाते हैं, लेकिन जनता की कमाई हर साल मानो पानी में बहा दी जा रही है और टैक्स देने वाला गड्ढे में गिर जाता है। सरकारी विभागों की तरफ से सड़क खोदी जाती है लेकिन हर बार वो अपने किए गड्ढे भरना भूल जाते हैं। ये जानते हुए भी कि बारिश में गड्ढा किसी को नहीं दिखेगा और लोगों को चोट लगेगी, जानलेवा बन सकता है गड्ढा। सरकारी सिस्टम की ये ब्लैक कॉमेडी हर साल इसी तरह मानसून में रिलीज होती आ रही। जूनागढ़ के बाद आपको गिर सोमनाथ के प्रभास पाटन ले चलते जहां गुरुवार को एक ऑटो रिक्शा खुले नाली में गिर जाता है। भारी बारिश से प्रभास पाटन के गुलाब नगर में सड़क पानी से डूब गई जिसमें तिपहिया रिक्शा ड्राइवर खुली नाली में गिर गया, राहगीरों ने समय रहते उसे बचाया। इससे पहले इसी इलाके में सुबह सड़क धंसने से बने गड्ढे में साइकिल सवार 2 बच्चे समेत गिर गया। साइकिल सवार जिस तरह से पैदल चल रहा था उसे भी प्रशासन के गड्ढों का अंदाजा था, लेकिन सरकारी लापरवाही उसकी उम्मीद से ज्यादा गहरी निकली और वो बच्चों समेत गड्ढे में जा गिरता है। इसी इलाके में शाम को खुली नाली बारिश के पानी में छिप गई और ऑटो रिक्शा चालक की जान पर बनाई। गुजरात के वडोदरा में भी सड़कों का बुरा हाल, सड़क धंसने से यहाँ बड़ा गड्ढा हो जाता है। वडोदरा के नवायड इलाके में लालपुरा गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर ये सब हुआ। मुख्य मार्ग पर ही इतना बड़ा गड्ढा होने की वजह से पूरे इलाके में यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है। अब दुनिया में अपने हीरों के लिए मशहूर सूरत को देखिए, जिसकी सूरत को बिगाड़ने में बारिश को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ निर्माणाधीन सड़क में गाड़ी जा फंसती, सड़क की मरम्मत के दौरान कच्ची सड़क पर गाड़ी फंस गई। प्रशासन ने अपनी गलती और

0: यहाँ के मुख्य मार्ग से गुजर रही एक सरकारी रोडवेज बस के नीचे की चलती सड़क अचानक धस जाती है। सड़क धसने के कारण एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसमें बस का एक हिस्सा फंस जाता है। गुजरात की तरह यूपी का भी हाल। मुजफ्फरनगर में बरसात के बीच अचानक से चलती सड़क में 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। सीजन की पहली बरसात और 30 साल पुरानी सीवर पाइपलाइन लीकेज होने के चलते यह हादसा हुआ। गनीमत बस ये रही कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश में राहगीर अपनी जान की परवाह खुद ही करें, सरकार या सरकारी व्यवस्था उनकी रक्षा नहीं कर सकते।
1: यूरोप में जब 40 डिग्री तापमान पर सड़कें पिघलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एक बार लगा कि 45 डिग्री में भी न पिघलने वाली भारत की सड़कें मजबूत हैं। लेकिन देशवासियों के इस विचार को बारिश ने गलत साबित कर दिया। आम सड़कें छोड़िए, देश भर में बने हजारों करोड़ के हाईवे की असलियत बारिश में सामने आ गई।
0: चांद पर गड्ढे अगर उल्का पिंडों के टकराने से बने तो भारत की सड़कों पर भ्रष्टाचार की चोट से कोई कह सकता है कि यह सूरत डिंडोली इलाके की मुख्य सड़क है, जहां सड़क के बीचों बीच पहली ही बारिश में प्रशासन के दावे जमीन में गड्ढा खोदकर समा गए। भ्रष्टाचार और लापरवाही का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सड़क चंद दिनों पहले ही बनकर तैयार हुई लेकिन बारिश अचानक बीच से धस गई। सुबह सुबह लोग जब यहाँ से गुजरे हैरान रह गए, क्योंकि रात को जब वो यहाँ से गुजरे तब सब कुछ ठीक था, सुबह देखा गड्ढा नजर आया। पूछताछ की, पता चला इस सड़क से एक भारी भरकम पानी का टैंकर गुजरा जिसका भार सहने से सड़क ने इनकार कर दिया, गड्ढा गहरा बन गया। गनीमत रही सब कुछ दिन के वक्त हुआ, वरना रात में गड्ढे बनते तो गाड़ियां इसमें गिर सकती थी। अब ये तस्वीर देखिए जो किसी छत की नहीं बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बने गड्ढे की है, जिसमें सरिया ही बचा दिखता है, सीमेंट गायब है। अंकलेश्वर के पिलुदरा गांव के पास पुल पर 7 से 8 फीट बड़ा गड्ढा होने से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। हाईवे पर हवा में उड़ने वाली गाड़ियां डर के मारे रेंगने लगी। जिसने भी इस हाईवे की हालत देखी, बारिश में कंक्रीट का स्लैब टूट जाने से उसके अंदर से निकलते लोहे की सरिया को देखा वो सहम गया, क्योंकि आप ही सोचिए अगर समय रहते इस गड्ढे का लोगों को पता न चलता कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। एक्सप्रेसवे का ये सेक्शन 8 महीने पहले शुरू किया गया, पहली बारिश में गड्ढा और स्लैब टूटने की गंभीर स्थिति सामने आई। बारिश ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी बुरा हाल कर दिया, जिसे देखकर लोग सोच में पड़ गए, क्या ये वही एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन 2 महीने पहले हुआ। सोशल मीडिया पर कई जगहों से सड़क धंसने, गड्ढे बनने, दरारें आने के वीडियो वायरल होने लगे। इसकी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब यहाँ पहुंची तो कई जगह हमें कई बड़े गड्ढे दिखे, कहीं उन गड्ढों से सरिया तक नजर आने लगा। सड़कों पर आई चौड़ी दरारों को छिपाने और जोड़ने के लिए उनमें लोहे की पिन लगाई जा रही है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह कि ओवरब्रिज में लगे गाटर के वेल्डिंग तक टूट चुके हैं और उसी के ऊपर से गाड़ियां पूरी रफ्तार में गुजर रही। हालांकि कुछ जगहों पर मेंटेनेंस का काम चलता हुआ जरूर मिला।
2: 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कहें अगर 12,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, यानी कि 2.5 महीने ही बीते हैं और कुछ ही बरसात में अब इस एक्सप्रेसवे की जो कमियां हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं। हाल ही में इस एक्सप्रेसवे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यानी कि बागपत से शामली के बीच कुछ गड्ढे जो हैं इस हाईवे के बीच में नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़े है और उनकी वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है।
0: 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाईवे की हालत इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। जिस हाईवे से दिल्ली से देहरादून 2 से 2.5 घंटे की दूरी पर पहुंचा जा सकता है, वहां बारिश में ऐसा गड्ढा हुआ, गाड़ियों के अलावा व्हील टेढ़े होने लगे, जिसने राहगीरों की जान जोखिम में पड़ गई। अब बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के मात्र 2 महीने बाद ही 12,000 करोड़ के हाईवे की सड़क को पैचवर्क और रिपेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ने लगी।
1: कहीं सड़क पर गड्ढे, कहीं बेकाबू रफ्तार, एक

बड़ा खतरा रोड रेज का भी। मामूली सी बात पर सड़क पर जान खतरे में पड़ना आम बात हो गई है। पुणे के हिंजवड़ी इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां छोटा सा विवाद हिट एंड रन की घटना में बदल गया। देखिए, गाड़ी सवार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारकर गिरा दिया। इस घटना में बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया, वहीं गाड़ी का ड्राइवर वहां से फरार हो गया।

0: और अब बात कांग्रेस पार्टी की, क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या जिस तरह बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बगावत की, वही कहानी अब कांग्रेस की पंजाब इकाई में दोहराई जाने वाली है? राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मरिंदर सिंह राजा वडिंग को बरकरार रखा, इसके खिलाफ चरणजीत सिंह चन्नी ने बगावती सुर अपना लिए। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अचानक अमित शाह से मुलाकात करके पंजाब कांग्रेस में टूट की अटकलों को हवा दे दी।
1: जो आपने चिट्ठी निकाली है इसे कोई खुश नहीं है, वर्कर ये सर, वर्कर ये चाहते हैं चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया जाए प्रेसिडेंट। सर कट ऑफ होके करा सर वर्कर से, तो वो हाईकमांड को यही बताने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं।
2: पंजाब में चुनाव 8 महीने दूर है, उससे पहले कांग्रेस में महाभारत शुरू हो गई। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को कांग्रेस में प्रदेश की कमान सौंपे जाने के खिलाफ चरणजीत सिंह चन्नी ने मोर्चा खोल दिया।
3: बहुत पसंद फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही डिस्कस्टेड है। देखो बच्चे बच्चे दे मुंह ते सी चन्नी साहब नु क्या बनाया जावे, नहीं बनाया तो वो जूसी तो हुंदी है ना सारे।
4: चरणजीत चन्नी को हम अपना कांग्रेस पार्टी में मतलब सब ये चाह रहे हैं भी उनकी अगुवाई के हेठ इलेक्शन लड़ा जाए। नहीं नहीं देखो अगुवाई के अंदर इलेक्शन लड़ा जाए, जो भी जिस लोग जिसको लोग मानते हो।
2: चन्नी के समर्थक खुलेआम राहुल गांधी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपना फैसला बदलेंगे?
5: चन्नी साहब को पावर्स दे दी कि आप जाके हाईकमांड से बात करो।
6: कितनी उनका कमेटी बनाई गई है? कुछ
5: कोई कमेटी नहीं बनाई गई, उनको खेलों को पावर्स दी गई है कि आप एक बार बात करो। कांग्रेस में सब ने रहना है, वाहेगुरु कहना है, कांग्रेस पार्टी हमारी है,
6: ठीक है। लेकिन लेकिन
5: गल होएगी,
6: मेजर कंसर्न क्या है सर?
5: वो बताएंगे कि पंजाब के लोगों की क्या भावना है, पंजाब के लोगों की भावनाएं।
2: सवाल सिर्फ चन्नी के शक्ति प्रदर्शन का नहीं, सवाल पंजाब कांग्रेस में टीएमसी की तरह एक और टूट की अटकलों से जुड़ा है। इसकी वजह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, जिन्होंने नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करके कांग्रेस में टूट की आशंका बढ़ा दी। लेकिन पहले बात चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ति प्रदर्शन की, जिन्होंने खुद को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने के बाद अपने घर पर 3 विधायकों समेत 50 पार्टी नेताओं को फोन करके घर पर मीटिंग के लिए बुला लिया।
7: चरणजीत चन्नी ने टेलीफोन किए सी
8: कुछ नहीं कहना, मैंने कॉल की, उन्होंने बुलाया, मैं उस जा रहा।
2: चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी की वजह अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चन्नी के घर पर आए नेताओं, पूर्व मंत्रियों, 5 मौजूदा विधायकों और कई पूर्व विधायक ने एक सुर में कहा कि अगर कांग्रेस को अगला चुनाव जीतना है तो फिर चन्नी के हाथ में कमान देनी होगी।
9: लिस्ट जारी की थी, इसमें प्रधान जो है राजा वड़िंग को रखा था, लेकिन कैंपेन कमेटी का इंचार्ज जो है चरणजीत चन्नी को लगा था। चन्नी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आज मुरिंडा में आप देख सकते हैं चरणजीत चन्नी का घर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें कई फॉर्मर एमएलएस भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और उनके सपोर्टर्स भी यहाँ पर हैं। और क्या डिसीजन होता है ये अलग बात है, लेकिन चन्नी जो है वो कल से जो है चुप है, जब से लिस्ट आई है। तो
2: इन बागी तेवरों के साथ जब चन्नी के घर बैठक खत्म हुई तो ये बताया गया कि राजा वडिंग के अध्यक्ष बनने से पंजाब कांग्रेस में नाखुशी है और राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद चन्नी खुद इस मामले को उठाएंगे।
9: चरणजीत चन्नी के घर बड़ी मीटिंग चल रही है जहां पर कांग्रेस लीडर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं राणा गुरजीत जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। राणा गुरजीत क्योंकि ऑलरेडी कई मिनिस्टर्स जो हैं फॉर्मर मिनिस्टर्स यहां पहुंच चुके हैं, भरत भूषण आशू यहां पहुंच चुके हैं, गुरप्रीत कांगड़ हैं, तृप्त जिंदर बाजवा हैं और अब राणा गुरजीत जो कि बड़ा चेहरा है कांग्रेस के वो भी पहुंचे हैं। कांग्रेस
2: चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मेरे घर पर मुझसे मुलाकात कर आग्रह किया कि मैं पंजाब की जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को हाईकमान के सामने रखूं। साल 2022 में नवजोत सिंह सिद्धू को लगता था कि उन्हें पार्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे, इसके बावजूद तब पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया, खुद राहुल गांधी ने इसका ऐलान किया था।
10: पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी।
2: साल 2022 में कांग्रेस को लगा दलित जाति से आने वाले चन्नी को सीएम पद का प्रत्याशी बनाने से पार्टी को फायदा होगा, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस सिद्धू की नाराजगी दूर नहीं कर पाए, जिसका नतीजा हार के रूप में देखने को मिला। दिलचस्प बात यह कि साल 2022 में सिद्धू सीएम पद का उम्मीदवार कांग्रेस से बनना चाहते थे तो उन्हें पार्टी ने प्रदेश चुनाव समिति का चेयरमैन बनाया अब जब चन्नी प्रदेश अध्यक्ष रहते चुनाव में उतरकर अपनी सीएम उम्मीदवारी को पुख्ता करना चाहते हैं, तब उन्हें पंजाब में प्रचार की कमान दे दी गई। मतलब साल 2022 की कहानी दोहराई जा रही है। अब सवाल है कि 2022 के चुनाव में जिस अंदरूनी लड़ाई का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला, क्या इस बार भी कांग्रेस के लिए वैसा ही संकट होगा? कांग्रेस की मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं, एक तरफ पार्टी में अंदरूनी झगड़ा है तो वहीं पार्टी के बड़े नेता और सांसद अमित शाह से मुलाकात कर नया संकेत दे रहे हैं।
11: जिस काम के लिए आया हूं वो करिए। अमित शाह से
12: मुलाकात करी, कई अटकलें लगाई जा रही है सर, कई अटकलें लगाई जा रही है।
13: वो लगाते रहे, उनसे पूछिए।
11: आपके सामने मेरे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं।
12: मुलाकात किस रेफरेंस में हुई?
11: किसकी?
12: अमित शाह से किस रेफरेंस
11: जी? आपको मैंने पहले भी बताया था जी, लेटर कौन सा रेफरेंस है।
14: यही हम तो उनका नहीं, हम तो सबका वेलकम करते हैं, हमारी पार्टी सबका वेलकम करती है।
2: तो बीजेपी कह रही है कि सबका वेलकम है, वहीं पंजाब कांग्रेस के सांसद अमित शाह से मुलाकात की वजह सीमा पार से चलाई जा रही गतिविधियों को लेकर मंथन को कहते हैं। लेकिन जब पंजाब में चुनाव कुछ महीने दूर, जब नई सियासी रणनीतियां बनाई जाने लगी, तब अचानक एक सांसद का अमित शाह से मिलना, ये सवाल जरूर पैदा करता है क्या पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टूट हो सकती है, जिसमें पहले से घमासान मचा हुआ है।
0: राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान एटीएस के इनपुट पर पुलिस ने बशीर नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में उसका संबंध पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी से होने का दावा किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन गतिविधियां, सब कुछ जांच के दायरे में है। बशीर पहले गुजरात में काम करता था, कुछ महीने पहले ही अपने गांव लौटा था।

और अब डेंगू से खबरदार। डेंगू एक बीमारी, एक ऐसी स्वास्थ्य चुनौती जो साल भर हमारे सामने खड़ी नजर आने लगी है। डेंगू मच्छरों से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मच्छर कोई साधारण मच्छर नहीं होते। डेंगू का संक्रमण एडीज इजिप्टियस मच्छर के काटने से फैलता है। यही मच्छर डेंगू वायरस को एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसकी खास बात यह है कि ये गंदे नहीं बल्कि साफ और रुके हुए पानी में पनपता है। कूलर, गमले, खुले में रखे कंटेनर, बाल्टी, पानी की टंकी, पुराने टायर या घर के आसपास कहीं भी जमा थोड़ा सा पानी भी इसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है। लेकिन सिर्फ पानी खाली करना ही काफी नहीं है, उस कंटेनर को रगड़कर साफ करना भी जरूरी है, क्योंकि इस मच्छर के अंडे बिना पानी के भी महीनों तक जीवित रह सकते हैं और दोबारा पानी मिलते ही पनप सकते हैं। एडीज मच्छर ज्यादातर सुबह और शाम के समय सक्रिय रहता है, इसीलिए सिर्फ रात में मच्छरों से बचाव काफी नहीं है बल्कि पूरे दिन सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, एडीज मच्छर को पनपने से रोकना ही डेंगू को रोकने की सबसे मजबूत शुरुआत है। आइए एक साथ ये ठान लें कि हम साथ लड़ेंगे डेंगू से। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
2: How they looked after game one.
3: I mean, they were frustrated.
1: The Daily.
4: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
4: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
3: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
7: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है।
11: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
12: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
13: समझ कर, इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: आगे आगे,
16: अरे उधर
15: उधर, करेक्ट करेक्ट।
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
19: गहरी सफाई।
18: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
19: गहरी खुशबू
18: और प्यार भरी भी।
19: कैसे?
18: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
20: इसीलिए फेना ही लेना।
21: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
22: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
23: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
24: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
25: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
26: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
27: माँ भी हमेशा P-Mark मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
28: कुछ तो बात है इस दिल में।
29: P-Mark द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
3: I have no idea how this election is going to play out,
2: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: आगे आगे
5: अरे उधर
4: उधर किधर
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा
7: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
9: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
8: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.
10: जिमी हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा आप अपना देख लो
11: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी
12: कुछ तो बात है इस दिल में
13: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933
14: हमने तब भी सवाल किया था
15: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है
14: हम आज भी सवाल करते हैं
15: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं
14: ऑपरेशन अग्नि
15: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे
14: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई खबरदार सिर्फ आज तक पर
0: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
16: चुनावों में कथित धांधली पर इंडिया अलायंस ने अपना त्रुप का पत्ता चल दिया है 8 जून को इंडिया अलायंस की मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा गया है जिसमें 24 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद के दस्तखत हैं। 28 जून की इस चिट्ठी में मुख्य चुनाव आयुक्त पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पक्षपात का आरोप है चिट्ठी में लिखा गया है कि विधानसभा चुनावों के एन पहले SIR करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं चिट्ठी में 2027 में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर न सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स बल्कि ईवीएम की भूमिका पर भी सवाल है चिट्ठी में कहा गया है कि अगर संस्थाएं नाकाम होंगी तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाएगा इसलिए इस पर अदालतों को विचार करना होगा बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों की हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं
17: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे सितंबर में करा दें हम लोग तैयार हैं
16: अखिलेश यादव का ये बयान उन अटकलों के बाद आया है कि यूपी का चुनाव 2027 से पहले ही कराने की तैयारी बीजेपी ने की है। इन अटकलों की एक बड़ी वजह बीजेपी की सक्रियता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के हमले के बावजूद योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं बल्कि 2017 से पहले के यूपी का हाल की तस्वीर भी खींच रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल में अपनी नई टीम गठित की है। यूपी बीजेपी के 19 उपाध्यक्षों में ओबीसी 8, क्षत्रिय 4, ब्राह्मण 3, वैश्य 2 और 2 दलित चेहरे हैं। बीजेपी कहीं से ये संकेत नहीं देना चाहती कि अगर यूपी में जल्दी चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी नहीं है। यूपी का चुनाव जहां विपक्ष के लिए एक चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में यूपी से लगा झटका ही बीजेपी पर भारी पड़ा था। आज तक ब्यूरो

0: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि क्या ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने वाले ट्रंप अब उनके जनाजे को प्रोटेक्शन देंगे। 4 जुलाई यानी कल से ईरान में अली खामनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसे ईरान अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिबंधों के बावजूद तेहरान में दुनिया भर के नेता और 90 देशों के धार्मिक गुरुओं का जमावड़ा लगा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट अमेरिका का यू टर्न है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिस अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर खामनेई पर हमला किया, वही अमेरिका अब बैक चैनल के जरिए ईरान को इसराइल के संभावित हमलों से सतर्क रहने का अलर्ट भेज रहा है। इस बीच ईरान के सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को सख्त चेतावनी दी है। ईरान का यह डर बेवजह नहीं है। साल 2024 में राष्ट्रपति पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण के दौरान इसराइल ने तेहरान के अंदर घुसकर इस्माइल हानिये को मार दिया था। यानी मोसाद की डिक्शनरी में नो अटैक जोन जैसा कोई शब्द नहीं। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सच में इस जनाजे को सुरक्षा देना चाहता है। और इसके बाद देश की सड़कों की बात करें, जहां बारिश होते ही गड्ढे साफ नजर आने लगे हैं। आज आपको बताएंगे कि ये गड्ढे सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की संरचना में हो चुके हैं। पिछले 48 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां सड़कों पर गड्ढों का विकास बखूबी नजर आ रहा है। ये गड्ढे हर साल बनते हैं, हर साल इनकी मरम्मत होती है और ये गड्ढे फिर से प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद आपको देश की अदालतों से जुड़े उन 3 फैसलों के बारे में बताएंगे जो न्याय प्रक्रिया पर बहस छेड़ते हैं। कानून की किताबों में लिखा है कि न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है, लेकिन आज देश से 3 अलग अलग खबरें आई हैं जो ये बताती हैं कि बड़ी कठिन डगर है इंसाफ की। कहीं पुलिस की लापरवाही, कहीं कानून की पेचीदगियां, कहीं मौजूदा कानून का अड़चन। अब बीच सड़क पर चलते चलते ई रिक्शा बंद होने की खबर सुन ही चुके होंगे। आज आपको ये भी बताएंगे कि क्या ई रिक्शा की तरह जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं और स्कूटर्स हैं, क्या वो भी हैक हो सकते हैं। पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत में गड्ढे अब केवल सड़कों पर नहीं है, ये गड्ढे हमारे सिस्टम की संरचना में है। पिछले 48 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें गड्ढों का विकास बखूबी नजर आता है। हम इसे विकास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गड्ढे नए नहीं है, इनकी हर साल मरम्मत होती है। पुराने गड्ढे हैं, हर साल मरम्मत होती है, लेकिन फिर भी ये सदा के लिए सड़कों पर मौजूद रहते हैं। और इसीलिए आज हम आपको भारतीय सड़कों का वो राजनीतिक रिपोर्ट दिखाएंगे, वो रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे जिनमें गड्ढे भी हैं, उन गड्ढों में पैसा भी है। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए।

0: दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड खो चुकी हैं भाई यहीं पर।
1: मिर्जा गालिब का वो शेर आपने जरूर सुना होगा कि ऐ दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। लेकिन आज इन गड्ढों को देखकर हम इस शेर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, ऐ दिले नादा इन सड़कों को हुआ क्या है, आखिर इन गड्ढों की दवा क्या है। कहते हैं कि भारत में सड़कें सिर्फ बनती नहीं है, वो बस अगले मानसून के लिए तैयार की जाती है। और ये भी सच है कि देश में बारिश तो होती है, जैसे ही बारिश आती है वैसे ही सड़कें टूटने लगती हैं, जैसे ही बारिश जाती है वैसे ही मरम्मत के टेंडर्स निकल जाते हैं। यानी ये अब कोई नई बात नहीं है, हर साल का एक तय कार्यक्रम बन चुका है। और इसीलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि भारत में गड्ढों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे काम करती है और क्यों ये गड्ढे सड़कों पर सदा के लिए रहते हैं। मंदी के निपटने के लिए ब्रिटेन के मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने एक थ्योरी दी थी। कहा था उन्होंने कि अगर अर्थव्यवस्था में रोजगार कम हो तो सरकार लोगों को गड्ढे खोदने और फिर उन्हें वापस से भरने का काम दे सकती है ताकि लोगों को रोजगार मिले और पैसा बाजार में घूमे। अब यह विचार यूरोप के देशों में खूब चर्चित रहा, लेकिन भारत में इसका उल्टा होता है। यहां किसी को गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, हर साल बारिश आती है और बारिश आते ही गड्ढे अपने आप पैदा हो जाते हैं, फिर उन्हें भरने के नाम पर अच्छा खासा बजट खर्च होता है। उदाहरण के लिए मुंबई में गड्ढों की मरम्मत पर साल 1998 से 2022 के बीच जानते हैं कितना खर्च हुआ, 21,000 करोड़ रुपए। अब इतना पैसा खर्च हुआ तो गड्ढों की बीमारी थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 में इन्हीं गड्ढों की मरम्मत पर कितना खर्च हुआ, 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2025 में 150 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल भी 105 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और ये पैसा सरकार का नहीं है, ये पैसा आपका है जो इन गड्ढों की मरम्मत पर खर्च होता है। और ऐसा खर्च होता है कि ये गड्ढे मानसून की बारिश में फिर दिखने लगते हैं। तो गया हमारा पैसा गड्ढे में। और ऐसा नहीं है कि गड्ढों की ये अर्थव्यवस्था सिर्फ मुंबई में घूम रही है। दिल्ली में 2020-21 में इन्हीं गड्ढों पर 873 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 873 करोड़। लेकिन आज फिर से सरकार ने इनके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। बेंगलुरु में साल 2018 से 2022 के बीच 215 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज भी बेंगलुरु की सड़कों पर ये गड्ढे साफ साफ नजर आते हैं। और बेंगलुरु वालों से पूछिए, वो हैरान रहते हैं कि जिस शहर में वो सबसे ज्यादा विकास, तरक्की, बिजनेस एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज के लिए आते हैं, वहां पर ऐसी हालत है। अब इससे सवाल पैदा होता है कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद गड्ढे हर साल वापस कैसे आते हैं। इसका जवाब यह है कि हमारे देश में गड्ढों की समस्या सिर्फ इंजीनियरिंग की समस्या नहीं है, ये गड्ढे अब एक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि हर साल इनकी मरम्मत के लिए एक बजट मिलता है, फिर ठेके दिए जाते हैं, फिर ठेकेदार कम गुणवत्ता का काम करते हैं, फिर ऊपर से निगरानी भी कमजोर, अगले साल फिर वही सड़क टूटती है, फिर नया बजट, और ये चक्र ऐसे ही सदा के लिए घूमता रहता है। यानी समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय समस्या को बनाए रखना कुछ लोगों के आर्थिक हित में होता है, जिसे रेंट सीकिंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें पैसा घूमता है लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलता। ये भी तब होता है जब ये तमाम गड्ढे लाइलाज नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जैसी बड़ी संस्थाओं ने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई रिपोर्ट्स दी हैं, जिनमें यह बताया गया है कि इन गड्ढों को कैसे रोका जा सकता है। और इन्हीं में यह भी बताया गया है कि भारत में 82% सड़कें बाइटुमिन यानी तारकोल वाली सड़कें होती हैं, जिनके कारण ना तो सड़कें टिकती हैं और ना ही ये गड्ढे गायब होते हैं। लेकिन सोचिए, इन रिपोर्ट्स को देखने वाला कौन है? और अगर ये गड्ढे नहीं रहे तो फिर इनके नाम पर हर साल निकलने वाले टेंडर्स का क्या होगा? भारत में पिछले 10 सालों में इन गड्ढों के कारण 22,846 मौतें हुई, जिसका मतलब यह है कि हमारे देश में हर दिन औसतन 6 मौतें, हर 4 घंटे में कम से कम एक मौत का कारण ये गड्ढे होते हैं। लेकिन इन मौतों के बाद भी गड्ढों की ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था चलती रहती है और अब वो हर साल ये परंपरा सी बन गई है कि बारिश आई नहीं, सड़कों ने अपना असली रूप दिखाया, गड्ढे आए, टेंडर निकला, मरम्मत हुई, फिर अगले साल वही शुरू होता है। खैर, इस खबर से सबसे पहले हमने इसलिए शुरुआत की, इसलिए दिखाई क्योंकि इन गड्ढों से आपका जीवन प्रभावित होता है। और आपको याद होगा कि एक दिन पहले भी हमने आपको एनर्जी ड्रिंक से जुड़ी खबर दिखाई थी जिनके खिलाफ FSSAI ने नोटिस जारी किया। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो खबर दिखाई उसके बाद महाराष्ट्र में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग की जो बिक्री है उस पर रोक लगा दी गई है। और इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार ने खुद विधानसभा में दी। और यह इसलिए बड़ा है क्योंकि अब तक स्कूलों के आसपास शराब की बिक्री पर रोक लगी थी, लेकिन इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं, अब इन एनर्जी ड्रिंक्स को भी बच्चों और युवाओं के लिए खतरनाक मानकर अगर स्कूलों के आसपास बिक्री बंद होई जा रही है, की जा रही है, रोक लगाई जा रही है, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। तमाम सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स में स्टिंग की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। साल 2018 में रेडबुल की हिस्सेदारी पूरे भारतीय बाजार में 75% थी, जो आज सिर्फ 11.12% रह गई है, जबकि स्टिंग की भारत में एनर्जी ड्रिंक्स बाजार में 7% हिस्सेदारी थी, जो आज 89.53% हो गए, 89.53%। और सोचिए, FSSAI कह रहा है कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक है ही नहीं और हमारे देश में हर 10 में 9 ड्रिंक स्टिंग की बिक रही है, और ये बताकर बिक रही है कि ये एनर्जी ड्रिंक है हमारे बच्चों के लिए, ये ठीक नहीं है और इस कदम का हम स्वागत करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जिस अमेरिका के हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामेनेई की जान गई, वही अमेरिका आज उनके अंतिम विदाई कार्यक्रम को सुरक्षा देने की बात क्यों कर रहा है। ये बात सुनकर आज पूरी दुनिया हैरान है और इसलिए आज हम इसका एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामेनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम क्यों ईरान की अमेरिका और इसराइल पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकता है। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामेनेई के नमाज जनाजे और दफन करने की रस्में शुरू हो गई हैं। वहां दूसरे देशों के नेताओं ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 28 फरवरी के हमले के बाद आज पहली बार आयतल्ला खामेनेई के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। इसकी जो तस्वीरें आई उनमें पूरा तेहरान राष्ट्रीय शोक मनाते हुए नजर आ रहा है। देखिए,

अंतिम विदाई का यह कार्यक्रम आधिकारिक रूप से कल यानी 4 जुलाई को शुरू होगा, लेकिन उससे पहले तेहरान में आयोजित शोक समारोह में ईरान के तमाम शीर्ष नेताओं ने आयतुल्लाह खामेनेई को श्रद्धांजलि दी और इसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची, न्यायपालिका के प्रमुख गोलम हुसैन अजय और पहले सुप्रीम लीडर रोहल्ला खुमैनी के पोते हसन खुमैनी शामिल हुए और इस दौरान दुआ पढ़ते हुए सभी शीर्ष नेताओं की आंखें नम दिखी। उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को ईरान के लिए शहादत बताया है। देखिए

0: हम उनसे कभी अलग नहीं होंगे, वो हमारे दिलों, हमारी आत्मा और हम सबके अस्तित्व में हमेशा जिंदा रहेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हम सबके लिए, हमारे प्यारे ईरान के लिए और हमारी जनता के लिए, हम उनसे कभी जुदा नहीं हो सकते, हम हमेशा उनके साथ साथ एकजुट होकर रहेंगे।
1: आज तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, कुर्दिस्तान और तुर्की के उपराष्ट्रपति भी आयतुल्लाह खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और इनमें भारत का प्रतिनिधिमंडल और नेता भी ईरान पहुंच चुके हैं और उनकी भी ये तस्वीरें आई हैं, देखिए।

0: बड़ी बात यह है कि ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम के लिए सभी मस्जिदों दूसरे इलाकों को काले कपड़ों से ढका गया है और ऐसा वहां शोक जताने के लिए किया जाता है। ये भी देखिए,
1: तेहरान की हर सड़क पर इस तरीके की तैयारियां आपको नजर आ जाएंगी, जहां पर बड़े बड़े आपके जो चौराहों को कवर कर दिया गया पूरी तरीके से। जहां से भी लोग निकलेंगे, जहां से भी उनका पैसेज निकलेगा, जहां से भी लोग का मूवमेंट होगा, उन सब जगहों को इस तरीके से ब्लैक से कवर कर दिया गया। दरअसल ये एक तरीके की आप कह सकते हैं कि शिया कम्युनिटी के अंदर एक सॉलिडैरिटी या फिर एक आप कह सकते हैं उनके दर्द को झलकाता भी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि सुप्रीम लीडर के जाने के बाद ये एक तरीके की अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश ईरान कर रहा है कि देखिए हमारा जो रिजिम है वो कंसोलिडेट है, बहुत ताकतवर है। और सुप्रीम लीडर की कोई एक एक इंसान नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक आप कह सकते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति है।
2: Stores where people and shops where people also lost their loved ones. So if you see over here, preparations underway, the black cloth that has covered the entire space of this restaurant, and then not only have they placed Ayatollah Khamenei's photograph over here, if you see, they've also placed photographs of the loved ones who they lost during the war between US, Israel and Iran.
1: यहाँ की सड़कों पर इस तरीके के बैनर हर उस शहादत के हर शहीद के लगाए गए और सबसे के लिखा गया है कि आई एम स्टिल अलाइव, यानी मैं अभी भी जिंदा हूँ। लगातार यहाँ पोस्टर में लिखा गया है कि आई एम स्टिल अलाइव और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए वो तमाम शहीद जिन्होंने इस रिजिम को बचाने के लिए या फिर ईरानियन रेवोल्यूशन की सेफगार्ड करने के लिए अपनी शहादत दी है।
0: और अब ये देखिए कि क्यों आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम विदाई कार्यक्रम को ईरान की कूटनीतिक जीत माना जाएगा। अमेरिका और इसराइल लंबे समय से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं, कूटनीतिक दबाव बना रहे हैं और क्षेत्रीय अलगाव की नीति अपनाते रहे। यानी अब तक यही कोशिशें हुई कि ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग रहे और उसे वैश्विक समर्थन न मिले। लेकिन आज जब कई देशों के शीर्ष प्रतिनिधि तेहरान पहुंच रहे हैं तो ईरान ये संदेश देने में सामने आ रहा है कि वो वैश्विक स्तर पर पूरी तरह अलग थलग नहीं पड़ा है और इस युद्ध के बाद भी उसने दुनिया का विश्वास जीता है, यही संदेश ईरान देने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, 90 से अधिक देशों के धार्मिक नेताओं की मौजूदगी केवल एक अंतिम विदाई कार्यक्रम नहीं बल्कि ईरान की वैचारिक धार्मिक पहुंच का प्रदर्शन माना जा रहा है, मानी जा सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने बड़े धार्मिक जमावड़े से यह संदेश जाएगा कि ईरान की सॉफ्ट पावर धार्मिक प्रभाव युद्ध या प्रतिबंधों के बावजूद कायम है। तीसरा, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शोक समारोह केवल विदेश नीति का हिस्सा नहीं होते बल्कि घरेलू राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विदेशी नेताओं, धार्मिक नेताओं की मौजूदगी ईरानी जनता के सामने यह संदेश देगी कि देश का नेतृत्व वैश्विक सम्मान समर्थन प्राप्त करता है। यानी मौजूदा रिजीम के खिलाफ आम जनता में जो नाराजगी की बातें कही गई वो बातें इस राष्ट्रीय शोक से खारिज हो जाएंगी। और चौथा, जब अंतिम विदाई कार्यक्रम में 2 करोड़ शामिल होंगे तो ईरान का वैचारिक शक्ति प्रदर्शन होगा। इसके जरिए पूरी दुनिया ये देखेगी कि ईरान के आंतरिक मसले चाहे जो हो लेकिन पूरा देश इस्लामिक शासन को लेकर एकजुट है और यही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी, मौजूदा रिजीम की जीत। यहां समय के इस चक्र को भी देखिए कि जिस अमेरिका ने 28 फरवरी को इसराइल के साथ मिलकर आयतुल्लाह खामेनेई को मारा था, वही अमेरिका आज ये कह रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है और इसराइल के खिलाफ ईरान को सावधान रहने के लिए भी कह रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका और इसराइल के रिश्तों में इतना बड़ा शिफ्ट आएगा लेकिन ऐसा हुआ। और अब द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने लगातार ईरान को इसराइल के हमलों के खिलाफ चेतावनी भी दी है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस रिपोर्ट में द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि जब अप्रैल महीने में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर सहमति बनी तब इसराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ को मारना चाहता था। इसी में आगे यह भी लिखा है कि अमेरिका इसराइल के हमलों से इतना चिंतित था कि उसने खाड़ी देशों और पाकिस्तान के जरिए ईरान को यह अलर्ट भेजा कि वो अपने नेताओं की सुरक्षा बढ़ाए, इसराइल के हमलों से सतर्क रहे। ये डर अमेरिका को इसलिए भी था क्योंकि वो ईरान के बातचीत के लिए अली लारिजानी कमल खराजी को ज्यादा बेहतर मानता था। लेकिन इसराइल ने अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद ईरान के इन दोनों शीर्ष नेताओं को अपने हमलों में मार दिया। और फिर इसके बाद अमेरिका को शांति वार्ता के लिए विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और संसद अध्यक्ष गालिबाफ से संपर्क करना ही पड़ा। और अब भी अमेरिका की तरफ से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसराइल ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बना सकता है, जिस पर प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की सरकार ने अमेरिका और इसराइल दोनों को चेतावनी दी है। तो आइए आपको बताते हैं, ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि वो ईरान के दुश्मनों खासकर अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हैं कि वो कोई भी गलत आकलन ना करें और ये सोच लें कि ईरान के खिलाफ किसी भी खतरे या हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। और ईरान की इस धमकी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उसे इस बात की चिंता है कि इसराइल आयतल्ला खामेनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम को अपना निशाना बना सकता है। हालांकि इसराइल ने इस पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन यहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसराइल ईरान में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों में अपने टारगेट्स को निशाना बनाता रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का साल 2024 में हुआ शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें हमास की राजनीतिक इकाई के प्रमुख इस्माइल हानिये भी शामिल होने आए थे। और इस समारोह के अगले दिन तेहरान में इसराइल ने इस्माइल हानिये के कमरे में धमाका करके उनकी हत्या कर दी थी। और यह भी तब हुआ था जब इस समारोह में दुनिया के 70 देशों का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा हुआ था। फिर भी ये टारगेटेड किलिंग इसराइल ने सफलतापूर्वक कर ली। कहने का मतलब यह है कि दुनिया के नेता ईरान में आएंगे और ये सोचकर इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, तो ये बातें इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मुसाद की डिक्शनरी में नहीं है। कई लोग ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं, हालांकि वो ये भी मानते हैं कि ऐसे नाजुक वक्त पर ईरान से कोई भी दुश्मनी मोल लेना एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत फिर से बन सकता है। और इसीलिए ईरान इसराइल को खुलकर अब देखिए चेतावनी भी दे रहा है कि अमेरिका भी यही दिखा रहा है कि वो इस बार ईरान के साथ खड़ा है। खैर, इन तमाम आशंकाओं के बीच कल यानी 4 जुलाई से आयतल्ला खामेनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि इसमें 4 जुलाई को आयतल्ला खामेनेई के पार्थिव शरीर को ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में एक निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा, जहां आम लोग, समर्थक, श्रद्धालु पहुंचकर अंतिम विदाई देंगे, उनके लिए दुआ पढ़ेंगे। इसके बाद 5 जुलाई को नमाज जनाजा की रस्म पूरी होगी। 6 जुलाई को अंतिम यात्रा ईरान से निकलकर इराक के पवित्र शहरों कर्बला और नजफ तक जाएगी। 7 जुलाई को कर्बला के इमाम हुसैन श्राइन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 8 जुलाई को यह अंतिम यात्रा ईरान के मशहद शहर पहुंचेगी और 9 जुलाई को मशहद में आयतल्ला खामेनेई को दफनाया जाएगा। और इस पूरे अंतिम विदाई कार्यक्रम में 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा पूरे 57 दिनों तक चलेगी और ये 28 अगस्त को समाप्त होगी, जिसके लिए अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 670 से ज्यादा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी, जिनमें कुल 70,000 जवान शामिल हैं। इसे अमरनाथ यात्रा के इतिहास में सबसे बड़े सुरक्षा प्रबंधों में से एक माना जा रहा है। इन सुरक्षा बलों की तैनाती यात्रा मार्ग, जो पूरी यात्रा मार्ग है, बेस कैंप, संवेदनशील इलाकों, हाईवे, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों पर की गई है। हालांकि इस कड़ी सुरक्षा कवच के बीच बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह खूब दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको अदालतों से जुड़े उन 3 फैसलों के बारे में बताते हैं, जो न्याय और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक नई बहस छेड़ते हैं। इनमें पहला मामला इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का है, जिनकी हत्या का आरोप उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर लगा था। यह पिछले साल के सबसे चर्चित मामलों में से एक था, जिनमें मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी और उसके बॉयफ्रेंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन पिछले दिनों 27 अप्रैल को मेघालय की निचली अदालत से सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। जमानत का कारण ऐसा कि शायद आपके लिए भी इस पर यकीन करना मुश्किल हो। पुलिस ने इस मुकदमे में सोनम रघुवंशी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 403 लगाई, लेकिन अदालत में इस पर सुनवाई हुई तो जज ने पूछा कि धारा 403 का मतलब क्या होता है। यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में ऐसी कोई धारा ही है नहीं है। 403 कोई धारा है ही नहीं। बीएनएस में सभी अपराधों के लिए कुल मिलाकर 358 धाराओं का जिक्र किया गया है, लेकिन यहां पुलिस ने सोनम रघुवंशी पर धारा 403 लगा दी। जब धारा ही गलत थी तो सोनम रघुवंशी के वकील ने इसे अदालत में बड़ा मुद्दा बनाया और इस आधार पर सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। जब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो वहां भी हाईकोर्ट ने जमानत को बरकरार रखा। और आज जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मेघालय की पुलिस ने यह दलील दी कि सोनम रघुवंशी फरार हो सकती है और इस मुकदमे में सिर्फ गलत धारा लिखने के लिए उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से काफी हद तक सहमत दिखा। लेकिन यहां भी जब अदालत को यह पता चला कि सोनम रघुवंशी पहले ही जमानत पर बाहर आ चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार किया। यानी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दी, नहीं की, माफ कीजिएगा, यानी सोनम रघुवंशी की जो जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द नहीं की। जिससे दो सवाल सामने आ रहे हैं। पहला सवाल यह कि मेघालय पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की। दूसरा सवाल यह कि क्या मेघालय पुलिस की गलती के कारण राजा रघुवंशी को इंसाफ नहीं मिलेगा। राजा रघुवंशी की हत्या उसकी शादी के बाद तब हुई जब वो अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे। आज इस तरह का आक्रोश पुणे के केतन हत्याकांड को लेकर दिख रहा है, वैसा ही आक्रोश तब राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर भी देखा गया था। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस की एक गलती के कारण राजा रघुवंशी के लिए इंसाफ कानूनी दावपेच में फंस गया। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अगर पुलिस गलत धारा लिख देगी तो व्यक्ति अपने हनीमून पर मारा गया उसे भी इंसाफ में रोड़े आएंगे और जो आरोपी है उसको इतनी आसानी से बेल मिल जाएगी। दूसरा मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का है, जहां साल 2021 में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने नए फैसले में कहा है कि इस मामले में आरोपी पति की सजा को कम किया जा सकता है। वजह सुनिए, इसका कारण थोड़ा हैरान करने वाला है। कारण यह है कि हत्या से पहले पत्नी ने गुस्से में अपने पति से यह कहा था कि वो उसके जैसे 1000 पति रख सकती है, और इस बात पर उसके पति को गुस्सा आया, उसने उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। अब हाईकोर्ट का कहना यह है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से यह कहती है कि वो उसके जैसे 1000 पति रख सकती है तो यह बात गंभीर और अचानक उकसावे वाली है, और यह सुनकर कोई भी उकसावे में आ सकता है। अदालत ने शब्दशः यह कहा कि पत्नी की यह बात पति के आत्मसम्मान पर गंभीर चोट मानी जा सकती है और इससे उसका आत्मनियंत्रण अचानक खत्म हो सकता है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने पति द्वारा की गई इस हत्या को गैर इरादतन हत्या माना है और ये कहा है कि यह हमला पहले से योजना बनाकर नहीं किया गया। पति ने घटना के बाद खुद पुलिस और परिजनों को सूचना दी थी, और शिकायत पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया कि आरोपी ने बार बार अपनी पत्नी पर पत्थर से हमला किया था। इन तमाम आधारों पर अदालत ने इस अपराध को हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या माना, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले इस आरोपी पति को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन अब यह सजा 7 साल की हो गई है। अदालत ने हत्या को सही नहीं ठहराया, कहा कि पत्नी का ऐसा कहना कि वो 1000 पति रख सकती है गंभीर उकसावा था, और इसलिए कानून के अनुसार दोषी पति की सजा को कम किया गया। अब तीसरा मामला देखिए, वो दिल्ली का है। यहां भी न्याय और न्यायिक प्रक्रिया के बीच एक बड़ा फासला दिखता है। 25 जून को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक थार गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 34 साल के सार्थक मट्टू की मौत हो गई। यह मामला सिर्फ सड़क हादसे का नहीं था, यह मामला हिट एंड रन यानी दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने का भी था। पुलिस ने 27 जून को इस थार गाड़ी को चला रहे आरोपी अपूर्व सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आरोपी को अगले कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई। जब पीड़ित परिवार ने पुलिस से यह पूछा कि आरोपी को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिली, तो पुलिस ने कहा कि ऐसा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के कारण हुआ। इस धारा में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन 2024 में जब यह नया कानून आया तो देश भर के ट्रक और बस ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी। उनका कहना था कि दुर्घटनाएं हमेशा जानबूझकर नहीं होती और इसीलिए यह कानून बहुत सख्त है, बदलाव होना चाहिए। अब उस विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि इस धारा को अभी लागू नहीं किया जाएगा और इस पर आगे बातचीत होगी, क्योंकि 10 साल की सजा वाली सख्त धारा प्रभावी नहीं थी, इसीलिए इस मामले में पुलिस ने ऐसे प्रावधान लगाए जिनमें जमानत मिलना आसान है। पुलिस के मुताबिक ये मामला लागू कानूनों के तहत दर्ज किया गया था और अदालत ने उसी के अनुसार आरोपी को जमानत दे दी। लेकिन यहां उस माता पिता का दर्द समझिए जो आज ये पूछ रहे हैं कि क्या उनके बेटे को मारने वाले आरोपी यूं ही छूट जाएंगे, और अगर यूं ही छूट जाएंगे तो ये न्याय कहां होगा। सुनिए,
3: दिस इज मी एंड माय वाइफ, वी आर हाफ डेड, आवर ओनली चाइल्ड 33 ईयर ओल्ड सन वाज killed in hit and run case. They are roaming free while we are grieving. While my son, they left my son on the roadside to die. Well, these killers are out on the road roaming free. Pradhan Mantri ji, kahan? Maananiya Pradhan Mantri ji, kahan? Amit Shah ji, kahan? कमिश्नर साहब आप कहाँ हो, रेखा गुप्ता जी आप कहाँ हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरे बेटे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे शायद अकेले करना पड़े, अपने वाइफ के जेवर बेचूंगा, मकान बेचूंगा, आई वॉन्ट दोज किलर्स बिहाइंड द बार्स टू बी हैंग टू डेथ, नोबडी इज विद अस, नो अथॉरिटीज। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम कश्मीरी पंडित हैं, क्या मुझे आपको बोलना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी कि हमारे साथ क्या हुआ, मेरे माँ बाप मर गए, हमारा घर जला दिया गया, उनकी वो ये दुख सहन नहीं पाए, फिर भी हम आगे बढ़े, कुछ नहीं किया, और अब ये मेरा अकेला बच्चा माननीय प्रधानमंत्री जी, अकेला बेटा जो दो ड्रंकर्स एंगेजमेंट पार्टी के बाद निकले थे।

खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि पुणे के केतन हत्याकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश के आगरा से भी इसी तरह की घटना सामने आई है, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश में पुरुषों की उनकी पत्नियों द्वारा हत्या के मामले में क्या वाकई बढ़ोतरी हो रही है। नई घटना आगरा से है, जहां एक व्यक्ति के 45 दिनों तक लापता रहने की कहानी तब पलट गई जब पुलिस को उसका शव उसी के घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दबा मिला। पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है, 44 साल के थे, 18 मई से लापता थे। पिछले कई दिनों से परिवार के लोग उनकी तलाश में जुटे थे, जबकि उनकी पत्नी रूबी लगातार ये कहती रही कि सुरेंद्र कहीं चले गए हैं और जल्द लौट आएंगे। बाद में 26 मई को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हालांकि पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान कई बातें उसके लिए शक पैदा कर रही थी और इस दौरान लापता हुए व्यक्ति की पत्नी का व्यवहार भी संदिग्ध था, जिसके बाद पुलिस ने यह तय किया कि वो घर की तलाशी लेगी। और जब ये तलाशी अभियान चलाया गया तो इसमें पुलिस की नजर बाथरूम की फर्श पर पड़ी। वहां हाल ही में लगाई गई नई टाइल्स और ताजा प्लास्टर देखकर शक गहरा गया। जब फर्श तुड़वाया गया तो उसके नीचे से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद शव को बाथरूम में दफना दिया गया था। इसके बाद ऊपर मिट्टी डालकर प्लास्टर किया गया, नई टाइल्स लगवा दी गई ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस पूरी साजिश में किसी और व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान पत्नी ने हत्या की बात स्वीकार की है। उसके अनुसार घटना से पहले ही बाथरूम में काम कराने के लिए मिस्त्री और मजदूर बुलाने की तैयारी कर ली गई थी। हालांकि हत्या की असली वजह, पूरा जो घटनाक्रम है, उसकी पुष्टि अभी जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। सोचने वाली बात है, अब तक ऐसे मामलों में पत्नियों द्वारा पति की हत्या की गई जिसमें शादी को कुछ महीने हुए थे या शादी होने वाली थी, लेकिन इस मामले में शादी के कई साल बाद हत्या हुई है, जिससे एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है। और अब आपको भारत की पश्चिमी सीमा पर हुए नए खतरे की आहट के बारे में जरा बताएंगे। भारत के पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीईसी प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद अब चाइना ने भारत के पूर्वी मोर्चे यहां पर भी एक खतरनाक रणनीतिक बिसात बिछा दी है। इस नई चाल का नाम है CBMEC, यानी चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। आसान भाषा में कहें तो खेल चाइना ने अरब सागर में घुसने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए खेला था। अब वही खेल वो बंगाल की खाड़ी में घुसने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के पीछे छिपकर खेलने जा रहा है। सड़क और रेल दोनों की पटरियों का ये तानाबाना भले ही ट्रेड रूट के नाम पर बिछाया जाना हो, लेकिन असल में ये भारत को पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशाओं से समुद्री और जमीनी मोर्चे पर घेरने का एक रणनीतिक चक्रव्यूह भी बताया जा रहा है। असल में चाइना के इस कदम के पीछे उसकी एक बहुत पुरानी कमजोरी और छटपटाहट है, जिसे डिफेंस एक्सपर्ट मलाका डिलेमा कहते हैं। चाइना का लगभग 80% तेल आयात समंदर के रास्ते एक बेहद पतली मलाका स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अब चाइना को डर क्या है? उसे डर है कि युद्ध या भारी तनाव की स्थिति में अमेरिका की नेवी या भारत की नेवी इस चोक पॉइंट को आसानी से ब्लॉक कर सकती है, जिससे चाइना की सांसें थम जाएंगी। और यही वजह है इस कमजोरी से उबरने के लिए चाइना ने दो मोर्चे खोले। पश्चिमी मोर्चा यानी सीपीईसी, जिसमें चाइना ने पीओके से होते हुए अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक सीधी सड़क पहुंचा दी ताकि मलाका रूट को बाईपास किया जा सके, और पूर्वी मोर्चा यानी CBMEC के जरिए चाइना को बंगाल की खाड़ी में अपनी सीधी पहुंच चाहिए। म्यांमार और बांग्लादेश के जरिए वो सीधे भारत के पूर्वी मुहाने पर आकर बैठना चाहता है ताकि हिंद महासागर में उसका बिना रोक टोक दखल हो सके। अब चाइना के इस मल्टी मॉडल नेटवर्क की शुरुआत उसके यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग से होगी, जहां से ये रूट म्यांमार के मंडाले पहुंचेगा, जहां से इसकी एक ब्रांच म्यांमार की पुरानी राजधानी यांगून और क्याउ फ्यू जो है उसके डीप सी पोर्ट तक जाएगी। फिर इसे म्यांमार से रोड रेल नेटवर्क, समुद्री रास्ते से बांग्लादेश के चटगांव, कॉक्स बाजार और आखिर में मोंगला पोर्ट से जोड़ा जाएगा। हालांकि चाइना के इस प्रोजेक्ट का एक दूसरा पहलू भी है जो भारत के लिए फिलहाल तो राहत की बात है। कागजों पर तो यह कॉरिडोर चाइना के लिए बेहद आकर्षक है, फायदेमंद दिखता है, लेकिन बांग्लादेश के ही अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी ग्राउंड रियलिटी बहुत खतरनाक है और इसे पूरा करना चाइना के लिए बिल्कुल

भी आसान नहीं। अखबार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 2030 तक तो क्या, 2040 के दशक तक भी पूरी तरह चालू नहीं हो सकता। इसके पीछे बड़ी वजह है म्यांमार की स्थिति। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार पूरी तरह से बिखरा हुआ है, बिखर चुका है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश के सिर्फ 20% हिस्से पर ही वहां की सैन्य सरकार का नियंत्रण रह गया है, जबकि 42% से ज्यादा हिस्से पर विद्रोही गुटों का कब्जा है। म्यांमार के जिस रखीने प्रांत से होकर यह कॉरिडोर गुजरेगा उसके 17 में से 14 कस्बों पर विद्रोही अरकान आर्मी का राज है। चाइना का महत्वाकांक्षी क्याओकू प्यू पोर्ट म्यांमार में युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। यहां चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर म्यांमार के विद्रोही गुट और सेना के बीच एक जंग चल रही है। म्यांमार में अस्थिरता की वजह से पहले ही चाइना के हजारों करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ठप हो चुके हैं। बांग्लादेश के लिए ये कॉरिडोर मानवीय संकट की वजह से भी फंसा है। अब बांग्लादेश का कहना है कि म्यांमार के साथ कोई भी जमीनी कनेक्टिविटी तभी आगे बढ़ेगी जब बांग्लादेश में रह रहे 12 लाख रोहिंग्याओं की म्यांमार में वापसी होगी। बांग्लादेश भी रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजना चाहता है, लेकिन ये वापसी फिलहाल गृह युद्ध की वजह से नामुमकिन लग रही है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट की बड़ी रुकावटें हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश में जो चाइना के राजदूत हैं उन्होंने बेहद चालाकी भरा बयान दिया, कहा कि चाइना इस प्रोजेक्ट में भारत के शामिल होने का भी स्वागत करता है, लेकिन यह भारत पर निर्भर करता है कि वो इंतजार करना चाहता है या साथ आना चाहता है। असल में ये एक कूटनीतिक ट्रैप है। चाइना अच्छी तरह से जानता है कि 1999 में जब भारत इस योजना का हिस्सा था उस वक्त इसे BCIM कॉरिडोर कहा जाता था। तब भी भारत ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट की वजह से खुद को इससे अलग किया। क्यों भारत इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है? आपको बता दें कि भारत इस चक्रव्यूह को मूक दर्शक बनकर नहीं देख रहा है, बल्कि इसकी काट के लिए कई मोर्चों पर काम भी कर रहा है। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। भारत और जापान मिलकर बांग्लादेश में ही मातरबारी डीप सी पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा भारत म्यांमार के सिटवे पोर्ट को विकसित कर चुका है ताकि कोलकाता से सीधे समुद्र के रास्ते म्यांमार और वहां से फिर मिजोरम को जोड़ा जा सके। हालांकि म्यांमार के गृह युद्ध ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को भी थोड़ा धीमा किया है, लेकिन यह साफ है कि पश्चिम में CPEC के बाद पूर्व में इस नए कॉरिडोर की जिद दिखाकर चाइना ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत की सीमाओं को शांत नहीं रहने देगा। इसके जवाब में आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में होने वाली हर रणनीतिक और कूटनीतिक गतिविधि पर पैनी नजर रखता है। जब भी और जहां भी अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत महसूस होती है, भारत बिना किसी देरी के आवश्यक कदम उठाता है। देश के ई रिक्शा चालक आजकल बहुत परेशान हैं। उनका ई रिक्शा चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, कई प्रयासों के बावजूद दोबारा स्टार्ट नहीं होता। शुरुआत में इन लोगों को लगा कि शिकायत ई रिक्शा की बैटरी या किसी सिस्टम में है, लेकिन बाद में पता चला कि ये काम चाइनीज ऐप इस्तेमाल करते रहे कुछ शरारती तत्व कर रहे थे। तो देखिए, सड़क पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके मोबाइल फोन में ये चाइनीज मोबाइल एप्स होते हैं वो किसी भी ई रिक्शा को बंद कर देता है। ये सारी चाइनीज ऐप ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में घुसकर बैटरी से उसका कनेक्शन ही बंद कर देती है, तो बैटरी का झोल सामने आ रहा है जिससे ई रिक्शा बंद हो जाता था। मुख्य रूप से 3 चाइनीज ऐप्स हैं, बैट BMS, लॉसिजी और इपोक की मदद से ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा था। अब देखिए, कई लोगों ने ई रिक्शा चालकों को परेशान करने वाले वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया। अपनी इस हरकत पर ये लोग बहुत खुश हो रहे थे, जबकि उन्हें पता होना चाहिए था कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच ई रिक्शा के अचानक बंद होने से चालक, उसमें बैठे यात्रियों की जान, सबको खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर किस तरह की चाइनीज ऐप थी जो ई रिक्शा को रिमोट पर ले रही थी और कैसे? जिन ई रिक्शा में लिथियम आयन बैटरी होती है उनमें एक BMS जुड़ा होता है। BMS का मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS लगभग हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है, फिर चाहे वो ई रिक्शा हो, ई बाइक हो या आपकी ईवी कार। इस सिस्टम का काम है बैटरी की चार्जिंग, वोल्टेज, तापमान, चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट, बैटरी की सेहत, सब कुछ की जानकारी वाहन मालिक को देना और बैटरी का कनेक्शन वाहन के मोटर से जोड़ना या फिर काटना।
बीएमएस का डेटा तीन तरह से दिखता है। पहला, बैटरी से जुड़ी सारी जानकारी सीधे डिस्प्ले पर दिखना। दूसरा, ब्लूटूथ के जरिए सारी जानकारी ईवी मालिक के मोबाइल ऐप तक पहुंचाना। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपकी स्मार्ट वॉच, हेडफोन या स्मार्ट हेल्थ रिंग का जो डेटा है वो ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन ऐप पर आ जाता है। ई रिक्शा बीएमएस में आमतौर पर ब्लूटूथ होता है और ये 10 से 20 मीटर की रेंज पर काम करता है। तीसरा तरीका है इंटरनेट। आधुनिक ईवी जो गाड़ियां हैं उनमें 4G जीपीएस आधारित सिस्टम होता है। ये इंटरनेट के जरिए बैटरी का डेटा पहले क्लाउड सर्वर पर भेजता है और फिर उसके बाद वहां से इंटरनेट के जरिए आपके मोबाइल ऐप में दिखाता है। अब हो क्या रहा है, आमतौर पर कुछ ई रिक्शा की बैटरीज का बीएमएस आईडी पासवर्ड से सुरक्षित रहता है, लेकिन पासवर्ड जरूरी है क्योंकि अक्सर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसी का फायदा बैक बीएमएस इस्तेमाल करने वालों ने उठाया है। अगर पासवर्ड नहीं है तो हैक किया जा सकता है। जिन ई रिक्शाओं के बीएमएस में ब्लूटूथ थे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं थे, उन सभी ई रिक्शाज में ये दिक्कतें आई हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि आपको पासवर्ड लगा कर रखना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाकर रखना है ताकि ऐसे लोगों से बच सके। उन सभी को देखिए जिन्होंने नहीं लगाया, उन सभी को दूसरे व्यक्ति ने अपनी चाइनीज ऐप से एक्सेस करके ई रिक्शा ही बंद कर दिया। अब ई रिक्शा चालकों को करना यह है कि वो अपने ई रिक्शा के बीएमएस का आईडी पासवर्ड लें, अपना मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर लें। ऐसा करने से कोई अन्य व्यक्ति आपके ई रिक्शा के बीएमएस का एक्सेस नहीं ले पाएगा। सरकार ने ई रिक्शा चालकों की परेशानी को समझते हुए फिलहाल बैट बीएमएस लॉसिजी और एपॉक समेत 7 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ई रिक्शा से चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। फिर भी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड जरूर बना लें अपने बीएमएस को और ऐप भी डाउनलोड अपने मोबाइल पर कर लें, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी ऐप की फिराक में रहेंगे ताकि फिर से अपना गलत काम वो कर पाए। आपकी ईवी कार या बाइक में भी बीएमएस है तो आप जानना चाहते होंगे कि क्या बैड बीएमएस जैसी कोई चाइनीज ऐप आपके ईवी को भी बंद कर सकती है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ईवी का बीएमएस पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो या उसके रिमोट कंट्रोल सिस्टम में कोई गंभीर सुरक्षा खामी हो। कुछ आधुनिक ईवी गाड़ियों को उसकी निर्माता कंपनियां भी रिमोट पर लेती हैं और उसके हर फीचर को एक्सेस करती हैं, जैसे बैटरी चार्जिंग, फर्मवेयर अपडेट, या कार में किसी समस्या का पता लगाना हो या फिर कुछ मामलों में तो पूरी गाड़ी का एक्सेस लेती है। अगर कोई मोबाइल ऐप किसी तरह की सुरक्षा खामी का फायदा उठाकर आपके क्लाउड आधारित रिमोट कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच गया तो ऐसा हो सकता है कि वो आपकी गाड़ी को भी रोक दे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपकी ईवी और बीएमएस पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो और उनमें सुरक्षा खामी हो। हालांकि आधुनिक ईवी गाड़ियों में साइबर सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है, इसीलिए ऐसा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐप या किसी कंप्यूटर सिस्टम से ईवी गाड़ी के एडमिन कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच गया तो वो कार के फीचर को अपने नियंत्रण में ले सकता है। अपनी ईवी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए गाड़ी की निर्माता कंपनी का आधिकारिक ऐप इस्तेमाल करें। ईवी के सिस्टम एक्सेस को पासवर्ड से सुरक्षित रखें और अगर ऐप में सुविधा हो तो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। कभी भी ईवी के एक्सेस वाला जो आईडी पासवर्ड है वो किसी से शेयर ना करें और कभी भी थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन को सारा एक्सेस मत दीजिए। बीएमएस सिस्टम पर लिथियम आयन बैटरी वाली ईवी में है, इसलिए जरूरी यह है कि उसे भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल फोन को अपडेटेड पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं, वैसे ही बस संभल कर चलना है। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
5: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
4: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
6: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FD, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
7: PNB वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
8: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
9: गहरी सफाई,
10: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
9: गहरी खुशबू
10: और प्यार भरी भी।
9: कैसे?
10: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
11: इसीलिए
12: We are over, Jimmy.
13: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
3: गहरी सफाई।
2: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
3: गहरी खुशबू
2: और प्यार भरी भी।
3: कैसे?
2: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति।
4: इसीलिए फेना ही लेना।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर।
8: इस मामले में?
7: इसी मामले में। और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं
8: ये,
7: हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी।

0: पुलिस और एसआईटी के रडार पर हैं ये तीन चेहरे। इन तीन चेहरों को अब तक आपने बखूबी जान और पहचान लिया होगा। ये तीन चेहरे हैं चंपत राय, ट्रस्ट के महासचिव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी गोपाल राव। इन तीनों पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने ट्रस्ट को कठपुतली की तरह चलाया। इन पर आरोप लग रहे हैं नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाने का, ट्रस्ट में चल रही अनियमितताओं की अनदेखी करने का। लेकिन अब तीनों से पूछताछ हो रही है। पहले चंपत राय से पूछताछ हुई और अब खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा को भी अयोध्या पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अनिल मिश्रा ने सारा ठीकरा टिन्नू यादव पर फोड़ा। अनिल मिश्रा ने कहा कि नोटों की गिनती करने वाले टिन्नू के इशारे पर काम करते थे, मेरी इसमें कोई भूमिका ही नहीं थी। यानी अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका पूरी तरह से नकार दी। अनिल मिश्रा से जब ये पूछा गया कि मंदिर प्रबंधन में आपका दखल था तो कैसे करोड़ों रुपए पार हो गए और भनक नहीं लगी, इस पर अनिल मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट ने ही चोरी पकड़ी, जैसे ही पता चला फौरन जांच शुरू हुई, ट्रस्ट ने ही एसआईटी की मांग की। हाँ, अनिल मिश्रा ने इतना जरूर माना कि निगरानी में उनसे चूक हुई। आपको बता दें कि अनिल मिश्रा से पहले चंपत राय से भी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पुलिस से चंपत राय ने कहा, चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की इसकी जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। दरअसल चंपत राय के लिए बड़ी मुसीबत की वजह टिन्नू यादव है। टिन्नू से नजदीकी उनके गले की ऐसी हड्डी बन गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। पूछताछ में पुलिस ने टिन्नू से उनके रिश्ते को लेकर सवालों की बौछार कर दी। इस पर चंपत राय बस इतना कह पाए, टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। इस पर चंपत राय का जवाब था, जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के दूसरे सदस्य की भी भूमिका रही। चंपत राय ही वो कड़ी है जिनसे पुलिस को अब दूसरे आरोपियों से पूछताछ में सामने खुलासों का मिलान करना है। चंपत ने क्या बताया और क्या छिपाया, इसी पर जांच एजेंसी चंदा चोरी के तमाम सिरे जोड़ पाएगी। लेकिन अभी जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो वाकई खलबली मचाने वाले हैं। समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैच्योरिटी का नया पैमाना ये है कि आप कितनी शालीनता से उन लोगों को म्यूट कर देते हैं जिन्हें आप ब्लॉक नहीं कर सकते।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Acoj, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय होश बोले बोले, राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा, कांग्रेस का पलटवार, सिर्फ दिखावे के लिए की निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज, पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक और नेता, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बने पहली पसंद, खड़गे करेंगे निर्णय। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक, अल नीनो के कारण देश के कुछ इलाकों में कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर दोनों ने की समीक्षा। केतन हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन की 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत, पुलिस ने जब्त किया सिया का दूसरा मोबाइल, कोडवर्ड में बात किया करते थे दोनों। तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने की श्रद्धांजलि, आज तक भी मौजूद, पल पल की जानकारी।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक श्री राम मंदिर ट्रस्ट की उस तिकड़ी पर, जिनके हाथों में ट्रस्ट की पूरी कमान थी, ये तीनों। वो ट्रस्ट जिस पर अयोध्या श्री राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे, दान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इन तीनों की हुआ करती थी। दान पेटियों को खोलने से लेकर कैश और जेवरात तक, चढ़ावे की पूरी गिनती का काम ट्रस्ट के इन तीनों पदाधिकारियों की देखरेख में किया जाता था। सवाल यही है कि क्या ट्रस्ट के इन बड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत के बगैर चढ़ावा चोरी हो सकता है? अगर नहीं तो फिर यह तिकड़ी अभी तक बची कैसे है? और यह तिकड़ी वो तिकड़ी है जिसमें चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा हैं। जी हां, SIT ने भी इस तिकड़ी से 8 घंटे तक पूछताछ की। तो क्या अब श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक होने वाली है, चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा पर उस बैठक में कोई बड़ा एक्शन होगा? आइए हम आपको दिखाएं।
1: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की तिकड़म अब नपेगी तिकड़ी। 8 के बाद अब चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा का नंबर है। चढ़ावा चोरी की चंपत लीला, असली एक्शन तो अब शुरू होगा। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा से SIT ने की 8 घंटे पूछताछ। अयोध्या से लेकर देश भर में उठा शोर, कब पकड़े जाएंगे असली चढ़ावा चोर?
2: कुछ कहानी तो लोगों ने पूरे भारत ने चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, चुप बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोलें, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़।
1: अयोध्या के राम मंदिर परिसर में SIT का आना और सीधे चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से पूरे 8 घंटे तक पूछताछ करना, क्या इस बात का संकेत है कि चढ़ावा चोरी कांड में राम मंदिर ट्रस्ट की इस तिकड़ी का नंबर लगने वाला है? ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन SIT ने पूछताछ की। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब SIT ने सवाल जवाब किए हैं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, इनसे भी SIT ने पूछताछ की। सवाल यही है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट की इस तिकड़ी की मिली भगत के बगैर राम के दान की लूट हो सकती है? क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावे की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की तिकड़ी पर है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि चढ़ावा चोरी कांड में 8 लोगों को गिरफ्तार करके क्या इस तिकड़ी को बचाने की कोशिश हो रही है? जब SIT ने राम मंदिर परिसर में पहुंचकर अपनी जांच पड़ताल शुरू की और ट्रस्ट की इस तिकड़ी से सवाल किए, तो इस बीच राम मंदिर के ट्रस्टी दीनेंद्र दास महाराज ने पहली बार ट्रस्ट के खिलाफ बड़ा बयान दिया और उन्होंने चढ़ावा चोरी कांड का सारा ठीकरा गोपाल राव पर फोड़ दिया।
3: गोपाल जी,
4: जी
3: ये उत्तर प्रदेश है ना?
4: जी
3: उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी और राम की परंपरा मान रहे हैं।
4: जी जी,
3: गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते, पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सब। हमारे ट्रस्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब रामलला को मान रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं सब।
5: तो गोपाल ऐसा क्यों करते हैं?
3: गोपाल बाहर के है ना, वो राजनीति कर रहे हैं।
5: जी जी जी,
3: उनको स्वाभिमान आगे सब बड़े हो जाए, नहीं राम जी चाहें तभी वो अपने मन से कोई हो नहीं पाएगा।
1: राम मंदिर आंदोलन से जुड़े विनय कटियार ने भी राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी गोपाल राव को कटघरे में खड़ा किया है।
6: अब नाम हम किसी को नहीं बताएंगे, जल्दी वहाँ एक गोपाल है, गोपाल राव, वो सबसे बेकार आदमी था, वहाँ कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। अनिल जी तो सीधे आदमी है। हाँ ये जरूर है, अनिल जी भी चक्कर में फंस गए, नहीं वो ऐसा नहीं करते।
1: हालांकि SIT की टीम दान चोरी का राज सामने लाने में जुटी है। चंपत राय भी शक के दायरे में हैं। आईपीएस अधिकारी किरण एस के नेतृत्व में सबसे पहले चंपत राय से पूछताछ की गई, उसके बाद गोपाल राव और अनिल मिश्रा का नंबर आया।
4: इनकी भूमिका अच्छी होनी चाहिए थी, बड़े पुराने पुराने लोग हैं ये, कोई नए लोग नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगा क्या करना है। ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं है, ताज गिरने वाली है।
1: आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने गुरुवार को ट्रस्ट ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और इन तीनों से इसी से जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आगे भी पूछताछ हो सकती है। बताया जाता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही पूरे प्रबंधन में दखल था, अन्य ट्रस्टियों का दखल न के बराबर था। ये तीनों शख्स जो चाहते थे मंदिर में वही होता था। चढ़ावे की गणना से लेकर जमा करने तक की निगरानी में इनकी भूमिका रहती थी।
7: अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
1: पूछताछ में चंपत, अनिल और गोपाल सीधे तौर पर टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सभी एक साथ अब इन्हीं दोनों का नाम ले रहे हैं। हालांकि एसआईटी और पुलिस दोनों कई सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है, इनके गोलमोल जवाब कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनिल मिश्रा चाहे एसआईटी के सामने जरूर आए हों, लेकिन वो पब्लिक और मीडिया के सामने अंडरग्राउंड चल रहे हैं और चंपत राय ने मौन व्रत ले रखा है। गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं। जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आएगा।
8: गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को, अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ।
1: सूत्रों की माने तो ट्रस्ट के महासचिव के पद पर होने के चलते चंपत राय ने ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई कई जमीनों की रजिस्ट्री के कागजों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसे लेकर चंपत राय से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है, जिसमें चंपत राय खुद चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस बना है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है, मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है, लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं। वो ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
9: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
1: 7 जून को राम मंदिर के बही खाते के ऑडिट में कुछ खामी नहीं थी, तो 5 जून को चढ़ावे की गिनती में शामिल अविनाश शुक्ला के घर छापा क्यों पड़ा था? 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी क्यों बनानी पड़ी? और तो और 25 जून को चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर क्यों दर्ज हुई, जिसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई? साफ है चंपत राय और ट्रस्ट की तिकड़ी को चढ़ावा चोरी के बारे में बहुत कुछ पता है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और नया खुलासा। जांच के दौरान ये पता चला है कि अब तक गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 वाराणसी की एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी थे। एजेंसी मंदिर में नकदी गिनने का काम करने के लिए इन लोगों को भेज रही थी और इस प्राइवेट एजेंसी का नाम है सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज। आज तक ने इस प्राइवेट एजेंसी के डायरेक्टर और मैनेजर से बात की, उन्होंने जो खुलासे किए वो काफी चौंकाने वाले हैं, दिखाते हैं आपको।

0: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जिस तरह से हर रोज बड़ा हो रहा है, उसमें खुलासे भी हर दिन चौंकाने वाले हो रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट कहता है कि चढ़ावा चोरी के लिए SBI बैंक जिम्मेदार है। बैंक के साथ ट्रस्ट ने एग्रीमेंट साइन किया था बैंक पर मंदिर में आने वाले चढ़ावे को दान पेटी से निकालने, छांटने और उस चढ़ावे को बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। बैंक ने बिना किसी वेरिफिकेशन के सिफारिश पर लोगों को रख लिया। बैंक अगर गणन कक्ष कर्मियों पर निगरानी रखता तो चोरी नहीं होती। ट्रस्ट की तरफ से गणना कक्ष में सिर्फ सुभाष श्रीवास्तव को निगरानी के लिए रखा गया था। दान पेटी का ताला खोलने के लिए दो चाबियां लगाई जाती थी। दान पेटी की एक चाबी रामशंकर यादव उर्फ तेनू यादव के पास और दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। जब दोनों चाबियां मिलती थी तब दान पेटी खोलकर उसका पैसा निकाला जाता और बैंक कर्मी उस पैसे को ले जाकर गणना कक्ष में गिनकर बैंक में जमा कराते थे।
1: गड़बड़ी जो हुई वो दान पेटियों के खुलने पर उसकी गिनती को लोगों ने, जो गिनती में लोग लाते बैंक द्वारा लाए गए, उन लोगों ने कुछ गड़बड़ी जरूर की, जो कि बाद में पकड़े गए। उनके घर पर भी छापे पड़े और वहां भी कुछ पैसा बरामद हुआ। अच्छा, स्टेट बैंक ने ये किया कि उनकी नियमित कर्मचारी नहीं थे। नियमित कर्मचारी एक आता था और वो आउटसोर्स के लोगों को ले आते थे गिनती के लिए, तो उन लोगों का कोई ना बैंक से लेना देना था। जिस दिन काम किया ते दिन का पैसा पाया, तो वो एक तरीके से दिहाड़ी वाले आदमी थे।
0: अब हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक नया मोड़ ला सकती है। आज तक पर बैंक के जरिए गणना कक्ष में रखे गए कर्मचारियों की प्राइवेट एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी फर्म के डायरेक्टर ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, एजेंसी के डायरेक्टर गौरव सिंह ने अयोध्या में स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया के बारे में कई ऐसे दावे किए हैं जो भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करते हैं। दावा किया गया है कि कर्मचारियों का चयन एजेंसी ने नहीं किया था। उनके मुताबिक कर्मचारियों की सूची पहले ट्रस्ट से बैंक तक पहुंची और फिर बैंक ने वही सूची एजेंसी को भेजी। एजेंसी ने सिर्फ उन लोगों का KYC लेकर उन्हें अपने पेरोल पर रखा और वेतन का भुगतान किया। इतना ही नहीं, उनका ये भी दावा है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लिखित दस्तावेज और रिकॉर्ड SIT को सौंप दिए गए हैं।
2: हमारा स्टेट बैंक जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे हमारा स्टेट बैंक का अनुबंध है हाउसकीपिंग का। हाउसकीपिंग स्टाफ हमने स्टेट बैंक में दिया हुआ है और जो सिक्योरिटी का काम है वो SIS का है। तो ये हाउसकीपिंग जैसे बैंक में होते हैं तो बैंक का ट्रस्ट के साथ टाइप है, तो हमारा टाइप बैंक से, तो हमने बैंक को स्टाफ दिया, ये बैंक ट्रस्ट के साथ वो अपना क्या गिनती करना ये करना वो उस काम में उनको लगाएंगे।
3: ये जो स्टाफ का सिलेक्शन हुआ, स्टाफ का सिलेक्शन कैसे हुआ?
2: स्टाफ का ये वो मंदिर से ही लिस्ट मिली थी कि ये हमारे आदमी, उन्होंने बैंक को दिया, बैंक ने हमको दिया कि इनको इनको आप अपने उस पे रख लीजिए पेरोल पे।
3: तो ये ट्रस्ट की तरफ से आया था ये इनका?
2: ट्रस्ट की तरफ से बैंक नहीं, ट्रस्ट की तरफ से बैंक को और बैंक की तरफ से हमको, तो ट्रस्ट ने मुझे डायरेक्ट मेल लिया। जी,
3: तो वो आपके पास कोई उसका मेल ट्रेल या कोई कम्युनिकेशन का ट्रेल होगा ना आपके पास?
2: हाँ हाँ,
3: तो वो आप भेज सकते हैं आज तक को?
2: नहीं, वो जो भी चीजें वो SIT को दे दी गई है।
3: आपने दिया है SIT को?
2: जी जी जी जी।
3: तो वो मेल पे था, व्हाट्सएप पे था, कैसे आया था
2: वो पेपर? ऑन पेपर हमको रिटेन हुआ है कि 19 आदमी आप स्टेट बैंक में लगाने का।
0: सूत्रों की माने तो जांच में ये भी पता चला है कि चंपत राय ने अनिल मिश्रा को सुप्रीम पावर दी थी। मार्च 2025 में ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग के लिए 10 नए लोगों की भर्ती की थी। इन सभी को चंपत राय ने अनिल मिश्रा के पास भेजा था। अनिल मिश्रा ने उनको इंटरव्यू लेकर काम पर रखा था और अब सैनिक सिक्योरिटी फर्म के एरिया मैनेजर ने भी आज तक पर ऐसे बड़े खुलासे किए हैं और उन्होंने ट्रस्ट की कारगुजारी सामने रख दी है।
4: आप खुद भी इंटरव्यू के लिए गए थे ना?
5: इंटरव्यू का मतलब सर?
4: इंटरव्यू के लिए आप गए थे ना अयोध्या?
5: हाँ हाँ, गए थे।
4: तो वहाँ क्या हुआ था?
5: मतलब नहीं, हमसे पूछा गया सर कि आपने कैसे लगाया, हमको हमने कहा सर मुझे एक्चुअली में हम पैनल कंपनियां हैं एज स्टेट बैंक एलएचओ के द्वारा, और अयोध्या में मैं काम कर रहा था क्योंकि आरबीओ जो अयोध्या है वहां से मुझे ब्रांचे दी गई थी और उसमें अयोध्या भी ब्रांच थी सर। अयोध्या ब्रांच में ऑलरेडी 4 आदमी लगे हैं सर पहले से 2022 से मेरे, तो 2022 नवंबर 2024 में मुझे बुला के और 15 आदमी का वर्क ऑर्डर दिया गया कि आपको 15 आदमी और देना हमें, और उन बंदों का नाम लिस्ट सहित दिया गया।
4: अच्छा,
5: कि इन्हीं बंदों को आपको पेमेंट करना है, तो मैंने उनका केवाईसी ले लिया और पेमेंट कराते रहा और बैंक कंपनी को पेमेंट करती रही, कंपनी पे उनको पेमेंट करती रही।
0: वहीं SBI की माने तो इस मामले में वो पूरी तरह से SIT के साथ सहयोग कर रहा है। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से SBI ट्रस्ट को बैंकिंग सर्विस दे रहा है। राम मंदिर में काम करने वाले एक और कर्मचारी ने भी आज तक को कई बड़ी और गंभीर जानकारियां दी हैं। जी हाँ, शिवांश जो राम मंदिर निर्माण से लेकर 2025 तक वहाँ कर्मचारी था, उन्होंने बताया कि कैसे गड़ना वाली जगह पर कोई सिक्योरिटी गार्ड की भी नहीं सुनता था।
6: हम स्टाफ लॉकर में भी ड्यूटी किए हैं महोदय जी, कैमरा वहाँ कैमरा भी चलता था और बगल में SIS गार्ड मतलब गेट के बाहर बैठता था, उसका कोई चलती नहीं था। टोटल अगर SIS गार्ड कहता कि साहब चेक कराइए तो कोई चेक नहीं कराता था। वहाँ के धुरंधर थे, उन्होंने सीधे तौर पर वहाँ पे गुंडई की है। और अगर रोक मोबाइल हथियार रहा स्टाफ लॉकर में रखने के लिए, मोबाइल और जैसे पॉकेट मनी वगैरह हो गया तो ये लोग सब लेकर जाते थे।
0: अभी जांच चल रही है, खुलासे हो रहे हैं और इन सब के जवाब राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से ही मांगे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 8 छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी से बड़े पदाधिकारी बच निकलेंगे। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा और अंकित कुमार, दिल्ली आज तक।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे क्या क्या नए खुलासे हुए हैं। चढ़ावा चोरी में चंदा चोरी में सबसे आगे अविनाश शुक्ला का नाम है। बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी केस में अविनाश शुक्ला सबसे बड़ा लाभार्थी है। आरोप यह भी है कि अविनाश शुक्ला के पास चोरी की मोटी रकम है जो उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ स्थित अपने घरों में छुपाकर रखी है। अब तक जितने भी पैसे बरामद हुए हैं उसमें सबसे अधिक अविनाश शुक्ला के पास से ही मिले हैं, तो उसके बाद अनुकल्प मिश्रा का नाम है। अनुकल्प के पास भी काफी पैसा मिला, जबकि तीसरे आरोपी लवकुश मिश्रा पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियां शुरू हो गई।
0: अयोध्या का भांडा क्या फूटा, अब काशी में भी चढ़ावा चोरी का संदेह बढ़ गया है।
8: धंधा बंद करो,
9: बंद करो, बंद करो।
0: अयोध्या में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ नामजद मुकदमा करने की मांग करने वाले वकील समुदाय की तरह ही वाराणसी में भी वकीलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर बोर्ड, ट्रस्ट और चढ़ावे से जुड़े सवाल उठाए हैं। तो टीम चंपत राय को लेकर एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा अविनाश शुक्ला। वही अविनाश शुक्ला जिसके भाई का नोटों की गड्डियों के साथ वायरल वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। वही अविनाश शुक्ला जिसके योग सेंटर में दान पात्र वाले रहस्यमय बक्से की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला ने मोटी रकम ठिकाने लगाई है। अंदेशा है कि अविनाश शुक्ला ने सोने चांदी के जेवर भी ठिकाने लगाए हैं।
10: अविनाश शुक्ला से की गई पूछताछ और जुटाई गई जानकारी के आधार पर उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अविनाश शुक्ला से न सिर्फ पूछताछ की जाएगी बल्कि उससे एक बड़ी बरामदगी की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जिसके पास से पुलिस को सबसे बड़ी बरामदगी 20,39,000 रुपए और डॉलर सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं।
0: बारी है राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के दूसरे नाम की। जी हां, वो है अनुकल्प मिश्रा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चंपत राय और बीजेपी के नेता एक कथा में पहुंचते हैं। ये कथा वो अनुकल्प मिश्रा करवाता है जो चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार है। खुद को सोशल मीडिया पर सेवक अनुकल्प बताने वाला आरोपी अनुकल्प मिश्रा दावा है कि अपने घर पर भव्य राम कथा का आयोजन करता है। दावा है कि वो यहाँ पर 50 लाख रुपए खर्च कर डालता है, लेकिन क्या आरोपी अनुकल्प मिश्रा की तरफ से आयोजित इस राम कथा में पहुँचने वाले चंपत राय और बीजेपी के नेताओं को रत्ती भर शक या सवाल मन में नहीं आता कि 18 से 20 हजार रुपए पाने वाला अनुकल्प मिश्रा कैसे इतनी बड़ी राम कथा करा रहा है?
7: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है पंजाब कांग्रेस से। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर खींचतान बढ़ गई और चंडी सबसे आगे चल रहे हैं। जो पर्यवेक्षक गए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और बड़ी खबर ये आ रही है कि चंडी को बनाया जा सकता है, लेकिन अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल शर्मा ये तीन पर्यवेक्षक गए थे। चंडी के समर्थन में कई सारे नेता वहां पर हैं और वो ये चाहते हैं कि राजा वडिंग की जगह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। चन्नी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, पर्यवेक्षकों के सामने उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वो सबसे लोकप्रिय नेता इस समय हैं। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, क्या और खबरें बताइए।
8: सही, जिसमें ये बता दें कि जो ये ऑब्जर्वर्स की पैनल रिपोर्ट थी ये लगभग 2-4 हफ्ते पहले ही सबमिट हो गई थी, और क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया में कहा जा रहा था, तमाम नेता इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अभी जो मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व है वो चुनाव में जीत नहीं दिला सकता, इसलिए ये पैनल एक गठित किया गया था जिसने 2 हफ्ते पहले अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमांड को दी थी, अभी हाल ही में नहीं दी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि वो पैनल की रिपोर्ट में भी ये साफ हुआ था कि चन्नी ही सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है। लगभग 70 नेताओं से विचार विमर्श हुआ, जिसमें सांसद, विधायक, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स और डीसीसी प्रेसिडेंट्स थे, और वर्बैटिम उन्होंने क्या कहा वो रिपोर्ट जो है आलाकमान को जो सबमिट हुई थी उसमें भी ये कहा गया कि चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए।
7: बहुत धन्यवाद मौसमी। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए रेस में काफी आगे। दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे खामनेई की अंतिम विदाई और ईरान ने मिसाइलों की तैनाती बढ़ाई। आप देखते रहिए दशक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। एक्जे, the number one Korean skincare brand now in India.
12: Jack FM now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
13: What you got for me, Jack?
12: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
14: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
15: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
16: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
6: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
5: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
6: अर्ज किया है
5: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
7: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
5: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
8: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
9: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
10: पापा।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये छोड़ खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
12: सब कैशलेस हो गया
11: है।
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।
14: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: वी आर ओवर जिमी।
19: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
20: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
21: कुछ तो बात है इस दिल में।
22: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
21: कुछ तो बात है इस दिल में।
23: पीमाक, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
24: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
25: हमने तब भी सवाल किया था।
26: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
25: हम आज भी सवाल करते हैं।
26: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
25: ऑपरेशन अग्नि।
26: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
25: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
27: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
25: हमने तब भी सवाल किया था।
26: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
25: हम आज भी सवाल करते हैं।
26: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
25: ऑपरेशन अग्नि।
26: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
25: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।

0: राम मंदिर में लूटकांड का सबसे बड़ा किरदार कौन?
1: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: To right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run,
2: and that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: देख लो,
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
8: सरसों से सरसों।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: हमने तब भी सवाल किया था,
11: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
10: हम आज भी सवाल करते हैं,
11: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
10: ऑपरेशन अग्नि,
11: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
10: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
12: In association with
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: हमने तब भी सवाल किया था,
11: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
10: हम आज भी सवाल करते हैं,
11: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
10: ऑपरेशन अग्नि,
11: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई

0: जा रही है, आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
1: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।

राम मंदिर में लूटकांड का सबसे बड़ा किरदार कौन? पुलिस की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर किसका नाम? आज तक पर लुटेरा नंबर 1 का बेनकाब पूरा पर्दाफाश।

अली खामनेई की हत्या कर दी गई थी। 4 महीने बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाना है। ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार का मातम है, लेकिन इस बीच एक ऐसा खतरा भी है जिसके कारण से मुस्तफा खामनेई अपने अंतिम विदाई के समारोह में, पिता के समारोह में नहीं आएंगे। इसराइल की धमकियों ने इस अंतिम संस्कार को एक टारगेट जोन में बदल कर रख दिया है। तेहरान की इन दहकती सड़कों से आज तक आपको पल पल की खबर दे रहा है, तो आइए हम आपको दिखाएं कि इस समय तेहरान में चल क्या रहा है।

0: खामेनेई की अंतिम विदाई। इसराइल से फिर धमकी आई। तेहरान में अंतिम विदाई समारोह शुरू। इसराइल का प्लान क्या है? क्या खामेनेई के अंतिम संस्कार में इसराइल करेगा बमबारी? अमेरिका ने ईरान को इजरायली साजिश की चेतावनी क्यों दी? आयतुल्लाह खामेनेई की अंतिम विदाई में सामने नहीं आएंगे मुज्तबा। 28 फरवरी यानी 125 दिन पहले इजरायली हमले में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो गई हैं। खामेनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, पत्नी, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। खामेनेई की पोती के छोटे से ताबूत के पास उसकी तस्वीर भी रखी गई है। तेहरान के मुसल्ला परिसर में अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत रखे गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत देश का शीर्ष नेतृत्व तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। इस दौरान पेजेशकियान भावुक होकर रो पड़े। उनके साथ मौजूद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और कई सैन्य अधिकारी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। 9 जुलाई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस मौके पर ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हाकमी ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि हम पहले से ज्यादा मजबूत इरादे के साथ ईरानी जनता के दुश्मनों यानी अमेरिका और इसराइल से कहते हैं कि हम शहीद नेता खामेनेई के खून का बदला जरूर लेंगे। इस बीच अमेरिका ने ईरान को इसराइली साजिश की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच अप्रैल में शुरू हुई बातचीत के दौरान अमेरिका को डर था कि इसराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ को निशाना बना सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने मिडल ईस्ट के कुछ सहयोगी देशों के जरिए तेहरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली एक बैठक से पहले भी ईरान को हमले का खतरा था। इसी कारण पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधि मंडल के विमान को फाइटर जेट की सुरक्षा में इस्लामाबाद तक पहुंचाया। लौटते समय भी सुरक्षा अलर्ट मिलने पर विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और डेलीगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा। और इस वक्त जब खामेनेई की अंतिम विदाई का आयोजन शुरू हो रहा है तो अमेरिका ने फिर से ईरान को इजरायली साजिश की चेतावनी दी है। कल से उन्हें अंतिम विदाई देने की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मातम के इस आयोजन पर दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों और फाइटर जेट्स की नजरें गड़ी हैं।
1: करोड़ों की संख्या में लोग यहां सड़कों पर जुटने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे यानी अभी के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई उसमें शामिल नहीं होंगे। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर या इसराइल की तरफ से जो धमकी दी गई है उसको लेकर ये सबसे बड़ी बात कही जा रही।
0: सुना आपने, खतरा इतना भीषण है कि बेटा अपने पिता के जनाजे को कंधा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने आज तक की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट गीता मोहन से बातचीत में जो खुलासा किया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे।
2: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him.

0: and I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology, and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him, so because of that he will not come out.
1: दरअसल इस बारूदी खेल की शुरुआत तब हुई जब इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्स ने सीधे हुंकार भरी कि मुस्तफा खामिनई अब इसराइल की हिट लिस्ट पर हैं। वो मार्क्ड फॉर डेथ हैं। इसराइल की इस खुली धमकी पर ईरान तड़प उठा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। अराग्ची ने कहा कि अमेरिका तेल अवीव के अपने इस पालतू को काबू में रखे, वरना ईरान उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो भूल नहीं पाएगा। जब ईरान की तरफ से धमकी आई तो ट्रंप की सबसे कट्टर सिपह सालार लॉरा लूमर ने वो बात खुलकर कह दी जो तमाम ईरान विरोधी और इजरायली समर्थकों के दिल में छिपी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी और धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने खामिनई सीनियर के इस अंतिम संस्कार को टारगेट रिच एनवायरनमेंट घोषित कर दिया, यानी वो खुलेआम इसराइल को उकसा रही हैं कि पूरी ईरानी लीडरशिप एक जगह जमा है, हमला करने का इससे मजेदार और सही मौका दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा होने की आशंका कोरी कल्पना नहीं है। दुनिया ने पिछले साल ही देखा था कि जब लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तब इसराइल के F-15 और F-35 फाइटर जेट्स ने अंतिम संस्कार के ठीक ऊपर ऊंचाई पर फ्लाई पास्ट कर दहशत फैला दी थी। और इस बार तो जंग सीधे ईरान की धरती पर है। हालांकि ईरान भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। तेहरान और मशहद समेत कई शहरों का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है, हम ईरान के दुश्मनों खासकर अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हैं कि वो कोई गलत कदम ना उठाएं और सोचें कि किसी भी खतरे या आक्रामकता का हमारी सेना की ओर से कितना कड़ा जवाब दिया जाएगा। साफ है कि ईरान की ताकत पर सेना कड़ा जवाब देने के लिए मिसाइलों के ट्रिगर पर हाथ रखे बैठी है। अब सवाल ये है कि अगर इसराइल ने ईरान के अंदर खामिनई के अंतिम विदाई समारोह में किसी हमले को अंजाम देने की कोशिश की तो क्या होगा। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
2: आइए हम आपको सीधे ईरान की राजधानी तेहरान लिए चलते हैं, जहां हमारी संवाददाता सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, ये बताइए, आयतुल्लाह अली खामिनई के अंतिम विदाई समारोह में इसराइल की तरफ से जो खलल डालने और साजिश रचने की खबरें आ रही हैं, तो सुमित क्या ईरान में इसका कोई असर आपको दिखा? और हमें आप सुमित ये भी बताइए कि कल से शुरू हो रहे खामिनई के अंतिम विदाई समारोह को लेकर ईरान में आप क्या क्या देख पा रहे हैं?
3: सही, देखिए वैसे तो ईरान को इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि ईरान ने तभी इतने दिन तक का इंतजार किया, 125 दिन का इंतजार किया, तब सुप्रीम लीडर के जाके आप कह सकते हैं कि उनकी जो विदाई है या फिर जो उनकी आप कह सकते हैं कि जो सेरेमनी की जा रही है, फ्यूनरल सेरेमनी, उसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अभी के मौजूदा हालात में अगर आप देखें सही, अभी अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ तस्वीरें ताकि आप समझ सके कि अभी थोड़ी देर में यहाँ की सारी सड़कों को बंद कर दिया जाएगा और धीरे धीरे सही रही सही यहाँ पर पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अब ये कुछ सड़कें हैं जहाँ से ट्रैफिक या फिर लोग जो है आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन रात तक इन तमाम सड़कों को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। शख्स जो आप कह सकते हैं फ्यूनरल सेरेमनी में आना चाहते हैं, सुपुर्द खाक आप कह सकते हैं जब उनको किया जाएगा मसद के अंदर, उससे पहले दो दिन के लिए उनको तेहरान में रखा जा रहा, उस समय की तैयारियों के चलते यहाँ पर सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। यहाँ पर हर सड़कों के ऊपर बड़े बड़े ब्लैक कर्टन से पर्दों से ढक दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिया कम्युनिटी के अंदर जब आप उनके मातम की बात करते हैं तो एक तरीके का उनका तरीका है, परंपरा है, और अगर आप देखें हर जगहों पर आपको एक हाथ नजर आएगा जिसको एक सिंबॉलिक तरीके से अगर आप समझे तो ये पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनई का हाथ है, उनकी अंगूठी है, जिनसे उनकी पहचान भी हुई थी बॉडी की जब उनको एयर स्ट्राइक से मार गया था। तब इसी अंगूठी से उनको पहचाना भी गया था, और शायद इसी वजह से अगर आप देखें कि एक सिंबॉलिक तरीके से यहाँ पर हर जगह आपको ये तस्वीरें नजर आती है। अभी के ताजा हालात, क्योंकि आप लगातार तेहरान की बात कर रहे हैं, आज तक की टीम यहाँ मौजूद है, हम लगातार पूरे दिन, कल भी और आज भी हम लगातार इन इलाकों में घूम रहे थे, हमने देखा कि किस तरीके की तैयारियां हैं। 40,000 से ज्यादा जो सिविल डिफेंस के लोग हैं या फिर जो वॉलंटियर्स हैं वो इस समय काम कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, आर्मी की बात करें, तो करीबन 5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज को खासतौर पर तेहरान में रखा गया है। और जब आप प्रोसेशन या फिर जो ये जुलूस है या फिर जो ये मातम का जुलूस है, जब यहाँ से आगे जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है 2 दिन यहाँ रहने के बाद उनको कुंभ ले जाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को, उसके बाद वहां से वो कर्बला और नजफ की तरफ जाएंगे जो इराक में है, उसके बाद उनको मसद जो उनका अपना होम टाउन या फिर उनका अपना गृह क्षेत्र है, वहां पर उनकी बॉडी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इन तमाम दिनों के अंदर यहां पर सिक्योरिटी ऐसी ही रहेगी, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं इलाके के अंदर जो उनकी एयर स्पेस को बंद कर दिया जाएगा। तो ये मौजूदा हालात एक ऐसी छावनी में तब्दील हो जाएंगे जहां पर कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। लेकिन हाँ, इसराइल की धमकी के बाद, इसराइल की बातों के बाद यहाँ पर अलर्टनेस और ज्यादा कर दी गई, और ये धमकी ईरान की तरफ से भी आई कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित तौर पर ईरान उसका बड़ा जवाब देने की तैयारियों में भी है और जवाब इसराइल को दिया जाएगा।
2: बहुत धन्यवाद सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता ईरान से। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस समय मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिकी इसराइली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलखती जनता का समुद्र उमड़ पड़ा। 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाले इस ऐतिहासिक और राजकीय अंतिम संस्कार में दुनिया भर के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत सरकार की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंच चुका है, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के चेहरे शामिल हैं।

0: नम आंखें, गगन भेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेदिशकियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के इस सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभरात्रि।
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच। Acoje, the number one Korean skincare brand now in India.
4: सुप्रीम लीडर को 125 दिनों के बाद सुपुर्द खाक किया जा रहा। हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
5: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
6: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
7: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
8: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
8: सरसों से सरसों।
9: चुनावों में कथित धांधली पर इंडिया अलायंस ने अपना त्रुप का पत्ता चल दिया है। 8 जून को इंडिया अलायंस की मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें 24 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद के दस्तखत है। 28 जून की इस चिट्ठी में मुख्य चुनाव आयुक्त पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पक्षपात का आरोप है। चिट्ठी में लिखा गया है कि विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं। चिट्ठी में 2027 में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर न सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स बल्कि ईवीएम की भूमिका पर भी सवाल है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर संस्थाएं नाकाम होंगी तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाएगा, इसलिए इस पर अदालतों को विचार करना होगा। बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों की हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
10: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
9: अखिलेश यादव का ये बयान उन अटकलों के बाद आया है कि यूपी का चुनाव 2027 से पहले ही कराने की तैयारी बीजेपी ने की है। इन अटकलों की एक बड़ी वजह बीजेपी की सक्रियता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के हमले के बावजूद योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, बल्कि 2017 से पहले के यूपी का हाल की तस्वीर भी खींच रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल में अपनी नई टीम गठित की है। यूपी बीजेपी के 19 उपाध्यक्षों में ओबीसी 8, क्षत्रिय 4, ब्राह्मण 3, वैश्य 2 और 2 दलित चेहरे हैं। बीजेपी कहीं से यह संकेत नहीं देना चाहती कि अगर यूपी में जल्दी चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी नहीं है। यूपी का चुनाव जहां विपक्ष के लिए एक चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में यूपी से लगा झटका ही बीजेपी पर भारी पड़ा था। आज तक ब्यूरो।

0: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
1: Swing and a foul out of play off to the left.
0: Big 12 Radio.
2: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
0: Talk Sport.
3: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
0: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
6: आपका parcel फिर से हमारे घर पे आया है.
7: कुछ तो बात है इस दिल में.
8: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी. ये आपके लिए.
7: कुछ तो बात है इस दिल में.
9: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933.

0: महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर 2.0 के बाद क्या अब शरद पवार की पार्टी में भी दूसरे राउंड की टूट होने वाली है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटाने में लगी एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी के सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, न ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है क्योंकि टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। ऊपर से पवार उद्धव कांग्रेस वाली अखाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी हैं। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जता दी थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं, तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो ये है कि एक दिन पहले ही सचिन अहिर ने उद्धव का साथ छोड़कर डिप्टी चेयरमैन का पद चुन लिया। ऐसे में शरद पवार के सहयोगी ही कांग्रेस में विलय की सलाह दे रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि न तो पार्टी कांग्रेस में मिलेगी, न ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। फिलहाल शरद पवार की पार्टी में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। दो तिहाई टूट के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: राम मंदिर के दान में हुए गबन की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंची है। इस बार जांच का दायरा काफी बड़ा है। दान में हेरफेर की आंच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। सेकेंड राउंड के पहले दिन एसआईटी की टीम ने बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई है। हालांकि एसआईटी और ट्रस्ट की ओर से अभी तक पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसआईटी टीम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी किरण एस कर रहे हैं। एसआईटी मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, दान संग्रह की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच चंपत राय का बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद वे दाग के साथ काम जारी नहीं रखेंगे। इस बीच मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे की पूछताछ के लिए अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, क्योंकि जांच के दौरान सबसे ज्यादा कैश 20,39,000 अविनाश शुक्ला के घर से बरामद किया गया था। कैश के साथ पुलिस को अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय होस बोले बोले, राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा। कांग्रेस का पलटवार, सिर्फ दिखावे के लिए की है निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज, पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक नेता, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चन्नी पहली पसंद, खड़गे करेंगे निर्णय। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक, अल नीनो के कारण देश के कुछ इलाकों में कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा। केतन हत्याकांड में आरोपी सिया और चेतन की 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत, पुलिस ने जब्त किया सिया का दूसरा मोबाइल फोन, कोडवर्ड में किया करते थे दोनों बातें। और तेहरान में अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, मौके पर आज तक मौजूद पल पल की दे रहे हैं जानकारी।

0: नमस्कार, मैं हुशम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हमने दो दिन पहले आपको इसी वारदात में यह दिखाया था कि कैसे केतन केस की जांच के नाम पर पुणे पुलिस ने जिस डमी ट्रायल का ढिंढोरा पीटा था, वो डमी खाई में लावारिस पड़ी है। पुलिस या फॉरेंसिक टीम ने उसकी जांच तक नहीं की। वारदात की टीम ने डमी फेंके जाने के 5 दिन बाद लोहगढ़ किले के पहाड़ी की उसी खाई के करीब जाने का फैसला किया जहां डमी के लावारिस पड़ी होने की खबर थी। जंगल झाड़ियों से गुजरते और दुश्वार रास्तों को पार करते हुए हमारी टीम जब वहां पहुंची तो हैरान रह गई। 5 दिन बाद भी पुणे पुलिस या फॉरेंसिक टीम उस डमी की जांच के लिए वहां पहुंची ही नहीं थी। डमी अब भी वहीं लावारिस पड़ी थी। इसके बाद जैसे ही पुणे पुलिस को हमारी टीम के वहां पहुंचने की खबर लगी, आज डमी को फौरन वहां से हटा लिया गया। फिलहाल पिछले 2 हफ्तों से सुर्खियों में छाया पुणे से 52 किलोमीटर दूर ये लोहगढ़ का किला है और ये इस किले का एंट्री गेट है। यहाँ से लोग सीधे किले के ऊपर जाते हैं चोटी पर। चोटी तक पहुँचने के लिए करीब 125 मीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन इसी एंट्री पॉइंट से 300 मीटर पहले एक गेट है। ये रहा वो गेट। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये सामने उसी किले के एंट्री पॉइंट तक जाती है और इसी सड़क किनारे ये जो गेट है ये उस जंगल की तरफ जहां पर इस किले की खाई है। इस गेट से अंदर दाखिल होने के बाद कुछ कच्चे रास्ते हैं तो कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्ते, फिर आगे जाने के बाद ये कच्चे रास्ते भी खत्म हो जाते हैं। अब बस जंगल झाड़ी और पत्थरों पर चलते हुए आगे का रास्ता तय करना होता है। इस गेट के अंदर के जंगल और किले की गहराई तक पहुंचने का रास्ता हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको बता सकूं कि 18 जून को केतन किले की चोटी से कहां पर गिरा था, उसकी लाश कहां से मिली थी और फिर 28 जून को डमी ट्रायल के तमाशे के नाम पर सिया ने जिस डमी को धक्का दिया था वो कहां पर गिरा था। आज पहली बार आप अपने टीवी स्क्रीन पर किले की चोटी से खाई की गहराई और गहराई से किले की चोटी की ऊंचाई अपनी आंखों से देखेंगे। दरअसल आज तक के संवाददाता श्री कृष्ण पांचाल ने अपने कैमरामैन गोपाल हारने के साथ यह मुश्किल सफर सिर्फ इसलिए तय किया ताकि आपको दिखा सकूं कि 5 दिन पहले पुणे पुलिस और फॉरेंसिक टीम के तामझाम के बीच जिस डमी को सिया ने चोटी से खाई में धक्का दिया था, क्या वो डमी अब भी वहीं पड़ी है या पुणे पुलिस उसे अपने साथ ले गई। हम ये जानना चाहते थे कि जिस जगह डमी गिरी है क्या वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि पुणे पुलिस और फॉरेंसिक टीम पैदल वहां तक पहुंच ही ना सके। तो चलिए आज आपको अपने साथ उस जगह तक लिए चलते हैं और उस डमी का सच पता करते हैं। 2 जुलाई की शाम थी। शाम के 5:23 हुए थे। इससे पहले थोड़ी बारिश हो रही थी, इसीलिए हमारी टीम का सफर थोड़ी देरी से शुरू हुआ।
1: शाम के 5:23 हुए हैं और हम लोहगढ़ किले के पास है। ये जो रास्ता है आपको जो दिखाई दे रहा है वो लोहगढ़ की तरफ एंट्री गेट की तरफ जाता है और दूसरा जो रास्ता है वो जंगल की तरफ जाता है जहां पर केतन अग्रवाल को सिया और चेतन चौधरी ने ऊपर से धक्का दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो किला है वो दिखाई देता है, लेकिन सिया और चेतन ने क्राइम रिक्रिएशन में जो है केतन को यानी कि पुतले को एक धकेला था। उस तरफ हम जाने वाले हैं, जो डमी है वो देखने वाले हैं वहां पर है या नहीं। और पुलिस का कहना है कि वो डमी जो है वहीं पर है और हम उसी जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब कितना दूर है वो देखने की हम कोशिश करेंगे, वहां पर जाकर परखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो मामला है और केतन को किस तरह से धक्का दिया गया था और नीचे गिरने के बाद उसकी हालत कितनी गंभीर होगी ये देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लोहगढ़ का किला है वो दिखाई दे रहा है, कम से कम 300 से 400 फीट ऊंचा है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। चलो आगे हम देखते हैं ये डमी किस तरफ है।
0: हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर अब घने जंगल में दाखिल हो चुके थे। जाहिर है ये जंगल है, वो भी घना, तो यहाँ कोई आता जाता भी नहीं। कुछ दूरी तक तो कच्चे रास्ते ने काम आसान कर दिया था, लेकिन फिर उस कच्चे रास्ते ने भी साथ छोड़ दिया। अब बिना रास्ते के झाड़ियों को किनारे करते सफर जारी रखा। बारिश की वजह से जगह जगह फिसलन भी थी। हमें मंजिल तक पहुंचना भी जल्दी था, क्योंकि अंधेरा होने से पहले लौटना भी था। अंधेरे में वो रास्ता भी नहीं दिखता कायदे से वहां तक जाने के लिए, जो रास्ता था ही नहीं। जंगल में दाखिल हुए अब हमें 17 मिनट हो चुके थे, पर मंजिल अब भी थोड़ी दूरी पर थी।
1: ये पूरा घना जंगल है और अभी 5:40 हुए हैं। हमने 5:23 को चढ़ाई की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहगढ़ किले के ठीक नीचे, जहाँ केतन को धक्का दिया था, उस तरफ आ गया है। 5:40 हुए और भी हमें टाइम लगने वाला है। ठीक किले के नीचे हम आने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर केतन को फेंका गया था, धक्का दिया गया था। चलो।
0: जैसे जैसे अब हम किले की पहाड़ी के दामन के करीब होते जा रहे थे, रास्ता और भी दुश्वार होता जा रहा था। अब आगे चारों तरफ घनी झाड़ियां थी, पेड़ों के कटीले दामन थे और जमीन पर पड़े आड़े तिरछे चट्टान। बारिश की वजह से जिस पर चलकर गुजरते हुए बराबर फिसलने का खतरा था। यहाँ से रास्ता थोड़ा मुश्किल था, इसलिए रफ्तार भी कम करनी पड़ी। फिर एक जगह अचानक आखिरकार हमें पहाड़ी की चोटी नजर आई। 400 फीट नीचे से लोहगढ़ किले की पहाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, सामने से बिल्कुल खड़ी, आम पहाड़ों से बिल्कुल अलग। और फिर हमें अचानक वो नजर आ गई जिसके लिए हम इस मुश्किल और खतरों से भरे सफर को तय कर यहाँ तक पहुंचे थे। तब घड़ी में शाम के 5:45 हुए थे, यानी गेट से इस जगह तक आने में हमें कुल 22 मिनट लगे।
1: केतन अग्रवाल को सिया और चेतन ने इसी लोहगढ़ से, मतलब 300 से 400 फीट ऊंचाई से धक्का दिया था, इसी ऊपर से यानी लोहगढ़ से। और यहाँ, मतलब जहाँ हम खड़े हैं, आज तक की टीम खड़ी है, वहां पर केतन अग्रवाल की डेड बॉडी मिली है। और ये जो परिसर है, आपको दिखाई देगा कि ये पूरा जंगल है और अभी फॉग है। और जो क्राइम रिक्रिएशन सीन किया गया था, सिया हो या चेतन हो, उन्होंने जो डमी को, जिस डमी को धक्का दिया था, वो डमी अभी हमारे सामने है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो, उसको मार पड़ी थी। और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है। और उसी तरह, मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी और किस क्रूरता से जो है सिया हो या चेतन हो, उन्होंने धक्का दिया था। और देखिए एक बार फॉग चला गया है, ये लोहगढ़ है और उसकी चोटी है, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे पूरा जंगल का एरिया है, यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं, हवाएं तेज है। तो आप सोच सकते हैं कि केतन अग्रवाल के साथ क्या हुआ है। और अभी यहाँ पर जो डमी है, वो लोनावला ग्रामीण पुलिस ने जो है यहाँ से लेके नहीं गए, मतलब पुलिस, ग्रामीण पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसे जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं।
0: बस इसी चीज की तलाश में गुरुवार यानी 2 जुलाई की शाम 5:45 पर हमारी टीम यहाँ पहुंची थी।
2: हमें लगा था शायद जिस मेहनत और सरकारी खर्च पर पुणे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे तामझाम के साथ केतन की मौत की जांच के नाम पर डमी ट्रायल किया था, उसके नतीजे की कुछ जांच भी की होगी, लेकिन अफसोस ये डमी हमें अब भी यही इसी हालत में लावारिस पड़ी मिली। देश के किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, उनका जवाब यही होगा कि डमी ट्रायल की जांच तभी मुकम्मल होती है जब डमी के गिरने की जगह पर डमी के गिरने की पोजीशन, उसके टूटने फूटने कपड़े जूते की जांच की जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस या फॉरेंसिक टीम ने आधा अधूरा काम किया था। केतन के वजन की डमी तैयार की, ठीक केतन के हाइट की डमी तैयार की, डमी को जीन्स पैंट पहनाए, लाल कलर की टी शर्ट पहनाई, यहाँ तक कि डमी के पैरों में जूते भी पहनाए गए। ये सब कुछ अब भी यहाँ जस का तस पड़ा है। जीन्स और टी शर्ट तो शायद फट भी गए, पर ये जूता अब भी किसी के काम आ सकता है। सरकारी खर्चे पर खरीदी गई ये चीजें पर लावारिस पड़ी है। चलिए डमी या डमी के पहनाए गए कपड़ों या जूतों का खर्च छोड़ देते हैं, पर जिस चीज के लिए पुणे पुलिस ने डमी ट्रायल किया था, कम से कम उसे तो पूरा कर लेती। हमारी टीम ने आपको पूरा रास्ता दिखा दिया, ये भी बता दिया कि सड़क से यहाँ तक आने में सिर्फ 23 मिनट लगे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस या फॉरेंसिक टीम पिछले 5 दिनों में यहाँ नहीं पहुँच पाई। हालांकि इस दौरान हमने उस डमी को भी ढूंढने की कोशिश की जिस डमी को डमी ट्रायल के नाम पर 1 जुलाई को सिया के बाद दूसरे आरोपी चेतन से पहाड़ी की इसी चोटी से नीचे फिकवाई गई थी, लेकिन एक तो अंधेरा होने का खतरा, ऊपर से दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लिहाजा उस डमी तक हम पहुंच नहीं पाए। हालांकि पुणे पुलिस के सूत्रों ने हमें बताया कि चेतन की फेंकी डमी भी पहाड़ी के दामन में यहीं कहीं पड़ी हुई है। हमने काफी कोशिश की पुणे पुलिस से इस बारे में बात करने की, पर कोई भी इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता था। हालांकि एक पुलिस अफसर ने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया कि हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि सिया या चेतन ने केतन को किस तरह धक्का दिया था। हमारा मकसद नीचे जाकर डमी को चेक करना था ही नहीं। अगर पुणे पुलिस का ऑफिशियल जवाब भी यही है, तो फिर सवाल तो बनता है कि डमी ट्रायल किया ही क्यों था, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हिसाब से डमी ट्रायल तभी पूरा होता है जब उसे फेंके गए जगह पर जाकर उसकी जांच की जाए।
3: देखिए, डमी ट्रायल का इम्पोर्टेंट बात ये जो मैंने पहले भी कही कि डमी ट्रायल जो है एक इंसान के ऊपर नहीं होती है, सिमिलर वेट हाइट के व्यक्ति से डमी ट्रायल किया जाता है, और जब डमी ट्रायल किया जाता है तो उसका इम्पोर्टेंट ये है कि वो डमी गिरा कहाँ पर, डमी गिरा और उसके ऊपर क्या क्या निशान आए, या कहाँ कटा या कहाँ फटा या कहाँ पर स्क्रैचेस हैं उसके कपड़ों के ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी व्यक्ति ऊपर से गिरा या फेंका गया तो उसकी बॉडी कहाँ मिली और हमें डमी कहाँ मिलता है, तो ये दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी किया जाना चाहिए, तो ये बात पता चलेगी कि हमने कितना सही जो है आकलन किया था। तो नीचे गिरने के बाद डमी का प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए, और मेरा तो ये मानना है कि जो मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ऑटोप्सी किया होगा उनसे या फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ में उसका एग्जामिनेशन डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स की बात तो छोड़ दीजिए, इंटरनल ऑर्गन्स तो जाहिर बात है डमी में नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सटर्नल जो भी साइन है सिम्टम्स है वो उनको अकाउंट में लेना जरूरी है।
2: तो अब आप समझ गए होंगे कि पुणे पुलिस के लिए इस डमी ट्रायल का मतलब क्या था, सिर्फ पब्लिसिटी, इसका जांच से कोई लेना देना ही नहीं था। इस डमी ट्रायल के जरिए केतन की मौत के तरीके के बारे में पुलिस को कुछ जानना ही नहीं था, उनका मकसद साफ था, काम करो न करो उसका जिक्र जरूर करो। ये लावारिस डमी पुणे पुलिस के उसी बेकाम जिक्र का बेजान सबूत है। वारदात की टीम ने पहली बार 1 जुलाई को इस लावारिस पड़ी डमी की देश को तस्वीर दिखाई थी और तभी ये खुलासा कर दिया था कि कैसे पुणे पुलिस ने डमी ट्रायल के नाम पर तमाशा किया। इस खबर को दिखाए जाने के अगले दिन यानी 2 जुलाई को वारदात की टीम फिर से उसी जगह पहुंची थी, सिर्फ ये देखने कि पुणे पुलिस अब भी यहां तक पहुंची कि नहीं। पर डमी तब भी वहीं उसी जगह उसी हालत में लावारिस पड़ी थी। इसे कैमरे में शूट करने के बाद हमारी टीम ने पुणे पुलिस से बात करने की कोशिश की। उन्हें बताया कि हम उस जगह से होकर आ रहे हैं और अब तक पुलिस की टीम वहां जांच करने या डमी को उठाने गई नहीं। पुणे पुलिस को अब पता चल चुका था, लिहाजा 3 जुलाई को पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर वहां से डमी को हटा दिया। अब फॉरेंसिक जांच करके हटाया या यूं ही उठाकर ले गए पता नहीं। पर एसपी साहब ने इस सवाल पर इतना जरूर कहा कि केतन के स्टैचू को निकाल लिया गया है।
4: रिक्रिएशन किया गया था, चेतन और सिया को वहां पर लेके जाके केतन का वजन जितना जो स्टैचू है नीचे फेंक दिया था, लेकिन अभी तक जो स्टैचू है वो दोनों भी नीचे है, पुलिस वहां तक गई नहीं। इसका मतलब क्या होता है?
5: वो हमने रिमूव करवा दिया है।
2: यानी ये वारदात का असर ही था कि पुलिस को ख्याल आया कि काम का सिर्फ जिक्र ही मत करो, फिक्र भी करो। चलिए अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमने इसी वारदात में 2 दिन पहले यानी 1 जुलाई को दिखाई थी। ये तस्वीर तो याद होगी आपको, अभी 3 दिन पहले की ही तस्वीर है, जब 28 जून को पुणे पुलिस पूरे तामझाम के साथ सिया को अपने साथ लोगढ़ किले की पहाड़ी पर ले गई थी सुबह सुबह। फिर पहाड़ी की चोटी से खबर आई कि पुणे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने केतन के कदकाठी और वजन की एक डमी तैयार की है, जिसे सिया के हाथों ठीक उसी जगह से नीचे फिकवाया गया जहां से 18 जून को केतन को धक्का दिया गया था। पहाड़ी से सिर्फ खबर इसलिए आई थी क्योंकि पुलिस ने उस दिन मीडिया के ऊपर आने पर रोक लगा दी थी। बाद में एक धुंधली सी तस्वीर आई जिसमें पहाड़ी से एक पुतले को नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। पुणे पुलिस का रिक्रिएशन खत्म होता है, डमी खाई में जाती है और पूरी पुलिस टीम सिया को कुछ इस अंदाज में अपने साथ नीचे लाकर मीडिया के भीड़ के बीच गाड़ी में बिठाकर चली जाती है। इसके बाद हर चैनल पर खबर थी, खबर पुणे पुलिस के रिक्रिएशन और डमी ट्रायल की। लोगों को लगने लगा सच में पुणे पुलिस बहुत मेहनत कर रही है।
6: आज हमने सुबह चेतन चौधरी को जो अक्यूज्ड है उनको हम जो भी घटना स्थल है वहाँ पर रिक्रिएशन के लिए लेके गए थे और जैसी घटना हुई उसी हिसाब से हमने मेमोरेंडम में वो रिक्रिएशन किया हुआ है।
7: लेकिन कहाँ कहाँ मतलब उसको ले जाया गया, क्योंकि क्राइम में यानी कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि चेतन जो है सिया और केतन के पीछे है, मतलब इसी तरह से वो रिक्रिएशन किया गया है?
6: जैसी सिचुएशन थी उसी हिसाब से अक्यूज ने जैसे बताया हमने वो स्पॉट रिक्रिएट किया हुआ था क्राइम एरिया।
7: लोहगढ़ पर कितने जो है ठिकानों पर वो रुके थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था?
6: जैसे मैंने कहा जहाँ जहाँ वो रुके थे जहाँ पे उन्होंने स्पॉट दिखाया वो हमने
7: ठिकानों पर रुके थे वहाँ पे,
6: वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है पर जहाँ रुके थे उन्होंने हमें बताया।
7: भी यूज किया है, कितने किलो का था और किस तरह से धक्का दिया गया?
6: हाँ, हमने डमी का यूज किया था, केतन जो ये हुए है इसमें उनका जो वेट था उसके वजन का हमने डमी यूज किया था उसमें।
7: लेकिन सिया को भी आपने मतलब केतन को धक्का देने का जो रिक्रिएशन किया था, अब जो चौधरी है उसको भी धक्का देने का ये किया रिक्रिएशन, मतलब ये दोनों आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर?
6: ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम अलग अलग उसमें हमने चेक किया कि कैसे कैसे सिचुएशन हुई थी।
2: तो खुद पुणे पुलिस की जुबानी आपको क्राइम सीन के रिक्रिएशन और डमी ट्रायल के तमाशे की कहानी सुना दी। अब चलिए इस पूरे तमाशे के बाहर का पूरा सच सिलसिलेवार आपको सुनाता। पहले 3 दिन से लावारिस पड़ी इस डमी जो कि सिया ने 28 जून को नीचे फेंका था उसका सच बताता हूँ। डमी ट्रायल पुलिस क्यों करती है, चलिए केतन का ही केस ले लेते हैं। केतन की मौत पहाड़ी से नीचे गिरने की वजह से हुई। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो केतन खुद फिसल कर गिरा या उसे धक्का देकर गिराया गया। पर ये कैसे पता लगे, तो फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर पुणे पुलिस ने ठीक केतन के कदकाठी और वजन का पुतला तैयार किया। इसके बाद ये मानकर कि सिया ने ही केतन को धक्का दिया था, सिया से उस पुतले को उसी जगह से नीचे धक्का देने को कहा गया। सिया ने धक्का दे दिया, पर अब सवाल ये है कि सिया ने जिस पुतले को धक्का दिया था वो नीचे कहां जाकर गिरा, कितनी दूरी पर गिरा। जाहिर है ये जांचने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम को नीचे उस जगह पर जाकर उस पुतले को जांचना था कि वो कितनी दूरी पर गिरा। पर जब पुणे पुलिस और फॉरेंसिक टीम सिया के पुतला फेंकने के बाद नीचे गए ही नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा कि धक्का देने पर नीचे केतन कहां गिरता या खुद फिसलने पर वो नीचे कहां जाकर गिरता। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि पुणे पुलिस ने इस डमी ट्रायल का तमाशा किया ही क्यों, जब किसी ने नीचे जाकर ये देखा ही नहीं कि पुतला कहां और किस पोजीशन में गिरा है। अब ऐसे में वो अपनी जांच रिपोर्ट में इस डमी ट्रायल का नतीजा क्या लिखेंगे? मतलब 3 दिन हो गए, बेचारा पुतला लावारिस पड़ा है, जंगल को छान कर मीडिया वाले लावारिस पुतले से मिलाए, पर क्या मजा जो पुलिस और फॉरेंसिक टीम जंगल में कुछ पैदल चलकर पुतले से मुलाकात कर लेते। कैमरामैन गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे आज तक।
0: उधर 2 किश्तों में कुल 11 दिन की पुलिस रिमांड के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने सिया और चेतन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पहले पुलिस सिया को उसकी गिरफ्तारी के बाद पहली बार उसे अपने साथ लेकर उसके घर गई थी। सिया अपने घर पर करीब 1.5 घंटे तक रुकी। सिया के घर के बाद पुलिस सिया को उस जगह भी ले गई जहां उसने चेतन के साथ मिलकर केतन के कत्ल का रिहर्सल किया था।
2: पुणे के पौश इलाके में मौजूद ये सिया का घर है। 23 जून को पुणे पुलिस ने सिया को उसके इसी घर से गिरफ्तार किया था। तब से अब तक सिया पुणे पुलिस की हिरासत में है, लेकिन गिरफ्तारी के ठीक 10 दिन बाद सिया पहली बार वापस अपने घर आती है। पर इस बार वो अकेले नहीं थी, उसके साथ उसे घेरे पुलिस वाले थे। अब सवाल ये है कि पुलिस सिया को अपने साथ लेकर उसी के घर क्यों गई? तो पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो सिया के उन कपड़ों को बरामद कर जब्त करना चाहती थी जो उसने 18 जून की सुबह केतन का कत्ल करते वक्त पहना हुआ था।
6: अभी जो अक्यूज्ड है वो पुलिस कस्टडी में है, और पुलिस कस्टडी में कुछ हमारे जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो भी कुछ पंचनामा है उसके लिए हम आरोपी की तरफ पूछताछ कर रहे हैं।
7: लेकिन आज सुबह कितने बजे ले जाया गया था, कितने घंटों तक ये तब्दीज चली? कहा जा रहा है कि घर और घर के बाद कैफे ले जाया गया था।
6: जो भी अक्यूज ने बताया है कुछ तपास में जो हमें जरूरी चीजें थी उसके लिए हमने आज पंचनामा किया हुआ है।
7: तो कपड़े भी जिस दिन ये घटना हुई थी, घटना को अंजाम दिया था, उस दिन के कपड़े भी जो है तो जब्त किए गए हैं।
6: देखिए तपास चालू है, जो आज जो अक्यूज ने बताया उस हिसाब से हमने आज पंचनामा किया है।
2: करीब 1.5 घंटे तक पुलिस सिया के साथ उसके घर पर रही। सिया के घर के बाद पुलिस सिया के साथ उसके घर से 5 मिनट की दूरी पर उसे एक और जगह ले गई। दरअसल पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान सिया ने बताया था कि केतन के कत्ल से पहले उसने चेतन के साथ मिलकर कत्ल की पूरी प्लानिंग की, और ये प्लानिंग उसने अपने घर से 5 मिनट की दूरी पर एक दूसरी जगह पर की थी। इसी प्लानिंग के दौरान दोनों ने धक्का देने का रिहर्सल भी किया था। चूंकि शुक्रवार को ही सिया और चेतन की पुलिस कस्टडी की मियाद खत्म हो रही थी, लिहाजा पुलिस सुबह सुबह ही सिया को अलग अलग जगहों पर ले गई। चूंकि मीडिया को खबर थी, लिहाजा मीडिया लगातार सिया और पुलिस के पीछे थी। इसी दौरान एक जगह मीडिया के कैमरों को देख सिया ने कुछ इस अंदाज में अपनी उंगली दिखाई। सिया की इस हरकत और उसके तेवर से साफ है कि न तो वो परेशान है, न उसे कोई खौफ, और न ही अपने किए पर शायद कोई पछतावा। इस बीच पुलिस हिरासत में सिया और चेतन से हुई पूछताछ में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक केतन के कत्ल से पहले चेतन और सिया ने एक और शख्स को अपनी साजिश में शामिल करने की कोशिश की थी। वो शख्स चेतन का दोस्त और स्कूल का क्लासमेट था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया और चेतन ने उसे केतन का कत्ल करने की सारी साजिश बता दी थी। दोनों चाहते थे कि वो भी इस साजिश में उनका साथ दे और केतन को पहाड़ी से धक्का देने के लिए उनके साथ चले, मगर चेतन के दोस्त ने दोनों को ऐसा न करने की सलाह दी थी। फिलहाल पुणे पुलिस चेतन के उस दोस्त से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक केतन के कत्ल में अब तक उस तीसरे शख्स का कोई सीधा हाथ नजर नहीं आ रहा। उधर चार दिन की सिया और चेतन की पुलिस रिमांड शुक्रवार को खत्म हो गई, जिसके बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया। चेतन और सिया कुल दो किश्तों में 11 दिन तक पुलिस हिरासत में रहे। पुलिस हिरासत की कुल मियाद 14 दिनों की ही होती है, लिहाजा कोर्ट ने सिया और चेतन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कैमरामैन गोपाल हार ने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे, आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
9: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
8: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
3: हाँ, कहा था।
2: लेकिन ये तय कैसे होता है?
3: प्रेशर। जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है, तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाते हैं।
4: पहला भारतीय चैनल।
2: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं,
3: क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुंचते हैं।
5: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है।
6: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं, जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
3: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
7: आज तक की खबर का असर हुआ है,
3: हर दिन कमाया जाता है।
2: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
3: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
2: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
8: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

बढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय होश बोले बोले, राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा, कांग्रेस का पलटवार, सिर्फ दिखावे के लिए की है निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज, पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में गई विधायक नेता, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी

पुणे केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया और चेतन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, 16 जुलाई तक कस्टडी में। केतन हत्याकांड में पुलिस का हत्या के पर्याप्त सबूत मिलने का दावा। जब्त किया दूसरा मोबाइल, कहा कोडवर्ड में बात करते थे दोनों। अब पॉलीग्राफ टेस्ट से होगा खुलासा। बच्चों में एनर्जी ड्रिंक की बढ़ती खपत को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा निर्णय, स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी पर रोक। गुजरात में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम, एडीएस ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मूसलाधार बारिश से मुंबई में 3 दिन में 6 मौत, खोखलेपेड़ मैनहोल, बिजली के तारों से जा रही जान, बीएमसी पर उठे सवाल। महाराष्ट्र आसपास में भारी बारिश का दौर, मुंबई में 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट, 5 दिन में गुजरात गोवा में भारी बारिश का अनुमान। लोनावाला में भारी बारिश के बाद मशहूर भूसी डैम ओवरफ्लो, मनमोहक दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, सावधानी बरतने की अपील। गुजरात के नवसारी डांग जिलों में मूसलाधार बारिश, उफान पर अंबिका और कई नदियां, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश के कारण खेत नदियां सड़कें तब्दील, पानी भरने से लोग परेशान। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भरा, उपनते नाले में फंसी बस क्रेन से खींचकर बाहर निकाली गई। मैक्स मेनन मुआवजाकी का ट्रेलर रिलीज, 10 जुलाई को जारी होगा ट्रेलर। सिद्धार्थ मेनन, मंदिरा बेदी, नफीसा अली मुख्य भूमिका में, 24 जुलाई को सिनेमाघरों में। राघव जुयाल की फिल्म तेरा भाई स्टार का टीजर जारी, यूट्यूबर निहारिका और एक्टर संजय कपूर आएंगे नजर, 30 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज। भारत के बाद जापान के सिनेमाघरों में 10 जुलाई को धुरंधर देगी दस्तक, रणबीर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। अरशद वारसी की एक्टिंग में नहीं बचा पाई प्रीतम एंड प्रेडो की ढीली स्क्रिप्ट, हल्की पुल्की साइबर थ्रिलर से दो ही वेब सीरीज। एनिमेटेड डिज्नी एडवेंचर फिल्म मोआना का ट्रेलर आउट, पौराणिक कथाओं प्रशांत महासागर के नाविकों की सच्ची कहानियों से प्रेरित, 10 जुलाई को हिंदी अंग्रेजी में होगी रिलीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई की महानगर पालिका बीएमसी का एक वर्ष का बजट 80,000 करोड़ से अधिक का है। यह आंकड़ा हमारे देश के 7 राज्यों के बजट से भी बड़ा है, लेकिन हर वर्ष करोड़ों रुपए नालों की सफाई और पानी की निकासी के नाम पर बीएमसी खर्च करती है, और फिर भी 3 दिन की ही बारिश ने बीएमसी के दावों की पोल खोलकर रख दी। ये बीएमसी की नाकामी ही है कि 3 दिन में बारिश के दौरान हादसों में 6 मुंबई करों की जान चली गई। सवाल यह है कि इन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार बीएमसी नहीं तो आखिर कौन है?

0: 20 जून मुंबई पेड़ गिरने से विहान की मौत, 1 जुलाई नवी मुंबई सुरेश लोखंडे की मौत, 1 जुलाई डोंबिवली शशि चक्र की मौत, 2 जुलाई मुंब्रा आलिया की मौत, 2 जुलाई मुंबई असलम शेख की मौत, 3 जुलाई मीरा भयंदर स्कूटी सवार की मौत। मुंबई में 3 दिन से हो रही बारिश के दौरान हादसों की बाढ़ सी आ गई है। 3 दिन में मुंबई और उसके पास के अलग अलग इलाकों में सिस्टम की लापरवाही ने 6 लोगों की जान ले ली।
1: मुंबई में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश में काफी सारे हादसे इस तरीके से हुए हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई है। यहां तक कि हमने जब देखा था सबसे पहले मंगलवार को 11 साल के एक बच्चा का जो स्कूल वैन है उसी के ऊपर, चलती वैन के ऊपर एक पुराना पीपल का पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद और भी दूसरे हादसे हुए, जहां पर कि हमने देखा नेरल में 2 लड़कियां जो हैं वो अपने जब स्कूल से निकली तो अचानक से एक जो खुला तार था वो बिजली का, वो अचानक से पानी में गिरा हुआ था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो बच्चियां जो थी वो उनको करंट लग गया, अभी भी अस्पताल में हैं। इसी तरीके से मुंब्रा इलाके के में भी एक बच्ची की मौत हो गई, 17 साल की वो लड़की थी, जिसकी वजह से अचानक वो जब घर से निकली तब एक मौत उसके सामने खड़ी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो तार था वो गेट के पास ही कहीं लगा हुआ था और गेट छूने से ही उसे करंट लग गया था, ऐसा बताया जा रहा था।
0: जिस बीएमसी का बजट देश के कई राज्यों से भी ज्यादा है, जो बीएमसी पूरे देश ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका है, जिस बीएमसी का सालाना बजट 80,000 करोड़ से ज्यादा का है, 3 दिन की मूसलाधार बारिश ने उसी बीएमसी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। पूरा विपक्ष एक

0: में बारिश से हो रहे हादसों को लेकर बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार पर तंज कस रहा है।
1: अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और कड़क।
0: AIMIM ने कहा, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए BMC कमिश्नर और मेयर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
1: देखिए, देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाला शहर मुंबई, यहाँ का जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है, काफी राज्यों से ज्यादा बजट है। इस साल का अगर आप बजट देखेंगे 2026-27 का, तो 80,992 करोड़ रुपए का बजट है ये। और इस बजट में आप देखिए, बारिश आई मुंबई में, अफरा तफरी का माहौल, सब तरफ पानी भर गया, ट्रेनों के पास, रस्तों पे, सब तरफ। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो 3 महीने से बड़े बड़े दावे कर रही थी कि ड्रेनेज क्लीन कर दिया, सीवरेज क्लीन कर दिया, मीडिया को लेके जा रहे, फोटोग्राफी दिखा रहे, ये तमाम इनके झूठे दावे, पूरे खोखले दावे पब्लिक के सामने आ गए, पूरी तरह से बेनकाब हो गए इनके दावे। आज अब देखिए मुंबई की हालत क्या है।
0: आज मुंबई से सटे मीरा भयंदर में प्रशासन की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई। नारियल के पेड़ के नीचे दबने से जो स्कूटी सवार घायल हुआ था, उसकी मौत हो गई। कल यहां मूसलाधार बारिश के दौरान चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया था। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि नारियल का पेड़ खोखला हो गया था। मुंबई में मॉनसून ने एक बार फिर सिविक सिस्टम की लापरवाही और खामियों को उजागर कर दिया है। देखिए नाला सोपारा में पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क पर कैसे सैलाब आ गया है। वैसे भी बारिश के बाद इलाके में जलभराव हो रहा है। ऊपर से पाइपलाइन फटने से सैकड़ों गैलन पानी बहने से ऐसा लग रहा है मानो पूरा इलाका तैर रहा हो, और इस सैलाब में हादसा भी हो सकता है। हर बार की तरह मूसलाधार बारिश के बाद अंधेरी समेत कई इलाकों में भी पानी भर गया, जिससे आवाजाही प्रभावित रही।
2: काम कहीं ना कहीं मुंबई महानगर पालिका का अब भी जारी है, जिसकी वजह से इतनी कम बारिश में भी आप देख सकते हैं लगभग 1 फीट तक पानी जो है वो यहां पर इकट्ठा हुआ है। मुंबई के लिए और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, थाने, नवी मुंबई, रायगढ़, पालघर, इनके लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। तो वहीं जो महाराष्ट्र के सेंट्रल पार्ट्स हैं, खास करके जो घाट इलाके हैं, वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही प्रशासन द्वारा लोगों से भी अपील की गई है कि वो ऐसी जगहों पर ना जाएं, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड और फ्लडिंग का खतरा जो है वो बताया गया है।
0: कल मुंबई के साकीनाका में खुले मैनहोल में गिरने से असलम शेख नाम के शख्स की मौत हो गई थी। BMC की लगातार हो रही किरकिर के बाद आज मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी मैनहोल के पास खड़े दिखाई दिए। भले ही साकीनाका मैनहोल मौत मामले में BMC ने 10 लाख का मुआवजा और 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन परिजन पूछ रहे हैं कि क्या ये मुआवजा असलम को वापस ला पाएगा।
3: सरकार में तो सबसे बड़ी ना डिसिप्लिन की कमी है सर, और यहाँ का हमारा जो कानून का सिस्टम है ना वो स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल भी कानून का सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले मर्डर हुआ, चलती गाड़ी में मर्डर हुआ ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों लोगों को खौफ नहीं है कि अगर किसी की जान के साथ हम लोग खिलवाड़ करते तो उनको भी कड़ी सजा होगी? इस चीज का क्यों खौफ नहीं है? रात का वो 11 बजे वो बच्चा आने वाला, उसकी क्या गलती थी? छोटी सी बहस पे वो हो गया। आज हमारे भाई की क्या गलती थी? छोटी सी चीज पे उनका जान चली गई। तो कानून का खौफ क्यों नहीं है लोगों को?
0: आज NCP SP विधायक रोहित पवार पीड़ित परिवार के घर परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि मुआवजे के साथ सरकार इस बात की गारंटी दे कि आगे ऐसे हादसे नहीं होंगे। महाराष्ट्र में मॉनसून जानलेवा साबित हो रहा है। 23 जून से सक्रिय होने के बाद पेड़ गिरने की घटनाओं में कई गुना इजाफा हुआ है। 30 जून से 1 जुलाई के बीच हुई भारी बारिश के दौरान BMC ने मुंबई में पेड़ गिरने की करीब 90 घटनाएं दर्ज की। इसी दौरान 30 शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी सामने आई। बारिश के दौरान करंट उतरने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, 1 जुलाई को 113 पेड़ गिरने के मामले सामने आए। वसई में भी 24 घंटे में 124 मिलीमीटर बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। वसई पश्चिम के गिरीश गांव के बदामी स्टॉप क्षेत्र में सड़क पर पानी भरा है। वहीं पुणे में भी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुणे के लोनी कालभोर गांव में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से एक 2 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद बद इंतजामी और लापरवाही से हो रहे हादसों के कारण मेयर रितु तावड़े बैकफुट पर हैं। रितु तावड़े ने शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर उनके चैम्बर में बिना अनुमति घुसने, गैर कानूनी तरीके से शूटिंग करने, उनके गैर मौजूदगी में उनके ऑफिस से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स ले जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
5: आज 3 जुलाई 4:15 बजे, मेरे ख्याल से 3:45 यहाँ पे मैं नहीं थी क्योंकि मैं रोड पे थी। मैं पूरे चेकिंग मैनहोल से लेके पूरा मेरा ब्यौरा वहां पे चालू था और हमारी जो किशोरी पेडनेकर मैडम है, विरोधी पक्ष नेता, उन्होंने मेरे केबिन में आके, अब उनका ऐसा कहना है कि मैं आपके केबिन के अंदर नहीं आई, लेकिन मेरा केबिन यहां से लेके बाहर का जो मेन एंट्रेंस है वहां तक मेरा केबिन स्टार्ट होता है और मेरा जो इम्पोर्टेंट कागज का लेटर्स है उसके सब रिप्लाई बनना बाहर एमएस डिपार्टमेंट, ये महापौर का है। अब वहां पे वो आई और वहां पे उन्होंने उनका कैमरा ऑन किया। अगर आप सीसीटीवी में ठीक से देखेंगे तो उनका जो बंदा है वो पूरा मेरा केबिन घुमा घुमा के दिखा रहा है। अब तुमको अगर लेटर देखना है तो मेरे केबिन में पूरा कैमरा 4 कॉर्नर्स घुमाने की जरूरत क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद में मैं तो कहती हूँ कि आप रेखी करने आए थे, ट्रेसपासिंग करने आए थे या कोई इम्पोर्टेंट पेपर से उसकी फोटो निकालने के लिए आए थे। ये जो परंपरा है ये मुंबई महानगर पालिका में आज तक किसी भी विरोधी पक्ष नेता ने इस तरह नीचापन बोलते ना, इस तरह से काम कभी नहीं किया था जो किशोरी पेडनेकर ने किया।
4: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हो रही राजनीति में नया चैप्टर उद्धव ठाकरे ने जोड़ दिया। अपनी पार्टी की रक्षा में नाकाम रहे उद्धव अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड के बाद श्री राम रक्षा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 5 जुलाई को दादर में वो सार्वजनिक रूप से श्री राम रक्षा स्त्रोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस बीच पहली बार संघ की तरफ से बयान आया कि दोषियों पर कार्रवाई हो और हिंदू संयम बरतते हुए राष्ट्र विरोधी की साजिश से सतर्क रहे। वहीं नागपुर में मोहन भागवत से जब श्री राम मंदिर केस के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, राम राम।

0: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे।
1: चोरी की खबरों से श्रद्धालुओं को निराशा हुई, भक्तों को आघात पहुंचा, आम लोगों को अब भी न्याय की उम्मीद है, लेकिन इस चोरी कांड में राजनीति को भरपूर संभावनाएं दिख रही हैं। क्योंकि कम ही ऐसे चोरी घोटाले भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिलते हैं जिनमें सियासत को संघ बीजेपी वीएचपी पर संवेद हमले करने का मौका मिलता है। यही वजह है कि यूपी में अखिलेश से लेकर दिल्ली में कांग्रेस तक और पूरब में ममता से लेकर पश्चिम में उद्धव ठाकरे तक अयोध्या के चढ़ावा चोरी के कांड को लेकर अब राजनीतिक मोर्चेबंदी कर चुके हैं। पार्टी में टूट और गठबंधन में फूट के किस्सों से परेशान उद्धव ने अपनी सियासत की रक्षा के आगे राम रक्षा आंदोलन करने का आह्वान कर डाला है।
2: अब जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा, और मैं तो कहता हूं कि मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले, पूरे देश में रहने वाले जो भी हिंदू है वो सारे इस आंदोलन में आए। 5 तारीख को मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, जो भी राम भक्त हैं और जितने सारे हिंदू जिनको ये सारी बातें पसंद नहीं है, गुस्सा है दिल में, वो हमारे साथ आए। दादर में आने वाले रविवार को 5 तारीख है, लगभग दोपहर के 4 बजे के आसपास मारुति का मंदिर है जहां पहले कबूतर खाना हुआ करता था, वहीं पर एक हनुमान मंदिर है, वहां हम सब सारे इकट्ठा आएंगे, राम रक्षा हनुमान स्तोत्र और राम हनुमान चालीसा हम वहां सबके साथ बोले।
1: वैसे महाराष्ट्र की सड़कों पर सियासत की हनुमान चालीसा अक्सर शनिवार को हुआ करती थी, लेकिन इस बार उद्धव ने रविवार को राम नाम की राजनीति करने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये था कि जब चोरी अयोध्या में हुई तो चालीसा महाराष्ट्र में पढ़ने का क्या फायदा।
2: एक एक मजाक की बात मैंने की, क्योंकि कल ही मैंने सुना कि अमित शाह भी खुद गए ने, ऐसे किसी ने कहा है, तो बात छोड़ो, मैं तो दो बार और हमारे साथी जो है संजय राउत जी, आदित्य वगैरह, हमारे सब साथी वहाँ दो चार बार गए हुए हैं। मैं तो खुद चीफ मिनिस्टर बनने के पहले भी गया था और उसी वक्त मैंने नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। तो हमारे लिए मंदिर का महत्व ये है, सरकार बाद में, मंदिर पहले।
1: अयोध्या में चोरी पर महाराष्ट्र के लोगों को उद्धव क्यों जागरूक करना चाहते हैं, इसका मर्म उद्धव के अगले बयान से समझ में आता है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के दान लूट को विधायकों सांसदों की लूट के बराबर पाप माना है।
2: कि आज जी का दरोडेखोरी चाललेली आहे, राजकीय पक्ष फोडले जात आहेत, आमदार खासदार चोरले जात आहेत, खरेदी विक्री होते, याला ऑपरेशन नाव दिले जाते, ऑपरेशन हे ऑपरेशन ते, मग आता हे ऑपरेशन राम मंदिर भाजपा करते का, हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की या सगळ्या बातम्या दाखवले जात असतील नसतील, बातम्या छापून येत असतील नसतील, पण चोरी तर होते। राम मंदिरावरती दरोडा तर टाकला जातोय, टाकला गेलाय, त्याच्याबद्दल पुरावे सुद्धा दिले गेलेत। काही जणांचं म्हणणं असं आहे की त्या चोरीचा पैसा हा इतर पक्ष फोडण्यासाठी वापरला जातोय, हे फार गंभीर आहे।
3: जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थक्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है, जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग सबसे पहले डाका डाला है राम मंदिर पे। आप कोई एक मुसलमान पैदा करेंगे पाकिस्तान से और बोलेंगे उनका हाथ था उसमें, वो बम डालने को आएगा, उसके पास RDX है, टेरर अटैक करेगा। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी ने, अंडरवर्ल्ड चला रहे लोग। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो नेता है, जो कभी किसी को डरते नहीं, वो नेताजी ने भी कहा कि मुझे डर लगता है नाम लेने।
4: जो बूंद से गई है वो हौस से नहीं आती। जिस पार्टी ने राम का अस्तित्व को नकारा, उस पार्टी के आज देश में क्या हाल हुए हैं ये देश की जनता देख रही है। और ऐसे ही श्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने राम की आस्था रखने वाले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति तोड़कर हिंदुत्व की, कांग्रेस के साथ युति की और एक अभद्र युति करके खुद के पार्टी का उन्होंने नुकसान किया। उस पार्टी को हम एक नए मुकाम पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब 1 महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी और राम भक्तों को संयम बरतते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों से सतर्क रहने की अपील की है।
5: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे।
6: जहां उद्धव ठाकरे ने श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में श्री राम रक्षा आंदोलन करने का ऐलान किया, वहीं बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणा ने कहा कि मुस्लिम परस्त उद्धव ठाकरे को श्री राम मंदिर के लिए आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं।
7: राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उद्धव ठाकरे काफी आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 5 तारीख को वो राम रक्षा पढ़ेंगे हनुमान मंदिर में जाकर। हमारे साथ मंत्री नितेश राणे भी है। राणे साहब, आपने सुना होगा कि राम रक्षा पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उद्धव ठाकरे, चढ़ावे में जो घपला हुआ है उसको लेकर।
8: देखिये, उद्धव उल हक जैसे लोगों को जिसने अभी तक हमारे हिसाब से तो इस्लाम स्वीकार लिया था,
7: कैसे?
8: क्योंकि जो कि उनके हरकतें हैं, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, अजान की स्पर्धा ऑर्गेनाइज करना, फिर याकूब मेनन के कबर को का ब्यूटिफिकेशन करना, जो कुछ भी कोरोना के जो नियम रखे थे, आपको मुझे भी मालूम है कि हिंदुओं के त्योहारों को अलग नियम और ईद मुहर्रम को अलग नियम
7: ऐसा किया था उन्होंने।
8: हम लोग सब लोग ने अनुभव लिया था उसका। तो ऐसे आदमी को जिसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, उसको अगर वापस हमारे हिंदू धर्म में आना होगा, घर वापसी करना होगा, तो स्वागत है ना, पर फिर वापस मस्जिद और फिर मुल्लाओं की भाषा उसने करनी नहीं चाहिए।
7: धर्म छोड़ा था, जो छूट दी थी उन अन्य समुदायों को, उसको लेकर आप बोल रहे कि उन्होंने धर्म छोड़ा था, तो अगर वो अब मंदिर में जा रहे तो आप बोल रहे कि गौमूत्र जो है उससे मंदिर को साफ करना चाहिए ताकि पवित्र रहे। वो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके से मंदिर और मस्जिद को लेकर जो राजनीति चल रही है उससे किसी को फायदा होगा?
8: मंदिर और मस्जिद की राजनीति उन्होंने शुरुआत की। जो नियम उन्होंने जो मस्जिदों को लगाया, वही नियम मुख्यमंत्री होते वक्त अगर हिंदू मंदिरों को अगर मस्जिदों को लगाया, वही अगर मंदिरों को लगाया रहता ना, तो आज उनके बारे में प्रतिमा नहीं खड़ी रहती। उन्होंने भेदभाव किया, उन्होंने इस तरीके की गंदी राजनीति की, और अभी अपने खुद के गंदी राजनीति के लिए उनको वापिस मंदिरों को इस्तेमाल करना है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का अपवित्र आदमी अगर हमारे मंदिर में आता होगा तो गौमूत्र डाल के पवित्र करेंगे तो शायद हमारे मंदिरों के पवित्र।
7: आप जाएंगे गौमूत्र?
6: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को शहर से 1 वर्ष के लिए बाहर करने का आदेश जो था उसे रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को सिर्फ इसलिए उसके अपने शहर से बेदखल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया हो या नारे लगाए हों। जस्टिस माधव जामदार की एकल पीठ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चौधरी ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उन्हें मुंबई की सीमा से 12 महीने के लिए बाहर कर दिया गया।
9: चेंबूर के एक पॉलिटिशियन हैं जो कि अक्सर काफी सारे इलेक्शंस लड़ते रहते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं। उनके खिलाफ कई सारे एफआईआर थे और उन एफआईआर का बैकग्राउंड लेके जो मुंबई पुलिस है उसने उन्हें 1 साल के लिए एक्सटर्न कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ ये लोग पहुंचे थे बॉम्बे हाईकोर्ट ने आखिर क्या क्या कहा, क्या टिप्पणी रही, आइए जानते हैं। एडवोकेट इब्राहिम हर्बर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं जो उस पॉलिटिशियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप चौधरी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या क्या क्या था मामला, क्या था, कितने एफआईआर थे उनके ऊपर?
10: मैडम, आपने जो है रिसेंटली सुना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो एक बयान दिया है कि देश के सारे जो है ऑफिसर्स जो है अपने आप को आरएसएस का बता रहे हैं और एक रेस लगी हुई है कि हम किस तरह से पॉलिटिशियंस को खुश करें। एक ऑफिसर का काम है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए लॉ का इस्तेमाल करें, लेकिन जब जो है एक ऑफिसर लॉ को साइड में रखते हुए सिर्फ पॉलिटिशियंस को खुश करने के लिए देश के आम नागरिकों पर जो है अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है, उसका ये केस है कि एग्जाम्पल है। सईद चौधरी जो है जो जिसके ऊपर एक्सटर्नमेंट हुआ है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी हैं। एन जो है कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले सईद चौधरी और उनके जितने कैंडिडेट्स थे जो मानखोर्द और गोवंडी और चेंबूर इलाके में जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले थे, यहाँ के डीसीपी साहब है हमारे, जो आजकल जो है गवर्नमेंट को खुश करने में बड़े लगे हुए हैं, उन्होंने जो है उनके सारे जितने कैंडिडेट्स थे और स्टेट अथॉरिटी जो सईद चौधरी थे उनके खिलाफ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास कर दिया और कहा कि आप सबको मुंबई के बाहर जाना पड़ेगा वरना मैं आप सबके खिलाफ जो है आपको सबको अरेस्ट करूंगा। उसको हमने चैलेंज किया था।
6: इस मामले में विपक्ष खुलकर जस्टिस जामदार का आभार व्यक्त कर रहा है। कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के विधायक उनका समर्थन करते हैं।
11: मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने ये जो प्रतिक्रिया दी है मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चाई है सच्चाई का जिक्र उन्होंने किया है। हम तो ये हमेशा से ही बोलते आए हैं लेकिन आज कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने, सरकार तो इससे जागेगी ऐसा मुझे नहीं लगता लेकिन लोग अब इससे जाग जाएंगे ऐसी उम्मीद है।
12: आपको भी लगता है सरकार डरा रही है?
11: ऐसी स्थिति है ही, ऐसा माहौल इस देश में राज्य में है ही।
13: मुझे लगता है जस्टिस जमादार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम किसी ने बोलने की हिम्मत दिखाई। हम तो राजनीति में हैं और गणतंत्र में राजनीति में रहे लोग जो विरोधी पक्ष में हैं वो सत्ताधारियों के ऊपर बोलते रहते हैं लेकिन इस देश के जो हालात है वो बद से बदतर होते जा।
6: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
15: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
16: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
14: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
2: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
3: मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर,
4: इस मामले में,
3: इसी मामले में। और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी हैं, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी।

अंदर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय बोले राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा, कांग्रेस का पलटवार, दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान, पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक नेता, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चन्नी पहली पसंद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक, अलनीनो के कारण कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा। बिहार सरकार ने बहाल की लालू और रावड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा, दोनों को मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियां, कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था राजनीतिक हंगामा। और तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, मौके पर आज तक पल पल की जानकारी।

आज राजस्थान गुजरात को पीएम मोदी देंगे विकास की सौगात, 1,00,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ। मोदी जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। राजस्थान के बाद गुजरात जाएंगे पीएम, अहमदाबाद के सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी, व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और साझेदारी को मजबूत करना है उद्देश्य। दौरे के पहले पड़ाव में इंडोनेशिया पहुंचेंगे पीएम मोदी, न्यूजीलैंड है इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, लगभग 40 वर्ष बाद न्यूजीलैंड जा रहे हैं मोदी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक, अल नीनो के कारण देश के कुछ इलाकों में कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर दोनों ने की समीक्षा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 6 जुलाई से 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर, जनसभा को करेंगे संबोधित और आगामी रणनीति पर करेंगे चर्चा। भारतीय सुरक्षा बलों की युद्ध तैयारी को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC की बैठक में 52,000 करोड़ के सेना की शक्ति बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर मुहर। इंस्टाग्राम विज्ञापन में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले में सरकार सख्त, IT मंत्रालय ने मेटा को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। मोबाइल से ई रिक्शा का इंजन बंद करने की घटनाओं के बाद सरकार का सख्त निर्णय, 7 चाइनीज ऐप को हटाने का आदेश, बैटरी ठप होने पर रुक जाती थी गाड़ियां। केंद्र सरकार का गूगल, एप्पल, iOS को भी नोटिस, BAT, BMS जैसे ऐप हटाने का निर्देश, इनका इस्तेमाल ब्लूटूथ के द्वारा ई रिक्शा को बंद कर रहा था। SIT जांच के दूसरे राउंड में ट्रस्ट के दिग्गजों पर शिकंजा, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 33 लोगों से पूछताछ। चढ़ावा चोरी केस में नया खुलासा, आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने कराई थी भव्य श्रीराम कथा, 50,00,000 रुपए खर्च आए थे। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, दान की गिनती करने वाले गणना कर्मियों की नियमित बैठकें होती थी। गणना कक्ष के सामने हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने, राम मंदिर में दिया चंदा वापस लिया जाए, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, मैंने जो दान दिया था उसका गबन हुआ, मेरा चंदन वापस किया जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान, दत्तात्रेय होश बोले बोली, राम भक्तों की भावना को चोट पहुंची, दोषियों को मिले कड़ी सजा। पवन खेड़ा का RSS पर पलटवार, RSS ने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की, सिर्फ दिखावे के लिए निंदा की। जयराम रमेश बोले, RSS की तरफ से दी गई क्लीन चिट शर्मनाक है। विनय कटियार से पीएम मोदी की कोई बात नहीं हुई, सूत्रों के हवाले से खबर, पहले कटियार ने पीएम से बातचीत का दावा किया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, मुख्यमंत्री योगी ने किया शुभारंभ, बागवानों को किया सम्मानित। पश्चिम बंगाल की 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल में खुद को असली TMC सिद्ध करने का युद्ध तेज, ऋतुव्रत गुट ने पार्टी हेडक्वार्टर्स के गेट पर लगाया ताला, भारी हंगामा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अन्नपूर्णा योजना की राशि न मिलने पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, पंचायत कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने घर पर समर्थकों के साथ बैठक की। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में आए कई विधायक नेता, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को फिर पार्टी अध्यक्ष बनाने से नाराज, नेता अब अध्यक्ष से करेंगे बात। पुणे केतन हत्याकांड में आरोपी सिया और चेतन 14 दिन की हिरासत में, 16 जुलाई तक कस्टडी। केतन हत्याकांड में पुलिस का सबूत मिलने का दावा, जब्त किया सिया का दूसरा मोबाइल, का कोडवर्ड में बात करते थे दोनों, पॉलीग्राफी टेस्ट में होगा अब खुलासा। बच्चों में एनर्जी ड्रिंक की बढ़ती खपत को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का निर्णय, स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पर रोक। गुजरात में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम, ATS ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मूसलाधार बारिश से मुंबई में 3 दिन में 6 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल, बिजली के तारों से जा रही है जान, BMC की व्यवस्था पर उठे सवाल। दिल्ली सरकार ने EV सब्सिडी पोर्टल किया लॉन्च, इस पोर्टल के द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग सब्सिडी के लिए करेंगे आवेदन। 1 जुलाई से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी EV पॉलिसी, नई EV खरीद के 30 दिन के अंदर आपको करना होगा आवेदन। लाजपत नगर के MCD के आधुनिक पॉली क्लिनिक की शुरुआत, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन।
अमृतसर की बेटी का कमाल, इसरो के शिव शक्ति मिशन के लिए चुनी गई छात्रा। पूरे देश में इकलौती छात्रा हैं टिया गौरव, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व, 108 देशों की छात्रों के साथ बनाएंगी सैटेलाइट। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर से गश्त करेंगे आरपीएफ के जवान, प्लेटफॉर्म पर निगरानी, मदद और त्वरित कार्रवाई होगी आसान, रेलवे की शानदार पहल। शिरडी बाबा को 17 लाख का स्वर्ण शंख भेंट, चेन्नई के श्रद्धालु लक्ष्मीकांता गुट्टू ने बाबा को भेंट किया। अमरनाथ यात्रा के बीच जम्मू को ग्लोबल आध्यात्मिक हब बनाने की तैयारी, जम्मू नगर निगम ने तीर्थयात्रियों पर्यटकों के लिए शुरू की जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर बोटिंग सुविधा। मॉनसून आपदाओं से निपटने के लिए हरिद्वार के 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल, सभी विभागों ने तय समय में राहत बचाव का काम पूरा किया। बाढ़ के कारण पानी में फंसे लोगों के रेस्क्यू का अभ्यास, टीमों ने 30 लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र आसपास के इलाकों में भारी बारिश, मुंबई में 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट, 5 दिन में गुजरात गोवा में भारी बारिश का अनुमान। लोनावला में भारी बारिश, मशहूर भूशी डैम ओवरफ्लो, मनमोहक दृश्य, पहुंच रहे हैं पर्यटक। गुजरात के नवसारी डांग में मूसलाधार बारिश का दौर, उफान पर अंबिका और कई नदियां, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश, खेत सड़कें नदियों में पानी ही पानी, लोग परेशान। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भरा, उफनते नाले के बीच फंसी बस क्रेन से निकाली गई। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, देर रात झमाझम बारिश के आसार। जयपुर में बारिश के बाद टोंग रोड धंसी, किसी बड़े हादसे की आशंका, गुणवत्ता पर उठे सवाल। मथुरा में भीषण गर्मी के बाद अचानक बारिश, जलमग्न हुई सड़कें और प्रमुख मार्ग। गोरखपुर के मुक्तिपथ पर सरयू नदी में डूबने से बचाई गई 5 जिंदगियां, मोटरबोट पलटने पर रेस्क्यू किया गया। उज्जैन में लगातार बारिश से शिप्रा का जलस्तर बढ़ा, रामघाट समेत आसपास के घाटों तक पानी। महाराष्ट्र के अमरावती में होटल में भीषण आग, लाखों का नुकसान। अंधेरी में इमारत में भयंकर आग, धुआं देख अफरा तफरी मची। अंधेरी में लगी आग में कई लोग फंसे, जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने छलांग लगा दी। गुजरात के कच्छ में 2 ट्रकों के भीषण टक्कर के बीच आग लग गई, पूरी तरह से जलकर खाक। उधम सिंह नगर में कार बाइक के भिड़ंत के बाद कार में आग लगी, 2 की मौत। मथुरा में इलेक्ट्रिक कार में लगी भीषण आग, धुआं उठते ही अफरा तफरी, कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। कौशाम्बी में एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हुई, इलाज के दौरान मौत। गुरुग्राम नगर निगम के 4 कर्मचारी बर्खास्त, एआई से फोटो एडिट कर झूठा काम दिखाया, तकनीक का गलत इस्तेमाल करने पर कार्रवाई। बिजनौर में प्रेमिका से शादी की जिद पर युवक 100 फीट टावर पर चढ़ा, हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कॉलेज प्रोफेसर पर छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप, युवती ने जमकर प्रोफेसर की पिटाई। अयोध्या विकास प्राधिकरण की सीढ़ियां अचानक टूटी, कोई जनहानि नहीं, बड़ा हादसा टला। औरैया में व्यक्ति को रील में दबंगई दिखाना भारी पड़ा, पिस्टल फरसा लहराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के करौली में नाबालिग से मारपीट के आरोप में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने अभियुक्तों का जुलूस निकाला। झारखंड के गढ़वा में ही प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को महंगा पड़ा, ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। बिहार के नवादा में प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर पर 10 वर्ष की छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप, छात्र के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले। मुजफ्फरपुर में बंदूक संग रील बनाने वाला युवक गिरफ्तार, मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नशे में धुत शिक्षक ने बीड़ी न लाने पर बच्चों से जूते साफ करवाए, शिक्षक को सस्पेंड किया गया। गुजरात के मोरबी में आवारा सांडों का आतंक, पैदल जा रही युवती को जोरदार टक्कर मारी। गुजरात के राजकोट में सड़क से गुजर रहे व्यक्ति पर कुत्ते ने हमला कर दिया, पागल कुत्ते के आतंक से इलाके में दहशत। जालना में 5 करोड़ की अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का आरोपी फरार, बाद में गिरफ्तार, 3 राज्यों में था वांछित। भारतीय बैडमिंटन में नया स्कोरिंग सिस्टम होगा लागू, इसके तहत 21 की जगह 15 पॉइंट्स के होंगे मैच।
7 से 14 जुलाई तक एर्नाकुलम में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट भी किया जाएगा। नए नियम का पहला इस्तेमाल, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की घोषणा। भारत इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टी20 मैच। मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मैच। मैच जीतने पर दोनों टीमों की नजर, बारिश के कारण रद्द हुआ पहला मैच। कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर तूफानी पारी की उम्मीद। पिछले मैच में बारिश होने से पहले दोनों ने खेली थी अर्धशतकीय पारी। मैक्स मेनन म्याउजाकी का टीजर रिलीज, 10 जुलाई को जारी होगा टीजर। सिद्धार्थ मेनन, मंदिरा बेदी, नफीसा अली भूमिका में। राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टीजर जारी। यूट्यूबर निहारिका और एक्टर संजय कपूर आएंगे इसमें नजर। 30 को होगी रिलीज। भारत के बाद जापान के सिनेमाघरों में 10 जुलाई को धुरंधर देगी दस्तक। रणवीर ने वीडियो जारी करा। अरशद वारसी की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई प्रीतम एंड प्रेडू की ढीली स्क्रिप्ट। हल्की पुल्की साइबर थ्रिलर वेब सीरीज हुई बेकार साबित। एनिमेटेड डिज्नी एडवेंचर फिल्म मोआना का ट्रेलर आउट। पौराणिक कथाओं प्रशांत महासागर के नाविकों की सच्ची कहानी पर प्रेरित। 10 जुलाई को अंग्रेजी हिंदी में रिलीज। वैश्विक अनिश्चितताओं युद्ध संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ी। घरेलू मांग निवेश स्थिर राजस्व संग्रह से विकास की उम्मीद। विदेशों में यूपीआई पेमेंट को आसान बनाने के लिए एनपीसीआई ने एचएसबीसी इंडिया जेपी मॉर्गन के साथ साझेदारी की। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में मिलेगी सुविधा। फाइनेंस कंपनियों का फोकस नए ग्राहकों पर बढ़ने से पहले पहली बार लोन लेने वाले लोगों पर पर्सनल होम व्हीकल लोन लेना आसान बनाने की साझेदारी की। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में मिलेगी सुविधा। फाइनेंस कंपनियों का फोकस नए ग्राहकों पर बढ़ने से पहले पहली बार लोन लेने वाले लोगों पर पर्सनल होम व्हीकल लोन लेना आसान बनाने की संभावना। रिटेल स्पेस की लीजिंग सालाना आधार पर 18% बढ़ी। नई सप्लाई के मुकाबले मांग के लगातार बढ़ने से प्रॉपर्टी के किराए बढ़ने की संभावना। उत्तर प्रदेश रेरा ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गाजियाबाद में 10 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को दी स्वीकृति। करीब 1,278 करोड़ रुपए के निवेश से 14,000 रेजिडेंशियल कमर्शियल यूनिट्स विकसित होंगे। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना का हमला। गाइडेड मिसाइलों और 105 किलोमीटर लंबी दूरी पर ड्रोन से किया हमला। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमले को लेकर जर्मनी के बाद रूस ने यूक्रेन को घेरा। क्रेमलिन ने यूक्रेन की यूनाइटेड यूनियन सदस्यता पर उठाए सवाल। फिनलैंड ने परमाणु हथियार रखने पर लगी रोक को आधिकारिक रूप से हटाया। फिनलैंड का नया कानून 1 जुलाई से पूरी तरह लागू। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद रूस ने फिनलैंड को दी कड़ी चेतावनी का। परमाणु हमले का निशाना बन सकता है फिनलैंड। ईरानी सेना का अल्टीमेटम, हॉर्मुज अमेरिका का खेल का मैदान नहीं बल्कि ईरान के संप्रभुता वाला क्षेत्र। खामनेई के अंतिम संस्कार की अंतिम तैयारियां पूरी। ग्रैंड मोसाला में रखा गया आयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर। 4 से 9 जुलाई तक अंतिम संस्कार। आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम विदाई समारोह, दुनिया भर से नेताओं के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे दी श्रद्धांजलि। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने डेनमार्क के विदेश मंत्री से मुलाकात की। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जोर। इंडोनेशिया की सेना ने पापुआ में अमेरिकी पायलट का शव बरामद किया। विद्रोहियों ने गोली मारकर कर दी थी इसकी हत्या। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बस के खाई में गिरने से 40 की मौत, 8 यात्री घायल। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भीषण गर्मी से जीना मुहाल। 35 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 100 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा हुए।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि क्या ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने वाले ट्रंप अब उनके जनाजे को प्रोटेक्शन देंगे। 4 जुलाई यानी कल से ईरान में अली खामनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसे ईरान अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिबंधों के बावजूद तेहरान में दुनिया भर के नेता और 90 देशों के धार्मिक गुरुओं का जमावड़ा लगा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट अमेरिका का यू टर्न है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिस अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर खामनेई पर हमला किया, वही अमेरिका अब बैक चैनल के जरिए ईरान को इसराइल के संभावित हमलों से सतर्क रहने का अलर्ट भेज रहा है। इस बीच ईरान के सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को सख्त चेतावनी दी है। ईरान का यह डर बेवजह नहीं है। साल 2024 में राष्ट्रपति पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण के दौरान इसराइल ने तेहरान के अंदर घुसकर इस्माइल हानिये को मार दिया था। यानी मोसाद की डिक्शनरी में नो अटैक जोन जैसा कोई शब्द नहीं। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सच में इस जनाजे को सुरक्षा देना चाहता है। और इसके बाद देश की सड़कों की बात करें, जहां बारिश होते ही गड्ढे साफ नजर आने लगे हैं। आज आपको बताएंगे कि ये गड्ढे सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की संरचना में हो चुके हैं। पिछले 48 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां सड़कों पर गड्ढों का विकास बखूबी नजर आ रहा है। ये गड्ढे हर साल बनते हैं, हर साल इनकी मरम्मत होती है और ये गड्ढे फिर से प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद आपको देश की अदालतों से जुड़े उन 3 फैसलों के बारे में बताएंगे जो न्याय प्रक्रिया पर बहस छेड़ते हैं। कानून की किताबों में लिखा है कि न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है, लेकिन आज देश से 3 अलग अलग खबरें आई हैं जो ये बताती हैं कि बड़ी कठिन डगर है इंसाफ की। कहीं पुलिस की लापरवाही, कहीं कानून की पेचीदगियां, कहीं मौजूदा कानून का अड़चन। अब बीच सड़क पर चलते चलते ई रिक्शा बंद होने की खबर सुन ही चुके होंगे। आज आपको ये भी बताएंगे कि क्या ई रिक्शा की तरह जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं और स्कूटर्स हैं, क्या वो भी हैक हो सकते हैं। पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत में गड्ढे अब केवल सड़कों पर नहीं है, ये गड्ढे हमारे सिस्टम की संरचना में है। पिछले 48 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें गड्ढों का विकास बखूबी नजर आता है। हम इसे विकास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गड्ढे नए नहीं है, इनकी हर साल मरम्मत होती है। पुराने गड्ढे हैं, हर साल मरम्मत होती है, लेकिन फिर भी ये सदा के लिए सड़कों पर मौजूद रहते हैं। और इसीलिए आज हम आपको भारतीय सड़कों का वो राजनीतिक रिपोर्ट दिखाएंगे, वो रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे जिनमें गड्ढे भी हैं, उन गड्ढों में पैसा भी है। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए।

0: दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड खो चुकी हैं भाई यहीं पर।
1: मिर्जा गालिब का वो शेर आपने जरूर सुना होगा कि ऐ दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। लेकिन आज इन गड्ढों को देखकर हम इस शेर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, ऐ दिले नादा इन सड़कों को हुआ क्या है, आखिर इन गड्ढों की दवा क्या है। कहते हैं कि भारत में सड़कें सिर्फ बनती नहीं है, वो बस अगले मानसून के लिए तैयार की जाती हैं। और ये भी सच है कि देश में बारिश तो होती है, जैसे ही बारिश आती है वैसे ही सड़कें टूटने लगती हैं, जैसे ही बारिश जाती है वैसे ही मरम्मत के टेंडर्स निकल जाते हैं। यानी ये अब कोई नई बात नहीं है, हर साल का एक तय कार्यक्रम बन चुका है। और इसीलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि भारत में गड्ढों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे काम करती है और क्यों ये गड्ढे सड़कों पर सदा के लिए रहते हैं। मंदी के निपटने के लिए ब्रिटेन के मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने एक थ्योरी दी थी। कहा था उन्होंने कि अगर अर्थव्यवस्था में रोजगार कम हो तो सरकार लोगों को गड्ढे खोदने और फिर उन्हें वापस से भरने का काम दे सकती है ताकि लोगों को रोजगार मिले और पैसा बाजार में घूमे। अब यह विचार यूरोप के देशों में खूब चर्चित रहा, लेकिन भारत में इसका उल्टा होता है। यहां किसी को गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, हर साल बारिश आती है और बारिश आते ही गड्ढे अपने आप पैदा हो जाते हैं, फिर उन्हें भरने के नाम पर अच्छा खासा बजट खर्च होता है। उदाहरण के लिए मुंबई में गड्ढों की मरम्मत पर साल 1998 से 2022 के बीच जानते हैं कितना खर्च हुआ, 21,000 करोड़ रुपए। अब इतना पैसा खर्च हुआ तो गड्ढों की बीमारी थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 में इन्हीं गड्ढों की मरम्मत पर कितना खर्च हुआ, 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2025 में 150 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल भी 105 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और ये पैसा सरकार का नहीं है, ये पैसा आपका है जो इन गड्ढों की मरम्मत पर खर्च होता है। और ऐसा खर्च होता है कि ये गड्ढे मानसून की बारिश में फिर दिखने लगते हैं। तो गया हमारा पैसा गड्ढे में। और ऐसा नहीं है कि गड्ढों की ये अर्थव्यवस्था सिर्फ मुंबई में घूम रही है। दिल्ली में 2020-21 में इन्हीं गड्ढों पर 873 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 873 करोड़। लेकिन आज फिर से सरकार ने इनके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। बेंगलुरु में साल 2018 से 2022 के बीच 215 करोड़ रुपए खर्च हुए, आज भी बेंगलुरु की सड़कों पर ये गड्ढे साफ साफ नजर आते हैं। और बेंगलुरु वालों से पूछिए, वो हैरान रहते हैं कि जिस शहर में वो सबसे ज्यादा विकास, तरक्की, बिजनेस एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज के लिए आते हैं, वहां पर ऐसी हालत है। अब इससे सवाल पैदा होता है कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद गड्ढे हर साल वापस कैसे आते हैं। इसका जवाब यह है कि हमारे देश में गड्ढों की समस्या सिर्फ इंजीनियरिंग की समस्या नहीं है, ये गड्ढे अब एक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि हर साल इनकी मरम्मत के लिए एक बजट मिलता है, फिर ठेके दिए जाते हैं, फिर ठेकेदार कम गुणवत्ता का काम करते हैं, फिर ऊपर से निगरानी भी कमजोर, अगले साल फिर वही सड़क टूटती है, फिर नया बजट, और ये चक्र ऐसे ही सदा के लिए घूमता रहता है। यानी समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय समस्या को बनाए रखना कुछ लोगों के आर्थिक हित में होता है, जिसे रेंट सीकिंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें पैसा घूमता है लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलता। ये भी तब होता है जब ये तमाम गड्ढे लाइलाज नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जैसी बड़ी संस्थाओं ने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई रिपोर्ट्स दी हैं, जिनमें ये बताया गया है कि इन गड्ढों को कैसे रोका जा सकता है। और इन्हीं में ये भी बताया गया है कि भारत में 82% सड़कें बाइटुमिन यानी तारकोल वाली सड़कें होती हैं, जिनके कारण ना तो सड़कें टिकती हैं और ना ही ये गड्ढे गायब होते हैं। लेकिन सोचिए, इन रिपोर्ट्स को देखने वाला कौन है, और अगर ये गड्ढे नहीं रहे तो फिर इनके नाम पर हर साल निकलने वाले टेंडर्स का क्या होगा। भारत में पिछले 10 सालों में इन गड्ढों के कारण 22,846 मौतें हुई, जिसका मतलब यह है कि हमारे देश में हर दिन औसतन 6 मौतें, हर 4 घंटे में कम से कम एक मौत का कारण ये गड्ढे होते हैं। लेकिन इन मौतों के बाद भी गड्ढों की ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था चलती रहती है और अब वो हर साल ये परंपरा सी बन गई है कि बारिश आई नहीं, सड़कों ने अपना असली रूप दिखाया, गड्ढे आए, टेंडर निकला, मरम्मत हुई, फिर अगले साल वही शुरू होता है। खैर, इस खबर से सबसे पहले हमने इसलिए शुरुआत की, इसलिए दिखाई क्योंकि इन गड्ढों से आपका जीवन प्रभावित होता है। और आपको याद होगा कि एक दिन पहले भी हमने आपको एनर्जी ड्रिंक्स से जुड़ी खबर दिखाई थी जिनके खिलाफ FSSAI ने नोटिस जारी किया। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो खबर दिखाई उसके बाद महाराष्ट्र में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग की जो बिक्री है उस पर रोक लगा दी गई है। और इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार ने खुद विधानसभा में दी। और यह इसलिए बड़ा है क्योंकि अब तक स्कूलों के आसपास शराब की बिक्री पर रोक लगी थी, लेकिन इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं, अब इन एनर्जी ड्रिंक्स को भी बच्चों और युवाओं के लिए खतरनाक मानकर अगर स्कूलों के आसपास बिक्री बंद हो ही जा रही है, की जा रही है, रोक लगाई जा रही है, तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। तमाम सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स में स्टिंग की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। साल 2018 में रेडबुल की हिस्सेदारी पूरे भारतीय बाजार में 75% थी, जो आज सिर्फ 11.12% रह गई है, जबकि स्टिंग की भारत में एनर्जी ड्रिंक्स बाजार में 7% हिस्सेदारी थी, जो आज 89.53% हो गई, 89.53%। और सोचिए, FSSAI कह रहा है कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक है ही नहीं और हमारे देश में हर 10 में 9 ड्रिंक स्टिंग की बिक रही है, और यह बताकर बिक रही है कि यह एनर्जी ड्रिंक है हमारे बच्चों के लिए, ये ठीक नहीं है और इस कदम का हम स्वागत करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जिस अमेरिका के हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामनेई की जान गई, वही अमेरिका आज उनके अंतिम विदाई कार्यक्रम को सुरक्षा देने की बात क्यों कर रहा है। ये बात सुनकर आज पूरी दुनिया हैरान है और इसलिए आज हम इसका एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम क्यों ईरान की अमेरिका और इसराइल पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकता है। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामनेई के नमाजे जनाजे और दफन करने की रस्में शुरू हो गई हैं। वहां दूसरे देशों के नेताओं ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 28 फरवरी के हमले के बाद आज पहली बार आयतल्ला खामनेई के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। इसकी जो तस्वीरें आई उनमें पूरा तेहरान राष्ट्रीय शोक मनाते हुए नजर आ रहा है। देखिए,

अंतिम विदाई का यह कार्यक्रम आधिकारिक रूप से कल यानी 4 जुलाई को शुरू होगा, लेकिन उससे पहले तेहरान में आयोजित शोक समारोह में ईरान के तमाम शीर्ष नेताओं ने आयतुल्लाह खामेनेई को श्रद्धांजलि दी और इसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची, न्यायपालिका के प्रमुख गोलम हुसैन अजय और पहले सुप्रीम लीडर रोहल्ला खुमैनी के पोते हसन खुमैनी शामिल हुए और इस दौरान दुआ पढ़ते हुए सभी शीर्ष नेताओं की आंखें नम दिखी। उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को ईरान के लिए शहादत बताया है। देखें।

0: बड़ी बात यह है कि ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम के लिए सभी मस्जिदों दूसरे इलाकों को काले कपड़ों से ढका गया है और ऐसा वहां शोक जताने के लिए किया जाता है। ये भी देखिए,
1: तेहरान की हर सड़क पर इस तरीके की तैयारियां आपको नजर आ जाएंगी, जहां पर बड़े बड़े आपके जो चौराहों को कवर कर दिया गया पूरी तरीके से, जहां से भी लोग निकलेंगे, जहां से भी उनका पैसेज निकलेगा, जहां से भी लोग का मूवमेंट होगा, उन सब जगहों को इस तरीके से ब्लैक से कवर कर दिया गया। दरअसल एक तरीके की आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी के अंदर एक सॉलिडैरिटी या फिर एक आप कह सकते हैं उनके दर्द को झलकाता भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि सुप्रीम लीडर के जाने के बाद ये एक तरीके की अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश ईरान कर रहा है कि देखिए हमारा जो रिजिम है वो कंसोलिडेट है, बहुत ताकतवर है और सुप्रीम लीडर की कोई एक एक इंसान नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक आप कह सकते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति है।
2: Stores where people and shops where people also lost their loved ones. So if you see over here, preparations underway, the black cloth that has covered the entire space of this restaurant, and then not only have they placed Ayatollah Khamenei's photograph over here, if you see, they've also placed photographs of the loved ones who they lost during the war between US, Israel and Iran.
1: यहाँ की सड़कों पर इस तरीके के बैनर हर उस शहादत के हर शहीद के लगाए गए और सब जगह लिखा गया है कि आई एम स्टिल अलाइव, यानी मैं अभी भी जिंदा हूँ, लगातार यहाँ भाषा में लिखा गया है कि आई एम स्टिल अलाइव। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए वो तमाम शहीद जिन्होंने इस रिजिम को बचाने के लिए या फिर ईरानियन रेवोल्यूशन की सेफगार्ड करने के लिए अपनी शहादत दी है।
0: और अब ये देखिए कि क्यों आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम को ईरान की कूटनीतिक जीत माना जाएगा। अमेरिका और इसराइल लंबे समय से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं, कूटनीतिक दबाव बना रहे हैं और क्षेत्रीय अलगाव की नीति अपनाते रहे, यानी अब तक यही कोशिशें हुई कि ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग रहे और उसे वैश्विक समर्थन ना मिले। लेकिन आज जब कई देशों के शीर्ष प्रतिनिधि तेहरान पहुंच रहे हैं तो ईरान ये संदेश देने में सामने आ रहा है कि वो वैश्विक स्तर पर पूरी तरह अलग थलग नहीं पड़ा है और इस युद्ध के बाद भी उसने दुनिया का विश्वास जीता है, यही संदेश ईरान देने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, 90 से अधिक देशों के धार्मिक नेताओं की मौजूदगी केवल एक अंतिम विदाई कार्यक्रम नहीं बल्कि ईरान की वैचारिक धार्मिक पहुंच का प्रदर्शन माना जा रहा है, मानी जा सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने बड़े धार्मिक जमावड़े से यह संदेश जाएगा कि ईरान की सॉफ्ट पावर धार्मिक प्रभाव युद्ध या प्रतिबंधों के बावजूद कायम है। तीसरा, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शोक समारोह केवल विदेश नीति का हिस्सा नहीं होते बल्कि घरेलू राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विदेशी नेताओं धार्मिक नेताओं की मौजूदगी ईरानी जनता के सामने यह संदेश देगी कि देश का नेतृत्व वैश्विक सम्मान समर्थन प्राप्त करता है, यानी मौजूदा रिजीम के खिलाफ आम जनता में जो नाराजगी की बातें कही गई वो बातें इस राष्ट्रीय शोक से खारिज हो जाएंगी। और चौथा, जब अंतिम विदाई कार्यक्रम में 2 करोड़ शामिल होंगे तो ये ईरान का वैचारिक शक्ति प्रदर्शन होगा। इसके जरिए पूरी दुनिया ये देखेगी कि ईरान के आंतरिक मसले चाहे जो हो लेकिन पूरा देश इस्लामिक शासन को लेकर एकजुट है और यही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी, मौजूदा रिजीम की जीत। यहां समय के इस चक्र को भी देखिए कि जिस अमेरिका ने 28 फरवरी को इसराइल के साथ मिलकर आयतुल्लाह खामेनेई को मारा था, वही अमेरिका आज ये कह रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है और इसराइल के खिलाफ ईरान को सावधान रहने के लिए भी कह रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका और इसराइल के रिश्तों में इतना बड़ा शिफ्ट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ। और अब द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है

0: कि अमेरिका ने लगातार ईरान को इसराइल के हमलों के खिलाफ चेतावनी भी दी है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस रिपोर्ट में द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि जब अप्रैल महीने में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर सहमति बनी, तब इसराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ को मारना चाहता था। इसी में आगे यह भी लिखा है कि अमेरिका इसराइल के हमलों से इतना चिंतित था कि उसने खाड़ी देशों और पाकिस्तान के जरिए ईरान को यह अलर्ट भेजा कि वो अपने नेताओं की सुरक्षा बढ़ाए, इसराइल के हमलों से सतर्क रहे। ये डर अमेरिका को इसलिए भी था क्योंकि वो ईरान के बातचीत के लिए अली लारिजानी, कमल खराजी को ज्यादा बेहतर मानता था। लेकिन इसराइल ने अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद ईरान के इन दोनों शीर्ष नेताओं को अपने हमलों में मार दिया। और फिर इसके बाद अमेरिका को शांति वार्ता के लिए विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष गालिबाफ से संपर्क करना ही पड़ा। और अब भी अमेरिका की तरफ से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसराइल ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बना सकता है, जिस पर प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की सरकार ने अमेरिका और इसराइल दोनों को चेतावनी दी है। तो आइए आपको बताते हैं, ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि वो ईरान के दुश्मनों, खासकर अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हैं कि वो कोई भी गलत आकलन ना करें और ये सोच लें कि ईरान के खिलाफ किसी भी खतरे या हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। और ईरान की इस धमकी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उसे इस बात की चिंता है कि इसराइल आयतल्ला खामने के अंतिम विदाई कार्यक्रम को अपना निशाना बना सकता है। हालांकि इसराइल ने इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन यहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसराइल ईरान में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों में अपने टारगेट्स को निशाना बनाता रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का साल 2024 में हुआ शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें हमास की राजनीतिक इकाई के प्रमुख इस्माइल हानिये भी शामिल होने आए थे। और इस समारोह के अगले दिन तेहरान में इसराइल ने इस्माइल हानिये के कमरे में धमाका करके उनकी हत्या कर दी थी। और यह भी तब हुआ था जब इस समारोह में दुनिया के 70 देशों का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा हुआ था, फिर भी ये टारगेटेड किलिंग इसराइल ने सफलतापूर्वक कर ली। कहने का मतलब यह है कि दुनिया के नेता ईरान में आएंगे और यह सोचकर इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, तो ये बातें इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मुसाद की डिक्शनरी में नहीं है। कई लोग ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं, हालांकि वो ये भी मानते हैं कि ऐसे नाजुक वक्त पर ईरान से कोई भी दुश्मनी मोड़ लेना एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत फिर से बन सकता है। और इसीलिए ईरान इसराइल को खुलकर अब देखिए चेतावनी भी दे रहा है कि अमेरिका भी यही दिखा रहा है कि वो इस बार ईरान के साथ खड़ा है। खैर, इन तमाम आशंकाओं के बीच कल यानी 4 जुलाई से आयतल्ला खामनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि इसमें 4 जुलाई को आयतल्ला खामनेई के पार्थिव शरीर को ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में एक निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा, जहां आम लोग, समर्थक, श्रद्धालु पहुंचकर अंतिम विदाई देंगे, उनके लिए दुआ पढ़ेंगे। इसके बाद 5 जुलाई को नमाज जनाजा की रस्म पूरी होगी। 6 जुलाई को अंतिम यात्रा ईरान से निकलकर इराक के पवित्र शहरों करबला और नजफ तक जाएगी। 7 जुलाई को करबला के इमाम हुसैन श्राइन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 8 जुलाई को यह अंतिम यात्रा ईरान के मशहद शहर पहुंचेगी और 9 जुलाई को मशहद में आयतल्ला खामनेई को दफनाया जाएगा। और इस पूरे अंतिम विदाई कार्यक्रम में 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा पूरे 57 दिनों तक चलेगी और ये 28 अगस्त को समाप्त होगी, जिसके लिए अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 670 से ज्यादा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी, जिनमें कुल 70,000 जवान शामिल हैं। इसे अमरनाथ यात्रा के इतिहास में सबसे बड़े सुरक्षा प्रबंधों में से एक माना जा रहा है। इन सुरक्षा बलों की तैनाती यात्रा मार्ग, जो पूरी यात्रा मार्ग है, बेस कैंप, संवेदनशील इलाकों, हाईवे, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों पर की गई है। हालांकि इस कड़ी सुरक्षा कवच के बीच बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह खूब दिख रहा है। खैर आगे बढ़ते और आपको अदालतों से जुड़े उन तीन फैसलों के बारे में बताते हैं जो न्याय और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक नई बहस छेड़ते हैं। इनमें पहला मामला इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का है, जिनकी हत्या का आरोप उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर लगा था। यह पिछले साल के सबसे चर्चित मामलों में से एक था, जिनमें मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी और उसके बॉयफ्रेंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन पिछले दिनों 27 अप्रैल को मेघालय की निचली अदालत से सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। जमानत का कारण ऐसा कि शायद आपके लिए भी इस पर यकीन करना मुश्किल हो। पुलिस ने इस मुकदमे में सोनम रघुवंशी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 403 लगाई, लेकिन अदालत में इस पर सुनवाई हुई तो जज ने पूछा कि धारा 403 का मतलब क्या होता है। यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में ऐसी कोई धारा ही है नहीं है। 403 कोई धारा है ही नहीं। बीएनएस में सभी अपराधों के लिए कुल मिलाकर 358 धाराओं का जिक्र किया गया है, लेकिन यहां पुलिस ने सोनम रघुवंशी पर धारा 403 लगा दी। जब धारा ही गलत थी तो सोनम रघुवंशी के वकील ने इसे अदालत में बड़ा मुद्दा बनाया और इस आधार पर सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। जब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो वहां भी हाईकोर्ट ने जमानत को बरकरार रखा। और आज जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मेघालय की पुलिस ने यह दलील दी कि सोनम रघुवंशी फरार हो सकती है और इस मुकदमे में सिर्फ गलत धारा लिखने के लिए उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से काफी हद तक सहमत दिखा। लेकिन यहां भी जब अदालत को यह पता चला कि सोनम रघुवंशी पहले ही जमानत पर बाहर आ चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार किया, यानी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दी, नहीं की, माफ कीजिएगा, यानी सोनम रघुवंशी की जो जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द नहीं की, जिससे दो सवाल सामने आ रहे हैं। पहला सवाल यह कि मेघालय पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की। दूसरा सवाल यह कि क्या मेघालय पुलिस की गलती के कारण राजा रघुवंशी को इंसाफ नहीं मिलेगा। राजा रघुवंशी की हत्या उसकी शादी के बाद तब हुई जब वो अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे। आज इस तरह का आक्रोश पुणे के केतन हत्याकांड को लेकर दिख रहा है, वैसा ही आक्रोश तब राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर भी देखा गया था। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस की एक गलती के कारण राजा रघुवंशी के लिए इंसाफ कानूनी दावपेच में फंस गया। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अगर पुलिस गलत धारा लिख देगी तो व्यक्ति अपने हनीमून पर मारा गया उसे भी इंसाफ में रोड़े आएंगे और जो आरोपी है उसको इतनी आसानी से बेल मिल जाएगी। दूसरा मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का है, जहां साल 2021 में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने नए फैसले में कहा है कि इस मामले में आरोपी पति की सजा को कम किया जा सकता है। वजह सुनिए, इसका कारण थोड़ा हैरान करने वाला है। कारण यह है कि हत्या से पहले पत्नी ने गुस्से में अपने पति से यह कहा था कि वो उसके जैसे 1000 पति रख सकती है, और इस बात पर उसके पति को गुस्सा आया, उसने उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। अब हाईकोर्ट का कहना यह है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से यह कहती है कि वो उसके जैसे 1000 पति रख सकती है तो यह बात गंभीर और अचानक उकसावे वाली है, और यह सुनकर कोई भी उकसावे में आ सकता है। अदालत ने शब्दशः यह कहा कि पत्नी की यह बात पति के आत्मसम्मान पर गंभीर चोट मानी जा सकती है और इससे उसका आत्मनियंत्रण अचानक खत्म हो सकता है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने पति द्वारा की गई इस हत्या को गैर इरादतन हत्या माना है और ये कहा है कि यह हमला पहले से योजना बनाकर नहीं किया गया। पति ने घटना के बाद खुद पुलिस और परिजनों को सूचना दी थी और शिकायत पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया कि आरोपी ने बार बार अपनी पत्नी पर पत्थर से हमला किया था। इन तमाम आधारों पर अदालत ने इस अपराध को हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या माना, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले इस आरोपी पति को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन अब यह सजा 7 साल की हो गई है। अदालत ने हत्या को सही नहीं ठहराया, कहा कि पत्नी का ऐसा कहना कि वो 1000 पति रख सकती है गंभीर उकसावा था और इसलिए कानून के अनुसार दोषी पति की सजा को कम किया गया। अब तीसरा मामला देखिए, वो दिल्ली का है। यहां भी न्याय और न्यायिक प्रक्रिया के बीच एक बड़ा फासला दिखता है। 25 जून को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक थार गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 34 साल के सार्थक मट्टू की मौत हो गई। यह मामला सिर्फ सड़क हादसे का नहीं था, यह मामला हिट एंड रन यानी दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने का भी था। पुलिस ने 27 जून को इस थार गाड़ी को चला रहे आरोपी अपूर्व सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आरोपी को अगले कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई। जब पीड़ित परिवार ने पुलिस से ये पूछा कि आरोपी को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिली, तो पुलिस ने कहा कि ऐसा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के कारण हुआ। इस धारा में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन 2024 में जब यह नया कानून आया तो देश भर के ट्रक और बस ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी। उनका कहना था कि दुर्घटनाएं हमेशा जानबूझकर नहीं होती और इसीलिए यह कानून बहुत सख्त है, बदलाव होना चाहिए। अब उस विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि इस धारा को अभी लागू नहीं किया जाएगा और इस पर आगे बातचीत होगी, क्योंकि 10 साल की सजा वाली सख्त धारा प्रभावी नहीं थी, इसीलिए इस मामले में पुलिस ने ऐसे प्रावधान लगाए जिनमें जमानत मिलना आसान है। पुलिस के मुताबिक ये मामला लागू कानूनों के तहत दर्ज किया गया था और अदालत ने उसी के अनुसार आरोपी को जमानत दे दी। लेकिन यहां उस माता पिता का दर्द समझिए जो आज ये पूछ रहे हैं कि क्या उनके बेटे को मारने वाले आरोपी यूं ही छूट जाएंगे, और अगर यूं ही छूट जाएंगे तो ये न्याय कहां होगा। सुनिए,
1: दिस इज मी एंड माई वाइफ, वी आर हाफ डेड, आवर ओनली चाइल्ड 33 ईयर ओल्ड सन वॉज killed in hit and run case. They are roaming free while we are grieving. While my son, they left my son on the roadside to die. Well, these killers are out on the road roaming free. Pradhan Mantri Ji, kahan ho aap? Maanini Pradhan Mantri Ji, kahan ho aap? Amit Shah Ji, kahan ho aap? कमिश्नर साहब आप कहाँ हो, रेखा गुप्ता जी आप कहाँ हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरे बेटे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे शायद अकेले करना पड़े, अपने वाइफ के जेवर बेचूंगा, मकान बेचूंगा, आई वॉन्ट दोज किलर्स बिहाइंड द बार्स टू बी हैंग्ड टू डेथ, नोबडी इज विद अस, नो अथॉरिटीज। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम कश्मीरी पंडित हैं, क्या मुझे आपको बोलना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी कि हमारे साथ क्या हुआ? मेरे माँ बाप मर गए, हमारा घर जला दिया गया, उनकी वो ये दुख सहन नहीं पाए, फिर भी हम आगे बढ़े, कुछ नहीं किया, और अब ये मेरा अकेला बच्चा माननीय प्रधानमंत्री जी, अकेला बेटा, जो दो ड्रंकर्स एंगेजमेंट पार्टी के बाद निकले थे शराब पी के, मेरे बेटे को हिट करके चले गए, पुलिस ने उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया, अभी तक हमें क्यों नहीं कुछ बताया जा रहा है, खाली सांत्वना दे रहे, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ब्लड टेस्ट के लिए 50 घंटे के बाद आप उनका ब्लड टेस्ट लेने जा रहे हैं, मेरे को प्लीज कोई बताए, मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा हूं, बहुत ही, कैन समबडी टेल मी हाउ यू कैन गेट द एल्कोहल कॉन्टेंट्स इन द ब्लड पोस्ट 50 आवर्स।
0: अब इन तीन घटनाओं और इनमें आए अदालती फैसलों से ये पता चलता है कि इंसाफ या न्याय की डगर बहुत मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल कि इंसाफ अक्सर अदालतों के कानूनी दावपेच में, पुलिस की लापरवाहियों में पता चलता है, दावपेच में, पुलिस की लापरवाहियों में और अनेकों दलीलों में पता चलता है कि इंसाफ या न्याय की डगर बहुत मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल कि इंसाफ अक्सर अदालतों के कानूनी दावपेच में, पुलिस की लापरवाहियों में और अनेकों दलीलों में दबकर रह जाता है। कहीं हम ये सुनते हैं कि गलत धारा के कारण आरोपी को जमानत मिल गई, कहीं ये सुनते हैं कि मजबूत कानून नहीं है इसलिए आरोपी छूट गए। लेकिन आज एक बार फिर ये सोच कर देखिए कि जो परिवार अपनों को गंवाते हैं, अब उन्हें इंसाफ की राह में ये सब देखना पड़ता है तो उन पर क्या बीतती होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि पुणे के केतन हत्याकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश के आगरा से भी इसी तरह की घटना सामने आई है, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश में पुरुषों की उनकी पत्नियों द्वारा हत्या के मामले में क्या वाकई बढ़ोतरी हो रही है। नई घटना आगरा से है, जहां एक व्यक्ति के 45 दिनों तक लापता रहने की कहानी तब पलट गई जब पुलिस को उसका शव उसी के घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दबा मिला, बाथरूम के फर्श के नीचे। पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है, 44 साल के थे, 18 मई से लापता थे। पिछले कई दिनों से परिवार के लोग उनकी तलाश में जुटे थे, जबकि उनकी पत्नी रूबी लगातार यही कहती रही कि सुरेंद्र कहीं चले गए हैं और जल्द लौट आएंगे। बाद में 26 मई को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हालांकि पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान कई बातें उसके लिए शक पैदा कर रही थी और इस दौरान लापता हुए व्यक्ति की पत्नी का व्यवहार भी संदिग्ध था, जिसके बाद पुलिस ने यह तय किया कि वो घर की तलाशी लेगी। और जब ये तलाशी अभियान चलाया गया तो इसमें पुलिस की नजर बाथरूम की फर्श पर पड़ी। वहां हाल ही में लगाई गई नई टाइल्स और ताजा प्लास्टर देखकर शक गहरा गया। जब फर्श तुड़वाया गया तो उसके नीचे से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद शव को बाथरूम में दफना दिया गया था। इसके बाद ऊपर मिट्टी डालकर प्लास्टर किया गया, नई टाइल्स लगवा दी गई ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस पूरी साजिश में किसी और व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान पत्नी ने हत्या की बात स्वीकार की है। उसके अनुसार घटना से पहले ही बाथरूम में काम कराने के लिए मिस्त्री और मजदूर बुलाने की तैयारी कर ली गई थी। हालांकि हत्या की असली वजह, पूरा जो घटनाक्रम है, उसकी पुष्टि अभी जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। सोचने वाली बात है, अब तक ऐसे मामलों में पत्नियों द्वारा पति की हत्या की गई जिसमें शादी को कुछ महीने हुए थे या शादी होने वाली थी, लेकिन इस मामले में शादी के कई साल बाद हत्या हुई है, जिससे एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है। और अब आपको भारत की पश्चिमी सीमा पर हुए नए खतरे की आहट के बारे में जरा बताएंगे। भारत के पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीईसी प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद अब चाइना ने भारत के पूर्वी मोर्चे यहां पर भी एक खतरनाक रणनीतिक बिसात बिछा दी है। इस नई चाल का नाम है CBMEC, यानी चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। आसान भाषा में कहें तो खेल चाइना ने अरब सागर में घुसने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए खेला था। अब वही खेल वो बंगाल की खाड़ी में घुसने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के पीछे छिपकर खेलने जा रहा है। सड़क और रेल दोनों की पटरियों का ये तानाबाना भले ही ट्रेड रूट के नाम पर बिछाया जाना हो, लेकिन असल में ये भारत को पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशाओं से समुद्री और जमीनी मोर्चे पर घेरने का एक रणनीतिक चक्रव्यूह भी बताया जा रहा है। असल में चाइना के इस कदम के पीछे उसकी एक बहुत पुरानी कमजोरी और छटपटाहट है, जिसे डिफेंस एक्सपर्ट मलाका डिलेमा कहते हैं। चाइना का लगभग 80% तेल आयात समंदर के रास्ते एक बेहद पतली मलाका स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अब चाइना को डर क्या है? उसे डर है कि युद्ध या भारी तनाव की स्थिति में अमेरिका की नेवी या भारत की नेवी इस चोक पॉइंट को आसानी से ब्लॉक कर सकती है, जिससे चाइना की सांसें थम जाएंगी। और यही वजह है इस कमजोरी से उबरने के लिए चाइना ने दो मोर्चे खोले। पश्चिमी मोर्चा यानी सीपीईसी, जिसमें चाइना ने पीओके से होते हुए अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक सीधी सड़क पहुंचा दी ताकि मलाका रूट को बाईपास किया जा सके, और पूर्वी मोर्चा यानी CBMEC के जरिए चाइना को बंगाल की खाड़ी में अपनी सीधी पहुंच चाहिए। म्यांमार और बांग्लादेश के जरिए वो सीधे भारत के पूर्वी मुहाने पर आकर बैठना चाहता है ताकि हिंद महासागर में उसका बिना रोक टोक दखल हो सके। अब चाइना के इस मल्टी मोडल नेटवर्क की शुरुआत उसके यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग से होगी, जहां से ये रूट म्यांमार के मंडाले पहुंचेगा, जहां से इसकी एक ब्रांच म्यांमार की पुरानी राजधानी यांगून और क्याउफ्यू जो है उसके डीप सी पोर्ट तक जाएगी। फिर इसे म्यांमार से रोड रेल नेटवर्क, समुद्री रास्ते से बांग्लादेश के चटगांव, कॉक्स बाजार और आखिर में मोंगला पोर्ट से जोड़ा जाएगा। हालांकि चाइना के इस प्रोजेक्ट का एक दूसरा पहलू भी है जो भारत के लिए फिलहाल तो राहत की बात है। कागजों पर तो यह कॉरिडोर चाइना के लिए बेहद आकर्षक है, फायदेमंद दिखता है, लेकिन बांग्लादेश के ही अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी ग्राउंड रियलिटी बहुत खतरनाक है और इसे पूरा करना चाइना के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। अखबार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 2030 तक तो क्या 2040 के दशक तक भी पूरी तरह चालू नहीं हो सकता। इसके पीछे बड़ी वजह है म्यांमार की स्थिति। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार पूरी तरह से बिखरा हुआ है, बिखर चुका है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश के सिर्फ 20% हिस्से पर ही वहां की सैन्य सरकार का नियंत्रण रह गया है, जबकि 42% से ज्यादा हिस्से पर विद्रोही गुटों का कब्जा है। म्यांमार के जिस रखीने प्रांत से होकर यह कॉरिडोर गुजरेगा उसके 17 में से 14 कस्बों पर विद्रोही अराकान आर्मी का राज है। चाइना का महत्वाकांक्षी क्याउफ्यू पोर्ट म्यांमार में युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। यहां चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर म्यांमार के विद्रोही गुट और सेना के बीच एक जंग चल रही है। म्यांमार में अस्थिरता की वजह से पहले ही चाइना के हजारों करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ठप हो चुके हैं। बांग्लादेश के लिए ये कॉरिडोर मानवीय संकट की वजह से भी फंसा है। अब बांग्लादेश का कहना है कि म्यांमार के साथ कोई भी जमीनी कनेक्टिविटी तभी आगे बढ़ेगी जब बांग्लादेश में रह रहे 12 लाख रोहिंग्याओं की म्यांमार में वापसी होगी। बांग्लादेश भी रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजना चाहता है, लेकिन ये वापसी फिलहाल गृह युद्ध की वजह से नामुमकिन लग रही है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट की बड़ी रुकावटें हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश में जो चाइना के राजदूत हैं उन्होंने बेहद चालाकी भरा बयान दिया, कहा कि चाइना इस प्रोजेक्ट में भारत के शामिल होने का भी स्वागत करता है, लेकिन यह भारत पर निर्भर करता है कि वो इंतजार करना चाहता है या साथ आना चाहता है। असल में यह एक कूटनीतिक ट्रैप है। चाइना अच्छी तरह से जानता है कि 1999 में जब भारत इस योजना का हिस्सा था उस वक्त इसे BCIM कॉरिडोर कहा जाता था, तब भी भारत ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट की वजह से खुद को इससे अलग किया। क्यों भारत इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है? आपको बता दें कि भारत इस चक्रव्यूह को मूक दर्शक बनकर नहीं देख रहा है, बल्कि इसकी काट के लिए कई मोर्चों पर काम भी कर रहा है। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। भारत और जापान मिलकर बांग्लादेश में ही मातरबारी डीप सी पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा भारत म्यांमार के सिटवे पोर्ट को विकसित कर चुका है ताकि कोलकाता से सीधे समुद्र के रास्ते म्यांमार और वहां से फिर मिजोरम को जोड़ा जा सके। हालांकि म्यांमार के गृह युद्ध ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को भी थोड़ा धीमा किया है, लेकिन यह साफ है कि पश्चिम में CPEC के बाद पूर्व में इस नए कॉरिडोर की जिद दिखाकर चाइना ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत की सीमाओं को शांत नहीं रहने देगा। इसके जवाब में आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में होने वाली हर रणनीतिक और कूटनीतिक गतिविधि पर पैनी नजर रखता है, जब भी और जहां भी अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत महसूस होती है, भारत बिना किसी देरी के आवश्यक कदम उठाता है। देश के ई रिक्शा चालक आजकल बहुत परेशान हैं। उनका ई रिक्शा चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, कई प्रयासों के बावजूद दोबारा स्टार्ट नहीं होता। शुरुआत में इन लोगों को लगा कि शिकायत ई रिक्शा की बैटरी या किसी सिस्टम में है, लेकिन बाद में पता चला कि ये काम चाइनीज ऐप इस्तेमाल करते रहे कुछ शरारती तत्व कर रहे थे। तो देखिए, सड़क पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके मोबाइल फोन में ये चाइनीज मोबाइल ऐप्स होते हैं वो किसी भी ई रिक्शा को बंद कर देता है। ये सारी चाइनीज ऐप ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में घुसकर बैटरी से उसका कनेक्शन ही बंद कर देती हैं, तो बैटरी का झोल सामने आ रहा है जिससे ई रिक्शा बंद हो जाता था। मुख्य रूप से 3 चाइनीज ऐप्स हैं, बैट BMS, लॉसिजी और इपोक की मदद से ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा था। अब देखिए, कई लोगों ने ई रिक्शा चालकों को परेशान करने वाले वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया। अपनी इस हरकत पर ये लोग बहुत खुश हो रहे थे, जबकि उन्हें पता होना चाहिए था कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच ई रिक्शा के अचानक बंद होने से चालक, उसमें बैठे यात्रियों की जान, सबको खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर किस तरह की चाइनीज ऐप थी जो ई रिक्शा को रिमोट पर ले रही थी और कैसे? जिन ई रिक्शा में लिथियम आयन बैटरी होती है उनमें एक BMS जुड़ा होता है। BMS का मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS लगभग हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है, फिर चाहे वो ई रिक्शा हो, ई बाइक हो या आपकी ईवी कार। इस सिस्टम का काम है बैटरी की चार्जिंग, वोल्टेज, तापमान, चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट, बैटरी की सेहत, सब कुछ की जानकारी वाहन मालिक को देना और बैटरी का कनेक्शन वाहन के मोटर से जोड़ना या फिर काटना। BMS का डेटा 3 तरह से दिखता है। पहला, बैटरी से जुड़ी सारी जानकारी सीधे डिस्प्ले पर दिखना। दूसरा, ब्लूटूथ के जरिए सारी जानकारी ईवी मालिक के मोबाइल ऐप तक पहुंचाना। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपकी स्मार्ट वॉच, हेडफोन या स्मार्ट हेल्थ रिंग का जो डेटा है वो ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन ऐप पर आ जाता है। ई रिक्शा BMS में आमतौर पर ब्लूटूथ होता है और ये 10 से 20 मीटर की रेंज पर काम करता है। तीसरा तरीका है इंटरनेट। आधुनिक ईवी जो गाड़ियां हैं उनमें 4G GPS आधारित सिस्टम होता है। ये इंटरनेट के जरिए बैटरी का डेटा पहले क्लाउड सर्वर पर भेजता है और फिर उसके बाद वहां से इंटरनेट के जरिए आपके मोबाइल ऐप में दिखाता है। अब हो क्या रहा है, आमतौर पर कुछ ई रिक्शा की बैटरीज का BMS ID पासवर्ड से सुरक्षित रहता है, लेकिन पासवर्ड जरूरी है क्योंकि अक्सर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसी का फायदा बैक BMS इस्तेमाल करने वालों ने उठाया है। अगर पासवर्ड नहीं है तो हैक किया जा सकता है। जिन ई रिक्शाओं के BMS में ब्लूटूथ थे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं थे, उन सभी ई रिक्शाज में ये दिक्कतें आई हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि आपको पासवर्ड लगा कर रखना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाकर रखना है ताकि ऐसे लोगों से बच सके। उन सभी को देखिए जिन्होंने नहीं लगाया, उन सभी को दूसरे व्यक्ति ने अपनी चाइनीज ऐप से एक्सेस करके ई रिक्शा ही बंद कर दिया। अब ई रिक्शा चालकों को करना यह है कि वो अपने ई रिक्शा के BMS का ID पासवर्ड लें, अपना मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर लें। ऐसा करने से कोई अन्य व्यक्ति आपके ई रिक्शा के BMS का एक्सेस नहीं ले पाएगा। सरकार ने ई रिक्शा चालकों की परेशानी को समझते हुए फिलहाल बैट, BMS, लॉसजी और एपॉक समेत 7 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ई रिक्शा से चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। फिर भी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड जरूर बना लें अपने BMS को और ऐप भी डाउनलोड अपने मोबाइल पर कर लें, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा किसी ना किसी ऐप की फिराक में रहेंगे ताकि फिर से अपना गलत काम वो कर पाए। आपकी EV कार या बाइक में भी BMS है तो आप जानना चाहते होंगे कि क्या बैड BMS जैसी कोई चाइनीज ऐप आपके EV को भी बंद कर सकती है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब EV का BMS पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो या उसके रिमोट कंट्रोल सिस्टम में कोई गंभीर सुरक्षा खामी हो। कुछ आधुनिक EV गाड़ियों को उसकी निर्माता कंपनियां भी रिमोट पर लेती हैं और उसके हर फीचर को एक्सेस करती हैं, जैसे बैटरी चार्जिंग, फर्मवेयर अपडेट, या कार में किसी समस्या का पता लगाना हो, या फिर कुछ मामलों में तो पूरी गाड़ी का एक्सेस लेती है। अगर कोई मोबाइल ऐप किसी तरह की सुरक्षा खामी का फायदा उठाकर आपके क्लाउड आधारित रिमोट कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच गया तो ऐसा हो सकता है कि वो आपकी गाड़ी को भी रोक दे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपकी EV और BMS पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो और उनमें सुरक्षा खामी हो। हालांकि आधुनिक EV गाड़ियों में साइबर सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है, इसीलिए ऐसा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐप या किसी कंप्यूटर सिस्टम से EV गाड़ी के एडमिन कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच गया तो वो कार के फीचर को अपने नियंत्रण में ले सकता है। अपनी EV गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए गाड़ी की निर्माता कंपनी का आधिकारिक ऐप इस्तेमाल करें। EV के सिस्टम एक्सेस को पासवर्ड से सुरक्षित रखें और अगर ऐप में सुविधा हो तो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। कभी भी EV के एक्सेस वाला जो ID पासवर्ड है वो किसी से शेयर ना करें और कभी भी थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन को सारा एक्सेस मत दीजिए। BMS सिस्टम पर लिथियम आयन बैटरी वाली EV में है, इसलिए जरूरी यह है कि उसे भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल फोन को अपडेटेड पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं, वैसे ही बस संभल कर चलना है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैच्योरिटी का नया पैमाना ये है कि आप कितनी शालीनता से उन लोगों को म्यूट कर देते हैं जिन्हें आप ब्लॉक नहीं कर सकते। नमस्कार।
2: खबर राम मंदिर पर जारी घमासान की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर SIT की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे अधिक राजनीति बड़े चेहरों को लेकर हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो SIT चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आती।
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। SIT टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं।
4: गोपाल राय करते हैं साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं।
3: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब एक महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
5: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
3: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है।
6: माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है।
7: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
3: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।
2: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं।
3: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना-बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी छह क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं, इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है, उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
2: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है।
8: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
9: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खासतौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
10: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
8: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
11: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
8: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: एक चौंकाने वाली खबर, देश में ई रिक्शा ऐप को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हुआ, जहां एक ऐप के द्वारा ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बंद कर पहुंच जाते हैं।
1: ये गाड़ी चालू खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल, तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
2: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा लिया था।
3: कितने में चालू करवाई?
2: 150 रुपए लगे थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही हैं।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन, और वो बंद हो जाती है। और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके, फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे मर्डर की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, क्यों सिया गोयल ने शादी से इनकार के बजाय केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान बनाया, क्या सिया गोयल को इसका पछतावा है, देखिए।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है? और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोहगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या न करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: श्रद्धा यात्रा शुरू हो चुकी है, श्रद्धा
0: पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या न करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो।
3: खबर बाबा बर्फानी की, पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले बाबा के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस वर्ष 57 दिनों का समय मिला। अभी तक 4,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही। आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके हैं।
1: हम अपार मध्य प्रदेश हर हर महासंभव।
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
2: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं। लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनमान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की ये सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहाँ यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
2: तस्वीरों में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहाँ पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहाँ पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहाँ से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके जो हमने तस्वीरें दिखाई वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं अब आप तस्वीर में देख सकते हैं धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब चूंकि नियम होते हैं दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं, सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहां से क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है। काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है, इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पालकी कर लिए अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम होगा यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी। दत्तात्रेय बोले, राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा। कांग्रेस का पलटवार, दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक नेता। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चन्नी पहली पसंद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक। अलनीनो के कारण कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा। बिहार सरकार ने बहाल की लालू और रावड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा। दोनों को मिली बुलेटप्रूफ गाड़ियां। कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था राजनीतिक हंगामा। और तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मौके पर आज तक पल पल की जानकारी। खबर राम मंदिर पर जारी घमासान की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे अधिक राजनीति बड़े चेहरों को लेकर हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो एसआईटी चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आती।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं।
2: साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं।
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब एक महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्रीय

0: सिद्धांतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
1: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।
2: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं।

0: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना-बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है।
2: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्ट्रल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
3: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खास तौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
4: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
2: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
5: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।

0: साफ है SIR पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब सम्राट चौधरी के सहयोगी दल ही सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की और सिस्टम पर सवाल खड़े किए, जबकि इससे पहले जीतन राम मांझी भरत तिवारी एनकाउंटर को सही बता चुके हैं। ऐसे में चिराग और मांझी के बीच एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर जुबानी युद्ध शुरू हो गया है।
2: उन्होंने ही भक्षक बनने का काम किया। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उनकी बात को उचित मंच तक पहुंचाया जा सके, इस सोच के साथ आज मैंने परिवार से मुलाकात की है। उनकी तमाम बातों को हर उस मंच पर रखा जाएगा ताकि परिवार को न्याय मिले।
3: चिराग पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे। इस मामले में हमने बहुत पहले कर दिया है।
1: एक चौंकाने वाली खबर, देश में ई रिक्शा ऐप को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हुआ, जहां एक ऐप के द्वारा ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बनकर पहुंच जाते हैं।
1: कैसे धक्का लगाया?
2: क्या हुआ? ये गाड़ी चालू खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल, तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
1: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा लिया था।
3: कितने में चालू करवाई?
1: 150 रुपए लगे थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर MP और UP तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही है।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन, और वो बंद हो जाती है, और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके, फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे मर्डर की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, क्यों सिया गोयल ने शादी से इनकार के बजाय केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान बनाया, क्या सिया गोयल को इसका पछतावा है? देखिए।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है, और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है, और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या ना करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: खबर। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले बाबा के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस वर्ष 57 दिनों का समय मिला। अभी तक 4,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही
1: है।
0: आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके हैं।
2: हम अपार मध्य प्रदेश
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
3: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं। लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में यह पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहां यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
3: तस्वीरों में जो आप यहां पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो। कश्मीर

0: बालटाल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीर में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब जो कि नियम होते हैं, दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं, सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहां से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है, इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा, और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पाल की कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा, आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इसराइली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलकती जनता का समुद्र उमड़ पड़ा है।

0: नम आंखें, गगन भेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के इस सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه‌های تقویت کشور رو پیدا کنند.
0: कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय बोले राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा, कांग्रेस का पलटवार, दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान, पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक नेता, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चन्नी पहली पसंद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक, अलनीनो के कारण कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा। बिहार सरकार ने बहाल की लालू और रावड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा, दोनों को मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियां, कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था राजनीतिक हंगामा। और तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, मौके पर आज तक पल पल की जानकारी। खबर राम मंदिर पर जारी घमासान की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे अधिक राजनीति बड़े चेहरों को लेकर हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो एसआईटी चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आती।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं।
2: गोपाल राय करते हैं, साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं।
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब एक महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
1: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है।
4: जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि साफ परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है।
5: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
1: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं।

0: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना-बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है।
2: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
3: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खासतौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
4: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
2: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
5: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
2: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: एक चौंकाने वाली खबर, देश में ई रिक्शा ऐप को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हुआ, जहां एक ऐप के द्वारा ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बनकर पहुंच जाते हैं।
1: कैसे
2: ये गाड़ी चालू करी खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल, तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
1: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा लिया था। फिर
3: कितने में चालू करवाई?
1: 150 रुपए ले गए थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही है।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन, और वो बंद हो जाती है। और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके, फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे मर्डर की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, क्यों सिया गोयल ने शादी से इनकार के बजाय केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान बनाया, क्या सिया गोयल को इसका पछतावा है? देखिए।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है? और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोहगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या न करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: खबर। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले बाबा के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस वर्ष 57 दिनों का समय मिला। अभी तक 4,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही
1: वीर बजरंगे
2: हर हर महादेव
1: वीर बजरंगे
2: हर हर महादेव
1: बम बम भोले।
0: आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके
3: हम पार्वती पदे
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
4: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं। लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में यह पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहां यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
4: तस्वीरों में जो आप यहां पर देख रहे हैं टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं ये श्रद्धालुओं के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही बेस कैंप भी हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: नैनीताल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20,000 श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीर में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब जो कि नियम होते हैं, दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं, सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहाँ से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है, इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा, और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पाल की कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: पैसा का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा, आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ बानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इसराइली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलकती जनता का समुद्र उमड़ पड़ा है।

0: नम आंखें, गगन भेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के इस सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमे उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنند.
0: कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी। दत्तात्रेय बोले, राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा। कांग्रेस का पलटवार, दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक नेता। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चन्नी पहली पसंद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक। अलनीनो के कारण कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा। बिहार सरकार ने बहाल की लालू और रावड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा। दोनों को मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियां। कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था राजनीतिक हंगामा। और तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मौके पर आज तक पल पल की जानकारी। खबर राम मंदिर पर जारी घमासान की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे अधिक राजनीति बड़े चेहरों को लेकर हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो एसआईटी चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आती।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं।
2: गोपाल राय करते हैं, साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है? इसकी क्या जरूरत थी? जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी? ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं।
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब एक महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
1: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है।
4: जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि साफ परिवार सहित नाश हुआ, करोड़ों लोगों के दान राम।

0: वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
1: बहरहाल SIT की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।
2: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं।

0: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी तानाबाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है।
2: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्ट्रल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
3: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खासतौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
4: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
2: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
5: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें।

0: हम लोग तैयार हैं।
1: साफ है, SIR पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: एक चौंकाने वाली खबर, देश में ई रिक्शा ऐप को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हुआ, जहां एक ऐप के द्वारा ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बनकर पहुंच जाते हैं।
1: ये गाड़ी चालू करी खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल। तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
2: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा लिया था।
3: कितने में चालू करवाई?
2: 150 रुपए लगे थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही हैं।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन, और वो बंद हो जाती है। और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके। फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे मर्डर की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, क्यों सिया गोयल ने शादी से इनकार के बजाय केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान बनाया, क्या सिया गोयल को इसका पछतावा है? देखिए।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है? और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है, तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोहगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या न करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: खबर। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले बाबा के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस वर्ष 57 दिनों का समय मिला। अभी तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही।
1: जयकारा वीर बजरंगे,
2: हर हर महादेव।
1: जयकारा वीर बजरंगे,
2: हर हर महादेव।
1: बम भोले, बम बम भोले।
0: आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके।
3: हम अपार मध्य प्रदेश, हर हर महादेव।
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
4: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं। लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में यह पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहां यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
4: तस्वीरों में जो आप यहां पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो।
5: कश

0: बालटाल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीर में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब जो कि नियम होते हैं, दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं। सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहाँ से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है। इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगा।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा, और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पालकी कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए। जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा, आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को। तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इसराइली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलकती जनता का समुद्र उमड़ पड़ा है।

0: नम आंखें, गगनभेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنند.
0: कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी। दत्तात्रेय बोले, राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा। कांग्रेस का पलटवार, दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक नेता। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चन्नी पहली पसंद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक। अलनीनो के कारण कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा। बिहार सरकार ने बहाल की लालू और रावड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा। दोनों को मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियां। कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था राजनीतिक हंगामा। और तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मौके पर आज तक पल पल की जानकारी। खबर राम मंदिर पर जारी घमासान की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे अधिक राजनीति बड़े चेहरों को लेकर हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो एसआईटी चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आती।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं।
2: गोपाल राय करते हैं साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है? इसकी क्या जरूरत थी? जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी? ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं।
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब एक महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
1: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है।
4: माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि साफ परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है।
5: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
1: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं।
1: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना-बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है।
6: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएम के समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्ट्रल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
7: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खास तौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
8: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
6: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
9: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
6: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: एक चौंकाने वाली खबर, देश में ई रिक्शा ऐप को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हुआ, जहां एक ऐप के द्वारा ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बनकर पहुंच जाते हैं।
1: ये गाड़ी चालू करी खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल। तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
2: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा ली है।
3: कितने में चालू करवाई?
2: 150 रुपए ले गए थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही हैं।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन, और वो बंद हो जाती है। और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके। फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे मर्डर की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, क्यों सिया गोयल ने शादी से इनकार के बजाय केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान बनाया, क्या सिया गोयल को इसका पछतावा है? देखिए,

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है? और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापिस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोहगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या ना करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: खबर। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले बाबा के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस वर्ष 57 दिनों का समय मिला। अभी तक 4,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही।
1: वीर बजरंगे
2: हर हर महादेव,
1: वीर बजरंगे
2: हर हर महादेव,
1: बम बम भोले।
0: आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके
3: हम अपार मध्य प्रदेश
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
4: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहाँ पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहाँ जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं, लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहाँ यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई।
4: तस्वीरों में जो आप यहां पर देख रहे हैं टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: बालटाल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब जो कि नियम होते हैं, दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं। सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहाँ से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है। इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा, और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पालकी कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे का गेट बंद होगा, आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इसराइली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलकती जनता का समुद्र उमड़ पड़ा है।

0: नम आंखें, गगन भेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के इस सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و نظران دلسوز ما راه های تقویت کشور رو پیدا کنند.
0: कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय बोले राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा, कांग्रेस का पलटवार, दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान, पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक नेता, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चन्नी पहली पसंद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक, अलनीनो के कारण कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा। बिहार सरकार ने बहाल की लालू और रावड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा, दोनों को मिली बुलेटप्रूफ गाड़ियां, कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था राजनीतिक हंगामा। और तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, मौके पर आज तक पल पल की जानकारी। खबर राम मंदिर पर जारी घमासान की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे अधिक राजनीति बड़े चेहरों को लेकर हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो एसआईटी चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आती।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं।
2: गोपाल राय करते हैं, साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी, ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं।
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब एक महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
1: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है।
4: जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि साफ परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है।
5: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।

0: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना-बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है।
2: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्ट्रल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
3: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खास तौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
4: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
2: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
5: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
2: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: एक चौंकाने वाली खबर, देश में ई रिक्शा ऐप को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हुआ, जहां एक ऐप के द्वारा ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बनकर पहुंच जाते हैं।
1: कैसे धक्का लगा
2: ये गाड़ी चालू करी खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल। तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
1: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा लिया था।
3: कितने में चालू करवाई?
1: 150 रुपए लगे थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही है।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन और वो बंद हो जाती है। और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे मर्डर की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, क्यों सिया गोयल ने शादी से इनकार के बजाय केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान बनाया, क्या सिया गोयल को इसका पछतावा है? देखिए।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और ना ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है, और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है, और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो शख्स ने दोनों को हत्या ना करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: खबर। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले बाबा के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस वर्ष 57 दिनों का समय मिला। अभी तक 4,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही हैं।
1: जयकारा वीर बजरंगे,
2: हर हर महादेव।
1: जयकारा वीर बजरंगे,
2: हर हर महादेव।
1: बम बम भोले।
0: आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके हैं।
3: नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
4: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं। लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहाँ यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
4: तस्वीरों में जो आप यहां पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: बालटाल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीर में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब जो कि नियम होते हैं, दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं, सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहाँ से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है। इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा, और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पाल की कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: तो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इसराइली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलकती जनता का समुद्र उमड़ पड़ा है।

0: नम आंखें, गगनभेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنند.
0: कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
4: सुप्रीम लीडर को 125 दिनों के बाद सुपुर्द खाक किया जा रहा है।

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय बोले राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा, कांग्रेस का पलटवार, दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान, पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक नेता, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चन्नी पहली पसंद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक, अलनीनो के कारण कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा। बिहार सरकार ने बहाल की लालू और रावड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा, दोनों को मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियां, कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था राजनीतिक हंगामा। और तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, मौके पर आज तक पल पल की जानकारी। खबर राम मंदिर पर जारी घमासान की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे अधिक राजनीति बड़े चेहरों को लेकर हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो एसआईटी चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आती।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं।
2: गोपाल राय करते हैं साउथ से आ करके यहाँ क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं।
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब एक महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
1: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है।
4: माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है।
5: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
1: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं।

0: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना-बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है।
2: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्ट्रल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
3: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खास तौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
4: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
2: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
5: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
2: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: एक चौंकाने वाली खबर, देश में ई रिक्शा ऐप को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हुआ, जहां एक ऐप के द्वारा ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बनकर पहुंच जाते हैं।
1: ये गाड़ी चालू खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल, तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
2: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा लिया था।
3: कितने में चालू करवाई?
2: 150 रुपए लगे थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही हैं।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन, और वो बंद हो जाती है। और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके, फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे मर्डर की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, क्यों सिया गोयल ने शादी से इनकार के बजाय केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान बनाया, क्या सिया गोयल को इसका पछतावा है, देखिए।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है? और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापिस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है, तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोहगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या न करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: खबर। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले बाबा के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस वर्ष 57 दिनों का समय मिला। अभी तक 4,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके
1: हैं।
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
2: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं, लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनमान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहाँ यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
2: तस्वीरों में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहाँ पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहाँ पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहाँ से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: बालटाल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब जो कि नियम होते हैं, दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं। सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहां से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है। इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ये रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा, और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पालकी कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा, आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलकती जनता का समुद्र उमड़ पड़ा है।

0: नम आंखें, गगन भेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के इस सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنند.
0: कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: રામ મંદિર ચઢાવવા ચોરી પર આરએસએસ તોડી ચુપી. દત્તાત્રેય બોલે, રામ ભક્તોં કી ભાવનાએ આહત કરને વાલોં કો મિલે કઠોર સજા. કોંગ્રેસ કા પલટવાર, દિખાવે કે લિયે નિંદા. પંજાબ કોંગ્રેસ મેં ઘમાસાન. પૂર્વ સીએમ ચન્ની કે સમર્થન મેં કઈ વિધાયક નેતા. પરિવેક્ષકોં કી રિપોર્ટ મેં ભી પ્રદેશ અધ્યક્ષ કે લિયે ચન્ની પહેલી પસંદ. दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक. अलनीनो के कारण कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा. बिहार सरकार ने बहाल की लालू और रावड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा. दोनों को मिली बुलेटप्रूफ गाड़ियां. कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था राजनीतिक हंगामा. और तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि. मौके पर आज तक पल पल की जानकारी. खबर राम मंदिर पर जारी घमासान की. राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे अधिक राजनीति बड़े चेहरों को लेकर हो रही है. अब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो एसआईटी चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आती.
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है. एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब चार घंटे तक पूछताछ की. टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे. सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा. इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी. ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा. उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं.
2: गोपाल राय करते हैं साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है? इसकी क्या जरूरत थी? जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी? ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं.
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब एक महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है.
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे. जय श्री राम.
1: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है.
4: माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सब परिवार सहित नाश हुआ. करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है.
5: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है. इस छल युग में सावधान रहना. वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए. हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा.
1: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी. आज तक ब्यूरो.
0: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है. ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं.

0: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना-बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है।
2: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
3: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खासतौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
4: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
2: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
5: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
2: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब सम्राट चौधरी के सहयोगी दल ही सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की और सिस्टम पर सवाल खड़े किए, जबकि इससे पहले जीतन राम मांझी भरत तिवारी एनकाउंटर को सही बता चुके हैं। ऐसे में चिराग और मांझी के बीच एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर जुबानी युद्ध शुरू हो गया है।
6: भरत तिवारी जी के साथ उन्होंने भक्षक बनने का काम किया, ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उनकी बात को उचित मंच तक पहुंचाया जा सके, इस सोच के साथ आज मैंने परिवार से मुलाकात की है। उनकी तमाम बातों को हर उस मंच पर रखा जाएगा ताकि परिवार को न्याय मिले।
7: चिराग पासवान जो करते हैं

0: वही हम करेंगे। इस मामले में हमने बहुत पहले कर दिया है।
1: एक चौंकाने वाली खबर, देश में ई रिक्शा ऐप को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हुआ, जहां एक ऐप के द्वारा ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बंद कर पहुंच जाते हैं।
1: ये गाड़ी चालू करी खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल, तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
2: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा ली है।
3: कितने में चालू करवाई?
2: 150 रुपए लगे थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही हैं।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन, और वो बंद हो जाती है। और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके, फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे मर्डर की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, क्यों सिया गोयल ने शादी से इनकार के बजाय केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान बनाया, क्या सिया गोयल को इसका पछतावा है? देखिए।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और ना ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है, और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है, और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोहगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या ना करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: खबर। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले बाबा के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस वर्ष 57 दिनों का समय मिला। अभी तक 4,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही
1: है।
0: आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके हैं।
1: हम अपार मध्य प्रदेश
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
2: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं। लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहाँ यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
2: तस्वीरों में जो आप यहां पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: बालटाल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीर में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब चूंकि नियम होते हैं दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं, सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहाँ से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है, इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पालकी कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा, आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम होगा यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इसराइली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलकती जनता का समुद्र उमड़ पड़ा है।

0: नम आंखें, गगन भेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही अवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنند.
0: कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।

0: શ્રી રામ મંદિર ચઢાવવા ચોરી પર આરએસએસ નિતોડી ચૂપી. દત્તાત્રેય બોલે, રામ ભક્તો કી ભાવનાએ આહત કરને વાલો કો મિલે કઠોર સજા. કોંગ્રેસ કા પલટવાર, દિખાવે કે લિયે નિંદા. પંજાબ કોંગ્રેસ મેં ઘમાસાન. પૂર્વ સીએમ ચન્ની કે સમર્થન મેં કઈ વિધાયક નેતા. પરિવેક્ષકો કી રિપોર્ટ મેં ભી પ્રદેશ અધ્યક્ષ કે લિયે ચન્ની પહેલી પસંદ. दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक. अलनीनो के कारण कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा. बिहार सरकार ने बहाल की लालू और रावड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा. दोनों को मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियां. कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था राजनीतिक हंगामा. और तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि. मौके पर आज तक पल पल की जानकारी. खबर राम मंदिर पर जारी घमासान की. राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे अधिक राजनीति बड़े चेहरों को लेकर हो रही है. अब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो एसआईटी चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आती.
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है. एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब चार घंटे तक पूछताछ की. टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे. सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा. इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी. ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा. उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं.
2: गोपाल राय करते हैं साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है? इसकी क्या जरूरत थी? जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी? ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं.
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब एक महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है.
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे. जय श्री राम.
1: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है.
4: जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ. करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है.
5: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है. इस छल युग में सावधान रहना. वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए. हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा.
1: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी. आज तक ब्यूरो.
0: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है. ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं.

0: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना-बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है।
2: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएम के समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्ट्रल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
3: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खासतौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
4: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
2: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
5: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
2: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: एक चौंकाने वाली खबर, देश में ई रिक्शा ऐप को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हुआ, जहां एक ऐप के द्वारा ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बनकर पहुंच जाते हैं।
1: ये गाड़ी चालू करी खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल, तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
2: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा लिया था।
3: कितने में चालू करवाई?
2: 150 रुपए लगे थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही है।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन और वो बंद हो जाती है, और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे मर्डर की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, क्यों सिया गोयल ने शादी से इनकार के बजाय केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान बनाया, क्या सिया गोयल को इसका पछतावा है? देखिए।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है? और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापिस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है, तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोहगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या ना करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: खबर। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले बाबा के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस वर्ष 57 दिनों का समय मिला। अभी तक 4,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके
1: हैं।
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
2: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं, लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहाँ यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
2: तस्वीरों में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहाँ पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहाँ पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहाँ से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: नैनीताल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब जो कि नियम होते हैं, दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं। सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहाँ से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है। इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा, और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पालकी कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा, आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इसराइली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलकती जनता का समुद्र उमड़ पड़ा है।

0: नम आंखें, गगनभेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه‌های تقویت کشور رو پیدا کنند.
0: कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: રામ મંદિર ચઢાવવા ચોરી પર આરએસએસ નિતોળી ચૂપી. દત્તાત્રેય બોલે, રામ ભક્તો કી ભાવનાએ આહત કરને વાલો કો મિલે કઠોર સજા. કોંગ્રેસ કા પલટવાર, દિખાવે કે લિયે નિંદા. પંજાબ કોંગ્રેસ મેં ઘમાસાન. પૂર્વ સીએમ ચન્ની કે સમર્થન મેં કઈ વિધાયક નેતા. પરિવેક્ષકો કી રિપોર્ટ મેં ભી પ્રદેશ અધ્યક્ષ કે લિયે ચન્ની પહેલી પસંદ. दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण बैठक. अलनीनो के कारण कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर की समीक्षा. बिहार सरकार ने बहाल की लालू और रावड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा. दोनों को मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियां. कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था राजनीतिक हंगामा. और तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि. मौके पर आज तक पल पल की जानकारी. खबर राम मंदिर पर जारी घमासान की. राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे अधिक राजनीति बड़े चेहरों को लेकर हो रही है. अब सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो एसआईटी चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आती.
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है. एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब चार घंटे तक पूछताछ की. टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे. सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा. इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी. ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा. उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं.
2: गोपाल राय करते हैं, साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी. ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं.
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब एक महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है.
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे. जय श्री राम.
1: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है.